संकल्प और साधारण संकल्प, इसमें रात दिन का फर्क है। करेंगे और करना ही है, करेंगे ये साधारण संकल्प है, करना ही है ये दृढ़ संकल्प है। तो बाबा कहे उसमें अंतर है। तो इस वर्ष की इस सीजन का लास्ट डे, इस वर्ष की 2011 की इस सीजन का आज लास्ट डे है, लेकिन अगली सीजन में बाप दादा हर एक छोटा बड़ा सेंटर काफी टाइम है बीच में। अगली सीजन आरंभ होती है अक्टूबर से, तो बाबा कहे बीच में 6 महीना है, काफी टाइम है बीच में। तो अगले सीजन में बाप दादा क्या देखना चाहते हैं, अगले वर्ष की सीजन में कारण नहीं लेकिन निवारण स्वरूप देखना चाहते हैं। तो कितना हिम्मत और उमंग है कि ब्राह्मण परिवार में टेंशन का नाम निशान नहीं हो। हो सकता है हर एक अपने से पूछे, हो सकता है ये खुशखबरी बाप दादा सुनना चाहते हैं। तो बाबा कहे ये खुशखबरी बाप दादा सुनने चाहते हैं। बाप दादा ने देखा कि चाहना सब रखते हैं, हर एक बच्चे की भी चाहना है कि हम टेंशन फ्री हो जाए, तो चाहना सब रखते हैं, करेंगे, लेकिन जब समस्या आती है तो समस्या अपना बना देती है, इसलिए टेंशन में आ जाते हैं। फिर बहुत मीठी बातें करते हैं बाबा के साथ, यह हो जाता है ना, यह तो होगा ना, यह तो चलता है ना, टेंशन में आ जाते हैं। फिर बाबा को कहते यह तो हो जाता है ना, यह होगा ना, यह तो चलता है ना। बाप दादा को बहुत मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। सबका कारण राजा बन जाओ, बाबा कहते सबका कारण राजा बन जाओ, बस स्वराज्य अधिकारी बन जाओ। तो आज बाप दादा सभी बच्चों को, चाहे सामने बैठे हैं चाहे दूर बैठे हैं, दिल में बैठे हैं, बाबा कहते चाहे बच्चे सामने बैठे हैं चाहे दूर बैठे, दिल में बैठे हैं, बाबा के दिल में बैठे, आप तो आंखों के सामने हैं, लेकिन बाप दादा जो दूर बैठे हैं उनको दिल में देख रहे हैं। कितना प्यार करते हैं, दूर बैठे भी जो बाबा की मुरली सुन रहे हैं बाबा उनको अपने दिल में देख रहे हैं। बाप दादा को पता है कि आज के दिन मधुबन में भी छोटी छोटी गीता पाठशालाएं लग गई है, अलग अलग स्थानों पर लोग बैठे थे, बच्चे आए हैं। बाप दादा बहुत बहुत बहुत नीचे बैठने वालों को, कहां कहां बैठने वालों को सबसे पहले दिल का दुलार और याद प्यार दे रहे हैं, क्योंकि आज शांतिवन में 28,000 से भी अधिक भाई बहने पहुंचे थे। लास्ट टर्न होने कारण जहां से भी रह गए थे वो सब पहुंच गए थे। तो इसीलिए बाबा कहते छोटी छोटी गीता पाठशाला बन करके बैठे हैं। बाप दादा ने देखा कि बच्चों को थोड़ी तकलीफ तो देखनी पड़ी है, लेकिन ये तकलीफ खुशी में अनुभव नहीं करते हैं। बाबा से मिलन की खुशी ऐसी है जो उसमें तकलीफ अनुभव नहीं होती है। फिर भी आराम से सोने के लिए 3 पैर पृथ्वी तो मिली है ना, जो पटरानी बने हैं उन बच्चों को बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं। जिनको जमीन पर सोने को मिला पटरानी बाबा कहते उसको, तो जो पटरानी बने हैं उनको बाबा विशेष याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, जो आज पहली बारी मधुबन में आए हैं या बाप दादा से मिलने आए हैं वह उठो। आज पहली बारी आने वाले बच्चों को बाप दादा नए ब्राह्मण परिवार में आने की अपने तरफ से और ब्राह्मण परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं, क्योंकि फिर भी टू लेट आए हो, लेकिन आ तो गए,
आ तो गए, उसकी बाबा बधाई देते हैं। बाप दादा और परिवार को देख तो लिया, बाप दादा समझते हैं कि आप चाहो तो आज आने वालों को विशेष वरदान है। बाप दादा कहते हैं आप चाहो तो आज आने वालों को भी विशेष वरदान है। कौन सा वरदान है? कि अगर दिल से चाहो तो लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो आगे जा सकते हैं, एकदम फास्ट सो फर्स्ट जा सकते हैं। बाप दादा और परिवार का आप सब आत्माओं से प्यार है, सहयोगी बनेंगे, स्नेह देंगे और आपको आगे बढ़ाएंगे, चांस देंगे। इसलिए आज आने वालों को आगे बढ़ने का चांस बहुत अच्छा ड्रामा में मिल सकता है। ये बाबा का वरदान है। सारा परिवार जहां से भी आए हो तो वह परिवार आपका सहयोगी बनेगा, आप सहज योगी बनना। अच्छा, सेवा का टर्न राजस्थान और भोपाल जोन का है, तो बाबा सबसे पहले राजस्थान वालों को कहते, राजस्थान की धरनी ब्रह्मा बाप को बहुत पसंद आई, जो राजस्थान में ही मधुबन बनाया है। राजस्थान की सेवा बाप दादा ने देखा कि हर स्थान में अभिवृद्धि अच्छी हो रही है। नई नई आत्माओं का बाप का संदेश देने के प्रोग्राम्स भी अच्छे हो रहे हैं। लेकिन बाप दादा सभी को यही कहते हैं, हर एक सेवा केंद्र यज्ञ स्नेही वारिस, हर एक सेवा केंद्र यज्ञ स्नेही वारिस ऐसा ग्रुप बनावे जो स्वयं भी आगे बढ़ते जाएं और को भी यज्ञ स्नेही बनाए। अगली बारी भी बाप दादा ने यह कहा, यज्ञ स्नेही, सेवा स्नेही और सफल करने में सदा आगे से आगे बढ़ने वाले, वृद्धि हो रही है, अच्छा है। संदेश देने के कार्य में हर एक उमंग उत्साह में है। अभी बाप दादा यही देखना चाहते हैं कि स्व और सेवा दोनों का बैलेंस करने वाले हर एक सेंटर से ज्यादा में ज्यादा आगे आने चाहिए। बाबा कहते स्व और सेवा दोनों को बैलेंस करना है और हर एक सेंटर से ज्यादा में ज्यादा आगे आने चाहिए। सिर्फ सेवा नहीं, स्व और सेवा, क्योंकि अब स्व परिवर्तन का समय इतना ज्यादा नहीं है। इसलिए पहले स्व साथ में सेवा, पहले स्व साथ में सेवा, दोनों का बैलेंस रख करके चलना है। हर एक सेवा केंद्र निर्विघ्न, सब साथी निर्विघ्न, सिर्फ टीचर नहीं लेकिन सारा क्लास निर्विघ्न और स्व परिवर्तन का अटेंशन रखने वाले हो। ये वरदान बाबा ने दे दिया राजस्थान वालों को कि हर एक सेंटर निर्विघ्न, सब साथी निर्विघ्न, टीचर नहीं सिर्फ लेकिन सारा क्लास निर्विघ्न और स्व परिवर्तन का अटेंशन रखने वाले हो। तो ये वृद्धि करो, एक एक की बातों को सुनो और उनको उमंग उत्साह के पंख लगाओ। जो बाप दादा को निर्विघ्न सेंटर का समाचार दे सको। बाकी बाप दादा ने देखा राजस्थान भी आगे बढ़ रहा है, बढ़ता रहेगा। ये भी वरदान दे दिया, राजस्थान आगे बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा। बाप दादा हर एक बच्चे को आगे बढ़ने की मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, फिर भोपाल जोन वाले से बाबा ने बात की। अच्छा, यह भी जोन अपने परिवर्तन और सेवा की वृद्धि में अच्छा आगे बढ़ रहा है। बाप दादा को खुशी है कि हर एक बच्चा स्व के प्रति भी प्लान बना रहे हैं और प्रैक्टिकल में भी ला रहे हैं। और बाबा की शुभ आशा है कि सदा आगे बढ़ते रहेंगे। हर एक जोन में देखा जाता है कि
कि अभी उमंग उत्साह है, इसलिए सेवा में अपने अपने स्थान में वृद्धि कर रहे हैं। बाप दादा आगे के लिए भी मुबारक दे रहे हैं और वरदान क्या दे रहे हैं, बढ़ते चलो, उड़ते चलो, उड़ाते चलो। अच्छा, फिर डबल विदेशी भाई बहनों से बाबा की मुलाकात रही। फॉरेन वालों के पास पेपर्स तो आते हैं, बाबा कहते परीक्षा के पेपर तो आते हैं, लेकिन एक विशेषता है विदेशी बच्चों में, एक विशेषता है कि वह सच्ची दिल से बोल देते हैं, अंदर नहीं रखते हैं और उसका समाधान सच्ची दिल से करते रहते हैं। ये बाप दादा को खुशी है कि साफ दिल तो हुजूर हाजिर हो जाता है। अच्छी रिजल्ट देख बाप दादा मुबारक भी दे रहे हैं और वरदान भी दे रहे हैं कि सदा आगे बढ़ते रहेंगे। टीचर्स भी अच्छी मेहनत कर रही है। बाप दादा को खुशी होती है कि सबसे ज्यादा मधुबन का फायदा फॉरेन वाले उठा रहे हैं। विदेशी बच्चे हर सीजन के टर्न में आ ही जाते हैं और उसका फायदा उठा रहे हैं। तो बाप दादा देखते हैं कि फॉरेन के छोटे छोटे स्थानों पर भी आवाज बुलंद करने की सेवा करना आरंभ कर दिया है। तो सेवा की मुबारक हो, स्वपरिवर्तन की मुबारक हो, उड़ते चलो और उड़ाते चलो। अच्छा, चारों ओर के देश और विदेश के बच्चों को बाप दादा पुरुषार्थ में सहज आगे बढ़ने और बढ़ाने की खास मुबारक दे रहे हैं। अभी जो समय आने वाला है उसके लिए बाप दादा ने डायरेक्शन दे दिए हैं कि तीव्र पुरुषार्थी बन सेकंड में बिंदु लगाने, फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास अति आवश्यक है। इस बात को हल्का नहीं करो। बाबा कहते कि तीव्र पुरुषार्थ बन सेकंड में बिंदु लगाओ या फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास अति आवश्यक है। इस बात को हल्का नहीं करो। अचानक कुछ न कुछ होना ही है, इसलिए बाप की शुभ आशा है कि हर एक बच्चा साथ है, साथ चलेंगे, साथ राज्य करेंगे, ब्रह्मा बाप के साथ शिव बाबा साक्षी हो जाएगा। साथी बनने वाले हो तो बाप दादा समान बनना ही है। अच्छा, हर एक बच्चे को बाप दादा की तरफ से इस वर्ष की मुबारक है और आगे वर्ष की भी मुबारक है कि सदा बाप समान बनना ही है। अच्छा, हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, मनन शक्ति द्वारा शक्तिशाली बन विघ्नों के फोर्स को समाप्त करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भवा। मनन शक्ति द्वारा शक्तिशाली बन विघ्नों के फोर्स को समाप्त करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भवा। वर्तमान समय मनन शक्ति द्वारा आत्मा में सर्व शक्तियां भरने की आवश्यकता है। इसके लिए अंतर्मुखी बन हर पॉइंट पर मनन करो तो मक्खन निकलेगा और शक्तिशाली बन जाएंगे। ऐसी शक्तिशाली आत्माएं अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति का अनुभव करती है। उन्हें अल्पकाल की कोई भी वस्तु अपने तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। उनकी मगन अवस्था द्वारा जो रूहानियत की शक्तिशाली स्थिति बनती है उससे विघ्नों का फोर्स समाप्त हो जाता है। आज का स्लोगन है, ब्राह्मण संसार में सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले ही तख्त नशीन बनते हैं।
ब्राह्मण संसार में सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले ही तख्त नशीन बनते हैं। आज का व्यक्त इशारा है अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। उसके अंतर्गत बाबा कहते ब्रह्मा बाप और शिव बाप की विशेष पसंदगी है ही पवित्रता। लेकिन पवित्रता की परिभाषा बहुत श्रेष्ठ और गुह्य है। पवित्रता जहां होगी वह निश्चय सच्चाई सफाई सब आ जाता है। संपूर्ण पवित्रता का अर्थ ही है स्वप्न मात्र भी अपवित्रता मन और बुद्धि को टच नहीं करे। इसी को ही कहा जाता है सच्चे वैष्णव। अच्छा ओम शांति।

ओम शांति। बाबा ने हम सभी अपनी महान आत्माओं को स्वमान की सीट पर बैठाया है और याद दिलाया, बच्चे तुम अब वैसे नहीं हो जैसे तुम अपने को समझते हो। अब तुम मेरी छत्र छाया में आ गए हो, अब तुम मेरे कर्तव्यों में लग गए हो। तुम महान हो, तुम्हें संसार का कल्याण करना है। ये हमें याद दिलाया, कहां हम अपना कल्याण भी नहीं कर सकते थे और कहां बाबा ने हमें इतना बड़ा स्वमान दिया कि तुम्हें तो विश्व का कल्याण करना है। और याद दिलाया, तुम कल्प वृक्ष की जड़ें हो और जड़ों के माध्यम से किसी भी वृक्ष को भोजन पानी जाया करता है। तुम कल्प वृक्ष की जड़ों के माध्यम से ही संसार को शक्तियां, पवित्रता, शांति, नैतिकता प्राप्त होती है। तुम्हारी स्थिति यदि महान होती है तो सारे कल्प वृक्ष की स्थिति महान होती है, और तुम्हारी स्थिति यदि डाउन होती है तो सबका खेल बिगड़ जाता है। तो बाबा ने हमें बहुत बड़े बड़े स्वमान दिए, स्वमान की इतनी ऊंची सीट पर बैठा दिया कि तुम तो स्वराज अधिकारी हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो। जिस मन को कंट्रोल करना बहुत कठिन और असंभव माना जाता था, बाबा ने बता दिया, बच्चे तुम तो इस मन के मालिक हो। अपने मन को आदेश दो स्वमान की सीट पर बैठकर, तो तुम्हारा ये मन तुम्हारे हर आदेश का पालन करेगा। स्वमान की सीट पर बैठकर शक्तियों को आर्डर दो तो हर शक्ति तुम्हारे आदेश का पालन करेगी। मान लो आपको सहन शक्ति की जरूरत है तो आप स्वमान की सीट पर बैठ जाएं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, स्वराज अधिकारी हूँ, और सहन शक्ति को जस्ट आदेश दें, उसका आह्वान करें कि सहन शक्ति मेरे पास आ जाओ, मुझे सब कुछ सहन करना है, तुम तो मेरी साथी हो। तो आप देखेंगे सहन शक्ति आपकी मदद करने लगेगी। ऐसे ही मान लो आपको समस्याओं का सामना करने की शक्ति की आवश्यकता है और आप देखते हैं कि जीवन में विघ्न और समस्याएं बहुत आ रही हैं और आप उन विघ्नों समस्याओं का सामना नहीं कर पाते, स्थिति बिगड़ जाती है, तो आप मास्टर सर्वशक्तिवान और स्वराज अधिकारी के सीट पर बैठकर शक्तियों को ऑर्डर दो, हे मेरी सामना करने की शक्ति मेरे पास आ जाओ। बस आप हर चीज का सामना कर सकेंगे। सामना करने का अर्थ ये नहीं हम मनुष्यों का सामना करें, सामना करने का अर्थ है हम माया का सामना करें, हम परिस्थितियों का सामना करें, हम कभी भी विचलित न हों। कई लोग ऐसा सोच लेते हैं कि हमें तो मनुष्यों का भी सामना करना है। नहीं, मनुष्यों को तो हमें प्यार देना है, मनुष्यों के सामने तो हमें सहनशील बनकर रहना है, उनका तो हमें कल्याण करना है। तो हम स्वमान की सीट पर बैठने का अभ्यास करें, रोज सवेरे स्वयं को इस सीट पर स्थित कर दें और दिन में भी 5-10 बार उस सीट पर स्थित हो जाएं, ताकि नेचुरल स्थिति आ जाए, हम नेचुरल स्व

और साथ साथ अभ्यास करेंगे कि परम धाम में सर्वशक्तिवान बाबा है, उस पर बुद्धि को स्थिर करेंगे और विजुअलाइज करेंगे, महसूस करेंगे उससे निकली हुई शक्तियों की किरणें नीचे मुझ पर पड़ रही हैं। इन शक्तियों से स्वयं को संपन्न बनाएंगे। एक स्वमंत्र से हम शक्तिशाली बनते हैं, दूसरा सर्वशक्तिवान से बुद्धि का नाता जोड़ने से उसकी शक्तियां हम में आती रहती हैं। हमें शक्तियां मांगने की जरूरत नहीं, इस तरह अधिकार से प्राप्त करना है। ओम शांति।

रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। अमृतधारा प्रोग्राम में मैं भक्ति आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्वागतम सुस्वागतम। सुंदर सुविचार के साथ शुरू करते हैं आज का दिन, जो सफल हमेशा ही रहे। कहते हैं कि कर्म का कितना महत्व है। कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हालत में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो और काटने के बाद पछतावा न हो। दोस्तों सचमुच किसान जो हमेशा ही फसल अच्छी आए इसलिए चुन चुन के बहुत अच्छे बीज अपने पास रखता है और वही बोता है। हम सब एक तरीके से देखा जाए तो किसान ही है। वो तो कोई सीजन में फसल के लिए बीज बोता होगा, लेकिन हमारा हर पल हर दिन फसल बोने का है। और इसीलिए मुझे लगता है कि सचमुच हम हर एक पल पर अटेंशन दें, हमारा कर्म शुभ हो, हमारा कर्म सफल हो। दोस्तों चलिए हम आज अपने स्टूडियो में उपस्थित ज्ञानेश्वर जी का भी स्वागत करते हैं और उनके चिंतन से जो भी आज हम अलग रीति से श्रीमद् भागवत महापुराण का एक सुंदर पहलू देख रहे हैं, जो शायद आज तक हमारे मन में नहीं था, चित्त में नहीं था।

0: उसका भी रस ग्रहण करते हैं। चलिए दोस्तों, ज्ञानेश्वर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद भक्ति जी, और आपको और हमारे रेडियो मधुबन के सभी श्रोतागण को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात और ढेर सारी शुभकामनाएं। भक्ति जी, बहुत सुंदर विचार है। इसलिए किसान जो होता है वो खाने के लिए फसल का धान जो है वो अलग रखता है, लेकिन बीज के लिए वो अलग रखता है। बीज ऐसा है जिसे कभी कीड़ा ना लगा हो, वो विकसित हो गया हो, और फिर वो जो बीज है वो बोने के बाद उससे फसल जो है वो भी अच्छी निकलती है। खाने के लिए दाने जो होते हैं वो अलग है, और बीज के लिए होते हैं वो अलग है। और जमीन उपजाऊ है लेकिन बीज ठीक नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, उसे पानी देना पड़ेगा। और जमीन भी उपजाऊ है और बीज भी अच्छा है तो फसल तो अच्छी ही रहेगी। ऐसे कहते हैं कि हमारा मन जो है वो भी एक भूमि है, मनोभूमि कहते हैं। और यह मनोभूमि में सुबह उठने के बाद हम कौन सा बीज डालते हैं इसके ऊपर हमारा दिन कैसा जाएगा ये निर्भर होता है, ऐसे लोग कहते हैं। उसकी वजह क्या है कि जब हम अच्छा चिंतन करना शुरू करते हैं, दिन की शुरुआत ही अच्छा चिंतन से होती है, तो दिन भर अच्छा ही चिंतन चलते रहता है। अगर दिन की शुरुआत ही खराब हो गई, इसका मतलब बीज अगर ठीक नहीं डाला तो फसल भी नहीं अच्छी आएगी, और अगर कड़वा बीज डाला तो फसल कड़वी आ जाएगी, वो मीठी नहीं होगी। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि सुबह सुबह उठने के बाद मैं क्या करता हूँ और क्या सोचता हूँ।
0: बिल्कुल दोस्तों, ये मन जो भूमि है उसमें जाने अनजाने में कितना सारा ऐसा ही घास भी आ जाता है, और वो घास फूस के कारण ही कभी कभी कितना भी अच्छा बीज बाद में आप डालो लेकिन हमारा बीज जो है उसका फल अच्छा नहीं निकलता। तो हम ज़रूर इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज के दिन की शुभ शुरुआत करेंगे। चलिए दोस्तों, अब समय हो गया है एक सुंदर बोधप्रद कथा सुनने का। कथा का नाम जो है वो भी बड़ा ही आश्चर्यकारक है, विकारों के पांच गधे। क्या है ये कथा? कहते हैं एक महात्मा जो है कहीं जा रहे थे, रास्ते में थक गए तो आराम करने के लिए रुके। उन्होंने एक पेड़ देखा, अच्छी खासी पेड़ की छाव थी, तो उस पेड़ के नीचे लेट गए और नींद में उन्होंने एक स्वप्न देखा। क्या था वो स्वप्न? कि वे रास्ते में जा रहे हैं और उन्हें एक व्यापारी मिला जो पांच गधों पर बड़ी बड़ी गठरियां लादे हुए जा रहा था। गठरियां बहुत भारी थी जिसे गधे बड़ी मुश्किल से ढो पा रहे थे। तो साधु ने यह दृश्य देखते ही व्यापारी से प्रश्न किया। उसने पूछा, इन गठरियों में तुमने ऐसी कौन सी चीजें रखी है जिन्हें ये बेचारे गधे ढो भी नहीं पा रहे हैं? तो व्यापारी ने जवाब दिया, इनमें इंसान के इस्तेमाल की चीजें भरी हुई है और उन्हें बेचने के लिए मैं बाजार जा रहा हूं। अब साधु को बड़ी उत्सुकता हो गई। साधु ने पूछा, अच्छा कौन कौन सी चीजें हैं, जरा मैं भी तो जानूं। व्यापारी ने कहा, ये जो पहला गधा आप देख रहे हैं इस पर अत्याचार की गठरी लदी है। साधु ने पूछा, अरे भाई भला अत्याचार भी कोई खरीदने की चीज है? कौन खरीदेगा? व्यापारी ने कहा, साधु महाराज इसके खरीददार भी है, वो है राजा महाराजा और सत्ताधारी लोग। काफी ऊंची दर पर इसकी बिक्री होती है। साधु देखता ही रह गया। फिर उसने देखा दूसरी गठरी। साधु ने पूछा, अरे भाई ये दूसरी गठरी में क्या है? व्यापारी बोला, महाराज यह गठरी अहंकार से लबालब भरी है और इसके भी खरीदार है। कौन? दोस्तों जानते हो? जरूर जानेंगे। तब तक आप मन में सोचते रहो, क्योंकि समय हो गया है एक ब्रेक का। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

रेड लाइट होने पर हमेशा अपनी गाड़ी रोक लेना चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा ना करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों, दूसरी गठरी जो अहंकार से लबालब भरी थी, उसके खरीदार उस व्यापारी ने बोला, पंडित है और विद्वान लोग हैं जो अपनी विद्वत्ता का जिन्हें घमंड है। फिर तीसरे गधे पर क्या है, ये पूछने के बाद उसने कहा कि यहाँ ईर्ष्या की गठरी लदी है, इसके भी बहुत ग्राहक है, धनवान लोग हैं जो एक दूसरे की प्रगति को बर्दाश्त नहीं कर पाते, उनके मन में ईर्ष्या के कारण जलन होती है और महाराज इसको खरीदने के लिए तो लोगों का तांता लगा रहता है। साधु महाराज ने पूछा, अच्छा अबे ये बताओ कि चौथी गठरी में क्या है भाई। व्यापारी ने कहा, इसमें बेईमानी भरी है, इसके भी ग्राहक है, वे कारोबार करने वाले जो बाजार में धोखा देकर बिक्री करते हैं और उसका अनगिनत फायदा उठाते हैं, इसलिए बाजार में इसके लिए तो अभी तक ही खरीदार तैयार खड़े हैं। साधु महाराज ने अभी उत्सुकतावश पूछा, अच्छा अभी अंतिम गधे पर क्या है। व्यापारी ने तुरंत जवाब दिया, इस गधे पर छल कपट से भरी गठरी है और इसकी मांग उन औरतों में बहुत ज्यादा है जिनके पास घर में कोई काम धंधा नहीं है और जो छल कपट का सहारा लेकर दूसरों की लकीर छोटी कर अपनी लकीर बड़ी करना चाहती है। उसी कोशिश में उनके दिन कटते हैं, वो इसकी खरीदार है। बस इतनी बातचीत होने के बाद अचानक महात्मा की नींद खुल गई। इस सपने में उसने कई प्रश्नों का जो उत्तर ढूंढा, सही अर्थ में दोस्तों आप जानते हैं, वो व्यापारी स्वयं शैतान था जो संसार में बुराइयां फैला रहा था और उसके शिकार जो थे वो कमजोर मानसिकता वाले स्वार्थी लोग थे। शैतान का शिकार बनने से बचने का एक उपाय है, कौन सा? ईश्वर पर सच्ची आस्था रखो, मन को ईश्वर का मंदिर बनाओ। और ईश्वर का मतलब ये नहीं कि कौन मंदिर गया, किसने किसने वक्त पूजा की, लेकिन मंदिर अर्थात जहाँ सबके लिए सदा दुआएं है, शुभ भावना है, सबका भला हो, ये आस्था है। तो दोस्तों ये बात है कि हमें अवगुणों का त्याग करना है, सद्गुणों को धारण करना है और अपने ही संसार को सजाना है, संवारना है। अगर हर कोई अपने संसार को सजाएगा संवारेगा तो ये पूरा समूचा संसार जो है वो भी बहुत ही सुंदर हो जाएगा। ज्ञानेश्वर जी, कितनी सुंदर कथा है। और मुझे लगता है कि कभी कभी अगर कोई सपने में भी यह दृश्य देखता है तो भी वो सपना भंग होने के बाद या जब वो वास्तविकता में आता है तभी इस पर सोच कर जरूर अच्छा इंसान बन सकता है।
1: भक्ति जी, मुझे लगता है कभी कभी सपने जो आते हैं वो भी किसी का कल्याण करने के लिए आते हैं। ऐसे कहते हैं कि बुरे सपने देखते हैं तो पूरा मूड खराब हो जाता है और जिंदगी का वर्तमान जो है वो भी खराब होता है। लेकिन ऐसे बुरे सपने या ऐसे प्रभावशाली सपने जब मन में आते हैं तब आदमी को जागृत करते हैं, आदमी की सत्यनिष्ठा कई छिपी हुई है उसे जागृत करते हैं। जब मैं ये कथा सुन रहा था तब मुझे लगा कि शायद सातवें गधे के ऊपर सच्चाई लदी हुई हो और उसका कोई ग्राहक ही ना हो और बाकी सब ग्राहक हैं लेकिन वो बिना ग्राहक के घूम रहा है। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि आजकल के ज़माने में हम देखेंगे तो सच्चाई का ग्राहक बहुत ही कम होगा, बाकी सब जो ईर्ष्या द्वेष अहंकार जो आपने बताया उसके लिए ग्राहक तो बहुत है और पैसा दे के वो खरीदना चाहते हैं। अत्याचार तो परिसीमा है आजकल के ज़माने में, हम देखते हैं पहले भी अत्याचार होते थे, अभी भी अत्याचार होते हैं लेकिन पहले की तुलना में कई गुना वो बढ़ गए हैं। आदमी के मन में क्रूरता आ गई है, निष्ठुरता आ गई है, निर्दयता आ गई है। भक्ति जी, मुझे लगता है कि भागवतकारों ने कलियुग का जो वर्णन किया है उसके हूबहू अभी जो घटना घटती है उसको मिलती जुलती रहती है। कितनी दूरदृष्टिता है, एकदम बिल्कुल सटीक शब्दों में इनका वर्णन जो किया। वो एक जमाना था, उस समय अगर हम भागवत पढ़ते होंगे तो पता ही नहीं चलता था कि ऐसे लोग हो सकते हैं, असुर कहाँ है। तो असुरत्व जो है वो अभी प्रबल हो गया है और देवत्व जो है वो निष्क्रिय हो गया है या कमजोर हो गया है। अभी हमें कमजोर से शक्तिशाली बनाना है। इसलिए जैसे आज शुरुआत में हमने विचार दिया बीज, ऐसे बीज संकल्पों के हम अच्छे अच्छे बीज बोते रहेंगे और खुद को भी बदलेंगे और दूसरों को भी बदलेंगे और पूरा समाज परिवर्तन करेंगे और भारत को फिर से हम वो शक्तिशाली बनाएंगे, ऐसा मुझे लगा।
0: बिल्कुल दोस्तों, कितनी सुंदर बात है। और मुझे लगता है ये सारी कहानियाँ जो है जिस पर हम चर्चा करते हैं, जिसको हम बड़े प्यार से सुनते हैं, वो भी हमें समय पर याद दिलाती है और हम बुरे कर्मों से भी बच जाते हैं। चलिए दोस्तों, इन्हीं के साथ लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर से मिलते हैं ब्रेक के बाद। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, मैं हूँ सुरेश भारकर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पे। आप सब मुस्कुराते रहें, आनंद में रहें और गुनगुनाते रहें।
1: जय शंकर संतोष भाई।
2: महादेव महादेव आशुतोष जी।
1: अरे बाबा के लिए कुछ लिखिए गुरु।
2: क्यों नहीं, लो लिख दिया। हर हर शंभो।
1: हर हर

शंभो, शिव से उद्धार शिव मोक्ष द्वार शिव ही है स्वयं भो।

0: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों आइए ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। और दशम स्कंद जो श्री कृष्ण की लीलाओं का अद्भुत वर्णन, मनोहर वर्णन, और अब है 26वां अध्याय। इस अध्याय में भागवतकारों ने एक सुंदर बात कही है, वो ये कि श्री कृष्ण के प्रभाव के बारे में अभी गोपों को बहुत ज़्यादा अचरज होने लगा। और ये है कौन? ये कोई साधारण बालक नहीं है, लेकिन सचमुच ही नंद बाबा के घर साक्षात भगवान ने ही जन्म लिया है। इस प्रकार उनके मन की धारणा होने लगी। और फिर शुकदेव जी कहते हैं, शुकदेव उवाच परीक्षित को कहते हैं कि हे परीक्षित, अब व्रजवासी गोप जो है उन्होंने श्री कृष्ण के बहुत सारे अलौकिक कर्म देखे, जिन कर्मों को देखते हुए ये हर बार बड़े अचरज में पड़ते थे। अब वो इकट्ठे आ गए, उनको भगवान की अनंत शक्ति का जैसे कि महसूस होने लगी, साक्षात्कार हो गया। और वे कहने लगे कि ये बालक जो है उसके हर कर्म बड़े अलौकिक है, और हमारे जैसे गवार ग्रामीण लोगों के साथ जन्म लेना इसके लिए बड़ी निंदा की बात है। यह भला कैसे उचित हो सकता है, हम जैसे साधारण लोग और ये ऐसा चमत्कारी बालक। जैसे गजराज कोई कमल उखाड़ कर उसे ऊपर उठा ले, धारण करे, वैसे ही इस नन्हे से 7 वर्ष की आयु के बालक ने एक हाथ में गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया। खेल खेल में 7 दिन तक उसने उसको उठा के रखा। अरे इसका चमत्कार का क्या वर्णन करना। ये नन्हा सा बच्चा था, दूध पीता बच्चा था, बड़ी भयंकर पुतना आई थी उस समय राक्षसी, और इसने आंख बंद किए किए ही उसका स्तन जो पिया, प्राण भी पी डाले। जिस समय ये केवल 3 महीने का था और चकड़े के नीचे सोकर रो रहा था, उस समय रोते रोते इसने ऐसा पांव उछाला कि उसकी ठोकर से बड़ा भारी चकड़ा उलटकर गिर पड़ा। बस ये तो उसकी लीलाएं हैं। जब ये 1 वर्ष का था तब दैत्य बवंडर के रूप में इसे बैठे बैठे आकाश में उड़ा ले गया था, और हम सबने देखा कि उस तृणावर्त दैत्य को इसने तो बस कुछ पल में गला घोटकर मार डाला। माखन चोरी भी इसने ही की, और यशोदा रानी ने इसे जब उखल से बांध लिया था तो ये घुटनों के बल पर उसको खींचते खींचते दोनों विशाल अर्जुन वृक्षों के बीच में निकल गया, उन्हें भी उखाड़ डाला। ये सारी बातें जो है ज्ञानेश्वर जी छोटे से नन्हे से शिशु ने की है, इसीलिए ब्रजवासी जो है, गोप जो है, उनके अचरज का पारावारी नहीं रहा। फिर वो कहते एक दैत्य था जो बगुले के रूप में आया था, दोनों हाथों से उसके दोनों ठोर पकड़कर इसने तो उसको तिनके की जैसे उड़ा दिया। ये सारी जो वर्णन है, मुझे लगता है ज्ञानेश्वर जी, ये भागवतकारों ने फिर से एक सारांश के रूप में इसलिए दिए हैं क्योंकि भगवान की लीला अपरम अपार तो कहते हैं भक्ति में, लेकिन भगवान की लीला दरअसल क्या है और अपरम अपार का अर्थ क्या है, वो भी वो बता देना चाहते हैं।
1: भक्ति जी, आजकल के ज़माने में हम कहते हैं कोई भी स्टोरी होती है, कोई भी लेसन होता है, पाठ पढ़ाते हैं तब उसको रिकैप करते हैं। दूसरा पाठ पढ़ने के पहले जो किया उसको रिकैप कहते हैं, वे रिफ्रेश करते हैं तो ताकि हम भूल ना जाए। और ये कथा जब हम सुनते हैं, वर्णन जो सुनते हैं, तो देखिए ये पुतना मासी वहाँ से शुरू होता है और अभी गोवर्धन पर्वत तक आ गया, और इतनी छोटी अवस्था में, इतना छोटे बाल्यपन में ये इतने अतर्क्य काम करना ये सिर्फ भगवान ही कर सकता है। लेकिन सिर्फ ऐसी कथाएं सुनाने के बाद भागवतकार कहना क्या चाहते हैं ये भी हमें सोचना है। श्री कृष्ण जी की कथा है, रमणीक है, विस्मयकारी है, हमारी आस्था है, और हम बड़े प्यार से नन्ना श्री कृष्ण जी कान्हा उसकी पूजा भी करते हैं, उससे प्यार भी करते हैं, वो तो करना ही चाहिए। लेकिन इसके परे जाके भगवान के रूप में उसे देखना है और भगवान की शक्ति की महसूसता करनी है तो क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि जैसे पाप बढ़ जाते हैं धरती पर, तब सत्यता जो होती है, सत्यता में शक्ति है और वो भगवान का रूप है, तो भगवान किसी न किसी रूप में जन्म लेते हैं। इसलिए देखिए, ग्वाल बाल हो या यशोदा मैया हो, उनको ये नहीं पता था कि ये भगवान मेरे घर पे आए हैं और वो बालक रूप में ही देखते थे। तो बहुत बार ऐसे होता है कि भगवान हमारे पास है लेकिन हम उसे पहचानते भी नहीं है, ये शायद उसमें दिखाना है। क्योंकि अगर ग्वाल बालों को ये पता चलता था कि यहाँ भगवान हमारे साथ है तो फिर क्या होता था?
0: वो उसकी पूजा करते
1: थे और फिर खेल ही बिगड़ जाता था। भगवान गुप्त रूप में आते हैं, उसके सच्चे भक्त जो होते हैं उन्हें पता चलता है कि ये भगवान का कार्य है, तो भगवान का कार्य कभी रुकता नहीं है, वो निमित्त किसी को भी बनाएगा। और अभी भी ऐसे कहते हैं लोग कि जब कलयुग में अत्याचार की परिसीमा होती है, अभी हो रही है, अभी कल्कि अवतार भी आएगा, भगवान कल्कि अवतार के रूप में आएगा, तो कल्कि अवतार के रूप में आएगा या आ गया है यह भी हमें पता नहीं है। कई लोग होंगे जिन्हें साक्षात्कार हो गया होगा तो शायद उन्हें पता है कि भगवान आ चुका है, लेकिन कई लोग हैं उनको पता ही नहीं है भगवान आ गया है, वो तो क्या है ऐसे ही सोचते रहेंगे भगवान कब आएगा, भगवान कब आएगा। तो भगवान की शक्ति अमर्याद है क्योंकि वो सत्यता की शक्ति है, लेकिन भगवान ऐसे नहीं कि पीताम्बर धारण करके आपके सामने आएगा, आएंगे अलग अलग रूपों में आएंगे और जो दुष्ट जो है, पापी है या असुरी शक्ति है, उसका निर्दालन जरूर करेंगे, ऐसा मुझे लगता है।
0: बिल्कुल दोस्तों, बहुत सुंदर बात है। अगर पहले ही जैसे उन्हें मालूम पड़ता कि ये भगवान है तो फिर वो सारी लीलाएं करने भी नहीं देते और न कि श्री कृष्ण जी उनके साथ उनके जैसे बनकर खेल सकते थे, वो आनंद लुटा सकते थे। इसीलिए श्री कृष्ण के लीला का जो श्रीमद् भागवत कथा में बहुत ही सुंदर वर्णन है, मुझे लगता है कि वो नन्हा बालक जो भगवान उस रूप में आए थे, वो देखने के लिए हर कोई तरसता है। दोस्तों चलिए, आगे भी बहुत ही सुंदर बात भागवतकारों ने की है, हम ब्रेक के बाद जरूर उस पर चिंतन करेंगे। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: हम खुश बैठे हैं, हम प्यार से वो चीज खा रहे हैं जो हमें पसंद है, तो पूरी सिचुएशन तो हमारी है एक्चुअली। सी द सिचुएशन इज ऑल अबाउट मी। मैं आराम से इस कुर्सी पे बैठी हूँ, मेरे सामने मेरी फेवरेट मिठाई है, मैं प्यार से खा रही हूँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हैप्पी हैप्पी। और सामने से कोई आया, किसी ने एक लाइन बोल दी। इस केस में लाइन इतनी बहुत ज्यादा कड़वी भी नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी ने कोई कड़वी लाइन भी बोल दी, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर ली, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने डांट दिया। इस केस में तो कुछ भी नहीं था, इस केस में थोड़ा सा बोला कि आपको थोड़ी परहेज करनी चाहिए थी। हियर माई वर्ल्ड वॉज परफेक्ट, सब कुछ मेरे अनुसार था, लेकिन सामने से कोई आया, सामने से किसी ने एक लाइन बोली और वो एक लाइन ने मेरे पूरे वर्ल्ड को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। मन डिस्टर्ब्ड, फीलिंग्स डिस्टर्ब्ड, फिर वर्ड्स डिस्टर्ब्ड, काफी देर तक डिस्टर्ब्ड। मीनिंग वन लाइन, किसी की एक लाइन मेरी इस दुनिया को एक घंटे के लिए डिस्टर्ब कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगली बार जब आप उनसे मिलेंगे तब भी आपको वो वाली बात याद आ जाएगी। सो इट विल नॉट इवन रिस्ट्रिक्ट टू दिस वन आवर। ये हो सकता है कि इट स्टेज ऑन माई माइंड and it comes back to my mind later on. शायद कभी जब वो लड्डू खा लिया तब वो बात याद आ जाएगी, या शायद वो बहन सामने कभी आ जाएगी तो वो बात याद आ जाएगी। मतलब my mind, ये हमारा एक्सरे है।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो। दोस्तों, भागवतकार आगे कहते हैं कि बलशाली बलराम जी के द्वारा श्री कृष्ण जी ने परलंबासुर को भी मरवा डाला। यमुना जल में रहने वाले कालिया नाग जो बहुत ही विषैला था, उसकी भी मान मर्दन कर उसको भी उस दह से निकाल कर यमुना जी का जल सदा के लिए विष रहित कर दिया, अमृतमय बना दिया। ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें जो सचमुच एक चमत्कार है, जो केवल भगवान के लिए ही गाया जाता है कि भगवान की लीला अपरंपार है। इस प्रकार से उन्होंने आपस में चर्चा करना शुरू किया। फिर नंद बाबा क्या कहते हैं? नंद बाबा गोपों को कहते हैं, तुम लोग सावधान होकर मेरी बात सुनो ताकि मेरे बालक के विषय में तुम्हारी शंका दूर हो जाए, क्योंकि महर्षि गर्ग ने इस बालक को देखकर इसके विषय में यही कहा था। क्या कहा था? कि तुम्हारा यह बालक प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है, विभिन्न युगों में इसने श्वेत, रक्त और पीत ये भिन्न भिन्न रंग स्वीकार किए थे, इस बार यह कृष्ण वर्ण हुआ। निसुंदर बात। तो नंद जी, यह तुम्हारा पुत्र पहले ही वसुदेव के घर में भी पैदा हुआ था और इसीलिए इसका नाम वासुदेव भी है। ये सारा राज बताते हैं। और फिर कहते हैं भगवतकार कि व्रजराज पूर्व काल में एक बार जब पृथ्वी में कोई भी राजा नहीं रहा था, तब इस सावले शिशु से प्रेम करने वाले जो बड़े भाग्यवान थे, उनके पास ये शिशु आया, किसी भी प्रकार के शत्रु किसी को भी नहीं जीत पाए, लेकिन जिसके दृष्टि में ऐश्वर्य है, सौंदर्य है, जिसकी कीर्ति प्रभाव बहुत ही अनोखा है, ऐसा तुम्हारा बालक स्वयं भगवान है, स्वयं भगवान नारायण के समान है, इसीलिए इसका ये जो अलौकिक कार्य इसने किए, इसका आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान तो ये कर ही सकता है ना। और इस प्रकार से सारी बातें जो है वो गोप और नंद बाबा के साथ होने लगी। और फिर जब आनंद में भर कर श्री कृष्ण की नंद बाबा ने प्रशंसा की, उसको गले लगाने लगा, तो जैसे कि कहते हैं भागवतकार, ये प्यार, ये अनोखा प्यार देखकर भगवान का हृदय भी करुणा से भर आया, जैसे कि आंखों में आंसू आए कि ये व्रजवासी जो है वो कैसे भोले भाले है। और फिर वे एक नई लीला करने के विचार से मुस्कुराने लगे, जैसे कोई नन्ना बालक होता है ना, वो बरसाती खेल खेल में बरसाती छत्ते का पुष्प उखाड़ लेता है और फिर आगे भी देखता है कि मुझे अभी कौन सी नटखट बात करनी है। इस प्रकार से श्री कृष्ण जी भी मंद मंद मुस्कुराने लगे। दोस्तों कितनी सुंदर बात है, ज्ञानेश्वर जी एक तरफ से देखा जाए तो व्रजवासी ये भी जानते थे कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। साधारण तो क्या, ये तो बहुत ही अद्वितीय असामान्य बालक है। और दूसरे रीति से उस पर इतनी प्यार की वर्षा भी करते, उसके साथ खेलते भी थे। ये सारा जो वर्णन है श्रीमद् भागवत कथा में, दरअसल इसका मैसेज क्या है?
3: भक्ति जी, जो वर्णन आपने सुनाया भागवत कथा में किया हुआ, वो सुनने के बाद चार वर्ण उन्होंने बताए। श्यामल वर्ण बाद में आया, लेकिन श्वेत भी है, पीत भी है, ताम्र भी है, ऐसे बहुत सारे वर्णन हैं। मुझे लगता है कि ये चार युग जो है उनका रंग जो होता है उसके हिसाब से भागवतकारों ने संकेत किया होगा कि सत्ययुग है वो श्वेत वर्ण कह सकते हैं या पीला कह सकते हैं क्योंकि सुवर्ण युग है। फिर त्रेता युग जो है वो सफेद है क्योंकि वो चांदी जैसा है, सिल्वर जैसा है। और रक्त वर्ण जो है वो तांबे जैसा है, कॉपर जैसा है, इसे हम द्वापर युग कह सकते हैं। और अभी कृष्ण वर्ण जो है, लोहा जो है वो काला रहता है। और अभी उन्होंने कृष्ण वर्ण लिया, इसका मतलब कलयुग के अंत में वो अभी आए हैं। ये सुनते समय मुझे लगा कि आजकल मोबाइल तो हर कोई लेता है, नया मोबाइल अगर अच्छा ले तो एक दो साल तक तो आराम से चलता है, उसके बाद क्या होता है, बहुत सारा डाटा कलेक्ट होता है, कैचे होते हैं और जो अनवांटेड फाइल्स है वो जमा होती है, जंक जमा हो जाता है। फिर वो सिस्टम आपको बताती है कि जंक निकाल दो, जंक निकाल दो, तो मोबाइल थोड़ा हल्का होगा, स्पीड उसकी फिर बढ़ेगी। एक समय ऐसे आता है कि वो कुछ भी करो कुछ नहीं होता, आप डाटा डिलीट करो तो भी मोबाइल चलता नहीं, हमेशा वापस बार बार हैंग होते रहता है। फिर क्या कहते हैं, फैक्ट्री सेटिंग करो, रीसेट करो। जो शुरुआत में जो सेटिंग थी वो सेटिंग आप एक बटन दबाने के बाद अपने आप हो जाती है। अभी ये सृष्टि इतनी विशाल है और ये इतनी विशाल सृष्टि होते हुए भी धीरे धीरे धीरे धीरे वो पुरानी हो गई, उसमें निगेटिविटी बढ़ गई, नकारात्मकता बढ़ गई। अभी रिपेयर करने के बजाय उसको अभी क्या करना है, फैक्ट्री रीसेट करना है। और वो रीसेट है एक बटन, एक बटन दबाने के बाद हमें पूरा मोबाइल जो है हम फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। तो ये सृष्टि का भी रीसेट एक बटन दबाने के बाद ही होगा, चाहे वो बटन किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई दबाएगा, पता नहीं क्या होता है। लेकिन प्राकृतिक आपदाओं का, आजकल प्रलय के बारे में लोग ज्यादा बातें करने लगे हैं। आजकल हम मोबाइल में देखेंगे, सोशल मीडिया में देखेंगे तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि अभी विनाश का समय जल्दी आ गया है, आया है नहीं आया है वो काल ही बताएगा। लेकिन लक्षण जो है उसके हिसाब से मुझे लगता है ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं, आसार दिखाई दे रहे हैं। और भगवान कहीं ना कहीं आया हुआ है और वो भी हमें पता नहीं शायद चलता है क्योंकि हम उतनी ऊंची लेवल तक नहीं गए, लेकिन उसकी खबर ज्ञानी आत्माओं को रहती है, साधु संतों को रहती है और वो हमें बताते हैं कि भगवान आया हुआ है। अभी उसके ऊपर निश्चय रखना या नहीं रखना वो अपने अपने विचारों के ऊपर निर्भर है।
2: बिल्कुल, बहुत सुंदर बात ज्ञानेश्वर जी आपने कही। ये जो चार वर्ण दिखाए हैं या चार रंग के द्वारा ये बात बताई है, तो मुझे लगता है कि एक सांकेतिक भाषा में यही बताना चाहते हैं वो कि किस प्रकार से मनुष्य सतयुग में थे, त्रेता में थे, द्वापर में थे, कली में थे और उस प्रकार से भगवान ने भी जैसे कि वर्ण धारण किए। दोस्तों कितनी सुंदर बात है, शायद हमने कभी इस प्रकार से इसका चिंतन किया होगा, लेकिन जब करने लगते हैं ऐसा चिंतन तो बहुत सारे रहस्य जो है वो सामने प्रकट होने लगते हैं। एक खुशी आती है, एक समझ बढ़ती है और इस रीति से सचमुच ही हम श्रीमद् भागवत पुराण को फिर से एंजॉय करने लगते हैं। चलिए दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ मैं भक्ति अपने वाणी को देती हूँ विराम। फिर से मिलेंगे अमृत धारा में। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, आप सबको याद होगा कि हम लोगों ने शुरुआत की थी विद्यार्थियों की समस्याओं से, और पश्चात हम लोगों ने चर्चा की युवाओं की समस्याओं के ऊपर। बहुत लंबी हमारी चर्चाएं हुई थी, लेकिन वो चर्चा केवल स्टूडियो में हुई थी। यदि हम बाहर जाते हैं और युवाओं के जीवन को देखते हैं, तो हो सकता है कि फील्ड में वो अलग अलग समस्याओं की और भी सामना कर रहे हों। विशेष करके हम लोगों ने चर्चा की थी लक्ष्य किस प्रकार से युवा को एक सही दिशा दे सकता है। इसीलिए आज हम पुनः लक्ष्य की चर्चा करेंगे, लेकिन केवल भ्राता जी के साथ नहीं, हमने विशेष रूप से आज दो मेहमानों को आमंत्रित किया है। मैं आइए आपके साथ उनका स्वागत करता हूं। रिद्धि, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रिद्धि जी आई हुई हैं राजकोट से, और हमारी जो दूसरे मेहमान हैं वो आए हुए हैं आबू रोड से ही, प्रफुल जी हैं। प्रफुल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों विशेष करके स्टूडियो में आए हुए हैं और आप हमारा कार्यक्रम लगातार देखते रहते हैं, तो हमने सोचा कि हम यहाँ तो चर्चा करते हैं लेकिन आप लोगों के साथ भी आज की चर्चा करें। और मित्रों, आप जानते हैं कि हमारे साथ हमेशा समाधान कार्यक्रम में बने रहते हैं और हम सबका मार्गदर्शन करते हैं हम सबके आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूर्य भाई जी। आइए उनका भी स्वागत करते हैं। भ्राता जी, आपका भी स्वागत है।
1: थैंक यू।
0: तो भ्राता जी, आज दो हमारे युवा साथी आए हुए हैं जिनके साथ आज की चर्चा होगी, और विशेष करके हमेशा मैं आपसे प्रश्न पूछा करता हूँ, लेकिन आज डायरेक्ट हमारे युवा साथी आपसे प्रश्न पूछेंगे।
1: बहुत सुंदर।
0: तो मित्रों, आज का जो हमारा विषय है वो लक्ष्य के ऊपर केंद्रित है कि युवा काल में लक्ष्य का निर्धारण कितना अहम है। जो युवा लक्ष्य बना लेते हैं वो कहाँ तक पहुँच पाते हैं, और जो लक्ष्य नहीं बनाते हैं उनका क्या हश्र होता है। तो कितनी महत्ता है इसकी युवा काल में, यही आज के हमारे इस समाधान कार्यक्रम का मूल विषय है। और इन्हें कहूँगा कि आज की टोटल चर्चा को ये हैंडल करें और अपनी बातों को आज के समाधान कार्यक्रम में रखें।
2: लक्ष्य कितना इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, हमारे आगे के पथ के लिए, हमारे एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है लक्ष्य हमारे।
3: देखिए, युवा काल ही मनुष्य का ऐसा काल है कि उसमें लक्ष्य का सर्वाधिक महत्व है। विद्यार्थी जब 10वीं क्लास तक पहुंचता है, उसे पहले ही वो एक

0: लक्ष्य बना लेता है कि मुझे हाई स्कूल में इतनी परसेंटेज लानी है। उस लक्ष्य के अनुसार वो मेहनत करता है, लक्ष्य को अचीव करता है। 12वीं के लिए फिर लक्ष्य बनाता है क्योंकि वो उसका इम्पोर्टेंट एग्जाम होता है, उसको आगे किसी भी फील्ड में उतरना होता है, तो फिर वो उस लक्ष्य के प्रति अपने को डेडिकेट करता है और फिर वो उसे अचीव करता है। तो लक्ष्य तो शुरू से ही प्रारंभ हो जाता है, और प्रारंभ में ही अगर मनुष्य अच्छा लक्ष्य बनाना सीख ले, उनके माँ बाप, गार्जियन या टीचर उनको लक्ष्य का महत्व समझा दें अच्छी तरह, और विद्यार्थी सच्चे मन से लक्ष्य बना ले, तो निश्चित रूप से विद्यार्थियों का बहुत कल्याण होगा। जिस तरफ वो चले जाते हैं ना इधर उधर, उधर वो नहीं जाएंगे, और जब उन्हें वो लक्ष्य प्राप्त होगा तो उनका उमंग भी बहुत बढ़ेगा, और अगला लक्ष्य जब वो बनाएंगे तो और उमंग के साथ और सुंदर बनाएंगे। इसलिए एक लक्ष्य नहीं, केवल देखिए ये हो सकता है कि एक विद्यार्थी अभी 9th क्लास में है और वो ये सोच ले मुझे इंजीनियर बनना है, वो सोच सकता है और उसे सोचना भी चाहिए, लेकिन पहला लक्ष्य उसे बनाना चाहिए कि हाई स्कूल में मुझे इतना लाना है, फिर 12वीं में मुझे इतना लाना है, फिर इंजीनियरिंग में जाना है, ताकि जब मैं इंजीनियरिंग में जाऊं और पढ़ूं और एग्जाम दूं तो बहुत सुंदर ग्रेड मुझे प्राप्त हो। तो वास्तव में लक्ष्य तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। किसी का जीवन अगर लक्ष्य विहीन है तो वो तो विचलित होगा, उसे किधर जाना है ये पता ही नहीं होगा। जैसे हमें मान लो कहीं यात्रा करनी हो और हमें यही ना पता हो कि मुझे दिल्ली जाना, मुंबई जाना या इंदौर जाना या और कहीं जाना, तो मैं टिकट कहाँ की लूंगा, कौन सी ट्रेन पकड़ूंगा, इंतजाम कैसे करूंगा, कितना पैसा मुझे चाहिए। तो लक्ष्य मनुष्य को तैयारी कराता है, इसलिए लक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जीवन के लिए।
1: लेकिन भ्राता जी, जैसे प्रफुल्ल ने पूछा, इनके साथ मैं जोड़ रहा हूँ कि लक्ष्य वैसे बनाना तो चाहिए एक युवा काल में ही, लेकिन क्या बच्चों में इतनी मैच्योरिटी आ गई होती है?
0: हम भी जब बच्चे थे तो गांव में होने के कारण हमें पता ही नहीं था लक्ष्य क्या होता है। एक ही यूनिवर्सिटी थी उस तरफ इंजीनियरिंग की, रुड़की यूनिवर्सिटी, बहुत महंगी है भाई, वहाँ साधारण बच्चे तो जा ही नहीं सकते। हमने सोचा क्या करेंगे, वहाँ माँ बाप पे लोड पड़ेगा, इतना पैसा तो है ही नहीं। किसी ने बताया नहीं कि डॉक्टर भी बनना होता है, किसी ने बताया नहीं कि वकील इस तरह बनते हैं। तो ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन आजकल पेरेंट्स भी और चारों ओर का एनवायरनमेंट भी, हमारी सराउंडिंग्स में भी सबको बहुत अवेयरनेस है, इसलिए लक्ष्य पहले से ही शुरू हो जाता है। माँ बाप भी ध्यान देते हैं, और मैं जैसा कहा शिक्षकों को और पेरेंट्स को, कहीं ना कहीं बच्चों से इसकी चर्चा अवश्य करनी चाहिए ताकि उनको इसकी अवेयरनेस हो। अगर इसकी अविद्या रहेगी तो सचमुच वो दिशा बदल देंगे,
1: क्योंकि आमतौर पे ऐसा होता है भ्राता जी कि एक उम्र निकल जाती है, बहुत बड़े हो जाते हैं, उसके पश्चात सोचते हैं कि अब क्या करें, और तब तक शायद नौकरी के लिए भी उम्र निकल गई होती है और बहुत सारी चीजों के लिए। इसीलिए शायद ये प्रश्न मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर लक्ष्य का निर्धारण कब तक कर लेना चाहिए।
0: और ये काम पेरेंट्स का है, शिक्षक तो इस बारे में बहुत कम बोलते हैं, वो तो केवल सिलेबस को पूरा करना उनका लक्ष्य होता है, लेकिन गार्जियन, फ्रेंड्स और बड़े समाज में जो कुछ भी है वो बच्चों को गाइड करें इस बारे में, तो ये बहुत अच्छी चीज होगी।
2: कई बार ये भी देखने में आया है कि हम लक्ष्य बनाते हैं, उसके लिए प्रयास भी करते हैं, आगे भी बढ़ते हैं, लेकिन वो हमें हासिल नहीं होता, तो उसका क्या मूल कारण क्या रह जाते हैं उसके, मतलब वो क्या वजह रह जाती है?
0: हाँ, देखिए ये बहुतों के साथ हो रहा है, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। एक तो लक्ष्य हमें अपनी क्षमताओं के अनुरूप बनाना चाहिए। छोटा सा उदाहरण ले, मान लो मेरी जेब में 100 रुपए हैं और मैं सोचूं मुझे तो प्लेन से जाना है दिल्ली, तो मुश्किल हो जाएगी ना। तो हमारी क्षमताएं क्या हैं, हमारी सामर्थ्य क्या है, उस अनुसार। एक विद्यार्थी है, उसने हाई स्कूल में 60% मार्क्स लिए, अभी अगर वो सोच ले मुझे तो 12वीं में 95% लाने हैं, तो शायद ये उसके लिए टेंशन भी हो जाएगी और उसको अचीव करना उसके लिए इम्पॉसिबल भी लगेगा। इसलिए उसको थोड़ा धीरे धीरे बढ़ना चाहिए कि 60% मेरे आए हैं, मैं अच्छी मेहनत करता हूँ, हाफ ईयरली 11वीं में मुझे 65 लाने हैं, फिर एनुअल में मुझे 70 तक पहुँचना है, 12वीं में मुझे 75 तक पहुँच जाना है। इस तरह सने सने अपने लक्ष्य को बढ़ाए तो उसको वो अचीव होगा। इसलिए लक्ष्य जिनको नहीं मिलता उसका एक तो कारण ये होता है कि वो अपनी सामर्थ्य से बाहर निकलकर अति उत्साह में कोई लक्ष्य बना लेते हैं। दूसरी एक चीज है, देखिए बहुत सुंदर आपने क्वेश्चन भी पूछा, और अनेक युवक इस समस्या से जूझते हैं लेकिन उन्हें इसकी जानकारी नहीं है कि कहाँ वो फेल हो रहे हैं, क्या मिसिंग हो रही है उनके पास, कि मेहनत करने के बाद भी उन्हें लक्ष्य नहीं मिलता। बहुत अच्छी चीज सभी को जाननी चाहिए, हमारी मनोस्थिति जितनी सुंदर होगी, हमारी एकाग्रता जितनी परफेक्ट होगी, हमारा मन जितना व्यर्थ की बातों से मुक्त रहेगा, उतना किसी भी लक्ष्य को अचीव करना हमारे लिए सरल होगा। अब मान लो एक विद्यार्थी रात को बहुत देर तक गेम खेल रहा है वीडियो पर, तो नेचुरली वो नींद की भी उसे कमी हो जाएगी, तो नींद की कमी होने से उसकी एकाग्रता भी नष्ट होगी, उसे धीरे धीरे चिड़चिड़ापन होगा, क्रोध आएगा, क्रोध से उसकी मेमोरी और लॉस होगी। तो विद्यार्थियों को युवा काल में ये बात समझ लेनी चाहिए, माइंड जितना पीसफुल और अच्छा सुंदर विचार, बुद्धि उतनी एकाग्र रहेगी, और जितने मन उसके पास एकाग्रता होगी उतनी उसे सफलता मिलेगी। तीसरी चीज कि उसे उस समय एक ही लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए। कभी कभी एक युवक क्या सोचता है कि वो देख रहा है कि स्पोर्ट्स का बड़ा महत्व है, भाई बड़ी कमाई हो रही है ना, वो तो VIP है आजकल, तो मुझे उधर जाना चाहिए। अच्छा, फिर पढ़ने जाता है तो वो सोचता है पढ़ाई में भी तो बहुत अच्छे नंबरों की जरूरत है, कम नंबर आएंगे तो महत्व क्या होगा मेरा, मैं आगे की हायर एजुकेशन में कैसे जा पाऊंगा, तो मुझे पढ़ाई भी बहुत अच्छी करनी चाहिए। अब तीसरा, उसे फ्रेंड्स मिलते हैं उसके, कहेंगे क्या तुम पढ़ाई पढ़ाई किताब लिए बैठा रहता है, क्या मैदान में ही चला जाता, आओ पिकनिक भी तो करने चलें। कुछ अच्छे दोस्त मिल जाते हैं, उसको ये भी लगता है दोस्तों के साथ कुछ समय बिताना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसे थोड़ा ही बीतेगा सूखे सूखे बन जाए, इसमें डाइवर्सन हो जाता है उसका। इसलिए ये थोड़ा सा काल ऐसा काल होता है जिसमें मनुष्य को एक तरफ फोकस कर देना चाहिए तो लक्ष्य मिल जाएगा, और अगर वो फोकस करेगा भिन्न भिन्न जगह पर तो लक्ष्य मिलने में बहुत मेहनत भी होगी और असफलता होना संभव है।
1: मतलब एक लक्ष्य बनाए और अपने आप को डेडिकेट कर दें उसके लिए, तभी उसे सफलता प्राप्त होगी। तो जो प्रफुल ने शायद क्वेश्चन किया, तो ये हो सकता है कि हम डेडिकेट अपने आप को नहीं कर पाते हैं।
0: मुझे एक बच्चे का उदाहरण याद आ रहा है, एक बच्चा 9th class का बच्चा था, भरोच का, गुजरात, कहा ये पढ़ता नहीं है। मैंने कहा आप दोनों बाहर जाओ, मैं इससे अलग बात करूं। हट्टाघट का लड़का लगे हेल्दी बिल्कुल और बहुत खुश, मुझे लगा ये पढ़ता नहीं, मुझे तो लग नहीं रहा है। मैंने उससे बात की, मैंने कहा क्या बात है, कहा नहीं मुझे क्रिकेट में बहुत शौक है और मैं बच्चों की क्रिकेट टीम का कैप्टन भी हूँ और बहुत सफल में हो रहा हूँ, मुझे उधर जाना है, और ये कहते रहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मेरी रुचि उधर है। तो देखिए उसको सफलता नहीं मिल रही थी पढ़ने में, फिर तो मैंने उनके माँ बाप से बात की, वो तो अलग की बात है, और उन्हें कन्विंस किया कि इसे खेलने दो, लेकिन बच्चे को भी कन्विंस किया कि 12वीं तक पढ़ो, नहीं तो तुम्हारा कहीं इंट्रोडक्शन होगा जब कहेंगे ये 8वीं class तक पढ़ा है तो तुम्हें बड़ी लज्जा आएगी, उसने मान लिया। तो लक्ष्य चूज करना, पेरेंट्स महसूस कर लें, रियलाइज कर लें, उन्हें जानकारी हो जाए कि हमारा बच्चा किस फील्ड में बहुत एक्सपर्ट है, किस फील्ड में वो बहुत सफल होगा, इसको ध्यान रखते हुए अगर लक्ष्य बनाया जाए तो सचमुच सफलता अवश्य होती है।
1: रिद्धि आप क्या कहेंगे?
3: कभी कभार क्या होता है कि हम लोग लक्ष्य तय कर लेते हैं लेकिन फिर भी जो पेरेंट होते हैं वो कहते हैं नहीं ये नहीं, हमें यही करना है, आप इसी मतलब इसी लाइन में आगे बढ़ो, तो हम उन लोगों को कैसे समझाएं कि हमारी रुचि इस चीज़ में है तो हमें ये करना है तो हमें ये करने दीजिए, तो हमें उसे किस तरह से कन्विंस।
0: हाँ, बहुत अच्छी बात आपने कही, और युवकों के सामने ये समस्या अनेक बार आती है कि माँ बाप कुछ और चाहते हैं और बच्चों की रुचि कुछ और होती है, लेकिन देखिए माँ बाप को यहाँ समझदार होना चाहिए क्योंकि प्राप्ति युवक को करनी है माँ बाप को नहीं, पढ़ाई हो चाहे कोई भी फील्ड हो उसमें आगे बढ़ना है आपको, तो आपकी रुचि जिस तरफ है उस तरफ आप बहुत इंटरेस्ट से मेहनत करेंगे, और जहाँ मनुष्य की रुचि होती है वहाँ उसको एकाग्रता भी होती है। और अगर रुचि के विपरीत आपको लक्ष्य दे दिया गया, मान लो एक छोटा सा उदाहरण ले लें, किसी की रुचि कॉमर्स में बहुत है और उसको उसमें आनंद आता है, वो बहुत उसमें होशियार है, लेकिन माँ बाप चाहते हैं उसे इंजीनियर बनाना और उसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स दिला दिया जाता है, लेकिन उस क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस अलाउ नहीं कर रही उसको, तो उसकी एकाग्रता उसमें अच्छी नहीं होगी, और जब वो उसमें थोड़ा सा भी भारी अपने को पाएगा तो डिप्रेस होगा, उसकी खुशी भी चली जाएगी कि भाई माँ बाप की माननी भी पड़ रही है लेकिन उसमें मैं सफल भी नहीं हो रहा हूँ, तो मन ही मन उसके मन में माँ बाप के प्रति अच्छी फीलिंग भी नहीं होगी। इसलिए यहाँ मैं कहूँगा कि युवकों को अपने माँ बाप को कन्विंस करने का एक तरीका सीख लेना चाहिए, ये अलग है कि माँ बाप बड़े होते हैं और वो बच्चों की बात सुने या न सुने, वो कितने समझदार हैं, कितने बुद्धिमान हैं। मैं एक उदाहरण दूँ इसमें, अभी अभी मेरे पास सूरत का एक परिवार है, वेल्दी परिवार, उसके बच्चे दो। एक बच्चा था जिसको मेडिकल में जाने की बहुत इच्छा थी। बाप कहता था क्या करोगे, जो तुम एक साल में कमाओगे हम एक दिन में यहाँ कमाते हैं, क्यों टाइम वेस्ट करते हो। मेरे पास आए, क्या करें, अब बच्चे को भी तो देखना है उन्हें। मैंने बच्चे से सब बात की तो बच्चे को एक इच्छा थी कि मेरे नाम से पहले डॉक्टर लगना चाहिए। देखिए, तो मैंने कहा नहीं, इसे पढ़ने दो, आप भले ही ये आपकी फैक्ट्री चलाएगा लेकिन ये डॉक्टर बने बहुत अच्छी बात है। आज वो मेरे से मिले, उसने देखिए कई सब्जेक्ट लिए और सब में टॉप किया है। दो सब्जेक्ट में इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया, फिर बीएससी भी कर ली, फिर बीकॉम किया, अब सीएस कर रहा है, फाइनल एग्जाम है 3 दिन के बाद, आज ही मिलने आया था, क्या करूं अब। तो देखिए, माँ बाप ने बच्चे की रुचि समझी और बच्चे ने इतने कोर्सेज कर लिए, कम से कम छह तरह के टैलेंट्स उसके पास आ गए। अब नौकरी तो उसे करनी नहीं, लेकिन उनका बहुत बड़ा फैक्ट्री है, बहुत बड़ा कारोबार है, उसमें वो बिल्कुल सफल होगा। बच्चे का चेहरा चमक रहा था खुशी, मैं उसकी देख रहा था, आज अभी मिलके आया हूँ, बिल्कुल आनंद में। और अगर उसे रोक दिया जाता तो वो डिप्रेस होता, उसके अंदर जो छुपे हुए टैलेंट्स हैं वो सब दब गए होते। अब क्योंकि उसके विवेक का विकास हो गया है तो वो हर फील्ड में सफल होगा। इसलिए मैं यहाँ आपके इस माध्यम से अपने सभी दर्शकों को संदेश देना चाहता हूँ कि माँ बाप महसूस करें, पहचाने अपने बच्चों की रुचि को, कहाँ वो सफल होंगे, इस पर काम करें और अपनी इच्छा का त्याग करें, क्योंकि बच्चों को अपना भविष्य खुद बनाना है, माँ बाप को नहीं, उन्हें केवल गाइड करना। और जिधर बच्चे सफल होना चाहते हैं उसको सहयोग दें पूरी तरह से, तो दोनों बहुत आनंदित रहेंगे और ये समस्या समाप्त हो जाएगी। रुपेश, आप कुछ कहेंगे?
1: बिल्कुल भ्राता जी, मैं यही सोच रहा था जैसे रिद्धि कह रही थी। रिद्धि, मैं आपसे ही पूछने वाला था कि कहीं ये क्वेश्चन आपका व्यक्तिगत तो नहीं है कि आप बनना कुछ और चाहती हैं और पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं तुमको कुछ और बनना है।
3: हम अपने फ्रेंड्स में देखते हैं, उन लोगों से बातचीत करते हैं, तो हम यही ज्यादातर देखते हैं कि उनके पेरेंट्स कुछ और कहते हैं, हम लोग बनना कुछ और चाहते हैं और वो लोग फोर्स करते हैं हमें कि नहीं भाई, उसका बेटा या उसकी बेटी इस कोर्स में जा रहे, सीएस आजकल बहुत ज्यादा हो रहे, उसका बेटा कर रहा है तो तुम भी करो। मतलब हमारी रुचि किसी, मतलब जो चॉइस है वो कुछ और है, हम बनना कुछ और चाहते हैं और वो लोग फोर्स हमें कुछ और करते हैं, तो वो तो मतलब गलत ही होता है।
0: हाँ, इसमें थोड़ा सा ध्यान स्टूडेंट्स को भी देना चाहिए। कभी कभी विद्यार्थियों के कल्याण को माँ बाप ज़्यादा समझ सकते हैं और उनको ये भी है कि फलाने का बच्चा MBA हो गया, फलाने के बच्चे ने ये कर लिया, हमारे पीछे रह गए। उन्हें समाज भी देखना होता है, समाज वाले क्या कहेंगे, तुम्हारे पास पैसा नहीं है या तुम्हारे बच्चे योग्य नहीं हैं या तुम उनको पढ़ाना नहीं चाहते, क्या बात है तुम्हारी। तो इसमें एक बहुत सुंदर, ये जनरेशन गैप हो गया तो इसको पूरा करना जरूरी है। अभी माँ बाप का दबाव या माँ बाप का प्यार, दोनों हो सकते हैं इसमें, और उनको अपने सेल्फ रेस्पेक्ट की चिंता, तीन बातें हो गई। उधर बच्चे की रुचि, अगर युवक अपनी रुचि को माँ बाप के अनुसार चेंज कर सके तो ब्यूटीफुल, एक्सेलेंट, उसमें दोनों बहुत प्रसन्न रहेंगे। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपको मजा ही नहीं आ रहा, आप डिप्रेस हो गए, सुनते ही उदास हो गए, तो समझ लें उस फील्ड में आपको सफलता नहीं मिलेगी जो फील्ड आपने चुना है। माँ बाप को उसमें फिर सहयोग अवश्य देना चाहिए, लेकिन यहाँ जो समस्या है कि आपको उन्हें कन्विंस करना है, असली बात यह है। और इसके लिए चाहिए आपके पास स्पिरिचुअल पावर, इसके बिना काम नहीं होगा, क्योंकि कई बार लड़कियाँ या लड़के थोड़ी शर्मीली नेचर के, दब्बू स्वभाव के, या माँ बाप से थोड़े डरने वाले होते हैं, वो यही कहेंगे जी सर जो आप कहो पापा, जैसे आपकी इच्छा हो, तो उसमें क्या है कि गड़बड़ हो जाएगी।
1: आजकल नहीं लगता हाँ, कि ऐसा
0: नहीं, कुछ मिलते हैं, मुझे तो मिलते हैं कि हम तो अपने बाप के सामने बोल ही नहीं पाते भाई, हमें तो चुप रहना होता है। हालांकि इसकी परसेंटेज ज्यादा नहीं रही, पर कुछ तो है अभी भी, क्योंकि ये इंडियन कल्चर है, वो माँ बाप
1: अपने बड़ों के लिए सम्मान तो रखते हैं,
0: वो उनका सामना नहीं करते। और कभी कभी क्या हुआ कुछ युवकों के साथ, कि बचपन से ही उनका फादर या मदर बड़े क्रोधी रहे हैं, एग्रेसिव रहे हैं, उनको दबाया गया है, जो मैं कहूँ वही तुम्हें करना है, ऐसी स्थिति बनाए रखी है। तो इसमें भी बच्चे थोड़ा दूरी महसूस करते हैं, माँ बाप से खुलते नहीं हैं, अपनी बात नहीं कह पाते, ये समस्या वहाँ भी पैदा होती है। इसलिए मैंने कहा अगर आपके पास स्पिरिचुअल पावर होगी, हम यहाँ अपने राजयोग में बहुत अच्छी चीज़ सिखाते हैं, स्वमान जिसे हम कहते हैं, यानी हम भगवान के बच्चे हैं, तो वी आर ऑल्सो समथिंग। अपने स्वमान को, अपने सेल्फ एस्टीम को बढ़ाएं जरा कि हम सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं तो हम भी शक्तिशाली हैं। तो एक छोटी सी प्रैक्टिस मैं सिखाना चाहता हूं कि सवेरे उठते ही 7 बार ये याद करें, मैं सर्वशक्तिवान की संतान बहुत शक्तिशाली हूं। जैसे छोटा उदाहरण हम देते हैं, शेर का बच्चा शेर, तो सर्वशक्तिवान के बच्चे भी शक्तिशाली, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। सवेरे उठते ही 7 बार इसे याद करें और फिर अपने माँ बाप को मन के सामने लाके संकल्प करें, वो दोनों मेरे पूर्ण सहयोगी हैं, जो मैं कहूंगी वो जरूर मानेंगे। रोज ऐसी प्रैक्टिस करें तो 7 दिन में ही उनकी मेंटेलिटी बदल जाएगी। मैं ये युवकों को बहुत सिखाता हूं, जहां उन्हें कोऑपरेशन चाहिए दूसरों का, वो इस थ्योरी का प्रयोग करेंगे। तो ये सब कॉन्शियस माइंड का प्रयोग है। सवेरे जो कुछ हम सोच रहे हैं उठते ही, हमारा सबकॉन्शियस माइंड पेरेंट्स के सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ है, हमारे विचार सीधे उनको जाएंगे और उनके विचार बदलेंगे। वो सोचने लगेंगे कि हमारी बच्ची जो कह रही है ठीक है, करने दो ना उसे, और समस्या खत्म हो।
1: चलिए, पेरेंट्स को कन्विंस करने की एक बहुत अच्छी बात आपने बता दी है। यदि आप दोनों के पेरेंट्स ना मानते हो या फिर आपके फ्रेंड्स ऐसे हो जिस फील्ड में जाना चाहते हो, तो भ्राता जी ने जो एक सबकॉन्शियस माइंड का बहुत सुंदर प्रयोग बताया है।
2: कई बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती है हमारे सामने कि हम आसानी से हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होते हैं, सब कुछ हमें हासिल हो रहा होता है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन परिवार को भी साथ में लेके चलना है, उस समय परिस्थितियां बिल्कुल प्रतिकूल हो जाती है। तो और दिमागी तौर पे इतना प्रेशर हो जाता है कि हम सोच नहीं पाते कि हमें करना क्या है, तो हमारा लक्ष्य भी सामने होते हुए भी वो हमें हासिल नहीं होता।
0: बिल्कुल, ऐसी समस्याएं बहुत आती हैं कि बच्चा पढ़ रहा है, बहुत होशियार है, अचानक माँ बहुत बीमार हो गई, बिजनेस था फादर का, एकदम डाउन होने लगा, घर में जैसे समस्याएं घिराई, तो बच्चा भी फैमिली का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, उस पर उसका असर आ गया, उसकी कंसंट्रेशन भंग हो गई, कहीं ना कहीं उसे माँ की केयर करनी पड़ी, टाइम देना पड़ेगा उसको, तो वो बेचारे परेशान होते हैं और अब एग्जाम के 3 मास रह गए हैं, पूछते हैं हम क्या करें। इधर ये हमारी समस्याएं होती हैं, उधर हमारे ऊपर एक दबाव है अपनी स्टडी का भी, और कहीं ना कहीं वो उनकी एकाग्रता को नष्ट करता है, उसमें बाधक बनता है। इसमें ही जैसे मैं कह रहा था, हम अपने थॉट्स को चेंज करें, कुछ चीज़ों को हम बहुत लाइटली लेंगे। 2 चीज़ करेंगे हम, अपनी स्टडी को या जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं उसको एन्जॉय करें। तो ये जो एक एटीट्यूड है कि हमें अपनी स्टडी एंजॉय करनी है, ये जो भारीपन हमारे ऊपर रहता है, हमें पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, उससे ख़त्म हो जाएंगे। दूसरी चीज़ है कि हम कुछ चीज़ों को ईजीली लेना सीखें। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारी नेचर ईजी गोइंग नेचर हो, सहज भाव से सब कुछ लेना, सब कुछ पूर्ण करना। तो जैसे पापा की बात है, अब वो घर में चर्चा करेंगे, ये हो गया, वो हो गया, उसने पैसे नहीं दिए, हमारा माल खराब हो गया, वहाँ से आया नहीं है, रोक लिया है, या टैक्स वाले आ गए थे, ये गड़बड़ कर दी। अब इसमें स्टूडेंट्स को चाहिए समझदारी से कि पापा कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, हम आपके साथ हैं। ऐसा कहने से छोटे भी बड़े नजर आएंगे, मैच्योर नजर आएंगे, और पापा की टेंशन भी कम होगी, और घर में जो एक निगेटिव वातावरण बन गया है जिसका इफेक्ट बुरा हो रहा है, उससे भी हम हल्के हो जाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है कि इसके लिए हमारे पास सुंदर विचार होने चाहिए, जो हम कह रहे हैं सारे संसार को कि हमारे स्कूलों में या युवा वर्ग के लिए मॉरल एजुकेशन का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारी पढ़ाई में ये सब चीज़ें कहीं सिखाई नहीं जाती। तो टेंशन हो गई तो हो गई, अब क्या करें भाई, उसका इफेक्ट होता रहता है। तो कुछ अच्छी चीज़ें हमेशा सीखते रहना, और राजयोग में हम यही सिखाते हैं कि भिन्न भिन्न परिस्थिति आने पर भी हम कैसे विचलित न हों, अपने माइंड को डिस्टर्ब न करें, अपने लक्ष्य को छोड़ें नहीं, तो फिर ये जो परिस्थिति हैं इनका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं आएगा।
1: तो बेहता जी, ये चीज़ तो क्लियर हुई कि चलिए हमारे पास एक लक्ष्य होना चाहिए, लक्ष्य का निर्धारण कर लेना चाहिए और मार्ग में बहुत सारी बाधाएं आएंगी, उन सबको पार भी हमें करना है। मैं सार में जानना चाहूंगा ब्रीफ में बेहता जी, आज समय हमें थोड़ा सा कम इजाजत दे रहा है, कैसे एक लक्ष्य बना लेने के बाद कोई भी युवा 100% सफलता अर्जित करे, क्या वो ऐसा करे, क्या जीवन में ऐसी बात ले आए कि जो लक्ष्य बनाया बस हासिल हो जाए।
0: मैं शुरू करता हूँ एक बहुत सुंदर बात से कि सवेरे उठते ही 5 बार अपने लक्ष्य को लिखा जाए। मान लो एक विद्यार्थी है और उसको 90% मार्क्स लाने हैं, मेरे मार्क्स 90% आएंगे, इस लैंग्वेज में लिखा जाए, मेरे मार्क्स 90% आएंगे, यानी आएंगे। हम जब ये लैंग्वेज यूज कर रहे हैं इसका मतलब वी आर कॉन्फिडेंट, है ना, कि आएंगे। अच्छा, 5 बार हमने लिख दिया तो इससे क्या होगा, हमारी ब्रेन की समस्त शक्तियाँ हमें उस लक्ष्य को अचीव कराने में लग जाएंगी। और अगर कोई छोटी मोटी बाधा आएगी ना, आप पाएंगे कि हमारी अपनी शक्तियाँ उसको हटा रही हैं, आप हमारा मार्ग स्पष्ट कर रही हैं। तो इसमें हो गई लक्ष्य की दृढ़ता। दूसरी बात, हम अपने लक्ष्य को एंजॉय करें। सवेरे की बात हम कर रहे हैं, हम पहले 10 मिनट उठने के बाद इसमें देंगे कि मुझे ये लक्ष्य प्राप्त होगा ही, जैसे हो गया है और उसको हम एंजॉय करें, तो उससे हमारे सबकॉन्शियस माइंड का जो इफेक्ट है वो उन लोगों तक जाएगा जो उस लक्ष्य को हमें दिलाने में जिम्मेदार हैं, चाहे वो एग्जामिनर हैं, कॉपी चेक करने वाले हैं, ये करें। तीसरी बात कि लक्ष्य के प्रति हम बहुत सिंसियर हों। ये नहीं लक्ष्य बना लिया तो मिल जाएगा, ना मिला तो क्या हुआ, किस किस को मिलेगा, IAS में इतने लड़के बैठ रहे हैं लाखों, कोई सब थोड़ा ही आएंगे, मैं भी ना आया तो कह दूंगा क्या हुआ, इतने नहीं आए क्या हुआ, ये भी नहीं। दृढ़ता, सिंसियरिटी, मुझे ये लक्ष्य पाना ही है। और जिसके सामने, जिसके मन में अपने लक्ष्य के प्रति ऐसी दृढ़ता होती है, तो हमें याद रखना है जहाँ दृढ़ता है वहीं सफलता है। दृढ़ता सफलता की चाबी है, इसको हम ध्यान रखेंगे। और फिर जैसे हमने अपने को डेडिकेट कर दिया उसके लिए, तो कुछ समय उसके लिए, हमें कोई पूरा जीवन नहीं लगाना होता है, 1-2 साल पूरा अपने को लगा दें उसमें, जैसे झोंक दें अपनी शक्तियों को, तो ऐसा करने से जब हम मेहनत करेंगे और भगवान में भरोसा रखेंगे, हम याद रखेंगे भगवान भी हमारे साथ हैं, आखिर हम उसके बच्चे हैं, वो हमें भला क्यों असफल देखना चाहेगा, एक बाप अपने बच्चों को असफल देखना थोड़ा ही चाहता है, हमें सफलता अवश्य मिलेगी। तो इस तरह जब हम मेहनत करेंगे सच्चे दिल से, तो सचमुच हमें लक्ष्य प्राप्त होगा। और मैं ये कहूँगा कि हर युवक को लक्ष्य सुंदर बनाना ही चाहिए, जिस फील्ड में भी वो जाना चाहता है उसके प्रति अपने को डेडिकेट कर देना चाहिए, फुल कॉन्फिडेंस अपने मन में रखना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए। और इन केस कि मान लो लक्ष्य न मिले, ऐसा भी होता है, तो डिप्रेस होने की जरूरत नहीं, फिर प्रयास किया जाए, फिर प्रयास किया जाए। तो जो मेहनत करते हैं लक्ष्य उन्हें अवश्य प्राप्त होता है। इसलिए ये बात भी अंडरलाइन करने की है कि अनेक बार भिन्न भिन्न कारणों से लक्ष्य नहीं मिलता। बहुत बार देखा एग्जाम बहुत अच्छा हुआ, सब कुछ सुंदर था, लेकिन मार्क्स तो बहुत कम रह गए। इसमें हमारे पास्ट का इफेक्ट, हमारे फ्यूचर का अट्रैक्शन, जो एक स्पिरिचुअल चीज़ है जिसको आम व्यक्ति नहीं जानता, हमारा फ्यूचर भी हमें अट्रैक्ट करता है, हमारा पास्ट हमें अफेक्ट करता है। कभी कभी इन दोनों कारणों से हम मनचाही सफलता नहीं पा पाते, तो उसमें हमें स्वीकार कर लेना चाहिए जो मिले और फिर से नए उमंग से बिना निराश हुए मेहनत करनी चाहिए, तो लक्ष्य हमारे चरणों में आ जाएगा।
1: चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रता जी, विषय तो ऐसा है कि इस पे बहुत गहराई से चर्चा करने की आवश्यकता है, लेकिन आज वक्त हमें इजाजत यहीं तक दे रहा है। आपने इतना सुंदर प्रकाश डाला है, युवाओं को इतने अच्छे ढंग से प्रेरित किया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और रिद्धि और प्रफुल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आप लोग स्टूडियो में आए, और आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा प्रकाश मिला है और आप लोगों ने जो भी लक्ष्य अपने जीवन का बनाया है उसको आप हासिल करें, ये हमारी समाधान परिवार की ओर से शुभकामनाएं। आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण है जीवन के लिए। किसी महापुरुष ने कहा है कि अपना लक्ष्य हमेशा सितारों पर चढ़ना बनाओ, ताकि यदि सितारे तक ना भी पहुंच पाए तो कम से कम चांद तक तो अवश्य पहुंच ही जाएंगे ना। और किसी ने ये भी कहा है कि यदि आप छोटा लक्ष्य बनाते हैं तो जैसे आप अपराध करते हैं। भगवान ने इतना सुंदर जीवन दिया है हमें, तो हम इस संसार को कुछ देने का लक्ष्य बनाएं, अपने जीवन में केवल डॉक्टर इंजीनियर तक अपने आप को सीमित न रखें बनने का, लेकिन एक ऐसा महामानव बनने का लक्ष्य रखें जो संसार को समाज को कुछ दे करके जाए। आशा है आज की इस कड़ी से आपको बहुत सुंदर प्रेरणा प्राप्त हुई होगी, और यदि आपने अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में कुछ न सोचा हो अवश्य सोचना प्रारंभ करें, उठें, जागें और तब तक चलते रहें जब तक अपने ध्येय को प्राप्त नहीं कर लेते। नमस्कार।

लोग ये कहते बिन बेटे के कैसे वंश चलेगा, पर मैं कहता बिन बेटी के दूल्हा कैसे बनेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित मनीष शर्मा, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन।

राम राम, सुप्रभात, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग आबू। मैं हूँ शुभा और आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग आबू कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपने लक्ष्य हासिल करने की क्या विधि है, उसे कैसे हम हासिल कर सकते हैं, इस विषय पर जाना आदरणीय सूरज भाई जी से, और होस्ट कर रहे थे रुपेश भाई जी। तो कैसा लगा आपको ये कार्यक्रम, आप हमें बता सकते हैं 9414151415 इस नंबर पर। आइए चलते हैं अभी पंचांग की ओर, जानते हैं दिन विशेष के बारे में जानकारियाँ। आज के पंचांग के अनुसार शक संवत 1948 श्रावण शुक्ल एकादशी रविवार है। विक्रम संवत 2083 है। अंग्रेजी तारीख है 23 अगस्त सन 2026। सूर्य दक्षिणायन उत्तर गोल वर्षा ऋतु है। राहुकाल शाम को 4:30 से 6 बजे तक है। एकादशी तिथि अगले दिन तड़के 4:18 तक है। उपरांत द्वादशी तिथि का आरंभ है। मूल नक्षत्र शाम को 5:44 तक, उपरांत पूर्व आषाढ़ नक्षत्र का आरंभ है। विश्वकुंभ योग प्रातः 6:14 तक, उपरांत प्रीति योग का आरंभ है। वणिजकरण दोपहर 3:10 तक, उपरांत विष्टिकरण का आरंभ है। चंद्रमा दिन रात धनु राशि पर संचार करेगा। सूर्योदय का समय 5:54 पर था। सूर्यास्त का समय 6:53 पर है। चंद्र उदय का समय दोपहर 3:55 पर है। चंद्रास्त का समय रात 1:56 पर 24 अगस्त को। सूर्यदेव सिंह राशि में स्थित है, चंद्रदेव धनु राशि में स्थित है। ब्रह्म मुहूर्त 3:55 से 4:41 तक था। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:58 से 12:49 तक रहेगा। अमृतकाल का समय 10:33 से दोपहर 12:21 तक रहेगा। और इसके साथ साथ आज पुत्रदा एकादशी है, पुत्रदा एकादशी, और श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस व्रत के दिन व्रत रहकर भगवान विष्णु का पूजन करते हैं और इसके बाद वेद पाठी ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सारा दिन भगवान का भजन कीर्तन कर रात्रि में भगवान की मूर्ति के समीप ही शयन करते हैं। भक्तिपूर्वक इस व्रत को करने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। संतान की इच्छा रखने वाले निसंतान व्यक्ति को इस व्रत को करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, ऐसा मान्यता है। अतः संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों को इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करने की विधि भी बताते हैं और मान्यता है। तो कथा जुड़ी हुई है, प्राचीन काल में महिष्मती नगरी में महीजीत नामक एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था और वह अत्यंत शांति प्रिय, ज्ञानी और दानी भी था। सब प्रकार का सुख वैभव होने पर भी राजा संतान ना होने से अत्यंत दुखी था। तो एक दिन राजा ने अपने राज्य के सभी ऋषि मुनियों, सन्यासियों और विद्वानों को बुलाकर संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। उन ऋषियों में परम ज्ञानी लोमेश ऋषि जी ने कहा, राजन, आपने पिछले जन्म में श्रावण मास की एकादशी को अपने तालाब से जल पीती हुई गाय को हटा दिया था। उसी के श्राप से तुम संतान वंचित हो। यदि तुम अपनी पत्नी सहित पुत्रदा एकादशी को भगवान जनार्दन का भक्तिपूर्वक पूजन अर्चन कर व्रत करो तो तुम्हारे श्राप दूर होकर अवश्य ही पुत्र प्राप्त होगा। ऋषि की आज्ञा अनुसार राजा ने ऐसा ही किया। उसने अपनी पत्नी सहित पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से रानी ने एक सुंदर शिशु को जन्म दिया। पुत्र प्राप्ति से राजा बहुत प्रसन्न हुए और फिर वो हमेशा ही इस व्रत को करने लगे। तभी से ये व्रत लोक प्रचलित हो गया, पुत्रदा एकादशी। संतान की इच्छा रखने वाले निसंतान जो कपल हैं वो इस व्रत को करते हैं जनरली। तो ये कुछ जानकारियां जुड़ी हुई थी आज के साथ। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: मैं अशोक खोसला बोल रहा हूँ और मैं रेडियो मधुबन सुनने वालों सभी श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ सबको। वो सबको बहुत बहुत खुश गवार गुजरे, सब बहुत खुश रहें और आगे भी प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलें, यही शुभकामना है। धन्यवाद। रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: वेलकम बैक, सुन रहे हैं आप कार्यक्रम गुड मॉर्निंग आबू। फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नई खूबसूरत और उम्मीदों से भरा सुबह में। सुबह की ताज़ा हवा हो या फिर सूरज की सुनहरी किरणें और एक सकारात्मक सोच आपके पूरे दिन को बना देते हैं खुशहाल और ऊर्जावान। तो ऐसे ही सकारात्मकता आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। और अब बात है उस चीज़ की जिसका असर हमारी सुबह से लेकर पूरे दिन की प्लानिंग तक दिखाई देता है। हाँ जी, बात कर रहे हैं हम मौसम की। कहाँ बारिश के आसार हैं तो कहाँ तापमान रहेगा सामान्य से अधिक, और आपके शहर में कैसा रहेगा आज का मौसम और हमारे देश के अन्य अंचलों में कैसा रहेगा मौसम, आइए जानते हैं मौसम का ताज़ा हाल। राजधानी जयपुर में 34 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक जा सकता है। यहाँ पर बारिश होने की संभावना रात्रि के समय तो 50% से ज़्यादा है और सुबह के समय नहीं है। बादल छाए रहेंगे लेकिन सूरज भी देखने को मिलेंगे आपको। उदयपुर में 32 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, बादल भी छाए रहेगा और सूरज भी देखने को मिलेगा आज के दिन उदयपुर में। और 23 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान, बारिश की संभावना 5-10% है रात्रि के समय, बस दिन के समय नहीं है। आबू रोड में 33 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री तक जा सकता है। बादल छाए रहेंगे आसमान पर, सुबह के समय जोरदार बारिश होने की संभावना है। माउंट आबू के बारे में बात करें तो 18 डिग्री तक न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान 22 डिग्री तक जा सकता है। यहाँ पर थोड़ा बहुत बारिश होने की संभावना है दिन के समय, रात्रि के समय थोड़ा कम संभावना है बारिश होने की। बादल छाए रहेंगे आसमान पर। पाली जिले में 27 डिग्री तक न्यूनतम तापमान, अधिकतम तापमान 35 डिग्री तक जा सकता है। बादल छाए रहेंगे आसमान पर और सूरज चाचू भी देखने को मिलेंगे आज के दिन। जोधपुर में आसमान साफ रहेगा, 35 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक जा सकता है। रात्रि के समय बादल छाए रहेंगे आसमान पर। सूरत में बारिश होने की संभावना है 61% तक, जोरदार बारिश होने की संभावना 15% तक है। 31 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक जा सकता है। और रात्रि के समय 50% चांस है सूरत में बारिश होने की। मेहसाना में 33 डिग्री अधिकतम, न्यूनतम 26 डिग्री तक और बारिश होने की संभावना फिल वक्त नहीं है। बादल छाए रहेंगे आसमान पर। राजकोट में 34 डिग्री अधिकतम, न्यूनतम 25 डिग्री, बादल छाए रहेंगे, बारिश होने की कम संभावना है। गांधीनगर अहमदाबाद में भी 26 डिग्री न्यूनतम, अधिकतम 33 डिग्री, बादल छाए रहेंगे, बारिश होने की बहुत बहुत बहुत कम संभावना है। दिल्ली में 34 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक जा सकता है। थोड़ी सी बारिश होने की संभावना है कुछ हिस्सों में दिल्ली में। राजधानी दिल्ली के बाद कोलकाता की ओर चलते हैं। 33 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक जा सकता है। बादल छाए रहेंगे आसमान पर, बारिश होने की संभावना 56% तक है। बेंगलुरु में 29 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम 21 डिग्री तक जा सकता है और 55% तक बारिश होने की संभावना है बेंगलुरु में। मुंबई में 56% से ज़्यादा संभावना है बारिश होने की, थोड़ी सी बारिश होगी लेकिन आज। 32 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक जा सकता है। चेन्नई में 34 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक जा सकता है। इस क्षेत्र के कुछ हिस्सों में बारिश होगी लेकिन कुछ हिस्सों में जोरदार बारिश होगी, कम समय तक जोरदार बारिश होगी। और वहीं पर अगर हम बात करें जिला सिरोही के बारे में, यहाँ पर 35 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 28 डिग्री तक जा सकता है। बादल छाए रहेंगे आसमान पर लेकिन सूरज भी देखने को मिलेगा आज के दिन के समय। रात्रि के समय 55% तक चांसेस है बारिश होने की। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी हमारे वेदर रिपोर्ट्स के साथ। आइए यहाँ पर लेते हैं एक अल्पविराम। अल्पविराम के उस पार शांति में कुछ पल ठहरेंगे 8 बजे के टाइम चेक के साथ।

0: आप हबरे रिया रेडियो मधुबन 107.8 FM हबरता रेजियो ने मुस्कुराता रेजियो
1: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
2: जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट है। अब हमें समझ में आ गया कि हम खुद भरपूर हैं, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे ये कप है, अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए। तो आई एम डिपेंडेंट, जब आप भरेंगे तब, और अगर आप भर पाए और अगर आपके पास है उसको भरने के लिए, यू नो यू हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू मी, नहीं तो आई कैन कीप वेटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर पीपल टू फिल माई कप, इट विल नेवर गेट फिल्ड। एंड राजयोग से हमने ये रियलाइज़ किया कि मेरा जो कप है ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं हूँ ही प्रेम स्वरूप। अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है, कि आपका कोई शब्द, कोई और परिस्थिति मुझे उस व्यर्थ चिंतन की तरफ ना ले जाए जिससे मेरी खुशी गायब हो। हम वर्ड भी ये यूज़ करते हैं कि मेरी खुशी को वो छीन गई, मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी थी। उतना ध्यान हमें रखना है कि इस भरे हुए कप को अंदर भरा हुआ ही रहने देना है। जब तक उसको खाली समझेंगे मांगते रहेंगे एंड दैट

0: जर्नी जस्ट गोज ऑन लाइक दैट।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: वेलकम बैक, सुन रहे हैं आप कार्यक्रम गुड मॉर्निंग आबू, 8:04 रेडियो मधुबन की घड़ी पर। संडे है 23 अगस्त 2026 है आज, और अब बढ़ते हैं सफ़र से जुड़ी ज़रूरी जानकारी की ओर। जी हाँ, अगर आज आप ट्रेन से यात्रा करने वाले हैं या फिर किसी को स्टेशन छोड़ने जा रहे हैं या रेलवे से जुड़ी कोई ज़रूरी जानकारी जानना चाहते हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद काम की हो सकती है। तो आइए चलते हैं आबू रोड रेलवे स्टेशन की ओर, जानते हैं आने वाली ट्रेनों के बारे में जानकारियाँ। 8:25 पर 22547 ग्वालियर से साबरमती तक जाने वाली सुपरफर्स्ट एक्सप्रेस पहुंचने वाली है। संभावित प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 है। अरावली एक्सप्रेस 14702 8:30 पर पहुंचेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस 12461 9:05 पर पहुंचेगी। गरीब नवाज एक्सप्रेस 16532 9:10 पर पहुंचने वाली है। 9:45 पर 19224 जम्मू तवी साबरमती एक्सप्रेस पहुंचने वाली है। वहीं पर अजमेर मैसूर एक्सप्रेस 16209 10:10 पर पहुंचेगी। जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 20496 10:30 पर पहुंचेगी। और वहीं पर प्रयागराज से गांधीग्राम तक जाने वाली स्पेशल ट्रेन 04111 11:00 ऑन टाइम चल रही है, आबू रोड रेलवे स्टेशन पर 11:00 पहुंचेगी। योगा एक्सप्रेस 19032 11:09 पर 19 देरी से चलते हुई संभावित प्लेटफॉर्म 2 पर पहुंचेगी। साबरमती जोधपुर एक्सप्रेस 14822 11:40 पर पहुंचेगी और संभावित प्लेटफॉर्म 1 है। और वहीं पर गांधीनगर से दौलतपुर तक जाने वाली एक्सप्रेस 19411 ये गाड़ी 12:55 पर आबू रोड रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी, दोपहर 12:55 पर। वहीं पर जन्मभूमि एक्सप्रेस 19107 दोपहर बाद 1:30 पर पहुंचने वाली है आबू रोड रेलवे स्टेशन पर। और 19412 दौलतपुर से गांधीनगर तक जाने वाली गाड़ी 2:28 देरी से चलती हुई आबू रोड रेलवे स्टेशन पर दोपहर बाद 2:58 पर पहुंचने वाली है। साबरमती जम्मू तवी एक्सप्रेस 19223 दोपहर बाद 2:10 पर पहुंचेगी। योगा एक्सप्रेस 19031 साबरमती से योगनगरी तक जाने वाली ये गाड़ी दोपहर बाद 3:00 आबू रोड रेलवे स्टेशन पर संभावित प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर पहुंचेगी। तो ये कुछ रेलवे से जुड़ी हुई जानकारियां, अभी से 8 तक आबू रोड रेलवे स्टेशन पर आने वाली गाड़ियों के बारे में जानकारियां। यात्रा पर निकलने से पहले अपनी ट्रेन का समय, प्लेटफॉर्म और ज़रूरी अपडेट एक बार ज़रूर जांच लें। आपका सफ़र सुरक्षित, सुगम और सुखद हो। इसी शुभकामनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं, लेते हैं यहाँ पर एक अल्फ़िराम। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

वेलकम बैक, सुन रहे हैं आप कार्यक्रम गुड मॉर्निंग आबू। आइए चलते हैं कुछ बातें जो जुड़ी हुई हैं हमारे जॉब्स के साथ, नौकरियों के साथ, वो जानते हैं। SBI में जूनियर एसोसिएट के 9124 पदों पर भर्ती के लिए युवाओं से आवेदन आमंत्रित है और लास्ट डेट है 26 अगस्त 2026। उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन डिग्री या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। उम्मीदवार की आयु 20 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। SC ST OBC दिव्यांग एवं पूर्व सैनिक आदि आरक्षित श्रेणियों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी। सामान्य और OBC वर्ग के उम्मीदवारों के लिए ₹600 आवेदन शुल्क निर्धारित है। SC ST दिव्यांग और एक सर्विसमैन वर्ग के उम्मीदवारों को ₹100 का इंटीमेशन चार्ज देना होगा। आवेदन कैसे करेंगे उम्मीदवार? SBI की आधिकारिक वेबसाइट के करियर सेक्शन में जाकर जूनियर एसोसिएट भर्ती के लिए अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करें, रजिस्ट्रेशन करें, आवेदन फॉर्म भरें, फोटो एवं हस्ताक्षर सहित जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और निर्धारित शुल्क जमा करें, फॉर्म सबमिट करें, आवेदन की रसीद और प्रिंट सुरक्षित रखें। और वहीं पर पटना हाई कोर्ट ने ग्रुप सी के तहत एक स्कैडर असिस्टेंट के 68 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है। चयनित अभ्यर्थियों को लेवल 7 पे मैट्रिक्स के तहत ₹44,900 से ₹1,42,000 प्रति माह वेतन मिलेगा। शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए। इसके साथ कम से कम 6 महीने का कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा सर्टिफिकेट तथा कंप्यूटर संचालन का ज्ञान होना आवश्यक है। आयु सीमा है 1 जनवरी 2026 के अनुसार न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम आयु सामान्य पुरुष वर्ग के लिए 37 वर्ष है, सामान्य महिला एवं OBC EBC के लिए 40 वर्ष तथा SC ST के वर्ग के लिए 42 वर्ष निर्धारित है। सामान्य OBC EWS EBC ₹1,000, SC ST तथा दिव्यांग के लिए ₹500 है। उम्मीदवार पटना हाईकोर्ट के आधिकारिक वेबसाइट patnahighcourt.gov.in /recruitments.aspx के रिक्वायरमेंट patnahighcourt.gov.in/recruitments.aspx के रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र भरें, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, शुल्क का भुगतान करें और उसके बाद आवेदन जमा करने के बाद उसका प्रिंट सुरक्षित रखें। चयन प्रक्रिया है, उम्मीदवारों का चयन प्रारंभिक परीक्षा यदि आयोजित हो, लिखित परीक्षा, कंप्यूटर दक्षता परीक्षा और CBT जिसको कहते हैं, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल परीक्षण के आधार पर किया जाएगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में असिस्टेंट Grade 3 के 1174 पदों पर भर्ती निकली है। 16 सितंबर 2026 है लास्ट डेट। शैक्षणिक योग्यता है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन होना जरूरी है। इसके साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 1 वर्षीय कंप्यूटर एप्लीकेशन डिप्लोमा जैसे DCA, PGDCA या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग में दक्षता भी जरूरी है। आयु सीमा है 1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष और अधिकतम आयु है 40 वर्ष। मध्य प्रदेश के आरक्षित वर्ग और महिला और दिव्यांग उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तक छूट मिलेगी। लास्ट डेट है 16 सितंबर 2026। आवेदन शुल्क के बारे में बात करें तो अनारक्षित वर्ग और मध्य प्रदेश के बाहर के उम्मीदवारों के लिए ₹777.02 और मध्य प्रदेश के SC ST OBC PWBD वर्ग के लिए ₹577.02 हैं। और इसके साथ साथ भुगतान आप ऑनलाइन कर सकते हैं। उम्मीदवार 17 अगस्त से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट MP High Court Recruitment/Result.com पर जाएं, रिक्रूटमेंट/रिजल्ट सेक्शन में जाएं।

कर असिस्टेंट ग्रेड 3 रिक्रूटमेंट 2026 लिंक पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन के बाद आवेदन फॉर्म भरें, जरूरी दस्तावेज और फोटो अपलोड करें, शुल्क जमा करें और फॉर्म सबमिट कर दें। चयन प्रक्रिया में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट शामिल होगा। प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों का मुख्य परीक्षा और टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो ये जानकारी हम आपको दैनिक भास्कर के जरिए पहुंचा रहे हैं। और वहीं पर एम्स दिल्ली में अलग अलग पदों पर होगी बहाली। लास्ट डेट है 24 अगस्त यानी कि कल। एम्स नई दिल्ली में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती से जुड़ी आधिकारिक जानकारी एम्स की भर्ती पोर्टल पर जारी की गई है। शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार अलग अलग निर्धारित है। संबंधित पद के लिए 10वीं और 12वीं डिप्लोमा, स्नातक इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल अन्य निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को अपने पद के अनुसार आधिकारिक नोटिफिकेशन में योग्यता की जांच करनी चाहिए। पद के अनुसार आयु सीमा, आरक्षित वर्गों के नियमानुसार अधिकतम आयु में छूट दी जाएगी। आवेदन शुल्क पद और उम्मीदवार की श्रेणी के अनुसार निर्धारित है। उम्मीदवार एम्स के आधिकारिक भर्ती पोर्टल पर जाए, संबंधित भर्ती के ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करें, रजिस्ट्रेशन करें, आवेदन फॉर्म भरें, जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म सबमिट करें। चयन प्रक्रिया संबंधित पद के नियमों के अनुसार होगी। इसमें लिखित कंप्यूटर आधारित परीक्षा, स्किल टेस्ट, इंटरव्यू, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल जांच में निर्धारित चरण शामिल हो सकते हैं। वहीं पर झारखंड में इंटरमीडिएट लेवल भर्ती के 326 पदों पर आवेदन शुरू है। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं इंटरमीडिएट या फिर उसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष, आरक्षित वर्गों के लिए अधिकतम 37 से 40 वर्ष तक है। झारखंड.gov.in पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। और वहीं पर राजस्थान में जूनियर इंजीनियर के 774 पदों पर भर्ती निकली है। लास्ट डेट है 25 अगस्त 2026। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जूनियर इंजीनियर भर्ती 2026 के लिए 774 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। अलग अलग इंजीनियरिंग विभागों में जूनियर इंजीनियर के पदों पर नियुक्ति की जाएगी। विस्तृत नोटिफिकेशन आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। शैक्षणिक योग्यता, उम्मीदवार के पास संबंधित इंजीनियरिंग ट्रेड में मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। पद के विभाग के अनुसार शैक्षणिक योग्यता अलग अलग निर्धारित की जाएगी। उम्मीदवार की आयु सामान्यतः 18 से 40 वर्ष के बीच होना चाहिए। आरक्षित वर्गों को राजस्थान सरकार के नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए ₹600 तथा OBC, EWS, SC, ST एवं अन्य आरक्षित वर्गों के नियमानुसार शुल्क निर्धारित होगा। अंतिम शुल्क की जानकारी विस्तृत नोटिफिकेशन में दी जाएगी। आवेदन उम्मीदवार RSSB के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिक्रूटमेंट सेक्शन में जूनियर इंजीनियर भर्ती के ऑनलाइन आवेदन लिंक पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन के बाद आवेदन फॉर्म भरें, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म सबमिट करने के बाद उसकी कॉपी सुरक्षित रखें। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। अंतिम चयन मेरिट और निर्धारित पात्रता पूरी करने के आधार पर होगा। भर्ती के विस्तृत परीक्षा पैटर्न की जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी जाएगी। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी हमारे जॉब्स के साथ, नौकरियों के साथ। तो लेते हैं यहाँ पर एक अल्पविराम, मिलते हैं अल्पविराम के उस पार। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हर दिन उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास हैं। ये आपके भीतर संतोष का बीज बोता है। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: आप सभी का स्वागत है। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। आइए कुछ जानकारियां जो जुड़ी है हमारे स्थानीय क्षेत्र के साथ जानते हैं। जिले के समस्त नगरीय निकाय आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है जिले में, और उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर राजेश गोयल जी ने बताया कि इस संबंध में 24 अगस्त को प्रातः 11 बजे जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश्व सिंह तोमर जी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में होगी। राजकीय विधि महाविद्यालय में LLB प्रथम वर्ष 2026-27 में प्रवेश के लिए मेरिट के आधार पर आवेदनकर्ताओं की मुख्य प्रवेश सूची जारी कर दी गई है। प्रवेश प्रक्रिया बार काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली की मान्यता, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर की संबद्धता, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर की प्रवेश नीति की शर्तों के अनुसार होगी। अंतरिम प्रवेश सूची में शामिल अभ्यर्थियों को 1 और 2 सितंबर को सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक महाविद्यालय के कक्ष संख्या 8 स्टाफ रूप में व्यक्तिगत रूप से पहुंचकर काउंसलिंग में भाग लेना होगा। इस मोड पर एक श्रोता मित्र बात करना चाहते हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो नमस्ते, रेडियो मधुबन पर आपका स्वागत है।
1: नमस्कार, हमारी प्यारी बहन सुभा बहन जी नमस्कार। मैं दयाराम भाई बोल रहा हूँ।
0: नमस्ते दयाराम भाई, कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत ही अच्छा हूँ, बाबा की कृपा है आप सभी आरजे बहनों की, भाइयों की और हमारे प्यारे मित्रों की।
0: जी
1: और
0: जी।
1: इस वक्त तो मैं राजस्थान में हूँ, तो अभी कुछ दर्शन के लिए पैदल जा रहा हूँ।
0: जी,
1: और
0: कहाँ जा रहे हैं दर्शन के लिए?
1: श्रावण महीना शुरू होते ही बाबा के दर्शन के लिए रामदेवड़ा जा रहे हैं राजस्थान में।
0: रामदेवड़ा जा रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: बहुत सारे संघ जा रहे हैं, डीजे के साथ बहुत सारे जा रही है दर्शन के लिए।
0: जी, आपके घर से कितने किलोमीटर है दयाराम जी?
1: जी मेरे, मैं अभी बोल रहा हूँ यहाँ से लेके रामदेवड़ा 350 किलोमीटर है।
0: 350 किलोमीटर, और कब से चले हैं आप, कल से या आज से?
1: नहीं, मैं तो आज तो वहाँ नहीं जा रहा हूँ, दूसरी जगह जा रहा हूँ, लेकिन हमारे बच्चे है, हमारे रिश्तेदार है, हमारे भाई है, वो गए है, 15-20 जने गए है के साथ।
0: ओके, आप कौन से भोले बाबा के पास जा रहे हैं, क्या नाम है मंदिर का?
1: मैं तो जा रहा हूँ श्री हनुमान जी का दर्शन,
0: श्री
1: के
0: हनुमान
1: लिए,
0: जी
1: जो
0: का दर्शन
1: आ रहा हूँ, जो तीसा के पास लखनी है।
0: जी,
1: वहाँ आ रहा हूँ जो हनुमान जी के दर्शन के लिए। मैं पहले वहाँ रहता था तो बाबा के दर्शन करता था, और बहुत ही बाबा का प्रचार बहुत ही भारी है, और जो हम मनोकामना वहाँ लेके जाते हैं तो वो पूर्ण करते हैं श्री हनुमान जी।
0: श्री हनुमान जी,
1: संकट मोचन।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके गांव से कितने किलोमीटर दूर है हनुमान जी का मंदिर?
1: हनुमान जी का मंदिर अभी यहाँ से तो 100 किलोमीटर है।
0: 100 किलोमीटर जा रहे हैं आप? जी जी
1: जी जी जी, 100 किलोमीटर जाएंगे
0: जी। जो भी आप मनोकामनाएं लेकर के जा रहे हैं, और हमें भरोसा है कि वो आपकी फुलफिल होगा, पूरी होगी मन्नत।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, पूर्ण करते हैं हनुमान जी। मैंने कई ऐसे मन्नतें मानी थी, वो जरूर पूरी की है
0: जी।
1: और हमेशा हमारे साथ रही है और हमारे दिल में रहते हैं हनुमान जी, और हम उनकी भक्त है, वो हमारी रक्षा करते है। वैसे ही संकट मोचन है तो संकट में हमारा संकट में वो दूर कर देती है
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और ऐसा ही बहुत ही खूबसूरत भजन हनुमान जी का दीदी आप सुना देना, और सभी मेरे दोस्त, मेरे सुरेश भाई जोटाना, कंचन भाई, और भी बहुत सारे हमारे जितने भी नाम लूं तो उतना समय नहीं है, इन सभी को प्यार भरा राम राम नमस्कार।
0: नमस्ते,
1: सुनते रहो, मुस्कुराते रहो आरजे सुभा के साथ।
0: धन्यवाद। ओम शांति दयाराम जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपका, आपका यात्रा मंगलमय हो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मानसून के बीच माउंट आबू में शनिवार को दिन भर बादलों की आवाजाही रही, वादियों में हल्की धुंध छाई रही जिससे मौसम सुहावना बना रहा। सुबह कुछ देर धूप निकली लेकिन बाद में आसमान फिर बादलों से घिर गया। सुबह शाम हल्की ठंडक बढ़ने से पर्यटकों को मौसम का खास आनंद मिला। शुक्रवार को माउंट आबू में 6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि शनिवार सुबह 8 बजे तक 7 मिलीमीटर बारिश हुई थी। इस मानसून सीजन में अब तक 1071 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। बारिश के बाद पहाड़ियों और आसपास के वन क्षेत्रों में हरियाली और निखर गई। सिरोही जिले में महारो हस्ताक्षर महारी पहचान अभियान शुरू किया गया है। नरेगा स्थल पर 30 मिनट की पाठशाला, बड़े बुजुर्ग श्रमिक सीखेंगे अपना हस्ताक्षर। श्रमिकों को साक्षर बनाने शुरू किया गया अभियान। कलेक्टर रोहिताशु सिंह तोमर जी के अनुसार मनरेगा श्रमिकों को साक्षर बनाने के उद्देश्य से उजास अभियान शुरू किया गया है। प्रत्येक नरेगा स्थल पर मेट द्वारा कक्षाएं ली जा रही है और जिनमें श्रमिकों को हस्ताक्षर करने के साथ पढ़ना और लिखना सिखाया जा रहा है। दिसंबर तक अभियान के तहत जिले के 10,867 हस्ताक्षर श्रमिकों को साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं पर कुछ बातें सिरोही में अनादरा सर्किल में भाटकड़ा सर्किल की ओर जाने वाले पुराने बाईपास हाईवे से सटे अर्जुन नगर के डिस्काम का ट्रांसफार्मर झाड़ियों में छिप गया है। बारिश के बाद झाड़ियां इतनी बढ़ गई है कि ट्रांसफार्मर दिखाई नहीं देता। स्थानीय लोगों के अनुसार झाड़ियों के कारण शॉर्ट सर्किट से चिंगारियां निकलने का खतरा भी बना रहता है। ये सब सूचनाएं और बातें हम आपको पहुंचा रहे हैं दैनिक भास्कर के जरिए।

और इसके साथ साथ वीरवाड़ा की बात करें तो ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 9 में गायों के बाड़े के पास गंदगी फैली है, लोग परेशान हैं। प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत की आधार पर अगर बात करें तो ये गांव में हालात उलट है। वार्ड 9 के लोगों ने कई बार ग्राम पंचायत में शिकायत की लेकिन सफाई नहीं हुई। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी हमारे आसपास की सूचनाओं के साथ, घटनाक्रमों के साथ। यहीं पर मैं रुकती हूँ, फिर मुलाकात होगी अगली कड़ी में। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 107.8 FM आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। कुछ क्षणों के बाद सुनेंगे आप ऑल इंडिया रेडियो के सौजन्य से समाचार प्रभात। नमस्ते।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों से वार्ता की। वंदे मातरम के सम्मान और संरक्षण के संबंध में प्रस्ताव पारित। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन सीमा समाप्त करने की अधिसूचना जारी की। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आज। ब्रिटेन के सांसदों का संयुक्त राष्ट्र से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या मामले में हस्तक्षेप का आह्वान। बंगाल की खाड़ी में मालवाहक जहाज डूबा, चालक दल के 24 सदस्य थे सवार। भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना ने बचाव अभियान शुरू किया। और भारत की मानसी लाठर ने स्लोवाकिया में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। तन्वी और कोमल को कांस्य पदक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री मोदी ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचार और दृष्टिकोण पर आधारित होती हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ जुड़ाव को बढ़ाना है।
1: एक सोशल मीडिया पोस्ट में नितिन नबीन ने कहा कि भाजपा ने वंदे मातरम की ऐतिहासिक विरासत के सम्मान और संरक्षण के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें पार्टी ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 19 अगस्त को कांग्रेस कार्यक्रमों में वंदे मातरम के गायन को केवल पहले दो पैरा तक सीमित करने वाली वर्ष 1937 के प्रस्ताव को पुनः लागू किए जाने के निर्णय की कड़ी निंदा की। पार्टी ने राष्ट्रीय गीत के रूप में संपूर्ण वंदे मातरम के सम्मान, गरिमा, विरासत और राष्ट्रीय महत्व को बनाए रखने का संकल्प लिया। श्री नबीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। आनंद और प्रिया के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि की सीमा हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये निर्णय राजपत्र में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन की अधिसूचना के साथ प्रभावी हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इससे पहले कहा था कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन अवधि से संबंधित प्रावधानों पर पुनर्विचार करना आवश्यक था। बयान में कहा गया कि भारत में ये क्षेत्र विज्ञापन पर अत्यधिक निर्भर है, चाहे चैनल पेड हो या फ्री टू एयर। मंत्रालय का मानना है कि टेलीविजन उद्योग और डिजिटल मीडिया के बीच पर्याप्त प्रतिस्पर्धा है। टेलीविजन के लिए विज्ञापन अवधि सीमा 2006 में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 के तहत लागू की गई थी। तब से लेकर आज तक टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। उस समय टीवी चैनलों को प्रसारित करने के मुख्य माध्यम केबल टीवी की प्रसारण क्षमता सीमित थी और उपभोक्ताओं के पास बहुत कम विकल्प थे। केबल टीवी क्षेत्र के डिजिटलीकरण के बाद DTH, HISTV और IPTV सहित सभी प्लेटफॉर्म अब डिजिटल हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की दो दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भेंट के दौरान क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 इकाइयों के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। शिलान्यास समारोह के बाद लघु और मध्यम उद्यमों के साथ एक संवाद सत्र भी आयोजित किया जाएगा। इसके बाद रक्षा मंत्री का युवा भारती क्रीड़ांगन में ईस्ट बंगाल FC और मोहन बागान सुपर जॉइंट्स के बीच डूरेंट कप का फाइनल मैच देखने का भी कार्यक्रम है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि अहिंसा और शांति भारत की

0: संस्कृति का अभिन्न अंग है और किसी को भी अहिंसा के इन मूल्यों को इसकी कमजोरी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। श्री सिंह ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और सम्मान की रक्षा करना सरकार की सर्वोपरि कर्तव्य है।
1: अहिंसा का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि किसी को की हत्या मत करो, किसी को मारा नहीं जाना चाहिए। अहिंसा का अर्थ है मन, वचन और कर्म से किसी भी रूप से किसी को पीड़ा न पहुंचाई। अहिंसा के मूल्य को हमारी कमजोरी किसी भी सूरत में नहीं समझी जानी चाहिए। हमारे अहिंसा को गलत मत समझो, अहिंसा और शांति हमारी संस्कृति है।
0: रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने खरीफ और आगामी रबी मौसम के लिए उर्वरक विभाग की तैयारियों की कल समीक्षा की। नई दिल्ली में कल एक बैठक में उन्होंने कहा कि किसानों को उर्वरकों की निर्बाध और समय पर आपूर्ति करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत को विश्व की फार्मेसी की अपनी पहचान से आगे बढ़कर अनुसंधान, नवाचार और उभरती प्रौद्योगिकियों के बल पर विश्व की प्रयोगशाला के रूप में उभरना होगा। भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद में स्वास्थ्य सेवा में एआई को बढ़ावा देना विषय पर आयोजित हेल्थ केयर समिट में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की परिवर्तनकारी क्षमता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि एआई दवाओं की खोज में तेजी ला सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक होगी। इस मंत्री स्तरीय सम्मेलन में ब्रिक्स के सभी 11 देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडल खेलों में आपसी सहयोग मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। इसमें खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी भाग लेंगी। कार्यक्रम में ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग प्रतियोगिता, द्विपक्षीय बैठक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शामिल होंगे। बैठक के समापन पर ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 अनुकूलन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आधारित है। ब्रिटेन के 70 से अधिक सांसदों ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बिगड़ती स्थिति पर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। उन्होंने पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या रोकने और नागरिकों की रक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की है। इस क्षेत्र में पाकिस्तान की सेना की निर्मम कार्रवाई में सैकड़ों लोगों के मारे जाने और घायल होने के बाद ये अपील की गई है। इस क्षेत्र में कड़ी नाकाबंदी और कर्फ्यू के कारण संचार व्यवस्थाएं ठप हैं। इस बीच बलूचिस्तान के मस्तुंग जिले में बलूच यकजहती कमेटी ने आम नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना के ड्रोन हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे सरकार प्रायोजित आतंकवाद करार दिया है। इसमें 4 लोग मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। BYC ने बताया कि शुक्रवार को मस्तुंग के खड़कुचा इलाके में एक ड्रोन हमले में 4 मजदूर मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। पनामा के ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। इनमें चीनी नागरिकों सहित चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। एक रिपोर्ट।
2: अधिकारियों ने बताया कि ओडिशा तट से लगभग 240 समुद्री मील दूर ये दुर्घटना हुई। जहाज MV ओशन विनर के चालक दल में चीन के 20, म्यांमार के 3 और एक बांग्लादेशी नागरिक सवार था। जहाज ओडिशा से करीब 72,000 मीट्रिक टन लौह अयस्क लेकर 20 अगस्त को पारादीप तट से सिंगापुर के लिए रवाना हुआ था। भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। अब तक 2 लोगों को बचाया जा चुका है। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: भारतीय वायुसेना ने हाल ही में 2 अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यासों में सफलतापूर्वक भाग लिया है। इनमें ऑस्ट्रेलिया में पिच ब्लैक 2026 और मलेशिया में उदार शक्ति 2026 अभ्यास शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
3: रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 2 देशों के बीच इन अभ्यासों से भारतीय वायुसेना ने परिचालन क्षमता, उन्नत सामरिक समन्वय और हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक रक्षा साझेदारी और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। मंत्रालय ने कहा है कि रॉयल ऑस्ट्रेलियन वायुसेना द्वारा आयोजित अभ्यास पिच ब्लैक के दौरान भारतीय वायुसेना ने अपने अग्रिम पंक्ति के राफेल विमानों के साथ 20 से अधिक भागीदारी देशों की वायुसेनाओं के साथ मिलकर अभ्यास किया। उधर मलेशिया में आयोजित सैन्य अभ्यास उदार शक्ति के दौरान भारतीय वायुसेना के चालक दल ने रॉयल मलेशियन वायुसेना के साथ मिलकर उच्च तीव्रता वाले लड़ाकू मिशन और संयुक्त सामरिक युद्ध अभ्यास किए। आरजू और प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने जयपुर में अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा में हुई अनियमितताओं के लिए एडुकेटी करियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। प्रभावित परीक्षार्थियों के लिए पुनर्परीक्षा अगले महीने की पहली तारीख को जयपुर में आयोजित की जाएगी। स्लोवाकिया में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने 3 पदक और जीत लिए हैं। मानसी लाठर ने रजत पदक और तन्वी गुंदेश मखदूम और कोमल ने कांस्य पदक हासिल किए। और भारत और श्रीलंका के बीच वर्तमान क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच आज कोलंबो में शुरू होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से खेला जाएगा। भारत पहला टेस्ट 165 रन से जीतकर श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अन्य खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में कल विश्व एथलेटिक्स रजत स्तरीय प्रतियोगिता में भारत के रोहित यादव ने भाला फेंक और मुरली श्रीशंकर ने लंबी कूद स्पर्धाओं में जीत हासिल की। रोहित ने अपने छठे और अंतिम प्रयास में 87.68 मीटर का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया। पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में मुरली श्रीशंकर ने 8.07 मीटर की छलांग लगाकर पहला स्थान हासिल किया। महिलाओं की लंबी कूद में एनसी सोजान पहले, शैली सिंह दूसरे, जबकि मुबस्सिना मोहम्मद तीसरे स्थान पर रहीं। नाइजीरिया के चुकवु एबुका एनेक्वेची ने पुरुषों के शॉटपुट का खिताब जीता, जबकि इटली के जेन वियर दूसरे स्थान पर रहे। इसके अलावा खेल मंत्रालय ने अगले महीने से जापान में शुरू होने वाले एशियाई खेलों के लिए 492 सदस्यीय दल को मंजूरी दे दी है। इस बार एथलेटिक्स के सर्वाधिक 73 प्रतिभागियों को शामिल किया गया है।
0: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और विदर्भ में दिनभर तेज वर्षा का अनुमान है। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर भारत में भी अगले 2-3 दिन तक इसी तरह के मौसम का अनुमान है। इस बीच अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मंगलवार तक गरज चमक के साथ तूफान की आशंका है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी के नए पदाधिकारियों की नई दिल्ली में बैठक की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भाजपा जेनजी से जुड़ेगी, 14 से 25 वर्ष के युवाओं से जुड़ने के लिए पार्टी अभियान चलाएगी। जनसत्ता का शीर्षक है, राष्ट्रगीत के सम्मान से किसी तरह का समझौता स्वीकार नहीं, भाजपा ने वंदे मातरम पर कांग्रेस के निर्णय की आलोचना की। अमर उजाला के अनुसार कांग्रेस के पूरा वंदे मातरम न गाने के खिलाफ प्रस्ताव पास, विकसित भारत का उद्घोष भी वंदे मातरम। दैनिक जागरण ने वंदे मातरम पर घिरी कांग्रेस शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, वंदे मातरम के दो ही पद गाने की कांग्रेस की जिद से ये साफ है कि सोनिया गांधी ने 15 अगस्त को पार्टी मुख्यालय पर उसके पूर्ण गायन पर आपत्ति जताई थी। पंजाब केसरी का शीर्षक है, गोरखा मुद्दे पर समझौते की तैयारी, सरकार ने गठित की समिति, चिकन नेक को मिलेगी अवैध सुरक्षा। गृहमंत्री अमित शाह, गोरखा नेताओं और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच हुई बैठक का उद्देश्य वर्तमान समस्याओं का समाधान करना। नवभारत टाइम्स ने विदेश मंत्री जयशंकर का बयान देते हुए लिखा है, पाक यूनिक आतंक फैलाता है, बोले चीन के साथ अच्छे रिश्ते दोनों के हित में। अमरीकी राजदूत सर्जियो गौर ने कहा, भारत यूएस संबंध ट्रंप और मोदी की दोस्ती पर आधारित। राजस्थान पत्रिका ने नया युद्ध शीर्षक से दिया है, ईरान की घेरेबंदी के बीच अमरीका में साइबर हमले, ड्रोन मिसाइलें शांत, अब यूएस और ईरान के बीच साइलेंट वॉर। अमर उजाला के अनुसार मुनीर के खिलाफ पाकिस्तानी सेना में असंतोष, रावलपिंडी की सुरक्षा बढ़ाई गई, पूर्व सैनिकों के संगठनों में भी बढ़ी नाराजगी, सुरक्षा बलों पर हमले को बताया कारण। दैनिक जागरण का शीर्षक है, 1 सितंबर से ई बोर्डिंग पास दिखाकर हो सकेगी विदेश यात्रा, एयरपोर्ट पर फिजिकल बोर्डिंग पास और स्टैंपिंग व्यवस्था खत्म होगी। दैनिक भास्कर ने खास खबर में दिया है, चैटबॉट नहीं, बुजुर्ग सबसे बड़े लाइफ कोच, संकट में सर्च के बजाय संवाद करें, समाधान के साथ नया नजरिया भी मिलेगा। 1500 अमरीकी बुजुर्गों की युवाओं को सीख, जो हाथ में है उसी पर फोकस करें। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार कांगड़ा की अंशिका और प्रवीण राणा बने प्रेरणा स्रोत, एक साथ की LLB, बेटी टॉपर और पिता तीसरे स्थान पर। राजस्थान पत्रिका के अनुसार 3 साल बाद विदेश में टेस्ट सीरीज जीतने उतरेगी भारतीय टीम, श्रीलंका के साथ 2 टेस्ट की श्रृंखला में टीम इंडिया 1-0 से आगे।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों से वार्ता की। वंदे मातरम के सम्मान और संरक्षण

0: इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: अभी बजे हैं सुबह के 9। एक मिनट का समय स्वयं को दे।

0: आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकाती कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए अपनी खुशी बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर पूनम जी हमारे साथ हैं, जिन्हें आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। आप होम्योपैथ विशेष रूप से प्रैक्टिस करते हैं काफी लंबे समय से, और होम्योपैथी के बारे में लोगों को बताना ये आपका हॉबी है और इसके लिए आप हमेशा पूरे भारत भर में घूमते रहते हैं। तो आइए डॉक्टर पूनम जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। नमस्ते पूनम जी, कैसे हैं आप?
1: नमस्ते, ओम शांति सभी को। बहुत
0: ओम
1: बढ़िया।
0: शांति। और मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, अभी वर्तमान में आप कहाँ पर हैं?
1: जी, मैं प्रैक्टिस करती हूँ हैदराबाद में। आज मुझे प्रैक्टिस करते 30 साल हो गए हैं, और मैंने
0: जी
1: पढ़ाई की है रायपुर होम्योपैथिक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से। और शुरू से ही मुझे
0: जी जी जी
1: मेडिसिन फील्ड से, मेडिसिन में मुझे बहुत इंटरेस्ट रहा है, तो मुझे होम्योपैथी फील्ड में मुझे रैंक मिला। हेलो,
0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम, बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर पूनम जी उपस्थित हैं जिनसे हम लोग बातें कर रहे हैं, और आप रायपुर से होम्योपैथी का ये कोर्स किया है। जी पूनम जी बताइए आगे।
1: और मैं शादी करके फिर हैदराबाद, फिर आगे मैरिज, शादी करके मैं हैदराबाद आ गई, और जिस दिन से आई हूँ आज 30 ईयर्स से मेरी प्रैक्टिस चालू है, और इसमें मुझे बहुत ही सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट भी मिल रहे हैं। और ये चीज है, मुझे इट इज लाइक
0: जी,
1: और इसमें साइड इफेक्ट भी बहुत कम है, पर बहुत बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि स्लो है, बट ये स्लो नहीं है, ये एक आर्ट है, एक ऑल्टरनेटिव साइन है, हीलिंग प्रोसेस है, एक पर्सन टू पर्सन इंडिविजुअलाइजेशन करना रहता है इसमें। और ये दवाइयाँ भी बनती है बहुत सारे किंगडम से, जैसे प्लांट किंगडम से भी दवाइयाँ बनती है, एनिमल किंगडम से भी बनती है, मिनरल किंगडम से भी बनती है, और इतनी पोटेंटाइज फॉर्म में, इतने लो डोजेस में पेशेंट के अच्छे बड़े बड़े केसेस भी ठीक हो जाते हैं। पर इसके खाली ये साइंस का एक ही है, इट इज एन आर्ट, ये आर्ट ऑफ केस टेकिंग है। तो हम हर पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करते हैं, जैसे हम आज बुखार किसी को आता है तो पैरासीटामोल दे देते हैं, कंप्लीट कवर हो जाता है, कम हो जाता है, पर होम्योपैथी में ऐसा नहीं है। इट इज अ आर्ट ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, पर्सन टू पर्सन इंडिविजुअल होता है। आज आपको बुखार आया है तो मैंने एक दवाई चूज करी, आप दूसरे उसी समय दूसरे पेशेंट को बुखार आया है, सेम सिम्टम्स है, उसमें थोड़े चेंजेस है तो दवाई दूसरी हो जाती है। फीवर के लिए ही आज बहुत सारी दवाई रहती है, हेडेक के लिए भी वेरी करती है, एक फिक्स मेडिसिन। तो इसमें क्या, अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स हम पेशेंट का केस टेकिंग पहले समझते हैं, हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इनका क्या है, ट्रिगरिंग फैक्टर क्या है, एक्साइटिंग फैक्टर क्या है, किस वजह से पेशेंट परेशान हो रहा है, पहले पेशेंट को हम समझते हैं।

0: हैं, समझ के। और एक्यूट केस में तो उतना ज्यादा डिटेल स्टडी लेने की जरूरत नहीं है, बट जैसे क्रॉनिक केस आता है, जैसे रूमेटिज्म है, क्रॉनिक कोई भी क्रॉनिक लीवर डिजीज है, या कुछ भी ले लीजिए, गैस्ट्राइटिस है, एसिडिटी लॉन्ग टर्म से जो चलती आ रही है, तो उसके सब एक्साइटिंग फैक्टर्स है, ट्रिगरिंग फैक्टर्स रहते हैं। वो जो स्ट्रेस पेशेंट बहुत सालों से फेस करते आ रहा है, उसको हम समझते हैं कहाँ पे उनके ब्लॉक से, कौन से लेवल, कौन से लेयर पे इनकी पैथोलॉजी आ रही है, और हम उसको समझ के उसके हिसाब
1: जी
0: से हम दवाइयाँ सेट।
1: जो है होम्योपैथी में और
0: पेशेंट है
1: इस
0: जैसे
1: तरह से डिफरेंस
0: उससे का, हाँ, राइट। अब जैसे हम दवाइयों का सिलेक्शन भी करते हैं, मैं आज दवाई का नाम आपको नहीं रिवील करती कि कोई भी दवाई, क्योंकि अभी मैं डॉक्टर्स के बीच में नहीं हूँ। एक सिंपल एक जनरल अवेयरनेस प्रोग्राम है। अब एक पेशेंट आया, एक बच्ची आई, बच्ची को उसकी मदर ने कहा कि भाई तू अभी मैं काम कर रही हूँ, तुम बीच में मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। फिर भी कुछ रीजन से उसकी बेटी को कुछ याद आया, उसने उसकी मदर को अंदर जाके उसको डिस्टर्ब किया, उसने मदर ने उसको अच्छी डांट लगाई,
1: बिल्कुल
0: वो इतनी ज्यादा डिस्टर्ब हो गई बच्ची की, वेरी नेक्स्ट डे उसको बुखार आ गया। तो हमने क्या किया, अब वो पेशेंट हो गई हमारी, वो पेशेंट को हमारे पास लेके आ गए, तो हमने पूछा कि भाई इसको कैसे बुखार, क्योंकि कल से बहुत हाई फीवर है, कंट्रोल में नहीं आ रहा है। तो हमने पूछा क्या हुआ, इसने क्या खाया पिया, फिर उसने बात बात में बताया कि कल मैंने उसको बहुत जोर से डांटा था, और वो एकदम से घबरा गई थी, बहुत फियरफुल कंडीशन में आ गई थी, और बुखार में भी वो चाहती कि वो, उसको आइसोलेशन नहीं पसंद, उसको मदर, स्पेशली मदर के साथ रहनी चाहिए, और मदर उसको ज्यादा टाइम नहीं दे पा रही थी। तो उसके उस लेवल को हम फिर ट्रिगरिंग फॉर एलिमेंट फ्रॉम यानी एंगर एंड एलिमेंट फ्रॉम आइसोलेशन लेके हमने एक दवाई सेलेक्ट करी उसके लिए, और वो सिंगल डोज देने से उसका टेम्परेचर विदाउट एनी एंटीबायोटिक, एनी पैरासिटामोल, होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक हो गया। तो जैसे टाइप ऑफ हीलिंग, क्योरेटिव प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि दवाई देते हैं थोड़े देर तक रहेगा ठीक फिर होगा, एक बार टैपर होने जाता है, होते जाता फीवर, ऐसे हर एक्यूट कंडीशन का रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है। तो ये सब डिपेंड्स करता है स्ट्रेस, अब हर पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, एक्सप्रेशन, परिस्थिति, सब एक घर में एक परिस्थिति आ रही, फॉर एग्जाम्पल एक मैं बता रही हूँ,
1: हाँ जी
0: 5 लोग रह रहे हैं, अब वो परिस्थिति सभी के लिए हो रही है, एक बहुत ही एग्रेसिव वे से रिएक्ट करेगा, एक बहुत कामली उसको एक्सेप्ट करेगा, एक वायलेंटली उसको बहुत शाउट करेगा, तो हर के सिचुएशन अलग है। तो हम वी अंडरस्टैंड द माइंड, तो उसके उस मोमेंट पे, वो परिस्थिति पे पेशेंट कैसा उसको एक्सप्रेस करता है, उसको वो कंडीशन को कैसे कोप करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हम होम्योपैथ डॉक्टर्स को। इसलिए होम्योपैथी को इस आर्ट ऑफ साइंस कहा जाता है। इट इज अ आर्ट टू अंडरस्टैंड द पेशेंट एज ए होल। हम ऐसा नहीं बोलते कि इसको ये डिजीज है, ये टाइफाइड है, इसको जॉन्डिस है, वी टेक द सिम्टम्स, उसको कब बुखार चढ़ रहा है, कितने बजे चढ़ रहा है, रात को ज्यादा है कि दिन में ज्यादा है, पानी ज्यादा पीता है कम पीता है, उसका नेचर कैसा है, वो काम रहता है कि बहुत उसका पेस ऑफ ज्यादा है, वो फास्ट रहता है, बुखार में है, या कोई भी कंडीशन, तबीयत अच्छी नहीं तो भी वो एक्टिव रहता है, उस कंडीशन को ले लेके हम पेशेंट की रेमेडीज चेक करते हैं, और उससे हमारे को अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, और वे सब क्योरेटिव रहते हैं। हर पैथी का लिमिटेशंस रहता है, इसके भी लिमिटेशंस है, ऐसा नहीं कि नहीं है, पर मैक्सिमम चीजें हर छोटे से बड़े हर किसी को ये हेल्पफुल रहे, और बहुत सिंपल है, नो साइड इफेक्ट, और ऐसा भी नहीं है कि इट इज स्लो, बहुत फास्ट रिजल्ट आता, अगर राइट रेमेडी सेलेक्ट हो गई, अगर पेशेंट ने केस टेकिंग अच्छे से दिया, केस हर दिल की हर चीज, हर फीलिंग, हर एक्सप्रेशन अच्छे से बताया, और डॉक्टर एकदम एक्सपर्ट उसको एकदम शांति से एब्जॉर्ब करके उसको परसीव करके एनालिसिस करेगा, तो
1: जी
0: डेफिनेटली राइट रेमेडी निकलती है और पेशेंट ठीक होते ही है।
1: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया डॉक्टर पूनम जी। आशा करूंगा कि हमारे सभी दर्शकों को विशेष रूप से होम्योपैथी किस तरह से काम करता है और किस तरह से होम्योपैथी के साथ डील करते वक्त जो है पेशेंट को एज ए होल हमें देखना चाहिए, ये आपने बताया। और निश्चित तौर पे कोई चीज आती है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है और कारण को जानने के बाद ही हम इलाज कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। और आशा करूंगा कि हमारे दर्शकों को होम्योपैथी से रिलेटेड कोई सवाल हो तो जरूर आप अपने कमेंट सेशन में पोस्ट कर सकते हैं ताकि हम आपको वो सवाल डॉक्टर साहिबा से पूछ सकें। तो आइए इस बीच हमारे साथ संतोष जी हिमाचल से जुड़ गए हैं, तो मैं चाहूंगा कि डॉक्टर पूनम जी के स्वागत में एक छोटा सा गीत 2 मिनट का आप जरूर सुनाएं। स्वागत
2: ओम शांति
1: ओम शांति
0: ओम शांति।

0: ओम शांति।
1: ओम शांति जी। बहुत ही बढ़िया, बहुत
0: ओम
1: सुंदर गीत आपने
0: शांति।
1: गाया, धन्यवाद,
0: थैंक
1: शुक्रिया आपका। आइए आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर पूनम जी से फिर मैं जुड़ना चाहूंगा, और कोई भी होम्योपैथी से रिलेटेड सवाल हो तो संतोष जी आप भी पूछ सकते हैं। और आइए आगे बढ़ते हैं, होम्योपैथी की जब हम लोग बात करते हैं तो काफी बारीक बारीक गोलियां होती हैं, छोटी छोटी गोलियां, उसको फिर जो है खाना होता है, तो निश्चित तौर पे इतनी छोटी गोलियों में किस तरह से हम लोग समझे कि ये बहुत ज्यादा काम करता है, क्या उसमें होता है एक्चुअली में मेडिसिन, किस तरह से उसको बनाया जाता है, थोड़ा सा वो बताइए।
0: एक्चुअली जो होम्योपैथी जो गोलियाँ हैं जो आप देखते हैं छोटी वाली, वो शुगर ऑफ मिल्क से बनी हुई रहती है। उसमें
1: अच्छा
0: क्या करते हैं, पोटेंटाइज डाइल्यूशंस बनते हैं। जैसे मैंने आपको
1: अच्छा
0: बताया पहले, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मिनरल किंगडम की दवाइयाँ रहती है। जैसे कोई फ्लावर है, किसी के स्टेम से दवाई बनती है, पोटेंटाइज लिक्विड अल्कोहल के साथ मिक्स करके बनता है वो लिक्विड हम वो मिल्क में डालते हैं। और उसके पावर्स रहते हैं, 6 पोटेंसी, 30 पोटेंसी, 200, 1 m, 50 m, 10 m, 50 m, cm, ऐसा पावर्स जाते हैं, cm तक जाते हैं।
1: बिल्कुल
0: वो हम उसमें डालते हैं और उसके हिसाब से हम पेशेंट की सेंसिटिविटी देख के उसके बाद हम चॉइस करते हैं पोटेंसी। पोटेंसी जैसे अपन पावर बोलते हैं ना, हम होम्योपैथी में पोटेंसी बोलते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट्स
1: अच्छा
0: पोटेंसी सेंसिटिविटी हम उनको पोटेंसी प्रेस्क्राइब करते हैं। और वो 4 पिल्स,
1: बिल्कुल
0: 5 पिल्स, खाली वो वर्क कहाँ से करता है, सलाइवा से। बिकॉज वी आर टेकिंग पेशेंट एज ए होल, हम एक सिस्टम पे काम नहीं करते, पूरे एज ए होल, पूरी वाइटल फोर्स रहती है, पूरे इम्यून सिस्टम पे वर्क करती है। तो थ्रू आउट द बॉडी में कहाँ कहाँ पे भी प्रॉब्लम रहती है, वो हर चीज में सही वर्क कर लेती है, अगर राइट रेमेडी सेलेक्ट हुई है तो। और वो सलाइवा से ही काम, इसीलिए हम वो गोलियां जो रहती है ना, कभी भी डॉक्टर बोलते हैं हाथ मत लगाइए, दवाई खाने के बाद पानी मत पीजिए। क्यों नहीं पीते, क्योंकि वो सलाइवा में डिजॉल्व होके पूरे सिस्टम में जाती है, थ्रू आउट
1: चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया कि छोटी छोटी गोलियां जो है उसमें काफी स्ट्रेंथ होती है जो आपने बताया, और वो हमारे सलाइवा से टच होकर फिर मेडिसिन जो है वो हमारे बॉडी पे काम करता है, ये
0: वर्क
1: आपने
0: करती है।
1: बताया। जी, चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया, होम्योपैथी कैसे काम करता है, उसकी दवाइयाँ कैसे बनती है, काम करती है, ये आपने बताया। अच्छा, आपने होम्योपैथी अवेयरनेस के लिए काफी भ्रमण किया है पूरे इंडिया में, तो कुछ अपनी यात्राओं के बारे में बताइए जिस पर आपने काम किया।
0: सॉरी, आवाज नहीं आ रही। सॉरी सॉरी, आवाज नहीं आ रही। हाँ बोलिए।
1: जी, मैं चाहूंगा कि आप अपनी कुछ भारत में जो होम्योपैथी को लेकर आपने अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए हैं उसके बारे में बताइए।
0: जी, हमारा यहाँ पे हैदराबाद में ही हमारे बहुत सारे ग्रुप्स हैं। जैसे हम लोग मिलके हम कैंप करते हैं और प्लस हम सेमिनार्स कंडक्ट करते हैं। हम सेमिनार्स जाके अटेंड करते हैं जहाँ हम अपडेट होते हैं, क्योंकि हर डॉक्टर टू डॉक्टर प्रैक्टिस सेम नहीं रहती, बिकॉज हर की अंडरस्टैंडिंग अलग है। अब
1: बिल्कुल
0: मैं ही एक केस को देखती हूँ, उसको अलग तरीके से देखती, वही दूसरा डॉक्टर उसको अलग तरीके से देखता है, वही थर्ड डॉक्टर अलग तरीके से देखता है। तो इसके लिए हमारे को बहुत इंटेंसिव स्टडी करनी पड़ती है। तो हम इसकी कॉन्फ्रेंस गैदरिंग हमेशा मीटिंग्स वीकली वंस, 15 डेज वंस हम पूरे डॉक्टर्स मिलके इसका करते हैं। और प्लस हम जैसे थोड़े जो ले मैन रहते हैं जो सोसाइटी में, जिनको देखो विजुअली मैक्सिमम लोगों को इंजेक्शन समझ में आता, होम्योपैथी समझ में नहीं आती, तो हम उन लोगों को ये बताते हैं कि भाई इससे भी ठीक होते हैं। और जब 100, 50, 100 लोगों में हम देते, तो 20% भी अगर ठीक होता, 20 लोग भी, वो भी हमारे लिए बहुत है कि उनको बहुत सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिलता, वो टर्न अप होते हैं और फिर इजीली
1: बिल्कुल
0: हीलिंग पावर से विदाउट साइड इफेक्ट अच्छे से ठीक हो जाते हैं। क्योंकि मोस्टली लोग चाहते कि जगह, तो विश्वास सबसे बड़ी चीज है।
1: जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि एक्चुअली लोग जो है विश्वास सबसे बड़ी चीज, ये भी आपने बताया, और एक बार विश्वास हो जाता है तो चीजें आसान हो जाती हैं। जी
0: और हम उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट, क्योंकि हम जब पेशेंट की केस टेकिंग भी लेते हैं तो हमारी इतनी लंबी केस टेकिंग होती है, यानी हम उसका लाइफ स्पैन पूछते हैं, चाइल्डहुड पूछते हैं, उनका लाइफ में क्या क्या इवेंट्स हुए, फैमिली में कितने हैं, सबके साथ रिलेशनशिप कैसा है, तो वो ऐसी ट्यूनिंग बैठ जाती है कि उन लोग अपनापन फील करते हैं। उसके बाद हम उनको काउंसलिंग भी दे देते थोड़ी बहुत पॉजिटिव वे से, कि कुछ चीज़ें, हर चीज़ का ऐसा नहीं है जो हो रहा अच्छे के लिए हो रहा, पॉजिटिव करके थोड़ी चीज़ें इग्नोर करते हैं, तो उससे भी पेशेंट मेंटली काफ़ी सही हो जाता है। थोड़ा कुछ अपन को ऊपर वाले पर भी छोड़ना चाहिए, अपना काम है पुरुषार्थ करना।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका होम्योपैथी में कैसे आना हुआ?
0: जी देखिए, मेरे को तो शुरू से ही क्या है कि मैनकाइंड के लिए कुछ अच्छा, ये जो पेन्स है, सफरिंग्स है, उससे मुझे बहुत तकलीफ होती थी, यानी किसी को भी
1: जी
0: देखती
1: जी
0: थी बचपन में, तो मैं बहुत हेल्प करने जाती थी। फिर मैंने हमारे, मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ, तो वहाँ पे PMT एग्ज़ाम होती है मेडिसिन के लिए, तब मैंने इसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम लिखी, तब मेरे मार्क्स MBBS के लेवल के नहीं आए, थोड़े नीचे
1: जी
0: उसमें थे, तो मुझे इसमें होम्योपैथी में सीट मेरी लगी हुई थी, तो मैंने उसी में एडमिशन ले लिया। चलो ये भी जाना थे, तब तब तो मुझे खुद को भी ख्याल नहीं था कि होम्योपैथी इतनी वंडरफुल साइंस है। फिर उसमें एडमिशन होते हैं क्या, एक 1-2 मंथ में सब पढ़ाई वगैरह शुरू हुई, धीरे धीरे पता चला कि नहीं भाई, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छा इससे रिजल्ट भी मिलते, इट इज़ अ साइंटिफिक साइंस, इट इज़ नॉट लाइक दिस ओनली, इसमें
1: जी। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 FM। बाद में मुलाकात है, इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और हमारे साथ डॉक्टर पूनम जी हैं, होम्योपैथिस्ट, जिनसे बातें हो रही हैं और निश्चित तौर पे उनकी बातें हम लोग सुन रहे हैं, तो अच्छा लग रहा होगा आपको। जी
0: तो थायराइड है, जैसे मैं उनकी एलोपैथिक मेडिसिन भी बंद करा देती हूँ और मैं पूरी टोटली होम्योपैथी पे उनको स्टार्ट कर देती हूँ 2-3 महीने तक, और उस उनका पैरामीटर चेक करते थे आफ्टर 3 मंथ्स, इनकी पूरी एलोपैथिक दवाइयाँ बंद तो तभी हो कर देती, होम्योपैथी भी बंद कर देती, और फिर उनको बोल देती, छोड़ देती पेशेंट्स को, आप अपने हिसाब से एवरी 3 मंथ्स अपना थायराइड प्रोफाइल चेक करते रहिए, और पेशेंट डेफिनेटली 100% क्योर हो जाता है। तो ऐसे रिजल्ट भी मैंने अपने प्रैक्टिस में भी देखे, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा पैशन बढ़ गया इसमें, तो मैं खुद बहुत सारी चीज़ें मैं करती रहती हूँ कि नहीं इसमें अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, तो पेशेंट्स को क्यों कोई चीज़ लाइफ लॉन्ग क्यों खानी है, जब इससे रिजल्ट होके क्योर हो ही जा रहे हैं, तो इस वजह से मेरा इंटरेस्ट इसमें और बढ़ते गया बढ़ते गया। और सभी कम्युनिटी के जहाँ इजी अफोर्डेबल है, सभी लोग ले सकते हैं, और कोई पेन नहीं है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, आराम से आप खा पी सकते हो,
1: बिल्कुल
0: कोई तरीके की वीकनेस नहीं है, तो बहुत अच्छा है। इस वजह से मुझे तो आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि मैंने मैंने 30 ईयर्स में, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत अच्छा, आई एम रियली ब्लेस्ड दैट आई एम होम्योपैथ।
1: चलिए डॉक्टर पूनम जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बातें सुनकर, और हमारे मित्रों को भी अच्छा लग रहा है। तो आइए, जैसे कि अभी मौसम में जैसे वायरल आ जाता है या वायरल फीवर होता है, सर्दी बुखार होता है, तो इसमें होम्योपैथी किस तरह से काम करता है और कैसे आप ट्रीट करते हैं, थोड़ा सा बताइए।
0: हाँ, जैसे अभी तो काफ़ी वायरल फीवर है, हॉट डेज कोल्ड नाइट्स है, इन हॉट डेज ऐसा है कि दिन भर धूप रहती है, शाम को थोड़ा ठंडा हो जा रहा है, या तो लोग रात में AC में सो जा रहे हैं, या ठंडी चीज़ें खा ले रहे, तो गला ख़राब हो जा रहा है या वायरल हो जा रहा है। तो इसमें हम कैसे सिम्टम्स देते हैं, जैसे आज का ही केस बताती हूँ, एक बच्ची आई मेरे पास, उसको हाई फीवर है, और उसने क्या कहा है, हाँ उसे दोपहर को फुल धूप से आई थी, उसने आइसक्रीम खाया था, बोले कि मैडम, और उसको थोड़ा इरिटेशन होने लगा रात में थ्रोट में, और सुबह उसको फीवर आ गया। तो हमारे पास एलमेंट्स फ्रॉम टेकिंग कोल्ड थिंग्स करके एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है होम्योपैथी में, जिसमें हम एक ऐसी दवाई हिपारसस बोलते हैं, जो उससे क्या होता है कि वो पेशेंट हमेशा चिल्ली रहता है, वेरी सेंसिटिव टू कोल्ड रहता है, वो दवाई की कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो वो उससे मैच हो रही थी पेशेंट से, तो मैंने उसको हिपारसस आज सुबह ही दे दिया क्लिनिक पे, 11:30 बजे वो मेरे पास आई थी आज। उसका शाम को 6:30 बजे तक उसकी मदर का फोन आ गया कि मैडम उसका टेम्परेचर अभी 99 के नज़दीक है, और 100% श्योर मैं बताती हूँ, 8 बजे तक, 8:30 तक अभी तक उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो गया होगा, जो हाई फीवर है उसको, ना तो मैंने उसको पैरासीटामोल खाने का सजेस्ट किया है, वो तो हम एलोपैथिक तो सजेस्ट करते नहीं है बिकॉज ऑफ बींग होम्योपैथ, ना ही उसने एंटीबायोटिक्स चालू करी और डेफिनेटली शी विल गेट क्योर. यानी हम एलमेंट्स फ्रॉम ईटिंग कोल्ड थिंग्स, एलमेंट्स फ्रॉम गेटिंग, यानी हम एलमेंट्स यानी क्या ट्रिगरिंग रहे, कौन से वजह से इसको हो रहा है, उससे हमारे पास दवाइयाँ रहती है. वो सिमिलम होना चाहिए, दवाइयों से सिम्टम्स मैच होने चाहिए, तो सिलेक्टेड रेमेडी बहुत अच्छी तरह काम करती है. जैसे अभी
1: बिल्कुल
0: का मैंने आपको ये केस बताया, एक जैसे आइसक्रीम खाने से, अभी जैसे वायरल फीवर ही है, तो फीवर में अगर पेशेंट बहुत डल है, थर्स्ट लेस है और बिल्कुल लिथार्जिक है, उठने का भी मन नहीं कर रहा है, बड़ी मुश्किल से अपने आप को उठा के है, उसकी मेंटल एक्टिविटी भी बहुत स्लो है, वीकनेस है, बॉडी पेन्स है, तो हमारे पास एक ऐसी रेमेडी है जेल्सिमियम, जहाँ उसमें ऐसा रहता है पेशेंट थर्सलेस रहता है, बहुत डल रहता है, उसका स्टेट ऑफ माइंड इतना डल रहता है, उसका बॉडी पेन्स एक्सट्रीम रहता है, वो पेशेंट भी थर्सलेस रहता है, और जेल्सिमियम रेमेडी से इतना मैच होता है, तो हमने उसको जेल्सिमियम रेमेडी दे देनी है, और देते ही पेशेंट को बिल्कुल 7-8 घंटे में ठीक. यानी
1: बिल्कुल
0: एक्यूट कंडीशन बता रही हूँ, आपने मुझे वायरल अभी चल रहा है, तो दिस इज एक्यूट कंडीशन, ये क्रॉनिक नहीं चल रहा है. पेशेंट को कल अचानक से सडन फीवर आ गया, सडन उसको खांसी हो गई, सडन ठंडी लग रही है, सडन सब हो रहा है, डायरिया हो जा रहा है सडन, तो इसे एक्यूट कंडीशन की मेडिसिन रहती है, जहाँ इमीडिएट हम एक टाइम पैटर्न से या 2-2 घंटे से या एक 3 टाइम से डोज या 4 टाइम से डे ऐसा डोज देके हम पेशेंट्स को बहुत अच्छी तरह से निकाल सकते हैं, और रिजल्ट अच्छे ही आते भी.
1: बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर पूनम जी, काफी अच्छी बात आपने बताया कि कैसे आप सिम्टम्स देखकर जो है होम्योपैथी मेडिसिन

0: दिया जाता है, और इससे जो है लोगों को और जो पेशेंट है उनको जल्दी से रिलीफ मिल जाता है, ये आपने कहा। निश्चित तौर पे जब हम लोग सिम्टम देख के दवा देते हैं तो उसका असर भी अच्छा हो जाता है। अब आइए, मैं एक और बात मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कि होम्योपैथी मेडिसिन में कौन कौन सी बीमारियाँ ठीक होती है? सभी बीमारियों के लिए होम्योपैथी है या पर्टिकुलर बीमारी के लिए? क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि हम लोग ऐसा बताइए जी।
1: हाँ जी, हाँ यानी आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कौन कौन सी मेडिसिन यानी कौन सी डिजीज क्योरेबल है इसकी। तो एक्चुअली बताएं तो ऑलमोस्ट सभी चीज का इसका इलाज है। जैसे मैं बता सकती हूँ, छोटे बच्चे इन्फेंट्स यानी न्यूबॉर्न बेबीज को भी लेके आते, आज मैं बता सकती हूँ 1 महीने का बेबी भी लेके आते मेरे पास पेशेंट बन के दवाई ले जाते। अब न्यूबॉर्न बेबी 4 गोली मुंह में कैसे डाले? तो हम उसको पानी में डिजॉल्व, डाइल्यूशन जो हम गोली में डालते हैं वो डाइल्यूशन देते हैं, वो पानी में ऐड करके बेबी को दे सकती है। यानी गैस्ट्राइटिस बोलो, पीसीओडी बोलो, फीमेल डिसऑर्डर बोलो, थायराइड तो मैंने ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, और स्पॉन्डिलाइसिस बोलो, रूमेटिज्म बोलो, आर्थराइटिस बोलो, आप निमोनिया बोलो, अस्थमा बोलो, अस्थमा का भी साइनसाइटिस बोलिए, मोस्ट
0: जी जी
1: जहाँ सर्जिकल प्रॉब्लम है, जहाँ सर्जिकल प्रॉब्लम है वहाँ हम नहीं हेल्प कर सकते, वहाँ हम मैनेज कर सकते केस, मैनेज यानी प्री ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव, बाकी सब चीज़ों का इलाज हो सकता है अगर राइट टाइम पे हमारे पास पेशेंट आ गया। तो यूजुअली होम्योपैथी के पास क्या एक प्रॉब्लम क्या है, पेशेंट हर बार पहले एलोपैथिक ड्रग्स सब ट्राई करता है, जहाँ वहाँ नहीं होता है उसके बाद वो चलो अब होम्योपैथी के पास जाते और फुल मेसअप करके आते हैं, फिर बोलते मैडम जल्दी ठीक कर दीजिए। ऑलरेडी वो पहले बहुत महीनों दूसरी दवाई लेके आते हैं, फिर भी हम कोशिश करते कि पेशेंट को बहुत मैक्सिमम से मैक्सिमम यानी कम तकलीफ में कम दवाई में ठीक हो जाए, पर मोस्टली हर चीज का इलाज है। खाली जहाँ सर्जिकल इंटरवेंशन है, जैसे कोई ट्यूमर्स हो गए, जहाँ हम कुछ ऐसे रहती कि थोड़े पॉलिश रहते, ट्यूमर्स रहते वो भी डिजॉल्व होते, पर कुछ ऐसे रहते जहाँ हमारी मेडिसिन रीच नहीं कर पाती, या हमको पेशेंट से सिम्टम सही नहीं मिलता, या तो डॉक्टर हम पेशेंट के साथ वैसा रिलेट नहीं कर पाते, कनेक्ट नहीं कर पाते, तब वो पेशेंट को रिजल्ट नहीं दे पाते। वहाँ सर्जरी की जहाँ जरूरत है वहाँ तो जरूरत है ही, वहाँ हम होम्योपैथी का चांस नहीं लेते, वहाँ बोलते नहीं भैया सर्जरी की जरूरत है, अब बहुत बड़ा फाइब्रॉइड हो गया है, बहुत ही बड़ा है यूट्रस में, अब उसको हम कितने मंथ तक हम उसको दवाई दे और उसको डिजॉल्व तो नहीं कर सकते, तब आपको हिस्टेक्टॉमी करानी ही, निकलवाना ही है। हाँ पोस्ट ऑपरेटिव हम जरूर रिकवरी के लिए, हीलिंग के लिए दवाई दे देते पेशेंट को, फास्ट ठीक हो जाते, या तो बिफोर प्री प्री सर्जिकल ट्रॉमा नहीं रहता, मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहते पेशेंट सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए, तब हम उन लोग को पहले से ऐसी दवाई देते जिससे उनको पीस ऑफ माइंड रहता, स्टेबिली रहती रहती, इम्यूनिटी अच्छी रहती, और इम्यूनिटी की भी अच्छी दवाई देते, उससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट आ जाते। यानी मोस्टली आप नेम द डिजीज सब ठीक कर सकते, पर जहाँ सर्जरी है या सर्जिकल, वहाँ तो हम पेशेंट को खुद ही बोल देते कि नहीं भाई यू नीड ए सम सर्जन हेल्प।
0: बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर डॉक्टर पूनम जी, बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया। तो हाल ही में जैसे कि कई बार ये भी होता है कि हम लोग कॉर्निक बोलते हैं, बहुत पुराना बीमारी है, पुराने से पुराने
1: कौन सा,
0: बीमारियों
1: सॉरी,
0: का इलाज है, कॉर्निक
1: क्रॉनिक
0: डिजीज
1: क्रॉनिक, हाँ
0: जिसको बोलते
1: क्रॉनिक
0: हैं।
1: डिजीज,
0: तो इसमें
1: हाँ
0: होम्योपैथी में जैसे कि इसके लिए भी काफी लोग बोलते हैं कि अभी इसके लिए आप होम्योपैथी मेडिसिन थोड़ा लंबा टाइम तक ले लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो ऐसा कौन कौन सी
1: जी,
0: बीमारियां हैं, कॉर्निक बीमारियां, जिससे वो होम्योपैथी पर बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है?
1: जैसे क्रॉनिक डिजीज बोल लीजिए, साइनोसाइटिस है, साइनस है, वो आप होम्योपैथी से ठीक कर सकते हैं। अस्थमा इज ए क्रॉनिक डिजीज, बहुत टाइम से चल रहा है, वो भी ठीक कर सकते हैं। और आर्थराइटिस है, जहाँ स्टीरॉयड भी लेने पड़ते हैं, तो हम विदाउट स्टीरॉयड, हमारे पास तो स्टीरॉयड जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, तो एवरीथिंग इज सिम्टोमेटिक, वो भी ठीक हो सकता है। गैस्ट्राइटिस है, एसिडिटी है, कोई डाइजेशन इश्यू है, कोई लीवर डिजीज है, ये सब होम्योपैथी से ठीक हो सकती है। माइग्रेन है, इट इज़ ए क्रॉनिक डिजीज, हर पीरियडिसिटी से सर दर्द होता है, वो भी होम्योपैथी से ठीक हो जाता है। यूजुअली ये टॉन्सिल टॉन्सिलेक्टॉमी बोलते हैं, टॉन्सिल्स के प्रॉब्लम बच्चों को बहुत रहती है, यूजुअली सर्जरी करा लेते, पर हमारे पास आने के बाद मेरे ख्याल से अभी तक एक भी ऐसा केस नहीं जिसको सर्जरी के पास जाना बट इवन डॉक्टर ने कह दिया कि नहीं अब इसकी जरूरत नहीं है सर्जरी की, ठीक हो गए इनके टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया, पॉलिप्स है, एडिनॉइड्स है, ये सब सब ठीक हो जाते हैं। फाइब्रॉइड अगर यूट्रस में अर्ली डायग्नोस हो गया है और उसको राइट टाइम ट्रीटमेंट देते वो भी फाइब्रॉइड भी डिजॉल्व हो जाते हैं। क्रॉनिक तो मैक्सिमम बहुत काफी चीजें थी, थायराइड भी हो गया, हाँ डायबिटीज भी कांट क्योर, डायबिटीज का क्योर नहीं है होम्योपैथी में, आई दैट इज वेरी श्योर, उसको हम मैनेज कर सकते हैं जैसे आप एलोपैथी खाते हैं वैसे हम होम्योपैथी देते पेशेंट को स्टेबल करने के।
0: चलिए, बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया डॉक्टर पूनम जी। और तरह से हम लोग बातें कर रहे थे, अखिल सुगंधी सर भी आ गए हैं, प्लीज टेल अबाउट थायराइड। हमने सुना है 100% क्योर है, तो चलिए मैं कोशिश करता हूँ डॉक्टर पूनम जी। अखिल सुगंधी सर ने पूछा है कि क्या थायराइड होम्योपैथी में 100% क्योर होता है, ये सवाल।
1: हाँ जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है थायराइड, तो 100% क्योर होता है और थायराइड का होने का रिजल्ट 100% श्योरिटी इसलिए है क्योंकि हम उसकी लाइफ हिस्ट्री जो पेशेंट की लेते हैं बहुत स्ट्रेसफुल ही रहती है, कहीं ना कहीं उनके ब्लॉक्स रहते हैं, वो हम हमारे सिमिलर मेडिसिन से उस उनको हम ऐसा रिलेट करके देते हैं कि उनके ब्लॉक्स खुल जाते हैं, उनका थायराइड लेवल एकदम स्टेबल हो जाता है और थायराइड 100% क्योर होता है। हमारे पास ऐसी मेडिसिन है थायराइड की जिससे तो मुझे तो याद नहीं, मेरे एक पेशेंट छोड़ के आज आज मेरे ख्याल से मैं 15 से 18 ईयर से थायराइड पेशेंट्स को कांस्टेंट देख रही मोस्टली, एक ऐसा पेशेंट है जिसको मैंने दो एक साल पूरा ट्रीट किया उसका ठीक नहीं हो रहा था, उनको एलोपैथी पे स्टार्ट रखा है, बाकी पूरे पेशेंट्स मैक्सिमम सभी क्योर हो।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया और आशा करूंगा कि हमारे सभी जो दर्शक मित्र हैं वो आपको सुनकर खुश हो रहे हैं। और विशाल जी ने पूछा है कि इज होम्योपैथिक मेडिसिन यूजफुल फॉर स्पाइंडोलाइटिस, विशाल जी का सवाल है जी।
1: स्पॉन्डोलाइटिस में भी बहुत अच्छा रिजल्ट है वो, उस अगर स्पॉन्डोलाइटिस में भी ऐसा है होम्योपैथी में वी शुड टेक इट, इट इज ऑफ राइट साइड की लेफ्ट साइड है, अगेन दवाई वहीं चेंज हो जाती है, फिर रात को हो रहा है दिन में हो रहा है, वर्क एग्जर्शन से हो रहा था दवाई चेंज होती है, रेस्ट में हो रहा था अगेन चेंज हो जाती है, अगेन आई विल टेल यू कि ये अगेन डिपेंड्स ऑन द सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट और किस टाइप का है पेशेंट और किस टाइप की इसकी सेंसिटिविटी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए विशाल जी, स्पॉन्डिलाइसिस ठीक हो सकता है ये आपने बताया। अब इसके साथ में मैं पूछना चाहूंगा कि होम्योपैथी की बात हम लोग जब करते हैं तो कितना लंबा लेना पड़ता है, क्या ये एलोपैथी की तरह तुरंत काम करता है या इसमें टाइम लगता है?
1: जैसे क्रॉनिक केस है तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, जैसे मैंने आपको बताया था थायराइड का, जैसे स्पॉन्डिलाइटिस का पूछा है क्वेश्चन, तो उसमें जैसे 3 महीने तो थायराइड में लेनी ही पड़ती, 3 महीने वी शुड टेक टाइम उसका सब हार्मोन्स को बॉडी में सेट होने के लिए, और स्पॉन्डिलाइसिस को भी 2-3 महीने तो लगती है। हाँ एक्यूट केसेस में तो जैसे फीवर डायरिया वोमिटिंग 1-1.5 दिन में ठीक हो जाती है, पर ये सब लंबी और पूरे लाइफ टाइम लेने की जरूरत नहीं है, जो जो बहुत लोग 2-2, 3-3 साल तक दवाई लेते जा रहे इतने सब करने की जरूरत नहीं पड़ती, जो होना रहता है 6 मंथ के स्पैन में सही हो जाता, नहीं तो आपको पेशेंट या तो डॉक्टर चेंज करना चाहिए या तो आप पेशेंट ठीक से डॉक्टर को नहीं बता पा रहे या डॉक्टर कुछ पकड़ नहीं पा रहे वो समझ लेना चाहिए।
0: कि पेशेंट चीजों को नहीं समझ पा रहा है या फिर डॉक्टर उसे ठीक से पकड़ नहीं पा रहे, ये आपने बताया, तो कैसे प्रॉपरली जो है हम लोग कंसल्ट कर सके या होम्योपैथी में जब हम लोग जाते हैं डॉक्टर से मिलने के लिए तो किन किन चीजों को बताना है, थोड़ा सा वो बताएं जी।
1: नहीं समझ में नहीं आपका क्वेश्चन, फिर से रिपीट करिए।
0: पेशेंट की जब हिस्ट्री लेते हैं होम्योपैथी में तो किस किस तरह की बातें हमें जो है बतानी होगी?
1: हाँ जी, जैसे आप फॉर अ पेशेंट आता है तो पहले तो पेशेंट को ही बोलने देते, वो पहले अपनी ट्रबल्स बता देता है फर्स्ट, फिर हम उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं उनके थर्स्ट के बारे में, उनके ड्रीम्स के बारे में, उनके फियर के बारे में, उनके डिजायर ऑफ डिजायर यानी क्या उनको खाने की किस चीज का इंटरेस्ट है। जैसे कई लोग मीठा ज्यादा खाते, कोई खट्टा खाता है, कोई सॉल्टी खाता है, कोई फ्राइड ज्यादा पसंद करता, कोई बेकरी आइटम खाता, मिल्क प्रोडक्ट ज्यादा पसंद करता। ये सब बहुत
0: जी जी
1: इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है हमारे लिए, इसलिए क्योंकि हम दवाइयाँ वैसे भी निकालते हैं, वैसी दवाइयों से हम सिमिलैरिटी निकालते हैं, कुछ दवाइयाँ में ऐसे सिम्टम्स रहते हैं तो वो उससे मैच होने चाहिए। तो हम लाइफ हिस्ट्री में जब जैसे आता पेशेंट उसका नेचर पूछते तो कोई हर चीज़ दिल खोल के तो नहीं बताता है। अब हम उसको काउंटर एक्शन भी लेते हैं, यानी काउंटर यानी रिवर्स साइकोलॉजी बोलते हैं जिसको, वो हमेशा बोलता है मैं तो बहुत ही बहुत सिंपल हूँ, मुझे ये से जेलसी पसंद नहीं है। तो हम समझ जाते हैं पेशेंट ज़्यादा जेलस है, हाँ क्योंकि आदमी सही सही नहीं बताता, कुछ भी चीज़ सही नहीं बताता, तो उसको रिवर्स साइकोलॉजी बोलते हैं। तो वो चीज रिपीटेडली बताता है, वो अपने आप को प्रूव करने के बताते नहीं मैं अच्छा हूँ, मैं तो समझ में आता है कि कुछ चीज हाइड कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट मीटिंग में
0: हाँ
1: तो हर चीज बताता नहीं है। और उनके साथ कोई अटेंडर्स आते हैं और हमेशा पेशेंट को हम अकेले बिठाते, उसके साथ अटेंडर को बैठने नहीं देते, क्या होता है कि वो खुल के बात कर सकते। और हमारे लिए जैसे डेल्यूशन बोलते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे फैमिली में मेरे मेरे मेरे अगेंस्ट ये सब लोग सोच रहे हैं, ये उसकी मान्यता है, सच है कि नहीं वो नहीं होता। वो डेल्यूशन एक बहुत बड़ा चैप्टर है हमारे होम्योपैथी में, तो डेल्यूशन से भी हम रिलेट करके दवाइयाँ निकालते हैं। उसका थर्स्ट है, उसका साइड है, राइट साइड, लेफ्ट साइड, सोता किस साइड है, उसकी एपेटाइट कैसी है, उसके रिलेशनशिप फैमिली में कैसे हैं, उसका चाइल्डहुड कैसे गया। और कुछ बच्चे ऐसे आते हैं ऑटिस्टिक आते हैं, ADHD आते हैं, जो आजकल बहुत देखने को दिखने मिलते हैं, उसमें हम प्रेगनेंसी हिस्ट्री लेते हैं मदर की, और प्रेगनेंसी हिस्ट्री में मदर कौन से स्ट्रेस से पास हुई उससे हम दवाई निकालते हैं, वो बच्चे को देते हैं। और आजकल तो लोग डिप्रेशन में बहुत आ रहे हैं, तो डिप्रेशन के लिए तो होम्योपैथी फैंटास्टिक काम करती है, जहाँ पेल्पिटेशन हो रहा है, फुल पेल्पिटेशन है, पेशेंट बिना वजह से रोना आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा, घबराहट हो रही है, कहीं फोकस नहीं कर पा रहा, उसमें भी होम्योपैथिक, बिकॉज होम्योपैथी इज बेस्ड टोटली ऑन साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी। और जैसा मैं बताती हूँ कि जैसी अपनी सोच है वैसी संकल्प से सीधी सोच से ही सब होती, जैसी अपनी सोच रहती है वैसी फिजिकल बॉडी में डिजीजेस आती है। हमारे पास एक फिजियोनॉमिक एक फिजियोग्नॉमी करके एक चैप्टर है, जहाँ हम पेशेंट के बॉडी लैंग्वेज से डिसाइड करते हैं कि इसको कौन सी दवाई लगेगी, वो उसका एक्सप्रेशन उसकी बॉडी लैंग्वेज हमको बताती है वो क्या है क्या नहीं है। और कई बार जैसे राइट हैंड अब लेफ्ट हैंड के ऊपर रहता है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड के ऊपर बैठने की आदत, कई बार हम लोग हैंड गेस्टर्स अलग अलग तरीके से करते हैं, कोई एंग्जाइटी में पाँव हिलाते रहता, ये सब चीजें बहुत काउंट करती है हमारी हिस्ट्री में। तो ये सब हम ऑब्जर्वेशन से होता है, वो डॉक्टर का काम है, पर पेशेंट को खुल के ओपन अप होकर हर चीज बोलना रहता है। वो फर्स्ट मीटिंग में थोड़ा कम बोल पाते हैं, सेकेंड फॉलोअप जो 15 दिन के बाद आते फिर थोड़े क्लोज हो जाते डॉक्टर के साथ, फिर बोलने लग जाते, पूरा ओपन होकर सब बताते और सही सही ट्रैक पे आ जाते। क्रॉनिक केसेस में तो प्रॉब्लम आता ही नहीं बिल्कुल भी। और एक और चीज है, जैसी अब पेशेंट की सोच रहती ना उस वो एरिया में, वही डिजीज भी आती है।
0: बिल्कुल
1: हर किसी को एक ही फैमिली एक ही टाइप का खाना खाते हैं, एक ही टाइप की सब सोच है, एक ही टाइप का सब एनवायरमेंट है, किसी को लीवर की है, किसी को पेट की है, किसी को किडनी की है।
0: बिल्कुल
1: जैसे जैसी सबकी थिंकिंग है वैसा ही फिजिकल बॉडी में एलिमेंट डिजीज सिम्टम्स डेवलप होते,
0: जी।
1: तो वो भी एक बहुत बड़ा होम्योपैथी में एक हमारे पास चैप्टर है, तो उससे हम रिलेट करते हैं, उसमें सब रेमेडीज रहती है, उससे हम मैच करते। तो ये सब इन्फॉर्मेशन कई पेशेंट आके बोलते हैं मैडम हमारे को तो सर दर्द है, आप हमको ये सब क्या पूछ रहे, आप हमारा सर दर्द ठीक कीजिए ना। तो फिर हम भी पूछते आपका नेचर कैसा है, आपके घर में कितने लोग हैं, आपका इनके साथ कैसा रिलेशन, उनके साथ कैसा रिलेशन। तो अरे भाई आप हमारे को सर दर्द दे रहा है उसकी ट्रीटमेंट कर, अरे पर हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब फिर हम समझाते पेशेंट को कि भाई ये हमारे लिए बिकॉज आपके नेचर से आपकी दवाइयाँ निकलेगी, इसलिए हम आपको लिए कुछ है। इसके बाद हम ये बहुत सील रखते हैं, किसी को डिस्क्लोज भी नहीं करते, और फिर हम भूल भी जाते हैं क्योंकि हम पूरा कितने पेशेंट से याद रखेंगे, नहीं तो वी विल फॉल सिक।
0: बिल्कुल बिल्कुल। विशाल जी ने एक और सवाल पूछा है, प्लीज एक्सप्लेन पीसीओडी इज होम्योपैथी यूजफुल। इन फीवर कोल्ड शायद है।
1: पीसीओडी में भी बहुत, पीसीओडी में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जो आजकल की लड़कियों को बहुत हो रहा है, क्योंकि आजकल सबको सिस्टम में ज्यादा काम है, एक फोन दिन भर रहते तो बैठे रहते, फिजिकल एक्टिविटी कम है, खाना पीना बहुत जंक है, बाहर का खाना ज्यादा हो गया है, कोई एपेटाइट का कोई कंट्रोल नहीं है, तो उसके वजह से ओवरी से फॉलिकल्स हो जाते हैं, तो उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट है होम्योपैथी, और उसमें फॉलिकल्स बहुत जल्दी डिजॉल्व हो भी जाते हैं। और आजकल यंग लड़कियों मैक्सिमम, मैं बता रही हूँ कि 10 में से 8 लड़कियों को पीसीओडी है ही, मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम है ही, इरेगुलर पीरियड है ही मैक्सिमम। और जब से ये फोन का ज्यादा यूसेज हो गया, लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स ज्यादा यूज हो गए, अब एक जगह फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है आजकल के बच्चों की, क्या सभी लोगों की, तो ये दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम फॉर द पीसीओडी। और इसमें अच्छे रिजल्ट भी आते हैं, इट इज क्योरेबल।
0: चलिए डॉक्टर पूनम जी, काफी अच्छी बातें आपने बताया और आशा करूंगा हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके, और आपने होम्योपैथी का जो विज्ञान है उसके बारे में बहुत अच्छी बातें बताया कि कैसे ये काम करता है, और ये नेचर से रिलेटेड मेडिसिन है, इसलिए व्यक्ति को बीमारी से ज्यादा उसके नेचर को समझने की कोशिश करना चाहिए एज ए होम्योपैथिस्ट, और फिर जब नेचर समझ में आ जाता है तो आपका इलाज आसान हो जाता है, ये आपने बताया। और इसके पर काफी अलग अलग प्रश्न जो है लोगों से पूछा जाता है, तो अगर उनका जवाब मिल जाता है और कई बार पेशेंट सही गलत जवाब देता है तो वो भी समझ में आ जाता है, क्योंकि डॉक्टर के पास एक एक्सपीरियंस रहता है, उनके बॉडी लैंग्वेज उनकी भावनाएं सब कैच करके वो समझ जाते हैं कि क्या हो रहा है। और निश्चित तौर पर जिस बीमारी के बारे में आपने बताया उससे रिलेटेड भी नेचर क्या होते हैं वो भी डॉक्टर को पता है, तो इसीलिए जब भी आप जाएं तो अपनी नेचर को सही सही से बताएं, और फिर आप अगर इलाज लेते हैं तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाते हैं, और अच्छी चीजें आपको जो है आसानी से आपका ट्रीटमेंट भी हो जाता है, कोई चीज आप हाइड करते हैं तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो चलिए जाते जाते मैं चाहूंगा कि एक संदेश के रूप में आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे डॉक्टर पूनम जी।
1: हेलो हेलो,
0: हाँ जी
1: हाँ जी,
0: एक संदेश एक मैसेज क्या देना चाहे।
1: हाँ जी हाँ, हाँ जी आवाज नहीं आ रही,
0: ओहो
1: आवाज नहीं,
0: चलिए कोई बात, मैं चाह रहा था
1: आवाज नहीं आ रही,
0: छोटा सा मैसेज आप दे।
1: किस चीज पे, किस चीज पे
0: मना, लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे उसके बारे में।
1: अच्छा, एक्चुअली मैं तो ये संदेश देना चाहती कि सभी लोग अच्छी सोच रखे, पॉजिटिव सोच रखे, तो ऐसी कोई बीमारियां ही नहीं खड़ी हो, जैसी अपनी सोच रहेगी वैसी अपने शरीर में फिजिकल बॉडी में तकलीफ आएगी, जितना अपन अच्छी सोच पॉजिटिव तरफ देखेंगे तो मेरे ख्याल से किसी को, और लाइफ को बहुत सिंपल बना के रखना चाहिए, कॉम्प्लिकेट करके ज्यादा सोच के ज्यादा एजम्पशंस करके वो और कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, लाइफ इज वेरी सिंपल, भगवान ने बहुत अच्छा सब सिंपल, नेचर ने भी इतना सब अच्छा दिया हुआ है, पर क्या है आजकल का जो कॉम्पिटिशन है कंपेरिजन है उसमें बहुत जा जाके लोग बहुत फंसते जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से जितना सिंप्लिसिटी में रहे जितनी मॉडेस्टी रहे लाइफ में वो सबसे बढ़िया है लाइफ के लिए।
0: जी जी जी और डॉक्टर पूनम जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया, बहुत ही प्यारा सा संदेश आपने दिया कि कॉम्प्लिकेशन ना हो आपके लाइफ में, सिंपल लाइफ हो और विधिवत आप चीजों को करें तो निश्चित तौर पर बीमारियां कम होगी, अच्छी सोच रखने से बीमारियां भी नहीं आएंगी। तो आइए जाते जाते मैं चाहूंगा फिर से संतूर जी को एक छोटा सा पीस जो है डॉक्टर पूनम जी को डेडिकेट जरूर करें जाते जाते।
2: ओम शांति
0: ओम शांति।

0: ओम शांति।
1: ओम शांति जी, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपके। थैंक यू। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते खमा गणिसा, एक बार संतोष जी एंड डॉक्टर पूनम जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। तो सुनते
0: ओम
1: रहो।
0: शांति।
1: नमस्कार।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: हम याद रखें कि वो एक बार भी जब हमें गुस्सा आया, हम इस विश्व को दूषित कर रहे हैं। हम मन को, शरीर को, रिश्तों को, प्रकृति को दूषित कर रहे हैं। और अगर एक बार भी हमने आज क्रोध को त्याग कर शांति को धारण किया, तो हम सिर्फ अपने मन को सुकून नहीं, रिश्तों में प्यार नहीं, प्रकृति को सद्भावना नहीं, हम विश्व को सुंदर बनाने की सेवा कर रहे हैं। तो क्या हम सेवा करने के लिए तैयार हैं?
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: और आप ही की वादियों से आप सुनने जा रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम। वंदे मातरम सुनने वाले सभी श्रोता बंधुओं को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज आपको ऐसी नारी शक्ति से मिलवाने जा रही हूँ जिनका नाम है हेमलता गोयल। आप आबू रोड के रहने वाले हैं, आपने 8वीं तक पढ़ाई की है, आपकी उम्र 60 प्लस है और आपके अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं। घर परिवार को तो आप चलाते हैं, अच्छी तरह संभालते हैं, साथ ही साथ बच्चों को भी अच्छी परवरिश दी। कढ़ाई, सिलाई, बुनाई, गीत संगीत, डांस सभी का शौक है और विशेष करके सत्संग में जाना, भजन कीर्तन करना। वो भी तो कहते हैं ना कि नारी शक्ति में क्या नहीं होता है, नारी शक्ति में हट करके विशेषताएं होती है, तभी तो कार्यक्रम का नाम रखा है वंदे मातरम। तो आइए मिलवाते हैं। हेमलता जी नमस्कार।
1: नमस्कार
0: जी, आपका स्वागत है वंदे मातरम कार्यक्रम में।
1: जी हाँ, धन्यवाद।
0: हेमलता जी, आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि आप पहली बार इंटरव्यू देकर के खुश है या पहले कभी दिया?
1: नहीं, पहली बार देके खुश हूँ।
0: अच्छा, चलिए अच्छी बात है, एक नया अनुभव।
1: नया अनुभव है
0: जी। जी तो चलिए आपके बचपन की तरफ चलते हैं। वो कहते हैं ना, पिचपन में बचपन की बातें करें तो बड़ा अच्छा लगता है। तो आपका बचपन कहाँ बीता, कैसे बीता?
1: मेरा बचपन जोधपुर में बीता और बहुत अच्छा बीता, फ्रेंडों के साथ, सहेलियों के साथ। खूब घनश्याम जी मंदिर और मंदिर में जाके खेलना, कूदना, पढ़ाई करना, सिलाई बुनाई करना, बहुत अच्छा रहा 8वीं तक।
0: जी जी, आपकी चार फ्रेंड है?
1: चार
0: आपने बताया, मेरे चार फ्रेंड के साथ बीता।
1: चार फ्रेंड है मेरे साथ
0: और पांचवे आप?
1: पांचवी में।
0: पांच पांडव। तो चलिए, आप कितने भाई बहन हैं? आपके माता पिता क्या काम करते थे, बताएंगे?
1: मेरे छह भाई हैं और एक बहन हूँ मैं, और मेरे पिताजी रेलवे में चेयरमैन थे।
0: तो क्या बात है, छह भाइयों की इकलौती बहन है आप, तो बहुत ही लाड प्यार मिला होगा आपको तो।
1: हाँ जी, बहुत लाड प्यार मिला,
0: स्वाभाविक है, हर डिमांड आपकी पूरी हुई होगी।
1: पूरी हुई, हर डिमांड पूरी हुई और आज भी हो रही है।
0: क्या बात है, आज भी पूरी हो रही है?
1: हाँ, आज भी पूरी हो रही है।
0: चलिए, ये बहुत अच्छी बात है, 60 की उम्र में आज भी डिमांड पूरी होना। नहीं तो कहते हैं कि भाइयों की शादी हो जाती, भाभियां आ जाती है, फिर नंदों को भाई फर्क पड़ जाता है देने लेने में, लेकिन आज भी आपकी डिमांड पूरी हो रही है, बहुत अच्छी बात है, सुनकर के अच्छा लगा।
1: जी हाँ, धन्यवाद।
0: अच्छा तो हेमलता जी, आप बता रहे थे कि छह भाइयों की इकलौती आप बहन है, आप सातों भाई बहन कैसे रहते थे?
1: सातों भाई बहन मिलके रहते थे, सब भाई मुझे प्यार करते थे। मैं चौथे नंबर की थी, तीन भाई मेरे से बड़े हैं, तीन भाई छोटे हैं, मैं पांचवे नंबर की थी।
0: अच्छा, तो फिर आपने पढ़ाई क्यों नहीं की?
1: पढ़ाई इसलिए नहीं की कि छोटे भाइयों को संभालना था, फिर आगे पुराने जन्म पढ़ाते नहीं थे इतना, फिर घर वाले बाहर नहीं निकालते थे, बंदिश बहुत थी, पहला जैसा जमाना अभी नहीं है।
0: इकलौती बेटियां तो चिंता भी रहती थी कि कहीं हमारी बिटिया के नजर नहीं लग जाए।
1: सही बात है।
0: ये तो मजाक थी, खैर माता पिता की जो सोच होती है वो होती है, ऐसा नहीं है।
1: जन्म मैंने कहा निकालते थे बाहर।
0: जी जी जी, पहले बहुत ही बंदिश होती थी
1: बहुत,
0: पर आप तो जोधपुर जैसे शहर में थे, फिर भी
1: बंदिश थी ना, मेन बाजार में रहते हैं, हमारा मकान सिटी में ही है।
0: अच्छा, आपके पिताजी क्या काम करते थे?
1: मेरे पिताजी रेलवे में फोरमैन थे।
0: अच्छा अच्छा,
1: फोरमैन की पोस्ट पे थे पर।
0: जी जी, तो आपने जैसे 8वीं तक पढ़ाई की, तो आपके टीचर्स के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ कैसा व्यवहार था?
1: अच्छा व्यवहार था मेरा, टीचर के साथ में भी अच्छा था, फ्रेंड के साथ में भी। एक फ्रेंड तो ये बैठी सामने।
0: अच्छा, क्या बात है,
1: दोनों एक ही स्कूल में पढ़े।
0: तब तो आपके फ्रेंड का भी जरूर लेंगे, हम बात करेंगे आपके फ्रेंड से भी। हेमलता जी के फ्रेंड है, यही साथ में बैठे हैं, तो इनसे भी बात करेंगे, पहले हम हेमलता जी के अनुभव सुनेंगे। तो हेमलता जी, आप बता रहे थे कि बहुत ही अच्छा बचपन आपका गुजरा है, बीता है। आपके जमाने में कौन से गेम खेला करते थे?
1: हमारे जमाने में खो खो, चंगा पो और आंख मिचोली, सतोलिया, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल।
0: अच्छा,

0: सारे गेम होते थे। आपने किसी में पार्टिसिपेट किया?
1: मैंने वॉलीबॉल में फर्स्ट डिवीजन आई।
0: क्या बात है, कौन सी क्लास में?
1: सेवंथ में।
0: फिर एट में भी गए?
1: एट्थ में नहीं गई थी फिर।
0: तो सेवंथ में फर्स्ट आई तो एट में क्यों नहीं गए?
1: एट्थ में नहीं गई ना, मेरी तबीयत खराब होने लग गई थी, बीमार बहुत रहने लग गई थी मैं, फिर इसके कारण मैंने स्कूल छोड़ दिया था आठवीं पास करके।
0: अच्छा अच्छा, तो सातवीं तक आप वॉलीबॉल खेलते थे?
1: वॉलीबॉल खेले, अभी भी है मेरे पास।
0: अभी भी वॉलीबॉल रखा हुआ है?
1: नहीं, वो कार्ड रखा हुआ है ना जो फर्स्ट मिला था,
0: सर्टिफिकेट।
1: सर्टिफिकेट और इनाम।
0: जी जी, सर्टिफिकेट तो वो कहते हैं ना कि प्राणों से भी प्यारा होता है।
1: प्राणों से भी प्यारा होता है, दिखाना पड़ता है ना भाई।
0: अपने पास सुरक्षित रहना चाहिए।
1: चाहिए, टीसी के साथ में ही देते हैं ना वो तो स्कूल में।
0: जी जी, तो आपने उसको संभाल के रख रखा, कभी काम आया?
1: कभी काम आता ही है ना, अभी तो किसी में काम लिया नहीं है मैंने।
0: अच्छा, चलिए, फिर भी एक मन को खुशी प्रदान करता है
1: ना, कभी मैंने जीता ही है।
0: जी जी, देखते हैं तो बातें याद आ जाती है स्टूडेंट लाइफ की।
1: लाइफ की।
0: अच्छा, और साथ ही साथ आप कह रहे थे गीत संगीत का शौक है, तो आप पढ़ाई करते थे तब गीत संगीत बोलते थे?
1: उस टाइम तो गाने ही चलते थे, भजन तो चलते नहीं थे। जब रेडियो रेडियो चलता था तो रेडियो में गाने आते थे तो वो मैं करती रहती थी साथ साथ, तो वजह से याद रह गए सारे।
0: नहीं, स्कूल में कौन से गीत गाते थे आप?
1: स्कूल में तो वही स्कूल के राष्ट्र गीत और सरस्वती के ऊपर और
0: ये। जी जी, देशभक्ति गीत, बहुत सारे गीत गाते हैं।
1: जैसे ये मनाते ना सरस्वती का फंक्शन बसंत पंचमी के दिन, उस पे भी प्रोग्राम में भाग लेती थी, सब कुछ नाच कूद में। और
0: तो चंदेलाई ने सुनाएंगे आप?
1: हाँ। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही जो खिल सके ना वो फूल हम है, तुम्हारे चरणों की धूल हम, दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा।
0: जी जी जी, तो ये प्रार्थना बोलते थे आप?
1: प्रार्थना बोलते थे।
0: और आप किसमें भाग लेते थे?
1: बस ये खो खो में, और वो बताया ना मैंने वॉलीबॉल में, और उसमें भाग लेते।
0: जी जी, बहुत बढ़िया। तब तो आप कह रहे थे एट में आपका स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो गया
1: था, इसकी वजह से फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी।
0: तो आप तो अच्छे प्लेयर रह चुके, फिर स्वास्थ्य कैसे ऊपर नीचे हो गया?
1: डिप्टेरिया हो गया था, फिर गला बंद हो गया था मेरा, तो आवाज भी नहीं आती थी मेरे, पर फिर पढ़ाई कैसे करती। मैं 3 महीने तक एडमिट रही थी हॉस्पिटल में। फिर मेरा ठीक हुआ, फिर पापा मम्मी ने कहा अब नहीं पढ़ाना बोले।
0: अच्छा, इसी वजह से आपकी पढ़ाई
1: रुक गई मेरी, नहीं तो मैं आगे पढ़ने के लिए तैयार थी।
0: जी जी जी,
1: मजबूरी थी मेरी, मेरी बीमारी के कारण मैंने पढ़ाई नहीं करी।
0: पढ़ाई में आप कैसे थे?
1: अच्छी थी, फर्स्ट डिवीजन आती थी हर विषय।
0: तो आपको बहुत दुख हुआ होगा पढ़ाई छूट गई?
1: पढ़ाई छूट गई तो मेरे को दुख हुआ था ना, आज मैं कहाँ की कहाँ पहुँचती नहीं।
0: स्वाभाविक है। जी जी जी, हर एक के सपने होते हैं। जी, तो हेमलता जी आपसे और भी बातचीत करेंगे, आपके और भी अनुभव सुनेंगे, लेकिन यहाँ समय हो चला एक गीत सुनने का। तो एक गीत सुनकर के पुनः लौट रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।
2: मेरी आंखों में सपने छोटे हो या बड़े, चुन लिए है मैंने क्यों जिद पे हो अड़े। मेरी आंखों में सपने

0: बहू बहू जल्दी तैयार हो जा, हमें डॉक्टर के पास जाना है।
1: जी आई माँ जी।
0: अरे जल्दी कर, इतनी देर से अभी अभी लगा रखा है।
1: जी माँ जी आ गई, चलिए।
0: नमस्ते डॉक्टरनी जी।
2: नमस्ते नमस्ते, बैठिए। जच्चा बच्चा दोनों ठीक है?
0: डॉक्टरनी साहिबा, हमें अपनी बहू का वो क्या कहते हैं जो टीवी पर देखकर पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, अपनी बहू का पता करना है।
2: सोनोग्राफी? मगर क्यों?
0: लड़की हमको नहीं चाहिए ना, इसलिए। अगर पता चल जाएगा तो तुरंत निपटा देंगे।
2: मगर ऐसा करना तो गलत है। और बहू क्या तुम भी यही चाहती हो?
1: जी वो न, न,
0: अरे तू चुप रह बहू, तू क्या जाने।
2: देखिए भ्रूण हत्या एक कानूनन जुर्म है, इससे आपको उम्र कैद भी हो सकती है। और आजकल तो लड़कियां लड़कों से आगे बढ़कर काम कर रही हैं, जैसे सुनीता विलियम, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी और मैं खुद एक सफल डॉक्टर हूँ।
3: आजकल हमारे समाज में भ्रूण हत्या तेजी से बढ़ रही है, उसे हमें रोकना होगा। यह कानूनी अपराध है, इसके लिए आप सभी को उम्र कैद भी हो सकती है।
4: नारी की लचक में करुणा है, पर उसके हौसलों में धार है। हर युग में उसने साबित किया नारी ही असली शक्ति का आधार है, नारी ही असली शक्ति का आधार है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में हेमलता जी गोयल हमारे साथ बने हुए हैं। आपके काफी अनुभव बचपन के हमने सुने हैं, आइए इसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे। हेमलता जी पुनः स्वागत है आपका वंदे मातरम कार्यक्रम में।
5: धन्यवाद।
4: तो आपकी बचपन की बातें चल रही है, कैसा लग रहा है?
5: बहुत अच्छा लग रहा है। याद आ रहा है बचपन भी।
4: जी बचपन याद आ गया। तो आप बता रहे थे कि आप प्रार्थना भी बोलते थे, आप काफी बीमार हो गए इस वजह से पढ़ाई नहीं कर पाए, तो जब आपकी तबीयत ठीक हुई तो फिर आपने कोशिश नहीं की कि अब मैं फिर से पढ़ाई शुरू करूं?
5: नहीं, कोशिश तो करी थी, पर घर वाले इतना लाड़ प्यार करते थे तो भेजने के लिए मना कर दिया। बोले नहीं, एक का एक बच्ची और तबीयत खराब हो जाएगी तो कौन संभालेगा।
4: अच्छा, इसलिए आपको भेजा नहीं?
5: इसलिए भेजा नहीं।
4: कभी कभी ऐसा हो जाता है, ओवर लाड़ प्यार मिलता है तो पढ़ाई आगे नहीं पढ़ पाते हैं।
5: सही बात है।
4: तो उस समय आपको कैसा लगा जैसे आगे नहीं पढ़ाया आपको? ठीक है,
5: दुख हुआ ना उस समय कि भाई मैं और पढ़ती, पर घर वाले लाइक नहीं कर रहे थे, क्या कर।
4: और उस समय बचपना होता है, इतना सीरियसली नहीं लेते, वो तो जब एक एज होती तो पता चलता है पढ़ाई क्या है।
5: वो तो आगे बढ़ने के बाद अब महसूस हो रहा है हमको, आगे बढ़ते तो और कहीं पहुंचते, सर्विस करते, टीचर लाइन में जाते और कहीं जाते।
4: जी जी जी, हर एक का सपना होता है,
5: मजबूरी थी ना हमारी, क्या करें।
4: जी कोई बात नहीं, अब तो आपकी 60 की उम्र हो गई है और आप भूल भी गए होंगे उन बातों को।
5: बातें भूल गए, अब तो यही याद आता है, और सत्संग का।
4: जी जी, सत्संग का याद आता है। सही बात है, कहते हैं एक वानप्रस्थ अवस्था आती है, एक उम्र जब बढ़ती है तो अपने आप ही मन ईश्वर की तरफ लग जाता है, तो आप भी सत्संग की तरफ ज्यादा रुचि रखने लगे। अच्छा चलिए ये बताइए, जैसे आप बता रहे थे आपके 6 भाई है, आप इकलौती बहन है, तो भाई बहनों के साथ आप कुछ खेलते थे? खेल
5: खेलते थे ना, घर में खेलते थे भाई बहनों के साथ।
4: अच्छा, तो कौन सा खेल हमको भी पता चले उस समय क्या?
5: उस समय तो यही थे ना, आंख मिचोली, छुपा छुपी और खो खो खेलना, चंगा पो खेलना, भाइयों के रात में बैठ के खेलते थे बस, दिन में तो टाइम मिलता नहीं था।
4: तो आप मम्मी को हेल्प कराते थे घर के काम में?
5: घर के काम में हेल्प कराती थी, जब तो कोई बहू नहीं थी, मम्मी और हम ही थे अकेले।
4: जी जी, फिर आपके सामने ही भाभियां आ गई होगी?
5: मेरे सामने 3 भाभियां आ गई थी, उसके बाद मेरी शादी हुई।
4: जी जी, तो भाभियों के साथ कैसा व्यवहार रहा?
5: अच्छा व्यवहार, भाभियां तो बहुत प्यार करती थी, बहुत, मेरे कपड़े तक मेरी भाभी ही धोती थी शादी होने के बाद में भी।
4: जी जी जी, इकलौती ननंद है, सभी का प्यार मिला?
5: सभी का प्यार मिला, कभी कोई कभी कोई कभी वो।
4: जी, और वो कहते हैं ना कि भले कितनी भी बेटी प्यारी हो लेकिन माताओं की आदत होती है बच्चों को शिक्षा और संस्कार देना, तो ससुराल जाएगी तो ये वो, तो आपको भी आपके मम्मी बीच बीच में शिक्षा संस्कार देते थे?
5: देते थे, घर का काम कराते थे, सिखाते थे, रोटी बनाना सिखाते थे, सब्जी रोटी चाय पानी सब मम्मी ने सिखाया था, भाभियों ने सिखाया, जब आज हम सही है यहाँ पे।
4: जी जी, और सिलाई कढ़ाई बुनाई ये कहाँ सीखी?
5: ये यही आके सीखा सारा। अच्छा, स्कूलों में सिखाते थे ना सिलाई के लिए बड़ाई, वो तो सब कागज के वो बनाने सब स्कूलों में सीखा था।
4: अच्छा, तो स्कूल में सीख करके फिर आप घर पर बनाते थे?
5: पे बनाए थैलिए मनाई कसी देखी और सब कुछ बनाए, बैग बनाए और सामान बनाए।
4: जी जी जी, और आप कितने साल के थे और आपकी शादी हुई?
5: मैं 18 या 19 साल की थी जब मेरी शादी हो गई थी, 8th में।
4: 8वीं पास होने के बाद आपकी शादी हो गई?
5: मेरी शादी हो गई थी।
4: तो आपको बीच में गैप नहीं मिला थोड़ा घर पर रहने का?
5: नहीं, वैसे तो गैप मिला ना, उस समय तो मैं 15-16 साल की थी आंटी में पड़ी जब, फिर 2 साल मेरे को घर पे रेस्ट करवाया ना, बीमार थी जो, उसके बाद बोलेगा अब शादी कर देते हैं, इसकी पढ़ाई कर देते हैं, नहीं तो और कुछ हो जाएगा इसको, ऐसा सोचते थे घर वाले।
4: पढ़ाई कर देंगे तो कुछ नहीं होगा?
5: हाँ, ऐसा पुराने जमाने में ऐसे लोग सोचते थे ना। तो फिर 80 में मेरी शादी हुई थी।
4: अच्छा, तो 80 में फिर आपकी शादी हो गई?
5: 1980 में मेरी शादी हुई थी।
4: तो शादी के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आए?
5: शादी के बाद तो वही गृहस्थी संभालो, घर का काम करो, बच्चों को संभालो।
4: नहीं, बच्चे तो बाद में हुए होंगे, आपके हस्बैंड क्या काम करते थे?
5: हस्बैंड प्रिंसिपल है।
4: अच्छा, प्रिंसिपल है, मतलब आपका सपोर्ट करते थे?
5: हाँ, बहुत सपोर्ट करते हैं, आज भी करते हैं, अभी भी करते हैं, सब में सपोर्ट करते हैं।
4: और घर में उस समय कौन कौन थे जब आप शादी करके आए? तब
5: मैं शादी करके आई जब मेरी जेठ जेठानी और हम दोनों, मैं और मेरा हस्बैंड, 4 जने थे।
4: सास ससुर नहीं थे?
5: ससुर नहीं थे मेरे,
4: पहले ही उनकी डेथ हो गई थी।
5: पहले ही उनकी डेथ हो गई थी, मेरे हस्बैंड 12 महीने के थे जब ही उनकी डेथ हो गई थी।
4: सास ससुर दोनों की?
5: सास तो थी, ससुर पहले गुजर गए थे, फिर इन्होंने पढ़ाई करी जब सास भी गुजर गई थी, एसटीसी करी माउंट आबू से, फिर जब सास गुजर गई थी फिर इनकी नौकरी लग गई एसटीसी करने के बाद, फिर हमारी शादी हुई।
4: तो फिर आपके जेठ जेठानी ने आपका सारा काम किया?
5: सारे काम उन्होंने किया, जेठ जेठानी।
4: जी जी,
5: वही सास ससुर के बराबर ही है मेरे।
4: जी जी, आपने तो उन्हीं को देखा है।
5: उन्हीं को देखा है मैंने, यही है सास ससुर।
4: बिल्कुल, समझदार के लिए तो यही है,
5: यही है। हम कहाँ जाएंगे, नहीं तो किसके यहाँ जाएंगे, शादी करी तो उनको ही सम्मान देना है ना।
4: सही बात है। आप जैसे शादी करके अपने ससुराल में आए तो आपने देखा कि जेठ जेठानी आपके सास ससुर है, तो कैसे रहते थे आपस में, रिश्ता कैसा रहा आपका आपके जेठ जेठानी के साथ?
5: हमारा दोनों का रिश्ता अच्छा रहा था, आपस में साथ में ही निभाए 20-25 साल तक। फिर वो पोस्ट मास्टर थे तो इनका बार बार ट्रांसफर होता था जेठ जी का, तो फिर मेरे को अकेला ही रहना पड़ता था इनके साथ में। उनके भी बच्चे नहीं है, जेठ जी के भी एक ही लड़की थी जो उसकी शादी कर दी।
4: अच्छा, और आपके कितने बच्चे हैं?
5: मेरे 2 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं।
4: 4 बच्चे हैं।
5: 4 बच्चे हैं।
4: जब आप शादी करके आबू में आए, एक तो जोधपुर इतना बड़ा शहर, फिर जोधपुर से आप एक कस्बे में आए, तो यहाँ आपका मन लग गया?
5: नहीं लगा था मन, बहुत अभी तो बहुत अच्छा हो गया, पहले तो वीरान था पूरा। मैं शादी करके आई जब कुछ भी नहीं था, और मैं तो देख देख के रोती थी, खाना भी नहीं खाती थी कि मैं कहाँ आ गई हूँ यहाँ पे, मेरे को तो जोधपुर छोड़ के आओ, ऐसे करती थी। फिर धीरे धीरे सेटल हुए, फिर ये नौकरी पे जाते, फिर मैं अकेली रहती दिन भर, जब तो बच्चे ही नहीं थे और नई नई किससे बात करूं मैं, तो मैं अकेली कमरा बंद करके बैठी रहती थी, रोती थी अंदर ही अंदर।
4: आपके माता पिता ने ये नहीं देखा कि बच्ची इतने लाड़ प्यार से पली हुई है, एक गांव में दे रहे हैं, उस समय आज तो फिर भी कस्बा है, उस समय तो आप कह रहे कि वीरान था, तो उस समय कुछ था नहीं, तो उनको थोड़ा सा ये नहीं लगा कि बच्ची कैसे सेट होगी वहां?
5: उनको बहुत लगा था, उन्होंने तो बिल्कुल मना कर दिया था, 4 बार रिश्ता तोड़ा है 4 बार।
4: अच्छा,
5: मेरी मम्मी ने तो बिल्कुल कह दिया मेरी एक ही लड़की है, मैं बाहर नहीं दूंगी, रोने लग गई थी वो भी, पर अब किस्मत ने यहाँ लाया साथ तो फिर क्या करे, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था कि मैं बाहर नहीं दूंगी।
4: जी जी, फिर कैसे हुआ यहाँ पर आपके पिताजी?
5: अगले ने भी जिद करी, इन्होंने भी जिद करी कि नहीं हमको लड़की यही पसंद है, हम तो यही करेंगे।
4: और आपके पिताजी भाई लोग का फोर्स था क्या?
5: सपोर्ट दिया ना, फिर क्या करें कि भाई करो जिद कर रहे, तो बाकी मेरे खानदान में कोई बार नहीं है, मैं अकेली बार हूं।
4: तो उस समय आपकी क्या प्रतिक्रिया रही?
5: उस पुराने जमाने में तो हमसे बात ही कहाँ करते थे पहले, वो तो बड़ों ने जो कर दिया वो सही है, हमने ना आदमी को देखा ना किसी को देखा।
4: अच्छा, देखने का सिस्टम था ही नहीं, तो देखा ही नहीं।
5: मेरी शादी के टाइम तो सिस्टम था ही नहीं, पूछते ही नहीं थे।
4: जी जी जी, बस जो बड़ा ने किया वो पत्थर की लकीर,
5: पत्थर की लकीर हो गई।
4: तो जब आप यहाँ पर आए, आपने देखा कि वीरान है, मतलब मन नहीं लग रहा है, तो आपके हस्बैंड से आपने बात नहीं की कि कहीं अच्छे शहर में सेट हो जाए?
5: नहीं, तो नौकरी का इशू था ना भाई, बाहर नौकरी तो यहीं लगी हुई थी ना, फिर बार बार इनके ट्रांसफर होते रहते थे, तो फिर ये अप डाउन करते थे पास में, अलादरा है जैसे, आतल है, चार पांच जगह इन्होंने नौकरी करी, फिर मावल, ये तो मावल तो आबू रोड में ही था जो चल गया।
4: जी जी, छोटे छोटे गाँव में,
5: गाँव में डीन की प्रमोशन होता रहता था बार बार।
4: जी जी, इसलिए आप जा नहीं पाते, बड़े शहर में हो तो आप चले जाओ।
5: चली जाती, नहीं तो मैं छोटे शहर में मैं क्या करूंगी जाके, जब एक जगह ही अपना रहना है तो। फिर दो बच्चे छोटे थे दोनों, एक इनको लेके कहाँ घूमती इधर उधर।
4: और आपके जेठ जेठानी बाहर रहते थे?
5: जेठ जेठानी का ट्रांसफर हो जाता था हर तीन साल में, तो फिर वो बाहर जाते थे, तीन साल यहाँ रहते, तीन साल बाहर रहते थे।
4: अच्छा, इसलिए आप बिल्कुल ही अकेले रह जाते
5: हो? गई थी मैं बिल्कुल, छोटे से घर में रहती थी फिर।
4: तो आपके जेठ जेठानी को बोला नहीं कि मैं अकेले, मतलब मेरा मन नहीं लगता है कि आप लोग ट्रांसफर मत होना?
5: कभी तो मजबूरी थी ना, नौकरी थी, उनकी भी तो ट्रांसफर होता था ना, उनके तीन साल फिक्स होते थे, हर तीन साल में ट्रांसफर हो जाता।
4: जी जी, तीन साल में आपको जाना ही है,
5: चाहे आप कैसे भी रहो।
4: जी जी, और जैसे आपको सिलाई कढ़ाई बुनाई आती थी, तो आप अकेले पढ़ते थे कि जैसे आपके हस्बैंड जॉब पर चले जाते थे, आप अकेले हो घर में, तो आपने कैसे समय व्यतीत किया? इन चीजों में ध्यान दिया, सिलाई कढ़ाई बुनाई में, भजन सत्संग में, या फिर कैसे आप? भाई रोज अकेले रहना, रोना, वो तो अच्छी बात नहीं है।
5: नहीं तो घर का काम तो करना पड़ता था ना मेरे को पीछे, जैसे घर का काम करना, बच्चों को रखना, सिलाई ऐसे ये स्वेटर वेटर बना लेती, टोपे मोजे और ये बनाती बैठे बैठे सर्दी में, फिर बच्चों को रखना भी तो मेरे को ही पड़ता, जब इनको सुला के फिर घर का काम करती। पहले नौकर चाकर कहाँ थे, कोई संभालने वाला भी नहीं, सास नहीं, जेठानी नहीं, ननद नहीं, कौन संभालता?
4: जी बिल्कुल, तो इन चीजों में ध्यान दिया, और जरूरी भी है, और बच्चे होते हैं जिस घर में, वहां तो टाइम कैसे बीतता पता ही नहीं चलता,
5: इसीलिए मैंने बच्चों के साथ ही जिंदगी लगाई। फिर धीरे धीरे ट्यूशन पढ़ाने लगी बच्चों को, छोटे बच्चों को, पांचवी तक बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, तो दिन उसमें पूरा हो जाता था मेरा।
4: क्या बात है, आपने आठवीं तक पढ़ाई की, और आज के युग के पांचवी तक के बच्चों को आप पढ़ा लेते?
5: पढ़ा लेती थी सारा,
4: क्योंकि आपके समय में तो इतनी अंग्रेजी नहीं थी।
5: मैं तो अंग्रेजी मीडियम से ही पढ़ी हुई हूँ आठवीं तक, तो मेरे को इंग्लिश तो बहुत अच्छी आती है।
4: अच्छा, चलो ये आपका अच्छा रहा। तो आप फिफ्थ तक के बच्चों को आराम से पढ़ा लेते?
5: पढ़ा लेती थी, पहले तो इतनी हाई फाई किताबें नहीं थी ना छोटे बच्चों की, पांचवी तक तो नॉर्मल ही था, इंग्लिश भी कहा एबीसीडी और यही होते थे, स्पेलिंग है वो ही होती थी, अब ये कोर्स तो अब भारी हुए।
4: हाँ जी हेमलता जी, आपके अनुभव और भी सुनेंगे, लेकिन यहाँ पर समय हो चला है एक ब्रेक लेने का, तो एक ब्रेक लेकर के पुनः लौट रहे हैं, बने रहिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: लाइफ का जो स्टाइल है उसको लाइफस्टाइल कहते हैं। लाइफस्टाइल इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी आर ईटिंग, ड्रिंकिंग, वेयरिंग। लाइफस्टाइल इज अबाउट व्हाट वी आर थिंकिंग, स्पीकिंग, बिहेविंग। दैट्स माय लाइफस्टाइल।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: ममता की मूरत भी वही, शक्ति का स्वरूप भी वही। ममता की मूरत भी वही, शक्ति का स्वरूप भी वही। नारी को कमजोर कहने वालों, नारी को कमजोर कहने वालों, हिम्मत करो, पहले उसे समझो तो सही। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में हेमलता जी गोयल हमारे साथ बने हुए हैं। हेमलता जी के काफी अनुभव हम सभी ने सुने हैं, आइए इसी कड़ी में और भी इनके अनुभव सुनेंगे। तो हेमलता जी, आप जैसे बता रहे थे कि आप अकेले पड़ जाते थे, तो पहले तो आपने शुरुआत में तो आप अकेले बैठ करके थोड़ा उदास होते थे, थोड़ा रोना भी आ जाता था। फिर आपने क्या सोचा कि बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊं, सिलाई कढ़ाई बुनाई करूं, तो ये किसी ने आपको कहा या अंदर से आपको सूझा?
3: नहीं, मेरे अंदर से ही सूझा था कि मैं अकेली किससे बात करूं। मैं राजस्थान से आई हुई यहाँ अब रोड में, फिर मैं किसी को जानती नहीं थी, ना किसी से बात करती थी। तो फिर अंदर ही अंदर मैंने यही सोचा कि बच्चे आएंगे तो मैं उनके साथ मनोरंजन भी कर लूंगी।
2: अच्छा सोचा। तो आपने सबसे पहले अपने हस्बैंड से बात की होगी?
3: हाँ, हस्बैंड से बात की ना। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, यही चालू कर दो, मैं पीछे रहता नहीं हूँ घर पे, और अकेली पड़ जाती है तो फिर साथ में यही।
2: तो इस तरह आपने ट्यूशन की शुरुआत की?
3: शुरुआत
2: जी। बच्चे आपके कितने साल बाद हुए?
3: बच्चे मेरे एक साल बाद हो गए थे, 81 में बड़ा वाला हो गया था।
2: और एक साल तो कहते हैं ना, ससुराल पियर आने जाने में भी समय,
3: आने जाने में ही बीत जाता है एक साल, तो फिर मेरे हो गया था।
2: जी जी। तो हाँ, आने जाने में कैसे समय बीत गया पता ही नहीं चला। फिर थोड़े बहुत आपके जेठानी भी रहे होंगे?
3: जी हाँ, साथ में रहे ना वैसे तो।
2: जी, तो जैसे आप बता रहे थे कि आपकी 18-19 साल की एज में शादी हुई, आपको सारे काम आते थे या आपकी जेठानी ने सिखाया यहाँ?
3: ना, यहाँ आके सीखी थी मैं, मेरे को साड़ी पहननी नहीं आती थी, सब उन्होंने सिखाया मेरे को। अब पढ़ाई करते हुए अपन साड़ी कहाँ पहनते हैं, वही सलवार सूट और जीन्स टॉपर और यही पहनते थे, तो साड़ी मैंने यहाँ आके सीखी।
2: जी जी, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो पहले उनका अनुभव नहीं होता है, बाद में ही होता है। जब हम कहते हैं ना कि जमीन पर उतरते हैं और जब घर गृहस्थी में रचते पचते हैं, तो बहुत सारी चीजें आपने यहाँ पर सीखी। तो जैसे आप कह रहे थे कि कढ़ाई बुनाई, ये आपने मायके सीखा है या सीखा?
3: ये तो मैं स्कूल में सीखी थी सारा।
2: हाँ जी, हाँ जी, आपने स्कूल का बताया था। और आपने बच्चों का ट्यूशन, आपके बच्चा हो गए उसके बाद शुरू किया या पहले ही शुरू कर दिया?
3: नहीं, पहले ही शुरू कर दिया था।
2: तो बच्चे लोग आते थे?
3: आते थे, छोटे बच्चे आते थे ना, सब आते थे।
2: तो इसकी एड कैसे की आपने?
3: एड तो जब तो मैं फ्री थी ना उस समय, फिर बच्चा होने के बाद वापस बंद कर दिया था, फिर थोड़े बड़े हो गए 2-3 साल के, फिर वापस चालू कर दिया।
2: जी, लेकिन कैसे लोगों को पता चला कि आप ट्यूशन पढ़ाते हैं?
3: वो तो टीचर थे ना हमारे घर से, तो उन्होंने बताया, और मोहल्ले में भी पता था सब कि भाई इनके घर से प्रिंसिपल है, तो वो आते थे पूछने मोहल्ले वाले और क्या पढ़ा दोगे क्या। पुराने जमाने में तो इतना ट्यूशन का कहाँ था, पहले छोटे बच्चों को घर पे ही भेजते थे।
2: जी जी, ट्यूशन का इतना क्रेज नहीं था, लेकिन
3: अब तो उसमें जाते हैं सब लाइब्रेरी में, तो घर वाले को कौन पूछे, पढ़े लिखे ऐसे ही बैठे रहते।
2: जी जी, तो आपका टाइम पास हो जाता था और आपकी भी पढ़ाई वापिस रिपीट हो जाती थी?
3: जी हाँ, वापस रिपीट हो जाती, वो नॉलेज भी रहता ना कोई चीज का पढ़ाने से कि भाई इसको ये पढ़ाना है, इसको ये पढ़ाना।
2: जी, और आपके जैसे बता रहे थे कि आपके 4 बच्चे हैं, तो कैसे आपने बच्चों की परवरिश की अकेले हाथ, क्योंकि आपके जेठानियां रहते नहीं थे, अकेले आपको रखना, आपके हस्बैंड भी पूरे दिन झोप पर रहते थे, तो कैसे उनका पालन पोषण किया आपने?
3: मेरा बड़ा वाला तो जोधपुर हुआ था, तो 5-6 महीने तो मैं उसको वहीं से करके लेके आई थी, फिर यहाँ आके फिर जेठानी ने थोड़ा रखा, थोड़ा हमने संभाला, ऐसे करके साल भर का हो गया वो बड़ा। फिर धीरे धीरे परवरिश करती रही, फिर 83 में दूसरा नंबर का लड़का हुआ, 83 में, और 90 में दोनों गुड़िया हुई, ट्विंस।
2: अच्छा, ट्विंस हुई?
3: ट्विंस हुई दोनों मेरी गुड़िया।
2: ओ, ट्विंस को तो रखना बहुत मुश्किल है।
3: तो फिर काम वाली भाई रखी थी ना, मालिश वाली और सब, फिर दो को तो मैं कैसे संभालती, मेरे पास कोई है ही नहीं, कोई सास नहीं, कोई देवर नहीं, कोई जेठ नहीं,
2: बहुत जने क्या करते, ट्विंस होते तो एक को पियर छोड़ देते, एक को अपने पास रखते, तो आपने ऐसा तो नहीं किया?
3: नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने मेरे बच्चों को मैंने ही परवरिश की दोनों की।
2: आपके पियर वालों ने तो कहा होगा एक बच्चे को छोड़ दो?
3: मम्मी आई थी ऐसे, तो मम्मी आई थी रहने के लिए, भाई 2-4 महीने रहती फिर चली जाती, फिर आती फिर चली जाती। उनका भी बुढ़ापा था तो फिर इतना सहन नहीं होता ना। फिर मैं काम वाली लगा दी थी मेरे, वो रखते थे फिर सब, और दोनों बच्चे संभालते थे गुड़िया को जब मैं खाना बनाती।
2: जी, आपके दोनों बेटे थोड़े बड़े हो गए?
3: बड़े हो गए थे ना मेरे, एक 8 साल का था, एक 10 साल का था, तो दोनों में उनमें ज्यादा फर्क नहीं रहा, उनमें 2 साल का ही डिफरेंस था, 2 साल बाद वो दूसरा हो गया था, इनमें ज्यादा 10 साल का डिफरेंस रहा था।
2: अच्छा, दोनों बेटियां जो हुई और बेटा के बीच 10 साल का गैप?
3: 10 साल का गैप है, ये 90 में हुई थी, वो छोटा वाला 83 में हुआ था और बड़ा वाला 81 में हुआ था, तो 2 साल का उनके गैप रहा और इनके साथ 10 साल का रहा।
2: तो बच्चे थोड़े रखने जैसे हो गए, बड़े हो गए?
3: बड़े हो गए थे रखने जैसे, तो दोनों गुड़िया को रखते थे, स्कूल भी जाते थे बच्चे दोनों।
2: जी जी जी, हाँ स्कूल भी जाते थे, फिर वो जाते थे उस समय आप रखते, आपने वैसे काम वाली माई लगा रखी थी?
3: रखी थी, और फिर इसके पापा भी जाते सुबह, उनका टिफिन बना के देना। काम तो बहुत मजबूरी से, बहुत दुखी से कराए, आज कहीं जाके सुख आया है।
2: कहते हैं ना दुख सुख जीवन के साथ चलते हैं,
3: जोड़ा होता है ना दोनों का ही।
2: जी जी, 4 बच्चों के खैर अकेले हाथ परवरिश करना बहुत ही मुश्किल होता है, और फिर आप इतने लाड़ प्यार से पियर में पले हैं तो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कहते हैं ना घर में भतीजे भतीजे को बड़ा किया हो तो उनके लिए थोड़ा सरल है?
3: सरल है ना, कराना बड़े को भतीजे भतीजे, 3 की शादियां हो गई थी मेरे से पहले, तो उनके भी तो बच्चे थे ना, उनको संभालना, सारा घर का काम देखना सब करती थी मैं,
2: तो फिर आपकी थोड़ी प्रैक्टिस थी?
3: प्रैक्टिस थी मेरी कि भाई बच्चों को कैसे संभालना है,
2: इसलिए इतना मुश्किल नहीं लगा?
3: इतना मुश्किल नहीं लगा, गृहस्थी संभालना मुश्किल नहीं लगा।
2: जी जी, लेकिन जब टिफिन बनाना होता है, एक साथ में बना के देना पड़ता, उस समय मुश्किल होता?
3: क्या मैं तो मुश्किल ही भाई, बनाना तो अपने को ही है ना, दूसरा थोड़ी बनाएगा।
2: बिल्कुल, 3 जनों का टिफिन, फिर 2 बच्चों को संभालना,
3: बच्चों को संभालना सारा।
2: जैसे आपने कहा कि काम वाली बाई लगाई आपने, तो काम वाली बाई क्या करते थे, बच्चों को खिलाने के लिए लगाई या घर के काम में?
3: दोनों काम करती थी काम वाली बाई, बच्चों को भी रखती थी और घर का काम भी करती थी, पूरे दिन के लिए लगा रखी थी, जैसे बच्चे सो रहे तो भाई घर का काम कर लेती, बच्चे उठ गए तो उनको संभाल लेती, एक को मैं संभाल लेती, ऐसे करके 5 साल तक उनको बड़ा किया। 2 साल तक तो मैं पियर ही नहीं गई, बाहर ही नहीं निकली घर से, 2 बच्चों को लेके कैसे जाऊं।
2: तो फिर आपके पियर वाले मिलने आते आपसे?
3: आते थे ना पियर वाले मिलने, आते थे कभी भैया भाभी आ जाते, कभी मम्मी आ जाती, कभी कोई आ जाता।
2: पर आपके तो जैसे हस्बैंड के प्रिंसिपल की जॉब थी, तो छुट्टियों में तो छुट्टियां ही छुट्टियां, उस समय जा सकते थे?
3: तो 1.5 महीने की छुट्टी पड़ती ना जब, तो फिर बच्चों को कैसे संभालना, बाहर कैसे लेके जाना दोनों बच्चों, आगे तो कोई गाड़ियां वाड़ियां कोई सुविधा नहीं थी, वही बस में जाओ या ट्रेन में जाओ, फिर 80 का पात्र बनता, इसलिए मैं तो मैंने कहा मेरे तो कहीं नहीं जाना 2 साल तक।
2: अच्छा, नहीं आपके हस्बैंड भी तो साथ में आ सकते थे ना?
3: आ सकते थे, पर बच्चों को तो मेरे को ही संभालना था ना भाई, तो अब एक को दूध पिलाऊंगे दूसरे को।
2: अच्छा, इसलिए आप नहीं जाते
3: नहीं
2: थे?
3: गई, मैं 2 साल तक कहीं नहीं गई, घर से बाहर ही नहीं गई।
2: चलिए हेमलता जी, फिर से समय हो चला एक गीत सुनने का, तो एक गीत सुनकर के पुनः लौट रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं, कार्यक्रम अभी बाकी है, तो सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।
4: समय रिसागे उदय सिंगी मोटियार होवण दागे, वारी रजपूती मरोड़ और सांगारी शक्ति उदयरे बाजुओं में देखण दागे, उठीने मेवाड़ री प्रजा सामंत और जागीरदार बनवीर रे आतंक सू घणी धापियोड़ी ही दुखी हुई, छेवट मेवाड़ और मारवाड़ रा कई मानिता सरदार भेड़ा होयर गुप्त मंत्रणा करता हा, उन समय उन्होंने ठा पड़ी कि मेवाड़ी सूरज उदय सिंह जिंदा है, पन्ना रे बलिदान री बातां घर घर होवण लागी। जद मेवाड़ रा सरदार ने पतो लागो कि उदय सिंह आशा शाहरे घरे है, तद सरदार चूंडावत, सरदार महीदास, केलवारा सामंत जग सिंह, बागोर सरदार सांगा, सोनगढ़ रा अखय सिंह और सांचोर रा सरदार पृथ्वीराज भेड़ा होयर कुंभल मेर गया, सगड़ा मिलुर उदय सिंह रो राज तिलक करियो, इन अवसर माथे सोनगढ़ रा शासक अखय सिंह आपरी बेटी रो ब्याह उदय सिंह जी साथे करियो।

0: गौरवशाली गुजरी उदय सिंह रखवाल माँ ममतारी मूर्ति तू शक्ति प्रणपाल तू शक्ति प्रणपाल बलिदानी मायण थारो जीवन गीता सार पन्ना धाय पड़के है सूरज रहे उन्हें
1: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
2: कृपया प्लेटफॉर्म पर साफ सफाई रखें, कचरा कचरे के डिब्बे में ही डालें व स्टेशन परिसर को साफ सुथरा रखने में रेलवे को मदद करें, धन्यवाद।
1: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
3: नारी की नजरों में दुनिया प्यार और परवाह से भरी, नारी की नजरों में दुनिया प्यार और परवाह से भरी, पर जब बात हक की आए तो वो चट्टानों जैसी अड़िग खड़ी, तो वो चट्टानों जैसी अड़िग खड़ी। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम और वंदे मातरम में हेमलता जी हमारे साथ बने हुए हैं। आपके काफी अनुभव हमने सुने हैं और हम पूछना चाहेंगे हेमलता जी से कि जैसे हेमलता जी आपने बताया कि आपके ट्विंस बेबियां थी, दोनों गुड़िया थी, तो 2 साल आप मायके नहीं गए। परिवार में कहते ना कि कहीं शादी ब्याह भी होते हैं, कहीं कोई प्रसंग भी होता है, तो फिर सारे आपने छोड़े?
4: सारे छोड़े मैंने, मेरी सारी इच्छाएं खत्म कर दी थी, मैंने कहा कहीं नहीं जाऊंगी 2 साल।
3: लेकिन 2 साल में भी कहां बच्चे बड़े हो पाते हैं?
4: फिर भी बैठने लायक उठने लायक तो हो ही जाते हैं ना बच्चे बड़े, जैसे चलना फिरना या कोई गोदी भी ले सकता है, और इतने से छोटे बच्चे को लेके तो कोई संभाल नहीं सकता ना।
3: जी जी, फिर तो कोई भी गोदी में ले ले तो फिर जा सकते,
4: बच्चे को तो कोई भी गोदी में उठा सकता है, कोई भी घुमा सकता है, घूम जैसे हो जाते बच्चे 2 साल के।
3: जी जी, तो 2 साल के बाद आपने आना जाना शुरू किया?
4: शुरू किया 2 साल के बाद।
3: और अभी बच्चे कितने बड़े हैं?
4: अभी तो शादियां हो गई, उनके बच्चे भी हो गए 4ों के।
3: क्या बात है, तो अभी तो आप दादी नानी बन गए।
4: नानी बन गई ना।
3: तो अपनी जिम्मेदारियों से फ्री हो गए?
4: कहाँ जिम्मेदारियां, तो और बढ़ती जाती है, कभी इसका कभी उसका कभी बेटों का।
3: कहते ना मूल से भी ब्याज प्यारा लगता
4: प्यारा होता है।
3: तो फिर भी अभी आप काफी हद तक फ्री है?
4: फ्री है, काफी हद तक तो फ्री है। फिर घर की स्थिति ऐसी है ना, मेरे पति को कैंसर हो गया तो उनके तकलीफ है, उनको खाने पीने का टाइम टाइम दवाई देना सारा देखना पड़ता है, बच्चे छोटे हैं मेरे, दोनों बच्चों के डायलिसिस हो रहा है, देख कितनी की प्रॉब्लम है जो।
3: अच्छा, पोते पोती के?
4: पोते पोती को।
3: अच्छा, तो ये शारीरिक व्याधियां आ गई?
4: हाँ, ये परेशानियां हो गई ये सब।
3: जी जी, तो आपका समय सेवा करने में जाता है?
4: करने में ज्यादा लगता है मेरा समय, इसलिए मैं किसी को टाइम नहीं दे सकती बाहर, मजबूरी में इधर उधर जैसे संगीत में चली जाऊं या भजन में या विश्वविद्यालय में आ जाती हूँ टाइम।
3: जी जी, सत्संग में आप थोड़ा सा समय देते हैं?
4: हाँ, ज्यादा नहीं, बुधवार 11 को बस, 2 बार।
3: अच्छा, या तो बुधवार या 11,
4: दोनों में से एक दिन जाती हूँ, जब जब ये बच्चे घर पे रहते हैं जब जाती हूँ, नहीं तो नहीं जाती।
3: अच्छा, सभी साथ में, दोनों बहुए साथ में?
4: सब साथ में, सब साथ में।
3: तो बच्चों के कैसे हो गया, बचपन से था, जन्म से?
4: नहीं था, ये तो इनकी वो क्या बोलते रहे, जेनेटिक प्रॉब्लम हुई है।
3: अच्छा, और आपके हस्बैंड को कितने साल से कैंसर है?
4: मेरे हस्बैंड को तो 5 साल हो गए, कोरोना में हुआ था।
3: अच्छा, कोरोना के समय हो गया?
4: ऑपरेशन करवा दिया, वो तो था जो सारा दांत में कैंसर हो गया था, तो हमने तो पूरा जबड़ा ही निकलवा दिया एक साइड का, ना बड़े आगे ना कुछ हो गए।
3: तो कभी बीड़ी सिगरेट या तंबाकू खाते थे क्या?
4: कुछ नहीं, बाजार का नाश्ता तक नहीं करते मेरे हस्बैंड।
3: फिर भी कैंसर हो गया, तो अभी ठीक है?
4: हाँ, अभी ठीक है
3: सब। तो अभी उनकी इतनी जिम्मेदारी नहीं है?
4: नहीं, जिम्मेदारी तो है ही ना, अभी उनका सारा खाना बनाना, लिक्विड लेते हैं, खा नहीं सकते, एक तरफ का जबड़ा निकला हुआ तो एक तरफ चबा नहीं सकते, फिर उनको लिक्विड बना के देती हूँ, जूस बना के देती हूँ, पेजी बना के देती हूँ टाइम टाइम से, फिर उनको दवाई देना।
3: जी जी जी, पर कहीं मान लीजिए आपको अंदर बाहर जाना पड़ता है तो बहुएं संभाल लेती?
4: हाँ, बहुएं संभाल लेती है, और टाइम से अगर जो होता है तो मैं करके चली जाती हूँ, नहीं तो बहू संभाल लेती।
3: जी जी जी, और आपके बच्चे क्या करते हैं, बेटे बेटियां जॉब करते हैं, उनको कितना पढ़ाया आपने?
4: मेरे बच्चे, छोटा वाला बेटा तो मेरा एक्सियन है पीएचडी में, बड़ा बेटा एमबीए करा हुआ है, वो शेयर मार्केट का काम करता है, बड़ी बहू फार्मेसिस्ट है उदयपुर में मेडिकल कॉलेज में, और दोनों बेटियां एमए बीएड करी हुई है।
3: अच्छा, तो बेटियां भी जॉब करते
4: हैं? नहीं, जॉब नहीं करती अभी, दे रही है, फाइट दे रही है।
3: जी जी, लेकिन अच्छा पढ़ा लिखा है,
4: दिया सारा परिवार पढ़ा लिखा है सारा।
3: तो आपका कमी खली वो आपने अपने बच्चों में पूरी कर दी?
4: कर दी, उन्होंने पूरी कर दी मेरी, सारे जीवन में खुशियां दे दी, सब कुछ, नौकर चाकर बंगला गाड़ी सब सारी खुशियां दे दी उन्होंने।
3: जी जी जी, तो अभी आप अपने जीवन में खुश है?
4: खुश हूँ मैं, बिल्कुल, बहुत खुश हूँ मेरे जीवन में।
3: जी, तो आप हमारी जो बहनें सुन रही है, जो सीनियर सिटीजन बहनें हैं 60 प्लस वाली, उनको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कितनी बार क्या है कि महिलाओं के जैसे सारी जिम्मेदारियों से निवृत्त हो जाते, लेकिन सास बहू के किटपिट होती रहती है, तो आप क्या कहेंगे?
4: नहीं, हमारे कभी सास बहू में किटपिट नहीं हुई है आज तक।
3: तो कैसे आप बहुओं को किस नजर से देखते हैं?
4: बेटी की नजर से देखते हैं, और क्या करें। जब अपने को सुखी रहना है तो अगले को जैसा ढलना चाहिए इंसान। और मेरा यही निवेदन है कि सभी बहनें 60 से ऊपर से हो गई है, तो यही निवेदन है कि आप भी अपने जीवन में अपनी खुशी के लिए सबको त्याग दो। किसी को ये मत कहो कि तू मेरी बहू है, तू मेरा वो है। अपन खुद मम्मी बन के रहो सबके साथ में। तो आपको भी यही कहना है मेरा कि आप भी ऐसे ही जीवन में जियो तो खुश रहोगे। आज के जमाने में बहुओं को टोका टोकी करना ही नहीं, ना करने से चार बात अपने को सुनने को मिलेगी। इसलिए मुंह को बंद रखो, आंखों से देखो और हंसते रहो।
3: क्या बात है बहुत ही अच्छा आपने मैसेज दिया है कि 60 प्लस वाली बहनें जिनके घर में बहुएं आ चुकी है, उनके साथ प्यार से रहो, ज्यादा टोका टाकी न करो, ताकि बैलेंस बना रहे और घर में शांति बनी रहे, माहौल अच्छा रहे। तो हेमलता जी, बहुत बहुत आपका आभार कि आपने बहुत ही सुंदर अपने जीवन के अनुभव शेयर किए, रेडियो मधुबन को समय दिया और हमारे सभी श्रोता बंधुओं के साथ आपने अपने अनुभव शेयर किए, इसके लिए
4: धन्यवाद।
3: आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदे मातरम। वंदे मातरम में हेमलता जी गोयल हमारे साथ बने हुए थे। आबू रोड से है आप ने भले पढ़ाई 8वीं तक की है, लेकिन आपके नॉलेज

नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम सा, और रविवार की सुप्रभातम। कैसे हैं? आशा करते हैं सब बहुत बहुत कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में बिजी होंगे, परिवार के साथ त्यौहार मना रहे होंगे, है कि नहीं? चलिए, आज रविवार के प्रोग्राम में प्रभा पंडिताइन आप सभी श्रोताओं का अपने दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करती है। आज शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। महुए का पेड़। बस्तर के किसी गांव में कालू राम नाम का एक किसान रहता था। उसके पास लगभग 2 एकड़ का एक खेत रहा, जिसमें खेती करके वो अपने परिवार का जीवन यापन किया करता था। वो वृद्ध हो चला था, इसलिए उसकी खेती बाड़ी अब उसका इकलौता बेटा भोला देखा करता था। भोला ने देखा कि उनके खेत के बीचों बीच एक बड़ा महुए का झाड़ है। शायद हम ये कहानी पहले भी आपको सुनाए हैं। आप सोच रहे होंगे कि बहन जी भूल जाती है। भूल तो नहीं जाते हैं, लेकिन कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि दोबारा भी बोल दी जाए तो आ जाती है कि का जीवन में करना है। कि कुछ चीज़ें होती हैं, हमें अखरती हैं, लेकिन वो बड़े काम की होती है। सुनी ना ये कहानी आपने? पेड़ बीच में था और वो बहुत ये करता था, और पेड़ को फिर उसके पिताजी ने बताया कि तुम जैसे कर रहे हो वैसे नहीं वो जाएगा, उसको किस तरह से निकालना है। तो हर चीज़ की बड़ों के पास अनुभव होता है, तो वो अनुभव से बहुत कुछ सिखाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि हमारे बड़े वृद्ध जो हैं वो भले ही फल ना देते हों, लेकिन छायादार वृक्ष तो हैं। भले ही पैसे ना कमाते हों, लेकिन हमारे बच्चों को संस्कार तो देते हैं। इसलिए बड़ों का संग होना बहुत जरूरी है। कल दिल्ली से गोवा की उड़ान में एक बुजुर्ग सरदार जी और उनकी पत्नी से मुलाकात हुई। सरदार जी की उम्र लगभग 80 वर्ष रही होगी और सरदारनी भी 75 के आसपास थे। उम्र ने शरीर पर अपना असर जरूर छोड़ा था, मगर दोनों के चेहरे पर संतोष और जीवन जीने की चमक साफ दिखाई दे रही थी। उड़ान भरने के कुछ देर बाद सरदारनी ने घर से लाया हुआ थोड़ा सा खाना निकाल कर पति को दिया। सरदार जी के हाथ कांप रहे थे, फिर भी उन्होंने धीरे धीरे अपना खाना खुद खाया। कुछ देर बाद दोनों ने राजमा चावल मंगवाए। वो बड़े आराम से खाना खाते रहे। खाना खत्म होने के बाद सरदार जी ने जूस की बोतल उठाई और उसका ढक्कन खोलने लगे। उम्र के कारण हाथों में कंपन था और ढक्कन बार बार घूमकर भी नहीं खुल रहा था। मैंने शिष्टाचारवश कहा, लाइए सरदार जी, मैं खोल देता हूँ। उन्होंने मुड़कर मेरी तरफ देखा और बोले, बेटा आज तो तुम खोल दोगे, लेकिन अगली बार कौन खोलेगा? मैं उनकी बात सुनकर चुप हो गया। उन्होंने फिर कहा, इसलिए जब तक हाथ पैर साथ दे रहे हैं अपना काम खुद करना सीखना चाहिए। कई कोशिशों के बाद आखिर उन्होंने खुद ही बोतल खोल ली। जूस का एक घूंट पीकर वे मुस्कराए, जैसे उन्होंने केवल बोतल का ढक्का नहीं बल्कि जिंदगी की एक चुनौती खोल दी हो। बातों बातों में उन्होंने बताया कि उनके बच्चे और बहुएं साथ ही रहते हैं, परिवार भरा पूरा है और सभी उनकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन उन्होंने एक नियम बना रखा है, जहाँ तक संभव हो अपना काम खुद करो। उन्होंने कहा, बेटा अगर आज हर छोटे काम के लिए दूसरों को बुला

आने लगूं तो धीरे धीरे मेरा शरीर भी काम करना छोड़ देगा और मन भी। फिर आदत पड़ जाएगी कि ये काम कोई और कर दे, वो काम कोई और कर दे, और एक दिन ऐसा आएगा कि चलने के लिए भी सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। उनकी बातों में जीवन का गहरा अनुभव था। उन्होंने बताया कि दोनों महीने में एक दो बार घूमने निकल जाते हैं, इस बार गोवा जा रहे हैं। बच्चे कहते हैं कि इस उम्र में अकेले घूमना मुश्किल होगा, लेकिन उनका जवाब बड़ा सरल था, मुश्किल घूमने में नहीं है बेटा, मुश्किल तो तब होगी जब हम जीना ही छोड़ देंगे। उन्होंने जिंदगी भर मेहनत की, बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा किया और अब अपने लिए भी थोड़ा समय निकालते हैं। टिकट एजेंट से बुक करवाते हैं, टैक्सी घर से लेने आती है और होटल में आराम से रहते हैं। मैं उनकी बातें सुनता रहा और सोचता रहा कि हम अक्सर उम्र को जीवन का अंत समझ लेते हैं, जबकि असली अंत तब होता है जब इंसान अपने भीतर से जीने की इच्छा खो देता है। उस दिन मैंने लैपटॉप पर फिल्म देखने का सोचा था, लेकिन उस उड़ान में मुझे उससे कहीं बड़ी फिल्म दिखाई दी, एक ऐसी फिल्म जिसमें जीवन जीने का सच्चा अर्थ छिपा था। उस बुजुर्ग सरदार जी ने मुझे सिखाया कि बच्चों का सहारा होना अच्छी बात है, लेकिन हर छोटी ज़रूरत के लिए उन पर निर्भर हो जाना अच्छी बात नहीं। जब तक शरीर साथ दे अपना काम स्वयं करे, जब तक कदम चले अपने रास्ते खुद चुने, और जब तक सांसों में हिम्मत हो जिंदगी को घर की चार दीवारी में कैद ना करें, क्योंकि जिंदगी उम्र से नहीं हौसले से जवान रहती है। और कभी कोई जूस की बोतल ना खुले तो हार मत मानिए, थोड़ा और प्रयास कीजिए, हो सकता है ढक्कन के साथ साथ जिंदगी का कोई बंद दरवाज़ा भी खुल जाए। कितनी प्रेरणादायी बात है, आप लोग तो समझ ही जाए कह होंगे कि क्या कह रहे हैं। मैं बोझ बन जाऊंगा एक दिन अपने ही दोस्तों पर, क्योंकि कंधे बदल रहे होंगे वो हर दो कदम के बाद। कहे कि मरे के बाद तो दूसरों के कंधे पे ही जाना पड़ता है, लेकिन जिंदा है और अगर हम कुछ कर सकते हैं तो काहे दूसरे पे बोझ बने। और बोझ की बात छोड़िए, इंसान उम्र से बूढ़ा नहीं होता है, इंसान सोच से बूढ़ाता है। जिस दिन सोचने लगता है अब तो बुढ़ापा आ गया, तो सही में बुढ़ापा आने लगता है। और जब हम समझते नहीं, हम तो अभी उम्र ही का हुई, और जो है उससे आधी समझें, सही में आपके चेहरे पे, आपकी चाल चलन पे, आपके बोल पे वही असर आएगा। कि अगर आप अपने को 70 के नहीं मानते, 40 के मानते, तो आप 40 के ही दिखोगे, आप 40 के जैसे उमंग उत्साह से काम करोगे। सारा खेल तो सोच का है, अपने विचारों का है। सत्य ही तपस्या है, सत्य ही धर्म है। जौन व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है, ईश्वर स्वयं उनका सारथी बन जाता है। अपनी सोच को ऊंचा रखिए, जीवन ऊंचा हो जाएगा। किसी के लिए किया गया छोटा सा भी अच्छा कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता, बुरे समय में वही मदद और आशीर्वाद बनकर वापस आता है। हर किसी की जिंदगी में आज नाम का दूसरा मौका ब्रह्मांड देता है। कल जो छूट गया उसे आज सही करके फायदा उठाओ। मन में हमेशा जीत की आस होनी चाहिए। नसीब बदले या न बदले, वक्त जरूर बदलता है जब आप मन में जीत की आस रखते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, धन का घमंड, रूप का अभिमान और शक्ति का अहंकार, तीनों का अंत निश्चित है। इसलिए ये सब चीज़ें हाथ की मैल हैं, इन पे कभी भी अहंकार मत करिए। ये तो आएंगी चली जाएंगी, असली तो आपका अपना ओरिजिनल स्वरूप है। परमात्मा कहते हैं, मेरे लाडले बच्चों, विश्वास वो ताकत है जो अंधेरे रास्तों में भी रोशनी महसूस करवा देती है। जब चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे, तब अंदर से एक ही आवाज़ आए कि सब ठीक हो जाएगा, और वही विश्वास है।
आपकी अच्छाइयाँ बेशक अदृश्य हो सकती हैं, लेकिन इनकी छाप हमेशा दूसरे के हृदय में विराजमान रहती है। ये बात को भी कभी नहीं भूलने का चाहिए। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। इंसान तो कभी यही नहीं स्वीकार करता कि हम गलत कर रहे हैं, कि हमको सुधरने की ज़रूरत है। और जब वो समझेंगे नहीं तो सुधरेंगे कहाँ से? घमंड होता है ना भाई, अभिमान होता है ना कि नहीं हमको सब कुछ आता है। नहीं, कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। जो स्वयं को बदल लेता उसका संसार भी बदल जाता है। ईश्वर की नज़र में यानी ये पक्का कर लो कि तुम उसकी निगरानी में हो, इससे तुम हमेशा सुरक्षा का अनुभव करेंगे। यानी अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं सब कुछ उसके कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है, तो कुछ बुरा कर भी नहीं करेंगे। और बुरा नहीं करेंगे तो हमारे सामने भी कुछ बुरा का फल बुरा नहीं आएगा, सब अच्छा करेंगे, अच्छा ही आएगा। किसी को कभी किसी से कम मत समझो, साहब, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। आज जो छोटा है कल वही बड़ा मुकाम पा सकता है। ये सब बात हम आपको सुनाए रहे और आप ध्यान रखते होंगे। परमात्मा कहते हैं, मेरे लाडले बच्चों, आपके जीवन में कुछ भी चला जाए पर खुशी ना जाए। काहे कि हर चीज़ खरीदी जा सकती है सिवाय मन की सुख शांति और खुशी के। इसलिए हमेशा खुश रहो। आप अपनी समस्याओं का कारण और निवारण स्वयं हैं। स्वयं को बदलने का साहस रखिए, दुनिया अपने आप बदलती दिखाई देगी। क्रोध समस्या का समाधान नहीं, नई समस्या की शुरुआत है। परवाह ना करें, तमाशे होते रहेंगे उम्र भर। बस ये ख्याल रहे कि अपना किरदार बेदाग रहे। जीवन का सबसे सुंदर और सरल नियम जो हमारे साथ नहीं होना चाहिए वो हम दूसरों के साथ ना करें। चलिए भाई, यही बात पे एक गीत सुन लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे बतियाएंगे। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पे। सुनते रहें, मुस्कुराते रहें, सुनिएगा गीत।

0: बहू बहू जल्दी तैयार हो जा, हमें डॉक्टर के पास जाना है।
1: जी आई माँ जी।
0: अरे जल्दी कर, इतनी देर से अभी अभी लगा रखा है।
1: जी माँ जी आ गई, चलिए।
0: नमस्ते डॉक्टर नी जी।
2: नमस्ते नमस्ते, बैठिए। जच्चा बच्चा दोनों ठीक है?
0: डॉक्टर नी साहिबा, हमें अपनी बहू का वो क्या कहते हैं जो टीवी पर देखकर पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, अपनी बहू का पता करना है।
2: सोनोग्राफी? मगर क्यों?
0: लड़की हमको नहीं चाहिए ना, इसलिए अगर पता चल जाएगा तो तुरंत निपटा देंगे।
2: मगर ऐसा करना तो गलत है। और बहू क्या तुम भी यही चाहती हो?
1: जी वो
0: ना। अरे तू चुप रह बहू, तू क्या जाने।
2: देखिए भ्रूण हत्या एक कानूनन जुर्म है, इससे आपको उम्र कैद भी हो सकती है। और आजकल तो लड़कियां लड़कों से आगे बढ़कर काम कर रही हैं, जैसे सुनीता विलियम, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी और मैं खुद एक सफल डॉक्टर हूँ।
3: आजकल हमारे समाज में भ्रूण हत्या तेजी से बढ़ रही है, उसे हमें रोकना होगा। यह कानूनी अपराध है, इसके लिए आप सभी को उम्र कैद भी हो सकती है।
4: सुबह का समय रहा, रमाकांत बाबू अपने घर का बरामदे में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे, तभी मोबाइलवा की घंटी बजी। स्क्रीन पर बेटे राकेश का नाम देखकर उनका चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। राकेश ने औपचारिक अभिवादन के बाद पूछा, बाबूजी आपकी पेंशन आ गई होगी? रमाकांत बाबू ने सहजता से कहा, हाँ बेटा आज ही आई है। राकेश ने तुरंत कहा, तो मेरे खाते में 25,000 रुपये भेज देना, इस महीने खर्च कुछ ज़्यादा हो गया है। रमाकांत बाबू कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, ठीक है बेटा। फोन कट गया। रमाकांत बाबू की आंखों के सामने बरसों पुरानी तस्वीरें घूमने लगी। यही राकेश कभी उनके कंधों पर बैठकर स्कूल जाता रहा, उनकी फीस भरे के लिए उन्होंने अपनी कई जरूरतें टाल दी थी। पत्नी के साथ मिलकर उन्होंने कितनी बार अपने कपड़े नहीं खरीदे, लेकिन बेटे की किताबें कभी नहीं रुकने दी। आज वही बेटा शहर में बड़ी कंपनी में अधिकारी था, अपना फ्लैट था, गाड़ी थी, परिवार था, बस माता पिता के लिए समय नहीं था। रमाकांत बाबू की पत्नी अक्सर कहती, बुढ़ापे में हमें पैसे नहीं, बेटे का थोड़ा सा अपनापन चाहिए। लेकिन रमाकांत बाबू हंसकर बात टाल देते। गांव में अब दोनों पति पत्नी अकेले रहते थे। राकेश के पास माता पिता से मिलने का समय नहीं था। फोन भी अधिकतर तभी आता जब उनको पैसे की ज़रूरत होती। एक दिन पड़ोस की महिला ने रमाकांत बाबू की पत्नी से कहा, आपका बेटा तो बहुत बड़ा आदमी बन गया है, अब आपको किसी चीज़ की चिंता नहीं होगी। वो मुस्कराई मगर उसकी आँख भर आई। उन्होंने धीमे से कहा, बेटा बड़ा ज़रूर हो गया है, लेकिन हमारे लिए अभी भी वही छोटा बच्चा है। फ़र्क बस इतना है कि पहले वो हमारी उंगली पकड़ता था, अब हमारी पेंशन पकड़ता है। ये बात रमाकांत बाबू ने सुन ली। उस रात वे बहुत देर तक सो नहीं सके। अगले महीने पेंशन आने के दिन उन्होंने राकेश को फ़ोन किया, बेटा इस बार पैसे नहीं भेज पाऊँगा। राकेश चौंका, क्यों बाबूजी कोई परेशानी है? रमाकांत बाबू ने शांत स्वर में कहा, पैसों की नहीं बेटा, अब हमें तुम्हारी ज़रूरत है। फ़ोन के दूसरी तरफ अचानक खामोशी छा गई। उन्होंने आगे कहा, तेरी माँ बीमार रहती है, मैं भी अब पहले जैसा मजबूत नहीं रहा, हमें दवा से ज़्यादा किसी अपने की आवाज़ चाहिए। पेंशन तो हर महीने आ जाएगी, लेकिन ज़िंदगी की शाम बार बार नहीं आएगी। राकेश के हाथ कांपने लगे। उसको पहली बार महसूस हुआ कि पिता ने कभी उससे कुछ मांगा ही नहीं था। उसने उसी रात पत्नी और बच्चों को साथ लिया और गांव पहुंच गया। दरवाज़ा खुला तो रमाकांत बाबू कुर्सी पर बैठे थे। राकेश उनके पैरों में गिर पड़ा। बाबूजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपकी पेंशन तो याद रखी लेकिन आपका अकेलापन भूल गया। रमाकांत बाबू की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने बेटे को उठाकर सीने से लगा लिया। उस दिन पहली बार राकेश ने पिता से कहा, अब आपकी पेंशन आपके पास रहेगी बाबूजी, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। रमाकांत बाबू मुस्कराए। उन्हें समझ आ गया था कि बुढ़ापे की असली पेंशन बैंक खाते में आने वाला पैसा नहीं बल्कि औलाद के दिल में बचा हुआ अपनापन होता है। और उस दिन के बाद राकेश ने हर महीने पैसे भेजने से पहले अपने माता पिता को फ़ोन करना शुरू किया, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि माता पिता को सहारे की ज़रूरत उस दिन नहीं पड़ती जिस दिन वे मांगते हैं, उन्हें सहारे की ज़रूरत तब पड़ती है जब वे मांगना छोड़ देते हैं। तो देखिए भाई, बात तो छोटी सी है लेकिन समझने वालों के लिए बहुत बड़ी है। अगर आपकी समझ आ गई हो और आपके जीवन में भी कहीं ऐसा हो रहा हो, चाहे कोई बेटवा सुन रहा हो, चाहे माँ बाप सुन रहे हो, बेटा सुन रहा है तो उसके लिए कहते हैं, आज ही जाग जाओ, आज ही अपने माता पिता के पास जाओ और उनको बोलो कि हमें माफ़ करें। हम आपको सिर्फ एक बैंक बैलेंस की वो बुक समझ रहे थे लेकिन आप हमारी ज़िंदगी की असली बुक हो। आपके बिना, आपके आशीर्वाद के बिना हमारे लिए कुछ भी नहीं।

0: सही में देखना उस दिन आपको कितनी खुशी की अनुभूति होगी। न बताना जरूरी है, न जताना जरूरी है, बस रिश्तों को दिल से निभाना जरूरी है। हेलो,
1: हाँ और से भुराराम बोल रहा दीदी।
0: हाँ कैसे हैं आप?
1: बस ठीक है, थोड़ी तबीयत गर्म थी तो आराम से बैठे हैं घर पे।
0: अच्छा अच्छा,
1: और आपके जब से सुबह से चालू हो गया
0: जी,
1: जब से प्रोग्राम सुन रहा हूँ और बहुत अच्छी बातें चल रही है
0: जी जी। तबीयत का ध्यान रखिएगा, आजकल मौसम ऐसा हो रहा है ना, तो मौसम के हिसाब से जी जी दवाई।
1: ये पहले 20 महीने आए थे तो हम तो इंतजार करके करके फिर
0: जी जी,
1: कल से आए आप मेरे घर से।
0: हाँ मैं बीच में थोड़ा सेवा के लिए बाहर गई थी।
1: अच्छा बाहर गए।
0: हाँ हाँ हाँ,
1: मेरा मधुबन भाई को और सबको मेरी तरफ से राम राम।
0: सब आपको भी राम राम, पूरी मधुबन परिवार की तरफ से। तबीयत का ध्यान रखिएगा। एक प्यारी सी लाइन, उल्टी या सीधी कैसे भी पढ़ो अच्छा लगता है। वो लाइन है जिंदगी तो अपने हैं, है जिंदगी तो अपने हैं, उल्टा पढ़ो अपने हैं तो जिंदगी है। कितनी सुंदर बात है। जो व्यक्ति सीधी और साफ बात करता है उसकी वाणी कठोर हो सकती है, लेकिन वो कभी किसी को धोखा नहीं दे सकता। अच्छा व्यवहार वो खजाना है जिसे जितना बांटिए उतना ही आपकी कीमत बढ़ती जाती है। का अच्छा खजाना, सहयोग एक अनमोल तोहफा है जो देने में भी अच्छा लगता है और मिल जाए तो भी अच्छा लगता है। जीवन में निरंतर नेक कार्य करते रहें। कोई आपका सम्मान करे या ना करे, आपकी अंतरात्मा सदा आपको सम्मानित करेगी। इससे बड़ा सुख जीवन में और कुछ नहीं है। हम दिल से यही दुआ करते हैं, आप जहाँ भी रहें खुशहाल रहें, हर दिन चेहरे पर मुस्कान रहे और जीवन में सदा खुशियाँ रहे। शुभान और शुभकामना के अलावा और कौनों चीज़ काम नहीं आती है, और हम अपने सभी सुनने वाले को लिए ये शुभकामना परमात्मा से करते हैं। अपनों की यादें खुशबू की तरह होती है, चाहे कितनी भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा के झोंके के साथ अंदर आ ही जाती है कि नहीं? चलिए भाई, ये बात पर फिर एक गीत सुन लेते हैं, उसके बाद आपसे बताएंगे। बहन जी, कौन निकवा सा गीतवा सुनवा दीजिए।

0: नमस्कार, मैं हूँ हरमीत सिंह, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स अंजन, म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड सिंगर्स फ्रॉम द फिल्म ओ माई गॉड. और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन. सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए.
1: देखिए भाई, बहुत सारी कहानी आपको सुनाते रहते हैं. अब वो कहानी को सिर्फ कहानी समझ के टाइम पास नहीं ना समझिएगा, वो कहानी से जीवन में उतारिएगा तो बहुत मज़ा आएगा. काहे कि पुराने ज़माने से ये पढ़ाई का एक तरीका रहा. एक राजा रहा, उनके बच्चे बहुत उदंड रहे. जो भी उनको पढ़ाने आता तो वो उनको इतना सताते कि वो एक दो दिन में भाग जाते थे. अब राजा बहुत परेशान कि अगर ये पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो राजकुमार कैसे बनेंगे, मैनर से टिकट्स कैसे आएंगे. तो राजा बहुत परेशान रहा. तो एक सोमदत्त शर्मा नाम के गुरुजी मिले. वो कहे कि इतने सारे गुरुजी नहीं पढ़ा पाए, हम पढ़ाएंगे आपके बच्चों को. राजा ने कहा, हमें तो लगता नहीं कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे, फिर भी आप ट्राई कर लीजिए. अभी उन्होंने राजकुमारों को कहा कि हम तुमको पढ़ाई नहीं पढ़ाएंगे, हम सिर्फ तुमको कहानी सुनाएंगे. अभी वो बड़े खुश हो गए कि इतने सारे गुरुजी आए थे, सब तो पढ़ाई की बात करते थे, ये कहानी सुनाएंगे तो बहुत दिलचस्पी ले लगे. और उन्होंने कहानी के द्वारा ही कहानी सुना सुना के राज विद्या और जौन जौन गुण होते हैं वो सब उन राजकुमार को सिखा दिए. और दो चार साल के बाद वो इतने सभ्य बच्चे बन गए, राजा को बहुत आश्चर्य हुआ. तो देखिए भाई, कहानी बच्चों को भी अच्छी लगती है, बूढ़ों को भी अच्छी लगती है, जवानों को भी अच्छी लगती है. और वो इसलिए सुनाई जाती है कि उससे जौन मेन बात बोलना चाहते हैं ज्ञान की, वो खुपरिया में बैठ जाए. तो आप सबसे भी यही प्रार्थना करते हैं कि जौन कहानी सुनाते हैं उनका मर्म समझ के अपने जीवन में उतारे. ससुराल में बेटी जैसा सम्मान और प्यार पाना चाहती है तो एक बात दिल से समझिए. आज बहुत सी बेटियों के मन में एक शिकायत होती है, हमें ससुराल में बेटी जैसा प्यार और सम्मान नहीं मिलता. शिकायत जायज भी हो सकती है, लेकिन इस शिकायत के साथ कभी कभी हमें एक सवाल खुद से भी पूछ लेना चाहिए, क्या मैं इस घर को उतना ही अपना मानती हूँ जितना चाहती हूँ कि ये घर मुझे अपना माने. यही सवाल शायद रिश्तों की बहुत सी उलझनों का जवाब दे सकता है. जब तक मायके में बेटी थी तब माँ हमारे लिए कितनी सहजता से सब कुछ कर देती थी. हम देर से उठते तो माँ बिना शिकायत के नाश्ता बना देती, चाय चाहिए होती तो चाय मिल जाती, खाना चाहिए तो खाना तैयार मिलता. घर के बहुत से काम माँ या मैट संभाल लेते और हम भी अपनी सुविधा और क्षमता के अनुसार कभी कभी हाथ बटा देते थे. लेकिन शादी के बाद जिंदगी की भूमिका बदल जाती है. जब हम सिर्फ किसी की बेटी नहीं रहती, हम किसी की पत्नी बनती हैं, किसी की बहू बनती हैं और आगे चलकर किसी की माँ भी बनती है. ई का मतलब ई बिल्कुल नहीं कि बहू को घर का हर काम अकेले करना चाहिए. नहीं, बहू भी इंसान है, उसे थकान होती है, उसे आराम चाहिए, उसे अपने सपने और अपनी पहचान भी चाहिए. ससुराल कोई नौकरी की जगह नहीं, एक घर है जहाँ जिम्मेदारियों के साथ प्यार, सम्मान और समझदारी भी होनी चाहिए. लेकिन एक पर हेलो
2: दीदी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, हम शांति कैसे हैं दीदी?
1: एकदम ठीक है, आप कैसे हैं? हम अब भी सोच रहे थे कि कहानी के बाद में बोलेंगे कि भाई हम लाइव कर रहे हैं, फुनवा तो कौन कर नहीं रहे हैं. तो
2: दीदी हम, हाँ दीदी मैं सुन रहा था, लेकिन मेरे क्या तो मेरी बहन आई थी रक्षा के लिए, रक्षा बनने के लिए, तो मैं थोड़ी देर घर गया था. तो हाँ, तो आकर तो मैंने सुना आपका कार्यक्रम तो चल ही रहा था, मैं सुन रहा था.
1: जी जी.
2: तो मैंने सोचा चलो आपसे बात ही कर लो, आज के दीदी रक्षा बंधन का तो आ रहा है, तो हमारी तरफ की आपको बहन को बहुत बहुत शुभकामनाएं.
1: आपको बहुत बहुत दुआएं बाबा की तरफ से, हमारे तरफ से.
2: जी जी बिल्कुल, हमारी तरफ से सभी हमारे भाई बहनों को, हमारी जो सुन रही है हमारे लिसनर बहन भी, कई सारी बहनें हैं और आज भी बहन भी, सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको खुश रहे, अच्छे रहे और हरदम हमारी बहनें मुस्कुराती रहे, ऐसी हम बाबा से दुआ करते हैं।
1: हम भी परमात्मा से यही दुआ करते हैं कि हमारे भाई लोग सदा खुश रहे, मुस्कुराते रहे।
2: जी दीदी बिल्कुल दीदी, और बहुत अच्छी बात है जी आपने बताया दीदी। हमने दीदी, हम चार पांच दिन पहले एक वीडियो देखा था दीदी, तो अपने पिताजी के जो जायदाद के लिए दीदी बच्चों ने अपनी बीवी और जो उसके बेटे ने इतना पिटा वो पिताजी को दीदी, आज देखो ऐसा हो रहा है कि माता पिता को बहुत दुखी हो रहा है
1: जी,
2: बहुत दुखी हो रहा है माता पिता बच्चों, आजकल के बच्चे हैं दीदी वैसे के
1: बिल्कुल उनकी अंदर भावनाएं नहीं है माता पिता के,
2: नहीं है दीदी ऐसा, माता पिता की कोई भावना नहीं थी, बस हमको सब कुछ दे दो, बस और कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ सस्ते कर रहे हैं दीदी
1: जी,
2: तो आज बस बच्चे बस हमको सब कुछ दे दो, ऐसे सोचते हैं माँ बाप को अच्छी तरह से नहीं रखते दीदी, और जब सब कुछ ले लेते हैं बाद में माता पिता को धक्का मार के निकाल
1: देते
2: हैं, ऐसा भी हो रहा है दीदी, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि माता पिता हमारे भगवान समान है। आज जिसको माता पिता नहीं है उसको बहुत, आज मैं बताऊँ मेरी बात, आज मेरी माँ को भी मुझे बहुत याद आ रही है दीदी, 3 साल हो गए माँ को दीदी,
1: लेकिन कहीं आपको तो संतुष्टता भी है कि आपने उनकी बहुत सेवा की,
2: वो तो हाँ,
1: दुआएं उनकी आपके साथ है।
2: फिर भी तो कहते हैं कि माँ कितनी भी उम्र की हो लेकिन जो माँ होती है तो माँ तो माँ होती है,
1: माँ होती है बिल्कुल बिल्कुल, वो तो कमी खलती है।
2: आज लोगों को माँ बाप को आज बहुत दुखी हो रहे हैं, बच्चों को अच्छी तरह से नहीं रखते हैं बच्चे और माँ बाप को दुखी है दीदी, ऐसा नहीं करना चाहिए
1: जी, बहुत जमाना बदल रहा है।
2: कहते हैं दीदी वो तो दीदी आपको के बच्चे भी आपके पास अटैक करेंगे कि आपने तो आपके माँ बाप को नहीं रखा तो आपको भी आपका बच्चे नहीं रखेंगे, तो ऐसा सोचना ही चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: कल आपकी भी बारी आएगी तो आप क्या करेंगे,
1: क्या करेंगे उस समय, पछतावे के अलावा और आंसू बहाने के अलावा कुछ नहीं रहेगा
2: दीदी। आपको हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं,
1: ओम शांति। देखिए भाई, सभी सुनने वाले को हमारी तरफ से भी रक्षाबंधन की बहुत बहुत दुआएं, कहे कि उस दिन तो हमारा प्रोग्राम नहीं रहेगा तो आज ही आपको एडवांस में दे रहे हैं, और जो कहानी सुना रहे थे उनको पूरी करते हैं। तो बहू भी इंसान है, उसे थकान होती है, उसे आराम चाहिए, उसे अपने सपने और अपनी पहचान भी चाहिए। ससुराल कोई नौकरी की जगह नहीं, एक घर है जहाँ जिम्मेदारियों के साथ प्यार सम्मान और समझदारी भी होनी चाहिए, लेकिन एक पल के लिए अपने आप को अपनी भाभी की जगह रख कर देखिए। अगर आप मायके जाएं और देखें कि आपकी माँ सुबह से अकेली रसोई में लगी हुई है, घर का सारा काम कर रही है और आपकी भाभी आराम कर रही है, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? शायद आप तुरंत माँ से कहेंगी, माँ आप क्यों इतना काम कर रही हो, भाभी को भी थोड़ा हाथ बटाने दो। लेकिन क्या हमने कभी अपनी भाभी की जगह खुद को रख कर सोचा है? जो अपेक्षा हम अपनी भाभी से रखते हैं, वही अपेक्षा कभी कभी हमारे ससुराल वाले भी हमसे रखते हैं। रिश्ते सिर्फ इस बात से नहीं चलते कि मुझे क्या मिला, रिश्ते तब खूबसूरत बनते हैं जब हम पूछते हैं मैंने इस रिश्ते को क्या दिया। और ये बात सिर्फ बहुओं के लिए नहीं है, सासू माँ से भी एक छोटी सी विनती, अगर आप चाहती हैं कि आपके बहू आपको माँ कहकर सिर्फ पुकारे ही नहीं बल्कि दिल से माँ माने, तो उसे सिर्फ बहू मत समझिए, उसे अपने घर की बेटी की तरह अपनाइए, उसकी छोटी छोटी गलतियों को तानों का विषय मत बनाइए, उसकी तुलना किसी और से मत कीजिए, हर समय उसकी परीक्षा मत लीजिए, क्योंकि जिस घर में बहू को हर पल खुद को साबित करना पड़े वहाँ वो घर तो संभाल सकती है लेकिन दिल नहीं खोल पाती। और बहुओं से भी एक बात, अगर आपको सास में माँ का प्यार चाहिए तो सास के प्रति बेटी जैसा अपनापन भी दिखाइए, उनकी तबीयत पूछिए, उनकी जरूरत समझिए, घर को सिर्फ ससुराल नहीं अपना घर समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं कि आप अपनी गरिमा, अपनी सीमाएं और अपने अधिकार भूल जाएं। अपनापन रखिए लेकिन आत्मसम्मान के साथ, जिम्मेदारी निभाइए लेकिन अपनी पहचान के साथ, प्यार दीजिए लेकिन खुद को मिटाकर नहीं। क्योंकि बेटी बनना सिर्फ अधिकार पाने का नाम नहीं है, बेटी बनना जिम्मेदारी निभाने और रिश्तों को दिल से अपनाने का नाम भी है। याद रखिए, मायका हो या ससुराल, घर दीवारों से नहीं बनता। याद रखिए, मायका हो या ससुराल, घर दीवारों से नहीं बनता, घर बनता है समझदारी से, घर बनता है सम्मान से, घर बनता है त्याग से, घर बनता है एक दूसरे की भावनाओं को समझने से। जहाँ मैं से ज़्यादा हम की आवाज़ सुनाई देती है, वहीं घर धीरे धीरे स्वर्ग बन जाता है। इसलिए अगली बार शिकायत करने से पहले बस एक पल ठहर कर खुद से पूछिए, क्या मैं इस घर को उतना ही अपना मानती हूँ जितना चाहती हूँ कि ये घर मुझे अपना माने। अगर इस सवाल का जवाब हाँ है तो यकीन मानिए, रिश्तों में बदलाव आने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि घर को स्वर्ग बनाने के लिए किसी चमत्कार की जरूरत नहीं होती, बस थोड़ी सी समझदारी, थोड़ा सा सम्मान, थोड़ा सा त्याग और बहुत सारा अपनापन चाहिए। आज से शुरू कर दीजिए ये बात, देखिए आपका घर स्वर्ग बनता है कि नहीं। चलिए भाई, एक गीत तो अब बनता ही है, तो बहन जी एक गीत निकवा से सुनवा दीजिए ना।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: प्लेटफॉर्म पर चलते समय ध्यान रखें कि यदि कोई गाड़ी रनिंग थ्रू पास होती है उस समय प्लेटफॉर्म के किनारे पर न चलें, जिससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। तब एक छोर से दूसरे

0: छोर पर जाने के लिए पैदल पुल का इस्तेमाल करें। रेलवे लाइन क्रॉस करना कानूनी अपराध है व इससे आप अपनी जान गंवा सकते हैं।
1: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: संबंधों की असली पहचान। आज का समय ऐसा हो चला है कि अनेक संबंध भावनाओं से नहीं बल्कि स्वार्थ से बंधे दिखाई देते हैं। जब तक किसी को आपकी आवश्यकता होती है तब तक वो आपके आसपास रहता है, अपनापन जताता है, मुस्कुराता है और आपके सुख दुख का साथी होने का आभास देता है। लेकिन जैसे ही उसका उद्देश्य पूरा हो जाता है वही व्यक्ति इस तरह मुड़ जाता है मानो कभी कोई रिश्ता था ही नहीं। सबसे अधिक पीड़ा उस व्यक्ति को होती है जिसने संबंध को पूरे मन से निभाया हो, जिसने बिना किसी अपेक्षा के अपना समय, विश्वास और स्नेह दिया हो। जब वही व्यक्ति स्वयं को ठगा हुआ पाता है तो उसके मन में एक ही प्रश्न उठता है, क्या मेरा अपनापन इतना सस्ता था? उत्तर मिलता है, नहीं, तुम्हारा अपनापन सच्चा था, बस सामने वाला उसे समझने की क्षमता नहीं रखता था। स्वार्थ केवल संबंध नहीं तोड़ता, वो विश्वास भी तोड़ देता है। और जब विश्वास टूटता है तो इंसान केवल दूसरों से ही नहीं कई बार स्वयं से भी दूर होने लगता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हमें भी स्वार्थी बन जाना चाहिए। यदि संसार में छल है तो निस्वार्थ प्रेम भी है। यदि कुछ लोग उपयोग करके छोड़ देते हैं तो कुछ लोग जीवन भर बिना किसी स्वार्थ के साथ निभाते भी हैं। इसलिए किसी एक अनुभव के कारण पूरी दुनिया को दोष देना उचित नहीं। हाँ, इतना अवश्य सीख लेना चाहिए कि प्रेम करो पर विवेक के साथ, विश्वास करो पर आंखें बंद करके नहीं, किसी के लिए अच्छा करो लेकिन प्रतिफल की अपेक्षा मत रखो, क्योंकि अपेक्षाएं टूटती हैं जबकि निस्वार्थ कर्म आत्मा को संतोष देता है। हर मुस्कुराहट के पीछे स्वार्थ नहीं होता और हर मधुर व्यवहार छल नहीं होता। जीवन हमें कटु अनुभव इसलिए नहीं देता कि हम कठोर बन जाएं, बल्कि इसलिए देता है कि हम परिपक्व बन सके। सच्चाई छोड़ना समाधान नहीं, सच्चाई के साथ विवेक जोड़ लेना ही जीवन की कला है। कभी कभी कुछ लोग हमारे जीवन में साथ निभाने नहीं बल्कि जीवन का सबसे कठिन पाठ पढ़ाने आते हैं। वो हमें सिखा जाते हैं कि संबंधों में प्रेम जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक है सही पहचान। सच्चे लोग परिस्थितियों से नहीं बदलते, वे केवल लोगों को पहचानना सीख जाते हैं और यही पहचान जीवन की सबसे बड़ी परिपक्वता होती है। तो देखिए भाई, जीवन में कई बार हम धोखा खा जाते हैं लेकिन जीवन में अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो ये जो बातें इतनी कही इसको ध्यान में रखिए। मैं खुद को बहुत पसंद करती हूँ, क्योंकि मैंने खुद को ढूंढते टूटते देखा है। बिखरे हुए हर एक टुकड़े को मैंने अपने हाथों से समेटा है, अपने आंसू खुद ही पोंछे हैं, हर दर्द को चुपचाप सहा है, अपने अंदर के सन्नाटे को मैंने अकेले ही जीना सीखा है। जिन्होंने राहों में दिया धोखा मैंने उन सबको माफ कर दिया, अपनों के बदलते रंगों को मैंने बहुत करीब से देखा है। इतना अच्छा होने के बाद भी मैंने खुद को खुद से रूठते देखा है। अब कोई चाहे या ना चाहे मुझे, अब मैं ऐसी कोई ख्वाहिश ही नहीं करती क्योंकि मैंने अपना सहारा खुद बनना सीख लिया है। देखिए भाई, इन छोटी छोटी बातों और कविताओं से जीवन का पाठ पढ़िए और जीवन को अच्छा बनाइए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलने का वादा करके नमस्कार।

0: हमारी श्रद्धेय लता जी, जिसको सूर मल्लिका कहते हैं, वो भी अंतिम दिनों तक रियाज करते थे। इसलिए अभ्यास अनिवार्य है, कार्य चाहे कोई भी हो। तो आइए, संगीत साधना के बारे में और जानकारी देने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ मौजूद है श्यामली जी। श्यामली जी, संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: हाँ गीता जी, आपको प्रणाम। और जितने सारे लिसनर है, संगीत प्रेमी है, उसके लिए ढेर सारे शुभकामनाएं
0: जी। आज हमने कहा कि संगीत समंदर के समान है, माना उसका जो निचोड़ कहना हम जो चाहते हैं
1: जी,
0: कि काम कोई भी हो लेकिन अथक मेहनत प्रयास हमको जारी रखने चाहिए, ऐसे संगीत रूपी साधना में भी रियाज या अभ्यास अनिवार्य है। आप इसके बारे में क्या प्रकाश डालना चाहेंगे?
1: जैसे हम कुछ पसंद करते हैं
0: जी,
1: या कोई भी कला अगर उसमें दिलचस्प है तो हमारा दिमाग में वही घूमता रहते हैं, ठीक है ना। इसलिए हम कार्य करते, काम करते करते भी वो कर सकते हैं। ये खाना बनाते हैं, गुनगुना सकते हैं, कुछ भी कर सकते थे, ये बंद नहीं हो सकता,
0: मन नेचुरल है, नेचुरल होता है।
1: अगर संगीत के साथ प्रेम है, प्यार है, जिगरी प्यार जिसको कहते हैं, वो तो करेंगी। जैसे हम भी, हमारे तो गृहस्थी में रहने से कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है, इतना टाइम नहीं मिलता है, लेकिन थोड़ा भी टाइम मिले संगीत के सामने संगीत करने बैठ जाइए। तो इसलिए कहते हैं कि कोई कला अगर प्रेम है तो वो अपना जगह ढूंढ लेंगे, समय ढूंढ लेंगे, समय को
0: उसके लिए समय नहीं है ये बहाना नहीं चलेगा।
1: समय पाबंदी नहीं हो सकता है, कोई भी समय वो बैठ सकता है, कर सकते है
0: जी। श्यामली जी, आज आप मालकोस राग में आगे क्या सिखाना चाहेंगे?
1: हाँ, मालकोस राग में जो द्रुत लय की जो स्वर लिपियाँ हो हमने दे दिया
0: जी।
1: आज बंदिश देने का दिन है, बंदिश उसके साथ थोड़ा तान करेंगे, विस्तार करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं जितने सारे लिसनर है उनको एक प्रकार की गीत है जिसको कहते हैं ध्रुपद। जैसे हम पढ़ाई में निबंध लिखते हैं, ऐसे होता है ना, कोई भी टॉपिक लेकर हम करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, बहुत सुंदर उसको भाव प्रकाश करते हैं सबके सामने। इसलिए ध्रुपद जैसे है एक संगीत होता है, तो ऐसे आम जनता के लिए नहीं है, लेकिन जो ये शास्त्रीय संगीत प्रेमी है वो बहुत पसंद करते हैं ध्रुपद। तो
0: अच्छा।
1: इसलिए ध्रुपद करना चाहती हूँ, ये है श्री गणेश जी की स्तुति है।
0: Okay.
1: स्तुति के ऊपर एक बहुत सुंदर है, ये ताल जो होता है चौताल होता है, जो ध्रुपद के साथ चौताली बजते हैं, चौताल पखवाज एक पकड़ की वाद्य यंत्र है, उसके साथ बजते हैं। तो मैं करके सुनाती हूँ, लिसनर को सुनाना चाहती हूँ, वो भी सुनना चाहिए ना, वैरायटी टाइप का गीत सुनना चाहिए, ठीक है?
0: बिल्कुल जी।

0: तो ये आपने हमको गणेश स्तुति द्रुपद में सिखाई।
1: इसमें इस पद में गणेश जी कैसे है, लेकिन हमने भजन भी कह सकते हैं इसको, हम भजन की हिसाब से भी ले सकते हैं।
0: जी जी है? आगे श्यामली जी आप हमें क्या सिखाना चाहेंगे?
1: हाँ, जो हमने पिछले एपिसोड में दूत स्वरलिपि दिया था, उसका बंदिश जो है, पहले बंदिश अगर लिसनर गीता पेन लेकर बैठते हैं तो हम बताते हैं तो लिख सकते हैं। पिया संग लड़े पछे तानी में, पिया संग लड़े पछे तानी में, देखो ऐसी मदा की इनी में, देखो ऐसी मदा की इनी में, पिया संग लड़े पछे तानी में, देखो ऐसी मदा की इनी में। ये स्थाई हो गया, अभी अंतरा है
0: जी।
1: उन बिन मैं का कलन पड़ते हैं, उन बिन मैं क्या कलन पड़ते हैं, यूं ही रैन बिहानी तरफ तरफ मैं रही सेज पड़े, तरफ तरफ मैं रही सेज पड़े, जैसे मीन बिन पानी में, जैसे मीन बिन पानी मैं, पिया संग लड़ पछे तानी में। बहुत सुंदर बंदिश है
0: जी।
1: तो पहले हम स्वरलिपि के साथ ये धुन बैठा देते हैं, ये जो बोल बैठा देते हैं, ठीक है
0: जी।

0: आपने हमको मालकोस राग की बंदिश दे दी।
1: हाँ, स्वरलिपि हमने दे दिया पिछले एपिसोड में। हाँ। अभी बंदिश इस पे बैठा दिया है। बहुत सुंदर बंदिश, अगर कटते हैं तो बहुत अच्छा है
0: जी।
1: ठीक है
0: श्यामली जी, आगे भी मालकोस राग में आपसे जरूर सीखेंगे, मगर अभी वक्त हो चला है एक छोटे से अल्प विराम का। तब तक हम अपने श्रोता मित्रों को मालकोस राग से ही संबंधित एक प्यारे से मीठे से गीत का आनंद लेने के लिए प्रेरित करते हुए फिर मिलेंगे संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: पुनः आप सभी संगीत प्रेमी मित्रों का संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज शुरुआत में ही श्यामली जी ने हमको संगीत के रियाज या अभ्यास कहो इसकी महत्ता हमको बताई, साथ साथ में मालकोस राग में ही हमको गणेश स्तुति भी सुनाई और मालकोस राग की बंदिश भी सिखाई। आगे श्यामली जी आप हमको क्या सिखाना चाहेंगे?
1: हाँ, अभी जो हमने जो बंदिश दिए हैं उसमें थोड़ा विस्तार करेंगे, थोड़ा तान करेंगे
0: जी।
1: लिसनर और भी कर सकते हैं सुनकर, अगर गुरु जी के पास शिक्षा लेता है तो बहुत अच्छा है। तो मैं कोशिश करती हूँ जितना हो सके अगर लिसनर उठा सके। ठीक है
0: जी, बिल्कुल।

0: श्यामली जी, तो ये आपने विस्तार और तान हमको करके सिखाया।
1: मालकुश को थोड़ा विस्तार किया, थोड़ा तान कर दिया
0: जी।
1: ऐसे तो गुरु के पास शिक्षा लेना ही है, जितना थोड़ा छोटा छोटा करके दिखा दिया, जितना हो सकता है ले सकते हैं
0: जी।
1: ठीक है
0: श्यामली जी, आज खास आप हमारे लिए कौन सा गीत लेकर आए?
1: हाँ, बहुत पुरानी एक फिल्म है, अपेरा हाउस 1961 में लता जी बहुत बहुत सुंदर एक गीत उन्होंने प्रस्तुत किए थे, बालम्मा मानेना, बहुत सुंदर गीत, वो आपको करके सुनाती हूँ
0: जी।

जब जब पलटू गागड़े भर के लट रही जाई मुख पे बिखर के जब जब

পাও ঘুঘেট তারু নেন চড়াও ঘবরাহট মি রাহ ন পাও।

0: बहुत बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
1: ठीक, हम ये कोशिश कर सकते हैं, लता जी का गीत है ना
0: जी,
1: तो कोशिश कर सकते हैं।
0: बिल्कुल श्यामली जी, पुनः मिलेंगे अगले हफ्ते संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में। श्रोता मित्रों, आपका कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, कुछ पूछना चाहते हो संगीत के विषय में, तो आप तुरंत हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एसएमएस के द्वारा भी आप अपनी बात हम तक रख सकते हैं। हमारा नंबर है 94-1415-1415। फिर से रिपीट करती हूँ, हमारा नंबर है 9414151415। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता है, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना है, नीचे करना है? ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज़, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किसके पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: जब आसमान में एकदम अंधेरा होता है, काले बादलों ने चांद को भी ढक दिया होता है, और तब एक टिमटिमाता तारा नजर आता है जो ये एहसास कराता है कि ढूंढने पर रोशनी की एक झलक तो मिल ही जाती है। राठौड़ परिवार के जमाईसा यानी सूरजमल जी को अपने घर से बेदखल कर दिया गया और अपनी पत्नी यानी राठौड़ परिवार की सुपुत्री शांति के साथ घर जमाई बनकर रहना मतलब समाज की जिल्लत सहना। क्या राठौड़ परिवार अपने जमाई को अपनाएगा? क्या इस घर में एक और मेंबर आएगा, या फिर शांति और सूरजमल को अपना ठिकाना कहीं और ढूंढना होगा? आइए सुनते हैं।
1: मेरा फैसला यह है कि
2: क्या है पापा,
3: थोड़े दिन तो जमाई सा को रहने देते हैं।
4: मुझे पता है पापा कभी नहीं मानेंगे।
5: मुझे तो लगता है कहीं साथ साथ शांति को भी ना घर से निकाल दें।
1: इस दुनिया में भांति भांति के रिश्ते हैं। कुछ लोग उन्हें दिल से निभाते हैं और कुछ समाज के डर से। मान मर्यादा का ख्याल हमको भी है। समाज के नियम के हिसाब से हम भी चलते आए हैं, लेकिन वो नियम जो सच्चे है, जो घर की सुख शांति के लिए जरूरी है।
5: हाँ पिताजी, आप ठीक कहते हैं, और हम राठौर परिवार का नाम बदनाम थोड़ी होने दे सकते हैं। जा शांति, तू भी अपना बैग पैक कर ले, ढूंढो कहीं और अपना ठिकाना दोनों।
2: भाभी, आप ये क्या कह रही है? क्या ये घर मेरा नहीं है? पापा, आप भी?
6: शांति, सब ठीक कह रहे हैं, चलो हमें यहाँ किसी पर बोझ नहीं बनना है।
7: तुम लोग का आज से टीवी सीरियल देखना बंद।
8: क्या?
2: क्या?
8: क्या?
7: अरे मेरी पूरी बात सुने बिना एकदम टीवी सीरियल के जैसे अपना अपना मतलब निकलते जा रहे हो। मैं ये कह रहा था कि रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, और बेटा सूरजमल, इस दिल में और इस घर में दोनों में तुम्हारे लिए बहुत जगह है।
9: हाँ जमाई सा तो यहीं रुकेंगे, कितनी अच्छी बात है ना?
3: हाँ बिल्कुल, ये बात सही है।
2: मैं तो बहुत खुश हूँ।
3: बढ़िया,
9: बहुत अच्छी बात है,
10: सब लोग मिलकर रहेंगे।
11: सुनिए, मैं जानती हूँ आप शांति और दामाद जी का भला चाहते हैं, और मैं भी वही चाहती हूँ, लेकिन सोचिए जरा, घर जमाई बनकर उनकी क्या इज्जत रह जाएगी?
3: माँ, तुम कैसी बातें कर रही हो? इस वक्त जमाई सा को हमारी जरूरत है।
1: मेरा फैसला आखिरी है, जमाई सा यही रहेंगे, अब से यही उनका घर।
12: वीरेंद्र, तू तो समझ बेटा, मैं तो बस इनकी भलाई सोच रही हूँ।
13: माँ, आप क्या चाहती हो, दीदी और जीजा जी सड़क पर दर दर भटके?
11: किशन, सुन ले मेरी बात, वो तेरी तरह किताबी बातें और शायरी नहीं करते हैं जो सड़क पर भटकना पड़े।
3: जमाई सा परिवार के हैं, और आपने ही हमें बचपन से सिखाया है कि परिवार का मतलब ही है एक दूसरे के साथ खड़े रहना। हम आपके ही सीख पर चल रहे हैं माँ।
5: अरे ये समाज हम पर थू थू करेगा, और घर जमाई की इज्जत कौन करता है?
13: हम तो करते हैं भाभी जी, भाभी ताने कसती है फिर भी उनकी करते हैं, तो जीजा जी की क्यों नहीं?
14: अरे वैसे भी भाभी, जब बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं होता तो भला बहू और दामाद में क्यों हो?
5: मेरा इस घर में कोई सुनता ही नहीं है, पहले गलती करेंगे फिर पछताएंगे। देखती हूँ मैं भी कब तक रहती है खुशी न दामाद की।
3: अरे जमाई सा, अब तो आंसू पोंछ दीजिए, आपका आपके घर में स्वागत है।
9: वैसे जमाई सा, मैं आपको वार्न कर देती हूँ, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है।
11: अरे राजकुमारी, तू डरा क्यों रही है इस बेचारे को?
3: अरे माँ, खतरा है ना?
12: क्या?
3: राजकुमारी के हाथ का खाना।
6: नहीं नहीं, मुझे तो राजकुमारी भाभी के हाथ का खाना बहुत पसंद है।
14: क्या करेले के लड्डू
2: या मिर्ची का हलवा?
9: बस इसी से वॉर्न कर रही थी मैं आपको जमाई सा, यहाँ ना आपकी टांग खिंचाई कर कर के लंबा ही कर देंगे। लेकिन सच बताऊं, ये परिवार बहुत प्यारा है, हर रंग है यहाँ पे।
10: देखो किस्मत हमारी, जब इनके जीवन में अंधेरा हुआ, ठोकर लगी तो हम याद आ गए। भाई हम सब कोई सूरज थोड़ी हैं जो तुम्हारे जीवन में उजाला कर देंगे। इतनी कमाई नहीं है हमारी कि अब बेटियों को और उनके पतियों को भी बैठ कर खिलाएं।
13: इस बात पर मुझे गर्मा गर्म शेर याद आ गया।
15: सुनाओ सुनाओ किशन, इनके तानों से अच्छा है तुम्हारा शेर ही सुन ले।
9: शेर नहीं भाई साहब, शेर शेर।
15: हाँ हाँ वही।
11: हाँ बेटा, हमारी समझ में नहीं आते ये तेरे शेर कविताएं, लेकिन कम से कम किसी के दिल को दुखाती तो नहीं है तेरी ये कविताएं।
13: तो अर्ज किया है, सूरज सी नहीं है रोशनी मगर चांद उदास है क्या, सूरज सी नहीं है रोशनी मगर चांद उदास है क्या, अहमियत पर उसे अपनी कुछ कम नाज है क्या, अंधेरों में साथ निभाता है दिन में भला क्या खूबी है, मुख्तलिफ किस्मत पर अपनी उसे एतराज है क्या।
9: वाह वाह वाह वाह
3: वाह वाह। किशन बात तो तूने सो आने सच्ची कही है, रिश्ते कभी चांद बन जाते हैं तो कभी दिए की लौ ही सही, लेकिन अंधेरों में कभी रोशनी देना नहीं भूलते।
10: तो बनो चांद सितारे तुम लोग, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना।
15: चंद्रावती तुम कभी कोई अच्छी बात नहीं कर सकती हो।
10: मैं तो बस सच्ची बात कहती हूँ, बुरी तुम लोग को अपने आप लग जाती है।
15: सच तो बहुत है दुनिया में चंद्रावती, एक सच मैं भी कह देता हूँ।
3: भाई साहब जाने दीजिए ना।
6: भाभी जी मैं किसी पर बोझ बनने नहीं आया हूँ, मैं शांति को लेके यहाँ से चला जाऊंगा, बस कुछ दिन ही।
15: जमाई साहब आपका घर है, आप यहीं रहेंगे, और तुम्हें सच सुनना है ना चंद्रावती, तो सुनो, एक तुम हो जो इस घर का माहौल खराब करके रखती हो, ना किसी को चैन से रहने देती हो ना सोने देती हो तुम।
3: भाई साहब बस कीजिए, जमाई साहब के सामने ये सब शोभता नहीं।
10: मैंने इस घर के लिए क्या क्या किया है और ये कहते हैं।
9: भाभी जी, भाभी जी चुप हो जाइए, हम जानते हैं आपके पास जुबान कड़वी है दिल नहीं।
14: बातों बातों में आधा सच कह दिया राजकुमारी भाभी ने, जुबान की तो बड़ी कड़वी है बड़ी भाभी।
13: हाँ बहना, रोने में भी ऐसा लग रहा है गुस्से में तंतना रही हो।
10: क्या क्या मैं कड़वी हूँ जुबान की?
11: नहीं नहीं बेटा, तेरे मुंह से तो फूल झड़ते हैं।
7: अरे तुम लोग अभी तक यहाँ क्या करो, ऐसे ही बिठा कर रखा है जमाई साहब, कुछ खिलाओ।
6: आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है पापा।
7: एहसान कैसा बेटा, ये तो रिश्ते की परिभाषा है, समय का खेल बहुत निराला है, कभी किसी का अच्छा वक्त आता है कभी बुरा, ये तो जीवन का चक्र है, रिश्ते इस पूरे चक्र में साथ निभाते, अगर गम में साथ नहीं तो खुशी में रहने का अधिकार भी नहीं।
3: पापा एकदम सही कह रहे हैं जमाई साहब, हम पांचों भाई बहन में बड़े भाई साहब किशन, शांति और रागनी यही सीख के बड़े हुए हैं कि परिवार मतलब प्यार, कितनी भी नोक झोंक हो, गुस्सा आए या एक दूसरे से दिमाग की सोच में अंतर हो सकता है लेकिन दिल में नहीं।
11: चलिए जमाई साहब अब आप अंदर चलिए, मुंह हाथ धो लीजिए, फिर हम बाहर खाने के लिए मिलते हैं।
9: पापा कितना सही कह रहे हैं भाभी, ऐसा कोई अपने घर वालों के साथ करता है क्या जैसा जमाईसा के भाई ने किया? ऐसे तो मैं अपने जले हुए आटे के साथ ना करूं। उस दिन आटे का हलवा बनाते समय जो आटा जल गया था उसको भी मैंने सब्जी में घोल कर इस्तेमाल कर लिया था। वो जो जली हुई सी महक नहीं आ रही थी सब्जी में, आप लोग कह रहे थे सब्जी जली भी नहीं महक भी आ रही है, ऐसा कैसे? वो उस आटे की वजह से ही तो थी। जमाईसा रुकिए रुकिए, मैंने कल ही काली गाजर और करेले का केक बनाया है, आपके लिए अभी लेकर आई।
16: अब राजकुमारी जी के हाथ का केक खा के जमाई सा का हाजमा खराब होगा या सिर्फ मुंह का टेस्ट, ये तो मैं नहीं जानता। हाँ लेकिन ये जानता हूँ कि रिश्तों के धागों में अगर एक बार गांठ पड़ जाए तो खुलने पर भी धागे को कमजोर कर देती है। क्या सचमुच रिश्ते इतनी आसानी से छूट जाते हैं? क्या वो भाई या बहन जिसके साथ बड़े हुए, हंसे खेले, जिसने बचपन में हमें पापा की डांट से बचाया, जिसको अगर किसी और ने चोट पहुंचाने की कोशिश भी की तो हम आगे खड़े हो गए, उसे हम आज खुद चोट पहुंचाने में जरा भी नहीं सोचते। कैसे आ जाती हैं इतनी दूरियां, वो प्यार कहां खो जाता है। खैर, मुझे तो इस बात की खुशी है कि राठौड़ परिवार ने सूरजमल यानी जमाई सा को ये एहसास दिलाया कि ये उनका अपना घर है। लेकिन राठौड़ परिवार है जी, यहाँ सूरज भी अपनी निकलने की दिशा भूल जाता है तो नए जमाई सा मतलब पुराने जमाई, नए घर जमाई क्या चीज है ना। बस सुनते जाइए कि इस जंगल में अब क्या क्या होगा जब एंट्री होगी एक नए जीव की। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर फिर मिलेंगे कार्यक्रम घर ऑन एयर के अगले एपिसोड में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
9: घर ऑन एयर पात्र परिचय। दादाजी भगवत सिंह राठौड़, आरजे ज्ञानेश्वर। दादी जी अंबिका देवी राठौड़, आरजे संध्या। चाचा किशन सिंह राठौड़, आरजे श्रीनिधि। ताऊ जी गजेंद्र सिंह राठौर, आरजे रोहित। ताई जी चंद्रावती, आरजे प्रभा। बुआ रागनी राठौर, आरजे कृष्णा। बुआ शांति राठौर, आरजे मोना। वीरेंद्र राठौर, आरजे विशाल। राजकुमारी राठौर, आरजे आरुषि। बच्चे रूहानी अमीक्षा। नैरेटर आरजे अमित।

बचपन की सुरक्षा है एक खास जिम्मेदारी, इस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। आपातकालीन स्थिति के साथ उन्हें लंबे समय के पुनर्वास के लिए मदद भी करता है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। बच्चे या बड़े जो उनकी सहायता करना चाहते हैं डायल कर सकते हैं 1098 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप और रेडियो मधुबन पर कार्यक्रम चल रहा है सलाम है जिंदगी। जी हाँ दोस्तों, हर रविवार हम आपके पास आते हैं और हमारे साथ होते हैं एक विशेष व्यक्तित्व जिनके जीवन में हम झांकने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं उनके जीवन को, उनके जीवन के संघर्षों को जानते हैं, उनके जीवन की उपलब्धियों को जानते हैं और साथ साथ सलाम करते हैं उनकी ज़िंदगी को। तो दोस्तों, आज हमारे साथ रेडियो मधुबन के स्टूडियो पर कार्यक्रम सलामी ज़िंदगी में मौजूद हैं झांसी उत्तर प्रदेश से पधारे हुए कालका प्रसाद चौरसिया जी। कालका प्रसाद जी का जन्म भारत के

0: कार्यक्रम जो है हमारे बड़े बुजुर्गों को समर्पित है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे साथ में जो अतिथि होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनके जीवन से ऐसी बातें हमारे श्रोताओं तक लेकर के आएं जिससे हमारे श्रोताओं को भी उनके अनुभवों का लाभ मिल सके, वो भी अपने जीवन में उन शिक्षाओं को लाभ ले सकें, धारण करें और फायदा उनको पहुँच सके। इस कहानी की शुरुआत करते हैं आपकी जीवन कहानी का जो पहला पड़ाव है, यानी कि बचपन। कहा भी जाता है कि बचपन जो है हमारे पूरे जीवन की नींव होती है, तो सबसे पहले जानना चाहेंगे आपके बचपन के बारे में, कहाँ आपका जन्म हुआ और आपके माता पिता कैसे थे, वो क्या करते थे, क्या सीखा आपने उनसे।
1: हमारे एक गांव है छतरपुर में, पीपट पनागर नाम से गांव है
0: जी।
1: पान की खेती होती थी हमारे यहाँ, पिताजी वगैरह पान की खेती, और ये खेती तो है ही, तो वैसे किसान ही थे वो, लेकिन उस समय गांव में थोड़ा पढ़े लिखे लोगों में माने जाते थे और साधारण परिवार ही था, विशेष वो नहीं था कुछ, लेकिन आराम की जिंदगी थी बचपन में
0: जी।
1: हमारे पिताजी ने पहले हमको थोड़ा सा घर पर पढ़ाया, बाद में फिर स्कूल में।
0: स्कूल आपका कितनी दूर था घर से?
1: स्कूल गांव के अंदर ही था, 100-200 मीटर।
0: तो उस समय जो बचपन के आपके दोस्त होंगे और जिनके साथ आप भी घूमते होंगे, मस्ती करते होंगे, सीखते होंगे साथ में, हाँ, स्कूल जाते होंगे, वो अभी कहाँ हैं, याद आते हैं उनको, उनका नाम कुछ शेयर करना चाहें तो?
1: कुछ लोग तो जो हमसे एजेड थे, अधिकतर वो तो चले ही गए हैं, और हमारी छोटे एज वाले भी कुछ लोग चले गए
0: जी।
1: बस 2-4 लोग ऐसे बचे हैं। गांव का जीवन तो सभी का एक साथ रहता ही है, सभी दोस्त और सभी
0: जी जी
1: प्यार से रहते हैं।
0: ऐसे दोस्त जिनको आप बाद में भी मिलते रहे या अभी भी मिलते हो,
1: हाँ,
0: कुछ बताना चाहेंगे उनके बारे में?
1: अभी भी मिलते रहते हैं।
0: क्या नाम है उनके?
1: लल्लूमल भाई है, वो भी हमारे साथी और शिव बाबा से वो भी जुड़े हुए हैं। एक हमारे रामराजी भाई हैं, वो भी हैं, अभी क्लास फेलो थे जो
0: जी,
1: तो वो भी अभी ठीक है, मिलते रहते हैं। जब कभी गांव जाते हैं किसी काम से तो प्यार से मिलते हैं। शिव बाबा का थोड़ा बहुत चर्चा हो जाती है कुछ ना कुछ तो प्रसन्नता होती है पुराने मित्रों से मिलने पर, और खुशी हमको यही रहती है कि भाई इनको भी बाबा का परिचय दिया जाए, वो भी शिव बाबा की बन जाए, और वो भी चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग परिस्थितियों बस घिरे रहते हैं तो उतना नहीं कर पाते हैं। और एक साथी तो हमारे पिछले 2-3 साल पहले मिजाजी लाल गुप्ता जी थे
0: जी,
1: वो अपना युगल सहित आए थे हम मधुबन में बाबा के घर में
0: जी,
1: और उनकी अच्छी पक्की लगन है, वो तो अभी भी है, लेकिन उनकी धर्मपत्नी जी का यहीं पर जो है
0: संन्यास हो गया,
1: शांत हो गई थी वो
0: जी।
1: तो कभी कभी ऐसे भी मौके आ जाते हैं।
0: बचपन की क्या यादें जुड़ी हैं आपके इन दोस्तों के साथ में, क्या करते थे बचपन में आप लोग?
1: बचपन में हम लोग खेल पाल तो सभी कबड्डी वगैरह, उस समय फुटबॉल वगैरह ये खेला करते थे, गिल्ली डंडा भी खेलते थे, और एक हमारे यहाँ तालाब है अच्छा, काफी बड़ा है, तो होड़ लगती थी, हम लोगों की प्रतियोगिता होती थी इस पार से उस पार कौन पहले पहुंचता है तैर के, लोग वो भी किया करते थे
0: जी।
1: इस प्रकार से हमारा बचपन में बीता, और थोड़ा बहुत किसानी का काम तो कोई ज्यादा, वो शाम सुबह का चले जाए कभी अपने गाय बैल वगैरह उनको भी देखना
0: जी,
1: और सवेरे उस समय गवर्नमेंट स्कूल 10 से 5 बजे तक रहता था, तो इसके बाद शाम सुबह ही टाइम मिलता था थोड़ा सा, तो वैसे ज्यादा उत्पात वाले नहीं थे हमारे मित्र वगैरह ना, वैसे अपना घरेलू काम, देसी पानों का काम, चौरसियों के ही अधिकतर गांव हैं वो, अपना पान का काम किया करते थे।
0: स्कूल कैसा था, टीचर किस प्रकार होते थे?
1: अरे स्कूल हमारा बहुत अच्छा, उस समय के टीचर तो एक प्रकार से देवता टाइप थे, इतना अच्छा हम लोगों को पढ़ाते थे और

0: जो बाहरी बाहर के थे वो जैसे पोस्टिंग बाहर यहाँ पोस्टिंग थी गांव में ही रहते थे तो सुबह शाम हम लोगों को पढ़ाने के लिए वो बाध्य करते थे कि नहीं एक घंटे के लिए पढ़ना जरूर है हमारे पास आना है। उनके कमरे में जाया करते थे हम लोग लेकिन वो कभी फीस नहीं लिया करते थे जैसे आजकल ट्यूशन चलता है ना।
1: ओके।
0: उस समय बिल्कुल फ्री सेवा किया करते थे वो
1: स्वेच्छा से पढ़ाते थे।
0: हम अधिकतर बच्चे जो है उनके पास सुबह शाम एक घंटा पढ़ने भी जाते थे। स्कूल का तो टाइम अलग ही है। इस प्रकार से हमारी दिनचर्या रहती थी।
1: तो स्कूल के टीचर्स को कैसे याद करते हैं, कुछ नाम उनका और वो सब सर को क्या बताना चाहेंगे उनके बारे में?
0: अब उस टीचर हमारे कोई बच्चे ही नहीं है
1: जी।
0: लेकिन जब मैं सर्विस में आया यहाँ सन 71 में तो घर जाके कभी मिल करते मतलब उनसे तो हम तो उनके चरण स्पर्श करते थे और उनको भी बहुत खुशी हुआ करती थी कि चलो हमारे पढ़ाए हुए बच्चे कुछ प्रोग्रेस कर रहे हैं, सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आशीर्वाद मुझे मिलता था, बहुत प्यार मिलता था उनका।
1: बहुत अच्छी बात है। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप अपने जो बचपन के दिन हैं और दोस्तों के बारे में टीचर्स के बारे में हमारे श्रोताओं से शेयर किया। हमारे श्रोताओं को भी जो वर्तमान समय अलग अलग स्थानों में वर्तमान जीवन की शैली में ढल चुके हैं तो उन्हें भी एक झलक मिलेगी कि आज से 50 साल 60 साल 70 साल पूर्व कैसा जमाना होता था, किस प्रकार से लोग होते थे सब चीज़ों के बारे में। एक बात और पूछना चाहूँगा कि माता पिता जो माता पिता होते हैं वो हमारे जीवन को एक शेप देने में या उसका गढ़ने में उनका बहुत योगदान होता है
0: जी।
1: तो पिताजी को कैसे याद करते हैं, कौन सी विशेषताएं उनके अंदर थी जिनको आप आज भी फॉलो करते हैं?
0: हमारे पिताजी तो उस जमाने में थोड़ा पढ़े लिखे लोगों में ही थे। उन्होंने हमको बहुत कुछ सिखाया है, आज भी हमें उनकी याद आती है। आपको एक दो वाकिया सुनाए। एक बार हम वैसे बच्चों की प्रात में बैठे हुए गपसड़ा का बचपन रहता ही है
1: जी जी।
0: उन्होंने देख लिया हमको कि इन बच्चों के साथ में बैठे हैं, गांव में कोई तो छिपा नहीं है, सब पहचानते एक दूसरे को। बाद में घर में बैठे जब रात में थोड़ा सर्दियों के दिन था उस समय तापते थे, उन्होंने पूछा वहाँ क्या कर रहे थे आप? तो मैंने कहा कुछ नहीं, वैसे ही बैठे थे, वो मिल गए तो बैठ गए
1: जी।
0: तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात समझाई थी, वो बात मुझे अभी तक याद आती है
1: जी।
0: उन्होंने कहा वो कौन क्लास में पढ़ते हैं? तो हमने कहा कोई दो में कोई एक में इस टाइप से पढ़ते हैं, और हम उस समय तीसरी क्लास में पढ़ते थे। फिर उन्होंने समझाया कि आपको उनसे क्या सीखने को मिलेगा, अपने से ऊंची क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के साथ बैठा करो। और गांव में जो बड़े लोग जहां बैठते हैं चार छह लोग बातें करते हैं उनकी बात सुना करो तो कुछ सीखने को मिलेगा। तो तब से फिर मैंने अपना थोड़ा सा इस बारे में अटेंशन देना शुरू किया था।
1: तो
0: बड़े लोगों से भी बहुत शिक्षाएं मिली और जो बड़ी क्लास में पढ़ते थे उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता था
1: जी। एक बात इसमें से मुझे समझ में आई कि जब हम बच्चों से बात करते हैं तो उन्हें डांटने के बजाय उनके दोस्त बन करके बात करें और उन्हें समझाएं। हाँ। मतलब उन्हें तुलना दें।
0: हाँ।
1: कि अगर आप ये करते हैं तो ये फायदा होता है, ये करते हैं तो ये फायदा होता है
0: जी।
1: तो उससे बच्चे डरते नहीं है लेकिन वो आप और भी सम्मान करके सीखते हैं। ये बहुत अच्छा बताया आपने अपने पिताजी के बारे में। माता जी के बारे में क्या बताना?
0: माता जी हमारी पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन उन्होंने हमारे लिए, हम लोग वैसे पांच भाई और पांच बहने थे, तो हमारी माता जी तो बिल्कुल वो कहती थी कि हमारे लिए भगवान ने जो बच्चे दिए हैं इन्हीं के लिए हमारा जीवन है। एक बार की बात, बड़ा बड़े हो गए थे हम, हमारे हमसे भी बड़े भाई हैं
1: जी जी,
0: और पिताजी ने कहा कि कार्तिक का स्नान कर लीजिए, वो महीने भर चलता है जो प्रथा है हमारे उस साइड में। उन्होंने कहा मेरे लिए तो यही कि हम सब बच्चों को अपना परवरिश करें, तो यही हमारे लिए कार्तिक का पुण्य होगा। अलग से हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से उनका नेचर बहुत ही शांत और सेवा में लगे रहते थे। बिल्कुल टाइम से हमें उठाना, टाइम से स्कूल जाने के लिए हमेशा पहले तैयारी कर देते थे। उनकी भी हमारी लास्ट तक जो है इतनी याद आती है।
1: तो आपने तीन अलग अलग बातों के बारे में हमको बताया कि जैसे आपके दोस्त थे, दोस्त के साथ में, टीचर से आपने क्या सीखा और टीचर्स के बाद में अपने माता पिता से क्या सीखा। तो माता पिता के बारे में एक विशेष बातें आपने बताई और इन शिक्षाओं को जरूर हमारे श्रोता सुन रहे होंगे और समझ रहे होंगे उस समय के समाज के बारे में, उस समय के कैसे हमारे बच्चों का और माता पिता का संबंध होता था, बच्चों का और टीचर का संबंध क्या होता था, किस प्रकार से एक सांस्कृतिक धरोहर हमारी रही है। और भी बातें करेंगे और भी जानने का प्रयास करेंगे आपके जीवन से इस कार्यक्रम सलामी जिंदगी में। जी हाँ श्रोताओं, बने रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आज हमारे साथ रेडियो मधुबन के स्टूडियो पर मौजूद हैं कालका प्रसाद चौरसिया जी। फिर मुलाकात होगी इस गीत के बाद।

0: आप हबरे रिया रेडियो मधुबन 107.8 FM हबरता रेजियो ने मुस्कुराता रेजियो
1: दोस्तों फिर लौट कर आ गए हैं 107.8 FM रेडियो मधुबन पर और कार्यक्रम चल रहा है सलामी जिंदगी। हमारे साथ एक विशेष अतिथि जो झांसी उत्तर प्रदेश से पधारे हुए हैं और उनकी जीवन यात्रा के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे थे। कालका जी, जैसे आप बता रहे थे बचपन के बारे में, अब हम थोड़ा आगे चलना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि जैसे बचपन से हम आगे बढ़ते हैं, स्कूल पास करते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं हमें एक बुद्धि में यह आने लगता है कि आगे चल के हमें क्या करना है। परिवार, समाज सब हमको पूछते हैं तुम क्या करना चाहते हो, तो इसी अनुसार हमारी पढ़ाई की भी दिशा कभी कभी बदलती है। तो आगे की शिक्षा कैसी रही आपकी और फिर आपने अपने कार्यमय जीवन में प्रवेश करने की जो कहानी है वो बताइए।
2: ये तो बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने
1: जी।
2: ये पढ़ाई भी हमारी संघर्षमय हुई। हमारे गाँव में केवल 8वीं क्लास तक स्कूल है, अब तो बन गया है, ग्रेजुएशन हो गया
1: जी।
2: तो हम करीब 10 किलोमीटर दूर है, हमारा बिजावर तहसील पड़ता है
1: जी।
2: तो वहाँ हम लोग साइकिल से जाया करते थे। हमारा उद्देश्य था कि डॉक्टर बनेंगे। हमने वहाँ जाकर बायोलॉजी साइंस साइड से पढ़ना शुरू किया था
1: जी।
2: और परमात्मा की कृपा ही रही है कि हम कभी फेल नहीं हुए और हर क्लास में 8वीं क्लास तक हमारा फर्स्ट डिवीज़न, फर्स्ट पोजीशन आता रहा। ये हमारे पिताजी की प्रेरणा और उसके कारण हमने कभी फालतू ना घूमा है, ना कोई ऐसे लोगों की संगत की है, पढ़ाई में ध्यान दिया है। लेकिन एक वाकिया हो गया थोड़ा सा कि हमारे जो पान बरेजे होते हैं उसको खेती वाला, उसको बरेजे कहते हैं
1: ओके।
2: एक साल उसमें आग लग गई, जैसे यहाँ खेत होते ना कि ये खेत वो, इस प्रकार की 7 खेत थे हमारे बरेजे, 7 जगह, और उसमें से केवल एक जगह का बचा हुआ था। हमने हायर सेकेंडरी पास किया ही था उस साल और वो गर्मियों में आग लग गई किसी प्रकार से, दूसरे की वजह से, उससे क्या। लेकिन फिर हमारे पिताजी और रिश्तेदार मोहल्ले वाले हमको समझाते ही रहे कि चलो आगे चल के पढ़ो, आप जाओ छतरपुर जाओ, वहीं रहना। लेकिन मेरा मन उछट गया क्योंकि थोड़ा इतनी समझ आ गई थी हमको। हमसे और भी छोटे भाई बहन थे उस समय, तो मतलब छोटे भाई बहन है, 4-5 भाई बहन ही थे उस समय, जबकि बात है। फिर मैंने कहा नहीं, आप भेज भी देंगे हमें, पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि अब वो पढ़ाई में हमारा मन
1: डिस्टर्ब हो गया।
2: अब तो हमें ये लगता है कि हम आपका साथ देना पूरा चाहिए, ये भाई बहनों का मतलब परवरिश अच्छी तरह से हो, ये लोग पढ़ेंगे कोई बात नहीं, हम भी खेती करेंगे या और कुछ। ये इस प्रकार से हमारे पास सामने एक समस्या आई
1: जी।
2: फिर कुछ दिनों के बाद, 1-2 साल बाद, थोड़ा हमारा कारोबार संभल गया। फिर इच्छा हुई कि हाँ अब कुछ हमें दूसरा काम करना चाहिए। पढ़ाई तो नहीं थी, पढ़ाई की इच्छा ही खत्म हो गई थी। फिर मैंने रेडियो ट्रेनिंग का मन बनाया। बिजली फिटिंग वगैरह करने वाले होते हैं ना, तो थोड़ा सा टाइम मिलता था तो उनके साथ हम उनका काम हेल्प करने में चले जाते थे। वैसे ही परिचय हो जाता है उनकी हेल्प करने में, कि इनकी हेल्प करेंगे तो कुछ हमको सीखने को मिलेगा
1: जी।
2: वो हम भी पूरा कारोबार सीख गए फिटिंग करना, बिजली का सब कुछ काम सीख गए
1: जी।
2: फिर ये याद आया कि अब अगर उस समय तो रेडियो चलता था, टेप भी नहीं चलता था, जबकि बात है झांसी जाके रेडियो ट्रेनिंग करें। पिताजी बोले हाँ जाओ, कोई बात नहीं है, आप तो जा सकते हो। 1-1-71 को हम अपने घर से रेडियो ट्रेनिंग करने के लिए झांसी को आए थे। सोचा था कि उसमें कैसा टाइम लगता क्या, तो जब यहाँ आए तो उन्होंने बताया आपको 1-2 घंटे का टाइम शाम को ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आना है। फिर मैंने सोचा दिन भर क्या करेंगे, फालतू पड़े पड़े परदेश में, सोचा कि कुछ थोड़ा बहुत कहीं नौकरी कर लें, प्राइवेट जो भी हो, तो एक दो घंटे जाया करेंगे, हम अपना खर्चा ही अपना निकालेंगे, वो माता पिता से नहीं मंगाना पड़ता
1: जी।
2: लेकिन कहीं कोई सर्विस नहीं मिली। 3-4 दिन मैं घूमा, हम साइकिल पूरा ओवर हॉलिंग कर लेते थे, तो साइकिल वालों से भी पूछा, और या सोचा कोई सेठ की नौकरी दुकानदारी कहीं कुछ भी मिल रहा है, नहीं मिला। फिर सोचा दिन भर परेशान हो रहे, आज चलो पिक्चर देख लेते हैं, तो पिक्चर का टिकट लिया, तो एलाइट टाकीज के ऊपर हमारा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस था, अब तो नहीं है, दूसरी बिल्डिंग बदल गई। हमारे दोस्त उस समय लंच में नीचे उतरे होंगे, और वो एलाइट टाकीज ही है वो, तो हम वहाँ टिकट लिए, पिक्चर छूटने का इंतजार कर रहे थे कि ये शो छूटे तो हम अपने अपने शो में जाएंगे। उन्होंने दूर से देखा मुझे, तो मेरे पास आए और आवाज़ लगाई, चौरसिया यहाँ कहाँ घूम रहे। मैंने इधर उधर देखा, ने कहा मुझे पहचानने वाला यहाँ कौन है। तो दिखाई पड़े तो मैं खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और उनका भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, जब मिले पास में आए, फिर बातचीत हुई, ऐसे ऐसे आए हम। उन्होंने कहा आप अच्छे मिले, चलो हमारे कमरे पे चलेंगे, अभी तो हमारा ऑफिस वर्क है। हमने कहा हमने भी टिकट लिया हुआ है, तो थोड़ा देख के आए, और नहीं तो ये टिकट बेकार हो जाएगा। तो बोले ठीक है, उस 5-6 बजे तक हम भी घर पहुंचेंगे, जब तक आपका शो छूट जाएगा। तो एड्रेस उन्होंने लिख के दिया, क्लास फेलो थे, हायर सेकेंडरी तक पढ़े हुए, बहुत अच्छा लगा उनको भी हमको भी। फिर हमने वो चले गए अपना ऑफिस में, हम पिक्चर में देख के शाम को पते पूछते पूछते और उनके कमरे तक पहुंच गए
1: जी।
2: फिर तो क्या था, फिर तो दोस्त मिले तो 12-1 बजे तक बातें होती रही।
1: भरत मिलाप आरंभ,
2: भरत मिलाप से बढ़ के था उस समय की खुशी क्या बताए। एक और भी भाई उनके उसी बिल्डिंग में रहते थे, वो भी हमारे बिजावर के थे, तो फिर उनको बुलाया, देखो भाई कौन आया है, तो तीनों लोगों ने, फिर तो क्या कहना। तो इसके बाद उन्होंने हमसे पूछा फिर कि आप अपने सर्टिफिकेट वगैरह लाए हो, तो हमने कहा नहीं, सर्टिफिकेट की यहाँ का रेडियो ट्रेनिंग करने आए थे। अरे बोले नहीं भाई, अपनी फरवरी में भर्ती निकलना है, आपको नौकरी करना है कि नहीं, आप तो हमसे भी फर्स्ट डिवीजन फर्स्ट पोजीशन आते थे। तो हमने कहा अगर नौकरी मिल जाए तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है
1: जी।
2: ऐसा जो है
1: चलता रहा,
2: संपर्क रहा। इसके बाद फिर संक्रांत आती है, जनवरी का महीना था ही, तो हमने सोचा ठीक है, तो हम घर जाके अपना सर्टिफिकेट वगैरह लाएंगे और संक्रांत भी मना आएंगे। घर चले गए और संक्रांत मना के 2-4 दिन बाद फिर से आए, तो एम्प्लॉयमेंट में नाम लिखवाया उन्होंने, हम तो कुछ जानते ही नहीं थे, और रेडियो ट्रेनिंग में भी नाम लिखवा दिया, तो वहाँ भी जाते थे। और टाइपिंग वाले बोले आप टाइप सीख लो, जॉब लगेगा। हमने टाइपिंग ज्वाइन कर लिया, तो हम टाइपिंग भी जानते। इस प्रकार से फिर लौट के आए, और जब टाइपिंग ज्वाइन किया तो क्या हुआ कि हम हारमोनियम बजाते थे गांव में, घर में कीर्तन मंडल वगैरह वो उसमें गाते भी थे, बजाते हारमोनियम बजाते थे
1: जी।
2: घर पे हारमोनियम था, वो टाइपिंग किया मैंने, उन्होंने जो बताया वो सभी टाइप एक साथ जो है मिल जाती ना, तो फिर वो मशीन चलती ही नहीं। वो इंस्टीट्यूट वाला वो देख के बोला क्या इतनी जल्दी जल्दी क्यों चला रहे, हारमोनियम बजाते थे क्या। उसने बड़े उससे पूछा तो मैं डर गया। अब मैंने कहा अब इन्हें क्या बताऊं, मैंने कहा हाँ हारमोनियम बजाते थे। बोले उस स्पीड से उंगली मत चलाइए आप, धीरे धीरे चलाइए, नहीं तो मशीन टूट जाएगी बिगड़ जाएगी। इस प्रकार से जो है हम टाइपिंग भी सीख लिया मैंने, और जब तक बोले यार फरवरी तो कैंसिल हो गया, अब जुलाई में होगा,
1: तो तब तक आप कुछ काम करते रहे या फिर क्या सीखते रहे रेडियो वाला।
2: कोई काम नहीं किया। फिर बोले आप प्रेस का काम सीख लो, एक प्रेस वाले रिश्ते मतलब उनके मिलने वाले थे, तो बोले आप कंपोजिंग भी सीख लो। हमने कहा हाँ बिल्कुल सीखेंगे, फालतू रहना मुझे पसंद नहीं था, तो ठीक है मैंने कहा कंपोजिंग सीख लेंगे, हमें कुछ नहीं करना। हाँ एक छोटी सी बात रह गई बीच में, कंपोजिंग करना भी पूरा सीख लिया था हमने। एक कार्ड लिया जब सीखे तो उस कार्ड को और वो प्रिंट करके उसको वो प्रूफ बनाते हैं ना
1: जी,
2: तो वो प्रूफ जो है वो टाइप करके और चिट्ठी जो है घर में भिजवाई। पिताजी को बड़ी प्रसन्नता हुई कि बच्चा कुछ सीख रहा है। इसलिए भेजा था वो
1: जी।
2: इसी बीच में एक वकील साहब को बहुत ज्यादा जरूरत थी, हेल्पर लगते ना वकालत में
1: जी, जो जी, जी।
2: उनके वो हमारे मित्र थे जो पाठक जी, उनका भी बहुत अच्छा नेचर था, तो मिलनसार थे। उन्होंने कहा हमें जरूरत है और ये फ्री रहते हैं आपके साथ कमरे में, क्या करते हैं? हमने कहा हम कुछ जो आप बताइए हम करेंगे, फ्री रहना हमें वैसे भी अच्छा नहीं लगता
1: जी।
2: फ्री रहो तो हमारे पास कचहरी में आ जाए करो, कोई दिक्कत नहीं है।
1: आपने कोई भी कार्य नहीं छोड़ा, आपने इलेक्ट्रिफिकेशन किया, आपने गाना बजाना सीखा, आपने प्रिंटिंग प्रेस में काम किया, हर को आपने एक एक
2: साइकिल ओवरहॉलिंग, पूरी साइकिल निकाल के एक एक पुर्जा फिट कर लेते थे।
1: अच्छा,
2: तो ये हमारे पिताजी की देन है जो वो समझाया करती, कुछ भी काम सीख लो, जीवन में करना पड़े या ना करना पड़े लेकिन हर काम जितने आप सीख लोगे उतना आपको खुशी रहेगी और कभी जीवन में असफलता नहीं मिलेगी कहीं भी
1: जी। बिल्कुल,
2: ये उनका कहना रहता था। रामायण वगैरह तो बहुत कुछ याद है हमको, वो भी शाम को रामायण होती थी, मोहल्ले वाले सब इकट्ठे होते थे तो हमसे पढ़वाते थे, वो बैठो रामायण पढ़ो, वे लोग अर्थ सुनाया करते थे बड़े लोग
1: जी।
2: वो सुनते सुनते धीरे धीरे बड़ा अच्छा लगने लगा, तो हम पढ़ते थे स्वर में बढ़िया, हम लोग एक दो भाई और बच्चों को वो
1: जी।
2: तो इस प्रकार से, और कहीं जहाँ पुराण की कथा हुआ करती थी 7 दिन का, पिताजी और एक दो लोग और ऐसे ही सुनने, तो उनके साथ बोले चलो हमारे साथ के साथ सुनने जाया करते थे, वो भी पूरा पुराण कई बार सुना है, उनके साथ में ही बैठते थे जाते थे।
1: तो जब पिताजी ने आपको बचपन के

0: सीख दी थी कि हमको अपनी जो ऊर्जा है उसको सही जगह लगाएं ताकि हम सीखते रहें सीखते रहें।
1: बिल्कुल, बचपन से ही वो हम साथ में ले जाती थी, चलो क्या कर रहे, पढ़ लिया अपना, अब चलो क्या कर रहे, सो नहीं अभी एक घंटे चलो। तो हमको वो चीजें भी बहुत याद है
0: जी,
1: रामायण और पुराण की कथा है वो भी बहुत याद है। फिर वो वकील साहब के यहाँ भी काम किया कचहरी में, दिन में उनका वकालत का टाइम तो दिन में ही रहता, तो कुछ इस प्रकार से हम, लेकिन हम फ्री रहना हमको शुरू से ही पसंद नहीं है, पिताजी की सीख भी ऐसी रही है। लेकिन वकील साहब से हमने कुछ लिया नहीं है, पिताजी भेजते थे पैसा, बोले चिंता नहीं करना, जो तुम्हें सीखना हो सीख के कुछ बन जाओ तब फिर कुछ कमाने की सोचना, अब इतने काम कर रहे हो तो अच्छी बात।
0: से फ्री रखा आपको मना, ये नहीं रहे कि मुझे अभी कुछ करना ही पड़े, प्रेशर नहीं आने दिया।
1: हाँ, ऐसा कुछ नहीं
0: जी।
1: जब नौकरी लगी जुलाई में, हमारा इंटरव्यू हुआ, ठीक है सर्विस में आ गए, सर्विस लगे, सोर्स था उनका जो हमारे मित्र थे, उन्होंने सोर्स लगाया था, केवल बातचीत होती थी आना जाना।
0: तो आपकी जॉब फिर कैसे लगी?
1: बस एम्प्लॉयमेंट से नाम आया और इंटरव्यू हुआ,
0: सिलेक्ट हो गए।
1: बस सिलेक्ट हो गए
0: जी। तो फिर जॉब में से, जो जॉब का जो जीवन होता है वो एक युवा काल, जब हम फ्री रहते हैं, माता पिता के आश्रय में रहते हैं, और जब एक काम के जीवन में आते हैं, कार्यमय जीवन में, तो वहाँ पर कोई बॉस होता है, कोई बताने वाला होता है, समय की सीमा के अंदर बंधना पड़ता है, कई बार आप नहीं चाहते हैं कई चीज़ें वो भी करना होता है, तो वहाँ की क्या शिक्षाएं रहीं जीवन से आपको, कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो व्यक्ति, जब जो भी हमारे नए युवा सुन रहे होंगे और वो नए जॉब में जाना चाहते होंगे, तो कौन से ऐसे गुण हैं जो उनको काम आएंगे?
1: ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने
0: जी।
1: जॉब में भी थोड़ा सा संघर्ष तो करना पड़ता है सीखने के लिए भी, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो चाहते ये काम सीख जाएगा और हमारी वैल्यू कम हो जाए, ऐसे भी लोग मिले मुझे, लेकिन
0: कंपटीशन की भावना रखते हैं,
1: उनकी भावना किसी किसी की रहती, सभी की नहीं। कुछ लोगों ने थोड़ा सा, मतलब जैसे किसी से कुछ पूछा इसमें क्या करना है, कालम टोल करते थे कि जल्दी ना सीख जाए, ऐसा किया करते थे, लेकिन फिर भी हम तो अपनी लगन के जो काम दिया है वो करना है, किसी ना किसी से पूछ के जहाँ अटकते थे
0: जी,
1: बड़ा धीरे धीरे
0: करते
1: अपने काम में होशियार हो गए। फिर जो है वो हमारे जैसे सिंसियरिटी जो होती है,
0: अपने आप सबको पता चल जाती है,
1: जो इमीडिएट बॉस होते हैं अगर वो खुश हैं, हमारी सेवा भावना और लगन, वो लोग खुश रहते थे, इस प्रकार से फिर सिखाने वाले भी सोच लेते थे कि चलो कोई बात नहीं है, कोई कहीं अटकते थे तो बता दिया करते थे। एक बार ऐसा हुआ, प्रमोशन भी हुआ, 2-3 प्रमोशन हुए, पहले जनरल में थे, एडमिनिस्ट्रेशन में थे, एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी, फिर सीट अलग अलग रहती हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे हर सीट का काम सीख गए। इसके बाद हमने फिर अकाउंट ऑप्ट किया, ये अकाउंट सेक्शन में, अकाउंट का वर्क नहीं जानते थे, तो अकाउंट सेक्शन में जाने के लिए एक डिपार्टमेंटल वो चला था कि जो अलग से अकाउंट का ऑप्ट करेंगे। क्या हुआ, एक बार उन्होंने भी एक्सेप्ट नहीं किया, जो कुछ लोग ऐसे थे कि सीख जाएंगे तो हमारा पत्ता कट जाएगा, ऐसे भी वो एक दो लोग रहते ही हैं हर जगह
0: जी।
1: लेकिन फिर भी हम अपनी लगन से धीरे धीरे कुछ लोगों को प्रसन्न कर लिया, उनका काम सीख गए। हर सीट का काम अलग रहता है, जब तक देखा नहीं तो क्या जाने। एक बार क्या हुआ, ऑडिटर आया करते थे अपना ऑडिट करने के लिए अकाउंट में, तो जो थोड़ा सा वैसे लोग थे वो थोड़ा सोचते थे कि इनको किस प्रकार से मॉरली डाउन किया जाए, लेकिन उस समय हमको शिव बाबा का ज्ञान मिल गया था।
0: ओके, अध्यात्म के पथ के राही बन चुके थे।
1: अध्यात्म में वैसे भी अपना ईश्वर से लगन तो शुरू से ही थी
0: जी,
1: लेकिन उस समय हमको शिव बाबा का जो आध्यात्मिक ज्ञान है बड़ा अच्छा, फिर तो और प्रसन्न रहने लगे। कोई कुछ भी कहे, हम किसी से द्वेष नहीं करते थे, वे भले हमसे कोई द्वेष करता रहे कुछ भी,
0: प्रभावित नहीं होते थे ज्यादा,
1: लेकिन उसमें नहीं, हम तो अपना अपना वही नेचर रखते थे। ऑडिटर आए तो उन्होंने मुझे भेज दिया कि जाओ इनको खाना खिला के लाओ होटल में, क्योंकि हमने खाना पीना होटल का बंद कर दिया, उन लोगों को मौका मिल गया
0: जी,
1: कि इनसे ऑडिटर नाराज हो जाएंगे तो इनकी सीट का काम मतलब खराब कुछ ना कुछ। हमने कहा ठीक है साहब हम चलते हैं। हमारे बॉस तो बहुत अच्छे थे, लेकिन जो सलाह जो पुराने लोग थे उनने सलाह दी कि साहब चौरसिया को भेज दीजिए आज हम लोग नहीं जा पाएंगे।
0: ओके,
1: हमने कहा ठीक है साहब हम जा रहे। गए तो मैंने 4 थाली का ऑर्डर दिया। तो वो लोग बोले कि 4 क्यों भाई, आप 5 हैं अपन लोग। तो मैंने बताया सर हम होटल का जो है खाना पीना पसंद नहीं करते हैं, खाते नहीं हैं, इसलिए 4। तो बोले क्यों नहीं खाते, उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू कर दिए। हमने भी फिर जो है ऑर्डर तो कर ही दिया था, तो शिव बाबा को जो आध्यात्मिक आत्मा क्या शुद्ध भोजन से क्या हमारी शुद्धता होती है, क्या हमारा मन कैसा शुद्ध रहता है, नेचर हमारा सात्विकता कैसे आएगी, इस प्रकार से उनको जो समझाना थोड़ा सा शुरू किया तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा। बोले ये तो बहुत अच्छी बात है आपकी, वे हमसे और प्रसन्न हो गए। और फिर ये देखिए आप कि डेली कुछ ना कुछ फ्री होने के बाद ये आध्यात्मिक चर्चा, वो कहते थे हाँ भाई कुछ सुनाइए वहाँ क्या होता कैसे होता, तो हमको मौका मिल गया। वो 8-10 दिन रहते थे तो उनको बड़ा अच्छा लगता था। और जो हमारा जो काम था,
0: ब्लेसिंग बन गई फिर आपका ये जो सेवा मिली आपको,
1: जो हमारा सीट का काम था तो वो तो फटाफट जो है जो हम बताएं ये ऐसा है फटाफट निशान लगाना, उन्हें कुछ देखना ही नहीं। अरे बोले आपका क्या देखना, आपका तो ओके है ही। एक दो बार चेक किया गहराई से और बाद में फिर
0: समझ गए,
1: वो समझ गए। अब ये जो जलते थे कुछ लोग जो, उनको और बुरा लगा कि ये तो उल्टा हो गया,
0: लेने का देने हो गए।
1: फिर इसके बाद हम जब रिटायर हुए, देखिए आप शिव बाबा का प्रभावित जो वे लोग हुए थे उनको कुछ गिफ्ट भी दिया अपना, कुछ अच्छे स्लोगन लक्ष्मी नारायण का, शिव बाबा का चित्र वगैरह जिसमें लिखा भगवान प्यार का सागर है, सुख का सागर है, इस प्रकार से वो दिए उनको ले गए। फिर एक बार मैं रिटायर होने के बाद जब वो आए मुझको पूछा, वहाँ दिखाई नहीं पड़े तो बोले यार वो चौरसिया भाई नहीं दिख रहे। तो उन्होंने कहा वो अभी रिटायर हो गए इस साल,
0: अच्छा
1: मार्च में ही रिटायर हुए हैं, पर ऑडिट वगैरह तो जुलाई वगैरह में आते काफी। तो उन्होंने मुझे घर से बोला भाई मिलना है उनसे, तो जो मित्र संबंधी सभी अच्छे लोग थे, हमारा व्यवहार तो किसी से बुरा था नहीं
0: जी।
1: तो फिर
0: यही तो अध्यात्म की खूबसूरती है कि जब हम अपने भारतीय संस्कृति के अनुसार आध्यात्मिकता को अपना कर अपने जीवन को चलाते हैं तो अपने आप जो भी हमारे आसपास लोग होते हैं वो अध्यात्म का खुशबू महसूस होती है उनको, और जो कि आजकल थोड़ा दुर्लभ है लोगों के व्यवहार के अंदर, तो फर्क तो पड़ता है।
1: हाँ फर्क पड़ता है। तो हमारी किसी से लड़ाई नहीं हुई और सभी से अभी भी जो लोग हैं साथी तो अभी भी उसी प्रेम से मिलते हैं। बोले यार तुम तो ज्यों के त्यों हो, जैसे पहले थे वैसे अभी भी हो। कभी कभी कोई जैसे हम उसमें थे ट्रायल बैलेंस बनाते थे
0: जी,
1: 2 पार्ट में बनता हमारा, एक फर्स्ट पार्ट होता है एक सेकंड होता है
0: जी,
1: सभी जगह होता होगा। तो हम उसमें पार्ट 2 ट्रायल बैलेंस, तो जो लोग आते थे भाई साहब एक कष्ट देने आए आपको, मी बड़े प्रेम से कहते भाई जिसके पास जो है वही तो देगा, लाइए क्या बात है, कम से कम मुस्कुराहट तो आई जाती थी मुख पर, बड़ा सब
0: खुशी देने का प्रयास,
1: खुशी का प्रयास। और उनका काम भी किसी को कभी मना नहीं किया।
0: चलिए बहुत ही अच्छी यात्रा आपने बताई और काफी डिटेल में बताया आपने कि किस प्रकार से आपके कार्यमय जीवन की यात्रा रही, उदाहरणों सहित समझाया कि किस प्रकार से अगर हम व्यवहार करते हैं तो उसका क्या रिस्पॉन्स आता है। हमें कभी भी ऐसे ईर्ष्या नफरत या कंपटीशन की भावनाओं में खुद नहीं आना है, अगर कोई भी करता है तो शांत रहना है, अपने मन को मैनेज करना है, थोड़ा अध्यात्म का सहारा ले सकते हैं, खुशी देने का प्रयास करना है और इससे कॉन्फिडेंस भी बना रहता है। और जब लोग कोई कोशिश करता है आपको नीचे गिराने की, लेकिन ईश्वर बीच में आकर के फिर आपके जीवन को और बेहतर बनाने के लिए कुछ ना कुछ योगदान अपना भी कर जाते हैं, और आपके कर्मों का योगदान तो है ही। ये बात सीखी हमने आपके जीवन से जो आपने कार्यमय जीवन बताया। तो काफ़ी देर हमने बातें कर ली हैं, एक ब्रेक लेना चाहिए। मैंने ये जाना था आपसे थोड़ी देर पहले कि मुझे ये पता चला कि आप गीत कविता भी रचना करते हैं और गाते भी हैं, तो हमारे श्रोताओं के लिए कुछ सुनाना चाहेंगे?
1: सुना सकते हैं, आपकी आज्ञा तो
0: आपकी रचना हो तो प्रस्तुत करिए कुछ,
1: और हमारे श्रोताओं को भी पसंद आएगा। पहले एक छोटी सी कविता सुना रहे हैं
0: जी। तो थोड़ा बैकग्राउंड भी बताइए कि क्यों लिखा था, ये क्या विषय है, बोल के फिर सुनाइए।
1: ये थोड़ा सा जब हमको ये शिव बाबा का ज्ञान मिला उसके बारे में थोड़ा सा चार लाइनें प्रेरणा मिली, आध्यात्मिक ज्ञान थोड़ा सा मिला उस समय जो समझ में आया, चूंकि हम बचपन से ही थोड़ा बहुत कुछ परमात्मा का ये वरदान ही है मेरे लिए, गीत कविताएं वगैरह लिखना पढ़ना लिखना मुझे पसंद शुरू से ही रहा है। हमारी क्लास में जो हिंदी में जितनी कविताएं होती थी वो मुझको मौखिक याद हो जाया करती थी
0: जी,
1: उसी प्रकार से वो लिखना भी थोड़ा बहुत, कोई प्रतियोगिता वगैरह हुआ करती थी, अंताक्षरी होती थी उस समय, जिस पार्टी में मतलब बंटवारा होता था मेरी पार्टी ही जीता करती थी हमेशा
0: जी, सुनाइए।
1: तो ऐसा दो चार लाइनें शुरू में लिखी थी ये। घोर कलयुग के अंत प्रगट हुए गुप्त संत, प्रेम सुख शांति आत्मज्ञान की पिटारी है, संग दोषों छुड़ाएं पंच भूतों से बचाएं, दुष्प्रवृत्तियों पर चलाते ज्ञान की कटारी है, शिव का संदेश देवे साधारण वेश होवे, ज्ञान वीणा सुनावे शिव शक्ति ही धारी है, गंगा सी पावन कली कलश को नसावन, ज्ञान अमृत पिलाती सदा ब्रह्मा कुमारी है।
0: अरे वाह,
1: ओम शांति
0: जी। तो ये आपने अपने मन की भावनाएं व्यक्त की, किस प्रकार से आपके एक जो साधारण जीवन था उसको आध्यात्मिक जीवन में बदलाव लाने के लिए जो सहायता मिली, संस्थान के बारे में आपने लिखा है
1: जी। हाँ, शुरू शुरू की बात है
0: जी, बहुत अच्छा लगा सुन करके। तो दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सलामी जिंदगी और रेडियो मधुबन पर आज हमारे साथ मौजूद है कालका प्रसाद जी, और कालका प्रसाद जी से बातचीत करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में एक ब्रेक लेंगे और फिर लौट कर आएंगे, जहां हम जानने का प्रयास करेंगे उनके वर्तमान जीवन को कि किस प्रकार से वर्तमान जीवन जो सिटीजन की एज है उनकी वर्तमान, तो वो कैसे वो बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, ये जानने का प्रयास करेंगे। फिर लौट कर आएंगे। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

0: this is Aditya Raj Kapoor and you are listening to Brahma Kumari's community radio station, Radio Madhuban. Keep listening, keep smiling.
1: तो दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पे सलामी जिंदगी कार्यक्रम और हमारे साथ आज मौजूद हैं एक विशेष अतिथि जो झांसी उत्तर प्रदेश से पधारे हुए हैं। आप फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पे अपनी सेवाएं देने के बाद में अपना अवसर प्राप्त जीवन अभी व्यतीत कर रहे हैं। आप एक अध्यात्म के राही हैं और इस एज में भी काफ़ी मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ प्रतीत होते हैं। कालका प्रसाद जी, जैसे हमने आपके बचपन और युवा काल, आपके कार्य में जीवन के बारे में जाना, थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे कि परिवार और परिवार के साथ साथ जब हम आगे बढ़ते जाते हैं तो घर में बच्चों का आगमन होता है, एक धर्मपत्नी होती हैं जिनके साथ ताल बिठा के चलना होता है आगे, ताकि हमारा जीवन जो है सुखमय रहे, हमारा एहसास जो है यादगार बन जाए जीवन का। ये जीवन कैसे आगे बढ़ा, आपके युगल के साथ कौन सी वो गुण है जो आपने बीच में रखा ताकि आपका जीवन अच्छा चले, और बच्चों को कैसे पालना दी?
2: हमारी युगल भी कहिए बहुत साधारण और किसी से उनको मतलब नहीं, दुनियादारी से
1: जी
2: सिंपल रहना, और उन्होंने बहुत मदद की हमारी आगे जीवन में बढ़ने के लिए
1: जी।
2: उनकी कोई इच्छा नहीं कि मुझे क्या चाहिए, कुछ पहनना या कुछ भी नहीं, जो परमात्मा कृपा से जो मिल रहा है उसी में संतुष्ट रही, वो
1: संतुष्ट रही
2: और अभी भी संतुष्ट रहती हैं
1: जी।
2: और जैसे ही हमें आध्यात्मिक ज्ञान मिला तो दूसरे दिन से हम और वो दोनों ये अपनी आध्यात्मिकता में समर्पित ही हो गए दोनों
1: जी।
2: और हमारे जो बच्चे थे, बच्चे भी जो है साथ में
1: अध्यात्म पथ के
2: चलते थे साथ में। बाकी स्कूल में बच्चों का पढ़ाई तो होती है, वो कड़म पढ़ते हैं
1: जी।
2: हमारे दो बच्चियां और एक बच्चा, और आजकल तो एक छोटी बच्ची जो है बाबा के अपना, उसने तो आध्यात्मिकता ही अपना पूरा जो है
1: अध्यात्म के लिए जीवन समर्पित
2: किया। ये समर्पित जीवन बिता रही है आजकल ब्रह्मा कुमारी पूर्ण रूप से
1: बन करके
2: झांसी सेंटर पर। और एक जगह है थोड़ा सा झांसी के अंडर में ही है, 80 किलोमीटर दूर है, लेकिन
1: वहाँ रहते
2: वो खनिया धाना वो सेंटर वो संभालती है
1: जी। तो जैसे आपने बताया धर्मपत्नी के बारे में कि उनकी सरलता, उनकी संतुष्टता जो है वो आपके जीवन में बहुत सहायक रही कि आप जो भी करते रहे, लेकिन उन्होंने कभी बहुत सारी इच्छाएं व्यक्त नहीं की, तो उसके द्वारा ही आगे बढ़े। बच्चों को बड़े करने के लिए कौन सी बातें हमारे जीवन में होनी चाहिए, उनको कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, ताकि जो आजकल हम देखते हैं कई बार कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में भेदभाव हो जाता है, मतांतर हो जाता है, बच्चे कह देते हैं कि आपको क्या पता, ये ज़माना बदल चुका है, या ऐसी बातें होती हैं, आपने बड़ा करने में कौन सी बातों का ध्यान रखा?
2: आजकल के बच्चों जैसे हमारे बच्चों ने ऐसा कुछ नहीं किया है
1: जी।
2: उनको शुरू से ही हमने अच्छी शिक्षाएं दी हैं, और कहीं वो नहीं हुआ है उनका कि कोई उल्टा सीधा है, लड़ाई झगड़ा है। अब हमारी दोनों बच्चियां एमए किया हुआ है, एक ने तो बीएड भी किया है, एमए भी किया, बीएड किया है।
1: अरे वाह,
2: उसकी तो शादी हो गई, और ये भी एमए किए हुए हैं, एमएससी भी कर लिया है इन्होंने, तो छोटी बच्ची जो समर्पित है, और बच्चे को भी जो है, लेकिन उसने पढ़ाई छोड़ दी हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में
1: जी।
2: एक बार उसमें वो भी कारण है फेल हो गया, कर दिया गया, तो उसका मन उचट गया फिर पढ़ाई से
1: जी।
2: जब रिजल्ट आया तो मायूस हो गया, बड़ी उमंग में था, आज मेरा रिजल्ट आने वाला है, अच्छा पढ़ने वाला अच्छा है, लेकिन देखिए आज के जमाने में क्या होता है, एक सर की ट्यूशन छोड़ के दूसरे सर में, वहाँ दोस्तों में आसान हुआ तो दूसरे सर को वो सब्जेक्ट पढ़ने को उनकी ट्यूशन जाने लगा।
1: ओके।
2: तो वो सर उनसे नाराज हो गए अंदर ही अंदर, वो साइकिल स्टैंड वाला बोलता बच्चे तुम फेल हो जाओगे, लेकिन बच्चे ने कभी हमें नहीं बताया कि वो साइकिल वाला ऐसा कहता है स्टैंड वाला। एक बार लास्ट में पेपर का टाइम आने वाला ही था, तो उसने मुझे बुलाया, जिसकी ट्यूशन छोड़ दी थी बच्चे ने, उसने बताया आपका बच्चा स्कूल ही नहीं आता है, आप केयर नहीं करते हो, फेल हो जाए तो मुझसे नहीं कहना, अब देखिए कितनी बड़ी बात। तो मैंने कहा सर वो तो रोज आता है बच्चों के साथ में, जैसे पहले आता था वो हमेशा ही आता है। बोले हम ये नहीं जानते, लेकिन हमारे क्लास में नहीं आता है।
1: ओके।
2: हमने कहा ठीक है साहब, नहीं आता होगा, अभी हम देखेंगे डांटेंगे। बाद में बच्चे से पूछा रात में कि क्या बात है, वो सर तो ऐसा कह रहे थे। बोले नहीं पापा हम तो रोज जाते हैं और वे तो किसी न किसी बहाने हमें टेबल पे खड़ा कर देते हैं।
1: ओके।
2: जैसे कुछ पढ़ा रहा है और थोड़ी सी खांसी भी आ गई तो क्यों तुमने डिस्टर्ब किया टेबल पे खड़े हो, इस टाइप से करने लगे वो,
1: तंग करते थे,
2: तंग ऐसा करने। हमने कहा कोई बात नहीं चिंता नहीं करो, पढ़ते तो हो ही, तुम्हें आता सब कुछ है, चिंता नहीं करो कोई बात, मार साहब है उनकी इज्जत करना चाहिए। इस प्रकार से समझा दिया था। जब रिजल्ट में फेल हुआ वो, तब उसने फिर सारी बातें बताई। ये ऐसा कहते थे बच्चों से भी कि वो फेल हो जाएगा, वो क्लास में के बच्चों से जो उनके यहाँ ट्यूशन पढ़ते थे वो बच्चे ने सारी बातें। हमने कहा भैया अगर पहले बताते तो कुछ उनसे मिलते, रिक्वेस्ट करते, लेकिन फेल हुए तो कहाँ हुए, जो उनकी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होता है उसमें फेल हुए, बाकी रिटेन में तो उनका चलता नहीं, बोर्ड की परीक्षा थी लेकिन उसमें उनने फेल करा दिया, इस वजह से उसे फेल। बाकी सेकंड डिवीजन के नंबर हर सब्जेक्ट ये था बच्चे का, फिर उसने पढ़ाई छोड़ ही दी फेल होने के बाद। फेल होने एक दुकान घर में ही हमने पहले से ही निकलवाई थी थोड़ी सी, रिटायर होने के बाद फालतू बैठना बेकार है, तो उसको वो दुकान खुलवा दी, दुकान भी करता, फिर वो प्लॉटिंग वगैरह ये बिल्डर वगैरह उनके साथ उनका संयोग मिल गया, वो भी कर रहा है।
1: कई बार ऐसा अप्रत्याशित चीज़ें हो जाती हैं जीवन में, पर यह भी एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ पर जीवन की दिशा परिवर्तित हो जाती है, और कभी कभी उसमें भी काफ़ी खूबसूरती देखने में आती है। कई लोग जो एक चीज़ नहीं कर पाते हैं कोई भी कारणवश, दूसरी चीज़ में बहुत सफल हो जाते हैं फिर।
2: बिल्कुल, आप बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, यही होता है। वो मायूस था, उसको इतना समझाया, प्रसन्न किया, कुछ नहीं अरे पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा, बिना पढ़े लोग लखपति करोड़पति है, वो पढ़े लिखे उनके सामने नौकरी करते उनके घर में, इस प्रकार से समझाया दो चार दिन उसको, तो थोड़ा सा उसको लगा गया हाँ ठीक है कुछ नहीं। हमने कहा देखो दुकान है ही अपनी मोहल्ले में, आराम से दुकान चलेगी, दुकान खोलो। जो एक रिश्तेदार थे उनकी थी स्टेशनरी की दुकान,
1: ओके,
2: वहाँ पर बोले आप हमारे पास भेज दो बच्चे को, 15-20 दिन में ट्रेंड हो जाएगा, ये है होशियार है पढ़ने में
1: जी।
2: उनके पास आना जाना, दुकानदारी पूरी उसने सीख ली। तो बोले अब तो पापा हम अपनी दुकान खोलेंगे, तो उनसे पूछा मैंने कि ये कहने लगा अपनी दुकान खोलेंगे आपकी क्या राय है। बोले नहीं वो एक्सपर्ट हो गया,
1: कर लेगा,
2: दुकान आप खुलवा दीजिए, कोई चिंता की बात नहीं है। तो उन्होंने सहयोग किया, दुकान कैसे मैं तो जानता नहीं, तो उन्होंने ही जो है इसमें कैसे लाना क्या करना
1: जी।
2: दुकान चली कुछ दिनों के बाद, वो ऐसे दुकान में तो हर प्रकार का व्यक्ति आता है, तो ऐसा संयोग हुआ मोहल्ले में ही पास में एक भाई बोले कि आप दुकान में बैठे रहते हो तो इतना प्लॉट जो है कोई लेने वाला हो उसको आप बेचो, आपको इतना कमीशन मिलेगा उसका, एक प्लॉट पे इतना पैसा मिलेगा। तो उसने कहा ठीक है हमारे पास तो हर प्रकार के लोग आ रहे हैं, वो ये करने लगा, चलने लगा रिश्तेदार और भाई लोग जो परिचित, तो कई लोगों ने उससे प्लॉट खरीदे, तो उसका पैसा इसको मिला, तो इसका और हौसला बढ़ गया,
1: बिजनेस ही बढ़ गया,
2: और जो वो मेन हेड थे इसके, तो उनको भी लगा कि यार ये बच्चे ने इतने प्लॉट बेच दिए इतने एक साल में, तो इस प्रकार से फिर उसका हौसला बढ़ गया, सब करने लगा। बाद में
1: तो जीवन की जो शिक्षाएं हैं वो अलग अलग प्रकार से हमें प्राप्त होती हैं, हर एक के जीवन में कुछ ऐसा संघर्ष आता है और संघर्ष के बाद एक सफलता भी प्राप्त होती है, और जब सफलता प्राप्त होती है तो यही संघर्ष हमारी शिक्षा बन जाता है, और हमारे ही जीवन के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी ये शिक्षा बन जाता है। लोग भी कहते हैं कई बार देखे कि देखो उनको इस जगह पर सफलता नहीं मिली या चुनौतियाँ आई, पर उन्होंने थोड़ा सा अपना रास्ता बदला और फिर इस प्रकार से उनको भगवान ने सफलता दी, उनके प्रयासों ने सफलता दी। तो एक हार्ड वर्क और करने की इच्छा रखना और साथ में कोई पीछे होना जो आपको हौसला दे, ये सारी चीज़ें मिलकर एक जीवन को बहुत अच्छी दिशा में ले जा सकती हैं। ये हम आपके द्वारा जो बताई गई है आपकी जीवन यात्रा की घटनाएं हैं उनसे हमें सीखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप रेडियो मधुबन के स्टूडियो पर पधारे और अपनी जीवन की यात्रा से बहुत सारी अनमोल बातें हमारे सामने रखी, हमारे दोस्तों के सामने। तो इन बातों को ज़रूर वो समझेंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। और जाते जाते मैं आपसे और एक बार अनुरोध करना चाहता हूँ कि आपकी जो रचनाएं आपने रची हैं तो ऐसी कुछ रचना हमारे श्रोताओं को सुनाइए जिसको सुनकर उनके भी अंदर कुछ प्रेरणा जागृत हो।
2: जी हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। जो करते चलो शुभ कर्म धीरे धीरे,

कर रहे स्थापना सत धर्म धीरे धीरे तो संभल जाएगी जिंदगी धीरे धीरे जो करते चलो शुभ कर्म धीरे धीरे तो सम

के भान से हमें मुक्त हैं कराते, कर्मों की गहन गति वो हमको समझाते, आत्मज्ञान दे रहे हैं हमें धीरे धीरे, तो संभल जाएगी जिंदगी धीरे धीरे। आत्मा से सदा

तुम मिले जय है मुक्ति, जीवन मुक्ति धीरे धीरे तो संभल जाएगी जिंदगी धीरे धीरे।

0: पण तो स्वर्ग का आनंद ले लो यहीं धीरे धीरे, तो स्वर्ग का आनंद ले लो यहीं धीरे धीरे, जो करते चलो शुभ कर्म धीरे धीरे, तो संभल जाएगी जिंदगी धीरे धीरे।
1: बहुत बहुत शुक्रिया कालका जी आपका, रेडियो मधुबन पर आज आपने अपनी जीवन गाथा के साथ साथ अपनी रचनाओं को भी हमारे श्रोताओं के लिए प्रस्तुत किया और इतना समय दिया रेडियो मधुबन के कार्यक्रम सलामी जिंदगी पधारे। तो ऐसे ही आप आते रहिए रेडियो मधुबन पे और हमारे श्रोताओं के साथ मुखातिब होते रहिए बीच बीच में। तो दोस्तों, आज हमारे साथ रेडियो मधुबन के स्टूडियो पर थे कालका प्रसाद जी और आपने उनके जीवन के अलग अलग अनुभवों को सुना। आशा करते हैं कि आपने ज़रूर उनमें से कुछ ना कुछ सीख ली होगी। और आज हम सलाम करते हैं इस ज़िंदगी को रेडियो मधुबन से कार्यक्रम सलामी ज़िंदगी में। सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: दोस्तों को मेरा सलाम और नमस्कार। आपका फेवरेट होस्ट एंड दोस्त फॉर योर रेडियो स्टेशन मधुबन रेडियो, दिस इज शरद त्रिपाठी फॉर योर फेवरेट शो जुनून। तो जुनून में फिर से आज बात करेंगे एक जुनूनी के साथ और जानेंगे कि इंसान को क्यों पालता है कोई जुनून और क्यों निकल पड़ता है एक नई राह पर, जिस पर फिर से मिलते हैं कुछ जुनूनी। तो हमारे साथ हैं जुनून में इस बार सूर्य नगरी देवाराम। सूर्य नगरी से देवाराम जी हमारे बीच में हैं। देवाराम जी के साथ हम बातचीत करेंगे। देवाराम जी एक जुनूनी हैं और मैराथन के जुनूनी हैं। ये उस ट्रैक पे अपना पसीना बहाते हैं जिस पर शायद हम चल भी ना पाए। तो उस ट्रैक पर इनकी क्या जिंदगी है, क्या बात करेंगे, ये ट्रैक पर है भी कि नहीं ये भी हम जानेंगे। तो आइए मिलते हैं देवाराम जी से। देवाराम जी आपका स्वागत है हमारे फेवरेट रेडियो स्टेशन पे, रेडियो मधुबन पर।
1: धन्यवाद सर।
0: तो देवाराम जी आप को ये जुनून हमारा, फिर से वही सवाल होता है बहुत

0: वहीं से मेरा वो जुनून जगा अंदर और मैं बस वहीं से ठान लिया कि बस अब मुझे इसे करके दिखाना है, इसे आगे आके दिखाना है और इसी को रेस में एक दिन हराना है। तो सर वो हर बिल्कुल सर, फिर 6 महीने के अंदर ही सर एक बार हमारा कंपटीशन हो गया भाई के मामा का लड़का और मेरा, तो फिर मैं उससे आगे निकल गया। तो उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं सर। अच्छा हमारे यहाँ जोधपुर में ट्रैक अच्छा है, सिंथेटिक ट्रैक बना हुआ है, तो वहाँ मैंने कोच ज्वाइन कर लिया, रजाक मोहम्मद है जो प्रैक्टिस करवाते हैं इधर। तो वहाँ पे मैंने मन लगा के अच्छी प्रैक्टिस की, उस कुली में मैं स्टेट खेल के आया 1917 में, और बाकी फिर ओपन गेम्स खेलने लगा ये जो एसोसिएशन करवाती है, फिर स्टेट में मेडल आने लगे तो और जुनून जाग गया सर। वो एक ऐसा लगे ना मैं और भी आगे जा सकता हूँ, और भी आगे जा सकता हूँ, ऐसे कर करके मतलब बहुत ही मजा आता था सर प्रैक्टिस करने का ट्रैक पे। वो टाइम तोड़ने में मेरा 5000 और 10000 मीटर इवेंट है सर। प्रोफेशन बन गया मेरा फिर ये ट्रैक के बिना सर। एक दिन ग्राउंड नहीं जाते तो भी अजीब लगता है, पूरी बॉडी जकड़ जाती है, बस ट्रैक पे जाना है दौड़ना है। और नेशनल चैंपियन, नेशनल प्लेयर हूँ सर, स्टेट चैंपियन ले चुका हूँ 2 बार, और बाकी राजस्थान को 7 से 8 बार रिप्रेजेंट किया है नेशनल लेवल पर।
1: बहुत बढ़िया। तो श्रोताओं आप सुन चुके हैं आपके फेवरेट रेडियो स्टेशन जुनून पर, और जुनून पर हम सुन रहे हैं माउंट आबू की वादियों से 107.8 FM पे और हमारे ऐप रेडियो मधुबन पर भी। तो हमारे साथ हैं एक युवा जुनूनी देवाराम। देवाराम कहते हैं कि उनका शरीर जगड़ जाता है कि जब उनका ट्रैक से मिलन नहीं होता, और ट्रैक से उनकी दोस्ती या कहीं की यारी इतनी जोरदार हो गई है कि रोज सुबह उनको ट्रैक चाहिए, अपने प्यारे ट्रैक से जब तक उनका मिलन नहीं होता उनकी तमन्ना पूरी नहीं होती। और तमन्ना है देश के लिए कुछ कर गुजर जाने की, मेडल पा जाने की, और मेडल पोडियम पे जब वो खड़े हों और देश का तिरंगा ऊपर जाए, ये उनकी भावना है। हम उनकी ऐसी भावना और उनकी ऐसी अपेक्षाओं और उनकी मेहनत को हम सलाम करते हैं, और उनको आशा करते हैं कि वो जरूर ही अपने जीवन में एक अच्छा मुकाम पाएंगे। तो देवाराम देखिए ना, जब किसी इंसान को कुछ चैलेंज कर दिया जाता है तो वो जिंदगी को अपना जुनून बना लेता है, उस मकसद को पाने के लिए कुछ भी कर गुजरता है। तो कुछ वैसा ही आपके साथ हुआ कि तुम नहीं कर सकते, तो ऐसा हमारे साथ में लाइफ में होता रहता है। तो क्या बात है, तुमने आपको धन्यवाद दिया कि तुमने मुझे अच्छा चैलेंज दिया और आज तुमने मेरा जीवन बदल दिया।
0: जी सर, रोज मिलता हूँ, अब तो मिलते हो रोज, धन्यवाद देता हूँ, आपकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। अगर आप नहीं मिलते भैया, आपको दौड़ते हुए नहीं देखता, और अगर आपने मना नहीं किया होता तो मैं नहीं दौड़ पाता आज।
1: क्या बात है, तो हमें ऐसे लोगों को जरूर जरूर धन्यवाद देना चाहिए जो हमें कोई चैलेंज दे जाए, जाने अनजाने में ही दे जाए और हम उस चैलेंज को पूरा कर जाए, तो उनका धन्यवाद बनता है। तो आप 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर के इवेंट में आप दौड़ते हैं और अब कार्यरत हैं, आप उसमें लगे लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो इस इवेंट में क्या रेजिलियंस या क्या गुण होने चाहिए खिलाड़ी के पास, एक एथलीट के पास जो इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? कुछ वैसा ही है जैसे पान सिंह तोमर फिल्म के अंदर उस हीरो को कहा गया था कि तुम किसी रेस में तुम नहीं परफॉर्म कर पाओगे, है ना? तो तुम्हारा क्या अनुभव है इस 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर इवेंट की, क्या के लिए क्या होना चाहिए एथलीट के?
0: वो सर हमारे ऐसे तो कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, ओपन गेम होते हैं उसमें वो पहले एंट्री होती है डिस्ट्रिक्ट जिला स्तर पे तो होते हैं हमारे टूर्नामेंट, फिर राज्य स्तर, फिर नेशनल लेवल होते हैं। तो जिला स्तर खेलने के लिए पहले एंट्री करानी पड़ती है और जीतने के लिए सब प्रैक्टिस करनी पड़ती है, एक साथ अच्छे दोनों टाइम प्रैक्टिस करते हैं तो फिर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल तक अच्छे प्लेयर बन जाते हैं 1.5 साल बाद, फिर धीरे धीरे आगे अपना तो समय में आ जाता है।
1: नहीं नहीं बिल्कुल, आप तो प्रयास कर रहे हो इस बात को लेकर, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि हम क्या वो गुण होने चाहिए, शारीरिक क्षमताएं क्या होनी चाहिए, क्योंकि एक अलग इवेंट है, इसमें स्टैमिना चाहिए, तो वो स्टैमिना कहाँ से आता है?
0: सर एथलेटिक्स में सबसे हार्ड गेम एथलेटिक्स है सर रनिंग, तो इसमें स्टैमिना उसके लिए

0: प्रॉपर प्रिपेयर होना पड़ता है, पहले से ही ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, सारी एक्सरसाइज होती है और वर्कआउट होता है, जो वीकली शेड्यूल बना हुआ था वो वर्कआउट करना पड़ता है, वो वर्कआउट करके उसके लिए प्रिपेयर बनना होना पड़ता है पहले पूरा।
1: नहीं नहीं आप तो लगातार आप तो प्रयास कर रहे हैं, आप में एक स्टैमिना भी आपका है, क्योंकि लंबी दूरी की दौड़ के लिए आपके अंदर स्टैमिना होना चाहिए और आपको अफ्रीकन खिलाड़ियों के साथ भिड़ना है। जब आपको इंटरनेशनल खेलों में जाना है तो आपका जो मुकाबला होगा वो अफ्रीकन खिलाड़ियों से होगा, जो कि हमसे ज़्यादा स्टैमिना और हमसे ज़्यादा उनकी ट्रेनिंग है। क्या खास बातें हैं जो अफ्रीकन खिलाड़ियों से हमारा मुकाबला नहीं हो पाता?
0: सर एक तो मेन रहता है ट्रेनिंग और डाइट सर, ट्रेनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए और उसके ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग डाइट भी अच्छी होनी चाहिए और शूज कंफर्टेबल होने चाहिए अच्छे, जो सभी रनर यूज करते हुए जैसे मेन तो एथलीट में तो एथलीट तो डाइट की वजह से कभी कभी इंजरी खा जाता है, जैसे प्रॉपर डाइट नहीं ले पाता है तो कहीं नी पेन, ये एंकल पेन, हैमस्ट्रिंग वगैरह ये इंजरी हो जाती है। तो उसमें सर मेन डाइट, शूज और ट्रेनिंग होता है सर, ये चीजें लेके चलेंगे तो फिर हम भी उनकी तरह परफॉर्म कर पाएंगे सर। और एक जुनून होना चाहिए, जो हम गेम करते हैं उसका पूरा इंटरेस्ट होना चाहिए उसमें, प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए।
1: तो अभी तुम्हारा क्या लक्ष्य है, तुम क्या करना बाकी है, कौन सा मुकाम तुम देखते हो अपने लिए?
0: सर एक बार इंडिया के लिए खेलना है, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ, कोई भी।
1: जी जी
0: इंडिया की जर्सी।
1: हाँ श्रोताओं देखिए ना, इंडिया की जर्सी जो है, अपने वतन की जर्सी पहनना कितना कितना बड़ा बात है, कितनी बड़ी बात है हमारे हमारे देवाराम जी के लिए, और मेरे तो हर खिलाड़ी का ये सपना होता है। तो श्रोताओं इस सपने के लिए ही खिलाड़ी जीता है और इस सपने के लिए ही वो सुबह जागता है, इस सपने के लिए ही अपना पसीना बहाता है। और हम बात कर रहे हैं देवाराम से, जो कि जोधपुर से आते हैं, सूर्य नगरी जोधपुर से, और जैसे ही सूरज निकलता है ये भी अपने ट्रैक पर पहुंच जाते हैं। आपके दिन की शुरुआत कैसे होती है देवाराम?
0: सर दिन की 4:30 बजे उठता हूँ सुबह सर, आधे घंटे में नाश्ता फ्रेश होके ग्राउंड के लिए 5:30 तक ग्राउंड पहुँच जाता हूँ सर। और फिर हमारा 8:30-9 बजे तक वर्कआउट सेशन रहता है पूरा सर सुबह का, और फिर वापस आके जो भी डाइट होती है हमारी, जूस वगैरह और प्रोटीन डाइट, चने हो गए, दूध देख के, फिर 2 घंटे रेस्ट करके और फिर थोड़ी बहुत पढ़ाई, और उसके बाद शाम को वापस सर 4:30-5 बजे के आसपास ग्राउंड जाते हैं। और शाम को हमारा मेन रहता है एक्सरसाइज सेशन रहता है, सुबह तो वर्कआउट हो जाता है मेन स्पीड वर्कआउट रनिंग, और शाम को जी सर साइंस सेंटर था, अब नहीं है सर, वो हट गया है, अभी जयपुर में है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ पहले भी नहीं था एथलेटिक्स का, तो दूसरे गेमों का था सर, इसका नहीं था पहले भी।
1: जी,
0: नाम मात्र का है एसआई सेंटर सर, ऑफ है, बंद कर रखा है इन्होंने, पहले दूसरे गेमों की ट्रेनिंग होती थी तो वो भी बंद कर दी अब तो।
1: अच्छा
0: हाँ सर।
1: तो क्या चैलेंजेस हैं आज के जमाने में एक एथलीट के सामने, एथलीट कैसे अपनी ट्रेनिंग को लेके मुकाबला कर रहे हैं, कैसे एक एथलीट आगे बढ़ता है, क्या चुनौतियाँ हैं एथलीट के सामने?
0: सर बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है ट्रेनिंग के दौरान, कभी इंजरी हो जाती है फिर उनको वापस रिकवर होना पड़ता है, और उसके साथ पूरा डाइट का ध्यान रखना पड़ता है, मेन सर डाइट का ही ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बाहर का कुछ नहीं, जो भी चाहे उस खाने में स्वाद है नहीं है, लेकिन जो हमारी बॉडी को लगे और अच्छा परफॉर्म कर पाए उसके लिए अच्छी डाइट, और बाकी चाहे आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी हो, ट्रैक पे पहुंचना टाइम पर और अच्छे से ट्रेनिंग करनी, तो यही डिसिप्लिन सालों लगता है सर, एक एथलीट को बनने में 4 से 5 साल लगते हैं एक नेशनल लेवल प्लेयर बनने में। सर वो रूटीन रहता है सालों, सुबह शाम ग्राउंड एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए, अगर सर हम मंडे को मिस कर देते तो पूरा वीक खराब हो जाता है, तो फिर वो पूरा डिसिप्लिन में रहना पड़ता है।
1: तुम कितने दिन से ट्रेनिंग कर रहे हो?
0: मेरे को सर 8 साल हो गए।
1: अच्छा, बड़ी लंबी दूरी में मेहनत कर रहे हो, और जीवन में क्या सपना है अभी, क्या प्लान है इंडिया जर्सी के अलावा, और क्या सोचते हो कि इंडिया जर्सी मिलने के बाद क्या करोगे?
0: वही खेलता रहूंगा सर, जब तक शरीर साथ देगा मेरा तब तक तो दौड़ूंगा सर, और दौड़ते ही रहूंगा। जैसे तो कंपटीशन, जब अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है मेरी तो मैं कंपटीशन खेलता रहूंगा। सर स्टार्टिंग में थोड़ा मैं क्या कि वो कोरोना हो गया था, वो लंग्स में इन्फेक्शन हो गया था, उसकी वजह से 1-1.5 साल खराब हो गया था मेरा, उसकी वजह से ज़्यादा टाइम लग रहा है। बाकी उस टाइम कोरोना से पहले मैंने 2 साल पहले स्टार्ट कर दिया था सर, 2018 में, तो बीच में 1.5 साल वो हो गया। फिर थोड़ा मैं क्या, पापा किसान खेती करते हैं तो इतना वो अफोर्ड भी नहीं कर पाते थे खर्चा, तो सर मेरा वो ट्रेनिंग तो करता था लेकिन प्रॉपर रेस्ट नहीं होता था, साइड में छोटी मोटी जॉब करके अपना जो भी गेम का खर्चा, शूज वगैरह वो एडजस्ट करता था। और फिर 3 साल तो ऐसे ही निकल गए, उसके बाद फिर प्रॉपर ट्रेनिंग करनी शुरू करी। मैं क्या, जिस स्कूल में पढ़ता था उन्होंने मुझे, प्रिंसिपल मैम ने थोड़ा बहुत स्पॉन्सर किया था, तो मैं साइड का काम छोड़ के प्रॉपर रेस्ट करके अच्छी ट्रेनिंग करता था, तो सर धीरे धीरे परफॉर्मेंस आती गई, ठीक है सर, अच्छा फिट है। आर्थिक तो वो दिक्कत आती है पैसे की, क्योंकि इसमें कॉस्टली आते हैं सर, हमारे शूज 15,000 से नीचे वो शूज ही नहीं है सर रनिंग के, और अलग अलग रखना पड़ता है, प्रैक्टिस शूज अलग, और इसमें कंपटीशन के शूज अलग होते हैं, फिर डाइट प्रोटीन हो गया, ये सर अफोर्ड करना बहुत मुश्किल था स्टार्टिंग में। धीरे धीरे फिर सर मैंने कहीं से बात करके थोड़ी बहुत स्पॉन्सरशिप की वो जुगाड़ किया, उसके बाद फिर सर ये मैराथन खेलनी शुरू की मैंने, तो मैराथन की वजह से थोड़ा बहुत मेरा ये अच्छा होने लगा स्पोर्ट्स।
1: तो कितने दिन चल जाते हैं एक एथलीट के अच्छे वाले जीते हैं?
0: कुछ सर हमें हर 1.5-2 महीने तक चलते हैं सर, वो प्रैक्टिस तो 1.5 महीना लास्ट है, क्योंकि हमारे लॉन्ग वालों को 5-10 किलोमीटर का वो वर्कआउट सेशन होता है सर, वीकली कम से कम 180 किलोमीटर कवर करना पड़ता है वर्कआउट में सारा डिस्टेंस
1: जी।
0: लास्ट अगर थोड़ा ध्यान रख के अच्छे से चले या फिर ट्रैक पे सारा वर्कआउट रोड पे नहीं करे तो फिर सर 2 महीने लास्ट है शूज
1: जी।
0: और सर वो थोड़ा एक्स्ट्रा जैसे कि खाने से सब कुछ नहीं मिलता, प्रोटीन लेना पड़ता है, जो प्रोटीन पाउडर डब्बा आता है वो अलग से रिकवरी के लिए, वो प्रॉपर रिकवरी इस खाने में वो डाइजेस्ट फास्ट होना, अगले दिन के लिए तैयार नहीं होते तो वो प्रोटीन पाउडर भी लेना पड़ता है सर
1: जी। तो इस पूरी प्रक्रिया में आपको क्या सपोर्ट मिला गवर्नमेंट से?
0: सर गवर्नमेंट का तो कुछ सपोर्ट नहीं मिला सर अभी तक, वो मेडल के पैसे आए थे 1-2 बार, 2 मेडल के आए, बाकी अभी कुछ के आने हैं सर।
1: नेशनल लेवल मेडल जो था?
0: हाँ नेशनल मेडल नहीं है सर मेरा, मैं नेशनल प्लेयर हूँ सर, स्टेट में मेडल मेरे नेशनल, मैं अभी बीच में अनफिट हो गया तो अभी वापस फिट हुआ, तो अभी नेशनल आने टाइम अप्रैल एंड में नेशनल गेम से है सर, उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ मेडल के लिए
1: जी। हाँ सर अभी आपका मुकाबला, राजस्थान का मुकाबला कौन से स्टेट के खिलाड़ियों से ज़्यादा रहता है?
0: सर कॉम्पिटिटर ज़्यादा हमारे इससे यहाँ से गुजरात हरियाणा पंजाब, ये सर उनके बीच बहुत तगड़ा कॉम्पिटिशन होता है हमारा, इधर के अच्छे हो बहुत अच्छे प्लेयर है गुजरात हरियाणा ये पंजाब से, दिल्ली के भी अच्छे बहुत अच्छे एथलीट हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट
0: उधर सर स्प्रिंटर है ज़्यादा, लोग शॉर्ट डिस्टेंस जैसे 400, 200, 100 मीटर वो होने से तो उनका इतना पता नहीं, क्योंकि मैं लॉन्ग करता हूँ सर।
1: काफ़ी लड़के पश्चिमी राजस्थान में, अभी लड़कियाँ भी अब काफ़ी आगे आ रही हैं मुझे लगता है एथलेटिक्स में, तो
0: बिल्कुल सर
1: अभी कैसा माहौल कैसा हो जाता है ट्रैक पे, शाम कैसी दिखती है ट्रैक पे?
0: सर ट्रैक पे सर सीधा जाते जन्नत दिखता है सर, देखते ही हो सुकून वही है सर हमारा, तो वो कर्म भूमि है जो हमारी ट्रैक, वहाँ पे ट्रैक के अंदर घुसते ही बाहर की सारी दुनियादारी भूल जाते हैं, बस वो ट्रैक ही दिखता है सर, प्रैक्टिस
1: बहुत सारे
0: लोग कहीं जाते हैं गार्डन घूमने, हम अगर कहीं मन शांत नहीं है ट्रैक पे चले जाते हैं
1: जी। नहीं खिलाड़ी काफी सारे आते हैं
0: ना? हाँ सर बहुत आते हैं शाम के टाइम, बॉयज गर्ल्स सारे प्रैक्टिस करते हैं, लड़कियाँ भी करती है लड़के भी करते हैं, दोनों टाइम वर्कआउट सेशन रहता है सर सभी का।
1: तुम सरकारी सेवाओं के लिए भी ट्राई कर रहे हो क्या?
0: जी सर मैं कर रहा हूँ अभी, वो स्कूल में PTI हो गए कोच के लिए, अभी मेरी वो फाइनल ईयर है BPED चल रही है, तो सर उसके बाद एग्जाम दूंगा सर।
1: बहुत बढ़िया
0: जी सर।
1: खुश होता हूँ आप सुन रहे हैं एक युवा आवाज, युवा जुनूनी, और वो आवाज जो ट्रैक पे निकालते हैं अपना पसीना और जिनके पैरों में होते हैं जूते, और फिर सामने होता है लक्ष्य किलोमीटर्स का। तो हम ऐसे जुनूनी के साथ हैं जो लंबी दूरी के धावक हैं। और वैसे तो श्रोताओं आपको पता है कि जिंदगी भी एक दौड़ है, लेकिन जिंदगी की एक दौड़ में कुछ छोटी छोटी दौड़ है जो देश के लिए मेडल लाती है और परिवार, गांव और स्टेट के लिए एक सम्मान का विषय बन जाती है। कुछ वैसी ही दौड़ को करते हैं हमारे आज के गेस्ट देवरा और आज के जुनूनी देवरा। देवरा, और क्या जिंदगी में क्या मसला है, क्या सोचते हो तुम खिलाड़ियों के जीवन को लेकर, क्या सोचते हो अपने आसपास के समाज और अपने अंदर क्या अंतर देखते हो?
0: सर, ये चीज इसमें तो बहुत डिफरेंट है सर। एक खिलाड़ी सर इतना निखरा हुआ होता है कि हर चीज वो उसने स्ट्रगल किया है। तो एक मैं अगर कंपेयर करूं जो गेम नहीं करता और एक मैं गेम करता हूं, जो चीज़ें हमने फेस की है, जिस मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट खेलने जाते हैं, अलग अलग उसे मिलते हैं, तो हमारा वो सोच का काफ़ी फर्क रहता है सर। वो हम ऐसे लगता है कि हाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें गेम में।
1: जी सर, नहीं गेम तो देखिए हमें सिखाता है और गेम ही हमें आगे बढ़ाता है, और गेम की बदौलत ही दुनिया में सब कुछ आगे चलता है। वैसे दुनिया भी एक गेम है और हर कोई हमारे साथ रोज कोई ना कोई गेम खेलता है, लेकिन क्योंकि हम खिलाड़ी हैं और खतरों के खिलाड़ी हैं, तो हम हर गेम से पार पा जाते हैं। और वैसे भी हमारा नाम है देवाराम है, हम तो देवों के राम है। तो देवाराम, ये बताओ ना, जोधपुर का जीवन कैसा है, जोधपुर कैसा शहर है, कैसा लगता है?
0: सर, जोधपुर बहुत अच्छा है। मेरे गेम के टूर ऑल इंडिया हो रखे, हर स्टेट में घुमा हूँ, लेकिन जो जोधपुर में सुकून मिलता है ना सर रहने का, यहाँ का रहन सहन, यहाँ का लोगों का जो एक आवादर है सर, हमारी मेहमान नवाजी है बहुत अच्छी है। जोधपुर का मौसम बहुत अच्छा है सर, यहाँ कहीं पे भी रहने का मन नहीं करता जोधपुर की सेवा। सर,
1: आप जिस स्टेडियम में ट्रेनिंग करते हैं अमृत लाल गहलोत, थोड़ा बताएंगे इनके बारे में?
0: सर हाँ सर बताएंगे। वो यहाँ पे जो आसपास है सारे माली समाज रहते हैं सर, माली समाज के ही एक बुजुर्ग थे जो मतलब उनकी जमीन थी ये, और वो अपने टाइम में वो दान करते थे, जैसे मतलब किसी की हेल्प कर दी, कोई गरीब है तो उसकी हेल्प कर दी। तो लास्ट में उन्होंने जाने से पहले ये जमीन दान कर दी कि ये एक स्टेडियम बना दें। पहले यहाँ पे स्टेडियम था ना सर, वहाँ पे एक नाटी थी जो हमारे मारवाड़ में बोलते हैं ना, जो नाटी होती है जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा होता है, वैसे थी। तो उन्होंने मतलब बच्चों के खेलने के लिए एक ग्राउंड, जो इसमें बहुत सारे बच्चे आर्मी की भर्ती की तैयारी करते हैं उनके लिए वो ये सार्वजनिक करती सर सभी के लिए, तो फिर उनका नाम दे दिया अमृत लाल गहलोत स्टेडियम से।
1: बहुत बढ़िया, तो एक बहुत भामाशाह थे मतलब।
0: बहुत बड़े भामाशाह थे सर, आज हजारों बच्चे यहाँ से पास आउट हो चुके सर, कोई आर्मी में, कोई दिल्ली पुलिस में, किसी में है।
1: सबसे अच्छा मोमेंट तुम्हारे जीवन का क्या अभी तक रहा?
0: सबसे अच्छा मोमेंट सर
1: वो याद है
0: मेडल का है सर, मेडल आता है तो वो पोडियम पे खड़े होते हैं, तो वही सबसे अच्छा मोमेंट होता है सर।
1: बिल्कुल, इस पूरे माहौल में तुमने कौन कौन सी मैराथन में भाग लिया अब तक?
0: सर मैंने मैराथन बहुत सारी खेली सर, ऐसे प्रॉपर याद तो नहीं है, लेकिन जो माउंट आबू में मैराथन हुई ना उसको वो सर सबसे अच्छी मैराथन थी, बहुत अच्छा लगा दौड़ के। और जो रिप्लेसमेंट या वो होते हैं ना सर, सब कुछ बहुत अच्छा था माउंट आबू मैराथन में। ऐसी मैराथन मैंने पार्टिसिपेट पहली बार किया है, बाकी दूसरी जगह मैराथन होती है उसमें प्लेयर्स को जो फर्स्ट आता है, सेकेंड आता है, थर्ड आता है, सभी को इतना सम्मान नहीं मिलता, वो अपने एडवर्टाइजमेंट में टाइम गुजार देते हैं, खिलाड़ी को लास्ट में प्राइज मिल देते हैं, लेकिन ये सब कुछ खिलाड़ी के लिए, सबको मोटिवेशन देने के लिए सब कुछ किया, तो बहुत अच्छा लगा था माउंट आबू वाली मैराथन।
1: इसमें कोई प्रचार नहीं था। बिल्कुल, तो जिंदगी का मकसद जब सिर्फ प्रचार रह जाए तो फिर विचार खत्म हो जाते हैं, तो ऐसा ही विचार आपका है। तो श्रोताओं, आपने सुना देवाराम को, और देवाराम ने अपने जीवन की सारी बातें बता रहे हैं और खुल के बात कर रहे हैं, और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन 107.8 FM, और मैं हूं आपका होस्ट शरद, और प्रोग्राम है जुनून, और जुनून में हमारे साथ जुनूनी है जोधपुर से देवाराम। और देवाराम से हम बात कर रहे हैं कि देवाराम की जो जिंदगी है ट्रैक पे है कि नहीं और ये ट्रैक कितना लंबा जाएगा, तो उसी पर हम बात कर रहे हैं। और देवाराम ने बताया है कि वो फिजिकल एजुकेशन में भी ट्रेनिंग कर रहे हैं और एक लंबी दूरी के धावक हैं। तो देवाराम, आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन सा है जिसकी तरह आप बनना चाहते हैं?
0: फेवरेट खिलाड़ी मोहम्मद फराज है सर।
1: कौन से देश से खेलते हैं?
0: ये यूएसए की तरफ से खेलते हैं लेकिन केन्या के है सर।
1: जी जी जी। और ये ओलंपिक चैंपियन भी
0: भारतीय फेवरेट खिलाड़ी अविनाश आपले सर मेरे।
1: जी जी। और ये दोनों ही 5000 मीटर खेलते हैं राइट?
0: हाँ सर, लंबी दूरी के। एक ये हमारे भारतीय अविनाश आपले ये स्टीपल चेस करते हैं सर 3 किलोमीटर, और रिकॉर्ड भी अभी पहले इनके ही थे इंडिया रिकॉर्ड ये 5 किलोमीटर का अविनाश आपले, अभी सर गुलवीर सिंह है।
1: लेकिन तुम स्टीपल चेस के खिलाड़ी नहीं हो, लेकिन तुम्हारे फेवरेट अविनाश आपले क्यों?
0: वो सर उनका वो मोटिवेशन, उनका जो स्ट्रगल, कंटिन्यू प्रैक्टिस, सब कुछ वो देख के सर फैन हो चुका हूँ।
1: और मोहम्मद फराज क्या खेलते हैं?
0: मोहम्मद फराज 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर वो मैराथन भी खेलते हैं सर।
1: और वो ओलंपिक खिलाड़ी भी हैं?
0: हाँ वो ओलंपिक मेडलिस्ट है सर।
1: बहुत बढ़िया। तो जो हमारे श्रोता स्टीपल चेस के बारे में नहीं जानते, इस दौड़ के बारे में बताइए हमें।
0: हाँ सर बताइए। स्टीपल चेस 3 किलोमीटर में ये होता है सर, 5 हेडल होते हैं, तो हम जो इसको बादा दौड़ भी बोलते हैं हिंदी में, तो सर इसमें 5 हेडल होते हैं, तो उनको उनके ऊपर से कूद के जाना पड़ता है। 5 में से एक होता है सर वाटर जंप, जिसमें हेडल तो है ही सर, और उसके नीचे पानी गड्ढा कर रखा है पूरा, उसमें पानी भर रखा है, उस पानी के अंदर से कूद के जाना होता है। ऐसे 7.5 लैप होते हैं ग्राउंड के, तो फिर 3 किलोमीटर की उसको बाधा दौड़ कहते हैं।
1: जी, तो एक में पानी होता है और हेडल क्या क्या हेडल होते हैं?
0: एक पानी का होता है, बाकी नॉर्मल हेडल होते हैं रखते हुए, उनके ऊपर से कूदना होता है।
1: मैक्सिमम कितना ऊंचा हर्डल होता है?
0: मैक्सिमम होता है सर 2.5 फुट प्लस, हाँ 2.5 फुट सर।
1: 2.5 फुट?
0: हाँ सर, मेरी देखो सर 2.5 फुट होता है सर, और गर्ल्स का थोड़ा कम होता है, बॉयज का ज्यादा होता है।
1: जी बहुत बढ़िया। तो हमारे श्रोताओं ने जान लिया कि स्टीपल चेज क्या होता है, बाधा दौड़ होती है, और बाधाओं को से पार पा जाना ही तो वाला ही तो इंसान कहलाता है। और कुछ वैसी ही बाधाएं ट्रैक पे होती हैं, और हमारे देवाराम भी ट्रैक पर उन बाधाओं से पार पाते हैं। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन 107.8 FM माउंट आबू की वादियों से, और उन्हीं माउंट आबू की वादियों में से जहां पर हम हर साल करते हैं मैराथन, और मैराथन होता है एक मनुष्य की ताकत को आजमाने का मौका, एक ऐसा मौका जब अपनी क्षमताओं से बाहर निकल जाना होता है, और उन क्षमताओं को जांचने का अवसर मिलता है एक इंसान को मैराथन, एक लंबी ट्रेनिंग के बाद अपने हुनर और अपनी ताकत को दिखाना, अपनी जंगाओं को ताल देने का मौका कि आ जाओ देखते हैं किसमें है कितना दम। तो कुछ वैसी ही मैराथन, और हमारी बातचीत में हम उन मैराथन के बारे में भी बात करेंगे जिसमें लग जाता है पूरा दम। तो देवाराम हमारे साथ हैं और हम बात कर रहे हैं दम और खम की और दौड़ की, जिसमें मैराथन जिसमें स्टैमिना की भी बात है जो हम पहले कर रहे थे, तो कुछ वैसा ही होता है हमारी मैराथन माउंट आबू में जो हम ब्रह्मा कुमारी करवाते हैं। तो उसी मैराथन के बारे में थोड़ी बात करते हैं, 21 किलोमीटर का एक लंबी पहाड़ी, ऊँची माउंट की पहाड़ी, वो पहाड़ी जिस पर जिसको जीतने के लिए जिस पर लंबे समय तक अंग्रेजों ने राज किया, और आज़ादी के बाद अब राज है देवाराम जैसे एथलीट्स का उस पहाड़ी पर, और बता देगा कि ये हमने इसको जीता है और हमने इसको पूरा किया है अपनी ताकत और अपने स्टेमिना के तौर पे। तो देवाराम जी आप थोड़ा बताइए ना, क्या याद है उस मैराथन?
0: सर वो मोमेंट उस टाइम जो अगस्त का महीना था सर, 17 अगस्त को हुई थी, उसमें सर वो नीचे आबू रोड से माउंट आबू तक पूरी चढ़ाई थी 21 किलोमीटर। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे आगे, क्योंकि पहले मैं इतनी लंबी चढ़ाई कभी नहीं चढ़ा सर, फ्लैट ही दौड़ा हूँ मैराथन, और पहली बार वो चढ़ाई चढ़नी थी सर माउंट आबू वाले। पहले मैं बस गाड़ी से ही गया था और दौड़ के पहली बार गया था अगस्त 2025 में सर। तो उसमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा बीच में। एक सर हमारे जो मैराथन दौड़ते हैं या फिर कोई भी इवेंट 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर करते हैं तो एक सेकेंड विंड आती है, जो एक उस टाइम ऐसा लगता है कि जैसे रेस आती कंप्लीट होती है सर, उस टाइम लगता है कि अब छोड़ देते, बॉडी में बहुत पेन होता है, पाँव थक जाते हैं, सांस फूल जाती है। तो वो सेकेंड विंड में अगर खिलाड़ी वहाँ टिका रहता है तो वो पूरी पार कर लेता है अच्छे से, लेकिन उसमें वहाँ मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ता है खिलाड़ी को। तो सेकेंड विंड में वहाँ मेंटली प्रिपेयर रहता है, दिमाग से चलता है। एक सेकेंड विंड सिर्फ सर 2 या 2.5 मिनट का होता है वो टाइम, वो 2-2.5 मिनट हमने सहन कर लिया ना सर, फिर आगे का बहुत अच्छा हो जाएगा, आधी रेस पूरी तगड़ी हो जाएगी सर। तो उसी हिसाब से मैं माउंट आबू में यहाँ से आबू रोड से वहाँ ऊपर माउंट आबू तक चढ़ा, तो उस चढ़ाई में सर ये चीज़ें मेरे साथ कुछ नहीं हुई, बहुत अच्छा लगा दौड़ के। जैसे जैसे ऊपर चढ़ते गए सर, ठंडी हवा आ रही थी ऊपर से, जैसे वो ठंडा मौसम रहता है सर ऊपर माउंट आबू में। और मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा था, आगे बाइक वगैरह सब चल रहे थे, वो वोटिंग भी कर रहे थे हमारी। तो मैंने हंसते हंसते वो रनिंग पूरी कंप्लीट की सर। स्टार्टिंग में 5 किलोमीटर तक तो सारे कुछ एथलीट थे हमारे, मेरे साथ ही भाई जो कोई एक दो साथ में भी ट्रेनिंग करते थे, भाई जो सेकंड आया वो गुजरात का था, तो वो मेरे साथ चले 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर तक। फिर 8 किलोमीटर हमारी कंप्लीट हुई तो धीरे धीरे सब टूटने लगे, हम 4 एथलीट जो कंटिन्यू साथ में चल रहे थे 14 किलोमीटर तक सर। फिर उस टाइम मैं उनके साथ ही चल रहा था सर, मैंने सोचा कुछ थोड़ा अलग करते हैं, तो मैंने अपनी सर रफ्तार बढ़ाई, तो रफ्तार बढ़ाई तो वो साथी खिलाड़ी सारे छूट गए और मैं हो गया अकेला। फिर आगे बाइक चल रही थी, पूरी वीडियोग्राफी हो रही थी, तो वहाँ का जो बीच का सफर था ना सर बहुत सुहाना, ऐसे पूरी हरियाली, ऊपर चढ़ते जा रहे, ठंडी हवा आती जा रही, रिकवरी होती जा रही बॉडी की, बिल्कुल पसीना नहीं हो रहा है, पानी का जो रिप्लेसमेंट बीच में व्यवस्था थी वो बहुत अच्छी थी, हर 2-2.5 किलोमीटर पे पानी की व्यवस्था थी। तो सर मैं ऐसे ऐसे करते करते मतलब पूरी रनिंग आराम से 1 घंटा 19 मिनट में कंप्लीट कर ली। और बहुत ऐसे जैसे मैंने मैराथन फिनिश की थी तो उस टाइम हाथों हाथ आगे मेडिकल सुविधा थी, सब कुछ बहुत अच्छे से था, लेकिन मुझे उन सब की जरूरत नहीं थी क्योंकि थकान हुई नहीं थी सर माउंट आबू रनिंग मैराथन में। बाकी मैराथन में बहुत जोर आता है, हालत खराब हो जाती लास्ट तक, लेकिन वो पता नहीं क्या उन पहाड़ियों में था, तो अच्छा भी लगा। एक फर्स्ट आने का वो जुनून था सर, जो दर्द भी भूल गया सारा, जो काम बॉडी पेन हो रही है, कितनी थकान है, वो सारी गायब हो गई।
1: वो ब्रह्मा कुमारी की फिजिकिटी की ताकत थी,
0: चमत्कारी है सर बहुत वहां पे तो फास्ट कर गया है।
1: वो ताकत थी फिजिकिटी की, वो ताकत थी एक अंतर्मन की जो शायद तुमको ट्रांसफर की, ऊपर वाली शक्ति तुमको ट्रांसफर की। तो ये तो बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन एक बात बताओ, तुमने एक बहुत बड़ी रिस्क ली, तुमने अपनी स्पीड बढ़ा दी, कहीं तुम एग्जॉस्ट हो जाते तो, कहीं तुम एग्जॉस्ट हो जाते तो
0: वो नहीं सर, वो इतना भरोसा थोड़ा खुद पे था सर, मैं बस खुद पे भरोसा करना बहुत जरूरी था, क्योंकि इतना भरोसा था कि कुछ भी हो जाए, कितनी भी हालत खराब हो जाए, खिलाड़ी मेरे पीछे दौड़े वो भी अच्छे प्लेयर थे, साथ दौड़े थे वो भी अच्छे थे, मेरे काफ़ी रेसों में हम बराबर के खिलाड़ी है, एक गुजरात का था वो बहुत अच्छा था एक टाइम, मेरे से भी अच्छा था प्लेयर। तो उस टाइम मुझे वो भांप लेते सर पीछे से, जो साथ में चल रहे हैं ना कि इसमें कितना जोर बच्चा है, इसमें कितना बच्चा है, मेरे में कितना, मैं थोड़ा फास्ट कर सकता हूँ। जब हमें लगता है सर कि हाँ फास्ट करेंगे और नहीं छूटेंगे, हम पूरी कंप्लीट कर देंगे, तो उस टाइम ही फास्ट करते, बहुत सोच समझ के करना पड़ता है।
1: और तुम लोग एक दूसरे को भी देख जज करते रहते हो कि सामने वाले में कितना दम बचा है।
0: हाँ वो जज तो सर वो देख के नहीं करते, देखना तो कहाँ सर, आगे वो सीधी रोड दिखती है, बस भागना भागना, स्पीड मेंटेन रखनी पड़ती है, वो उसकी सांस से जज करते हैं, उसकी सांस से, उसके पांव की आवाज से, वो ऐसे ऑटोमेटिक गेम करते हैं सर, वो पता चल जाता है उसमें कितना दम बचा पीछे में। जो सांस चलती है ना उसके हिसाब से पता चल जाता है हमें सर, अगर ज्यादा तेज सांस चल रही है
1: जी। लेकिन हमारे श्रोता जो नहीं जानते हैं वो तो ये उनको उनकी जानकारी के लिए बता दें कि मैराथन सामने वाले से ज्यादा खुद से लड़ाई है।
0: हाँ सर वो मैराथन में खुद से लड़ाई होती है, क्योंकि 21 किलोमीटर बहुत लंबी दूरी होती है और लगातार ऐसा नहीं खाली दौड़ना, स्पीड मेंटेन करके दौड़ना होता है, किलोमीटर पेस होता है, जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं 3 का पेस पर किलोमीटर 3 मिनट, तो मेंटेन करना पड़ता है, लास्ट में उससे भी फास्ट करनी पड़ती है।
1: तो तुम
0: और इसमें तो सर
1: हाँ जी
0: इस मैराथन में जो माउंट आबू हुई थी, इसमें सर मेरे वो लास्ट में ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि मैंने 14 किलोमीटर के बाद अपनी स्पीड बढ़ा दी और धीरे धीरे सारे पीछे छोड़ गए, तो पीछे देखा मैंने कोई नहीं आ रहा है, तो फिर वो तो डर खत्म ही हो गया कोई पीछे से मुझे कवर करेगा, और फिर मैं अपने रिदम में चलता रहा, उसी स्पीड को मेंटेन करते रहा। बाकी दूसरी रेसम होता है सर कि सारे प्लेयर जैसे एक झुंड होता है सर, हमारा 10 खिलाड़ियों को, वो लास्ट 19-20 किलोमीटर तक सभी साथ में चलते हैं, फिर क्या होता है वहां पे होता है बड़ा रिस्क लेना पड़ता है कि पूरी उठा के चलो, या तो मैं पीछे रहूंगा या फिर ये सारे पीछे रह जाएंगे, उसमें सर 1 किलोमीटर लास्ट वाला इतना फास्ट करना पड़ता है कि वहाँ गिरना पड़ता फिनिश करते ही, हाथों तो बाद कुछ पता ही नहीं चलता फर्स्ट कौन आया, मैं आया कहाँ हूँ कहाँ बैठा हूँ, 10 मिनट बाद पता चलता है।
1: हाँ, फिर तो वो रिबन टूटता है और हम उस पार होते हैं।
0: हाँ,
1: तो ये तो है, लेकिन एक बात है कि तुम 5000 मीटर के खिलाड़ी हो और तुमने ये तुम्हारे को लगभग 2100 मीटर की तुम्हारी दौड़ थी, तुमको 4 गुना तुमको डिस्टेंस दे दिया गया और जिसकी तुम्हें प्रैक्टिस नहीं है, तो ये स्टैमिना कहाँ से आता है, मतलब इतना स्टैमिना कहाँ से आता है?
0: स्टेमिना सर ट्रेनिंग में होता है हमारा, जैसे कि मैं 5 और 10 किलोमीटर इवेंट है मेरा, तो सर 10 तो दोनों करता हूँ 5 और 10 किलोमीटर, तो मेन मेरा 10 है, बाकी 5 पार्टिसिपेट करता हूँ, लेकिन मेरे 5 में मेडल कम आते हैं, 10 में ज्यादा आते हैं। तो हमारे क्या ट्रेनिंग सेशन होता है, जैसे 10 किलोमीटर कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें 3 गुना वर्कआउट ज्यादा होता है, जैसे कि लगभग हमारा वीक में 2 दिन तो 20 किलोमीटर ऐसे ही हो जाता है, करना पड़ता है रनिंग।
1: तुमने तुम्हारा 180 किलोमीटर का लक्ष्य है जो तुमने बताया अभी।
0: वीकली 180 किलोमीटर है सर, 180। वो पूरा वर्कआउट सेशन में रहता है, फास्ट स्लो जैसे होता है वो सब। तो मैराथन मैंने पहली बार भागी थी तो सर 10-12 किलोमीटर तक सही चल पाया, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि जिसने मेरे हाथों पाओ ने मेरी सांस ने फेफड़ों ने सब ने जवाब दे दिया कि हम बाहर आ रहे हैं, तू नहीं रुका तो बाहर आ जाएंगे, तो सर
1: हाँ बिल्कुल ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है, श्रोताओं मजा आ रहा है ना बातचीत में जी।
0: तो सर उसके बाद मैंने वो लास्ट तक वो वर्कआउट में भी अपना डिस्टेंस बढ़ाया, फिर और मैं सर मैं सच बताऊँ सर, मैंने मैराथन सिर्फ पैसे के लिए भागी पहली बार भागना शुरू हुआ सर, क्योंकि मेरा वो साइड इनकम था नहीं और स्पोर्ट्स के शूज ये डाइट वगैरह बहुत महंगी आती थी, तो मेरे पास एक ही चारा था कि मैराथन भगू जिससे मेरा वर्कआउट भी हो जाए और पैसे भी आ जाए। लेकिन फिर धीरे धीरे एक मैराथन का भी जुनून होता सर, पोडियम पे जा खड़े होते हैं, सब प्राइज मनी भी मिलता है, एक इज्जत मिलती है, वहाँ का अच्छा लगता है सर वो खेल के, तो एक जुनून भी है मैराथन खेलने का और हमारे वो डाइट भी चल जाती है। लेकिन सर जो उन माउंट आबू वाले मैराथन में मिला, जो मतलब वहाँ से आगे और ज्यादा स्ट्रगल करने का मन किया सर, मतलब बहुत अच्छा लगा, इतना मतलब हमारा आवाज़र हुआ प्लेयर्स का, जाते ही मेडल पहनाना, रिप्लेसमेंट जाते ही वो कोल्ड एनर्जी ड्रिंक वगैरह सब अवेलेबल था, नाश्ता जो खिलाड़ी को चाहिए वो चीज़ें सारी अवेलेबल थी, तो उसमें सर मैं ऐसा नहीं कहूँगा मैं प्राइज के लिए दौड़ा नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे वो चाहिए ही नहीं था प्राइज, लेकिन वो फर्स्ट आया वो सम्मान मिला ना मुझे, वो ही बहुत था मेरे लिए सर, बहुत अच्छा लग रहा था। माउंट आबू मैराथन वो एकमात्र ऐसी मैराथन है जिसमें तो मैं सब सारी चीज़ों को छोड़ के मतलब एक इंजॉयमेंट, वहाँ का जो नेचर में वो मोमेंट, वहाँ का वेदर था ना, वेदर भी अच्छा था और लोगों का वो सर बात करने का तरीका सारे वहाँ के वो ना सर कौन मतलब जहाँ जो भी लोग थे हमारा मेडल पहनाया स्वागत किया वो उनके सर बहुत अच्छा था, बात करने का तरीका एक रेस्पेक्टेड तरीके से बात की थी उनसे, वो अच्छा लगा सर।
1: जी खिलाड़ी को देखिए सम्मान ही चाहिए होता है, खिलाड़ी और तो कुछ
0: सम्मान चाहिए सर हमें, और तो जहाँ
1: खिलाड़ी और तो कुछ मांगता नहीं है, और खिलाड़ी सम्मान के लिए खेलता है, मेडल के लिए खेलता है। लेकिन एक बात है कि तुमने तुम बता रहे हो कि ये सेकंड विंड उस दिन नहीं आई, तो सेकंड विंड नहीं आई ये साइंटिफिकली तुम्हें मानने को तैयार नहीं, ऐसा क्यों हुआ होगा?
0: वो सर मैं भी नहीं समझ पाया, फिर ऊपर आया जीता, सभी ने बोला ये ब्रह्मा कुमारी ये इसकी मतलब माउंट आबू की वादियों की कृपा, ये चमत्कार है, मैंने कहा हो सकता, मैंने तो मान लिया है सर, क्योंकि और कहा मैं अपने तरीके से सोचूं तो सर सेकेंड विंड नहीं आने का कारण तो ये था कि स्टार्टिंग में जो हमारी स्पीड थी ना खिलाड़ी की, सारों की स्पीड स्लो थी क्योंकि चढ़ाई थी सर, ज्यादा स्पीड से नहीं भाग सकते, वो रिदम सेट करके चलना पड़ता है एक ही स्पीड में। तो मैं स्टार्टिंग वाले 4-5 किलोमीटर उनके साथ चलता रहा, मैंने उन सबको पहचाना कि ऐसा कौन सा बंदा है जो मेरे से अच्छा फिट है या फिर मेरे से आगे लेके चलेगा। तो फिर मैं उनमें से ढूंढ रहा था वो बंदा जो कोई आगे लेके चले, जो सबको पीछे छोड़ के मैं उसके पीछे पीछे चलता रहूं, लेकिन ऐसा बंदा कोई आया ही नहीं। तो 6-7 बंदे हम 6 किलोमीटर तक साथ चले, तो उसमें धीरे धीरे एक एक छूटने लग गया। तो फिर वहाँ से एक कॉन्फिडेंस आ गया सर, इतना कॉन्फिडेंस आ गया खुद पे कि बस आज मैं कर सकता हूँ।
1: हाँ,
0: उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे छूटते गए, हम 4 जने लास्ट में बचे थे, 4-7 चल रहे थे सर। तो जिस स्पीड से वो चल रहे थे वो स्पीड मेरे लिए इजी था, एकदम इजी लग रहा था। सांस बिल्कुल भी नहीं फूल रही थी, रिकवरी फुल थी, पसीना भी कम ही आ रहा था और बाकी पानी की जरूरत नहीं पड़ रही थी। 14 किलोमीटर के बाद ही पड़ी थी हमें पानी की जरूरत। फिर देखा मैंने थोड़ा बस वो रिस्क तो लिया सर, क्योंकि वहां पे मैंने एकदम से अपनी स्पीड बढ़ाई। जैसे ही मैंने झटका दिया रेस में सब छूट गए सर, छूटे तो मैंने तो अभी अपने पास 14 किलोमीटर हुई है, तो 7 किलोमीटर और पड़ी है। तो उसमें सर धीरे धीरे गैप बढ़ाते और बढ़ाते गैप, तो मेरे सेकेंड वाला मेरे से 1 किलोमीटर पीछे था सर। हाँ, मैं 1 किलोमीटर सबसे आगे था, वो सेकेंड बंदा 1 किलोमीटर मतलब 3 मिनट बाद आया मेरे से, और थर्ड वाला तो बहुत भी पीछे था।
1: बहुत बढ़िया।
0: वो उसमें सेकेंड विंड का थकान हुई नहीं सर, थकान जो सेकेंड विंड यही होती है सर, पांव दर्द करने लग जाते हैं, सांस फूल जाती है, उस टाइम ऐसा लगता है हमसे होगा ही नहीं, यही छोड़ देते हैं। फिर वो चीज उस टाइम कुछ नहीं महसूस हुआ ऐसा कुछ भी, और वो क्यों नहीं हुआ मुझे भी समझ नहीं आया आज तक।
1: मोहम्मद फराज की क्या खास बात है जो आपको उनसे सीखने को मिली?
0: उनकी सर वो कोई रेस छोड़ते नहीं बीच में, और उनका स्ट्रगल मैन ट्रेनिंग सेशन रहता है ना, वो बहुत मेहनत से करते हैं सब कुछ, डिसिप्लिन उनका बहुत अच्छा है।
1: जी।
0: एक बार उनकी रेस थी एक सर 10,000 मीटर, उसमें स्टार्टिंग में क्या किसी खिलाड़ी ने पीछे पांव अटक गया था, तो उसकी वजह से वो गिर गए थे नीचे। नीचे गिरने के बाद भी उन्होंने वापस हार नहीं मानी, वापस उठ के और लास्ट में फिनिश फर्स्ट किया था, फर्स्ट हो गए थे वो, गोल्ड था उनका। नीचे गिरने के बाद भी वापस उठकर उन सबको पीछे रखा था, तो वो हार नहीं मानते कभी सर।
1: एथलेटिक्स में खास तौर पे 5,000 मीटर और 10,000 मीटर में या स्प्रिंट में क्या आपको लगता है एशियन खिलाड़ी मेडल्स ले सकते हैं, अफ्रीकन खिलाड़ियों को हरा सकते हैं? ऐसे कुछ खिलाड़ी हैं जो
0: तो ये बहुत अच्छे फिट है, और ये जाती है सर 27-28 मिनट की रेस जाती है ओलंपिक गेम्स में भी। उनको सर अभी बहुत जैसे कि ये बुलवीर सिंह हो गए, अविनाश सांपले, उनको आर्मी सपोर्ट करती है, हमारी भारत सरकार करती है, जो भी है बहुत सपोर्ट, ट्रेनिंग इनको बाहर ट्रेनिंग कराया जा रहा है आउट ऑफ इंडिया। तो सर आराम से इस बार हमारे इंडिया का गोल्ड आ सकता है इसमें 10,000 मीटर में ओलंपिक में।
1: श्रोताओं जो बाहर ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, ये टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम की बात कर रहे हैं, जिसमें भारत सरकार युवा एवं खेल मंत्रालय कुछ सिलेक्टेड खिलाड़ियों को टॉप स्कीम में अंतर्राष्ट्रीय ट्रेनिंग का अवसर देता है, और इसके साथ साथ एक अच्छा मानदेय भी उनको मासिक रूप से मिलता है, और फुल सपोर्ट जिसे कहते हैं कि पूरा सपोर्ट, चाहे कितना भी पैसा लग जाए वो भारत सरकार उनकी ट्रेनिंग में कमी नहीं छोड़ती है। तो इसे कहते हैं टॉप टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। तो उसके बारे में गुलवीर जी के बारे में बता रहे हैं हमारे देवराम जी। देवराम जी, मैंने सही बताया देवराम जी?
0: बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही बताया सर आपने।
1: जी जी। इसके अलावा और कौन सी मैराथन है जिसमें आपने भाग लिया है, और आपके कोई क्या अनुभव रहे हैं देश विदेश कहीं पर? और अनुभव क्या
0: सर, ऐसे तो मैंने बहुत सारी ऐसी इंटरनेशनल मैराथन भागी है, अलवर में होती है, दिल्ली में होती है, लखनऊ गया था मैं, ऐसे मैंने सर काउंट तो नहीं कि याद नहीं है कन्फर्म तो, लेकिन 25-30 मैराथन मैंने खेली है सर। उसमें मैं कम से कम सर 16-17 मैराथन मैंने विन किए।
1: जी,
0: हाँ सर,
1: बहुत बढ़िया। एक खिलाड़ी स्पॉन्सरशिप के लिए कैसे प्रयास करता है और क्या बढ़िया स्पॉन्सरशिप CSR स्पॉन्सरशिप मिल सकती है उसको?
0: हाँ सर, स्पॉन्सरशिप के लिए खिलाड़ी क्या है सर, जो भी अगर कोई कंपनी स्पॉन्सर कर रही है तो वो उससे पहले अचीवमेंट मांग रही है कि आपके पास नेशनल मेडल है तो स्पॉन्सर करेंगे। लेकिन खिलाड़ी जब डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल खेलता है ना, रियल सपोर्ट तो उस टाइम चाहिए था सर, वो स्ट्रगल कर रहा होता उस टाइम उसको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती है। और बाकी जो स्ट्रगल कर लिया, मेडल आ गया, जो अचीवमेंट करने के बाद उसके बाद उसको स्पॉन्सरशिप मिलती है, उस टाइम सच में जरूरत नहीं होती उस खिलाड़ी को। जरूरत जैसे कि ये फाइट कर रहा है नेशनल स्टेट के बीच में खिलाड़ी, और
1: जी मुख्य बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पे हमको खिलाड़ियों को स्पॉन्सर करने की जरूरत है और उस समय पे उनके लिए एक बैकअप प्लान बनाना है
0: नेशनल मेडल के लिए।
1: जी बिल्कुल, तो बिल्कुल सही कह रहे हो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही हमें उनको सपोर्ट करने की जरूरत है।
0: और बाकी जो गवर्नमेंट करती होगी, पता नहीं सर, मुझे तो कभी सपोर्ट मिला नहीं सर। हमारे ये TDA का पैसा मिलता तो आने जाने हम खेलने जाते हैं ना सर, यहाँ से स्टेट नेशनल जो TDA वो कुछ मिलता है वो उसके कोरोना से पहले तो बैंक डायरी की फोटोकॉपी ली जाती थी लेकिन पैसे कभी नहीं आए, और अब तो वो भी नहीं लेते। ये बीच में पता नहीं कौन खाते हैं, सोशल वाले खा जाते हैं पैसे, कौन करते पता नहीं चलता सर। आज तक एक रुपया नहीं आया, बोलते हैं कि आपके आएगा TDA लेकिन कभी नहीं आए सर। मेरे 8 साल के गेम के करियर में आज तक गवर्नमेंट ने आने जाने का खर्चा तक नहीं दिया एक रुपया भी। तो ऐसे न्यूज में पेपरों में कहते हैं सर गवर्नमेंट हेल्प करती है खिलाड़ी को, या कुछ नहीं करती सर। मुझे आज कुछ भी नहीं मिला आज तक, किसी भी खिलाड़ी मेरे साथी को भी नहीं मिला सर।
1: ये बात सही है कि सरकार में कई बार चीजें समन्वय और उसके बिना अटक जाती हैं और कैसे ही।
0: हाँ सर, खिलाड़ी तक जो सरकार की स्कीम निकलती है जैसे कि वो TDA मिलता है वो खिलाड़ी तक पहुंचता ही नहीं।
1: लेकिन मैं आपसे बात करना चाहूंगा, दुनिया की और कौन कौन से मैराथन ग्राउंड, पुणे का क्या अनुभव है? पुणे का भी काफी बड़ा मैराथन होता है मैंने सुना, उसमें कई सेलिब्रिटीज भी आते हैं दौड़ने।
0: हाँ सर, ये ब्रांड एम्बेसडर वही होते हैं, सेलिब्रिटी होते हैं। अभी मैं यहाँ गुजरात गया था सर, गांधीनगर, वहाँ आए थे सुनील शेट्टी आए थे, उन्होंने रेस स्टार्ट किया था हमें। और उससे पहले मैं अहमदाबाद यहाँ अलवर गया था, अलवर टाइगर मैराथन थी, उसमें सर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी आए थे, उन्होंने स्टार्ट किया था हमारे रेस को। और बाकी ये बड़ी सेलिब्रिटी या फिर कोई नेता यही आते हैं।
1: निश्चित रूप से काफी सारी चीजें हैं जो आपने।
0: कश्मीर गया था, कश्मीर मैराथन में गया था अभी 2-3 महीने पहले। वहाँ तो सर ठंड बहुत थी, माइनस में था पारा, तो वहाँ कुछ सूट ही नहीं हुआ सर, वो जो सोच के गए वो रेस लगी नहीं थी
1: क्योंकि
0: इतने ऊपर मैंने कभी ना तो ट्रेनिंग की है और जाने का एक्सपीरियंस भी पहला ही था सर, पहली बार ही गया था। बाकी सर हर स्टेट में मैराथन होती है, मैंने खेली भी है सर सब जगह।
1: सबसे हाई कैश प्राइस वाली मैराथन कौन सी है?
0: हाई कैश प्राइस वाली सर लखनऊ में थी, ऐसे अलग अलग रहता है सर। ये अभी जो कश्मीर गया था ना उसमें सबसे हाई प्राइस था सर, 25 लाख था फर्स्ट प्राइस।
1: जी
0: हाँ, कश्मीर में हुई थी वो इंटरनेशनल मैराथन थी, तो बाहर के प्लेयर नहीं जीता था, फर्स्ट वो केनिया का था सर
1: जी,
0: और अपने इंडिया का सेकेंड हो गया था।
1: अच्छा बढ़िया, बहुत ही अच्छा अनुभव तुम्हारा और एक विस्तार से तुमने अपने मैराथन के बारे में बताया है, और हम तो यही जानना चाह रहे थे कि आपका यह नया अनुभव रहा मैराथन के साथ में। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि मैराथन तो आप बिल्कुल दौड़ ही रहे हैं लेकिन अपनी चैंपियनशिप भी नहीं छोड़िएगा, उसकी तरफ भी कंटिन्यू बनाए रखिएगा
0: हमारे गेम पे ध्यान। मैराथन तो जब हमारा ऑफ सीजन होता है ना सर, जब कोई कॉम्पिटिशन नजदीक नहीं होते तो मैराथन खेलते हैं, नहीं तो अदरवाइज नहीं खेलते।
1: जी तो देवराम, चलते चलते आप हमारे श्रोताओं से कुछ साझा करना चाहें तो हमें बताइए, जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा लेकिन आप कहना चाहेंगे।
0: एक मैं अपना मेरा टर्निंग पॉइंट बता सकता हूं मेरी लाइफ का, वहां से वापस एक पूरी कहानी है सर, बता सकता हूं अभी?
1: हाँ हाँ
0: सर, 2020 में कोरोना आया था, पहले मुझे स्टार्टिंग में, उससे पहले मैं प्रैक्टिस करता था, 2 साल पहले शुरू करते, 18 से मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ इसकी स्पोर्ट में होकर। उसके बाद 2020 में मुझे कोविड हो गया था सर, तो फर्स्ट बार वो बुखार आया और हफ्ते भर में ठीक हो गया मैं, सेकेंड बार मेरे लंग्स में इन्फेक्शन हो गया था सर, 60% इन्फेक्शन हो गया था नीचे इस पर, फिर पेट में वगैरह सब जगह अंदर इन्फेक्शन हो गया था कोविड की वजह से, पोस्ट कोविड हुआ था सर। तो फिर उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि अब नहीं बचूंगा, क्योंकि बहुत सारे केस आ रहे थे उस टाइम कोविड के, और फिर मैं यहाँ रूम पे अकेला ही रहता था जोधपुर में, और हॉस्पिटल भी पूरे पेशेंटों से भरे थे, और घर पे मैंने बताया नहीं था सर मुझे ये हो रखता है। मैंने फ़ोन पे ही डॉक्टर से सलाह लेके वो कोविड की लेके आया था, वो गोले ले रहा था लेकिन उसका कुछ असर नहीं हो रहा था। तो फिर यहाँ से फिर मैंने सोचा मैं बचूंगा नहीं सर, फिर यहाँ से कैसे भी करके घर चला गया मैं, घर वहाँ अलग ही रूम में सो गया। पापा को बोलते बाहर से आया हूँ तो फिर वापस मत आना, और रोज दिक्कत होती थी बहुत, सांस की सर सांस ही नहीं आती थी, अंदर जाती हवा बाहर कुछ आता ही नहीं था, ऐसे करके मुझे मैंने बताना पड़ा। पापा ने हालत देखी तो ये क्या हो गया, तो फिर हॉस्पिटल लेके गए, तो मुझे वहाँ से फिर डॉक्टर ने वो सब कुछ चेक किया और लिखा इसके इन्फेक्शन है बहुत फेफड़ों में, तो फिर वहाँ से ट्रीटमेंट शुरू किया उन्होंने। 5-6 दिन बाद वापस देखा तो 2-4% वापस रिकवर हो रहे थे मेरे, तो वहाँ से वापस एक आस जगी जिन्हें कि हाँ मरूंगा नहीं, रिकवरी हो रही है मेरी सर। तो वो मुझे टाइम 6 महीने लगे वापस कवर होने में। डॉक्टर ने सर 1.5 साल बोला था कुछ नहीं करना एक्टिविटी वगैरह, लेकिन मैंने 6 महीने बाद ट्रेनिंग शुरू कर दी वापस गेम की, और वहीं से वो मोटिवेशन आया मुझे गेम को, मैं कंटिन्यू करता गया। लेकिन बीच में परेशानियाँ बहुत आई थी सर, ये पैसों की दिक्कत आई थी क्योंकि ट्रेनिंग पे पैसा भी बहुत खर्च होता, डाइट का, शूज़ का, पापा खेती करते किसानी करते तो इतने पैसे नहीं दे सकते थे, ये सब कुछ झेलते हुए मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है गेम में, ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं आ पाई सर। ये टर्निंग पॉइंट था मेरा कोविड, उसमें मतलब एक जीने की आशा खत्म हो गई थी, तो वापस दोबारा गेम में अच्छा करके आज यहाँ हूँ, तो बहुत खुश मैं ये सोच के। मैं बस श्रोताओं को सबको यही कहना चाहूँगा कि कभी हार नहीं माननी, जैसा भी है जिस भी हाल में है, बस हम करते रहेंगे ना प्रैक्टिस, एक दिन वही मुकाम हासिल होगा हमें जरूर। हार नहीं माननी, गेम को कभी छोड़ना नहीं,
1: डर के आगे जीत है और मन के हारे हार, तो
0: हाँ मन के हारे हारे मन की जीत जीत सर।
1: तो इसलिए श्रोताओं, देवराम ने हमारे वैदिक शिक्षा से जो ज्ञान हमको मिला है वो ज्ञान फिर से आज हम ज्ञान चर्चा के बीच उस बात पर आ गए, और वो बात का सार, इस बातचीत का सार हमने ले लिया है, जो हमें गुरु ज्ञान मिलना था एक एथलीट से वो हमने ले लिया है, और हमारे जुनूनी ने हमने बता दिया कि वो कैसे जीवन में वापस जीत कर आए हैं, लड़ कर आए हैं, और निश्चित रूप से इनकी जीत होगी, ऐसी हम शुभकामनाएं उनको देते हैं। बहुत ही बढ़िया, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। श्रोताओं आप सुन रहे थे हमारे मैराथन प्लेयर, श्रोताओं हम विदाई देते हैं हमारे हीरो और आज के जुनूनी देवराम को, जिन्होंने बहुत ही खुल के अपने जीवन के बारे में बात की, अपने कमबैक के बारे में बताया, अपनी लाइफ की रियल सेकंड विंड के बारे में बताया जो कोरोना में आई थी, और आज वो न केवल एक चैंपियन है और माउंट आबू मैराथन के भी चैंपियन है, और निश्चित रूप से हम उनको शुभकामनाएं देंगे कि वे एशियन गेम्स के लिए भी क्वालिफाई करें।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में, नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: जननायक स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह जननायक स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
1: उन दिनों बंगाल लॉर्ड कर्जन की बंग भंग नीति की घोषणा और विभाजन की आग में जल रहा था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में स्वदेशी आंदोलन भी जारी था। इसे दबाने के लिए देशवासियों को अपमानित और प्रताड़ित किया जा रहा था। बंगाल में व्याप्त असंतोष और अंग्रेजों के अन्यायपूर्ण व्यवहार ने एक बालक को क्रांति के मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। उस बालक का नाम था खुदीराम बोस। उन दिनों किंग्सफोर्ड क्रांतिकारियों को कठोर सजा देने के लिए कुख्यात था। किंग्सफोर्ड ने ही खुदीराम के मित्र प्रफुल्ल चाको के पिता को फांसी पर लटकाया था। क्रांतिकारियों के दल ने किंग्सफोर्ड को मारने का कार्य खुदीराम और प्रफुल्ल चाको को सौंप दिया। क्रांतिकारियों की योजना की खबर अंग्रेजी सरकार को लगी और किंग्सफोर्ड का तबादला मुजफ्फरनगर कर दिया गया। दोनों क्रांतिकारी वहां भी पहुंच गए और 30 अप्रैल 1908 को उन्होंने क्लब से घर लौट रही किंग्सफोर्ड की फिटन पर बम फेंक दिया। इसमें किंग्सफोर्ड की बेटी मारी गई। इसके बाद के घटनाक्रम में पुलिस ने खुदीराम को गिरफ्तार किया और प्रफुल्ल चाको स्वयं को गोली मारकर शहीद हो गए। मुजफ्फरनगर की अदालत ने खुदीराम पर 7 दिन तक नाटकीय मुकदमा चलाया और अंततः उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। 11 अगस्त 1908 को खुदीराम को फांसी दी गई। जल्लाद अलीपारा जेल से बुलाया गया क्योंकि मुजफ्फरनगर के जल्लाद ने इतनी छोटी आयु के युवक को फांसी लगाने से इनकार कर दिया था। जब शहीद खुदीराम की शवयात्रा निकली तो अर्थी पर इतने फूल बरसे कि मार्ग फूलों से अट गया। चिता की अग्नि ठंडी हुई तो शमशान भूमि में भस्मी पाने के लिए होड़ लग गई। खुदीराम की शहादत पर बंगला भाषा में जो गीत फूटे वो आज भी घर घर में गाए जाते हैं।
2: क्यों बेटा, ये हम क्या सुन रहे हैं?
3: तो आपको भी पता चल ही रहा।
2: लो, तुम्हारे दोस्त की बात हमें पता नहीं चलेगी? आखिर वो भी तो हमारा ही बेटा है तुम्हारी तरह।
3: सो तो है दादा,
2: पर असली बात क्या है? मुझे तो पता चला है कि उसने एक पुलिस इंस्पेक्टर की जम के धुनाई कर दी और फिर खुद एसपी के पास जाके गिरफ्तारी दे दी।
3: हाँ, आपने ठीक सुना है दादा। दरअसल इसके पहले की बात यह है कि उसके मोहल्ले की किसी लड़की के साथ कोई बदतमीजी कर रहा था, सो उसके पड़ोसी ने उसकी मरम्मत करके पुलिस के हवाले कर दिया।
2: अरे ये तो बहुत अच्छी बात हुई। फिर
3: हुआ ये कि इस इंस्पेक्टर ने उस गुंडे लड़के को तो छोड़ दिया और उस लड़की को बचाने वाले उस लड़के को शराब पीकर मारपीट करने के जुर्म में अंदर कर दिया।
2: ऐसा कैसे?
3: हाँ दादा, ऐसा ही है। आजकल ऐसा भी होता है। सब साठ गांठ की महिमा है दादा।
2: लड़की या उसके घर वालों ने तो बयान दिया ही होगा।
3: दादा, बदनामी के डर से किसी ने कोई बयान नहीं दिया और ना ही रिपोर्ट की। घर वालों ने ही लड़की को रोक दिया था।
2: फिर ये तुम्हारा दोस्त बीच में कहां से आ गया?
3: यही तो, जब हमारे हीरो को इस घटना का पता चला तो उसने रात को इंस्पेक्टर के घर में घुसकर उसकी जम के धुलाई कर दी। अरे धुलाई तो कर दी, सो तो ठीक है, पर धुलाई करने के बाद खुद जाके एसपी के आगे सरेंडर करने की महानता भी उस लड़के ने दिखा दी। इस घटना का कोई गवाह तो था नहीं क्योंकि इंस्पेक्टर अकेला ही रहता था, पर महान बनने का भूत जो सवार था इसके ऊपर।
2: वैसे एक बात कहें बेटा, तुम्हारे दोस्त ने सरेंडर करके कोई गलत काम नहीं किया।
3: क्या

0: दादा, केवल नाम सुना है और इतना पता है कि उन्हें फांसी की सजा हुई थी।
1: बिल्कुल ठीक, वे बंगाल में मिदनापुर के रहने वाले थे।
0: अच्छा,
1: पर उनके जीवन का सारा हिस्सा कलकत्ता में ही गुजरा।
0: अच्छा,
1: सही रूप में कहें तो कलकत्ता के मानिक तल्ला मोहल्ला के बागी बगीचा के इर्द गिर्द।
0: बागी बगीचा? ये बागी बगीचा यानी क्या काका?
1: सच तो ये है बेटा, ये बगीचा डॉक्टर कृष्ण धन के घर के अहाते में था।
0: अच्छा,
1: यहाँ कई तरह के फलों के पेड़ थे। डॉक्टर कृष्ण धन के छोटे लड़के बारिंद्र घोष ने बगीचों के युवकों की एक समिति के नाम लिख दिया।
0: अच्छा,
1: यहाँ बागी युवक आश्रम के रूप में रहते थे। बाद में यहाँ बम बनाने के कारखाने भी चालू हो गए।
0: यानी कि ये विप्लवी युवकों का अड्डा था।
1: तुम ऐसा कह सकते हो। यही नवयुवक खुदीराम की मुलाकात प्रफुल्ल चाकी से हुई।

0: आओ आओ, तुम्हारा परिचय करा दूं।
1: जी
0: खुद ही ये प्रफुल्ल चाकी।
1: नमस्कार।
0: हमारे आश्रम के पुराने सदस्य।
1: अच्छा।
0: आश्रम की क्रांतिकारी गतिविधियों में सबसे आगे रहने वाले कर्मठ कार्यकर्ता हैं।
1: अरे वाह।
0: और प्रफुल्ल ये खुदीराम बोस हैं।
1: अच्छा। नमस्कार।
0: अपने हेमचंद दास कानूनगो के शहर मिदनापुर के हैं।
2: अच्छा।
0: हाँ, और यहाँ कलकत्ता में राजा नवकृष्ण स्ट्रीट में हेमचंद जी के मकान में रह रहे हैं।
2: अरे वाह।
0: आज से ये तुम्हारे साथ ही काम करेंगे।
1: नमस्कार। पर उस दिन तो अरविंद जी ने हमें अलग नामों से मिलाया था।
0: तुम्हारा परेशान होना स्वाभाविक है। क्या है कि हम क्रांतिकारियों को अपना असली नाम बताने की प्रथा नहीं है। अब तुम नए हमारे दल में सम्मिलित हुए हो, इसलिए अरविंद घोष जी ने तुम्हें हेरन सरकार और प्रफुल्ल चाकी को दिनेश चंद्र राय के नाम से मिलाया।
1: अच्छा।
0: पर अब जब तुम्हें हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहना है, तो एक दूसरे का सही परिचय देना जरूरी हो गया था।
1: जी जी,
0: है ना। इसलिए खैर मैं चलता हूँ, शेष जो कुछ भी जानना समझना है आपस में जान समझ लेना। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: मैं अभी भी तुम्हारे बारे में सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम्हारा असली नाम खुदीराम बोस है और तुम मिदनापुर के हो और यहाँ हेमचंद दास जी के मकान में रह रहे हो।
1: उस औपचारिक भेंट के बाद हम आपस में मिले भी तो नहीं ना।
2: हाँ, यहाँ आश्रम में सभी को निश्चित काम दे दिए गए हैं।
1: जी जी।
2: बिना काम कोई किसी से नहीं मिलता।
1: मेरा जन्म मिदनापुर के हबीपुर में हुआ।
2: अच्छा।
1: माता लक्ष्मी देवी जब मैं सिर्फ 1.5 वर्ष का था स्वर्ग सिधार गई, और इसके 1 वर्ष बाद सिर से पिता त्रिलोकीनाथ बोस का साया भी उठ गया।
2: फिर आपका पालन पोषण।
1: मेरा पालन पोषण और शिक्षा बड़ी बहन अपरूपा देवी के घर हुई। अनाथ बालक, फिर चंचल स्वभाव, केवल 2 दर्जे तक ही पढ़ पाया मैं।
2: क्रांतिकारी बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको?
1: जब मैं तरुण अवस्था में प्रवेश किया, उस समय बंगाल लॉर्ड कर्जन की बंग-भंग नीति और विभाजन की आग में झुलसने लगा था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने स्वदेशी आंदोलन चलाया हुआ था। इसके दमन के लिए गिरफ्तारियां, जेल यात्राएं, यातनाएं, सजाएं, जुर्माने और बंगालियों को अपमानित करने की घटनाओं ने सभी नागरिकों का मेरे मन की जंग दिया। मिस दमकल के विरुद्ध बदले की भावना जन्म लिया।
2: अच्छा।
1: भावना जन्म लिया।
2: अच्छा। फिर बारिंद्र घोष संपन्न कैसे आए?
1: सन 1902 में मिदनापुर क्रांतिकारी बनाया गया। राजनारायण बोस के सुपुत्र सतेंद्र नाथ बोस के प्रयत्नों से यह दल बना। बारिंद्र जी के बड़े दल बना। बारिंद्र जी के बड़े भाई अरविंद जी ने इस क्रांतिकारी समिति की नींव डाली। उस दिन स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षा भागनी निवेदिता भी वहाँ मौजूद थी। वो गांव-गांव घूमकर क्रांतिकारी समिति खुलवाने में मदद कर रही थी। हेमचंद दास कानूनगो के साथ मैं भी उस आयोजन में गया था। हेमचंद जी से मैं मिलता रहता था, वो मेरे क्रांतिकारी विचारों से परिचित थे। यही मेरी मुलाकात क्रांतिकारी सुरेंद्र नाथ बोस से हुई थी। पता नहीं उन्होंने मुझ में क्या देखा, मुझे यहाँ बारिंद्र जी की टोली में दीक्षित होने के लिए भेज दिया। तब से मैं यहीं पर हूँ फिलहाल।

0: प्रेमचंद जी के मकान में ही रह रहा हूँ।
1: मेरे बारे में ज्यादा कुछ जानने को नहीं है। जब से होश संभाला वारिंद्र जी के साथ हूँ।
0: अच्छा।
1: नुपुर रोड के इस मानिक टल्ला बागीचे में जब वारिंद्र जी ने ये आश्रम शुरू किया हम 5 छात्र थे।
0: अच्छा।
1: बहुत दौड़ धूप के बाद संख्या 15 तक पहुंची।
0: अरे वाह।
1: उस समय जीवन यापन के लिए हम लोगों ने यहाँ सब्जियां उगाना शुरू किया, फिर आम केले अमरूद जामुन आदि के पेड़ तो थे ही, इन्हें बेचकर ही काम चलने लगा।
0: वाह क्या बात है। अच्छा मुझे आपके साथ रखा गया है तो ये बताएं कि मुझे क्या करना होगा।
1: हाँ, आपको अब तक ये तो पता चल ही गया होगा कि इस बागीचे में बम बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। दरअसल हेमचंद्र दास जी अपनी जमीन जायदाद बेचकर फ्रांस चले गए बम बनाने का प्रशिक्षण लेने। वहाँ पेरिस में पंडित श्याम जी वर्मा और बैरिस्टर सरदार सिंह जी राणा के सहयोग से बम बनाना सीखा। वहाँ उनके साथी थे बम्बई के T.M. बापट और हैदराबाद के मिर्जा अब्बास। भारत लौटकर हेमचंद जी ने यहाँ इस बागीचे में प्रशिक्षण केंद्र खोल दिया। एक बात बता दूं, मैं 3 बार बम विस्फोटों में शामिल रहा हूँ। 2 बार हम छोटे लाल फूलर को बम से उड़ाने गए और तीसरा विस्फोट मैंने खुद जज किंग्सफोर्ड को मारने के लिए अपनी मर्जी से किया था, पर हम सफल नहीं हो पाए।
0: ओ, अब मैं समझा, यानी अब मैं आपके साथ बम विस्फोट दल का सदस्य बन गया हूँ।
1: हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक समझा। खुद हेमचंद्र जी का सुझाव था कि तुम्हें इस दल में शामिल कर लिया जाए। पहली बार जब फूलर पर हमला किया गया था तब मैं बारिंद्र घोष और हेमचंद जी का साथी था। अब से तुम मेरे साथी रहोगे।
0: अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। लेकिन एक बात बताओ दोस्त, कि तुम जज किंग फोर्ड को क्यों मारना चाहते हो?
1: क्योंकि मुझे वारिंद्र जी ने बताया कि इसी ने मेरे पिता को क्रांतिकारी होने के शक में बिना सबूत फांसी की सजा दी थी।
0: अच्छा।
1: इस निजी कारण के अलावा इस जज ने क्रांतिकारियों के दमन की काली आंधी चला रखी है। बंगाल में राष्ट्रीयता जगाने वाले सभी पत्रों से संबंधित सभी लोगों को इसने जेलों में सड़ने को मजबूर कर दिया है। युगांतर, वंदे मातरम, नवशक्ति आदि सभी पत्रों के संपादकों मुद्रकों को सजा सुनाने वाला जज यही है। कृष्णचंद्र बोस, विपिन चंद्र पाल, ब्रह्म बाधव, भूपेंद्र नाथ दत्त सभी इसके शिकार रहे हैं। इसीलिए हमारी परिषद ने इसे खत्म करने का निर्णय लिया है।
0: हाँ, तो मतलब मेरा पहला निशाना किंग फोर्ड होगा।
1: हाँ, हम दोनों को यही काम सौंपा गया है।

0: खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी दोनों पूरे कलकत्ता में किंग्स फोर्ट को ढूंढते रहे, पर उसका कोई पता नहीं चला। आखिर वारिंद्र घोष ने उन्हें सूचना दी।
1: खुदी और चाकी, तुम्हें मुजफ्फरपुर जाना है।
2: ठीक है।
3: यानी हमारा शिकार मुजफ्फरपुर पहुंच गया है।
1: हाँ खुदी, किंग्स फोर्ट पर हुए हमले से पहले ब्रिटिश सरकार चौकन्नी हो गई है। कलकत्ते में किंग्स फोर्ट के जीवन के लिए खतरा मानकर उसे जिला सेशन जज बनाकर मुजफ्फरपुर भेज दिया गया।
4: बारिन जी,
1: जी
4: मुजफ्फरपुर में हमें कहाँ रहना है और क्या करना है?
1: अब तुम्हें करना क्या है तो तुम जानते हो, और रहना कहाँ है ये मैं बता देता हूँ।
4: ठीक है।
1: मुजफ्फरपुर में तुम लोग मेहता बोर्ड स्टेट की धर्मशाला में ठहरोगे।
4: ठीक है।
1: ठीक है। और वहाँ चाकी तुम अपना नाम दिनेश चंद्र राय लिखवाओगे।
4: ठीक है।
1: और खुदी वहाँ तुम्हारा नाम दुर्गा दत्त सेन होगा।
3: ठीक है।
1: एक बात और, वहाँ सबसे पहला काम होगा किंग्स फोर्ड की दिनचर्या पर नजर रखना।
4: ठीक है।
1: और फिर हमले के लिए सही समय का चुनाव करना। ये बात तो तुम समझ ही सकते हो कि वहाँ फोर्ट की सुरक्षा काफी कड़ी होगी, अतः तुम्हें पूरी पूरी सावधानी बरतनी होगी।
3: आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद।
4: धन्यवाद।
1: हम सभी की शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। तुम लोग अपने उद्देश्य में कामयाब होकर लौटो।
3: वंदे मातरम।
1: वंदे मातरम।
4: वंदे मातरम।
5: वंदे मातरम।
0: योजना के अनुसार खुदी और चाकी दोनों मुजफ्फरपुर जा पहुंचे और किंग्स फोर्ड की दिनचर्या और गतिविधि पर नजर रखने लगे। आखिर वो दिन आ गया जब उनके उद्देश्य पूरे होने लगे।
4: यानी किंग्स फोर्ड पर आक्रमण करने का।
0: वो 30 अप्रैल 1908 की रात थी, अमावस्या की काली रात में, जब चारों ओर घनघोर अंधेरा था। ऑफिसर क्लब के बाहर चाकी और खुदीराम बोस हथियारों से लेस पेड़ के पीछे छिपे बैठे किंग्स फोर्ड का इंतजार कर रहे थे। उन्हें मालूम था इस समय किंग्स फोर्ड काली बग्गी से क्लब से बाहर निकलेगा। तभी एक काली बग्गी क्लब से निकली। खुदीराम ने निशाना साथ के बम फेंका। एक जोरदार धमाका हुआ। बग्घी हवा में उछल के ध्वस्त हो गई। घोड़ों ने हिन हिना के दम तोड़ दिया। अपना संकल्प पूरा होते देख दोनों वहां से भाग निकले।
4: दादा, तो किंग्स फोर्ड मारा गया?
0: नहीं, वो बग्घी किंग्स फोर्ड की नहीं थी, उसमें मिसेस कैनेडी और उनकी बेटी थी।
4: अच्छा।
0: दोनों मौके पे ही मर गई। कोचवान बुरी तरह जख्मी हो गया।
4: और खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी का क्या हुआ दादा? क्या पुलिस उन्हें पकड़ पाई?
0: समाचार पाते ही पुलिस ने पूरे मुजफ्फरपुर को घेर लिया। जगह जगह छापे मारे जाने लगे।
4: अच्छा।
0: ये दोनों रात भर रेल की पटरी के साथ साथ चलते हुए 25 मील चल के सुबह बैनी गांव पहुंच गए।
3: चारों ओर पुलिस चौकन्नी है, हम दोनों का साथ घूमना ठीक नहीं है। आप यहाँ आमों के बाग में बैठो, मैं कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करके आता हूँ।
4: ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना और पुलिस से बच के रहना।
3: अरे आप मेरी चिंता ना करें, बस अपना ख्याल रखें, मैं अभी आता हूँ।
4: ठीक है।
3: थोड़ा माहौल का जायजा भी लेता हूँ ताकि आगे की योजना बनाई जा सके।
4: संभाल कर जाना।
0: खुदीराम जब मोदी की दुकान पे सामान लेने पहुंचे, वहां दो सिपाही शिव प्रसाद और फतेह सिंह आपस में रात की घटना की बात कर रहे थे।
6: फतेह सिंह, तुमने सुना
7: क्या?
6: रात मुजफ्फरपुर में बागियों ने फिर वारदात की।
2: यूरोपियन क्लब के बाहर बम विस्फोट हुआ है।
5: हाँ सुना, पर वारदात से पहले शाम को सुना है एसपी साहब द्वारा तैनात दो सिपाहियों ने दो अनजान लड़कों को यूरोपियन क्लब के बाहर घूमते हुए देखा था।
1: अच्छा,
5: और सिपाहियों ने उनका हुलिया भी बताया है, उनके वारंट भी जारी हो चुके हैं।
2: यार हुलिया क्या बताया, यदि वो दोनों लड़के अपने हाथ लग जाए तो कसम से इंस्पेक्टर बनना तो पक्का है।
5: ठीक कहा तुमने, बताया है छरहरे बदन के दो लड़के हैं।
2: छरहरे बदन के?
5: हाँ, लंबाई होगी कोई 5.5 फीट।
2: 5.5 फीट।
5: वेशभूषा से बंगाली लगते हैं।
2: बंगाली?
5: कहते हैं उनका निशाना तो जज साहब किंग्सफोर्ड थे।
2: अच्छा,
5: पर गलती से मिसेस कैनेडी और उनकी लड़की मारी गई।
3: तो जालिम किंग्सफोर्ड नहीं मरा
5: है?
2: अबे क्या कहा तूने, कौन है तू?
5: साफ क्रांतिकारी दिखता है।
2: हाँ,
5: थकी शक्ल सूरत, दूर दूसरे बदन, वही कथकाठी, दबोच ले इसको, हिलने न पाए।
2: छोड़ो, कोई चलाकी नहीं करना, नहीं तो रिवाल्वर की गोली भेजा फोड़ के बाहर निकल जाएगी। फतेह सिंह तलाशी ले इसकी, फिकर मत कर, मैंने पकड़ लिया है इसको, दबोच के रखो।
5: मैं तलाशी लेता हूँ इसकी। अरे ये दो रिवाल्वर निकले इसके पास से।
2: रिवाल्वर?
5: एक लोडेड है।
2: लोडेड?
5: हाँ, और ये 30 कारतूस है। अच्छा हुआ तुमने इसे एकदम दबोच लिया।

0: मुजफ्फरपुर केंद्रीय कारागार में 11 अगस्त 1908 की सुबह 6 बजे खुदीराम बोस को फांसी दी गई। फांसी देने के लिए जल्लाद अलीपारा जेल से बुलाना पड़ा। कारण यह था कि मुजफ्फरपुर के जल्लाद ने इतने छोटे युवक को फांसी लगाने से मना कर दिया। शहीद की शव यात्रा पे इतने फूल बरसे कि सारे रास्ते फूलों से भरे। हजारों लोग वे मातरम के गगन भेदी नारे लगाते गए। अमर शहीद को श्रद्धांजलि देते रहे। चौथे दिन चिता ठंडी हुई। शहीद की राख पाने के लिए भागा दौड़ी छीना झपटी मच गई। कोई भस्मी डिब्बी में भर रहा था तो कोई पुस्तक में रख रहा था।
1: निर्देशन प्रमोद शर्मा, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया चलती गाड़ी में चढ़ने का प्रयास न करें, यह जानलेवा हो सकता है। रेल के डिब्बों की छत पर बैठकर यात्रा न करें, क्योंकि ओवरहेड वायर्स में 25,000 वोल्ट का करंट है। इनके संपर्क में आने से आपकी जान को खतरा हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का स्वागत है जागृति इस कार्यक्रम में। जागृति ये कार्यक्रम महिलाओं के लिए और महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए डेडिकेट किया हुआ कार्यक्रम है, और हम अभी मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बातचीत कर रहे हैं। और पिछले कड़ी में हमने मानसिक स्वास्थ्य किसे कहा जाता है और मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, इन विषयों के ऊपर हमने चर्चा की है। और हमें मदद किया है इन चीज़ों को समझने के लिए हमारे विशेषज्ञ हर्षिता जी और वीरेंद्र जी, आप दोनों साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट हैं। लेकिन आज जिस विषय पर हम बातचीत करने वाले हैं वो है अनिद्रा के बारे में। यानी कि कई बार हम ये महिलाओं के अंदर देखते हैं कि दिन भर की मेहनत करने के बावजूद, थकान होने के बावजूद, रात को चैन से सो नहीं पाते हैं या नींद नहीं आती है। वो कारण कुछ भी हो सकता है, हो सकता है वो शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, या फिर वो किसी बात की चिंता में पड़ी हुई है, या मानसिक रूप से अस्वस्थ है। कारण कुछ भी है, लेकिन उसका जो रूप है उनके जीवन में वो अनिद्रा के रूप में दिखता है। तो कई बार वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं, कई बार नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा क्या है जो अनिद्रा का कारण बनता है, और हम एक चैन की नींद सोना क्यों जरूरी है, और नींद अच्छी होने से हमारी मानसिक स्वास्थ्य पे कैसे प्रभाव पड़ता है, आज इन विषयों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ, जैसे हमने कहा कि पिछली कड़ी में हमें जिस तरीके से हर्षिता जी और वीरेंद्र जी ने मदद किया है आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस से, आप हैदराबादी जनरल हॉस्पिटल में अब अपनी सेवाएं दे रहे हैं हरियाणा में, और आज रेडियो मधुबन पे बने हुए हैं अपने अनुभवों से आप सभी को मदद करने के लिए। तो हर्षिता जी और वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस दूसरे एपिसोड में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: धन्यवाद
0: जी। तो हम आज आपसे ये सीखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि एक जो कॉमन बीमारी है, या शायद इसको बीमारी कहे या ना कहे आप बता सकते हैं, अनिद्रा होना या सो नहीं पाना। महिलाएं दिन भर काम करती हैं, बावजूद उनको ये कहते हैं कि तुमने किया ही क्या है, घर पे ही तो बैठी हुई थी। मगर उसका एक रिजल्ट, एंड रिजल्ट में ये देखने को मिलता है कि वो सो नहीं पाती है। तो उसका क्या कारण हो सकते हैं, और नींद ना होने से उनके जीवन पे किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है?
3: नींद मानसिक स्वास्थ्य का सबसे बड़ा इंडिकेटर या सबसे बड़ा इशारा है। एक अच्छी नींद हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। अब वो नींद कितनी उचित है वो पर्सन से पर्सन वेरी करता है। कुछ लोग शॉर्ट स्लीपर होते हैं जो 4-5 घंटे सोकर एकदम फ्रेश हो जाते हैं और उन्हें कोई भी दिक्कत महसूस नहीं होती। कुछ लोग लॉन्ग स्लीपर्स होते हैं जिनको 10 घंटे 11 घंटे का नींद चाहिए, बट उन्हें एवरेज अगर देखा जाए तो 7 से 9 घंटे का नींद जो है वो एक नॉर्मल मनुष्य को चाहिए होता है अपने अच्छे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए। अगर कभी भी नींद में कुछ दिक्कत आ रही है, अनिद्रा हो रही है, तो हमें समझना होगा कि वह क्यों आ रही है, उसके कारण हमें ढूंढकर निकालने होंगे। अब अनिद्रा की जो बीमारी है वो या तो प्राइमरी इंसोमनिया हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं, जो अपने आप आ रही है, जिसके पीछे और कोई कारण नहीं है, सिर्फ नींद कम हो रही है। वो या तो सिर्फ नींद कम हो रही है या फिर उम्र के साथ साथ नींद कम होती जा रही है। इंसान की उम्र जैसे जैसे बढ़ती है उसके नींद का समय कम होने लग पड़ता है। हम सब जानते हैं कि जो छोटे बच्चे जब पैदा होते थे वो 16 घंटे 17 घंटे 20 घंटे सोते हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है नींद की ड्यूरेशन कम होती रहती है। अडल्ट लाइफ आने के बाद में आपकी नींद 7 से 8 घंटे की सेट हो जाती है, वो फिर काफ़ी लंबे समय तक रहती है। और जब उम्र ढलने लगती है या जेरेट्रिक एज ग्रुप आने लगती है, जब आप 50-55 साल के ऊपर के हो जाते हैं, तब आप नींद आपकी धीरे धीरे कम होकर 5 घंटे 4 घंटे की रह जाती है। अगर आप उतनी नींद लेकर भी खुद को फ्रेश महसूस कर पा रहे हैं, जब आप सुबह उठे तो आपका दिमाग एकदम स्वस्थ है, फ्रेश महसूस कर पा रहे हैं, आपको काम करने में कोई थकान महसूस नहीं हो रही, तो मतलब आपकी नींद बिल्कुल ठीक ठाक है। पर जब ऐसा नहीं हो रहा तो वो अनिद्रा है। अब अनिद्रा के अगर कारणों में जाएंगे, जिसको हम सेकेंडरी इंसोमनिया बोलते हैं, तो वो बहुत लंबी फहरिस्त है, बहुत लंबी लिस्ट है। अब उसके कारण कुछ शारीरिक हो सकते हैं, आपको बुखार है, आपके शरीर में कुछ दर्दें हैं, आपको कोई और शारीरिक परेशानी है, डायबिटीज़ के अंदर में भी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, हाइपरटेंशन में भी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसकी वजह से निद्रा हो सकती है। या फिर कोई मानसिक बीमारियां जैसे डिप्रेशन, डिप्रेशन में नींद ज़्यादा भी होती है कम भी होती है, एंग्जाइटी की दिक्कत, बेचैनी की दिक्कत जिसे बोलते हैं, उसमें भी नींद की दिक्कत आती है, या और कुछ गंभीर मानसिक बीमारियां लाइक स्किज़ोफ्रेनिया, डिल्यूजन डिसऑर्डर, जो ऐसी बड़ी मानसिक बीमारियां हैं, उनमें भी नींद कम या ज़्यादा होती रहती है।
0: जी सर, ये आपने बात तो सही कहा कि बीमारियां हो तो फिर नींद नहीं आती है, वो समझ में आता है कि ये इस कारण से हो रहा है। लेकिन एक आम तौर पे महिलाओं का अगर हम टेंडेंसी देखते हैं, ऐसी बड़ी बीमारियों के आइडेंटिफिकेशन तो उनके अंदर नहीं होता है, लेकिन वो सो नहीं पाती है, चाहे वो उनको आने वाली कल की चिंता हो, या पूरे दिन में जिस प्रकार की बातें या फिर जिस तरीके के व्यवहार उसने सामना किया है वो उसको दिमाग में खा रहा है, या जो भी है, मन को शांत नहीं कर पा रही है, अगर हम सरल भाषा में कहें तो, उस कारण से भी जब सो नहीं पाती हैं, तो ऐसे में वो क्या प्रैक्टिस करे ऐसे दिन भर में, या फिर रात को सोने से पहले वो ऐसा क्या खुद के लिए वैसा करे जिससे वो मन को शांत कर सके और वो सो सके।
3: अच्छी नींद के लिए जो चीज़ यूज़ की जाती है उसे स्लीप हाइजीन बोलते हैं, जैसे हमारी डेंटल हाइजीन है, फिजिकल हाइजीन है, वैसे ही नींद, अच्छी नींद के लिए स्लीप हाइजीन होती है। उसके अंदर में कुछ प्रमुख चीज़ें होती हैं, अगर आप उसको करेंगे तो आपकी नींद लगभग ठीक हो जाएगी, अन्यथा वो किसी बड़ी बीमारी का संकेत नहीं है। अगर सिर्फ कुछ चिंता या कुछ कारणों की वजह से आपको नींद नहीं आ रही तो वो उससे ठीक हो जाएगी। उसमें सबसे जो ज़रूरी है वो है आपको अपनी नींद का समय फिक्स रखना पड़ेगा कि मुझे हर रोज इस समय सोने के लिए जाना है और इस समय उठना है, हफ्ते के सातों दिन, रविवार को लेकर। अधिकतर हम देखते हैं कि लोग शनिवार रात को लेट नाइट तक जागते हैं, पर उसका इम्पैक्ट, उसका असर अगले दिन भी रहता है, अगली नींद भी आपकी खराब होगी। तो रोजाना एक समय पर सोना शुरू करें, रात को 9 बजे के बाद में किसी भी ब्राइट लाइट का एक्सपोजर कम से कम रखें, लाइक मोबाइल फोन का इस्तेमाल रात को 9 बजे के बाद, टीवी का इस्तेमाल रात को 9 बजे के बाद ना करें, क्योंकि जब हम सोने के लिए जाते हैं तो हमारा ब्रेन रिलैक्स स्टेट में चला जाना चाहता है। अगर वो एक्टिवेटिंग स्टेट में है तो हमें कभी भी अच्छी नींद नहीं आएगी। जब हम बहुत देर तक फोन या टीवी का इस्तेमाल कर रहे हैं, रात को 10, 11, 12 बजे तक फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद जब हम सोने के लिए जा रहे हैं, तो हमारा ब्रेन जो है वो इमीडिएटली रेस्ट स्टेट में नहीं जाएगा, वो बहुत देर तक उन्हीं वीडियोस को सबकॉन्शियस लेवल पे घुमाता रहेगा और चलाता रहेगा। इसलिए जब हम सुबह उठेंगे तो हम सो भी गए हैं, साथ वाला आदमी बोलेगा कि तू तो अच्छा खासा सो रहा था, खराटे ले रहा था और ये कर रहा था, बट आप जब सुबह उठेंगे तो आपको फ्रेश फील नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो नींद की क्वालिटी है, सिर्फ क्वांटिटी नहीं क्वालिटी भी इम्पोर्टेंट है, आपकी नींद की क्वालिटी भी खराब हो गई। तो उसको ठीक करने के लिए आपको रात को 9 बजे के बाद ब्राइट लाइट एक्सपोजर और मोबाइल फोन का इस्तेमाल कम करना है। तीसरी चीज़ जो होती है वो शाम को 5 बजे के बाद कैफीन इनटेक को कम कर दीजिए, जिससे चाय, कॉफ़ी, रेडबुल, जो ऐसी चीज़ें जो एक्टिविटिंग या जगाने वाली चीज़ें हैं, उनका इस्तेमाल शाम को 5 बजे के बाद बिल्कुल बंद कर दीजिए, ताकि ब्रेन को कूल डाउन होने के लिए 3 से 4 घंटे मिले। अपने बिस्तर का इस्तेमाल सिर्फ सोने के लिए करें, किसी अन्य कार्य के लिए नहीं। बिस्तर पर बैठ के अगर टीवी देख रहे हैं, बिस्तर पर बैठ के अगर खाना खा रहे हैं, तो उस चीज़ का अवॉइड करें, क्योंकि बिस्तर का आविष्कार सिर्फ सोने के लिए हुआ था। तो जब बिस्तर पर सिर्फ सोने के लिए जाएंगे तो ब्रेन को ये ऑटोमेटिक सिग्नल जाएंगे कि यहाँ पर मैंने सिर्फ सोना है। सोते समय कोशिश करें कि एब्सोल्यूट डार्क रहे कमरा, बिल्कुल अंधेरा रहे, रोशनी ना रहे बिल्कुल भी, टेम्परेचर हमेशा ठीक ठाक हो कि आपकी बॉडी को कंफर्टेबल लगे, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा हो। और सोने से पहले कभी भी भारी काम मत करें, मतलब बहुत ज़्यादा थकाने वाला काम मत करें कि शरीर में कोई पीड़ा रह जाए, तो उस वजह से भी नींद गड़बड़ होने लग पड़ती है। तो शाम के समय अगर एक्सरसाइज करनी है तो एकदम हल्की फुल्की एक्सरसाइज करी, 10-15 मिनट का सैर कर लिया हल्का, बिना शरीर को ज़्यादा कष्ट दिए हुए। और आई थिंक ये अगर चीजें करेंगे तो स्लीप हाइजीन बहुत अच्छी रहेगी और आपको नींद अच्छी आएगी। डॉक्टर हर्षिता, आप कुछ ऐड करना चाहती हैं?
2: जब हम सोने जा रहे हैं, सर ने बहुत अच्छी स्लीप हाइजीन एक हमारे लिए 6 से 7 पॉइंट्स बहुत ही अच्छे अच्छे ऐड ऑन करे हैं। इसमें बस मैं 2 से 3 पॉइंट्स और है जो ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि जब आप सोने के लिए जा रहे हैं तो जो आपका पिलो है उसका मेजर ध्यान रखें कि वो 3 से 4 इंच का पिलो है जो आपकी नेक के लिए, और बिना पिलो लिए नहीं सोना है। या तो आप बेडशीट को फोल्ड करके सोएं, क्योंकि आपकी जो गर्दन की शेप है वो उस हिसाब से डिजाइन है। जो पिलो का साइज है वो कम से कम 3 से 4 इंच का होना चाहिए। आप उतना पिलो लगाकर ही सोएं, आपकी गर्दन के लिए भी बहुत ही अच्छा रहेगा। और रात को सोते हुए एक एक्सरसाइज है जो आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, जिसको हम जैकॉब्सन रिलैक्सेशन मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइज बोलते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में अगर आप लिखेंगे तो JPMR आप ये लिख सकते हैं। ये एक्सरसाइज अगर आप करके सोते हैं, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है जो आपको सोने में बहुत ही ज़्यादा मदद करती है। ये एक्सरसाइज आप एक ऐसे नाइट रूटीन बना लें कि ये तो मुझे करके ही सोनी है, इसके बिना मुझे सोना ही नहीं है। आप फील करेंगे कि अगर ये पूरी स्लीप हाइजीन आप मेंटेन कर रहे हैं, नेक्स्ट डे ऑटोमेटिकली आपका जो दिन है वो बहुत अच्छा और फ्रेश होगा। लास्ट चीज़ जो मैं ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि जब भी हम स्टिल कह रहे हैं कि नींद नहीं आ रही है, सब कुछ तो कर लिया, एक बुक उठाएं, पढ़ने लग जाएं, नींद आने लग जाएगी, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बोरिंग काम हमें लगता है। बोरिंग काम करते हुए हम कैसे बच्चों को नींद आने लग जाती है पढ़ाई के नाम पे। बोरिंग से बुक उठाएं या फिर कुछ ऐसी जो कुछ शिक्षादायक हो, कुछ पॉजिटिव हो, कुछ भी नेगेटिव, कोई नोवेल, वो चीज़ें पढ़ने की जगह आप कुछ पॉजिटिव उठाएं, वो पढ़ें। पढ़ते पढ़ते आपको ज़रूर नींद आ जाएगी। एक प्रॉपर 10 से 12 पॉइंट्स जो हमने मिलके बताए हैं, ये आप अगर करेंगे बहुत ही अच्छी आपको नींद आएगी।
0: जी, ये बहुत सारी अपने टिप्स दी हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें मैं एक और बात जानना चाहती हूँ। वो महिलाएं जो शाम को निकल नहीं पाती हैं या जो भी हैं, ये सारी चीज़ें अपने बाहरी तौर पे एक फिजिकल कंफर्ट दे सकें और एक कॉन्शियस लेवल पे हमको अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए कि मुझे अभी सोना है तो सोने के लिए मुझे ये चीज़ें नहीं करना है, मतलब शाम से ही अपने आप को प्रिपेयर कर रहे, रात को मुझे ये सोना है तो ये चीज़ें करनी है। उसके साथ साथ जो सुबह से हमारे दिमाग में जो लोड है, सुबह से जो कैरी किया है हमने चीज़ें, वो भी कई बार सताते हैं। और जैसे आपने कहा कि लाइट होने से भी नींद नहीं आती है, तो वो भी एक फिजिकल ऐड ऑन वर्क है। लाइट्स बंद कर दिया, सब कुछ बंद किया, लेकिन जो दिमाग में जो चल रहा है, जो पीड़ा वो पकड़े हुए हैं या वो पीड़ा जो सता रही है, अगले दिन की चिंता हो या फिर जो सुबह से बातें हुई है, वो खुद को जवाब नहीं दे पा रहे हैं या फिर उसको स्विच ऑफ नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे मोमेंट में उन चीज़ों को हम कैसे कंट्रोल करें?
2: इसका बहुत ही बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि जब सुबह से हम उठे, ऐसा तो नहीं है जीवन में चीज़ें होनी बंद हो गई, रिश्तेदारों ने कुछ कहना बंद कर दिया, या फिर परिवार वालों से टोन नहीं मिले, या फिर बच्चों ने कुछ गलत नहीं बोला। नॉर्मल है, सुबह उठते हैं उनके लिए काम करना शुरू करते हैं, रात तक जब तक वो सोते हैं उनके लिए काम करते ही रहते हैं, और उनके अगले दिन उठने से पहले महिलाएं उठ जाती हैं। तो सुबह से लेकर रात तक आप जिनके लिए काम करते हैं उन्हीं से आपको चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। हमें प्यार तो है अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड से, अपने आसपास के लोगों से, लेकिन जब हम चीज़ें सुनते हैं तो हमें बुरा लगता है, फिर हम कहते हैं कि हम हर्ट होते हैं, हमें ये जो फीलिंग्स हैं वो अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो हमें एट द एंड कर तो हर्ट ही रहे हैं, अपनी बातों से करते हैं, अपने एक्शन से करते हैं। अब आते हैं कि चीज़ें हम नहीं बदल सकते, हम लोग नहीं बदल सकते, हम परिवार नहीं बदल सकते, लेकिन इसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो हमें निकालना है। तो इसका जो सोल्यूशन है, बेस्ट सोल्यूशन है कि हमें कुछ अपने मेंटल हेल्थ में चेंज करना है, वो ये है कि आपको वेंट आउट करना है, अपनी चीज़ों को बाहर निकालना है। अगर आप बाहर निकालते हैं तो चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, आप अच्छा फील करते हैं, आपको हल्का फील होता है। अब वेंट आउट करने के 3 से 4 तरीके मैं आज आपको बता सकती हूँ। एक जो लोग या महिलाएं लिख सकती हैं, वो एक डायरी राइटिंग करना शुरू करें। सुबह से लेकर रात तक जो भी आपको कुछ भी ऐसा फील हुआ, जो आपको नेगेटिव फील होता है, किसी की कोई बातें फील होती हैं, वो आप लिखना शुरू करें। बेस्ट सॉल्यूशन है अपनी फीलिंग्स को ओवरकम करने के लिए। दूसरा, जिनको आलस आता है कि मुझे लिखना नहीं है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं तो नहीं लिख पाऊंगी इतना ज्यादा।
0: कई बार हो सकते हैं वो महिला को लिखना भी नहीं आता हो।
2: हाँ एग्जैक्टली, उसी के लिए मैंने बताया। तो दूसरा सोल्यूशन ये है कि अगर आपके पास व्हाट्सएप है, आप उसमें रिकॉर्ड करना शुरू कर दें। वहाँ पे ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है। आपके अंदर जो भी चीज़ें हैं, आपको किसी को बुरा भी लग रहा है किसी को कुछ कहना, लेकिन आप उसके फेस पे नहीं कह पा रहे, लेकिन अगर अंदर रखेंगे तो राई का पहाड़ तो बनेगा ही बनेगा। इसलिए आपको उसको पहाड़ को नहीं बनने देना है, उसको वहीं के वहीं ख़त्म करना है। उसको ख़त्म करने के लिए आप बोलिए, आप बात करिए, ठीक है। तीसरा है कि अगर जिनको लिखना आता है वो उस इंसान के लिए डायरी राइटिंग कर सकते, जैसे हमने बोला वैसे ही लेटर राइटिंग कर सकते हैं। ये तीन सॉल्यूशंस हैं जो आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तो आपके वो जो विचारों का एक लूप चल रहा है, जो टर्न ऑन की जगह ऑफ नहीं हो पा रहा, वो स्विच आप ऑफ कर सकते हैं।
0: जी, तो कुल मिला के यही है कि हम उसको स्विच ऑफ करना बहुत ज़रूरी है। जो कुछ भी हुआ है, जो चीज़ बीत गया है, उसको पकड़ के बैठे तो फिर उसका समाधान नहीं है। या तो हम उसके लिए सोल्यूशन खुद से ढूंढें, अगर नहीं ढूंढ पाता है तो किसी और से सोल्यूशन ले, लेकिन उसको वहाँ पे उसको ख़त्म कर दें।
2: नहीं, अंदर ना रखें, उसको बाहर निकालें। उसको जितना अंदर रखेंगे आप अपने आप को ही ख़राब कर रहे हैं। उसको बाहर निकालें। जैसे मैंने चार तरीके बताए, चारों में से ये उनके लिए भी है जो लिख सकते हैं, उनके लिए भी है जो नहीं भी लिख सकते, नहीं भी पढ़ सकते। चारों में से जो आपको सेट बैठता है आप वैसे वेंट आउट करें, बट करें ज़रूर। किसी को अपना फ्रेंड बनाएं या कुछ कैसे भी, बट आप वेंट आउट ज़रूर करें।
0: जी, मैं आप दोनों से एक और सवाल करना चाहती हूँ। हम कैसे ये आइडेंटिफाई करें हमारी लाइफस्टाइल में कि ये मेरी नींद की डिसऑर्डर या इंसोमनिया या निद्रा, जिस भी कारण से जो नींद डिस्टर्ब हुआ है, उस कारण से ये मेरे लाइफस्टाइल में चीज़ें आ रही है या फिर मेरी ये लाइफ में डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं। तो कई बार जैसे हेडेक है, क्रॉनिक हो जाता है, चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, इरिटेशन है, ऐसी चीज़ें बढ़ती जाती हैं। तो कई बार ये हम नहीं समझ पाते हैं कि ये मैंने नींद पूरा नहीं किया या फिर टाइम पे खाना नहीं खाया। बहुत सारी चीज़ें ऐसे छोटी छोटी चीज़ें होती जो ऐड ऑन होकर के उसका रिफ्लेक्शन दूसरी तरीके से होता है। तो फिर ये अनिद्रा से किस प्रकार की हमारे लाइफस्टाइल में डिस्टर्बेंसेस होते हैं या फिर हमारे जीवन शैली में क्या ऐसे नुकसान दिखते हैं जिसे हम आइडेंटिफाई करें कि हाँ, मुझे ये नींद ना करने के कारण मेरे अंदर ये दिख रहा है, मुझे सामने वाले व्यक्ति को या किसी को ब्लेम करने की जगह मुझे खुद को ठीक करना है।
3: देखिए, सबसे पहले एक अच्छी नींद का इंडिकेटर जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, वो है अगली सुबह आप कैसा महसूस कर रहे हैं। जब आप सुबह उठे तो आप अपने आप को कितना फ्रेश महसूस कर रहे हैं अगले दिन के चैलेंजेस को लेने के लिए। तो ये सबसे बड़ा इंडिकेटर है जो आपको बताता है कि आपकी नींद अच्छी हुई है या नहीं हुई है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि नींद का समय से उतना लेना देना नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो 5 घंटे सोकर भी अगले दिन सुबह एकदम फ्रेश होते हैं, और कुछ लोग 12 घंटे सोने के बाद में अगले दिन सुबह फ्रेश फील करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब आप सुबह उठे तो आपका मन कितना शांत है, आपका मन कितना संतुलित है चीज़ों को हैंडल करने के लिए, अगले दिन के काम करने के लिए। सिर्फ मन ही नहीं, शारीरिक भी। अगर आपकी नींद ठीक नहीं होगी तो अगले दिन आपको शारीरिक रूप से भी थका थका लगेगा, आपको काम करने में एनर्जी महसूस नहीं होगी। जिस तेजी से आप भाग सकते हैं आप उस तेजी से नहीं भाग रहे होंगे। तो ये सबसे बड़ा साइन है अच्छी नींद होने का। उसके बाद अगर आप देख रहे हैं कि आप बिना बात के बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो रहे हैं, बातचीत में सबके साथ में थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी बात पे झगड़ा हो रहा है, किसी की छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत बुरी लग रही हैं जो कि पहले नहीं लगती थी, तो आपको सबसे पहले अपनी नींद के ऊपर ध्यान देना होगा कि मेरी नींद ठीक हो रही है या नहीं, मैं अच्छे से सो पा रही हूँ या नहीं सो पा रही। उसके अलावा अगर आपकी शारीरिक कुछ बीमारियाँ, अगर आपका हाइपरटेंशन अचानक से बीपी बढ़ने लग पड़ा है, आपकी शुगर ठीक नहीं रह रही है, आप खाना ठीक ठाक परहेज कर रही हैं फिर भी दवाई भी ले रही है फिर भी शुगर ठीक नहीं रह रही, तो तब भी आपको उसी समय आप ध्यान कीजिए कि आपकी नींद 90% चांस है कि आपकी नींद ठीक नहीं हो रही, क्योंकि नींद से फिजिकल और मेंटल दोनों इश्यूज आते हैं। तो आपके जो बीमारियां आपको चल रही हैं, थायराइड की, शुगर की, बीपी की, उसमें गड़बड़ आएगी, आपका मन शांत नहीं रहेगा, आप एनर्जी, आपके काम के लिए प्रोडक्टिविटी कम होने लग पड़ेगी और आपके बिहेवियर में लोग देख पाएंगे और आपको बोल पाएंगे कि पहले तो तू इतना चिड़चिड़ी नहीं हुआ करती थी, अब तू क्यों छोटी छोटी बातों पर इतना गुस्सा कर रही है, क्यों हर बात को इतना दिल से लगा रही है, और आप खुद भी नहीं समझ पाएंगे कि मैं चीज़ों को ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हूँ।
0: जी, सो हमारी जीवन में जब अनयूजुअल बिहेवियर को हम खुद नोटिस करते हैं तो उसमें हम अपनी नींद को चेक करना बहुत जरूरी है।
3: जी,
0: इसके अलावा कोई और मेथड्स या कोई और पैरामीटर्स जो आपको लगता है कि इन चीज़ों पे नींद के लिए अटेंशन देना बहुत ज़रूरी है, खास करके एज वाइज स्लीपिंग ऑर्डर्स में? जैसे आपने कहा कि एज के अनुसार स्लीप की जो रिक्वायरमेंट्स है वो कम होते जाते हैं, लेकिन उसको मेंटेन करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। आजकल हम यंग एज गर्ल्स को देखते हैं, वो नौकरी के कारण है या जैसे भी, लेट नाइट सोना, और फिर वो लेट नाइट सोने से कई बार हम ये भी डॉक्टर्स के साथ या किसी से सुनने को मिलता है कि मोटापा बढ़ने में भी नींद का बहुत
3: बिल्कुल मोटापा बढ़ने में, हार्मोन्स चेंज होने में, पीसीओडी जैसी दिक्कत आती है लड़कियों के अंदर में, मोटापा बढ़ता है, पीसीओडी जैसी दिक्कत आती है, हार्मोनल चेंज होने लग पड़ते हैं लड़कियों के अंदर में, उस सब का नींद के साथ में रिलेशन है। तो एक अच्छी नींद जो है वो आपकी बहुत सारी बीमारियों को इधर पूरा कंट्रोल कर देती है या फिर एक बहुत बड़ा हिस्सा उनका कंट्रोल करने में मदद करती है, और दवाइयों का असर भी ज़्यादा बेटर होता है अगर आपकी नींद ठीक ठाक है।
0: जी, ये तो यंग एज गर्ल्स के लिए आपने कहा कि इस प्रकार की बीमारियों से वो बच सकती हैं अगर वो अपनी स्लीप साइकिल को मेंटेन करती हैं। तो ये जो 12 बजे 2 बजे 3 बजे के बाद जो सोते हैं उससे क्या असर पड़ता है लाइफ में?
3: जब आप लगातार 12 बजे 2 बजे 3 बजे ऐसा करके, देखिए सबसे पहले मैं चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब भगवान ने चीज़ों को बनाया तो दिन और रात जब बने तो रात नींद के लिए दी गई, तो इसलिए समय को उसी तरह से बनाया गया कि हमारे शरीर के अंदर में क्लॉक होती है जिसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक या सिकार्डियन रिदम, वो डिसाइड करती है कि हमें कब सोना है। जैसे जैसे दिन ढलता है तो हमारी बॉडी के अंदर में कुछ केमिकल चेंज होने लग पड़ते हैं अपने आप से, और वो भगवान ने वैसे ही बना के दिए। जब वो केमिकल चेंज आने लगते हैं तो हमें अपने आप से नींद आने लग पड़ती है और हम एक समय के बाद सो जाते हैं, और जैसे ही सूरज निकलता है तो उसके बाद फिर से हमारी बॉडी में केमिकल चेंज होने लगते हैं और हम दोबारा से जाग जाते हैं, जो कि नॉर्मल रूटीन है, जो कि हम बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो कर रहे हैं जो भगवान ने बनाकर भेजी है। पर जब हम उस क्लॉक के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं किसी भी चीज़ जो किसी भी भगवान की बनाई हुई चीज़ के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंस या उसके रिजल्ट तो आएंगे। तो जब हम बहुत देर तक रात को 2 बजे तक 3 बजे तक लगातार काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं पर सोने को अवॉइड कर रहे हैं और उसकी जगह हम लोग उसको दिन में सोने को शिफ्ट कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे केस आते हैं कि वो सोने का समय उन्होंने चेंज कर दिया, वो रात को 3-4 बजे सोते हैं फिर सुबह 12-1 बजे तक सो रहे हैं, तो उसके शरीर को अपने नुकसान होते हैं, उसके शरीर को नुकसान होते हैं, मानसिक नुकसान होते हैं उसके, क्योंकि हम नेचर की बनाई हुई चीज़ के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं।
0: तो ऐसे में क्या डिस्टर्बेंसेस देखते हैं साइकोलॉजिकली या फिजिकली?
3: लोग बहुत चिड़चिड़े रहने लग पड़ते हैं, बिहेवियरल इशू आने लग पड़ते हैं, जब आप सुबह नहीं उठ रहे, जब आप लेट उठ रहे हैं तो आपका दिन काम करने का बहुत छोटा हो जाता है, आपका लोगों से मिलने का समय बहुत छोटा हो जाता है। देखिए अगर आप 4 बजे तक जाग रहे हैं रात को तो रात के समय तो कोई आपसे नहीं मिल रहा, तो जो आपका ह्यूमन टच का जो काम है जिसमें आप लोगों से मिल रहे हैं वो आपका समय अपने आप से छोटा हो जाएगा अगर आप 2 बजे सोकर उठ रहे हैं, 2 से लेकर शाम को 6 बजे तक 3-4 घंटे ही आप अपने काम कर पाएंगे, बाकी सब काम ऐसे हैं जो आप अकेले कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आपके बिहेवियर में चेंजेस आने लग पड़ते हैं। आप देखेंगे कि इस तरह के लोग बिना वजह गुस्सा रहते हैं, काम करने में उनका जो ध्यान है वो कम होता है, उनकी प्रोडक्टिविटी कम होने लग पड़ती है और उनको जो शारीरिक नुकसान है वो भी होने लग पड़ते हैं, जो मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किए कि आपकी बीपी शुगर की समस्याएं और ये सब प्रॉब्लम भी आने लग पड़ती है।
0: लेकिन कई युवा महिलाएं जो इस तरीके से नाइट शिफ्ट में काम करती है या ऐसा, उनका ये कहना होता है कि दिन में हमारा काम नहीं होता है, वो क्रिएटिव प्रोडक्टिविटी जो है वो रात को ही होती है।
3: ये एक बहुत बड़ा मिथ है, जो लोगों को लगता है कि सिर्फ क्रिएटिव काम में सिर्फ रात को कर सकती हैं या दिन में नहीं कर सकती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अपने मन पे कंट्रोल करना है, अगर आपका मन आपके कंट्रोल में है तो आप दिन में भी सभी प्रोडक्टिव और सभी क्रिएटिव काम कर सकती हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप सिर्फ रात में बैठकर ही क्रिएटिव काम कर पाएंगे और सुबह नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। और हम तो बचपन से मतलब सिखाया गया है कि सुबह का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त जिसको हम बोलते हैं, सुबह अगर आप 4-5 बजे उठ रहे हैं और कुछ काम कर रहे हैं तो आई थिंक उससे ज़्यादा प्रोडक्टिव समय आपको कोई नहीं मिलेगा।
0: जी, सो लास्ट में व्हाट इज़ द आइडियल टाइम कि यही लास्ट आवर है, इसके बाद जागना नहीं चाहिए, इस समय वो सोना है एंड दिस इज़ द लास्ट आवर, इसके बाद सोना नहीं है।
3: देखिए, बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से तो हमें बहुत जल्दी सो जाना चाहिए। हमारा जो नींद का समय है वो 8-8:30 बजे बनता है और सुबह जल्दी उठना उसके साथ में, लगभग 4-4:30 बजे उठ जाना, तो 8 घंटे की नींद भी हो रही है और हम बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से चल रहे हैं। बट फिर भी आज के मॉडर्न जनरेशन के हिसाब से अगर आप 10 बजे के आसपास भी सो रहे हैं और सुबह 6 बजे भी उठ रहे हैं तो आई थिंक वो समय आपके लिए बहुत ठीक है।
0: जी, लेकिन 10 के बाद फिर जागना कोई फायदेमंद नहीं है।
3: नहीं,
0: थैंक यू सो मच आप दोनों को, वीरेंद्र जी और हर्षिता जी। हमारी जो ये स्लीप हाइजीन, आज एक नया शब्द हमको सीखने को मिला है, और आइडियल टाइम क्या है सोने का और नहीं सोने के कारण समय पे हम और सही तरीके से उससे क्या नुकसान होता है और उसको कैसे ठीक करना है, सबसे बड़ी बात है कि सॉल्यूशन कि हम उसको कैसे ठीक करें, आज आप दोनों ने हमें उपलब्ध कराया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
3: धन्यवाद।
0: तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम। अनिद्रा के बारे में, खास करके महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं जागरूकता इस कार्यक्रम में। हम फिर मिलेंगे अगली कड़ी में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

लिखे जोख तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अब वक्त हो गया कार्यक्रम जीवन रोशनी का, और कहते हैं कि रिश्ते केवल नाम से नहीं बल्कि भावना से बनते हैं। जब हमारे मन में ये भाव जागता है कि सामने वाला भी मेरा अपना है, तब दूरी कम होने लगती है, मतभेद संवाद में बदलने लगते हैं और जीवन में सहयोग की भावना बढ़ती है। तो आज जीवन रोशनी में हम बात करेंगे एक ऐसी विषय पर जो हमें ये सिखाएगा कि आज जो हम संवाद नहीं कर रहे हैं या भ्रातृत्व भावना समाज से खत्म हो रही है, तो उसे पुनः कैसे हम अपने जीवन में ला सकते हैं। सोचने वाली बात है कि क्या हम विचारों के मतभेद के बावजूद एक दूसरे को अपना मान सकते हैं? क्या प्रतियोगिता के बीच भी सहयोग और सम्मान बनाए रखा जा सकता है? तो इन्हीं सवालों का जवाब हम जानेंगे आज के इस कार्यक्रम से, जिसका नाम है जीवन रोशनी। और इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं बीके राज सिंह भाई जी, जो मूल रूप से कोटा राजस्थान से हैं। भाई जी ने MDS यूनिवर्सिटी अजमेर से MSc तथा अन्नामलाई यूनिवर्सिटी से एजुकेशन मैनेजमेंट में MSc की है। बचपन से ही आध्यात्म के प्रति उनकी गहरी रुचि रही और वर्ष 1995 में उन्होंने ब्रह्मा कुमारी संस्था को अपने जीवन की दिशा के रूप में चुना। वर्तमान में आप राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन व्यापार एवं उद्योग प्रभाग माउंट आबू से, यानी कि हेडक्वार्टर के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। भाई जी ने देश भर में आर्मी, BSF, CRPF, CISF, रेलवे, एयरपोर्ट स्टाफ, जेल और सीमेंट इंडस्ट्री, बहुत सारे कॉर्पोरेट जगत के कंपनीज, कॉलेज, स्कूल्स और राजयोग शिविरों के माध्यम से 500 से अधिक स्थानों पर, यानी कि देश के हर कोने पर जा करके आपने अपनी सेवाएं दी, वर्कशॉप्स के माध्यम से, सेमिनार्स के माध्यम से। तो आज वो हमारे साथ हैं। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि ब्रदरहुड यानी कि भ्रातृत्व भावना जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार साझा करेंगे। और 25 अगस्त को हम मनाने वाले हैं दादी प्रकाशमणि जी के पुण्य स्मृति दिवस। तो दादी जी भी यही भावना रखती थी और भाई जी ने करीब से दादी जी को भी देखा है, तो उनके अनुभव भी हम

0: साथ उसका सम्मान भी करें, अपनापन की भावना और सहयोग की दृष्टि से भी हमें देखना पड़ेगा। वे मेरा भाई है ऐसा भी नहीं सोचना है, लेकिन साथ साथ उसके सुख दुख को समझना, उसकी गरिमा का सम्मान करना और आवश्यकता पड़ने पर उसको सहयोग करना ही सच्चा ब्रदरहुड है।
1: ओके, तो मतलब एक दूसरे के प्रति प्यार और अपनत्व की भावना रखना है। ओके, तो इसके पीछे कोई गहरी सोच है, आपको क्या लगता है, क्या विचार है?
0: क्योंकि जो हम सोचते हैं वो वाइब्रेशन सामने वाले तक पहुंचते हैं। जब हम दिल से उसको अपना बनाते हैं, उसको अपना मानते हैं, तो उसके ऊपर वो इफेक्ट पड़ता है। बाहर ही हम दिखावा करेंगे तो वो सामने वाला भी समझ जाता है, वाइब्रेशन उसको कैसे हो जाता है कि ये केवल दिखाने के लिए भाईचारे की बात करता है, लेकिन अंदर से कुछ और है।
1: जी, मतलब हमारे देश में हो या फिर कहीं और कंपटीशन होता है तो हम ऐसे सोचते हैं ना कि वो हमारा भाई है।
0: हाँ,
1: लेकिन अंदर से नहीं सोचते हैं कि भाई है।
0: हाँ, अंदर से ही भावनाएं नहीं होती है तो सामने वाला समझ जाता है कि ये अंदर से नहीं है, तो उसके अंदर भी हमारे प्रति वो भावना नहीं जागृत होती है भाईचारे की।
1: ओके, तो जैसे हम सोचेंगे तो सामने वाला भी वैसे ही सोचने लगेगा। तो क्या हम किसी व्यक्ति से विचारों में असहमत अगर हैं, हम उसके साथ एग्री नहीं करते हैं, तो भी उसके प्रति भ्रातृत्व की भावना रख सकते हैं? अगर हमारे ओपिनियन मैच नहीं होता, हम दूसरे जगह से आते हैं, हमारे खान पान रहन सहन विचारधारा सब अलग है, तो क्या हम इस ब्रदरहुड वाली भावना को रख सकते हैं?
0: हाँ, जरूर रख सकते हैं। वो किसी जाति का भी हो सकता है, किसी धर्म का भी हो सकता है, किसी दूसरे देश का भी होता है
1: जी।
0: तो उसके विचार अलग हो सकते हैं, उसकी संस्कृति अलग हो सकती है, लेकिन ब्रदरहुड का मतलब ये, जब हम एक इस परस्पेक्टिव में देखते हैं कि हम एक ईश्वर की संतान है, शरीर के कॉस्ट्यूम भले हमने अलग अलग पहने हुए, लेकिन अंदर से हम एक एनर्जी है, अंदर से हम उस पिता की संतान है, तो वो हमारा भाई है। चाहे उसकी कल्चर अलग हो सकते हैं, उसका व्यवहार अलग हो सकता है, उसका बातचीत करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन इमोशंस हमारे सेम है। हर व्यक्ति को खुशी चाहिए, हर व्यक्ति को शांति चाहिए, हर व्यक्ति को आनंद चाहिए। तो चाहे वो किसी भी रिलीजियस का हो, किसी भी जाति का हो, वो किसी भी कबीले का हो, किसी भी देश का हो, ये कुछ वैल्यूज जो है इंटरनली सब हर एक को चाहिए होता है।
1: जी, ओके, तो वैसे भी भारत में कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि भातृ भाव की भावना लेकर के सबको ट्रीट करना चाहिए। कुछ सवाल प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी हुई है, जैसे कि मान लीजिए ऑफिस में कोई स्टाफ आपके कॉलिग है, वो हमसे कंपीट करता है, कंपटीशन का भाव रखता है, और हमें लगता है कि वो हमारी प्रोग्रेस रोक रहा है, तो ऐसी स्थिति में ब्रदरहुड को कैसे मेंटेन करें, भ्रातृत्व भावना को कैसे मेंटेन करें?
0: जैसे ऑफिस में कोई हमारे साथी, वो उसके अंदर जो एक हेल्दी कंपटीशन होता है, तो उसको हम कोलैबोरेशन में उसके साथ में कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो जो भी आगे बढ़ा है वो उसकी विशेषताओं के आधार पर बना है। अगर उसको हम जेलसी करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, तो हमारे अंदर वो इमोशंस जागृत नहीं होंगे। भगवान ने हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग विशेषताएं दी है, जैसे कहते हैं कि हमारे अंदर जो क्वालिटी है उसके अंदर नहीं, और उसके अंदर जो हमारे अंदर नहीं है, लेकिन हमें ये भी देखना है कि उसके अंदर ऐसी क्या विशेषताएं हैं जिसके आधार पर वो आगे बढ़ा है, और मेरे अंदर क्या कमियां हैं जिसके आधार पर मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। तो उन कमियों को ठीक करने के लिए साथ साथ हम पुरुषार्थ करें, और उसको ईर्ष्या ना करके उसको भी मोटिवेट करें। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है, आप दूसरों को आगे बढ़ाएंगे तो खुद अपने आप आगे बढ़ेंगे।
1: जी, इसका मतलब भाई जी कह रहे हैं कि रेस करें, रीस नहीं करें, जेलसी ना करें, लेकिन हेल्दी कंपटीशन करें। क्योंकि कई बार देखा जाता है कि एक मार्केट में सेम सब्जियां लोग बेचते हैं, अगर कंपटीशन होता तो शायद वो मार्केट ही नहीं होता, लेकिन कहाँ गलती हम कर रहे हैं उसे देखना है।
0: और मार्केट में सब्जी उसकी ज्यादा बिकती है जिसका व्यवहार अच्छा है, लोगों के साथ प्यार से प्रेम से करेगा। हम केवल प्रोडक्ट ही सेल नहीं करते, लेकिन साथ साथ अपना व्यवहार भी हम दूसरों को देते हैं
1: जी,
0: वैल्यूज भी हम देते हैं, तो कस्टमर जो आता है आपके व्यवहार से सीख के जाता है कि ये व्यक्ति केवल हमें प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहा, केवल बिजनेसमैन नहीं है, लेकिन इसके अंदर ये वैल्यूज है जो मुझे भी चाहिए, मैं अपने फैमिली में इसको अप्लाई कर सकता हूँ।
1: बिल्कुल, क्योंकि बिजनेस इंडस्ट्री विंग से आप ताल्लुक रखते हैं, तो आप इस बात को बड़े अच्छे से समझा पा रहे हैं और समझते भी हैं। अगला सवाल ये है कि अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, तो क्या फिर भी उसके प्रति हम भाईचारे की भावना रखें, या व्यवहारिक रूप से ये कैसे संभव हो सकता है प्रैक्टिकल में?
0: वो भले हमारे साथ अच्छा व्यवहार ना करें, लेकिन अगर हम भी उसको देख देख के यही सोचते रहे कि मेरे साथ इसने अच्छा नहीं किया तो मैं भी इसके साथ ऐसा करूं, तो ये जो बदले की भावना हमें आगे नहीं बढ़ने देती। हम जितना, एक ये साइकिल है, जितना किसी के प्रति नेगेटिव सोचेंगे, व्यर्थ के बोल बोलेंगे, दूसरों के साथ बात करेंगे, तो वो वातावरण उसके पास पहुँचता है। भले आज हमारे को लगता है कि मेरे साथ कोई कोऑपरेशन नहीं करता है, मैं इतना इसको सहयोग देता हूँ तो भी मुझे सहयोग नहीं देता है, लेकिन देते देते देते क्या होता है कि एक टाइम उसको फील होता है कि इस आदमी ने मेरे लिए

0: अच्छा किया, क्योंकि सराउंडिंग में वो वातावरण फैलता है और उस तक वो बात पहुंचती है कि आप उसके लिए गलत सोच रहे हो, लेकिन वो उसने आप हमेशा आपके लिए सद्भावना सोची, आपको हमेशा कोऑपरेट करता है। तो अंदर से हम जब सद्भावना रखते हैं तो वो भी धीरे धीरे चेंज होता है,
1: तो कोशिश करेंगे उनकी अच्छाइयाँ देखने की
0: अच्छा
1: और
0: ही
1: शुभ
0: देखने का।
1: भावना रखने
0: हाँ,
1: की। जी ओके।
0: जैसे दादी जी कहती थी कि व्यक्ति में कितनी भी कमियां हो लेकिन विशेषताएं जरूर होती है, और जब विशेषताओं को हम ध्यान में रख करके दादी जी विशेष ईयर से उसको सेवाओं में आगे बढ़ाती थी कि इसके अंदर ये विशेषता है, तो विशेषताएं हम देखेंगे तो जो कमियां हैं वो अपने आप ही फिर कम होती चली जाती। जैसे दादी जी कहती थी किसी के अंदर गुस्सा बहुत आता है, तो दादी प्यार से कहती ये आजकल बहुत कम गुस्सा करता है, तो वो अगर ये बोले कि नहीं आपको तो गुस्सा बहुत आता है, आप तो बहुत यहाँ रहने लायक नहीं, लेकिन दादी उस चीज़ को पॉइंट आउट ऐसे तरीके से करती कि आजकल बहुत इसके अंदर सुधार हुआ है, धीरे धीरे देखो गुस्सा इस पर कंट्रोल होने लगा और बहुत कम अभी गुस्सा करता है, तो सामने वाला को ये रिलाइज होता था, भले वो गुस्सा उतना ही करता लेकिन रिलाइज ये होता था कि देखो मेरे को दादी जी ने ऐसा कहा, मतलब मेरे अंदर वो गुस्सा कम होता जा रहा है, तो नेक्स्ट टाइम से वो प्रयास करता था कि मेरे अंदर गुस्सा कम आए, कंट्रोल
1: जी
0: करने की कोशिश करता था।
1: तो शुभ भावना हम इस तरीके से देख सकते हैं,
0: जी
1: जैसे भाई जी ने दादी जी के एग्जाम्पल दिया। तो जब हमें लगता है कि मैंने दूसरों के लिए इतना किया
0: हाँ
1: लेकिन मेरे लिए किसी ने नहीं किया,
0: हाँ
1: तब सहयोग देने की जो भावना है वो कई बार खत्म हो जाती है, उससे कैसे बनाए रखें?
0: दूसरों के लिए हमने इसलिए कि मेरे लिए किसने के, लेकिन हाँ अगर हम ये मन में रखें कि किसी के लिए मैंने जो भी किया है वो मैंने कोई स्वार्थ के वश नहीं किया, जब हमारे अंदर निस्वार्थ की भावना आती है कि मुझे उस जो मैंने उसके लिए किया मुझे उसका रिटर्न चाहिए, जब हम ये सोचते हैं तो हमें वो भाईचारा हमारे अंदर वो पनपता नहीं है। जब हमें सोचते हैं कि मैंने दिया, प्रकृति भी हमें यही सिखाती है कि आज जो पेड़ पौधे हमें जो फल देते हैं वो ये नहीं सोच के देते हैं कि बाद में मुझे कुछ देंगे, लेकिन वो निस्वार्थ भाव से प्रकृति हमें देती रहती है। बारिश का मौसम है, बारिश हमें दे रही है, तो बदले हमसे कुछ उनको चाहिए नहीं, तो प्रकृति पति जो परमात्मा हमें ये सिखाता है कि आप अपनी तरफ से देते जाओ देते जाओ, जब आप देते जाएंगे तो वो रिटर्न होके आएगा, क्योंकि हम ये सिखाते हैं ना कर्म की गति, तो ये कि जो आप देंगे वही आपको मिलेगा,
1: जी
0: तो आप मिले या नहीं मिले ये सोच के आप देने की भावना जागृत करें। परमात्मा कहते हैं आप दाता के बच्चे हो, आप देते रहो तो एक दिन आपके सामने वो चीज़ आएगी, आपको मिला नहीं मिले लेकिन अपने आप ही वो मिलेगा,
1: लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सेम व्यक्ति से
0: सेम व्यक्ति
1: मिले।
0: मिले, किसी और से मिलेगा।
1: जी तो हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि वो सेम व्यक्ति से मिले तो फिर दुख होता है।
0: फिर दुख होता है,
1: जी
0: लेकिन वही चीज़ हम किसी और के द्वारा हमें मिल जाती है, जिस व्यक्ति से हम अपेक्षा करते हैं उससे नहीं मिलता, अक्सर ऐसा ही होता है उससे हमें नहीं मिलता लेकिन कहीं और से मिल जाता है, लेकिन समय गुजरने के बाद उस व्यक्ति को रियलाइज होता है कि इसने मुझे बहुत कुछ दिया लेकिन मैं उसको दे नहीं पाया, ऐसा।
1: लेकिन आपके जो एक्सपेक्टेशंस के कारण दुख होता है, उस
0: हाँ
1: दुख को आप जाहिर होने ना दो और कर्म
0: हाँ
1: करते
0: कर्म
1: रहो,
0: करते रहो,
1: डिटैच होके, तभी
0: डिटेच
1: वो
0: हो।
1: फल मिलेगा।
0: जी जी जी
1: ओके। तो आज समाज में ओपिनियंस, लाइफस्टाइल, भाषा, संस्कृति और विचारों में बहुत डिफरेंसेस हैं,
0: जी
1: एक ही घर में बहुत डिफरेंसेस हैं, तो इन डिफरेंसेस के बावजूद भी हम एक दूसरे को अपना कैसे महसूस करें? मतलब एक्सेप्टेंस में प्रॉब्लम होती है हमें, इंसानों को एक्सेप्ट करने में क्या भाव रखें?
0: एक्चुअल में क्या हो रहा है आजकल, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इतना ज़्यादा हो रहा है कि हम जीवन में वस्तुओं से बहुत ज़्यादा अपडेट हो गए, आज जो चीज़ फैशन में है 1 महीने बाद 10 दिन बाद वो आउटडेट हो जाती है, तो उसके साथ साथ हमें अपडेट रहना पड़ता है, तो चीज़ों में हम अपडेट हो गए लेकिन वैल्यूज़ में डाउनफॉल हो गया, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर विचार अभी धीरे धीरे बदलते रहे हैं, और आजकल डिफरेंसेज इसलिए हो रहा कि जैसे माता पिता है अपने बच्चों से उनका विचार डिफरेंस है, क्योंकि माता पिता जो है वो ये चाहते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में वो चीज़ें देखी है तो बच्चों के अंदर वो डालना चाहते हैं लेकिन बच्चे स्वीकार नहीं करते हैं। जैसे माता पिता है उन्होंने अपने ज़माने में दलिया खाया, दाल रोटी चावल खाया है, तो वो बच्चे से यही अपेक्षा करे वो भी वही खाना खाए, लेकिन आजकल के जो बच्चे उनको चाउमीन चाहिए, पिज्ज़ा चाहिए, उनको फास्ट फूड चाहिए और वो ज़बरदस्ती उनके साथ करना चाहते हैं तो लोग मैचिंग नहीं हो पाते हैं, तो समय अनुसार अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। हम पुराने ज़माने के लोग, हमें मान लो लता मंगेशकर के गीत पसंद है, किशोर कुमार इनके गीत पसंद है, लेकिन नई जनरेशन को भी हम यही चाहते हैं कि वो भी वही सुने लेकिन वो नहीं सुनना चाहते, उनको नई जनरेशन के नए जो सिंगर आए उनके गीत पसंद है, तो समय अनुसार हम उनको देख करके उनके साथ हमें एडजस्ट होना पड़ेगा, तब अपनापन की भावना आएगी, हम अपने विचार उनके ऊपर नहीं थोप सकते, उनके विचार भी अपने अंदर हमें समाने पड़ेंगे, क्योंकि जनरेशन बहुत तेजी से बदल रही है, तो उस जन जिसको कहते हैं आजकल जेन जी, तो जेन जी के विचार बहुत फास्ट है, बहुत प्रगतिशील
1: विचारधारा
0: विचारधारा वाली जेन जी एक है, यूथ है, तो उनके विचारों को हमें आत्मसात करना पड़ेगा क्योंकि वो हमारे से फास्ट है, जैसे स्मार्टफोन है ना, वो स्मार्टफोन की तरह हमारे से फास्ट है, उनके अंदर बहुत क्वालिटीज है, लेकिन उनके साथ साथ उनको हमें सहयोग देने की जरूरत है, उनको सहानुभूति देने की जरूरत है, तब हम उनके साथ में एडजस्ट हो सके और तब हम भावना जागृत कर सकेंगे।
1: ओके, तो बिल्कुल डिफरेंसेस है लेकिन एक्सेप्ट करके उनके साथ अपग्रेड अपडेट होने की जरूरत है, जैसे भाई जी ने कहा। क्या हम अलग है कि सोच भातृत्व भाव यानी कि ब्रदरहुड को कमजोर करती है?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं करती है। हम बाहरी रूप से अलग अलग हो सकते हैं, हमारा पहनावा से अलग हो सकते हैं, हम संस्कृति से अलग हो सकते हैं, लेकिन इनर में तो हम एक ही है। हाँ, अंदर में हम एक ही है, एक दूसरे से हम प्यार, क्योंकि हम इस दुनिया में नहीं आए, हम आए कहीं और से। जिस दुनिया से आए उस दुनिया में कोई रिलीजियस नहीं है, कोई अलग नहीं है, वहाँ केवल एक ही चीज है कि हम एक ईश्वर की संतान है और उसके हम बच्चे हैं और लाइट ऑफ पॉइंट है। वहाँ पे कोई संस्कृति नहीं है अलग, कोई विचारधारा अलग नहीं, एक ही विचारधारा है और एक ही वैल्यूज है जो सबके अंदर हमें दिखाई देते हैं और सबको एक ही डिमांड है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि हर व्यक्ति को शांति चाहिए, खुशी चाहिए, आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए, वो कहीं का भी हो
1: जी,
0: किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश काल का हो, उसको ये चीजें की जरूरत होती ही है। तो जब इस भावना से हम देखते हैं तो अपना आप वो भाईचारा बनता है।
1: जी बिल्कुल, तो जैसे भाई जी ने कहा कि हम सब भी एनर्जी है, पॉइंट ऑफ लाइट है और एक देश से आए हुए हैं, इस बात को हम ध्यान में रखें। अगर किसी की सोच हमसे बिल्कुल विपरीत हो तो उसके साथ संवाद करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: सबसे पहले हमारे अंदर लिसनिंग पावर होना चाहिए कि सामने वाले की मेरी सोच विपरीत है लेकिन वो क्या सोचता है, क्या बोल रहा है, उसको हम समझें। और समझने के साथ साथ उसके जब वो सारा सुनने के बाद समाने की शक्ति भी हमारे अंदर होनी चाहिए कि वो उसकी सोच डिफरेंस क्यों हुई है। हो सकता है वो जिस सराउंडिंग वातावरण में रहा हो तो इस कारण से वो ऐसा सोचता हो कि फलाना व्यक्ति ठीक नहीं है, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। तो पूरी बात जब हम सुनेंगे तो फिर हम उस पर कैलकुलेशन पे आएंगे कि व्यक्ति इस वजह से बोल रहा है। तो उसकी बात को सुनते हुए हम अपनी बात को रखें। जैसे हमें दादी जी सिखाती थी कि भाई कोई भी बात को आपको करेक्ट करना है तो डायरेक्ट किसी को नहीं बोलना है। तो डायरेक्ट ना बोलने के साथ साथ उसकी बात पहले सुनो और फिर साथ में जैसे कहते ना कि सैंडविच जैसे लगा के उसकी महिमा करते हुए
1: जी।
0: उसको साथ साथ वो बात उसको पेश करना कि आपके अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं, आपके विचार अलग हो सकते लेकिन इसमें थोड़ा सा आप ये करेक्शन करेंगे, ये चीज करेंगे तो आपको बहुत अच्छा इससे फायदा मिलेगा, बहुत अच्छा जीवन में आप सक्सेस हो सकते हैं। तो भले सोच अलग है लेकिन हम अपने विचार उसको रिस्पेक्ट से, प्यार से हम उसको दे सकते हैं और वो स्वीकार करेगा उस बात को।
1: जी, तो बात करने की तरीके आना चाहिए और जैसे भाई जी ने कहा कि लिसनिंग, आजकल कोई सुनना नहीं चाहता, सुनने से पहले जज कर लेते हैं, तो इसके वजह से संवाद करते समय भी प्रॉब्लम होती है हमें। तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है, सबसे पहले सुनना है। और कुछ कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन जीवन में आते हैं, मान लीजिए दो कोलिग्स हैं, उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हैं, और एक तीसरा व्यक्ति है, वो भातृत्व भाव की भावना से उस सिचुएशन को कैसे ठीक कर सकता है?
0: वो तीसरा व्यक्ति दोनों के बीच में ब्रिज का काम कर सकता है, दोनों व्यक्तियों का अलग अलग विचार जाने, उनका सुने और उनकी प्रॉब्लम समझे कि किस बार कारण से इन दोनों के आपस में बीच में टकराव है या एक दूसरे को देखना नहीं पसंद कर रहे। तो दोनों का सुनने के बाद में बीच का रास्ता निकाले, ब्रिज बन के पुल के माध्यम से कि आप अपनी जगह राइट है लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा ये करेंगे तो सामने वाला भी समझने के लिए तैयार है, फिर उसके पास जाके भी बोलेंगे कि आप भी ठीक है, उसके अंदर ये चीज की है कि मेरे साथ में इन्होंने ऐसा किया तो आप इस पे थोड़ा सा चेंज करेंगे तो भी। तो तीसरा व्यक्ति ब्रिज के रूप में जब अपना सहयोग देगा तो दोनों आपस में मिल सकते हैं।
1: जी, तो आजकल हम ब्रिज की जगह पे शायद जले पे नमक चढ़े
0: एक की चार बातें मिला के बोलते हैं कि आपके बारे में वो ऐसा बोल रहा था, इसलिए तो और नजदीक आने के बजाय और दूर हो जाते हैं।
1: ओके, तो ब्रिज का
0: ईगो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है ना, वो दुनिया में बहुत ईगो बढ़ रहा है तो एक दूसरे को हम सुन नहीं पाते हैं क्योंकि आजकल सोशल मीडिया ऐसी है कि उसके कारण व्यक्ति का माइंड भी वैसा ही हो गया है,
1: हम विश्वास भी नहीं कर पाते एक दूसरे पे।
0: हाँ, विश्वास नहीं कर पाते हैं क्योंकि पहले एक जमाना था तो एक दूसरे को हम एडजस्ट कर पाते, अभी इतना जल्दी हो गया कि मन के अंदर सहन शक्ति हमारी खत्म हो गई है। हम सुनना ही पसंद नहीं कर पाते हैं क्योंकि रील से आप देखते हैं 30 सेकंड की रील, 1 मिनट की रील, तो जो भी माइंड ऐसा हो गया कि उसमें इमोशंस खत्म हो गए, हमें जो भी चाहिए तुरंत चाहिए। अगर कोई आज की डेट में आप देखो कोई मूवी देखना भी चाहता है या मोबाइल में देखे तो तुरंत तो फॉरवर्ड करेगा, कारण क्या मन में वो चीजें नहीं है, इमोशंस ही नहीं है उस चीज के, जो भी कहना है आप मुझे सार में कहो, तो माइंड ऐसा हो गया इसलिए वो दूसरों के साथ में एडजस्ट नहीं हो पाता है, कोऑपरेट नहीं कर पाता है।
1: ओके, बिल्कुल, तो मेन चीज है ईगो प्रॉब्लम के कारण हम भातृत्व भाव को, ब्रदरहुड को अपना भी नहीं पा रहे हैं और जैसे भाई जी ने कहा, अगर तीसरे को सॉल्व करना है तो ब्रिज बने। अच्छा भाई जी, गुस्से में कही गई किसी बात से रिश्ता खराब हो जाए,
0: हाँ,
1: तो पहला कदम किससे उठाना चाहिए? मान लीजिए आपस में झगड़ा हुआ, मैं और मेरे फ्रेंड के बीच में झगड़ा हो गया, तो पहला कदम कैसे उठाना चाहिए और किससे उठाना चाहिए?
0: पहला कदम, अब जो पहले जो झुकेगा उसी को उठाना पड़ेगा, आखिर किसी एक को तो झुकना पड़ेगा, और उसके बीच में सबसे पहले आता है ईगो। तो ईगो में ये देखा जाए कि रिश्ता अगर महत्वपूर्ण है, मेरा दोस्त है, साथी है, जो भी, अगर मेरा रिलेशन मेरा जरूरी है, तो ईगो को उसको साइड में रख देना चाहिए, क्योंकि गुस्से से बहुत सारी बातें बिगड़ जाती है। आजकल हम देख रहे हैं कोर्ट के अंदर या जेलों में जो ज़्यादातर केसेस जा रहे हैं, वो गुस्से के कारण और ईगो के कारण जा रहे हैं। छोटी सी बात को लेकर के हम उसको इतना बड़ा बना देते हैं, इतना बड़ा बना देते हैं, और वो चारों तरफ फैल जाती है। तो हम एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते कि नहीं, मुझे ऐसा उसने क्यों कह दिया, मेरा उसने अपमान कर दिया सबके बीच में, मैं उससे कभी बात नहीं करूँगा, है ना, या मेरी इंसल्ट कर दी, मेरे से उसने पैसे मांग लिए, उधारी मांग ली, या मेरी उसने ये हिस्सा मेरे से छुड़ा लिया। तो इस बात को लेकर के हम बहुत सालों में तक एक दूसरे से अलग रहते हैं, और सोच सोच के हमें अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। लेकिन अगर हमें ये महसूस होता कि नहीं, ये छोटी चीज है और मेरा रिलेशन बहुत ही जरूरी है, क्योंकि छोटे से नुकसान में हम बहुत बड़ा फायदा खो देते हैं ना, उस चीज के कारण हम बहुत सारी प्राप्तियां होती है एक दूसरे से, तो वो भी हम खो देते हैं, रिलेशन हमारे चले जाते हैं। तो हमें ही झुक करके अगर उसके साथ में संवाद कायम करें, अगर खुद नहीं बात कर सकते हो तो तीसरे व्यक्ति के द्वारा हम बात पहुंचाएं कि मैं बात करना चाहता हूं। अगर एक सिंपल लाइन भी अगर हम बोल दें कि भाई मेरी गलती थी, सॉरी, इसमें कोई हम बड़े छोटे नहीं हो जाते, अगर हम रियलाइज कर लें कि मेरी गलती थी, मैं माफी मांगता हूं, तो सामने वाला भी ऐसा कोई बड़ा वो नहीं है, वो भी झुक जाता है, नहीं वो मेरी भी गलती थी। तो जब दोनों एक दूसरे के आगे झुकते हैं तो संवाद आया आसानी से कायम हो जाता है और रिलैक्स हो जाते हैं।
1: जी भाई जी, आजकल देखा जा रहा है कि घर घर में भाई भाई के बीच में झगड़ा है
0: जी,
1: और यहाँ पे भी ईगो प्रॉब्लम भी है, और साथ ही साथ प्रॉपर्टीज की भी प्रॉब्लम है, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं सामने। तो एक भाई सोचता है कि हमेशा मैं ही क्यों झुकूं, तो उसका भी तो कर्तव्य है ना। तो ऐसे हर रिलेशनशिप में है कि सिर्फ हमेशा मैं ही क्यों झुकूं।
0: उसमें ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी का भी झगड़ा होता है, लेकिन उसके दूसरे तरीके भी होते हैं, हम ही क्यों झुके, लेकिन एक टाइम ऐसे आता है कि सामने वाला भी झुकता है, जब उसको महसूस होता है कि हर बार ये झुका है और मैं अकड़ के रहा हूँ। क्योंकि जब उसके सामने भी सिचुएशन आती है, अभी भाई के साथ तो अकड़ के रहेगा, लेकिन जब दूसरे सामने वाले लोग जो झुकाते हैं उसको, तब तो उसको रियलाइज होता है कि मेरा भाई तो मेरे लिए बहुत कोऑपरेट करता है। सामने वाला जो होता है, जो अननोन पर्सन है, वो तो उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है, तो उसके आगे हम झुक जाते हैं, लेकिन भाई के आगे नहीं झुकते हैं। लेकिन अगर हम अपना, अगर हम रियल में भाई समझते हैं, अपनापन समझते हैं, तो अगर हम झुकते भी करें कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन ये होगा। क्योंकि आजकल ऐसा हुआ कि ज्यादातर जब नहीं झुकते हैं तो ये कोर्ट केसेस में जाता है, अपराध बढ़ते हैं, मारपीट हो जाती है, और मारपीट होने के कारण हम जेलों में चले जाते हैं, 2 महीने 4 महीने साल साल भर 10 साल वहां निकाल के आते हैं, फिर जाके रियलाइज होता है कि मैंने ये गलत किया, मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए। जब जेल में जाता है आदमी, उसको वो चीज फील होती है कि मैंने बहुत गलत कर लिया
1: जी।
0: तो वहां जाने पर क्या हुआ, हमारी इज्जत भी जाती है, धन भी जाता है, समय भी जाती है। तो मेरा तो यही विचार है कि अगर हम पहले ही इसको कंट्रोल कर, पहले ही हम झुक जाए, वो जो रियलाइज हो उसके पहले हम रियलाइज कर लें, तो हमारा समय भी बच जाए, इज्जत भी बच जाए और धन भी बच जाए
1: जी।
0: तो चाहे कैसा भी हो, थोड़ा सा हम झुके, और जो हमारे पास सराउंडिंग में जो सोर्सेस है कि ये व्यक्ति किसकी बात मान सकता है, उन सोर्सेस का हम उपयोग करें
1: जी,
0: जिससे हो सकता है उसके अंदर में भी कुछ चेंजेज आए।
1: बिल्कुल, सुख और शांति अगर चाहते हैं तो अपनों के आगे हम झुक सकते।
0: कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हमें फैमिली भी है, भाई भी है, पत्नी है, तो हमें बच्चे देखने पड़ते हैं, माता पिता को देखना है, समाज को देखना है, क्योंकि उसका असर केवल एक व्यक्ति पे नहीं पड़ता, हमारी सिस्टर एंड सिस्टर इन लॉ वहां तक असर जाता है, मदर की फैमिली तक भी असर है, दूर दूर तक उस चीज का असर जाता है। और आज के टाइम पे लोग कोई हमारे लिए सुभावना नहीं रखते हैं, लोग मजे लेते हैं कि अच्छा हुआ इनके साथ ऐसा, जले पे नमक छिड़कने वाले बहुत होते हैं। तो हमें तो मीठा बनना है, हमें बात को बढ़ाना नहीं है, बात को समाना है, छोटा करना है
1: जी, तभी हम ब्रदरहुड को कायम रख सकते हैं जी। क्या जो फॉरगिविंग है, क्षमा करना, तो वो भी भातृत्व भाव का एक हिस्सा है, लेकिन क्षमा करना वो भी एक कला है शायद, कैसे क्षमा करेंगे?
0: क्षमा करना, जैसे कहते ना, जो बड़ा आदमी होता है वही क्षमा कर पाता है, जितना जैसे घड़ा फुल भरा होगा तो ज्यादा छलकेगा नहीं, आधा भरा होगा तो छलकेगा, जल्दी उछल जाएगा। तो हमारे अंदर अगर जितने वैल्यूज होंगे, कि मुझे ईश्वर ने इतना सारा दिया है और इतना सारा मुझे सिखाया है, तो हम दूसरों को वही देंगे। अगर मेरे अंदर गुस्सा होगा तो मैं दूसरों को गुस्सा दूंगा, मेरे अंदर अशांति होगी तो मैं दूसरों को अशांति दूंगा। तो मेरे अंदर जितनी शांति होगी, जितना दूसरों के प्रति प्रेम होगा, जितना भाईचारा होगा, उतना ही हम दूसरों को दे सकेंगे। बैंक, मेरे बैंक में बैलेंस होगा तभी तो मैं दूसरों को डोनेट कर सकूंगा, और बैलेंस नहीं होता कैसे। तो सबसे पहले हमें अपने अंदर भरना पड़ेगा
1: जी।
0: जब हमारे अंदर होगा तभी हम दूसरों को दे सकेंगे।
1: तो कैसे भरना है?
0: तो वो हम मेडिटेशन से ही कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज जो है बाहर की चीज दिखावे नहीं है। जैसे हम सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर को दिखता नहीं है, इसको भी हमें डाउनलोड करना पड़ता है। जब डाउनलोड करेंगे तब वो प्ले होता है, तब वो अपना कार्य करता है। तो परमात्मा ने हमें यहाँ जो सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, तो इसको अपडेट करने के लिए, सॉफ्टवेयर भी अपडेट मांगता है ना, अपडेट करने के लिए परमात्मा से जुड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तो मोबाइल भी आजकल काम नहीं करता, वो भी अपडेट मांगता है, जो उसको अपडेट करते हैं बार बार। तो हमें रोज रोज अपने इस मेंटल सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़ेगा, और वो अपडेट करने का तरीका है मेडिटेशन। जैसे जैसे हम परमात्मा से जुड़ते जाते हैं, रोज रोज वो हमारा अपडेट होता है, स्कैन होता है, वायरस हमारे निकलते हैं, और उससे हम अपना आप ही आगे बढ़ते रहते हैं
1: जी। ओके, तो अपडेट करने के टाइम में कौन से चीज़ों को इंस्टॉल करते हैं आप, डाउनलोड करते हैं?
0: मेन चीज़ तो यही है कि जैसे मोबाइल में या कंप्यूटर में वायरस चले जाते तो उसको हम स्कैन करते हैं, वायरस निकाल, दोबारा से कोई वायरस ना आए तो उसके लिए हम ऐसा सॉफ्टवेयर डालते हैं, एंटीवायरस डाल के रखते हैं। अब हमारे यहाँ पे कोई फॉर्मेट का सिस्टम तो है नहीं, जो परमात्मा ने ऑलरेडी जो सॉफ्टवेयर डाल के देखा है पूरी ताउम्र या पूरी जिंदगी वो रहेगा। वायरस हम पूरा निकाल नहीं सकते, लेकिन कोई वायरस आगे ना बढ़े, ज्यादा फाइल करप्ट ना हो, उसके लिए एंटीवायरस डालना पड़े, तो वो एंटीवायरस है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन में सिंपल चीज ये कि हम अपने आप को पहले यहाँ एनर्जी समझे। जैसे कि सॉफ्टवेयर है, एक प्ले स्टोर से हम डाउनलोड करते हैं ना, कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, चाहे व्हाट्सएप यूज करते हैं या हम जो भी यूज करते हैं, तो मोबाइल के अंदर उसको डाउनलोड करते हैं और आए दिन अपडेट करते हैं। तो यहाँ पे एक बार एक इंस्टॉल कर लिया हमने कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, लेकिन आत्मा किस प्रकार की हूँ, शरीर तो मेरा थोड़ा समय का ही है, लेकिन इसके अंदर जो चैतन्य शक्ति है हमेशा अजर अमर अविनाशी है। तो जब हम थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव देते हैं और मैं परमात्मा की संतान हूँ, परमात्मा क्या है, वो भी एक लाइट और पॉइंट है, उससे जैसे हम कनेक्ट होते हैं, जैसे इंटरनेट कनेक्ट होते हैं। अभी तक क्या हो रहा था कि हमें पता नहीं था, जैसे आप मोबाइल यूज करते हैं, आपके पास यहाँ पे कोई भी चीज इंटरनेट के माध्यम से भेजनी है, आपने देखा कि यहाँ पे वाईफाई है, तो आप क्या कर रहे हैं, पासवर्ड अपनी तरीके से आप लगा रहे हैं, लेकिन पासवर्ड आपको पता ही नहीं है। जब पासवर्ड पता नहीं, आप कितना भी ट्राई करो कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा
1: जी।
0: तो आप इस बिल्डिंग के आसपास जो व्यक्ति रहता है उससे आप पूछेंगे, भाई यहाँ वाईफाई तो दिखा रहा है लेकिन मुझे पासवर्ड पता नहीं है
1: जी।
0: तो पासवर्ड उसी व्यक्ति को पता है क्योंकि उसने वाईफाई लगाया हुआ है, तो वो फिर वो पासवर्ड आपको बताएगा, तो आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी तक हमें ये नहीं पता था कि परमात्मा से हमें कैसे कनेक्ट होना है, तो हम अपने आसपास के लोगों से, दूर दराज लोगों से ये पूछ रहे थे कि भगवान से कनेक्ट होने का पासवर्ड क्या है। तो वो भी अपने तरीके से बताते हैं, ये लगा लो इससे लग जाएगा, लेकिन कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि वाईफाई लगाने वाला स्वयं परमात्मा है। भगवान स्वयं आकर के हमें बताता है कि ये पासवर्ड है, आप इस पासवर्ड को डालेंगे तो आपका वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा। तो हमें अभी तक ये नहीं पता था कि हम शरीर नहीं है, लेकिन शरीर के अंदर हम चैतन्य शक्ति आत्मा है। तो ये जब हमें पता पड़ा कि हम लाइट ऑफ पॉइंट है, तो तुरंत परमात्मा से हम कनेक्ट हो गए और हमें वो एनर्जी और वो शक्तियां हमारे पास आने लगी,
1: वो वैल्यूज भी
0: अपने आप ट्रांसफर
1: हो जाते जी। तो ये मेडिटेशन करने से हमें शक्ति मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है, ताकि हम भातृत्व भाव के साथ रह सकते हैं लोगों के साथ। परिवार में कई बार भाई बहन और रिश्तेदारों के बीच में छोटी छोटी बातों पर कंपैरिजन होता है, आपके बच्चों ने ये कर दिया, इतने अच्छे पोस्ट पे हैं, हमारे बच्चे पढ़ाई नहीं करते, या अलग अलग तरीके से कंपैरिजन और जेलसी आ जाती है, तो वहाँ रिश्तों को कैसे भातृत्व भाव के साथ स्ट्रेंथन करें?
0: हाँ, अक्सर मैं ये देखता हूँ कि आजकल जो पेरेंटिंग भी हो रही है, तो हम बच्चों को यही कहते हैं कि फलाने व्यक्ति ने इतना सारा नंबर लिया, तू क्यों नहीं लेके आता है, क्या कारण है? तो आजकल ये बहुत ज़्यादा होने कारण बच्चे भी डिप्रेशन में जा रहे हैं, माता पिता भी डिप्रेशन में जा रहे हैं। जैसे कि मैं कोटा से हूँ, तो वहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं
1: जी।
0: और उनके ऊपर इतना प्रेशर होता है, माता पिता का प्रेशर होता है, प्लस टीचर का प्रेशर होता है, आसपास के दोस्तों का भी होता है, इसके कारण वो सर्वाइव नहीं कर पाते। तो कईयों को देखा है कि वो ज़्यादातर कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग गलत कदम उठा लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स को भी उनको पावर मतलब दबाना नहीं है, उसको इंस्पायर करना, उनको मोटिवेट करना, उसके अंदर जो नंबर आया अच्छी बात है, लेकिन हम अपने बच्चे को ये कह सकते हैं कि आपके अंदर भी बहुत सारी विशेषताएं हैं, आप पढ़ सकते हो, बहुत आगे जा सकते हो, आपके अंदर ये क्वालिटी उसको हम सहयोग देते हुए भी हम मोटिवेट करें, ना कि दूसरे से हम कंपेरिजन कराएं। क्योंकि लेटेस्ट ही हमने देखा एक बच्चे ने एक फोन के कारण सुसाइड किया, उससे गिर गया, तो उसके पीछे यही आया कि बच्चा दूसरों को देख देख के सीख रहा था कि उसके पास एप्पल आईफोन है तो मेरे पास भी होना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ पे कहा जाता है स्टेटस जनरेट स्ट्रेस। आप स्टेटस को मेंटेन करने जाएंगे, इनकम आपकी इतनी है नहीं है, और जब वो मेंटेन करने जाएंगे तो आप एन केन पर कारण लोगों से आप दूसरे तरीके ढूंढेंगे कैसे मेरे पास इनकम है। जब गलत कदम उठाने जाएंगे तो फिर गलत कदम का गलत ही नतीजा होता है
1: जी।
0: तो हम भी सादगी में रहना पसंद करें, बच्चों को भी वो सिखाएं, क्योंकि हम दूसरों को देख के हमें अपना जीवन नहीं जीना है, हमें अपनी क्वालिटी के आधार पर जीवन जीना है। अपनी क्वालिटी को आप जितना डेवलप करेंगे तो आगे चल के वो जो चीजें आपको चाहिए वो अपने आप मिलेगी
1: जी।
0: लेकिन बच्चों को हमें उनको मोटिवेट करना है, ना कि उनको डाउनफॉल करना है। दूसरों के साथ में कंपैरिजन करते हैं तो बच्चे के अंदर एक हीन भावना आ जाती है कि मैं ऐसा ही हूँ, मेरे माँ बाप भी मुझे ये सर्टिफिकेट देते हैं, माँ बाप मुझे ठीक से लायक नहीं करते हैं, मुझे आए दिन डांटते रहते हैं, परेशान करते हैं। तो डांटने डपटने के बजाय उनसे प्यार से मोटिवेट करें। आपने देखा अपने यहाँ इतनी बड़ी संस्था है, तो दादियां भी हमें यही सिखाती थी कि कोई भी गलती हो जाती है उसके बजाय डांटती नहीं थी
1: जी।
0: एक बार ज्ञान सरोवर में यहाँ पे एक भाई था, उससे काफ़ी बड़ी उस टाइम टीवी बहुत महंगी आती थी, टीवी गिर गई, तो दादी जी आए और उन्होंने देखा, और देखने के बाद में वो भाई की तरफ देखो रखे और स्माइल किया बस, कुछ नहीं कहा। फिर दादी को पूछा, दादी आपने उसको डांटा क्यों नहीं, इतनी महंगी टीवी तोड़ दी उसने। कि बोले डांटने से टीवी को जुड़ नहीं जाती है
1: जी।
0: लेकिन मैंने उसको स्माइल दी, उसमें उसको प्यार भी मिल गया उसको, और एक सावधानी भी मिल गई कि आगे से अपने आप ध्यान देगा, क्योंकि जानबूझ के कोई गलती ऐसी करता नहीं है, वो हो गया उससे
1: जी।
0: तो यही भावना हम अपने बच्चों से भी लगे रखें, बार बार उनको टॉर्चर ना करें, किस तरह से दबाए नहीं, उनको मोटिवेट करें, शिक्षाएं दें, सावधानियां दें, लेकिन वो प्यार से। हम खुद गुस्से में रहेंगे तो हमारे से भी वो सामने वाला यही सीखा कि जब पापा गुस्सा करते हैं तो मुझे लगता है शायद यही फार्मूला है दुनिया को चलाने का, तो फिर वो भी धीरे धीरे गुस्सा करना सीख जाता है। माता पिता जब बूढ़े होते हैं, जब वो बड़ा होकर फिर माता पिता वो गुस्सा करता है, क्योंकि हमने उसको सिखाया ही वही है, प्यार करना नहीं सिखाया, प्यार देना नहीं सिखाया, तो गुस्सा देना करना सिखाया, तो सामने बड़ा होकर फिर वही करता, फिर वो अपने बच्चों के साथ भी वही ट्रीट करता है। इसके कारण धीरे धीरे सोसाइटी में बदलाव आता जाता है
1: जी। जी बिल्कुल। अगर हम स्टेटस मेंटेन करने को जाए तो भाई जी ने कहा कि स्ट्रेस होगी, तो इसीलिए कंपैरिजन कंपटीशन को साइड में रखते हुए अपने क्वालिटीज को ढूंढे और उसके अनुसार आप कार्य करेंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे अपने आप सारी चीज़ें आपके पास आ जाएगी, ऐसे भाई जी ने हमें बताया। तो बच्चों में बचपन से ही जैसे आपने कहा कि हम सब एक दूसरे के साथी हैं, इसकी भावना विकसित करने के लिए और क्या पेरेंट्स ऐड कर सकते हैं चीज़ें?
0: और पेरेंट्स ये ऐड कर सकते हैं, बच्चों के सामने आप कभी भी अपनी वाइफ के साथ या अपने पति के साथ गलत व्यवहार ना करें। आप उसको करेक्ट करने जाएंगे, आप उसको डांटेंगे वाइफ को, तो बच्चा वो सीखता है कि पापा मेरी मम्मी को ऐसे डांट रहे, तो उसके अंदर वो अंदर ही अंदर एग्रेसिव की भावना जागृत होती है
1: जी।
0: तो अगर हमारे बीच में कुछ मनमुटाव भी है तो बच्चों के सामने ना करें
1: जी।
0: जब एकांत में होते हैं, अकेले होते हैं, तो हम उसको बात करें, उनको समझाएं, क्योंकि अब पहले जैसी बात नहीं है। पहले हम ये समझते थे कि पत्नी को या अपनी वाइफ को डांटेंगे तो ये सुधरेगी, अभी दोनों बराबर के लिए। शादी शुदा होना मतलब ये नहीं कि मेरी वाइफ है तो मेरे हिसाब से चले, अभी समय बदल गया। शादी शुदा मतलब हम एक दूसरे के साथी हैं, सहयोगी हैं, कंपेनियन है, तो एक दूसरे की हमें साथ देना है, सहयोग देना है, उनकी कमी कमजोरियों को नहीं देख करके उनके अंदर जो विशेषता है उनको आगे बढ़ाना है
1: जी।
0: जब हम एक दूसरे की महिमा करेंगे, एक दूसरे की मोटिवेट करेंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता उसका प्रभाव बच्चे पे ना पड़े। बच्चा ये सीखता है कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे क्या प्यार दिया है ना, कैसे मुझे आगे बढ़ाया, तो वो फिर आने वाली जनरेशन को ट्रांसफर करेगा। अगर हम वैल्यूज हमारे अंदर होगा तो वैल्यूज बच्चों को देंगे, बच्चे अपने बच्चों को देंगे। हमारे अंदर अगर गुस्सा है, ईर्ष्या है, नफरत, वो सब दिखते हैं तो बच्चे भी देखते हैं, तो वही सामने वालों को ट्रांसफर करेंगे। तो हम बच्चों को क्या देना चाहते हैं
1: जी।
0: हमारे पास जो संपत्ति बैंक बैलेंस है, करोड़ रुपए बंगला है, हम चाहते हैं मेरी संपत्ति उसको ट्रांसफर कर, लेकिन उसके साथ साथ हमारे अंदर जो संस्कार है वो भी एक प्रकार की संपत्ति है। तो हमारे जो संस्कार की जो संपत्ति है बच्चों को देना चाहते हैं, तो हम बच्चों को कैसी संस्कृति देना चाहते हैं, कैसी संपत्ति देना चाहते हैं, कि वही उसके साथ जानी है, वो आगे आगे से आगे ट्रांसफर करेगा। ये बैंक बैलेंस बंगलों तो यहीं तक रह जाएंगे, ज्यादा ज्यादा बच्चे तक जाएंगे, लेकिन उसके आगे वाली संतान तक नहीं जाएंगे। लेकिन अगर हमने साथ में ये संस्कार दिए, इसलिए कहते हैं वेल्थ के साथ विजडम चाहिए। धन हमें बाप दादा से मिल जाता है, करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए, लेकिन धन के साथ में, वेल्थ के साथ में विजडम नहीं है, सद्बुद्धि नहीं है, तो उसको गंवा देगा। इसलिए राजस्थान में कहावत है कि यदि बेटा कपूत तो क्यों धन संचय। यदि आपका बेटा गुणवान नहीं है, ज्ञानवान नहीं है, संस्कारवान नहीं है, तो उसके लिए इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है।
1: जी.
0: आप इकट्ठा करेंगे तो क्या करेगा, उड़ा देगा, सब खत्म कर देगा. फिर हमारे यहाँ कहते हैं अगर बेटा सपूत तो क्यों धन सच, अगर बेटा आपका ज्ञानवान है, गुणवान है, संस्कारी, आपने अच्छे गुण दिए, उसके लिए इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, उसके अंदर इतनी क्वालिटी है खुद कमा लेगा.
1: जी.
0: तो हमें मेन ये देखना कि हमें अपने संस्कारों से बच्चों का परिवेश ऐसा करना है कि बच्चे बड़े होकर के ये महिमा कहे कि मेरे माँ बाप ने मुझे इतना अच्छा संस्कार दिए
1: हैं. जी बिल्कुल, संस्कार बहुत इम्पोर्टेंट है और बच्चे माँ बाप से ही सीखते हैं कि वो आपस में कैसे बातचीत करते हैं, तो इस बात का हम ध्यान दे सकते हैं. समाज के दृष्टिकोण से आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर हम सच में हर व्यक्ति को अपना भाई बहन माने तो हमारे जो सोशल बिहेवियर है उसमें सबसे पहला बदलाव क्या आएगा?
0: सबसे पहला बदलाव ये है कि हम अपने ईगो को साइड में रखेंगे कि मैं इतना बड़ा हूँ, मेरी जो पोस्ट पोजीशन है, मुझे इस दृष्टि से लोग देखें. लेकिन अगर हमने यही सोच लिया कि नहीं ये मेरे भाई बहन है, तो हमारा पोस्ट पोजीशन तो साइड में हो जाता है ना. तो हमारे अंदर निमित्तता आ जाएगी, निर्माणता आ जाएगी. हम जितनी बड़ी पोस्ट पे होंगे उतना ही हम लोगों के साथ में हम्बल रहेंगे, विनम्र रहेंगे.
1: जी.
0: ये चीज दादी जी के अंदर थी. वो इतनी बड़ी संस्था की चीफ होते हुए भी वो ये समझती थी कि ये मेरे बाबा के बच्चे, मेरे भाई है, मेरी बहन है.
1: जी.
0: तो वो कभी इस पोस्ट पोजीशन का अहंकार नहीं होता था कि मैं इतनी बड़ी संस्था की चीफ हूँ तो मेरे हिसाब से लोग चले. वो खुद आगे होकर के लीडर करती थी, लीडिंग पावर थी उनके अंदर. तो जब हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी आती है, लोगों को इंस्पायर करते हैं, तो लोग अपने आप ही जुड़ते चले जाते हैं हमारे साथ.
1: जी बिल्कुल. तो दादी जी के अंदर सच में ये भावना थी. पूरे आबू रोड में अगर आप पूछें जिन्होंने दादी जी को देखा है, उनके अंग संग्रह हैं, तो वो ये बात को ज़रूर आपसे शेयर करेंगे. और आज जब लोग कहते हैं कि मुझे दूसरों से क्या लेना देना, आज की जो लाइफ हो गई है, तो इसमें जो ब्रदरहुड का सोच है, इसका सकारात्मक उत्तर क्या हो सकता है?
0: देखो, अगर दूसरों के साथ में रहना देना नहीं है तो, क्योंकि आज हम सभी क्या है, एक सोशल प्राणी है, सामाजिक प्राणी. हम अकेले रह नहीं सकते, हम एक दूसरे इंटरकनेक्टेड है.
1: जी.
0: जैसे आप इंटरनेट कनेक्शन में जुड़े हुए हैं, सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, अगर एक में वायरस आ गया तो धीरे धीरे दूसरे में भी आएगा.
1: जी.
0: तो अगर हम ये सोच के मुझे क्या मतलब उसकी प्रॉब्लम, वो जाना है, लेकिन हमें आज उसकी प्रॉब्लम कल वो हमारी प्रॉब्लम भी हो सकती है. जैसे हमने देखा 2020 या 2021 में हमने देखा कि जब वो कोरोना आया, अगर हम सोचते कि मुझे उससे क्या प्रॉब्लम है, मुझे उसको ठीक करने की जरूरत नहीं, तो अगर नहीं करेंगे धीरे धीरे वो आप तक भी फैलता जाएगा. वो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखेंगे तो सब पे कनेक्ट हो जाता है. तो आज हमारे अंदर में भी वो चीज़ें हैं, बुराइयाँ अगर वो सामने के अंदर है, उसको आप ठीक नहीं करेंगे, धीरे धीरे वो बुराई आपके अंदर भी प्रवेश करने लग जाएगी.
1: जी.
0: तो और बीमार पड़े, जैसे कहते ना, एक एप्पल अगर सड़ा हुआ तो क्या है, लोगों के संपर्क में आएगा, दूसरों को भी खराब करेगा.
1: जी.
0: तो उसको साइड कर देते. तो यहाँ उसको साइड तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको रिपेयर कर सकते हैं. उसके अंदर ये वीकनेस आई कैसे है, और कैसे हम उसको मोटिवेट करके उसको आगे बढ़ा सकते हैं. समझो कोई व्यक्ति नशा करता है, किसी भी प्रकार का नशा करता है, अब वो नशे के इतना अधीन होगा कि बेचारा कमजोर है, छोड़ नहीं सकता. लेकिन छोड़ने के लिए हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं. कुछ आज जैसे अपने अभियान चल रहा है, नशा मुक्ति अभियान क्यों चल रहा है, हमें क्या मतलब, बहुत लोग पी रहे हैं, लेकिन हमारी संस्था ऐसा बड़ा कार्य क्यों कर रही है, क्योंकि समाज में यह बहुत बड़ी कुरीति है.
1: जी.
0: नशा नाश की जड़ जैसे कहा था. तो व्यक्ति अगर एक नशा करेगा तो वो उसके उसका साथ देख के दूसरे उसके दोस्त भी करने लग जाएंगे, धीरे धीरे उसके बच्चे भी वही सीखेंगे, मतलब पूरा समाज पे दुष्प्रभाव एक पड़ेगा. अगर एक व्यक्ति को हमने ठीक कर लिया तो उसकी वाइफ भी ठीक रहेगी, उसके बच्चे भी ठीक रहेंगे. तो पूरा समाज धीरे धीरे, हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो समाज धीरे धीरे परिवर्तन होता है और होता जाता है. तो हमें उसके साथ में इन्वॉल्व होना जरूरी है उसको ठीक करने के लिए.
1: जी.
0: हम समाज से भाग नहीं सकते क्योंकि समाज का एक अंग है, तो हमें वो जुड़ करके समाज को ठीक करना है.
1: बिल्कुल, कड़ी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है. तो इसीलिए अगर हम खुद ठीक हो जाते हैं और सामने वाले को ठीक करने की कोशिश करते हैं तो फिर समाज भी ठीक होने लगता है. क्या छोटी छोटी एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, जैसे किसी की मदद करना, सुनना, सम्मान देना भी भातृत्व भाव को मजबूत करती है?
0: जरूर मजबूत करती है, क्योंकि यही तो एक हमारा मेन बेस है, संस्था का भी मेन बेस यही है. क्यों हमने इतनी बड़ी संस्था चला रहे हैं, एक दूसरे को सहयोग देने के लिए. आपने देखा हो यहाँ पे मजदूर वर्ग एक कार्य करता है, श्रमिक जो काम करते हैं, हमारे अंदर ये भावनाएं नहीं होती कि ये छोटा व्यक्ति है. हम ये सत्य सब परमात्मा के बच्चे हैं, हम उनको प्यार से चलाते हैं. इसलिए मैंने देखा हो दादी जी के टाइम पे भी हमने देखा बहुत सारे लोग ऐसे वर्कर्स काम यहाँ पे आते थे, और बाहर में भी होटलों में उनको बहुत अच्छी सैलरी मिलती थी, वहां भी बोलते आप हमारे साथ आइए आप यहाँ कर, उससे ज्यादा हम सैलरी आपको देंगे. लेकिन वो वर्कर्स जो थे श्रमिक थे वो छोड़ के नहीं जाते थे. तो मैंने एक से पूछा आप क्यों नहीं जा रहे हो, आपको वहाँ सैलरी अच्छी मिलती है और आपको काम भी मिले. बोला हमें केवल सैलरी नहीं चाहिए, लेकिन सैलरी के साथ जो हमें प्यार चाहिए, प्रेम चाहिए, इज्जत चाहिए, वो यहाँ पे मिलता है. और जो अपनापन चाहिए वो हमें यहाँ मिलता है. ये चीज़ें हमें वहाँ नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ पे हम केवल सैलरी देते हैं, लेकिन सैलरी के साथ साथ हमारे साथ व्यवहार जो करते हैं वो ठीक नहीं होता है. कहीं कर्मचारियों के साथ में या कहीं ऐसे अधिकारी होते हैं वो दुर्व्यवहार करते हैं, उनको अपमानित करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी इज्जत प्यारी होती है. और यहाँ जो उनको इज्जत मिलती, जो अपनापन मिलता है, प्यार मिलता है, तो वो कहते हैं कि हम इस परिवार का एक हिस्सा है, भले हम छोटे हैं लेकिन हमें ये फील होता है कि ये हमारा परिवार है. तो हम अपनी जो सेवाएं, अपना जो कार्य हम दिल से करते हैं. तो छोटा छोटा जो हम दया की भावना दिखाते हैं, एक दूसरे को सहयोग करते हैं, तो उनको लगता है कि ये मेरे अपने हैं, तो मुझे भी इनके लिए कुछ करना चाहिए.
1: जी बिल्कुल, और अच्छी भावना के साथ वो सारे कार्य सुचारू रूप से करते हैं. जी एक सिचुएशनल क्वेश्चन है कि आपके सामने दो लोग आपस में झगड़ रहे हैं, दोनों अपनी बात को सही मान रहे हैं और एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है. जैसे आपने कहा लिसनिंग करना बहुत जरूरी है, तो अगर ब्रदरहुड की भावना के साथ बीच में जाना हो तो क्या करेंगे हम?
0: थोड़े समय के बाद उनको अकेला छोड़ना चाहिए और बाद में फिर दोनों से ही, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अलग अलग रह करके बात करें, प्रॉब्लम कहाँ है. दोनों का मिस कम्युनिकेशन हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकता है. हम सुनी सुनाई बातों पर ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं. जब दोनों को अलग अलग बिठा के हम सुनेंगे और सुनने के बाद फिर हम अपनी बात रखेंगे, तो मुझे विश्वास है कि वो लोग कई बातों पर फिर कन्विंस हो जाते हैं. क्योंकि तो उन्होंने थर्ड पर्सन से बातें सुनी होती है, उसने मेरे लिए ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, वैसा कहा. सच्चाई कुछ और होती है जब तीसरा व्यक्ति जाकर के दोनों की बातें सुनता है और फिर उनको कम्युनिकेट करता है कि आप जो समझ रहे हैं या सुन रहे हैं वो गलत है, उसने ऐसा कभी नहीं कहा आपके बारे में. तब वो उसको रिलाइज होता है कि मैं अभी तक फालतू में उसके बारे में सोच सोच के दुखी हो रहा था, उसने मेरे लिए ऐसा कभी नहीं कहा. तो फिर आदमी मोल्ड हो जाता है.
1: जी ओके, तो फिर आप अपने ब्रदरहुड की भावना के साथ दोनों की बात को अलग अलग सुन के फिर आपको निर्णय लेना है. जैसे आपने कहा कि हम एक एनर्जी है, हम आत्मा है, और दादी जी भी समझती थी कि आत्मा आत्मा भाई भाई है. तो मैं आत्मा हूँ और सामने वाला भी एक आत्मा है. जैसे स्पिरिचुअल अवेयरनेस भी जो भातृत्व भावना है इसे नेचुरली मजबूत कर लेती है. तो चलते फिरते काम करते हुए तो कैसे वो भाव रखे? फिर
0: सिंपली चीज है कि जैसे ये कॉन्शियस है हमारे अंदर, जो हमें फील हो रहा है कि हम आंखों से देख रहे हैं, मुख से बोल रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, ये कोई शक्ति है जो हमें चला रही है. तो इसको ही हमें जागृत रखना है. बाकी तो ये जो चीज़ें हम जब शरीर छोड़ते हैं तो सब बदल जाता है. जैसे सिंपली आजकल हम मोबाइल यूज करते हैं, तो मोबाइल की वैल्यू तब तक है जब तक इसमें सिम पड़ा हुआ है.
1: जी.
0: आप सिम निकाल दो मोबाइल डेड हो जाए, कोई काम का नहीं है, है ना. तो हमारा शरीर भी लाइक एक मोबाइल है, मोबाइल में सिम पड़ा है. सिम मतलब आत्मा है. तो आत्मा में जो तीन शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार, उसी को सिम कहते हैं. मतलब एस मतलब संस्कार, आई मतलब इंटेलेक्ट और एम मतलब माइंड, वो सिम हो गया. तो जब हमारा शरीर धीरे धीरे जब पुराना होता है, हमारी एज बढ़ती है 40 साल 50 साल, तो हम इस शरीर से भी दुखी और परेशान होने लगते हैं. जैसे हमारा मोबाइल खराब होता है तो हम मैकेनिक के पास जाते हैं, ठीक कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कहता भी खराब हो गया, ठीक नहीं हो सकता है. तो हम क्या करते हैं, भाई नया मोबाइल दे दो. अब नया मोबाइल ले लेते हैं और हम इसमें से पुराने मोबाइल से सिम निकाल के नए में डाल देते हैं और अच्छे से वर्क करता है. अब हमारा ये शरीर जब धीरे धीरे खराब हो जाता है तो हम भी भगवान को प्रार्थना करते हैं कि मेरा ये मोबाइल अब खराब हो गया, मैं इससे काम नहीं कर सकता, मुझे चेंज करो. क्योंकि ये अथॉरिटी हमारे पास नहीं है, ये भगवान के पास है. तो भगवान क्या करता है, इस मोबाइल में से सिम निकाल लेता है, यानी आत्मा निकाल लेता है और नए मोबाइल में वो डाल देता है. नया मोबाइल मतलब बच्चे के अंदर डाल देता है,
1: जी
0: ट्रांसफर हो जाता है. इसलिए आपने देखा हो किसी बच्चे को पिछले जन्म की बातें याद रह जाती है ना.
1: जी.
0: जैसे कई बार सिम में कॉन्टेक्ट नंबर चले जाते हैं तो जैसे दूसरे में डालें तो भी वो डिस्प्ले होते हैं.
1: राइट.
0: ऐसे वो बच्चे को पुरानी बातें याद रह जाती है, जबकि उसका शरीर हम जला देते हैं, दफना देते हैं. तो याददाश्त कौन लेके आता है? आत्मा लेके आती है. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एनर्जी है वो इंटरनल एनर्जी, वो पावरफुल है. साइंस में कहा जाता है कि जो जितना होता है वो उतना ही शक्तिशाली होता है, जितना छोटा होता है. तो जब हम परमाणु की बात करते हैं जिसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत छोटे होते हैं लेकिन कितने शक्तिशाली होते हैं. तो ये आत्मा तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन से करोड़ों गुना छोटी चीज है.
1: जी.
0: तो ये जो शरीर में भ्रकुटी के बीच में विद्यमान है ये कितनी पावरफुल होगी। तो जब हम बीच बीच में जब भी टाइम मिलता है हम रियलाइज करते हैं कि मैं शरीर का मालिक हूँ, मैं चैतन्य शक्ति हूँ, तो हमारे अंदर से अपने आप ही शांति के वाइब्रेशन निकलने लगते हैं। हमें कोई करने की जरूरत नहीं होती, अपने आप ही जैसे हम उसमें स्थित होते हैं अपने आप डिटेच हो जाते हैं और हमारा रिलैक्सेशन अपने आप ही शुरू होने लग जाता है।
1: ओके, तो ये बीच बीच में हमें रियलाइज करना है कि हम आत्मा है, तभी हम अपने रिश्तों को और भातृत्व भाव को भी नेचुरली मजबूत कर सकते हैं। जब हम व्यक्ति के रोल या पोजीशन के बजाय उसके इनर आइडेंटिटी को देखते हैं, जैसे आपने कहा, तभी हमारे व्यवहार में भी परिवर्तन आता है वो सामने वाले का।
0: बिल्कुल, यहाँ पे लाखों की संख्या में अपने भाई बहन जुड़े हुए हैं, जैसे ही वो रियलाइज करते हैं कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, उनका गुस्सा शांत होने लग जाता है, उनकी बुरी आदतें छूटने लग जाती है, और साथ ही साथ ये जब उनको रिलाइज होता है कि ना केवल मैं आत्मा हूँ लेकिन मैं देवी कुल की आत्मा हूँ, जब हमें स्मृति आती है कि हम ईश्वर की संतान है। अक्सर आजकल क्या हो रहा है कि हम कहते हैं मैं ईश्वर की संतान हूँ, हम पढ़ते राम की रामायण है, लेकिन अवगुण किसके धारण करते हैं? रावण के, है ना। कभी हमने भगवान को नहीं देखा हुआ कि आज सीता जी को रावण चुरा के ले गया तो वो टेंशन में हो तो भाई एक बोतल पी लें या सिगरेट पी लें या कुछ ऐसा कर ले, कोई व्यसनों का सहारा लिया हो, भले उनके सामने इतनी प्रॉब्लम्स आई हो, हमारे सामने थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है व्यसनों का सहारा लेते हैं
1: जी।
0: तो हम कहते हैं ईश्वर की संतान है, तो हमारे अंदर ईश्वर के गुण आने चाहिए
1: जी।
0: तो जैसे हम परमात्मा के बनते हैं तो हमें ये स्मृति आती है कि हम देवी कुल की आत्मा, भगवान हमें ऊंचा उठाने के लिए आया, तो अपने आप ही वो बुरी आदतें हमारी छूटने लगती है और अच्छे संस्कार हमारे अंदर वो डेवलप होने लग जाते हैं और बुरी आदतें धीरे धीरे दूर होने लग जाती है। ये मेडिटेशन का कमाल है,
1: मेडिटेशन का कमाल है, तो इसे हम रोज थोड़ा थोड़ा करें। तो क्या जो ब्रदरहुड की भावना है ये शुरुआत खुद को बदलने के लिए है, दूसरों को नहीं?
0: नहीं, हम हमेशा यही सोचते हैं कि सामने वाला बदल जाए तो मेरे जीवन में जो समस्याएं ठीक हो जाए, लेकिन हम पूरा जीवन भर यही ट्राई करते रहे ये बदले ये बदले। उसके लिए हम बहुत सारे उपाय लगते हैं, किसी को मारने पीटने के लिए भेज देते हैं या किसी आर्थिक रूप से उसे कमजोर करने के लिए बहुत सारे यत्न करते हैं, परिवार के जो सदस्य हैं उनको हम ठीक करने के लिए पता नहीं हम क्या क्या यत्न करते हैं, लेकिन जब हम अपने आप को बदलने लग जाते हैं कहीं ना कहीं ये भी होता है कि हमारे स्वभाव संस्कार भी के कारण भी सामने वाला दुखी होता है, वो परेशान रहता है लेकिन वो कह नहीं पाता है, अगर कहता भी है तो हम रियलाइज नहीं करते
1: जी
0: कि मेरे अंदर ये कमियां हैं ये कमजोरी है। लेकिन जब हम अपने को पहचानते हैं और हमें महसूस होता है, क्योंकि वो फिल्टर होता है ना, एंटीवायरस जब डालते हैं तो स्कैन करता है कि मेरे अंदर कौन कौन से वायरस है
1: जी,
0: जो मेरी अंदर की फाइलों को करप्ट कर रहा है, तो जब मुझे महसूस होता है कि मेरे अंदर ये कमी है, मैं लोगों के सामने बहुत चुगली करता हूँ, लोगों के मेरे अंदर कोई बात पचती नहीं, मैं इधर की उधर बहुत करता हूँ, मैं मुझे बहुत छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता है, मैं बहुत एग्रेसिव नेचर का हूँ, तो इसके कारण ना ही मेरा बिजनेस चल पा रहा, ना ही मैं फैमिली में अपने बच्चों को टाइम दे पा रहा हूँ, ना ही मैं वाइफ के साथ ठीक से बैठ पा रहा हूँ, क्योंकि अग्रेसिव नेचर होने के कारण लोग मेरे से दूरियां बनाने लग गए और हम ये सोचते हैं कि मेरे पास क्यों नहीं बैठते हूँ। तो जब हमें ये रियलाइज होता है कि नहीं मेरे अंदर भी कुछ कमियां हैं, उसको मुझे चेंज करना पड़ेगा, तो उनपे हम जब काम करने लगते हैं तो जो मेरे से दूर गए लोग वो धीरे धीरे अपने आप ही नजदीक आने लग जाते हैं
1: जी। ओके, बिल्कुल। तो कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन है आपके लिए। भातृत्व भाव जो है, ब्रदरहुड जो है, उसकी एक पहचान,
0: उसकी एक ही पहचान है कि सबसे पहले अपना ईगो को साइड में रखें, कुछ भी हो जाए मेरे अहंकार को मुझे आगे नहीं आने देना, क्योंकि अहंकार के कारण ही बहुत सारी ज्यादातर बातें बिगड़ती है
1: जी।
0: जैसे मैं सिंपल सी बात बता दूं, एक जगह मैं एक प्रोग्राम के लिए जाने वाला था, तो वहां देखा कि वो छोटी सिटी थी पर रोड बहुत छोटे थे, सकड़े रोड थे, उसमें इधर से एक गाड़ी जा सकती थी और एक ही गाड़ी आ सकती, दोनों क्रॉस नहीं कर सकते, तो मैंने देखा इस गाड़ी से एक व्यक्ति गया, सामने से भी एक गाड़ी आ गई, अब वो दोनों आपस में पीछे ले लेना चाहते हैं, ईगो बढ़ गया
1: जी।
0: मैं क्यों पीछे लूं, वो भी सामने वाला सोच मैं क्यों पीछे लूं, उसके पीछे और भी गाड़ियां लग गई और बैठे बैठे हॉर्न मारने लगे, कोई पीछे लेना नहीं चाहता। तो इसमें क्या देखा, इस गाड़ी में जो ड्राइवर बैठा था उसने अखबार निकाला ड्रॉर से और अखबार टांग पे टांग रख के पढ़ने लगा, सामने वाला गाड़ी में से ड्राइवर निकला और उसने आके बोला इसको कि जब तुम अखबार पढ़ लो तो मुझे देना ताकि मुझे भी पढ़ना है, तो 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, आधा घंटा हो, 1 घंटा, कोई पीछे लेना नहीं चाहता, किसी ने पुलिस वाले को फोन कर दिया
1: जी।
0: पुलिस वाला आया और उसको 2-4 तो उसने गालियां दी, धमकाया उसको, अपमानित भी हुआ, आखिर पीछे तो लेना ही पड़ा
1: जी।
0: तो वो ईगो ही था, ईगो के कारण हम वहां बैठे हुए। तो ऐसे हर एक की लाइफ में ऐसा ईगो होता है, आखिर ईगो हमें छोड़ना ही पड़ता चाहे सिचुएशन छुड़ाती है या कोई कानून छुड़ाता है, किसी ना किसी कोई ना कोई व्यक्ति आके हमें आके डरा के धमका के हमें झुकाता जरूर है, लेकिन वो प्रेशर में फिर हमें झुकना पड़ता है। तो क्यों ना हम कोई आके हमें झुकाए, इससे अच्छा हम पहले से ही झुक जाए, पहले से हम ईगो साइड में रख करके हम जाए तो हमारा समय बच जाए, इज्जत भी बच जाए, धन भी बच जाए। तो सबसे मेन आज के टाइम पे हमने देखा ईगो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और ईगो को हमें साइड में रख करके चलेंगे तो भाईचारा अपने आप ही बढ़ता जाएगा,
1: भाईचारा अपने आप ही बढ़ता जाएगा। तो वही भाईचारे को कमजोर करने वाली एक आदत ईगो ही है,
0: ईगो ही है
1: जी। भाईचारे को बढ़ाने वाला एक छोटा व्यवहार क्या है, क्या एक कदम हम उठा सकते हैं?
0: हमें एक दूसरे को सम्मान देना है, उनको सहयोग देना है, उसके बुरे वक्त में हमें काम आना है,
1: रिस्पेक्ट।
0: जब उसके सामने कोई ऐसी परिस्थिति आ गई है, कोई ऐसा चैलेंजेज आ गया, उसको कोई रास्ता नहीं दिख रहा, वहां जाके हम केवल ना, हमारे पास धन भी नहीं है, लेकिन केवल उसके साथ में खड़े होना, उसके पीठ पे हाथ फेरना, उसको थपथपाना कि कोई नहीं मैं बैठा हूँ आपके साथ में, मेरे से जो भी मदद चाहिए मैं करूँगा, तो वो उसको बहुत अच्छी फीलिंग आती है और सिचुएशन अपने आप पार कर लेता है। सिर्फ उसको हिम्मत देने वाला कोई चाहिए
1: जी,
0: साहस देने वाला, शक्ति देने वाला,
1: देने वाला, हिम्मत देने वाला। हाँ। जी, तो कॉन्फ्लिक्ट के समय याद रखने वाला एक विचार जब परिस्थिति सामने हो,
0: उस टाइम ये कि ये भी चला जाएगा,
1: ये भी चला जाएगा जी।
0: जैसे बाबा कहते हैं, हमारे दादियां सिखाते हैं कि नथिंग न्यू, थोड़े समय से की समस्या है वो ठीक हो जाएगी। हमारे जीवन में समस्याएं आई, आपने देखा होगा, आपके सामने भी कोई एक समस्या रही होगी साल भर पहले, और आज उसके बारे में सोचेंगे आपकी, यार इतनी बड़ी कोई समस्या नहीं थी, फालतू में इतना बारे में सोच सोच के मैं टेंशन कर लिया। तो जब समय गुजरता है तो समस्या बहुत छोटी हो जाती है, लेकिन वो सामने समस्या देख के हम उसको सोच सोच के बहुत बड़ा बना लेते हैं, तो टाइम आने पर वो गुजर जाती है।
1: आज ये समय भी चला जाता है।
0: उस टाइम जब कोरोना आया था लोग घबराए, अरे कोरोना हो गया अब क्या करें, अब आज के डेट में सोचेंगे तो अरे वो तो छोटी सी बीमारी थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। तो ये एक ही चीज रहे कि ये समय भी धीरे धीरे गुजर जाएगा, और उस समय को काटने के लिए अगर हम ये मन में रखें मेरे साथ भगवान है, परमात्मा मेरे साथ में, तो मेरा एक कल्याण हो नहीं सकता, क्योंकि कल्याणकारी पिता मेरे साथ है। ये सबसे बड़ी एक पावर है, विल पावर। वर्तमान समय क्या हो गया कि हमारी विल पावर कमजोर हो गई, इसलिए हम सामना नहीं कर पाते। और भगवान से हम हमेशा गीत गाते आए, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना था। अभी वर्तमान समय सबका मन का विश्वास कमजोर हो गया, तो जब परमात्मा से हम जब कनेक्ट होते हैं, भगवान वो हमें शक्ति देता है। जब हमारी मन का विश्वास बढ़ जाता है तो परिस्थिति चाहे कितनी भी बड़ी हो उसको हमें सहज रूप से सामना कर लेते हैं और सहज रूप से पार कर लेते हैं।
1: जी बिल्कुल। तो सोसाइटी में भाईचारे को बढ़ाने के लिए एक प्रैक्टिकल कदम,
0: सहयोग की भावना,
1: सहयोग की भावना। और अंत में अगर हर व्यक्ति ये मेरा अपना है कि भावना से जीने लगे तो समाज कैसा बन जाएगा?
0: जिसके लिए हमने सबने परिकल्पना की, दादियों ने की, हमारे बाबा ने की
1: जी,
0: शिव बाबा ने भी की, कि पूरा समाज ही स्वर्ग बन जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। आज वर्तमान में हम देखते हैं आश्रम को से कहा जाता है, आश्रम उसे कहा जाता है जहाँ सुख मिलता हो, शांति मिलता हो, लेकिन आज गृहस्थ में ये चीजें तो नहीं मिलती। हर घर में लड़ाई है, हर घर में महाभारत, हर घर में रामायण है। तो उस गृहस्थ को आश्रम की तरह बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सन्यासी बनना पड़ेगा। सन्यासी बनने के लिए हमें जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसे जाके पहाड़ों में गुफाओं में जाने की तपस्या करने की जरूरत नहीं है। जो दादी जी ने हमें सिखाया, बाबा ने हमें सिखाया कि आप घर में रहते हुए भी सन्यासी बनो, तो सन्यासी कैसे बनना है कि ये जो बुराइयां हमारे अंदर है, जो बुरे संस्कार है, उनका हमें सन्यास करना है। ना कि चीजों का, ना कि वस्तुओं का। तो गृहस्थ में रहते हुए भी इन बुराइयों का हम सन्यास करेंगे तो गृहस्थ भी वापस फिर आश्रम की तरह बन जाएगा, हम खुद सन्यासी हो जाएंगे। तो परमात्मा का यही संदेश कि जब ऐसा हम अच्छाइयों को धारण करेंगे, ये घर जो है, ये परिवार जो है, ये दुनिया जो है, अपना आप ही स्वर्ग बन जाएगा। स्वर्ग कोई आसमान में नहीं है, स्वर्ग इसी धरती को कहा जाता है। आपने देखा जब गर्मी का मौसम था तो पतझड़ थी, पूरा सुनसान था, पूरा चारों तरफ गर्म हवाएं चलती थी और पूरा रेगिस्तान था, लेकिन जैसे ही बारिश आया अपना आप ही हरियाली हो गई है। तो ये प्रकृति जो है समय के अनुसार अपना आप रूप परिवर्तन कर लेती है। तो जब मई जून का मौसम होता है तो गर्मी होती है, और जब ये जुलाई अगस्त का तो हरियाली होगी, टाइम गुजरता है अपना आप। तो इसी धरती पे पहले स्वर्ग था और इसी धरती पे फिर स्वर्ग आने वाला है। तो नर कोई स्वर्ग कोई आसमान में नहीं है, इसी धरती पे। जब हमारे शब्द बदलते, हमारे विचार बदलते, हमारा व्यवहार बदलता है, तो ये दुनिया, ये समाज अपना आप ही स्वर्ग जैसा हो जाता है।
1: ओके, तो जरूर स्वर्ग यहीं पर है। तो हमें अपने व्यवहार को, अपने संस्कार को बदलना है, परमात्मा को याद करते हुए अपने को आत्मा समझते हुए। जी, तो अंत में क्या मैसेज देना चाहेंगे? अब वक्त हो गया है यहीं से विदा लेने का।
0: मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ, मेरे जीवन का जो अनुभव है, जो यही कहता है कि आप जो भी कारोबार करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, चाहे जॉब करते हैं या फैमिली में रहते हैं, लेकिन आप अपने लिए टाइम निकालिए। जैसे कहते हैं कि दुनिया में अकेले आए थे और अकेले ही जाना है, तो हमारा जो परिवार है ये हमारे साथ में 10-20 साल, 50 साल, 100 साल तक ही रहने वाला है, चाहे मेरे बच्चे हैं, बीवी है, पत्नी है, जो भी है परिवार के सदस्य है, लेकिन जब इस दुनिया में हम आए थे अकेले ही आए थे और जब जाएंगे तो भी अकेले ही जाएंगे। लेकिन दुनिया में ये कहा जाता अकेले आए थे और साथ में कुछ जाना नहीं, लेकिन बाबा ने हमें ये सिखाया, दादियों ने ये सिखाया कि साथ में जरूर हमारे साथ जाता है, वो जाता है हमारी दुआएं, वो जाते हैं हमारे अच्छे संस्कार। जब हम अच्छे संस्कार, अच्छे पुण्य कर्म करके जाते हैं तो हमारे साथ वो जरूर जाते हैं, बाकी जो धन संपत्ति यहाँ के यहीं रह जाती है।

0: तो हम यही कहना चाहेंगे कि आप परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए, आप मेडिटेशन का जरूर अभ्यास करें। जो भी हमारे अंदर कमियां हैं, जो कमजोरियां हैं, तो जैसे जैसे आप मेडिटेशन के अभ्यास को बढ़ाते जाएंगे, वो मेडिटेशन आपकी कमी कमजोरियों को दूर करता जाएगा, अच्छाइयों को अपने आप ही वो रिप्लेस करता जाएगा, अच्छे संस्कार आपके अंदर आते जाएंगे, भाईचारे की जो रियल भावना है वो अपने आप ही जागृत होती जाएगी। तो मेडिटेशन आपको पुश करता है, एक देश से आपको आगे बढ़ाता है कि इस मेडिटेशन से आप अपने जीवन में ना केवल सक्सेस होते हैं, लेकिन मार्केट में एक गुडविल बनती है, समाज में आपके अंदर एक अच्छी दृष्टि से आपको देखा जाए कि ये व्यक्ति बहुत गुणवान है, ज्ञानवान है, संस्कारवान है, और वो उसका एक ही कारण है कि वो मेडिटेशन के बल पर आगे बढ़ता चला जाता है।
1: ओके जी, तो भाईचारे को अगर आगे बढ़ाना है तो मेडिटेशन के जरिए आप भाईचारे के भावना को अपने अंदर ला सकते हैं, उसे पुश कर सकते हैं, आगे भी उसे शेयर कर सकते हैं।
0: मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जब तक जीना है तब तक मेडिटेशन करना है, क्योंकि वैल्यूज कोई डिग्री नहीं है कि आपने एक साल का कोर्स कर लिया तो आपको ये डिग्री मिल गई। हमारे अंदर ये गुस्सा है, ईर्ष्या है, नफरत हमेशा ही भरे रहते हैं। ये वायरस एक्टिव ना हो उसके लिए जैसे हमने एंटीवायरस लिया है, अभी आपने देखा कोरोना के लोगों ने वैक्सीन लिया हुआ है, तो ये भी एक प्रकार की वैक्सीन है। तो वैक्सीन रोज रोज हमें लेनी है ताकि वो जो वायरस है उनका असर हमारे ऊपर कम हो।
1: तो जब तक जीना है तब तक मेडिटेशन करना है, और इस बात पे यहीं पर हम रुकना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के
0: आपका
1: लिए।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आपने बुलाया और मुझे बोलने का चांस दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। तो भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बीके राज सिंह भाई जी, और दादी जी की स्मृति में भी उन्होंने बहुत सारी बातें शेयर की, और साथ ही साथ दादी जी की जो मूल बात, मूल संस्कार, जो भातृत्व भावना भाईचारे की, तो इस विषय को आपने स्पष्ट किया, बहुत सहज तरीके से आपने हमें समझाया, तो बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए।
0: धन्यवाद आपको भी
1: जी। तो यहीं पर रुकना चाहेंगे दोस्तों, फिर मुलाकात होगी अगले कड़ी में, तब तक सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM। ये है कार्यक्रम जीवन रोशनी। नमस्ते।

0: रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोताओं को संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार, नमस्ते, हाय, हेलो। कैसे हैं दोस्तों? आज एक बार फिर से हाजिर हूं आप सबका अपना फेवरेट प्रोग्राम लेकर के, जिसका नाम है हम राही। तो दोस्तों, आज का प्रोग्राम भी मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग होने वाला है हमेशा की तरह। और इस प्रोग्राम के माध्यम से कई बार हम कोशिश करते हैं ना कि जो डे टू डे लाइफ के चैलेंजेस हैं, जो सोसाइटी में जो कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं हमारे दिव्यांग साथियों को, दृष्टिबाधित साथियों को, और खासकर शादी ब्याह के मामले में कितना सपोर्ट होता है, नहीं होता है, क्या वो कैसे उस पर जो है आगे बढ़ते हैं, ये सब हम बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज के हमारे जो मेहमान हैं वो ये सब काम पिछले कई सालों से कर रहे हैं। और इनफैक्ट अगर आप लोगों को याद हो श्रोताओं, तो एक शो आया करता था सत्यमेव जयते, जिसको मशहूर अभिनेता आमिर खान साहब होस्ट किया करते थे। तो उस शो पर भी आज के हमारे मेहमान आ चुके हैं। और इसके अलावा केवल इतना ही नहीं है, अभी तो अब मैं बोलूंगा तो पूरा प्रोग्राम उनकी जो अचीवमेंट्स है उसको बताने में ही निकल जाएगा, लेकिन आज हम उनसे खुद से भी सुनेंगे। वो दो दो कंपनीज के फाउंडर हैं, CTO चीफ टेक्निकल ऑफिसर हैं, और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि भारत के पहले IT प्रोफेशनल हैं आज के हमारे मेहमान। तो चलिए, आप में से बहुत लोग शायद नहीं जानते होंगे और कुछ लोग जो है वो जानते होंगे। आज हमारे बीच में श्रीमान कृष्णकांत माने जी और उनकी श्रीमती जी प्राजक्ता जी मुंबई महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं। तो कृष्णकांत सर और प्राजक्ता मैम, आप दोनों का हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: शुक्रिया।
2: शुक्रिया, और हमें भी बुलाने के लिए बहुत शुक्रिया। तारीफ और तारुफ दोनों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: क्या बात है सर, तारीफ और तारुफ तो मुझे लगता है हमने कुछ किया ही नहीं है अभी तो। अब मैं चाहूंगा कि हमारे श्रोताओं के लिए कृष्णकांत सर आप खुद जो है अगर बताएंगे आपकी जर्नी, आपकी डिसेबिलिटी, आपकी अचीवमेंट्स, तो शायद अच्छा लगेगा।
2: अच्छा, तो शुरुआत में एक चीज मैं बताना चाहूंगा
0: जी।
2: और ये मतलब मैं बहुत जगह पे कई प्लेटफॉर्म्स पे बता रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके द्वारा भी ये सही जगह पे पहुंचेगा। सबसे बड़ा जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना, वो ये एक शब्द से हो रहा है जिसे कहते हैं दिव्यांग।
0: जी जी जी।
2: हमारे पास कोई दिव्यांग नहीं है, हम सुपरमैन नहीं, ना मैं उड़ सकता हूँ, ना मैं डूब के पानी में रह सकता हूँ, ना कुछ कर सकता हूँ।
0: बिल्कुल।
2: तो मतलब मैं मेरे अचीवमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में ये बता रहा हूँ, कोई भी जो विकलांग व्यक्ति है, देखो हर इंसान में कुछ तो विकलांगता होती है।
0: जी।
2: तो मैं ब्लाइंड के बारे में हमेशा ये कहता हूँ कि ब्लाइंड पर्सन कैन बी अ साइंटिस्ट, ही कैन बी अ लॉयर, ही कैन बी अ थीफ,

0: ये पापी सब लोग होते हैं।
1: एग्जैक्टली
0: रही बात मेरी तो मैं पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, आई एम एन आईटी प्रोफेशनल। मेरे से पहले कुछ लोग ओल्ड टेक्नोलॉजीज पे प्रोग्रामिंग किया करते थे, जैसे फॉक्स प्रो डिवाइस वगैरह बहुत पुरानी टेक्नोलॉजीज है, बल्कि मैंने उन जैसे लोगों से ही थोड़ा इंस्पिरेशन लिया है, जैसे हरीश कोटियन भाई है और बहुत लोग हैं थोड़े फोर। बट एज अ कंप्लीट ब्लाइंड आईटी प्रोफेशनल मैं पहला ही निकला देश में जो फ्रंट एंड बैक एंड उसकी पूरी कोऑर्डिनेशन सिस्टम आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर के डिजाइन बनाने से लेके सब कुछ करना, जिसे आईटी प्रोफेशनलिज्म कहते हैं ना, आईटी प्रोफेशनल, तो वैसे मैं पहला था। और उसके बाद मैंने ऑफ कोर्स मेरा ग्रेजुएशन पहले मैंने इकोनॉमिक्स में किया, चूंकि कभी पॉसिबल नहीं था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना, लेकिन उसके बाद जब फैसिलिटीज आई तो मुंबई यूनिवर्सिटी ने बाकी सब अरेंजमेंट करके, और फिर ऑब्वियसली बाद में सब कुछ हुआ। एंड देन मैं कई जगह पे पहले जॉब भी कर चुका हूँ, यहाँ तक कि आईआईटी में भी था, उसके बाद होमी बाबा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन में मैंने काम किया, ऐसे बहुत जगह पे। और फिर उसके बाद मेरी खुद की फाउंडेशन भी है, डिजिटल फ्रीडम फाउंडेशन। और अभी जो सबसे लेटेस्ट बात है वो है कि मैं एक बुकमैटिक प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है जिसमें हम लोग फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सर्विसेज देते हैं। और अभी अभी मैंने एक मेंटोर प्राइस करके कंपनी चालू किया। मेंटोर प्राइस इज मेंटोरिंग यू टू गेट एंटरप्राइज रेडी, जो आजकल के जो फ्रेश ग्रेजुएट्स आईटी फील्ड से निकलते हैं या जो अभी एग्जिस्टिंग है लेकिन उनको अभी जॉब चेंज है या नया प्रोजेक्ट शुरू करना है, तो उन लोग को वेयर टू स्टार्ट, हाउ टू गेट, मतलब खुद का पूरा ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लोग कोर्सेज चलाते हैं। और हम लोग सिर्फ सिखाते नहीं, हम लोग वी मेंटोर देम, तो इसलिए हम लोग ने इसका नाम रखा मेंटोर प्राइस। तो हाँ यही है बस मेरे बारे में।
1: क्या बात है सर, ये तो मुझे लगता है अभी भी इसमें भी बहुत कुछ तो रह गया होगा। क्या बात है। तो आप विजुअली इंपेयर्ड बाय बर्थ हैं सर या बाद में हैं?
0: हाँ एक्चुअली मैं जब मतलब पैदा हुआ तब मेरे अंदर थोड़ी दृष्टि थी, कुछ 5-10% विजन था।
1: okay.
0: तो कुछ तो मेरे माँ की प्रेगनेंसी में कुछ एक्सीडेंटल प्रॉब्लम्स हुए थे जिसके वजह से रेटिना पे मेरे इफेक्ट हुआ। उसके बाद डॉक्टर ने बता ही दिया था कि जैसे 3-4 साल के हो जाएंगे ओबेसिटी बढ़ेगी तो रेटिना पूरा चला जाएगा।
1: ओके
0: okay. तो वैसे ही हुआ। So after that, I lost eyesight, but I developed my own vision.
1: Good. थोड़ा सा सर अपने family background के बारे में भी please बताएं हमारे सुनने वाले।
0: I come from a middle class background, मतलब काफी मध्यम वर्गीय family थी। मेरे पिताजी Siemens में काम करते थे, X-ray department के अंदर।
1: Okay.
0: मेरी माँ she's a homemaker, मतलब वो घर पे ही रहती थी। मेरी एक बहन है जो dietitian है, मतलब जो आहार तज्ञ जिसे कहते हैं।
1: Yes.
0: तो उन्होंने जसलोक हॉस्पिटल से VRS ली है। वो खुद ही प्रैक्टिस करती है और बस, और मतलब वही ऐसे ही घर था हमारा, साधारण घर था, बस वो हम दो हमारे दो वाला। हाँ, I come from a very very very modest background.
1: Good, very nice. तो आपकी एजुकेशन वगैरह कौन से स्कूल से हुई सर?
0: हाँ ये भी एक बात है कि मेरे माँ और पिताजी का ये मानना था, मेरी बहन मेरे से 3 साल बड़ी है
1: जी।
0: तो जो स्कूल में वो पढ़ती है बिकॉज शी साइटेड, तो उनको लगता था उनका बेटा भी उसी स्कूल में पढ़ना चाहिए, तो काफी मतलब उसके लिए मशक्कत करनी पड़ी। और तभी ये इंक्लूसिव एजुकेशन इंटीग्रेशन वगैरह कुछ नहीं था, मेरे टाइम पे ऐसा कुछ था ही नहीं
1: जी।
0: उसके बावजूद भी कोशिश करके आखिर इंग्लिश मीडियम किंग जॉर्ज करके एक स्कूल है दादर में जो इंडियन एजुकेशन सोसाइटी के अंदर आती है, उनको कन्विंस करके बतौर एक्सपेरिमेंटल केस मुझे उन्होंने जूनियर केजी में ले लिया, लेकिन वो तुरंत ही एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया। क्योंकि मैं तो बच्चा था, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी कुछ लोग कहते कि तभी कुछ बहुत लोग कहते थे कि आपका बेटा बहुत ब्रिलियंट है, वो कर पाएगा करके। तो फिर उसके बाद आगे ये हो पाया। तो मैं साइटेड स्कूल में ही था, मतलब मैं कभी ब्लाइंड स्कूल गया नहीं, तो इंग्लिश मीडियम किंग जॉर्ज हाई स्कूल में था।
1: अच्छा, आप हमेशा मतलब जो है साइटेड बच्चों के साथ ही आपने एजुकेशन?
0: हां हां बिल्कुल।
1: ओके ग्रेट। चलिए तो अब थोड़ा सा प्राजक्ता मैम से भी बात कर ली जाए। मैम आप भी अपने बारे में बताएं, और आप तो मतलब जो है साइटेड है, तो आप भी अपनी थोड़ी सी जर्नी बताएं।
2: वैसे मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ।
1: यस मैम।
2: भी मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट की है, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मैंने 6 साल मैंने कंपनीज में काम किया है अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे, और अभी हम दोनों दो कंपनी के को-फाउंडर्स हैं, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एडुटेक।
1: तो गुड, क्या बात है। और कब से जानती है मैम आप कृष्ण सर को?
2: वैसे तो मैं बहुत, आई थिंक 2010 या 11 से मैं जानती हूँ उनको सुपर एडॉल करके एक बड़ा अवार्ड होता है, आईबीएन नेटवर्क से।
0: हाँ, आईबीएन नेटवर्क का सुपर यंग यंग टेक्नोलॉजी अचीवर्स जो होते

0: जो डिसेबल्ड भी होते हैं या उन्होंने कुछ टेक्नोलॉजी के अलावा कुछ अगर अच्छा किया तो उनको अवार्ड दिया जाता है आईबीएन नेटवर्क की तरफ से।
1: तो तभी से मैं इनको पहचानती हूँ। उसके बाद उनके बहुत सारे टीवी प्रोग्राम्स आते थे तो मैं पहचानती थी उनको। फिर वो एक दिन मेरे कॉलेज में आए थे ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी के बारे में लेक्चर देने। तभी मैंने तभी ज्यादा जानकारी हुई उनके साथ। फिर हम दोनों ने बातें करना शुरू किया फेसबुक पे। उसके बाद जैसे मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई तो वैसे हम लोग बहुत टेक्नोलॉजी, सामाजिक कुछ प्रश्न और ऐसे ही म्यूजिक के बारे में बहुत बातें करते थे। तो जैसे मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई तो मैंने इनको पूछा था कि अभी मैं आके क्या करूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कौन से टेक्नोलॉजी में जाऊँ, मैं डेवलपर बनूँ, टेस्टर बनूँ या सर्वर साइड पे काम करूँ। तभी उन्होंने मुझे ऑफर किया था उनके कंपनी में काम करने के लिए, तो मैं एज अ इंटर्न मैंने ज्वाइन किया था। तभी से बहुत हमारी फिर हम बहुत एक दूसरे को मिलते थे, रोज मिलते थे, रोज बातें होती थी, तो उससे प्यार बढ़ गया।
2: क्या बात है। लेकिन मतलब पहली बार कब आया दिल में कि मतलब ही कैन बी माय लाइफ पार्टनर, ये कब पहली बार आपके दिमाग में आया?
1: वैसे पहली बार मैं ऐसा कुछ पता नहीं मुझे कैसा कुछ टाइम है या वो हम लोग जैसे भी पहले से भी बहुत बातें करते थे जब मैं कॉलेज में थी। तो बहुत टेक्नोलॉजी के ऊपर तो वो होता ही था लेकिन बाकी बहुत सारी चीजों पे बातें होती थी हमारी। और जैसे मैंने ज्वाइन किया था तो और ज्यादा नजदीक मतलब पर्सनली बातें होती थी। उसमें से हम लोग को पता चला कि हमारे छंद, हमारे जो विचार है, हमारा हमारी खुशियां सारी एक ही है। मतलब बहुत ही हम लोग बहुत सिमिलर विचार करते हैं। तो ऐसा कर करके फिर पता चला कि अरे हम एक दूसरे के लिए बने हैं। फिर
0: हाँ, दैट इज द राइट वर्ड, हम एक दूसरे के लिए बने हैं, काइंड ऑफ जिसे सोलमेट्स कहते हैं ना। क्योंकि कोइंसिडेंटली आपको बताऊं, हमारे बचपन की शरारतें भी एक जैसी है, हम लोग को मालूम ही नहीं था ये। मतलब आई कुडंट इवन इमेजिन इन माय ड्रीम्स कि हम लोग वही चीजें के लिए पनिश किए जाते थे हम लोग हमारे घर पे, जो सेम सेम है। भी चोरी अंगूर खाया करती थी और मैं भी चोरी करके बहुत ज्यादा अंगूर खाया करता था, हमको डांट पड़ती
2: थी।
0: उसे भी क्लासिकल में मुझे भी पसंद है, वो भी पूरी टेक सेवी थी, मैं भी टेक सेवी था, और हमारे जो सोशल इसके तरफ देखने का पॉइंट ऑफ व्यू है वो बिल्कुल सेम था। तो आई थिंक इट वॉज अ नेचुरल प्रोसेस की वो मतलब मैं ये कह सकता हूँ हम लोग में प्यार नहीं होता तो ताजुब था ऐसा, मतलब इतने हम लोग ऐसे।
2: क्या बात,
1: हम लोग नहीं तो कौन
2: तो वो भी कहीं ना कहीं आपका इनके कॉलेज में जाना भी इसीलिए हुआ कि आप लोग जो थोड़ा सा एक जो डिस्टेंस था ना वो भी खत्म हो जाए।
0: उसके लिए शायद हुआ होगा वो, बिकॉज़ उसके बाद तो हम लोग की बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप हो गई। मतलब दूसरे तीसरे ही दिन उसने मुझे बोला कि अरे आप वही बातें करते हो जो मैं हमेशा सोचती हूँ, तो कितनी अच्छी बात है करते।
2: क्या बात है। लेकिन प्राजक्ता मैम, कभी कोई आपको बैरियर नहीं लगा जो जो मतलब आम सोसाइटी में जो बातें होती हैं दरअसल वीआई को लेकर के, आपको कभी नहीं लगा ऐसा कुछ भी?
1: बैरियर का आप अगर बोलोगे तो आपको पता है मैं साइटेड हूँ,
2: राइट?
1: ओके, मैं मतलब मेरे पूरे मतलब इतने साल में मैंने किसी विजुअली इम्पेयर्ड आदमी से या औरत से मैंने कभी
2: बात नहीं की,
1: मतलब कुछ ऐसा इंटरेक्शन हुआ ही नहीं।
2: जी
1: हाँ, अलावा कृष्णकांत सर
2: जी।
1: तो जब ही मैंने जैसे ज्वाइन किया इंटर्नशिप, ओके, तो तभी मुझे कुछ कुछ एक्सेसिबिलिटी होती है, तो वो मुझे कुछ कुछ मतलब मुझे नहीं पता थी, ओके, कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, लेकिन वो यूजुअली हो जाता है। जैसे कि अगर मैं कुछ चीजें दिखा रही हूँ तो थोड़ी सी एक्सप्लेन करना, अगर हम लोग एक साथ चल रहे हैं तो अगर कोई मोड़ आया तो उनको बताना। तो इट्स नॉट समथिंग डिफरेंट कि नहीं आपको अगर साइटेड में और वीआर में कुछ फर्क लगे तो वो वैसे कुछ हुई बैरियर ऐसा नहीं लगा था, लेकिन यस कुछ चीजें मुझे थोड़ी सी सीखनी तो पड़ी, लेकिन फिर ऐसे कोई इंटरेक्शन हुआ नहीं था।
2: आपने वो चीजें सीखने के लिए खुद को कैसे प्रिपेयर किया एक्चुअली?
1: सीखने के लिए खुद को प्रिपेयर किया मतलब कैसे होता था कि हम दोनों एक साथ काम करते थे, ओके, तो कभी कभी ऐसे होता था कि ये स्क्रीन रीडर ऑन करते थे तो मैं देखती थी ये कैसे काम कर रहे, तो मेरा ऑब्जर्वेशन अच्छा था।
2: ओके,
1: उसके बाद हम लोग मीटिंग्स के लिए एक साथ जाते थे, वर्कशॉप्स के लिए एक साथ जाते थे, तो कैसे बताना है, कभी बताना है। तो और हम लोग में, हम दोनों में एक ऐसा हुआ था कि हम दोनों में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हो गया था तभी से। तो उनको पता ही चलता है जैसे कि अगर मैं थक गई हूँ तो मैंने कुछ फटक से नहीं बोल दिया तो उनको पता चलता है कि नहीं आगे जाके हम लोग को उतरना है या चढ़ना है। तो एक अच्छा सा कोऑर्डिनेशन तो हम दोनों में बना।
2: क्या बात है।
1: मतलब मैं कहना चाहती हूँ, मतलब बहुत अभी इसके पहले भी एक इंटरव्यू हुआ था तभी भी मुझे मतलब बोलना था कि एक्सेसिबिलिटी एक्सेसिबिलिटी ऐसा कुछ अलग कुछ नहीं होता। जैसे कि अभी हमारी मदर टंग है मराठी, आप हिंदी में बात करें और अभी ये प्रोग्राम हम लोग को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना है तो हम लोग को मतलब जारी सा है कि हम लोग को हिंदी में ही बात करें।
2: राइट।
1: तो दिस इज आल्सो एक्सेसिबिलिटी फॉर समवन।
2: एग्जैक्टली।
1: अभी मैंने आपको मतलब ऐसा कहा देखो वहाँ पे कुछ तो है ऐसा बोल के किसी को कुछ नहीं समझ में आने वाला, वो साइटेड है, डम है या कोई भी है। तभी आपको थोड़ा सा प्रिसाइज होना है, देखो वहाँ पे मैंने बॉटल रखी है, तो ऐसा कुछ अलग कुछ नहीं होता है। यू हैव टू जस्ट बी प्रिसाइज।
2: गुड, दैट्स वेरी नाइस। केके सर।
0: हाँ बोलिए।
2: मैम ने तो बताया अपने एक्सपीरियंस के बारे में कि आप दोनों मेड फॉर ईच अदर थे, लेकिन आपके आपका तो इतनी मतलब एक्सपीरियंसेस रहे हैं, आपने बहुत जगह मेंटरशिप भी की है, सेमिनार्स भी लिए हैं, इतने लोगों के साथ काम किया है, तो आपके लाइफ में तो बहुत से लोग आए होंगे।
0: लाइफ में बहुत सारे लोग आते हैं, सही बात है, और आते रहेंगे और आते भी थे, लेकिन कैसा होता है ना कि
2: डिसाइड करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल रहा होगा ना प्राजक्ता मैम के लिए कि नहीं रहा।
0: डिसाइड करना उनके लिए मुश्किल होता है जिनको खुद को नहीं पता रहता है कि उनको क्या चाहिए। तो ऐसा होता है ना कि अपने को मालूम रहता है कि लाइक एज यू राइटली सेड एक्सपीरियंसेस पास्ट एक्सपीरियंसेस एवरीथिंग, हमारा एक माइंडसेट बना रहता है और हमें मालूम रहता है कि व्हाट वी एक्सपेक्ट इन अ लाइफ पार्टनर।
2: जी।
0: और कई बार ऐसे हो जाता है कि मतलब कई लोगों को ढूंढना पड़ता है, लेकिन कई लोगों के अपने आप ऐसे जैसे जिग्सॉ पजल का एक पीस दूसरे पीस से अट्रैक्ट हो जाता है। तो हमको पता है पहले ही अपने दिमाग में ये इमेज बनी रहती है कि अपने को ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए या यू नो माय वाइफ शुड बी लाइक दिस। ओके, जनरल एक व्यू रहता है एंड होता है कि कुछ चीजें मिल जाती है कुछ चीजें नहीं मिलती है, लेकिन हमारे बारे में ऐसा हुआ कि ऑलमोस्ट जैसा मैंने सोचा था। लाइक द मोर आई स्पेंड टाइम विद हर, जितना ज्यादा हम टाइम बिताते थे और हम लोग मतलब वो इंटर्न थी तो हम लोग कोडिंग एक साथ प्रोग्रामिंग एक साथ करते थे, तो प्रोग्रामिंग करना कम और गप्पे बहुत मारते थे हम लोग। वो इतनी ब्रिलियंट थी और इतनी ब्रिलियंट है कि जो आम आदमी 4 घंटे में काम करेगा वो 1 घंटे में 1.5 घंटे में कर देती थी। तो
2: क्या बात है, वाह।
0: एंड बिकेम एन एडवांटेज कि चलो बचे हुए टाइम में हम लोग गप्पे मारेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम है नहीं। और उसमें भी हम लोग बहुत ज्यादा अच्छी बातें करते थे, ट्रैवलिंग का हम लोग दोनों को शौक है, पहाड़ों पर समंदर का शौक है, तो सारी बातें आती थी, सारी की सारी बातें। और चीज जो फाइनली मतलब मेरे दिमाग में आई, कैसा होता है कि रिलेशन में जितना खुश रहना होता है उतना ही जरूरी होता है खुश अपने लाइफ पार्टनर को देखना।
2: राइट।
0: कई ऐसी छोटी मोटी इंसिडेंट्स हुई जिसके वजह से मुझे ये महसूस हुआ कि मेरे साथ रहती है तो बहुत मुअत्तर होती है, बहुत खुश होती है वो। इसमें मेरे जबान पे उर्दू के शब्द आ जाते हैं क्योंकि मैं लिखता भी हूँ उर्दू में, इसलिए तो।
2: अरे वाह, बहुत खूब, बहुत।
0: तो ऐसा हुआ कि मिसाल के तौर पर एक बार उसको कुछ बुखार वगैरह कुछ था एंड शी वाज सिटिंग होम। मुझे मालूम है इसको हारमोनियम वगैरह बहुत पसंद है, क्लासिकल म्यूजिक पसंद है, तो एक अच्छा बुक मेरे पास था जिसमें पूरा हारमोनियम के बेसिक्स और उसको किस तरह से बजाना है, किस तरह उसको ट्रीट करना है। तो मैंने उसको वो बुक भेजा एंड सडनली शी फेल्ट सो नाइस सो वेल, जहाँ तक कि उसकी माँ ने भी उसको पूछा, रे क्या हो गया, तू तो ऐसे मतलब थोड़ी मुरझाई हुई लग रही थी, एकदम खिल कैसे गई। तो मतलब ये एक मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे कुछ एग्जाम्पल से मुझे मालूम पड़ा कि सिर्फ मैं खुश हूँ नहीं, मैं उसको खुश देख भी पा रहा हूँ मेरे वजह से। तो अगर मेरे वजह से इतनी खुश हो रही जितने उसके वजह से मैं हो रहा हूँ, तो मतलब वो फिर धीरे धीरे धीरे धीरे वो ऐसा एक पॉइंट आ गया कि लाइक हमको मालूम ही पड़ गया कि लाइक हम लोग शादी करेंगे, मतलब मालूम ही पड़ गया।
2: ग्रेट। अच्छा सर, आपने भी कहा आप लिखते भी हैं, तो मैम के लिए क्या लिखा आपने, बताओ।
0: वो आई थिंक मैम आपको बताए क्या क्या लिखा या क्या क्या लिखा है।
2: आप बताइए जरा मैम। चलिए
0: मैम बताइए।
1: मैं मेरे फैमिली के साथ केरला घूमने गई थी।
2: ओके।
1: और हम लोग मतलब उतना बात नहीं कर रहे थे तभी।
2: ओके।
1: इश्यूज थे तो थोड़ा सा मतलब होता है तारे मुझे इनसे बात करनी है, लेकिन होता है ना वो स्टार्टिंग के फेज में कि आपको बहुत अच्छा लगता है, वो प्यार का पहला नशा वाला,
0: बराबर
1: वैसा ही सेम
2: क्या बात है, बिल्कुल वो पहला एहसास।
1: यस यस यस। तो तभी एक मतलब 10 दिन के बाद में आ गई, तो इन्होंने मुझे एक उनकी लिखी हुई डायरी दे दी, मतलब उन्होंने कुछ
0: चुनिंदा गजलें और कविताएं।
1: हाँ, गजलें और कविताएं तो उन्होंने अभी तक जो लिखी थी उनकी एक बुक बनाई है उन्होंने, मतलब
2: ग्रेट क्या बात।
1: हाँ, उन्होंने मेरे लिए एक डायरी में लिखी, अभिजीत नाम है उनका। उन्होंने मेरे लिए डायरी में लिखी थी और वो मुझे वो पारिजात करके वो बुक का टाइटल है, जो मेरा नाम है प्राचा।
2: क्या बात है, वाह।
1: तो उन्होंने मुझे वो गिफ्ट दी है, तो अभी और हम लोग उसमें ऐड कर रहे पोएम्स एंड गजल्स, तो अभी कुछ सालों में हम लोग उसको,
0: मतलब हुआ ये था कि वो बुक तो उसको मिला था, लेकिन उसके पहले भी, उसके पिछले ही दिन जब वो वापस आ रही थी केरला से, मैं कोंकण में था, ये कोंकण रेलवे केरला से कोंकण होते हुए मुंबई आती है,
2: yes.
0: तो मैं वहां पे कोंकण में था मेरे एक दोस्त के घर पे, एंड आई सरप्राइज मैं उसके ट्रेन में चढ़ गया बीच में।
2: ओ क्या बात है, वाह, व्हाट अ कोइंसिडेंट, अरे गजब। हां, फिर
0: तो फिर आने के बाद मैंने वो बुक उसको गिफ्ट की, एंड उस दिन पहली बार मैंने, मतलब खुशी के आंसू क्या होते हैं वो मैंने पहली बार देखे हुए।
2: वाह क्या बात है। तो इतनी सारी आपने जो पोएट्री की है, जो मैम को सबसे ज्यादा पसंद हो, कोई दो लाइनें अगर याद आ रही हो अभी।
1: बहुत अच्छी अच्छी कविताएं
0: मैंने एक्चुअली बहुत सारी कविताएं लिखी है, उसको शायद मेरी मशवरा करके एक कविता थी जो उसको पसंद आई थी, कि हर वक्त हर सवाल का जवाब देना लाजिम नहीं होता, मोहब्बत के कारोबार को का हिसाब देना लाजिम नहीं होता, होता नहीं दोस्ताना हर फूल इस्तकबाल का, हर गुलाब के बदले गुलाब देना लाजिम नहीं होता। ये माना कि मेहमान नवाजी तहजीब तो है, लेकिन हर महफिल में मेहमान को शराब देना लाजिम नहीं होता।
2: वाह वाह क्या बात।
0: खुदा है इस जहान में तो जानता है निसार, निसार ये मेरा तखल्लुस है, और खुदा है इस जहान में तो वो भी जानता है निसार, कि हर शब को महताब देना लाजिम नहीं होता। सो हर नाइट जो मून वाली नाइट है वही ब्यूटीफुल है, जरूरी नहीं मूनलेस नाइट भी उतनी।
2: यस यस यस क्या बात, वाह। अच्छा कृष्ण सर, एक क्वेश्चन मैं सबसे पूछता हूँ, ऑलमोस्ट पूछता हूँ, पहला प्रपोज किसने किया?
0: अरे बाप,
1: उसके भी कहानी है।
2: और मुझे मैम की हंसी से पता लग गया कि वाकई में कोई कहानी है।
0: बहुत बहुत बहुत ही, मतलब अभी लोग बोलेंगे यार ये फिल्म की कहानी बता रहे हैं, रियल लाइफ की कहानी बता रहे हैं। ये था
2: जी,
0: और इसलिए जानबूझ के मैंने वो कविता, वो उसमें भी एक कविता इन्वॉल्व है, मैंने वो नहीं कही
2: जी,
0: मतलब बस वो उसके लिए ही है, ऐसा है।
2: आपको लग रहा था ये क्वेश्चन आएगा ही जी।
0: क्या हुआ था कि मैंने कहा ना कि जैसे जैसे जितना बात करते गए हम उतने अट्रैक्ट होते गए बात करते, और हमको मालूम पड़ गया एक टाइम पे कि बस मतलब ये है, सही बात है। एंड मैं बहुत देर से मुंतजर था कि ये इजहार करेगी करके, हर रात को बात करता था उनके साथ, जब बात करने के बाद एक ब्यूटी एंड द बीस्ट करके एक फेरी टेल थिएटर में एक मूवी लगती थी बचपन में
2: जी,
0: तो उसमें बीस्ट रहता है और वो ब्यूटी को हर बार पूछता है डू यू लव मी विल यू मैरी, तो मतलब एक्चुअली रियलिटी में जिस दिन वो यस बोलती है
2: वो बीस्ट ब्यूटी में बदल जाता है,
0: वो बदल जाता है, वो रात कुमार बनता है। तो वैसे ना हर नाइट में चैट हम लोग बात करते थे, मैं एंड में इसको पूछता था डू यू लव मी विल यू मैरी मी, तो वो हर लैंग्वेज में मुझे यस बोलती थी।
2: अच्छा,
0: फन मजाक मजाक में चलता था, लेकिन आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कभी तो ये हो, और मैं कोशिश कर रहा था। तो शी यूज्ड टू से नहीं नहीं नहीं मैं बोलूंगी कभी तो बताऊंगी मेरे मन में क्या, लेकिन सस्पेंस है करके। तो एक कुछ तो अराउंड ठीक एक हफ्ते पहले वो सस्पेंस मैंने क्रैक कर दिया, मतलब उसने ज्यादा हिंट, जरूरत से ज्यादा हिंट दे दी। उसका बर्थडे होता है 26 दिसंबर को,
2: ओके,
0: तो उस दिन ये होने वाला था ये मुझे मालूम पड़ गया। तो एक अच्छा बंगलो मैंने रिसोर्ट बुक करके रख दिया पूरा का पूरा।
2: वाह,
0: तो मेरे फ्रेंड्स के मदद से, अभिजीत जो बताया वो मेरा कलीग भी है और मेरे साथ रूममेट था, वो केरला से था, तो हम लोग ने जाके गुपचुप वो सब बुक कर लिया, और ट्रेन से आते आते आई रोट अ पोयम, मैंने लिख दी, कार्ड है अभी भी उसके पास वो। तो हुआ ये कि अभिजीत वॉज स्माइलिंग, मतलब वो हंस रहा था जब मैंने उसको वो कविता दी, और बोला ये कार्ड पे लिखना और मेरे लिए कुछ गुलाब लेते आना था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या माजरा क्या है करके। हुआ ये कि 26 तारीख को जब मतलब शाम को जब वो प्रोग्राम हुआ, काइंड ऑफ एंगेजमेंट का ही एक तरह से प्रोग्राम बोल सकते हैं, प्रपोजल का पूरा एंगेजमेंट ही था हमारा, वो एक तरह से पूरे उसके बर्थडे के दिन प्लान था। तो मैंने उसको वो कार्ड और वो पोएम गिफ्ट किए और गुलाब गिफ्ट किए, उसके बदले में मालूम है मैम ने क्या किया
2: जी?
0: ऐसा कोइंसिडेंस था, मैम ने भी एक पोएम लिखी थी, वो भी गुलाब और कार्ड लिखे। ये दोनों की चीजें मेरे दोस्त को पता थी जो ऑर्गेनाइज करा था, बेचारा उसकी हालत खराब की, अभी मैं क्या बोलूं। ये मामले में भी ये लोग दोनों एकदम सेम है कि दोनों को भी नहीं मालूम एक दूसरे ने एक दूसरे के लिए पोएम लिख रखी है
2: क्या। और मैम को रिजॉर्ट वाली बात पता थी?
0: नहीं नहीं, पूरा सरप्राइज।
1: क्या बोलते, क्वालिटी है सरप्राइजेस देना।
2: क्या बात है, कभी शौक तो नहीं लगा सरप्राइजेस से?
1: शौक नहीं लगा, क्योंकि मुझे पहले इससे पता चला कि ये बहुत अच्छे अच्छे से अलग अलग से सरप्राइज देते हैं, कि कुछ ना कुछ अच्छा तो होने ही वाला है।
2: क्या बात है, मतलब एक तरह से पता तो आप दोनों को ही था कि होने वाला क्या है, लेकिन बस वो है कि पहले आप वाला मामला था,
0: फॉर्मलाइज करना था।
2: प्राजक्ता मैम, आपकी फैमिली के लिए थोड़ी इतना इजी रहा होगा ये सब?
1: बिल्कुल भी नहीं।
2: बताइए जरा क्या कहानी रही वो जब उन्हें पहली बार पता चला?
1: पहले दिन से ही नकार थी वो, उनको मतलब पहचानते हैं, बहुत अच्छे से पहचानते हैं, उनकी कामगिरी के बारे में पहचानते हैं उनके काम, और उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं जो वो काम करते हैं उसके बारे में, जैसे वो इंसान है उसके बारे में। लेकिन उनको नहीं एक्सेप्ट हुआ रहा हमारा मैरिज।
2: ओके,
1: वही था कि
2: क्या बोलते थे वो,
1: मतलब वो ये कि आप मतलब एक्चुअली वो लोग जो बोलते थे उसका सारा चीज हम लोग करते हैं अभी, तो अभी कैसे बताऊं। जैसे कि उनका रहता था कि आपका सौंदर्य वो कैसे देख सकता है।
2: बताइए, बहुत कॉमन बात है ये सब जगह की जी।
1: यस, इसके बाद उनका होता है
2: वो आपको फील कैसे करेंगे और ये सब चीजें, मतलब ना।
1: सेकेंड था कि देखो आपको, फिर आपको तो मतलब ट्रैवल करने का, ये देखो आप दुनिया इतनी खूबसूरत है, कैसे दिखा सकता है
2: जी,
1: ऐसे सारे बहुत सी बातें थी।
2: आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएंगी।
1: हाँ यस, एग्जैक्टली, ये तो मैं भूली गई थी कि नहीं फिर आपको खुद का कुछ इंडिपेंडेंस नहीं रहेगा, आपको स्वतंत्र से कर नहीं सकते हो, फिर आपको उनके पीछे ही जाना होगा, ऐसे वैसे बहुत थी। लेकिन उसके आंसर्स भी मैं आपको बताती हूँ, वो सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा
2: जी।
1: एक लड़की होती है जिसको ऐसे बोलता है ना कि मैं सजना धजना बहुत पसंद है,
2: पसंद है राइट।
1: कि हम लोग हमारे जो समाज में लड़कियां आती है, हम लोग पहले मतलब हमारी भी बेटियां होगी कुछ होगी या कुछ हमारे फैमिलीज में होती है, तो हम लोग उनको फ्रॉक लाते हैं, सब कुछ उनको सजाते जाते हैं।
2: राइट राइट,
1: तो वो जो मेरे इसमें मेरे लाइफ में किसने बहुत अच्छा किया रहेगा ना, मुझे सजाया है मेरे पति ने।
2: वाह क्या बात।
1: यस, मैं ये बहुत रिस्पेक्टफुली और बहुत गर्व के साथ मैं कहती हूँ कि मुझे सजाया है मेरे पति ने, उसने मेरे लिए सारे टाइप्स के ड्रेसेस लिए हैं। अगर मैं कहती हूँ अरे नहीं यार अभी नहीं, ये टाइम पे नहीं लेते कुछ, तो वो मुझे जबरदस्ती लेके जाके वो मतलब चीज लेता ही लेता है।
2: क्या बात,
1: वो अलग सी बात है। फिर
2: वेरी नाइस।
1: यस, कुछ कुछ ड्रेस पैटर्न्स मुझे नहीं पता होते कि अच्छा ये इसको ऐसा कहते हैं क्या, ये ऐसा होता है क्या, तो मुझे बताते हैं तभी मैं हाँ ये आपको कैसे पता चला।
2: क्या बात है, क्या बात है।
1: बात जो होता है कि जैसे कि पार्लर में जाना बहुत शौकीन होती है लड़कियां।
2: राइट राइट राइट,
1: ऐसा होता था हाँ ठीक है जाऊंगी नहीं जाऊंगी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो मुझे हमेशा कंपलसरी नहीं नहीं नहीं नहीं तुझे जाना ही है, वो अपॉइंटमेंट बुक करने से वहां तक मेरे साथ आने तक वो मेरे साथ रहते। जो पार्लर्स में रहती है औरत है उनको भी इतना यूजुअल हो गया, अरे सर नहीं आए क्या, सर को
2: और शुरू में होता होगा भाई जेंट्स कैसे आ रहे हैं।
1: नहीं वो यूपी से पार्लर हम लोग में इसलिए जानबूझ के हम दोनों का एक साथ ही सब कुछ हो
2: सकता। ओके गुड गुड गुड गुड गुड।
1: पहले मैं एक लेडीज पार्लर में जाती थी लेकिन उसको भी बहुत अच्छा लगता था। अरे हाँ मुझे पता है आप क्यों आई हो, आपका बर्थडे है ना, तो केके सर का बर्थडे है ना, उन्होंने भेजा होगा आपको पैम्पर करने के लिए। सेकेंड जो है कि आप घूम नहीं सकते हो, एक खूबसूरती देख नहीं सकते हो, तो लोगों को पता नहीं है कि हम लोग कहाँ कहाँ पे घूम के आए हैं। वैसे तो यस, लोगों को सच में पता नहीं कि हम लोग मतलब वैसा देखा जाए तो सारा देख लिया ना हम लोग ने, पहाड़ देख लिया है
0: कि
1: हम लोग ने समुन्दर देख लिया है,
0: पता इसलिए नहीं कि हम लोग ज्यादा फोटोज वगैरह डालने में मतलब दूसरों को दिखाने के लिए हम नहीं घूमते। और ये मामले में कई बार कपल्स में एक छोटा सा इशू हो जाता है कि या तो लड़का बहुत फोटो सेवी और शो ऑफ वाला होता है, लड़की शांत रहती है, या लड़की एकदम यार मैं फोटो डालूंगी सोशल नेटवर्क इंस्टाग्राम उस पे घर 2-10 मिनट में, लड़का वो बोलते हैं ना हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या मिर्जा गालिब की गजल है।
2: जी जी जी,
0: ये मामले हमारे मामले में ये भी नहीं, हम दोनों भी ऐसे हैं कि यार खुद के खुशी के लिए कर रहे, यार हनीमून जा रहे हैं खुद के खुशी के लिए जा रहे हैं, क्यों ये सब कर रहे हैं, इसलिए वो बराबर बोल रहे हैं लोगों को नहीं मालूम कहाँ कहाँ घूम चुके।
1: वैसे तो हम लोग ने पहाड़ देख लिया है, समुन्द्र देख लिया है, जंगल देख लिया, नदी देख लिया है, झरने देख लिए, सब जगह से हम लोग
2: हो गया।
0: आपको जो पिक मैंने भेजी थी वो मेरे हनीमून से थी उत्तराखंड में, वो वहाँ की थी, वहाँ आजू बाजू में पूरा बर्फ था, क्योंकि चूंकि मित्रहीन लोग भी इसको सुनते रहेंगे, 1500 फीट पे वो एक शंकर का मंदिर है तुंगनाथ करके,
2: जी जी जी,
0: मतलब वो देखने में बहुत अच्छा है। वैसे एक्चुअली हम दोनों नास्तिक है, ये मैं बता देता हूँ पहले। भगवान का से बहुत अच्छा, जिनके मतलब लाइफ में ऐसा हो गया कि अभी सच में कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, उनके लिए ऐसा साइकोलॉजिकल रिलीफ की कोई है, कोई हमारा शायद कुछ करेगा उम्मीद है, उस कॉन्सेप्ट से भगवान का कॉन्सेप्ट अच्छा है, इसलिए हम लोग जो मानते हैं उनका कभी इंसल्ट नहीं करते, लेकिन हम दोनों नास्तिक है।
2: वेरी गुड।
0: मंदिर बहुत अच्छा है, तो वो चढ़ गए हम लोग, पूरा चढ़ गए थे, ऑक्सीजन की थोड़ी कमी रहती है और मतलब इट्स अ डिफिकल्ट क्लाइंब, वो बारे में भी प्रोजेक्ट आपको बताए के बाद में। तो वहां गए हम लोग, भूटान में गए थे, वहां तो 13,000 फीट तक थे हम लोग, समुन्द्र में, मतलब मैंने एक बार ऐसी सरप्राइज के लिए गोवा में उसके लिए बोट बुक किया था, बहुत कुछ हुआ था ये सब, तो हम लोग घूमते क्यों नहीं घूमेंगे भाई, सब जगह घूमते हैं।
2: क्या बात है, तो मतलब तो पानी के अंदर और पहाड़ के ऊपर सब जगह होकर के आ गए आप लोग, क्या
0: अभी सबमरीन बाकी नीचे पानी।
2: अभी आज जो है मैम, आपकी फैमिली सेटिस्फाइड है या अभी भी कुछ है आपको प्रॉब्लम?
1: जो लोग मुझे देख रहे हैं वो लोग बहुत ही सेटिस्फाइड।
2: वेरी गुड, वेरी गुड।
1: ऐसा है कि आपने अगर ये डिसीजन नहीं लिया होता तो आप कभी भी खुश नहीं होती थी, लोग खुश तो आपको कोई नहीं रख सकता था।
2: क्या बात है,
1: जिनके थोड़ी सी है विरोध उनका है ही, कुछ दिन में वो भी समझ जाएंगे,
2: वो भी समझ जाएंगे। एग्जैक्टली,
0: देखो कैसा है, ये आज की बात नहीं है, मतलब ये मैं किसी फैमिली के को ब्लेम नहीं करूंगा
2: जी।
0: कैसा है कि अभी हम लोग जैसे ट्रेन में वगैरह भी सफर करते हैं या जर्नीज में वगैरह, तो मुझे दो तरह के ज्यादातर लोग मिले हैं, या तो उनको लगता है हम लोग भाई बहन है, बिकॉज वो लोग एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि ये कपल है, समझ में आया तो फिर ये रहता है अरे आपने कितना बड़ा काम किया एक अंधे के साथ शादी करके दया,
2: अरे बाप रे बाप जी।
0: ये दो ही तरह के लोग मुझे ज्यादातर मिले हैं, मतलब जो जनरली लोअर टू
2: मिडिल, आप तो देवी हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया है।
0: और मतलब एक विशिष्ट समाज के लोग भी ये बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे भी ये बोला जाता है, मतलब जो लोअर टू मिडिल ग्रुप के जो लोग रहते हैं
2: जी,
0: मुझे तो यहाँ तक लोगों ने कई बार, मतलब तब तक मेरी शादी हुई नहीं थी, कई बार लोगों ने ये पूछा कि यार तुम लोग तो मतलब शादी कैसे करोगे, ना क्यों नहीं करेंगे, तो अरे तुम लोग तो देख नहीं पाते हो, तो आप तो लैंगिक संबंध भी नहीं कर पाओगे ना, तो कैसे ये सब, मतलब इतना लेवल तक इग्नोरेंस है लोगों के बारे में।
2: बताइए आज भी, जबकि आप मतलब एक डेवलप्ड सिटी कह सकते हैं, वहां रहते हैं आप।
0: हाँ, वहां पे भी ये सुनाई देता है, हालांकि मैं कोई कोंकण में कई गाँव में वगैरह गया हूँ या घाट साइड में भी गया हूँ ना, तो वहां भी उन्होंने ना ऐसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, मतलब उधर भी ये सब होता है, उधर भी अरे रे बेचारा ऐसा सब होता है, लेकिन बहुत ज्यादातर लोग, मतलब मुझे सिटी के लोग पता नहीं क्यों ऐसा बिहेव करते हैं कि कुछ तो बड़ा अजूबा देख लिया, और यू नो तो हम लोग भी यही, अगर ट्रेन में वगैरह जाते रहते तो कई बार ये मतलब इंसिडेंट हुआ है कि लोग ऐसे पूछते हैं, या अरे क्या आपका भाई है, या मुझे कहते हैं आपकी बड़ी दीदी है, कभी कभी मैं उनका बड़ा भाई बन जाता मतलब
2: कभी ऐसा हुआ कि सर आपने कहा और गैस कीजिए, जरा और गैस कीजिए। जी,
1: थोड़ा बोल्ड सा इनको बोला था
2: जी,
1: कि हम कभी भी बाहर जाते तो अभी तो मैं मंगलसूत्र पहनती हूँ
2: जी,
1: और हम दोनों साथ रहते ऑलमोस्ट
2: जी जी जी,
1: करना होता है तो हम दोनों को एक साथ करने में बहुत आनंद होता है, तो हम लोग एक साथ ही करते हैं
2: जी।
1: आपका भाई है क्या?
2: ओ
1: देख रहे हो ना मेरे गले में मंगलसूत्र
2: है,
1: देख रहे हो, ऐसा नहीं कि आज ही अचानक से हम दोनों आपके सामने आए हैं
2: जी।
1: तो मैंने सोचो बोला देखो अभी हम लोग एक साथ इतना हाथ पकड़ के एक साथ चल रहे हैं, इतने अच्छे से बात कर रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं तो बहुत जोक्स होते हैं, सब कुछ होता है, हम लोग हंसते हैं, सब कुछ होता है, तो मतलब मैंने सोचा ठीक है अभी ऐसा कोई पूछेगा ना उनके सामने किसिंग करना स्टार्ट कर देंगे, अभी हम लोग भाई बहन है
2: क्या करेंगे, सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
1: और मेरे साथ इतना उल्टा है कि कैसे होता है कि अभी देखो मैंने जैसे बोला कि ये मेरे लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े लेता है, ड्रेसेस लेता है, तो हम लोग जाते हैं एक साथ घूमने, कपड़े खरीदने, कुछ भी खरीदना होता है तो हम लोग एक साथ जाते हैं, तो मैं उनके लिए लेती हूँ, ये मेरे लिए लेते हैं, तो मॉल्स पे जैसे बाकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड घूमते हैं वैसे हम लोग घूमते हैं।
2: वेरी गुड।
1: यस, तो उसमें कैसा रहता है, अरे आप उनको क्यों बोल रहे हो, अरे आप इनका उनको क्यों घुमा रहे हो, अरे आप उनको, हाँ उनको तकलीफ क्यों दे रहे हो, अरे तो इनमें, अरे आपको क्या प्रॉब्लम है, मेरा बॉयफ्रेंड है मेरे साथ घूम रहा है, क्यों ना घूमे वो,
2: सही है,
1: के कपड़े चॉइस करे, क्यों ना वो मेरे कपड़े चॉइस करे।
0: आज आज सुबह की बात बताता हूँ, हम लोग फिश मार्केट गए थे अभी, हम कोकन के, एंड शी इज एन एक्सेलेंट कुक बाय द वे,
2: गुड, वेरी नाइस,
0: मैंने लाइफ में इतनी अच्छी कुक, और मतलब उसमें टेस्ट भी रहता है और प्यार भी रहता है, ये अलग बात है, लेकिन इतना अच्छा कुकिंग करते। तो हम लोग फिश लेने गए थे मार्केट में, भीड़ थी, मैं मानता हूँ भीड़ थी, और किसी ना किसी को अड़ंगा होगा, तो पीछे से एक औरत बोल रही थी इसके बारे में, अरे क्यों इसको लेके आई है मार्केट में, इसको लेके आने की क्या जरूरत थी, इतना मतलब ये अड़ंगा हो रहा है, तो मैं पीछे मुड़कर बोला क्यों, आपके पति आएंगे तो भीड़ नहीं होंगे क्या, मेरी वजह से भीड़ क्यों,
2: सही है सही है,
0: वही दिखा आपको जिसके वजह से भीड़ हो रही है,
2: जी जी जी,
0: ये सब गलत बात है, मतलब ये होना नहीं चाहिए, और थोड़ा मतलब अभी गवर्नमेंट वगैरह तो ठीक है, इसलिए मैंने पहले ही बोला ये दिव्यांग बोल के और जले पे नमक छिड़कने की जरूरत नहीं है, पर अभी फैसिलिटीज है, जैसे अभी बसेस में वगैरह फ्रंट सीट रहती है रिजर्व फॉर हैंडीकैप, ये कोई सिंपथी नहीं है, ये इसलिए किया गया है ताकि हमको उतरने में आसानी रहे और हम लोगों के लिए मुसीबत
2: ना बने। वही मैं पूछने वाला भी था आपसे सर, कि ये जो जो जितनी भी ये शब्दावलियां हैं, जितने भी वर्ड्स हमारे लिए यूज किए जाते हैं, इन पर भी आपने काफी कुछ बोला है मैं जानता हूँ, चाहे डिफरेंटली एबल हो, चाहे स्पेशल एबल हो, या फिर जो है दिव्यांग पर अभी आपने कहा, आप क्या मानते हैं ये सारी जो मतलब जो टर्मिनोलॉजीज है, ये मतलब क्या सोसाइटी यूज करके क्या दिखाना चाहती है, और अकॉर्डिंग टू यू क्या होना चाहिए सही वर्ड?
0: अकॉर्डिंग टू मी सही वर्ड होना चाहिए जो एक्चुअल मतलब मेडिकल टर्म है ना, उसको अगर आप डिसेंटली बोले, अभी विजुअली इम्पेयर, ठीक है विजुअली इम्पेयर है तो विजुअली इम्पेयर है, यू नो, तो जो है वो फैक्चुअल बोले, क्योंकि मैं बताता हूँ आपको प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि मेरे कुछ ब्लाइंड फ्रेंड्स मतलब जो बने हैं वो तरह का प्रॉब्लम होता है, और दोनों भी चीजों में मेरे ख्याल से प्रॉब्लम होता है, और उसमें से एक प्रॉब्लम मैंने फेस किया है, या तो एकदम ऐसे इग्नोर करेंगे और बेचारा बेचारा करके, एंड दे विल लुक डाउन अपॉन ब्लाइंड पीपल, ये क्या करेगा, ये तो ऐसे ही फालतू में है कोई बेचारा, ऐसा होता है, या फिर अजूबे की तरह देखेंगे, अरे ये तो स्पेशल है एकदम, ही लाइक ब्लाइंड होते हुए भी कंप्यूटर यूज करता है, ब्लाइंड होते हुए भी ये कर रहा है वो कर रहा है, ये दोनों में से एक चीज होती है, और मेरे ख्याल से ये दोनों भी चीजें होना बहुत हार्मफुल है। अभी आप शादी की हमराही के बच्चे की बात कर रहे हो, अगर कोई मैं अगर अजूबा हूँ या ऐसे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ, आई वुड अ गर्ल लाइक टू मैरी, क्योंकि उसको तो इंसान चाहिए यार, उसको कोई सुपरमैन या ये सब फिल्म में वगैरह ठीक है, इंसान चाहिए जिसके साथ वो झगड़ा कर सके, हमारे भी झगड़े होते हैं, हमारे भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, हमारा भी प्यार होता है, सब कुछ होता है, कोई किसी को सुपर ह्यूमन नहीं चाहिए। तो मेरे साथ भी एक दो बार हुआ है कि लोगों को लगता है अरे कितना ये तो बाप रे अजूबा ही हो गया, जैसे कॉन्फ्रेंस में वगैरह जाता हूँ तो कुछ लोग आके ऐसे ही मिलते हैं, तो ये उसी वजह से हुआ, या तो आप उनको डिसेबल्ड कह के थोड़ा सा मतलब ये करते हो, दिव्यांग कह के उनकी जरा ज्यादा हाइप क्रिएट करते हो, तो दोनों भी नहीं होना चाहिए, जो है वो है। अभी मैं बोलता हूँ मेरे लिए मेरा सबसे बड़ा बेस्ट वर्ड है विजुअली चैलेंज,
2: क्योंकि
0: ये देखना यही मेरे लिए एक चैलेंज है, बाकी मेरे लिए लाइफ में कोई चैलेंज नहीं, उतने ही चैलेंजेस है जितने बाकी लोगों के लिए होते हैं।
2: जी एग्जैक्टली,
0: एक चैलेंज है जो मेरे लिए सॉल्व करना नामुमकिन है, जो बाकी लोगों के पास, बहुत सारे लोगों के पास है, वो है आई साइट, उसके अलावा क्या है। और जो अभी राजक का कह रही थी थोड़ी देर पहले, ये अभी वो बताने वाली बात है नहीं, अभी वो मैं उसके लिए ड्रेसेस वगैरह लाता हूँ, ये करता हूँ, देखो जो मैंने शुरुआत में बोला कि वन ऑफ द मेजर थिंग जिसके वजह से मैंने मतलब ये सोचा हाँ मैं इसके साथ ही शादी करूंगा, ये मतलब कभी कभी मैं मजाक में बोलता था, या आयरनी है कि मैं नास्तिक होते हुए ये बोलता हूँ, मैं इसको बोलता था तू ना मेरे पिछले जन्म की प्रेयसी रही होगी शायद से, मिले है करके,
2: जी जी जी।
0: ये क्यों हुआ, बिकॉज मैं देख पा रहा था कि आई वॉज एबल टू मेक हर हैप्पी, और किसी को हैप्पी करना और किसी के जीवन में हैप्पीनेस लाना इज वेरी ब्यूटीफुल, ये सब उसी बातों का, तो हैप्पीनेस फील करना या हैप्पीनेस देना या एक दूसरे का की कंपनी में खुश होना, इसके लिए कहाँ आई साइट की जरूरत है।
2: एग्जैक्टली
0: जरूरत नहीं है इसके लिए।
2: जी जी जी जी जी। क्या अभी प्राजक्ता मैम आपकी लाइफ मतलब कोई भी सुनेगा तो लगेगा अरे वाह यार व्हाट अ आइडियल कपल, मतलब बहुत अच्छा है सब कुछ, लेकिन फिर भी आपको लगता है कुछ चैलेंजेस हैं अभी भी लाइफ में?
1: अभी इसके बारे में मैं आपको ऐसे बताऊंगी कि देखो कि अभी तो मेरा पति तो विजुअली चैलेंज्ड है,
2: राइट,
1: लेकिन मेरे बाकी सारे लोग विजुअली चैलेंज या कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं
2: जी।
1: मेरे उनके साथ भी कुछ मतलब कुछ बातों में ये हो जाती है, मुझे कुछ पसंद आता है, कुछ चीजें मेरी उनको पसंद नहीं आती, दूसरों की नहीं आती है। मेरे पति के साथ भी ऐसे होता रहता। हम लोग ना बातें करके ये सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग हमेशा बोल सकते हैं, अभी देखिए अगर आपने हमें इनवाइट किया, अगर कुछ हम लोगों को कुछ दिक्कतें आती थी तो आपको बताते थे, आपको रिक्वेस्ट करते थे कि सर ऐसा नहीं करते, ऐसा करके देखते चलेगा। आप भी कुछ दूसरा रास्ता,
2: कोई ना कोई अल्टरनेटिव निकालते हैं, राइट?
1: एग्जैक्टली। तो वैसा कुछ भी नहीं है, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है लाइफ में सब सबके साथ और सब मतलब सब कुछ आप दूसरों को समझा के बात करके सॉल्व हो जाए।
2: गुड।
1: और कैसा है कि देखो आपको एक दूसरे के साथ रहना है, आपको एक दूसरे का रहना मोस्ट इम्पोर्टेंट है या वो बात मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो चैलेंज मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो आपको सॉल्व करना है या उस पे ही अटक के आपको रोना थोड़ा है। ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है इसमें।
0: मतलब आपको पहले शुरुआत यहाँ से करनी है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है या नहीं करना है। अगर प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं करना है, डोंट टॉक अबाउट इट।
2: यस।
0: सॉल्व करना है तो सॉल्व करना है, तो फिर उसमें क्या प्रॉब्लम है?
2: तो फिर वो प्रॉब्लम है ही नहीं फिर तो।
0: जो मैंने बोला कि सुपर आइडल अवार्ड मुझे मिला था
2: जी,
0: आईबीएन नेटवर्क ने मतलब बड़ा प्रोग्राम रखा था और बहुत अच्छे अच्छे लोगों को अवार्ड मिले थे। सो एज एन यंग अचीवर, क्योंकि तब तक मैंने टॉकिंग सॉफ्टवेयर के साथ भी काम किया था जो ओपन सोर्स है, जो लिनक्स नाम के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए चलता है
2: जी।
0: तो उस पे काम किया था, फिर काफी कुछ मैं रूरल एरियाज में भी काम करता था, मेरी फाउंडेशन वगैरह ये सब। तो वो अवार्ड मिला था और उस अवार्ड के मतलब देने के टाइम वो जो फंक्शन था तभी आमिर खान आए थे। दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई मेट हिम। और मैंने एक बात कही थी जिसके वजह से वो उनके बाद दिमाग में रह गए और जिसके वजह से ही रिमेम्बर्ड मी काइंड ऑफ फॉर सत्यम वर्मा थे, वो ये थी कि तभी थ्री इडियट्स रिलीज हुआ था तो और उसके पहले तारे जमीन पे हो चुका था। उन्होंने पीक ऑफ हिज पॉपुलैरिटी, वैसे वो बहुत अच्छे एक्टर है और बहुत चूजी है फिल्म्स के बारे में,
2: भले 3 साल में एक फिल्म करनी है लेकिन अच्छी करनी है।
0: इसलिए थोड़ा सा मैं धूम 3 वगैरह जब हुआ तो मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया था, बट एनीवेज सबको थोड़ा बहुत इधर उधर करना पड़ता है। तो उन्होंने बोला कि ये जो सारे अवार्ड विनर्स है ये सब तारे जमीन पर है, दे आर ऑल द स्टार्स ऑन द फ्लोर।
2: यस।
0: तो मैं जब स्टेज पे गया और जब मैंने अवार्ड लिया तो मुझे बोला गया कि आप 2 शब्द कहिए करके, एक्चुअली 2 शब्द कोई नहीं कहता, 2 से बहुत ज्यादा कहते। तो मैंने बोला कि थैंक्स कि आपने अप्रिशिएट किया हम सबको और आप जो कह रहे हैं कि हम तारे जमीन पर है, बट आई थिंक मोर देन दैट आई वुड वांट टू बी वन ऑफ द इडियट्स बिकॉज दैट इज द वे यू सॉल्व प्रॉब्लम्स।
2: यस यस यस।
0: वो उनको बहुत खुश, वो कुर्सी से उठ के मेरे नजदीक आ गए थे वो टाइम पे, ही हैड लाइक दैट थिंग वेरी मच और वो याद रख लिया। तब जब सत्यमेव जयते का डिसेबिलिटी वालों का एपिसोड हुआ तब मुझे बुलाया गया था। लेकिन मैं ज्यादा जिक्र वो सुपर आइडल्स का इसीलिए करते रहता हूँ, सत्यमेव जयते बस ओके, लेकिन ये सुपर आइडल का जो अवार्ड था वो मेरे लिए बहुत जरूरी था, मेरे लिए नहीं ये समाज के लिए जरूरी था कि जो दृष्टिहीन इंसान है वो क्या क्या कर सकता है। बिकॉज देखो ऐसा है कि जो साइटेड लोग हैं वो साइटेड लोगों के लिए भी काम करते हैं और ब्लाइंड लोगों के लिए भी करते हैं। जो ब्लाइंड होते हैं वो अपने आप के लिए लोगों के लिए करते ही करते, लाइक ब्लाइंड कम्युनिटीज एक दूसरे को हेल्प करते हैं और करना भी चाहिए,
2: राइट?
0: मेरा कहना हमेशा से ये था और बहुत सारे विजुअली डिसेबल्ड विजुअली चैलेंज लोगों से मेरे इस मामले में थोड़ी सी अनबन भी होती रहती है। भाई मेरा दिल इतना बड़ा क्यों ना हो, क्योंकि मदद के हकदार और मदद के जरूरतमंद सिर्फ ब्लाइंड नहीं होते, जो ब्लाइंड नहीं होते उनको भी कई तरह की मदद लगती है। So my heart must be very big. मैं सिर्फ ये नहीं सोचूं कि सिर्फ ब्लाइंड है करके मैं इसको हेल्प करूंगा। तो ब्लाइंड होके भी अगर कोई इंसान साइटेड लोगों के लिए भी कुछ कर रहा है तो ऑब्वियसली दैट गेट्स अप्रिशिएटेड। तो वो सुपर आइडल में थोड़ा उजागर किया गया था, इसलिए मैं ज्यादा लोगों को सुपर आइडल के एपिसोड ही देखने को बोलता हूँ बिकॉज उसमें वो उजागर किया गया था। और ये मेरा हमेशा से मानना है कि डोंट लिमिट योर सेल्फ। अगर आप मतलब ब्लाइंड और आप करना चाहते हैं कुछ अच्छा तो वो ब्लाइंड के लिए अच्छा करना या साइटेड के लिए अच्छा करना ये सोचो मत। जैसे अभी कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे, उनका तो एकदम स्ट्रिक्ट ये है कि ब्लाइंड है वो लोग, कि वो लोग करेंगे तो साइटेड लड़की से या साइटेड अगर लड़की है तो साइटेड लड़के से ही शादी करेंगे। अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो बुरी बात है। अभी क्योंकि मैं ज्यादा बोलूंगा तो लोग कहेंगे हाँ आपका हो गया करके आप बोलते। तो पता है कि जो सोच के मतलब हमको कुछ सोशल कॉज करके करना है करके ब्लाइंड आदमी के साथ शादी कर दे, ऐसी लड़कियां भी
2: वो उसमें फिर सिंपैथी आ जाती है कहीं ना कहीं,
0: सिंपैथी और खुद को ग्रेट बनाने की बात हो जाती है, उससे अच्छा तो ब्लाइंड ब्लाइंड शादी करे तो क्या प्रॉब्लम,
2: क्या प्रॉब्लम एग्जैक्टली। और मैं तो मानता हूँ कि जहाँ आपका दिल करता है वहाँ होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, ब्लाइंड हो चाहे साइटेड हो,
1: कैसा भी हो।
0: तो मैं मानता हूँ दो ब्लाइंड करेंगे तो प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, मैं समझ सकता हूँ और मैंने कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स देखे भी होते हुए, लेकिन उनको प्रॉपरली अवेयर करके उनको चीजें समझा के किस तरह से पब्लिक में रहना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो मैनेज हो जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता।
2: आप तो टेक से भी हैं सर, अभी टेक्नोलॉजी ने तो कितना इजी कर दिया है ना सब कुछ, आप खुद भी जानते हैं ये बात।
0: बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मेरे लिए मानना है कि भाई जो भी है ना ऐसा है कि डू इट फॉर अदर्स एंड डोंट सी। अभी मुझे बहुत लोग पूछते हैं आप, अच्छा आपकी कंपनी कितने ब्लाइंड लोगों को आपने जॉब दिया, मेरा ये कहना भी अगर
2: मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था एक्चुअली, उसको भी आप इसमें इंक्लूड कर लीजिए कि अपने आप तो सक्सेसफुल हैं, विजुअली चैलेंज कम्युनिटी के लिए आप क्या सोच रहे हैं या क्या कर रहे हैं।
0: एक्चुअली मेरा एक बहुत बड़ा प्लान मन में चल रहा है, लेकिन कोई मुझे इस चीज के लिए पता नहीं क्यों आगे नहीं आ पा रहा
2: है,
0: समझ की कमी है या वही प्रॉब्लम है कि लोग ये समझ रहे कि मैं अजूबा हूँ और मैंने किया तो और कोई कर
2: और भी कर लेगा। एग्जैक्टली
0: मुझे नहीं मालूम ये क्यों लोग नहीं सुन पा रहे हैं, मैं इतने देर से चिल्ला के बोल रहा हूँ। देखो मैंने कुछ एक दो ब्लाइंड स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है और कुछ कुछ लोग अच्छा भी कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि एक एकेडमी बने जिसमें ब्लाइंड इंजीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्पेसिफिकली बनाए, क्योंकि मेरा एक ड्रीम है कि आपको पता है कोई ब्लाइंड आदमी अच्छा खासा दिखता है, पहली बात तो अच्छा खासा नहीं दिखे तो छोड़ दो, लेकिन अच्छा खासा दिखता है तो लोगों को ये समझता है ये कमा रहा है। आज थोड़ा सिचुएशन सुधर गया, आज लोगों को मालूम है कि ब्लाइंड इंसान कमाता है। पता है वो क्या, आप उस चाचा म्यूजिक में हो, आप गाना वाना गाते हो क्या? मैं वो दिन देखना चाहता हूँ कि जब कोई ब्लाइंड आदमी अच्छा खासा दिखे तो पूछे अच्छा इंजीनियर हो क्या। आई वॉन्ट टू सी दैट डे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसी फील्ड इतनी कॉमन बन जाए कि किसी को अजूबा ना लगे।
2: लगे बिल्कुल सही।
0: मेरे पास एक पूरा प्लान रेडी है और इसके लिए पूरा एक एनजीओ लेवल पे या किसी भी तरह सेक्शन 25 या कोई कंपनी की तरह से ये किया जा सकता है कि इनको अच्छी तरह से ट्रेन किया जाए, यहाँ तक कि इंटर्नशिप के लिए मल्टीनेशनल्स में भेजा जाए, क्योंकि मेरे कॉन्टैक्ट्स है अच्छे मल्टीनेशनल्स में।
2: वेरी गुड।
0: अभी मल्टीनेशनल में वो लोग थोड़े ना जॉब के लिए जा रहे हो, तो इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं। अगर इंटर्नशिप में आप खुद को प्रूव करते हो तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी अच्छा अभी प्रूफ तो हो गया, तो अभी आप इनको जॉब क्यों नहीं देते, उनको भी जॉब दे दो, उनको भी प्रोग्रामिंग करने दो, उनको भी वो सारे चैलेंजेस फेस करके आगे आने दो।
2: Exactly.
0: इंजीनियरिंग फील्ड में आने दो, बिकॉज देखो इंजीनियरिंग में प्रोग्रामिंग ये होता है, प्रोग्रामिंग इज अ ब्रेन वर्क, प्रोग्रामिंग में आंखें नहीं लगती है। मैं
2: नहीं लगती है,
0: साल से कर रहा हूँ मैं बता रहा हूँ।
2: देखो लोग सोचते हैं उल्टा, बिना आंखों के प्रोग्रामिंग हो ही नहीं सकती है।
0: ये जो छुटपुट एक दो प्रोग्रामर्स बने हैं, आपने अभी और एक प्रतीक का जिक्र किया, इससे कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। मैं ये चाहता हूँ कि ये कॉम्प्रिहेंसिवली एज अ मोमेंट कहिए, एज अ रेवोल्यूशन कहिए, या एज अ कंपनी या एज अ व्हाटएवर, ये मैं चलाना चाहता हूँ।
2: इन टोटल सुपर 30 की तर्ज पे कुछ होना चाहिए।
0: एग्जैक्टली। और मैं, मेरे पास टैलेंट है, मैं जानता हूँ क्या करना है, मेरे पास प्राजक्ता जैसी, उसको मैं प्राजक्ता कहते नहीं, लोगों को लगता है मैंने शादी के बाद उसका नाम बदल दिया, उसको रानी कहता हूँ मैं
2: प्यार से।
0: वो इतनी मतलब हर चीज में रहती है, मेरे पास अच्छे लोग हैं, मेरे पास अच्छे रिसोर्सेज है, होना ये है कि इसको एक तरह से फंड करके ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, अगर किसी को कॉन्टेक्ट करना, और ये मेरी बहुत जमाने से ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, मैंने तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ काम किया ट्रू विजन नाम के प्रोजेक्ट पे, अगर आपने गूगल किया ट्रू विजन एलकॉट इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु, आपको मिल जाएगा।
2: yes,
0: आप yes. इसका एक तरह का पायलट किया गया, वो सक्सेसफुल भी हो गया, ब्लाइंड बच्चों को जॉब्स भी मिले। केरला में मैंने इनसाइट करके एक सेंटर है, उनको मैंने काफी कंसल्ट किया है। आई वॉज अ कंसल्टेंट टू ब्राजीलियन एंड मलेशियन गवर्नमेंट ऑल्सो। पर फिर इंडिया में ऐसा क्या हो रहा है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव तौर पर इतना बड़ा नहीं हो पा रहा है, मतलब मेरे जैसा इंसान होते हुए भी ये नहीं हो पा रहा है, बिकॉज शायद अभी भी वही है, लोगों को लगता है कि मैं दिव्यांग हूँ, मेरे पास कुछ तो दिव्य शक्ति है और मैं ये कर पाया और कोई कर नहीं पाएगा, ऐसा नहीं है, बहुत लोग कर सकते हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। एंड सेम अप्लाइज टू मैरिज ऑल्सो, कि ऐसा नहीं एवरी कपल कैन बी एन आइडियल कपल, आपने आइडियल कपल कहा ना, सब लोग हो सकते हैं, ऐसी कोई मतलब ये नहीं है कि नहीं हो सकते। अभी है हमें इतना मतलब अंडरस्टैंडिंग है, कोऑर्डिनेशन है, हम दूसरे से प्यार करते हैं, बियॉन्ड एवरीथिंग हम लोग एक दूसरे के।
2: प्रॉब्लम तो अभी दूसरी है ना सर, एक्चुअली सोसाइटी समझे तब ना ये सारी बात।
0: आई थिंक अभी धीरे धीरे वो चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन ये जो अजूबा वाली बात है वो बहुत जल्दी निकल जानी चाहिए, बिकॉज दैट इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। पहले वो गरीब बेचारा था, अभी एकदम ऊपर चला गया, पहले एकदम नीचे था, अभी तो एकदम मतलब किसी को देखते हैं कुछ अच्छा काम कर रहा है, कोई बड़ा लॉयर बन गया, कोई लॉ फर्म में गया, कोई आईडीबीआई जैसे बैंक में गया, और सोचते अडोर करते इसको, जिसको ये बोलते हैं ना कुछ तो एक उसको वर्ड है, मतलब बोलते हैं ना कि इसका कुछ तो इतना हाइप करके रखते कि अरे बाप रे, तो कुछ तो अनयूजुअल चीज हो गई। कई बार करती है तो वो स्टॉप होना चाहिए मेरे ख्याल से। वी आर जस्ट लाइक एनी अदर पीपल।
2: अब मीडिया ये सब चीजें पहुंचाने के लिए ना मीडियम हो सकता है हमारे लिए सर।
0: बिल्कुल, क्योंकि देखो ये गाना बजाने वाला मैटर भी आपको मैं बता दूं, ज्यादातर के ये हिंदी फिल्म्स का ही नतीजा है कि हमेशा एक नेत्रहीन इंसान को ऐसे बतौर गाना बजाने वाला ही दिखा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप क्यों नहीं कोई ब्लाइंड कॉर्पोरेट दिखाते हो कोई फिल्म में, आप क्यों नहीं कोई ब्लाइंड बंदे को आईटी प्रोफेशनल दिखाते हो, आप क्यों नहीं कोई ब्लाइंड बंदे को सिक्योरिटी एनालिस्ट दिखाते हो या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस दिखाते हो या इकोनॉमिक्स दिखाते हो, कोई मैथमेटिक्स का प्रोफेसर क्यों नहीं दिखाते हो? आप एक ही चीज दिखाओगे तो जनता तो वही देखेगी
2: ना, आईएएस दिखाएंगे ना लॉयर दिखाएंगे।
0: ये सब हुआ है, ये हुआ है, नहीं हुआ ऐसा नहीं है, दिस इज नथिंग न्यू। पर ये मतलब ये मेरा फिल्म इंडस्ट्री से बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है। बीच में वो ऋतिक रोशन वाली भी कोई फिल्म आई थी,
2: हाँ काबिल,
0: तो मतलब मेरा उसके भी ऊपर ऑब्जेक्शन
2: था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम सबका ऑब्जेक्शन है राइट।
0: मैंने उसका ट्रेलर और ओवरव्यू देखा लेकिन आई डिड नॉट लाइक द स्टोरी।
2: गुड, वेरी गुड। सर आप तो मुंबई में रहते हैं ना, और इंडस्ट्री तो मुंबई में है।
0: यस,
2: और आपके कॉन्टेक्ट भी है जैसा आपने कहा, तो आपको इनिशिएटिव लेना चाहिए ना।
0: मैंने बोला कुछ लोगों के साथ, पर उनका ये कहना है कि अगर हम लोग सी क्या है ना, ये पुशिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो रहे हैं सर। वो लोग ये कहते हैं कि अगर हमने इस तरह से दिखा तो जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी, और जनता ये कह रही कि आपने कुछ दिखा तो हम लोग देखेंगे लेकिन आप दिखाते नहीं, दिस इज द प्रॉब्लम। वो बोलते नहीं, जनता एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगी, वो लोग फिल्म को फ्लॉप कर देंगे, हम लोग को आपको इस तरह से ही दिखाना पड़ेगा।
2: क्या मतलब है, अब वही बात है, अब क्या कहा जाए इस पर, तो वो उनका एक्सक्यूज है मुझे तो यही लगता है कि, और कुछ नहीं है।
0: और ये न्यू इंडस्ट्री में क्यों, अभी ना आई टेल यू, इतना एक सुंदर वो है, आपको पता है शायद से गाना, वो फिल्म कोई तो फिल्म का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, रफी और लता का गाना है, उसमें तो बॉय तो साइटेड थी, क्या लड़की ब्लाइंड है, वो क्या है एक मंदिर है वाला गाना
2: जी, जी
0: है ना, वो बादल कैसा होता है तेरे आंचल जैसा होता है
2: जी।
0: तो उसमें आप अगर एक कपल दिखा सकते हो जिसमें लड़का ब्लाइंड नहीं है, लड़का साइटेड है, लड़की ब्लाइंड है, वो मस्त में एकदम ऐसे रोमांटिकली जा रहे हैं, व्हाट हैज हैपेंड, वेयर इज एवरीथिंग लॉस्ट, आई डोंट नो।
2: कहीं ना कहीं ये भी तो होता है कृष्ण सर की जो ब्लाइंड वेमेन उनकी प्रॉब्लम्स थोड़ी ज्यादा है ऐसा लगता है, खासकर मैट्रिमोनियल के इश्यूज में।
0: आई डोंट नो, मतलब हो भी सकते हैं, मुझे सीरियसली नहीं मालूम ये मामले में, और
2: सोचना चाहिए ना इस पर भी हमें,
0: सोचना पड़ेगा। मतलब मेरे, आप शायद सही बोल रहे हो, बिकॉज स्टैटिस्टिकली अगर मैं सोचूं तो मेरे पहचान में ब्लाइंड मेन मैरिंग साइटेड वुमेन बहुत ज्यादा है, लेकिन वाइस वर्सा मेरे पास ज्यादा एग्जांपल्स नहीं है।
2: वही सर, वही हमारे इस प्रोग्राम में भी ज्यादा एग्जांपल्स इनफैक्ट नहीं है दरअसल,
0: तो वो है मतलब स्टैटिस्टिकली मेरे भी जान पहचान में कोई है नहीं ज्यादा। There was one couple, लेकिन वो खैर सेपरेट हो गए बाद में।
2: कुल मिलाकर के ये है कि अभी हम सबको, मतलब आप जैसे बोल रहे हैं, आप बहुत सालों से लोगों को बोल रहे हैं चेंज के लिए, लेकिन अब हो नहीं रहा है। कुल मिलाकर सबको मतलब यूनाइट होना पड़ेगा सर इन सब चीजों के लिए।
0: यूनाइट होना पड़ेगा, एंड आई टेल यू दैट इज द रीजन मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ मतलब एज प्रोजेक्टा, एज माई वाइफ, बिकॉज हम लोग ये बात को ज्यादा कभी एग्जैजरेट भी नहीं करते। अभी आपके साथ इंटरव्यू देना है करके ये सब बातें निकली, वरना हमारे लिए ना वेरी फ्रैंकली इट डजंट मैटर कोई ब्लाइंडर कोई साइटेड। इसीलिए वो बात उस दिन मेरे एक दोस्त को मैं और प्रोजेक्टा दोनों भी समझा रहे थे कि अरे ब्लाइंड ब्लाइंड भी शादी करेंगे, अगर दिल की बात है तो प्रॉब्लम क्या है, तो मतलब ये आना चाहिए, व्हाट इज द बिग डील यार। हाँ तो ब्लाइंड है और साइटेड है, तो कई बार तो प्रोजेक्टा करेस्पॉन्ड करके लोगों के साथ बताती भी नहीं है कि मैं ब्लाइंड हूँ, दे डोंट इवन नो, क्योंकि उसको तो कामकाज संभालना होता है कंपनीज का, होगा
2: राइट
0: ये कि क्या मैटर करता है। तो ये चेंजेस हम लोग को खुद से आनी चाहिए अंदर से, और हम लोग जब आजू बाजू में घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों के साथ मिलजुल के, तो अब धीरे धीरे लोगों को नहीं एक्सेप्ट होने, मतलब इट्स अ स्टार्ट, इट्स फार फ्रॉम, मतलब जब 1947 में इंडिया को फ्रीडम मिल गया तो ऐसा कहते हैं कुछ लोग कि 1933 में जब भगत सिंह को हैंग किया गया जिस दिन, उसी दिन से चर्चे चलते थे कि हाँ अब इंडिया का फ्रीडम दूर नहीं है, अभी शुरुआत हो गई है, नाउ इट्स गोइंग टू हैपन समथिंग।
2: 1931
0: जी। वो टाइम से जब लोगों को एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि यस अब तो इंडिया को फ्रीडम मिलनी ही मिलनी है, चाहे 10 साल में हो या 5 साल में हो, जो भी हो, लेकिन मिलेगी जरूर,
2: मिलेगी
0: वो एक कॉन्फिडेंस। तो अब मुझे वो लगने लगा कि सुबह की पहली गिरने बस अब गिरना शुरू हुई है, बिकॉज कई बार मुझे और प्रोजेक्ट का कोई एक्सपीरियंस आया भी है कि पीपल हैव नॉट मेड एन इश्यू एट ऑल, उनको मालूम है, मतलब वो देख रहे हैं कपल है सो व्हाट। कई बार ऐसा भी हुआ है, अच्छे भी एक्सपीरियंसेस है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, अप्रिशिएट ही किया।
2: अच्छा केके सर, अभी आपने कहा कि वो अच्छी कुक है, तो आपने कुछ सीखा कि नहीं पकाना?
1: सीखा कि
2: और कभी कुछ खिलाया कि नहीं?
1: खिलाया कि नहीं, अरे बाप रे।
2: केके सर ने आपको कुछ खिलाया कि नहीं?
1: अरे बहुत सारी चीज।
2: अच्छा कुक करके?
1: हाँ, मतलब कैसा है कि मैंने जैसे बताया कि हम दोनों को एक साथ सारी चीजें करनी बहुत पसंद है, तो वैसे हम लोग खाना भी एक साथ पकाते हैं। मतलब आपने अगर मुझे पूछा होता कि इनके साथ आपको सबसे ज्यादा अच्छा क्या करने को पसंद है, तो मैं कहती थी कि खाना बनाना।
2: क्या बात,
1: हम लोग ये शादी के बाद वो मेरे साथ खाना बनाते हैं किचन में,
0: बर्तन मांजना वगैरह सब
1: वो सब करता था। मैं फिर जो चॉप करना है वो मैं करती हूँ फिलहाल अभी।
2: तो अच्छा हुआ आपने बता दिया, वरना हमारे श्रोता सुन रहे सोच रहे होंगे कि वहाँ भी टेक्नोलॉजी ले आए होंगे आप।
1: नहीं नहीं नहीं, वो अभी मुझे लगाना है तो वो मिक्सर ग्राइंडर लगा के देता है, ये जो लहसुन का छिलका निकालना है वो सब करके देता है, सब्जी धोने का काम उसका होता है।
2: चलिए हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं प्राजक्ता मैम आपसे, देखते हैं कि क्या जवाब मिलता है ना। सवाल एक जवाब है।
1: ओके
2: अच्छा बताइए, कृष्ण सर का फेवरेट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है?
1: लिनक्स, मतलब उसके नाम के आगे ही लिनक्स नाम है।
2: वहां भी किया गया। हाँ, उनकी फेवरेट टेक कंपनी?
1: टेक कंपनी मतलब उसके खुद की टेक कंपनी उसकी फेवरेट रहेगी।
2: नहीं, अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके अलावा?
1: उसके अलावा ओपन सोर्स में बहुत सारे बहुत अच्छी कंपनीज ने काम किया है, जैसे कि ओरका सॉफ्टवेयर है जो उसने खुद ने पहले स्टार्ट किया था, इट इज अ टॉकिंग सॉफ्टवेयर, वो उसकी फेवरेट रहेगी।
2: अच्छा एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे प्राजक्ता मैम, उनके फेवरेट पॉलिटिशियन कौन?
1: जो मतलब अच्छे से काम कर रहे आई थिंक।
0: हम लोग उस पे ज्यादा बात करते नहीं है, लेकिन ये आई थिंक शी नोज, मैं बोलूंगा तो उसको समझेगा, लाल बहादुर शास्त्री।
2: मुझे पता है कि आप लोग बात नहीं करते, तभी तो ये क्वेश्चन आया मेरे ज़हन में।
1: लाल बहादुर शास्त्री।
2: क्या सही कह रहे हैं क्या सर?
0: बिल्कुल 100%।
2: ओ, क्या बात है, यहाँ तो कुछ चीटिंग हुई है लग रहा है। अच्छा चलिए अभी आपकी बारी है कृष्ण सर।
0: हाँ।
2: इनकी मैम की फेवरेट फिल्म बताइए।
0: फेवरेट फिल्म?
1: हम दोनों फिल्म देखते नहीं है।
2: अभी तो क्वेश्चन ही तो तभी है।
0: हम लोग दोनों ने एक साथ देखी वो फिल्म, से मैं बता सकता हूँ, थ्री इडियट्स। यस।
1: हाँ, मतलब मुझे खुद, हम दोनों नहीं देखते हैं, मतलब मैं खुद से भी पहले बचपन से भी नहीं देखती।
2: इजी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, फेवरेट कलर बताइए।
0: पिंक।
2: सभी का होता है, लड़कियों का?
1: नहीं, मेरा रेड है।
2: ओ, रॉन्ग हो गए आप तो भाई।
1: मतलब दादा मेरे रेड कलर का कुछ खरीदा नहीं है।
2: जी जी जी, चलिए तो बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बातें करके, और अभी अगर आप दोनों के मन में कोई ऐसी बात हो जो रह गई हो हम नहीं पूछ पाए हो तो आप लोग बता सकते हैं, नहीं तो प्रोग्राम के बिल्कुल एंड की तरफ आ गए हैं।
0: मैं एक ही बात कहना चाहूंगा जो मतलब पहले भी मैंने बोर्ड पर बोली है कि
2: जी,
0: जब आप किसी से प्यार करते हो तो खुश रहना और उसके साथ खुश होना, जब वो बात होती है ना, बाकी सारी बातें, कितने भी उसमें झगड़े हो, कितना भी कोई प्रॉब्लम हो, कितने भी मुसीबतें आए, कुछ नहीं, एट द एंड योर लव एंड योर म्यूचुअल हैप्पीनेस इज व्हाट मैटर्स, और हम दोनों में वो सबसे बड़ी वही चीज है, और वो एक चीज है जो जिसके लिए आंखों की जरूरत होती है।
2: एक तरह से आपका मैसेज है सबके लिए।
0: अच्छा, प्राजक्ता को
1: भी
2: जी मैम बताए।
1: कैसा था, मेरी माँ एक बहुत सा सीधी साधी औरत है, बहुत भोली है, मतलब ऐसा कोई रहता नहीं है लाइफ, मतलब दुनिया में, लेकिन वो एक्सेप्शन है, मतलब ये मुझे भी पहले एक्सेप्ट नहीं होता था कि इतनी सीधी साधी क्यों है, ऐसी क्यों है, भोली क्यों है, उसको बहुत ये करती, लेकिन उसने मुझे सिखाया कि सच्चे दिल से प्यार करना चाहिए, किसी को भी करो पूरे सच्चे दिल से प्यार करो, और मतलब आपको भी वो मिल जाता है, मतलब आप कितने भी कहो कि मेरे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, बहुत सी औरतों का ये कंप्लेंट रहता है, बहुत सी लोगों का ये कंप्लेंट रहता है, नॉट ओनली औरतें।
0: हाँ।
1: लेकिन आप जब सच्चे दिल से प्यार करते हो ना, आपको भी सच्चे दिल से प्यार करने वाला मिल जाए, और प्यार एक चीज है कि वो हमेशा प्योर रखो, उसमें कुछ मिलाओ मत।
2: क्या बात, वाह,
1: बहुत प्योरली प्यार करो।
2: वेरी नाइस, वेरी गुड।
1: शादी के टाइम पे ये सोचो कि मुझे दूसरे को साथ देना है, न ना कि मैं सिर्फ समाज को दिखाने के लिए शादी कर रहा हूँ या कोई रिचुअल है कि शादी करनी ही चाहिए ये नहीं होना चाहिए। जब आप बहुत प्रिपेयर हो कि आप दूसरे को साथ दे सकते हो तभी मतलब होता है ना पूरा उसका अर्थ एक होता है।
2: क्या बात, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। आज आप दोनों ने हमको अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम दिया, इतनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें की, रेडियो मधुबन के इस प्लेटफॉर्म पर आए और उम्मीद है आपके इस प्रोग्राम से हमारे श्रोतागण बहुत कुछ सीखेंगे। तो एक बार फिर आपको थैंक यू दोनों को, केके सर और प्राजक्ता मैम और श्रोताओं। ये था आज का हमारा हमराही प्रोग्राम, रेडियो मधुबन सुनते रहें श्रोताओं और कॉल करें 94-14-15-14-15 पर। मिलते हैं अगले रविवार फिर किसी और हमराही के साथ।
3: अभी बजे हैं शाम के 6।

0: 107.8 FM सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है लव और जिंदगी। वैसे बहुत से गाने हमें पसंद आते हैं, लेकिन जब किसी से पूछते हैं आपका पसंदीदा गाना कौन सा है, तो मुझे बहुत बार वो दर्द भरे नगमे, वो ऐसे गाने सुनाई देते हैं जो लोगों को लगता है हमारे डार्केस्ट डीपेस्ट जो ऐसे मोमेंट्स होते हैं, हम वो महसूस कर पाते हैं उन गानों के माध्यम से। तो क्या है वो और टेक्निक्स जो हमें हेल्प कर सकती है हील करने के लिए, इमोशनली अवेयर कर सकती है, बेनिफिट कर सकती है, आइए जानते हैं इस एपिसोड में। और हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे एक्सपर्ट जी। हमारे साथ हैं ग्लोबल अस्पताल से कल्पना जी, जो कि साइकोथेरेपिस्ट भी है, साथ साथ एक स्पिरिचुअल काउंसलर भी है, और हमारे लिए गाइड और फ्रेंड भी है। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू आरुषि, इट वॉज ऑलवेज वंडरफुल श्रोताओं से मिलना, उनसे बातें करना
0: जी।
1: ये हमेशा से ही बहुत इनकरेजिंग हो। थैंक यू
0: जी। जी बिल्कुल। और हमारे जो श्रोता घर है, आई थिंक वो हमारे साथ एक जर्नी पर चल रहे हैं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम खुद की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और जिंदगी से प्यार करना सीख रहे हैं। दीदी, हमने बात की थी इमोशनल अवेयरनेस के बारे में, और पिछले एपिसोड में ये भी जाना था कैसे नींद बहुत बड़ा फैक्टर है। आपने कहा था कि प्रॉपर नींद हो तो बहुत सारे चीजें तो वहीं रिजॉल्व हो जाती हैं। इसके साथ साथ क्या और कुछ टेक्निक्स है जो हमें मदद करती है हमारे इमोशंस को बैलेंस करने के लिए, या हमें उससे गो थ्रू करने के लिए?
1: बिल्कुल, हम फिजिकल एस्पेक्ट को पहले देखते हैं। इमोशनल रेगुलेशन के लिए जैसे हमने नींद की बात की, ये एक फिजिकल एस्पेक्ट है जो कि हमें प्रॉपरली उसके साथ रहना बहुत जरूरी है
0: जी।
1: तो पूरी नींद इमोशनल रेगुलेशन के लिए बहुत जरूरी है। नींद के बारे में मैं एक बात और कहूंगी, अगर आपको दिन भर चिड़चिड़ हो रही है, आप बिना वजह गुस्सा कर रहे हो, या आपको बिना वजह रोना आ रहा है, तो नींद की कमी इसका एक महत्वपूर्ण कारण हो सकती है। अब दूसरा फिजिकल जो कारण है वो हमारा डाइट, जो हमारे इमोशंस पर बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। जिस तरह का भोजन हम लेते हैं, उस तरह से हमारे थॉट्स और इमोशन ऑटोमेटिकली लीड होते हैं। तो भोजन में मैं ये नहीं कहूंगी कि हमारा भोजन सात्विक ही होना चाहिए, परंतु हेल्दी फूड चाहिए जिसमें ऑयल्स की कमी हो,

0: डिग भी हमारा ज्यादा होगा तो भी हमारे इमोशंस को अफेक्ट करेगा, और तीसरा है बहुत ज्यादा नमक।
1: ओके
0: हाँ, तो ये चीजें अगर हम बैलेंस्ड में करते हैं, ऑयल तो है ही मेन कल्प्रिट जिसको हमें कंट्रोल करना है
1: जी।
0: तो जब हम घर का भोजन करते हैं, घर का बनाया हुआ, तो ये सारी चीजों का ध्यान हम अपने आप रख सकते हैं। परंतु आजकल जो फैंसी फूड का जमाना है
1: जी,
0: हम सोशल मीडिया की साइट से फूड ऑर्डर करते हैं और ये रेगुलर हैबिट में आता है। मेरे संपर्क में मेरे कई ऐसे क्लाइंट्स हैं जो रेगुलरली फूड ऑर्डर करते हैं और उसी के ऊपर उनका सारा समय निकलता है। तो ये देखा गया है कि उनमें मूड डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा होता है क्योंकि बाहर का बना हुआ, बाहर से जो फूड ऑर्डर कर रहे हैं वो किस समय बनाया हुआ है, कैसे बनाया है, तेल मसाले कौन से यूज किए गए हैं, उसको फैंसी बनाने के लिए क्या क्या केमिकल्स यूज किए हैं, ये हमें पता नहीं है। और रेगुलर बेसिस पर इस फूड का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारी इमोशंस को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। मैं एक कहानी सुनाऊंगी। एक 20 साल का लड़का था, उसकी माँ ने आके शिकायत की कि मेरा बेटा कमरे में बंद रहता है, सारा दिन कंप्यूटर पर क्या करता है मुझे नहीं पता, परंतु दिन में 3 बार उसके ऑर्डर्स आते हैं जो ऑर्डर्स मैं पिकअप करती हूँ और उसके रूम तक पहुंचाती हूँ, और वो सारे जंक फूड वो खाता है, मैं जो फूड बनाती हूँ प्यार से उसके लिए वो उसको पसंद नहीं है, वो नहीं खाना चाहता है, मेरे साथ वो बात नहीं करना चाहता है, उसको बोर होता है जब मेरे साथ बात करता है, और मैं बहुत कंसर्न्ड हूँ, वो गुस्सा भी बहुत करता है, कभी कभी तोड़ फोड़ भी करता है अगर उसको बाहर से ऑर्डर करके फूड ना दूं। तो ये भी एक तरह का एडिक्शन
1: जी, मतलब फास्ट फूड का भी एडिक्शन होता है बहुत सारा। मतलब मैंने एक वीडियो देखा था और उसमें उन्होंने बताया था एडवर्टाइजमेंट्स में किस तरह से जो दिखाते हैं वो चीज निकलता हुआ और ये सब, कई बार उसमें ग्लू का इस्तेमाल, कई बार ऐसे, मतलब वो आपको दिखाने के लिए वो अलग चीज होती है, आपको लगता है वो रियल फूड है मगर प्रेजेंटेशन है जो आपको अट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आपने बोला तो मुझे वो वीडियो याद आ गया कि किस प्रकार से उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिखाया।
0: ये तो उनकी पॉलिसी है ना कि कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए
1: जी।
0: हमें जो अट्रैक्ट करता है ना जो एडवर्टीजमेंट में वो है आंखों से जो हम देखते हैं ना कलर्स,
1: जी जी,
0: डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स जो एडवर्टीजमेंट में बहुत अच्छे अच्छे कलर्स दिखाई देते हैं वो हमें अट्रैक्ट करते हैं, खासकर बच्चों को
1: जी।
0: छोटे बच्चों को आजकल आप पूछेंगे आपको क्या पसंद है, वो कहेंगे हमें पास्ता पसंद है, हमें पिज्जा पसंद है, हमें बर्गर पसंद है। अब ये नाम पहले हमारे जमाने में थे भी नहीं
1: जी,
0: ये कहाँ से आए, तो फॉरेन मार्केट से इनको यहाँ प्रमोट किया गया। और जब बच्चे पास्ता बर्गर और पिज्जा खाते हैं तो उनको ऐसे लगता है कि हम मॉडर्न हैं।
1: ये बात तो है, वो हमें ये मॉडर्न वाला फील आता है ये खाने के बाद। तो जी मैं ये पूछना चाहती थी आपसे कि आपने बोला फूड इफेक्ट करता है, तो क्या हर एज में इफेक्ट करता है, क्योंकि हम देखते हैं यंग हम होते हैं तो बहुत ज्यादा उससे गैस या ये वाले इश्यूज नहीं होते, बट एज बढ़ती जाती है तो ज्यादा प्रॉब्लम होती जाती है। तो आपने बोला मेंटली इफेक्ट करता है फूड भी, तो हर एज में सेम इफेक्ट करता है या फिर बचपन में इतना नहीं मायने रखता?
0: एब्सोल्युटली, बचपन से ही फूड का इफेक्ट हमारे माइंड पर और हमारे मूड्स पर होता जाता है।
1: ओके,
0: अगर गर्भवती माँ ने भी जंक फूड खाया और उसको कॉन्स्टिपेशन या गैस हुआ तो उसका इफेक्ट भी बच्चे पर होता है, उसके इमोशंस पर होता है। सो घर में बच्चा जैसे ही आ जाता है उसको किस तरह का फूड मिल रहा है
1: जी,
0: किस थॉट से बनाया गया फूड है, वो सारा बच्चे के इमोशंस पर रेगुलरली इफेक्ट करता है। तो चाहे जिस भी उम्र का व्यक्ति हो, फूड इमोशंस को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है।
1: ओके, तो हम इसको यंग एज में ऐसे इजीली नहीं ले सकते कि असर नहीं हो रहा बॉडी पे तो मन पे भी नहीं हो रहा, बट मेंटली तो वो इफेक्ट कर रहा है आपने कहा, और बॉडी पे भी धीरे धीरे करता है। जैसे आपने कहा फूड का बैलेंस रखें, और क्या इसके अलावा भी कोई ऐसी चीज है जो हम ध्यान में रख सकते हैं ताकि हमारे इमोशंस पहले से ही हमारे कंट्रोल में रहे, मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग ना हो हमारे लिए?
0: बिल्कुल, नींद हमने देखा, फूड हमने देखा, तीसरा है फिजिकल फैक्टर, वो है एक्टिविटी लेवल।
1: ओके
0: आजकल

0: लोग कंप्यूटर पर बैठकर सारा दिन काम करते हैं। जो लाइफ सेडेंटरी हो गई है, उस लाइफ की वजह से मूड डिस्टरबेंस होता है। कंप्यूटर का स्क्रीन या मोबाइल का स्क्रीन जो हमारे ब्रेन पर डायरेक्ट इफेक्ट करता है, और बैठकर हम काम करते हैं सारा दिन, तो उसकी स्ट्रेस की शुरुआत जो है ना सेडेंटरी लाइफ की, हमारे नेक से शुरू होती है। गर्दन और कंधों में जकड़न
1: अच्छा,
0: महसूस होती है, पैरों में जकड़न महसूस होती है, बैक में जकड़न महसूस होती है, और इस जकड़न की वजह से, दर्द की वजह से डेफिनेटली हमारा मूड अफेक्ट होता है। इसीलिए आधे घंटे में एक बार उठकर वॉक करना, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लंबा समय बैठने का अगर किसी का काम है, तो हर आधे घंटे बाद उठकर एक 2-3 मिनट का ब्रेक लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो हमारे मूड पर बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं कहती हूँ, हमें अक्सर माउस चलाने की आदत है जो कंप्यूटर पर काम करते हैं।
1: जी
0: तो कुछ दिन पहले मेरे पास एक व्यक्ति आया जिसने कहा कि मेरा राइट हैंड है ना, वो काम करना बंद किया है,
1: अच्छा
0: मैं कंपन हो रही है। ये 45 इयर्स का व्यक्ति था, मेरे
1: ओके
0: हाथ में कंपन हो रहा है, मेरा राइट हैंड जैसे पैरालिटिक हो गया, ऐसे मुझे लग रहा है। तो डॉक्टर ने उसके हाथ को आराम देने के लिए पूरा 15 दिन का हाथ को रेस्ट दिया, तो उसके बाद वो ठीक हुआ। जब वो व्यक्ति मेरे पास आया, तो मैंने उनको पूछा कि आपको क्या लगता है कि आपका हाथ को ऐसा इफेक्ट क्यों हो रहा है, तो वो उस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। फिर मैंने जब उनको और ज्यादा इंक्वायरी की, तो मैंने कहा आप क्या काम करते हैं, तो कहा मैं सारा दिन कंप्यूटर पर काम करता और राइट हैंड से माउस चलाता हूँ।
1: ओके
0: सो वो माउस चलाने की वजह से राइट हैंड की जो नसें हैं वो वीक हो गई,
1: ओ
0: उनकी एक्सरसाइज ना होने की वजह से पूरा कंधे से लेकर उंगलियों तक वो पैरालिटिक फील कर रहा था।
1: इतना
0: और
1: इफेक्ट हो गया।
0: डेफिनेटली अगर फिजिकली आपको कोई प्रॉब्लम है, तो इमोशनली आप अफेक्टेड होते ही हैं, है ना।
1: कनेक्शन है।
0: सो ये जो, फिर मैंने उनको युक्ति बताई कि हम हर एक को एक्टिविटी लेवल में, एक हाथ से जो हम काम करते हैं, हमें अपने ब्रेन को चैलेंज करना बहुत जरूरी है, वही काम हमें दूसरे हाथ से करने की भी आदत डालनी, बीच बीच में अपने ब्रेन को चैलेंज करना है। जैसे अगर हम राइट हैंड से लिखते हैं, तो हमें लेफ्ट हैंड से लिखने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हमारे ब्रेन को मैसेज मिले कि ये भी एक्टिव है ना। सो इसको बहुत सुंदर ये एक्टिविटी है जिसको हम कर सकते हैं, जैसे ब्रश आप करते हैं राइट हैंड से,
1: ओके
0: लेफ्ट
1: जी,
0: हैंड से कर सकते हैं, माउस आप चलाते हैं लेफ्ट हैंड से चला सकते हैं।
1: स्विच करना चाहिए बीच बीच में, कि आई थिंक हम ये बिल्कुल भी नहीं करते, और कभी ये ख्याल भी नहीं आता कि ऐसा करना चाहिए। हमें लगता है कि एक हाथ से वो काम हो रहा है, बट इसका इफेक्ट ऐसा हो सकता है, तो कभी सोचा ही नहीं। तो ज़रूर छोटी छोटी एक्सरसाइज, जैसा आपने कहा, बीच बीच में करें, और बहुत सारे लोग ऑफिस में ही बैठ के काम करता है। तो ये चीज़ आपने जैसे बताई कि फिजिकल का कनेक्शन मेंटल से है ही, तो जब हम एक्टिविटी करते हैं तो ऐसा क्या होता है, मतलब क्या हमारे उस वक्त कुछ, मतलब क्या होता है कनेक्शन, क्या तुरंत ही वो असर पड़ता है या टाइम लगता है? मतलब मान लीजिए मैं आज एक्सरसाइज करना शुरू करूं, तो क्या मुझे चेंज कब तक पता चलेगा?
0: देखिए, अगर बहुत लंबे समय से फाइल स्पेंडिंग है, तो आपको रिकवर करने में उतना लंबा टाइम लगेगा, लेकिन रोज का रोज अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, तो एवरी डे जो पेन्स है और इमोशनल रिलीज होना चाहिए, वो एवरी डे का एवरी डे क्लियर हो जाएगा। अगर आपने फाइल्स लंबे समय से पेंडिंग रखी है, दैट मींस लंबे समय से आपने फिजिकल एक्टिविटी नहीं किया। अच्छा, आपने बहुत सुंदर सवाल पूछा कि फिजिकल, हम दूसरे भी काम करते हैं घर के सारे, उससे हमें थकावट होती है, लेकिन अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उसमें भी एक्टिविटी होती है, उससे हमारे मसल्स का जो डैमेज हुआ है, जो खर्च हुआ है, वो रीगेन होता है, क्योंकि वो सिस्टमैटिक एक्टिविटीज होती है जो शरीर के पर्टिकुलर पार्ट को सिस्टमैटिक स्ट्रेच या एक्सरसाइज देती है। सो इसीलिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, चाहे गृहिणियां हैं या बच्चे हैं जो पढ़ाई बहुत करते हैं, सारा दिन बैठकर पढ़ाई करते हैं, तो उनको भी आधे या 1 घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद लेते हैं तो 5 मिनट का ब्रेक, एक घंटे के बाद लेते हैं तो 10 मिनट का ब्रेक में कुछ छोटी छोटी एक्सरसाइजेस या स्ट्रेचेस करते रहना चाहिए।
1: मतलब मूवमेंट बहुत जरूरी है, और जैसे आपने कहा सिस्टमैटिक मूवमेंट,
0: जी
1: जो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, तो हमने ये समझा कि टाइम लग सकता है, कई बार होता है हम शुरू कर देते हैं हमें लगता है अरे असर नहीं हो रहा, फिर हम छोड़ देते हैं, मगर आपने कहा ना कि फाइल्स लंबी पेंडिंग है तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो करते रहें, कंटिन्यूटी बरकरार रखें। दीदी, क्या हम सभी जाते जाते कुछ ऐसा मेडिटेशन 2 मिनट का कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसे आपको लगता है अफर्मेशंस हैं जो हमें मोटिवेटेड रखें कि हम ये डेली करें, क्योंकि हम कई बार शुरू तो कर देते हैं पर वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो क्या मोटिवेट करेगा हमें करने के लिए?
0: बिल्कुल, आज मैं अफर्मेशंस की जगह कुछ ऐसे सेंटेंसेस आप सभी को बताना चाहूंगी जिसको अगर आप लिख कर रखें और रिपीट करें तो वो आपको याद दिलाएंगे कि मेरे इमोशनल रेगुलेशन के लिए, मैच्योरिटी के लिए ये चीजें मुझे ध्यान पर रखनी है। फॉर एग्जाम्पल कि कुछ सेंटेंस ऐसे है जो संबंधों में परिपक्वता ले आते हैं, इमोशनल मेच्योरिटी ले आते हैं
1: जी।
0: तो उसमें कोई चीज ऐसी है, जैसे पहली बात है कि इमोशनल रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए पहले सुने सामने वाले की बात पूरी और फिर बोले, तुरंत प्रतिक्रिया ना दे।
1: ओके।
0: कभी कभी कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं रिलेशन पे तो किसी व्यक्ति को टारगेट ना करे लेकिन समस्या को टारगेट करे।
1: ओके, इंटरेस्टिंग। हम व्यक्ति को टारगेट करते हैं, हमें लगता है उसने गलती की है, पर उसको नहीं, गलती को, समस्या को टारगेट करें
0: उसको ठीक करने की। फिर दूसरी तीसरी बात है कि किसी की आलोचना नहीं करें। आपके बोल चाल में, व्यक्तित्व में, किसी के साथ बात करते समय अगर किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, हम थर्ड पर्सन को, तो सामने वाला समझ जाता है कि ये क्रिटिसाइज करने वाला व्यक्ति है वो आपके पास ओपन अप नहीं होना चाहता है, वो आपके साथ खुलकर नहीं मिलना चाहता। तो किसी की भी आलोचना नहीं करें, लेकिन आप अपना सुझाव दे सकते, आप अपना विचार रख सकते हैं। चौथी बात, हमें दूसरों से एक्सपेक्टेशंस होती है, एक्सपेक्टेशंस की जगह, अपेक्षाओं की जगह लोगों को एक्सेप्ट करना सीखे।
1: ओके।
0: वो जो है जैसे है एक्सेप्टेड है ना, फ्रेंड्स है, माता पिता और बच्चे है, हर रिलेशन में हमारी एक्सपेक्टेशन की जगह हम एक्सेप्ट करें।
1: Okay.
0: चौथी बात, अगर हम कोई गलती करते हैं तो दिल बड़ा करके सॉरी कहने की आदत डालें।
1: अगर हम शब्द लेकिन बड़ा मुश्किल होता है कई बार जी।
0: फिर दूसरों की फीलिंग्स का, भावनाओं का हमेशा सम्मान करें कि जैसे मेरी भावनाएं इम्पोर्टेंट है, उनकी भी फीलिंग्स, चाहे हो सकता है मेरे से डिफरेंट हो, अलग हो, परंतु उसको हम रिस्पेक्ट करें कि ठीक है ये आपकी फीलिंग है, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। फिर इमोशनल रेगुलेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है गॉसिप करने से दूर रहे।
1: ओके।
0: गॉसिपिंग में हमारी बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट जाती है और इस वजह से हम इमोशनली टायर्ड हो जाते हैं। फिर जहां इमोशनल मैच्योरिटी दिखाने की जरूरत है वहां हम एग्जॉस्टेड होते हैं और सही इमोशन एग्जिबिट नहीं कर पाते।
1: ओके।
0: फिर आप किसी के अंडर काम करते हैं तो उस समय दबाव महसूस करते हैं, हम बड़ों के साथ काम करते हुए दबाव और सप्रेशन को फील करते हैं, बट इसकी जगह पर संतुलन को महसूस करें, बैलेंस, ठीक है, रिस्पेक्ट है बट प्रेशराइज फील ना करें खुद को, ताकि आपके इमोशंस, आपके बातचीत में वो कॉन्फिडेंस आपका दिखाई दे। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इमोशनल रेगुलेशन सीखना है तो टीम में काम जब हम करते हैं, सब मिलकर काम करते हैं तो टीम की एक सफलता होती है, जब टीम मिलकर काम करती है तो टीम में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे से दे ताकि टीम सक्सेसफुल हो। हम देखते हैं ना कि अपने क्रिकेट है, अभी अभी फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ, सो सबके कोऑपरेशन से सक्सेस मिलती है।
1: कहते हैं देयर इज नो आई इन टीम, वो मैंने सुना था कहीं पे कि सब मिलके करें, बिल्कुल एक से नहीं होता, ग्रुप से होता है। जी दीदी।
0: ओके, लास्ट में मैं एक 2 सेंटेंस आपको कहना चाहूंगी कि जिस व्यक्ति ने अपनी भावनाओं को समझना और संभालना सीख लिया उसके जीवन की सबसे बड़ी कला उसने सीख ली। परिस्थितियां हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया हमेशा से हमारे नियंत्रण में है, ये हमारा चुनाव है। इसलिए जब भी कोई प्रतिक्रिया दे तो शांत और स्थिर मनोस्थिति के साथ प्रतिक्रिया देने का प्रयास करें।
1: वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसका ये मतलब नहीं है प्रतिक्रिया देनी नहीं है, लेकिन जैसा आपने कहा शांत मन के साथ बैलेंस्ड वे में उसे देने और लेने की कोशिश करें। वंडरफुल दीदी, मुझे लगता है ये हम इमोशनल बैगेज से डील कर लेते हैं तो फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए एनर्जी बचती है, नहीं तो एग्जॉस्ट हो जाते हैं और फिर लगता है थक गए हैं, अब नहीं करेंगे, कल से करूंगा, फिर वो कल कभी नहीं आता। तो अपनी एनर्जी को बचाएं और फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें जैसा दीदी ने कहा, ताकि आपको वो हेल्दी इमोशंस आप उसको फील कर पाए। थैंक यू सो मच दीदी, बहुत इंटरेस्टिंग बातचीत थी आज। हमें स्लीप के बारे में बात की, फूड के बारे में बात की, एक्सरसाइज के बारे में बात की। आई थिंक शुरुआत करनी है तो आज से ही करेंगे, कल से नहीं। और फिलहाल लेकिन इजाजत लेते हैं रेडियो मधुबन के इस एपिसोड से, मुलाकात होगी लव यू जिंदगी के अगले एपिसोड में। तब तक गुड बाय, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी को कहिए लव यू जिंदगी।

0: रुका ओए त्रिदेव त्रिमूर्ति, एक बाइक पे तीन हैं और तुम लोगों को शर्म नहीं आती? और बाइक एक और एक साथ तीन चढ़े जा रहे हो, और तीन लोगों का जाना अलाउड नहीं है बाइक पे, मालूम नहीं तुमको? ओए अपनी नहीं तो इस बाइक की सोचो बेचारी, तीन के बोझ की मारी।
1: सर बहुत जरूरी मैच है सर आज।
0: ओए तुम्हारे मैच की तो, वो एक बाइक पे तीन जा रहे हो और कुछ हो गया तो सीधे हमेशा के लिए क्लीन बोल्ड हो जाओगे, वो जिंदगी के स्टैंप उखड़ जाएंगे। वो ये ट्रैफिक है भाई, यहाँ तो कोई फ्री हिट भी नहीं मिलती, ठोको ताली। ओए मुझसे कोई नहीं बच सकता क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: याद रखें, एक बाइक पर कभी दो से ज्यादा लोग एक साथ न जाएं, यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: वंदे मातरम गीत भारत की आजादी की लड़ाई का प्रतीक था। इसमें स्वशासन की सामूहिक इच्छा और लोगों का अपनी मातृभूमि के प्रति भावनात्मक जुड़ाव झलकता था। शुरुआत में स्वदेशी और विभाजन विरोधी आंदोलनों के दौरान लोकप्रिय हुआ ये गीत जल्द ही क्षेत्रीय सीमाओं के ऊपर उठकर राष्ट्रीय जागृति का गीत बन गया। बंगाल की सड़कों से लेकर बॉम्बे के मुख्य इलाकों और पंजाब के मैदानों तक वंदे मातरम का स्वर ब्रिटिश शासन के विरोध के प्रतीक के रूप में गूंज उठा। ये सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि देश के अनेक वीर क्रांतिकारियों का प्रेरणा मंत्र भी था। फिर वो अमेरिका में गदर पार्टी के प्रमुख क्रांतिकारी रहे करतार सिंह सराबा ही क्यों ना हो। वंदे मातरम का नारा उन्हें वतन पर मर मिटने का हौसला देता था। आज के एक गीत एक नारा राष्ट्रगीत हमारा कार्यक्रम में हम सुनेंगे इन्हीं वीर क्रांतिकारी करतार सिंह की कहानी, जो मात्र 19 साल की आयु में फांसी पर चढ़ा दिए गए।
1: दीदी, सच में वंदे मातरम गीत में बड़ी शक्ति है। आज भी सुनती हूँ तो अंदर एक जोश भर जाता है।
2: हाँ बन्नू, सोचो आज जब ये गीत हमारे दिलों को इतना झंझोर देता है, वैसे में स्वतंत्रता आंदोलन के समय इसका कितना प्रभाव रहा होगा कि इसने देश के अनेक युवाओं में क्रांति की लौ जगाने का कार्य किया। वंदे मातरम गीत न सिर्फ क्रांतिकारियों में नया जोश, शक्ति और उम्मीद भरता था, बल्कि वो उनका बीज मंत्र बन गया था। गदर आंदोलन के दौरान भी इस गीत ने क्रांतिकारियों के हृदय में जल रही ज्वाला को बुझने नहीं दिया।
0: आप श्रोताओं को याद होगा कि कैसे 15 जुलाई 1913 को कैलिफोर्निया के पंजाबी भारतीयों ने एकत्रित होकर गदर पार्टी का गठन किया था। उसका उद्देश्य था सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से भारत में ब्रिटिश शासन से मुक्ति पाना। वीर क्रांतिकारी लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना पार्टी के संस्थापकों में से थे। उन्होंने गदर नाम से एक समाचार पत्र भी निकाला था, जो पंजाबी, हिंदी, उर्दू, बंगाली, गुजराती और पश्तो भाषाओं में प्रकाशित होता था। देखते ही देखते वो अंग्रेजों की आंखों की किरकिरी बन गया था। वो उसमें प्रकाशित होने वाले लेखों से भयभीत रहने लगे थे। लेखकों में एक नाम था करतार सिंह, जो अखबार के लिए देशभक्ति की कविताएं और लेख लिखा करते थे। साथ ही साथ अखबार की गुरमुखी संस्करण की छपाई का जिम्मा भी संभालते थे। बहुत कम समय में गदर पार्टी गदर आंदोलन के माध्यम से प्रसिद्ध हो गई और इसने समाज के हर वर्ग को अपनी ओर आकर्षित किया।
1: गदर पार्टी के ये करतार सिंह आखिर कौन थे दीदी, जिनके लेख अंग्रेजों को बिल्कुल नहीं सुहाते थे?
2: अरे बन्नू, उनके बारे में बताऊंगी तो दांतों तले उंगली दबा लोगी तुम।
1: अच्छा, ऐसा क्या था उनमें?
2: बेजोड़ साहस, बेखौफ युवा जिसे किसी का डर नहीं था।
0: सोहन सिंह भाकना करतार सिंह को बाबा जनरल कहा करते थे। देश की स्वाधीनता की लड़ाई में मर मिटने को तैयार करतार ने अमेरिकियों से बंदूक चलाना और विस्फोटक उपकरण बनाना सीखा था। साथ ही हवाई जहाज उड़ाने का प्रशिक्षण भी लिया था। यह साल 1914 की घटना होगी। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। ब्रिटिश हुकूमत अपने मित्र देशों के साथ युद्ध में तल्लीन हो गया था। तब गदर पार्टी के नेताओं ने इस अवसर को भुनाने का फैसला किया।
3: क्यों ना गदर पत्रिका के जरिए कुछ वड्डा किया जाए।
4: कोई सुझाव हो तो बताओ,
3: एक दमदार आलेख प्रकाशित करते हैं।
0: इस तरह 5 अगस्त 1914 के अंक में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का निर्णय शीर्षक से एक लेखक प्रकाशित हुआ। पत्रिका की हजारों प्रतियां सैन्य छावनियों, गांवों और शहरों में वितरित की गई। इसके साथ ही पार्टी के नेताओं ने कलकत्ता जाने का निर्णय लिया ताकि आगे की कार्रवाई को संपन्न करा सकें।
4: हम कलकत्ता कैसे जाएंगे?
3: आप लोग ऐसे सलामिन जहाज से कोलंबो और वहाँ से कलकत्ता पहुँचेंगे।
4: मेरे साथ और कौन कौन जा रहे हैं?
3: आपके साथ सत्यन सेन, विष्णु सेन, विष्णु गणेशन पिंगले और गदर के स्वतंत्रता सेनानी भी होंगे।
4: ठीक है, फिर हम जाने की तैयारी करते हैं।
3: जुगंतर नेता जतिन मुखर्जी के परिचय पत्र के साथ कलकत्ता पहुंचकर आप और पिंगले बनारस जाएंगे और वहां राज बिहारी बोस से मुलाकात करेंगे। उन्हें सूचित करेंगे कि 20,000 और गदर सदस्य जल्द ही आने वाले हैं।
0: हालांकि इस बीच ब्रिटिश अधिकारियों को इस योजना की भनक लग गई और बड़ी संख्या में गदर पार्टी के नेताओं को बंदरगाहों पर ही गिरफ्तार कर लिया गया।
1: फिर क्या हुआ दीदी?
2: होना क्या था, गदर के क्रांतिकारी कहां से पीछे हटने वाले थे। गिरफ्तारियों के बावजूद पार्टी के सदस्यों ने लुधियाना के पास लादोवाल में एक बैठक की। बैठक में सशस्त्र कार्रवाई के लिए वित्तीय आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए अमीरों के घरों में डकैती करने का निर्णय लिया गया।
0: तय योजना के तहत सब ठीक ही चल रहा था, तभी एक छापे के दौरान हुए बम विस्फोट में दो गदरी वार्याम सिंह और भाई राम रखा मारे गए। उधर 25 जनवरी 1915 को राज बिहारी बोस अमृतसर पहुंचे और 12 फरवरी को साथियों के साथ एक बैठक की।
5: साथियों, हाल ही की घटनाओं से तो आप सभी वाकिफ ही होंगे। हमें बहुत सोच समझकर और संभल कर विद्रोह का निर्णय लेना है।
6: आपने क्या सोचा है?
5: अगर आप सभी की सहमति हो तो 21 फरवरी को विद्रोह शुरू किया जाएगा। पहले हम मियां मीर और फिर फिरोजपुर की छावनियों पर कब्जा करेंगे, उसके बाद अंबाला और दिल्ली के पास विद्रोह को अंजाम दिया जाएगा।
6: ठीक है, हम सब आपके साथ हैं।
0: पार्टी के सदस्य योजना अनुसार तैयारी में जुटे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि उनके बीच कोई पुलिस मुखबिर है जो सभी योजना पर पानी फेर सकता है।
7: जनाब, गदर पार्टी वाले बड़ी योजना बना रहे हैं।
8: What is their plan? Tell me.
7: साहब जी, मेरा नाम नहीं आना चाहिए वरना वे मुझे नहीं छोड़ेंगे। आप गारंटी दें तो मैं बताऊं।
8: Don't test my patience. Just tell their plan.
7: वे सभी 21 फरवरी को बड़ा धमाका करेंगे। छावनियों पर कब्जे की बात कर रहे थे। दिल्ली अंबाला किसी को नहीं छोड़ेंगे।
8: Oh, how dare are they?
0: किरपाल सिंह की मुखबिरी के कारण 19 फरवरी को ही बड़ी संख्या में पार्टी के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। ब्रिटिश सरकार ने देशी सैनिकों को निहत्था कर दिया। इससे विद्रोह विफल हो गया। क्रांति की विफलता के बाद जो सदस्य गिरफ्तारी से बच गए थे उन्होंने भारत छोड़ने का फैसला किया।
9: मुझे कहां जाना है सोहन सिंह जी?
3: आप हरनाम सिंह तुंदिलाल, जगत सिंह और कुछ अन्य साथी अफगानिस्तान जाएंगे, ईश्वर सिंह चीन जाएंगे।
0: सोहन सिंह ने तो फैसला सुना दिया था लेकिन करतार सिंह के मन में कुछ और ही चल रहा था। 2 मार्च 1915 को वो दो दोस्तों के साथ वापस आए और सरगोधा के चक नंबर 5 में चले गए जहां एक सैन्य अड्डा था। वहां उन्होंने सेना के जवानों के बीच विद्रोह का प्रचार करना शुरू कर दिया। लेकिन इसकी भनक रिसालदार गंडा सिंह को मिल गई और उन्होंने करतार, हरनाम सिंह तुंदिलात और जगत सिंह को लायलपुर जिले के चक नंबर 5 से गिरफ्तार करवा दिया। गदर पार्टी में खलबली मच गई।
1: आगे क्या हुआ दीदी? गिरफ्तारी के बाद करतार सिंह और उनके साथियों के साथ क्या हुआ?
2: बन्नो, तुम क्यों घबरा रही हो? क्रांतिकारी सदा अपनी जान हथेली पर लेकर चला करते हैं। उन सभी पर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ षड्यंत्र रचने का गंभीर आरोप लगा था, लिहाजा सजा भी बड़ी होनी थी।
1: क्या सजा मिली दीदी?
2: फांसी।
1: ओह, ये तो बहुत दुखद हुआ।
2: हाँ, लेकिन सच यही है।
1: किसी ने उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की?
0: ब्रिटिश पुलिस ने करतार सिंह और उनके साथियों पर जो षड्यंत्र के आरोप लगाए थे उसे उन्होंने मानने से इनकार कर दिया था। उन्होंने तर्क दिया था कि ये सिर्फ विदेशी हुक्मरानों को एक खुली चुनौती थी, जिसे राजद्रोह का नाम दिया जा रहा था।
9: सारे आरोप गलत हैं। मुझे अपने किए पर किसी भी प्रकार का पछतावा नहीं है। ये तो सत्ता हथियाने वालों की महज एक चुनौती थी जिस पर मुझे गर्व है। प्रत्येक दास को विद्रोह करने का अधिकार है। अपने देशवासियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उठ खड़ा होना कभी अपराध नहीं हो सकता।
0: करतार सिंह की अपनी दलील थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार उसे कहां मानने वाली थी। उन्होंने राजद्रोह का मुकदमा चलाया। करतार सिंह भी पीछे हटने वाले नहीं थे।
9: आप अपनी करो, मैं अपनी। सारा दोष मेरा है।
10: I'm really surprised to see this man. He is so fearless.
0: न्यायाधीश इतने कम उम्र के लड़के को इस तरह बेपरवाह व्यवहार करते देखकर चकित थे। करतार की उम्र को देखते हुए उन्होंने उनसे अपना बयान बदलने की सलाह दी। उनसे अपील करने को कहा गया। तब करतार ने पलटवार किया।
9: मैं ऐसा क्यों करूं? अगर मेरे पास एक से अधिक जीवन होते ना, तो अपने देश के लिए उनमें से प्रत्येक का बलिदान करना मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान होता।
0: करतार को वापस जेल भेज दिया गया। उन्हें एहसास था कि ब्रिटिश सरकार उन्हें छोड़ेगी नहीं, इसलिए वो अपने साथियों के साथ जेल से भागने की योजना बनाने लगे।
9: सुनो, अगर हमें कुछ औजार मिल जाए ना, तो हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं।
11: कौन करेगा हमारी मदद?
9: कोई ना कोई देशभक्त तो मिल ही जाएगा, उसे ढूंढो।
11: ठीक है, देखता हूँ।
0: और एक दिन करतार के साथियों को एक मददगार मिल गया, जिसने उन्हें सलाखों को काटने वाला एक औजार उपलब्ध करा दिया। सभी बड़े सावधानी से अपनी योजना को अंजाम देने में लग गए, लेकिन किस्मत ने फिर से धोखा दिया। किसी गद्दार ने जेल अधिकारियों को इसकी खबर दे दी।
12: साहब, करतार और उसके साथी जेल से भागने की योजना बना रहे हैं।
13: तुम पागल हो, इस जेल से कोई भी भाग नहीं सकता।
12: जनाब जनाब, आप उसके सेल में छापा तो डालिए। मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे दो कोड़े लगा देना।
13: ओह यू फूलिश, चलो देखता हूं।
0: जेलर अचानक से करतार सिंह के सेल के पास पहुंचता है और ताला खोलने को कहता है।
13: तुम साहब एक साइड खड़े हो जाओ। सिपाही, तलाशी लो पूरे सेल की।
14: जी जनाब।
12: लगता है किसी ने गद्दारी कर दी है।
14: सर जी, ये देखिए, इस मिट्टी के गड्ढे के नीचे क्या मिला।
13: औजार, चप कर लो सबको और अलग अलग सेल में डाल दो।
0: जेलर करतार को घूरते हुए बाहर निकल जाता है। फिर सुनवाई की तारीख आती है। एक बार फिर से सभी जज के सामने थे।
15: करतार, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है?
12: नहीं जी, जो कहना था मैं कह चुका हूं।
10: Then I must announce the judgment.
15: करतार और उसके साथ षड्यंत्र में शामिल सभी लोगों को फांसी की सजा सुनाई जाती है।
0: इस तरह जज ने सजा सुना दी और फिर वो मनहूस तारीख आई, 17 नवंबर 1915, जब करतार सिंह और उनके साथियों को लाहौर के केंद्रीय जेल में फांसी दे दी गई। फांसी के समय करतार की उम्र मुश्किल से 19 वर्ष थी। लेकिन उसका साहस ऐसा था कि कैद के दौरान उसका वजन 14 पाउंड बढ़ गया था।
1: इतनी छोटी उम्र में इतना साहस, वो तो सच में बड़े निडर थे।
2: हाँ बन्नो, करतार सिंह की रगों में देशभक्ति इतनी कूट कूट कर भरी थी कि वो कैसे भी उस पर अपनी जान न्योछावर करने को तैयार रहते थे। जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाती उसे सहर्ष स्वीकार करते थे।
1: देश को तो उन पर नाज है, उनके परिवार वालों को भी बेटे पर फक्र होगा।
2: तुम जानना चाहोगी कि करतार सिंह ने भावी क्रांतिकारियों के सामने कितनी बड़ी मिसाल पेश की? यहां तक कि शहीद भगत सिंह भी उनसे प्रेरित थे। भगत सिंह की गिरफ्तारी पर उनके पास से करतार सिंह सरबा की तस्वीर बरामद हुई थी। वे हमेशा इस तस्वीर को अपनी जेब में रखते थे।
0: ये थी एक महान युवा क्रांतिकारी के शहादत की कहानी। वो क्रांतिकारी जिसका जन्म पंजाब के लुधियाना के समीप सरभा गांव में मंगल सिंह ग्रेवाल और साहिब कौर के घर हुआ था। वो एक जट सिख परिवार से थे। बहुत छोटे थे तभी उनके पिता का निधन हो गया था। दादा ने उनका पालन पोषण किया। गांव में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद करतार सिंह का लुधियाना के मालवा खालसा हाई स्कूल में दाखिला कराया गया। वहाँ 8वीं कक्षा तक पढ़ाई करने के बाद जुलाई 1912 में उन्हें बर्कले स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के लिए सैन फ्रांसिस्को भेज दिया गया। हालांकि उनके वहाँ अध्ययन के भिन्न भिन्न प्रमाण हैं। बाबा ज्वाला सिंह के एक ऐतिहासिक नोट में उल्लेख है कि जब वो दिसंबर 1912 में एस्टोरिया ओरेगन गए तो उन्होंने करतार सिंह को एक मिल कारखाने में काम करते हुए पाया। विश्वविद्यालय के पास करतार सिंह के दाखिले का कोई रिकॉर्ड नहीं है। बर्कले में भारतीय छात्रों के नालंदा क्लब के साथ उनके जुड़ाव ने उनकी देशभक्ति की भावनाओं को जगाया। जो भी हो, वंदे मातरम के मूल मंत्र को अपने दिल में बसाए इस वीर क्रांतिकारी ने देश को आजाद कराने का ना सिर्फ सपना देखा बल्कि उसे पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। एक गीत एक नारा राष्ट्रगीत हमारा कार्यक्रम में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में सुनेंगे एक और वीर क्रांतिकारी के शहादत की कहानी।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माय विलेज माय एरिया। सही में नाम जब सुनते हैं अपना गांव और अपना अंचल कितना खुशी महसूस होता है। जिस गाँव और अंचल में मैं रहे पले बड़े और यहाँ तक पहुँचे वो गाँव का अवदान जो देन हमारा प्रति उसको रिटर्न देने के लिए हमें हमेशा तत्पर रहते हैं। कभी भी मौका मिलते तो गांव को आदर्श बनाने के लिए हमारा अंगुली लगना चाहिए, सहयोग का भावना होना चाहिए, हमारा शुभ भावना और शुभ कामना जैसे हमारा वृत्ति हो और हमारा दृष्टि में सबका प्रति रूहान्वित हो और हमारा कर्म कृति सहायता सहयोग का भावना हो। तो आज इस कार्यक्रम को लेकर जब केवल स्थित स्कूल प्ले ग्राउंड में पहुंचे, सुबह का समय है और आपको ये सब कार्यक्रम रात को सुनने मिल रहा है और खुशी है क्योंकि पर्यावरण है तो हम है। पर्यावरण का जितना भी हम जिक्र करें कितना भी एपिसोड बनाए तो कम ही होगा। जैसे सागर का पानी को कितना भी हम बाहर निकले वो पानी खत्म ही नहीं होता है, उसका महिमा अपरंपार है। तो प्रकृति का जो एनवायरनमेंट जो कि पर्यावरण अति आवश्यकता है सभी के लिए और प्रकृति है तो हम है और प्रकृति पति जिसको कहते हैं आत्मा और पुरुष, प्रकृति और पुरुष का मिलन है। तो आज इस कार्यक्रम को लेकर पहुंचे केवल स्थित स्कूल का प्लेग्राउंड में और हमारा साथ इस कार्यक्रम को हर रोज की तरफ हर एपिसोड की तरफ आज भी श्रीमान भोपाल राम पुरोहित जी है जो कि पर्यावरणविद है, तो एक्सपर्ट है उस पर्यावरण में एनवायरमेंट में बहुत काम किए हैं। तो उनको स्वागत करते हैं, पुनः सर आपको वेलकम करते हैं। आज हमें खुशी है हमारा जो एपिसोड को आज का एपिसोड को आप चार चांद लगाएंगे और हमारा श्रोता मित्र को तो हम जो बात करेंगे उसमें जरूर फायदा होगा क्योंकि जनहित में रेडियो मधुबन हमेशा तत्पर रहता है। सरकार का जो मंशा है उसको जन जन तक पहुँचाने के लिए रेडियो मधुबन एक मंच देता है और कम्युनिटी एंगेजमेंट जो डायरेक्टली आज देखने को मिल रहा है क्योंकि कम्युनिटी से बिलोंग करते केवल ग्राउंड के ही निवासी और शिक्षा जगत में भी बिलोंग करते थे लेकिन रिटायर्ड होने के बाद रेडियो मधुबन ईश्वरीय सेवा में लग गए, उनका प्रमोशन हुआ है गॉड।
1: नमस्कार सर, सर्विस खुशी है सर, बहुत
0: गवर्नमेंट सर्विस होने के बाद फिर गॉड सर्विस में लगे हुए और हम तो गॉड सर्विस में पूरा जीवन को सैक्रिफाइस किए। तो हमारा देखते सुनते स्कूल में जब देखे हमारा कार्यक्रम को सैक्रिफाइस को तो बोले भाई समय मिलेगा तो हम भी इस तरह जनहित में देश हित में और गाँव हित में करेंगे और प्रोग्राम का नाम ही मेरा गाँव मेरा अंचल। सर धन्यवाद, आपको स्वागत।
1: सर आपको नमस्कार।
0: नमस्कार
1: सर, रेडियो मधुबन प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से इसके प्रतिनिधि के रूप में बीके पवित्रा भाई पर्यावरण को लेकर के बहुत ही आशान्वित हैं और ईश्वरीय विश्वविद्यालय अपने आध्यात्मिक लक्ष्य के साथ में उसकी प्राप्ति में जो हमारा भौतिक जगत है उसकी पर्यावरण शुद्धि उसको किस प्रकार से प्रभावित करती है उस पर बहुत बड़ा कार्य कर रही है। अपना दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में राजयोग के साथ में काम कर रहा है। अब भौतिक रूप से जो पर्यावरण है उस पर भी यहाँ पर बहुत बड़ा काम हो रहा है
0: जी।
1: सोलर एनर्जी का प्रयोग है, अपने किचन में सारे सोलर सिस्टम का उपयोग हो रहा है जहाँ हजारों लोग प्रतिदिन ब्रह्मा भोजन पाते हैं। साथ में जितने लोग इस संस्था से जुड़े हुए हैं वो भी आध्यात्मिकता के साथ साथ में पर्यावरण जितना आवश्यक है, जैसे मानसिक शांति के लिए शरीर की शुद्धि आवश्यक है इस तरह से विश्व शांति के लिए पर्यावरण की शुद्धि की बहुत बड़ी आवश्यकता है और उस पर यहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट से लेकर के प्रतिदिन के भोजन वेस्ट के सदुपयोग, प्रदूषित जल का उपचारीकरण, वैचारिक शुद्धिकरण, वास्तव में इस तरह का जो समामेल है वो बहुत ही अद्वितीय प्रकार का है। एक फील्ड में हमेशा काम होता रहा है, जैसे पर्यावरण है तो वो उसके लिए काम कर रहा है, विभिन्न विभाग है तो वो उसके लिए इंडिविजुअल काम करते हैं, लेकिन ये सभी को समन्वय करके अपना काम कर रहे हैं। तो इसी से प्रेरित होकर के बीके समर्पित हमारे मधुबन के पवित्रा भाई वो मेरे निरंतर संपर्क में है और मेरी भावना को जानते हुए मैं पर्यावरण पर अपनी जो जानकारी है

0: कैसे जोड़ा जाए। आपके अनुभव के आधार पर मैंने कुछ शास्त्रों का आधार लेकर के भी इस पर काम करने की कोशिश की। मेरे ख्याल से यह समन्वित आपके सहयोग से पहला प्रयास ही होगा। इसमें पूर्व में पृथ्वी प्रदूषण, विभिन्न प्रकार का वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण पर हम बातचीत कर रहे हैं कि ये प्रदूषण है वो हमारी जीवन आशा को घटा रहा है।
1: जी जी,
0: कई तरह के प्रदूषण हो रहे हैं, जैसे वैचारिक प्रदूषण में बात करें तो मोबाइल का एक दुष्प्रभाव। हर बार हम ये चर्चा करते रहते हैं कि ये जो यांत्रिक जगत है उसकी आवश्यकता तो है, लेकिन उसको मिनिमाइज कैसे करें, कम से कम कैसे करें, इस पर चर्चा कई बार। एक निश्चित दूरी तक या कम दूरी तक साइकिल का उपयोग, उससे भी कम दूरी तक पैदल चलना जो विभिन्न बीमारियों को कम करता है। ज्यादा दूरी पर तेज गति के वाहन का उपयोग, ऐसा नहीं कि हम हवाई जहाज के उपयोग की वो कहते हैं कि भाई वो प्रदूषण करेगा या उसके लिए उसको उपयोग को नकारते, ऐसी बात नहीं है। अपने को अपने समय के विकास के साथ में, विकास के चक्र में जुड़ते हुए आवश्यकता अनुसार, इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी करते हुए आवश्यकता अनुसार, जितना हम पर्यावरण की शुद्धि कर सकें उतना करते हुए, क्योंकि देखिए वो सारी चीजें मानव के लिए बनी है, और वो मानव के लिए बनी और मानव को नुकसान कर दे लालच में,
1: हमारा रक्षक भक्षक हो गया
0: तो फिर
1: क्या करने के लिए,
0: बिल्कुल,
1: लेकिन उसका दुरुपयोग करेंगे,
0: दुरुपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से बिल्कुल बिल्कुल वो भक्षक बन जाएगा। तो इसीलिए ये एक समायोजन है और ये प्रयास हम सबको करना पड़ेगा। दूसरा, ज्ञान सबको है, ज्ञान बहुत पवित्र चीज है
1: जी,
0: पर उसके साथ में उसके अनुरूप कर्म करना है। जैसे हम सत्संग की बात करते हैं कई बार, क्योंकि ज्ञान तो है, भोजन की आवश्यकता शरीर को रोज होती है, तो फिर सत्संग की आवश्यकता भी रोज है, उस ज्ञान को बांटने की आवश्यकता भी रोज है। तभी तो हमारा जो है इस दर्पण पर जो काली माँ जमी हुई है वो साफ होगी सत्संग के माध्यम से, तभी तो विचार शुद्धि होगी, तभी कर्म होगा। तो हमको निष्काम कर्म करना है, उसका सीधे अपने को फायदा होता है या नहीं होता है, लेकिन अगर जन समूह को फायदा होगा तो वो भी अपने फायदे के लिए काम करेंगे, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा फायदा पूरी मानव जाति को हो जाएगा। जल प्रदूषण के कई छोटे छोटे कारण और उपायों पर चर्चा करते हुए भाई अपने घर से ही शुरू करें,
1: बराबर,
0: कि पानी में अशुद्धि कितनी है, तो यांत्रिक तरीके से वाटर प्योरीफायर लगा करके अब करते हैं, इसी तरह से बड़े प्योरीफायर्स भी लगते हैं। उसके बाद में जो जल बचता है उसका उपयोग पेड़ पौधों के लिए हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति उसको सहन कर लेती है, इंसान नहीं कर पाएगा, उसकी किडनी डैमेज हो जाएगी, तो हम उसकी शुद्धि कर सकते
1: बात बोलता है,
0: उसकी शुद्धि कर सकते, कहने का मतलब जैसे पानी
1: को डाइजेस्ट कर सकता है,
0: प्रकृति डाइजेस्ट कर सकती है, इंसान नहीं कर सकता, तो उसके लिए हमको कर्म करना पड़ेगा। ज्ञान है, खूब किताबें भरी पड़ी है, लेकिन उस काम को करे तब ना, जैसे ये कहना थोड़ा सा
1: वैसे, आपने शिक्षक थे जब पढ़ाते थे,
0: जी हाँ जी,
1: तो आपका बात मानेंगे तब तो पढ़ाएंगे, तब तो आप तो पढ़ा दिए, आप तो पढ़ा दिए,
0: हमारे
1: बहुत पढ़ा दिए, लेकिन सबको पढ़ाए, लेकिन एक जैसे नहीं हुआ, कोई ग्रहण करने में ऊपर नीचे
0: रह गया, कोई ग्रहण करने में पीछे रह गया,
1: तो ज्ञान तो बहुत है,
0: लेकिन ज्ञान तो बांटा तो खूब है,
1: खूब है।
0: सरकार ने सर एजुकेशन पॉलिसी जो बनाई उसमें इस विषय को बहुत अच्छे तरीके से शामिल किया है, पूरी दुनिया में किया,
1: ग्रहण करने में इतना बार,
0: पर हम नहीं कर रहे हैं इसलिए ऐसी स्थिति हो रही है, मतलब वो काम होता नहीं है। तो हमारा जो प्रयास है ये कि उसको ग्राउंड लेवल पर ला करके उस काम को किया जाए, तो इसके लिए हमारे भाई साहब स्कूलों में भी जा रहे हैं, पर्यावरण पर वहाँ भी बात कर रहे हैं कि भाई पढ़ा है उसको किया क्या, तो इसके लिए
1: प्रैक्टिकल चाहिए,
0: प्रैक्टिकल तो चाहिए, थ्योरी का ज्ञान तो खूब है, प्रार्थना तो खूब कर रहे हैं, लेकिन वो प्रार्थना अंदर तक जा रही है कि नहीं जा रही, उसका वाइब्रेशन हमारे लिए किस तरह से काम कर रहा
1: है, मतलब कथनी और करनी,
0: बिल्कुल बिल्कुल करना तो होगा, तभी हम सच्चे गुरु कहलाएंगे।
1: जो भी है करना तो बाद में, लेकिन सोचना, बोलना, फिर करना, मानना होता है, उसमें सीरीज होता है,
0: सीरीज
1: पहले अपना मन में सोच आया,
0: जो आपने सोच लिया,
1: सोच लिया फिर मुख में बोलना,
0: बोलना ही है, फिर बोलना है,
1: मन से वाचा से आया,
0: बिल्कुल मन वचन और कर्म, तो कर्म करना होगा,
1: करेंगे
0: तो आप जब ना घूम रहे हैं, घूम घूम के बात कर रहे हैं, एकांत में बैठ करके इसके लिए विचार विमर्श के लिए प्रेरित करते हैं,
1: सब इशारा से काफी मैंने देख रहा है, इशारा से भी पशु पंछी भी पूरा मैंने देख रहा है, ट्राई कर रहा है, इशारा से भी वो लोग समझ जाते
0: हैं, समझते हैं, मैंने देखा काम कर रहे
1: हैं, दंडा से कोई जरूरत नहीं
0: सर,
1: उसको शांत से लोग भी देख रहा है, मैंने अभी यहाँ पर चार ग्राउंड में हम लोग बैठे पांच, मैंने एग्जांपल जो देखा भाई, को भी पशु भी अपना इशारा को समझते हैं,
0: जी जी समझते हैं,
1: डिस्टर्ब नहीं करते भाई, हम आपको नहीं डिस्टर्ब कर रहे, आप हमें मत डिस्टर्ब,
0: बस अपनी स्थिति कुछ वैसी ही है कि इस पर काम करते हुए हमको थोड़ा काम करना है, कैसा करना है, जैसे सर आप कई बार बताते कि जंगल में आग लगी तो एक चिड़िया है वो अपनी चोंच में पानी भर के वहाँ

0: डालती है।
1: बाघ जो देखने लगे
0: जी
1: बोला रही ये क्या कर
0: ये क्या कर रहे
1: हमारे पास तो इतना पानी लेने का ताकत है
0: फिर हम तो हमारा भी ऐसी स्थिति है कि ये क्या कर लेंगे
1: क्या करें। लेकिन जब कार तो समझ गए तू जब आग बुझाने में किसका नाम आएगा
0: तो नाम तो उस चिड़िया का एक प्रयास तो हुआ ना उसमें तो वो चिड़िया का प्रयास हमारा भी होगा।
1: तो आप सब ये चीज को जब ध्यान करेंगे
0: बिल्कुल
1: कर्म छोटा बड़ा नहीं होता है और प्राप्ति को हम नहीं देखेंगे
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: क्या होना है क्या नहीं होगा
0: नहीं नहीं प्रयास
1: प्रयास
0: अपना प्रयास अच्छा
1: जैसे आप जब भी बोलते भैया जी हुकुम हाजिर
0: हाजिर तो होना ही पड़ेगा हाजिर नहीं
1: होगा
0: जितना
1: बोले हुकुम
0: तो आपसे मुझे प्रेरणा मिलती है सर। मैं अपने उस मटेरियल को देखता हूँ उसको सही तरीके से रखने के लिए कोशिश करता हूँ और दो लाइन लिख करके उसको पूरा व्याख्या करने की पूरा ताकि वो भी एक क्रम में निश्चित तरीके से
1: शिक्षक ही देश को सुधारने का ताकत रखता है। शिक्षक किसको कहते हैं जो शिक्षा देते हैं
0: और सभी शिक्षक तो हो सकते हैं सभी से सीखने का प्रकृति बोलती नहीं है सिखाती है
1: जी जी
0: जो अब ये है कि शिक्षक होना ही वह नहीं है वह जो सिखाए वो सब शिक्षक है। ये पत्थर भी शिक्षक है ये पेड़ भी शिक्षक है आप भी शिक्षक हो तो हम सब शिक्षक ही हैं तो जो सिखाता है वो शिक्षक है सर। तो वो सिखा करके वो करवाए अब तो ऐसी स्थिति आ गई है क्योंकि ये चीज हमने जीवन में महसूस किया है कि काम को करना महत्वपूर्ण है महत्वपूर्ण सब कुछ है ऐसी बात तो नहीं है पर सभी करें
1: बराबर
0: जब मौका मिले करें और करने का प्रयास करें आप नहीं कर सकते तो दूसरे को प्रेरित करें कुछ तो करें तो तब जाकर के ये वातावरण
1: कोई कार्य नहीं करे हमें उससे फर्क नहीं पड़ता हमें करें खुद में शुरुआत कर
0: स्वयं को निवेदन करें हम विनम्रता से प्राकृतिक तरीके से निवेदन करें कि सभी अपने अपने तरीके से शुरुआत करें तो निश्चित रूप से ये पर्यावरण अपने आप में एक बहुत बड़ी शुद्धि करते हुए वैचारिक शुद्धि लाते हुए बहुत बड़ा रिजल्ट इस पूरी दुनिया को देगा जो कि एक ईश्वरीय कार्य हो। जब पर्यावरण शुद्ध होगा आप स्वस्थ होंगे तो आपको शांति मिलेगी तभी आप अभ्यास कर पाएंगे सब तरह के। आप अस्वस्थ है तो क्या कर पाएंगे
1: जी, जी। जैसे अभी हम लोग देख रहे चार पांच जगह बैठने के लिए जगह अच्छा मिले
0: जी जी, जी।
1: पर्यावरण हमारा शुद्ध हो हमारा साथ दो
0: बिल्कुल
1: तो जहाँ गए अरे यहाँ तो नॉइज आ सकता है यहाँ पर हम गए तो यहाँ पर भी लोग जाना ना करेंगे यहाँ पर डिस्टर्ब होगा तो ये चीज जो प्रैक्टिकल जब हम बात कर रहे थे तो ये भी हमारा पर्यावरण अशुद्धि का एक कारण है हम उसमें एडजस्ट नहीं हो पा रहे
0: बिल्कुल
1: फिर हम जगह परिवर्तन किए
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: दो जगह बाद अभी जो जगह पर हम लोग बात कर रहे हैं सुबह का 10-11-12 बजे समय जो है
0: जी जी
1: तो वहाँ पर हम देखे तो पर्यावरण हमारा कितना आवश्यकता है
0: बहुत बड़ी आवश्यकता
1: हमको सिलेक्शन करना पड़ता है
0: सिलेक्शन करना पड़ता है सब जगह बढ़िया होना चाहिए सब जगह बढ़िया
1: होना जहाँ भी लेकिन वहाँ चलो
0: यहाँ कचरा पड़ा है यहाँ पर ये डिस्टरबेंस है यहाँ लोगों की आवाज आएगी वहाँ वो आएगी तो ये सारा
1: पर्यावरण का एक प्रदूषण है
0: बिल्कुल प्रदूषण है तो हमको इसके लिए कार्य करना है और सभी अपना अपने तरीके से जुटेंगे सभी प्रयास करेंगे तो सबके प्रयास से ये संभव हो जाएगा।
1: भले आपके इतना अच्छा पॉजिटिव भावना हो लेकिन
0: हाँ।
1: आप उसको वाइब्रेशन देकर भी हम लोग भाई थोड़ा संकल्प आया
0: जी जी बिल्कुल
1: हम उसमें एडजस्ट नहीं हो पाए थोड़ा संकल्प आया भाई ऐसे और थोड़ा बेटर करने के लिए हम लोग कोशिश
0: बेहतर के लिए प्रयास कर रहे हैं हम लोग सभी मिलकर
1: ये जो बेहतर हो ये तो है ही है
0: बिल्कुल
1: हम सिलेक्शन करके आए फिर भी इसमें और हमें अच्छा चाहिए
0: बिल्कुल और जहाँ बैठे वहीं से शुरुआत कर दो जिस जगह पर बैठे हैं वहां पर ये प्रयास कीजिए आप तो निश्चित रूप से ये सब कुछ संभव हो जाएगा
1: क्योंकि मुझे मन में जो सोचते हैं बहुत दूर दूर चला जाता है
0: बिल्कुल जाता है
1: पानी में तो सिर्फ ग्राउंड तक रहता है
0: बिल्कुल सही बात है सही बात है अपना निश्चित एरिया है लेकिन सोच तो वो तो
1: जाता है
0: हाँ मन की गति से जाता है
1: बहुत दूर तक
0: तो ये सारी चीजें जो भी है
1: और जो आकाशवाणी में अभी जो हम लोग बात जो रिकॉर्डिंग कर जो
0: जी हाँ
1: लोग सुन रहे
0: वो जब जहाँ तक जा रहा है वहाँ तक तो जा ही रहा है ना
1: वायरलेस
0: जहाँ और वहाँ पर सर ये सब सुन रहे हैं तो वो लोग तो निश्चित रूप से इस कार्य के लिए प्रेरित हो ही जाएंगे
1: जी जी
0: और तभी तो हमारा मनोबल बढ़ता है
1: नहीं तो वो तो हमारा काम शुद्ध विचार से रहेंगे तो जरूर फल मिलेगा
0: उसका निश्चित रूप से फल
1: क्योंकि बीज आपका शुद्ध है ठीक है तो जब उसका
0: आप बार बार कहते हैं उस बात का मैं पूरा समर्थन करता हूँ कि कर्म करो फल की इच्छा नहीं करनी लेकिन हम तो सब फल की इच्छा भी करते हैं हमारा फल अच्छा ही होना चाहिए
1: ये भी अच्छा है जैसे हम पौधा लगाते तो अच्छा है तो बहुत
0: इच्छा तो हम करेंगे
1: लेकिन मेहनत का फल लाया
0: बोले अच्छा और वो पेड़ सर वो शुद्धि के साथ में छाया भी देगा फल भी देगा ऑक्सीजन भी देगा और क्या क्या देगा भोजन भी देगा शुद्ध शुद्ध शुद्ध सभी देंगे तो इस तरह से ये सारा का सारा
1: पर्यावरण का ही
0: एक तरीका
1: है
0: और वो अपने आप को शुद्ध करेगा तो पर्यावरण की शुद्धि में
1: जी सर
0: अच्छा ऑक्सीजन के साथ साथ और भी जितने भी हाँ ऑक्सीजन के मतलब ऑक्सीजन बढ़ जाएगी इससे और जो आपका पॉजिटिव है विचार, वो सारे के सारे इसमें लोगों तक पहुंचना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब रही बात, जैसे हम अभी बात करते हैं जल प्रदूषण की।
1: जी जी,
0: जल प्रदूषण की। अब जल प्रदूषण में सर एक शब्द आता है, वो बड़ा ही टेक्निकली वो बड़ा ही वैसा शब्द है जिसको हम कहते हैं ग्रीन वर्ड है सर, वो मतलब ये बिल्कुल ही मतलब नया है, और उसको जब यूं कहते हैं तो वो सुपोषण बताता है सर। मैं कई बार आपको टेक्निकल शब्द बताता हूँ, तो वो जो टेक्निकल जो वर्ड है ना,
1: हमारा जो श्रोता है जो है टेक्निकल है और नॉन टेक्निकल, इसलिए आप बिंदास बोलते रहिए।
0: नहीं, फिर भी टेक्निकल में सर वो शब्द में थोड़ा सा वो शब्द उसका इफेक्ट तो जो है वो जो थोड़ा दूसरा है, लेकिन वो सुनने में ऐसा लगता है कि आप कुछ वो दूसरा कर रहे हैं। उस वर्ड का जो एक्चुअल जो वर्ड है वो यूटियोफिकेशन है। What do you mean by eutrophication? That is सुपोषण।
1: सुपोषण और कुपोषण?
0: हाँ, नहीं पर सर वो कुपोषण है ना,
1: अलग चीज़।
0: वो सुपोषण वो जो किसका कर रहा है, वो जो कुपोषण है वो तो अपने मनुष्य में कहते हैं, लेकिन ये सुपोषण किसका करता है, जो हानिकारक जीवाणु है उनका करता है।
1: ओके,
0: आप समझ गए।
1: हाँ,
0: तो ये थोड़ा सा सुपोषण समझने, हाँ उनको सुपोषित करता है,
1: पोषण
0: उसका नेगेटिव, उसका जो वर्डिंग है ना ये नेगेटिव है, इसलिए कई बार इसका उपयोग नहीं करते, लेकिन समझाने पर कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा टेक्निकल हो जाएगा,
1: श्रोता मित्र सुन रहे थे सर का जो टेक्निकल वर्ड में वो क्लियरिफाई कर रहे हैं।
0: वो इसलिए क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि फिर ये चीज उधर तो काम आएगी, जहाँ इंटरनेशनल उस लेवल पर जब अपन बात करते हैं वहाँ पर वो शब्द काम में आएगा, वहाँ वो जानेंगे। लेकिन आम पब्लिक ये नहीं जानेगी, ये भाई बात तो कर रहे हैं सुपोषण की, लेकिन किसके सुपोषण की बात कर। सामान्य तौर पे सुपोषण तो किसी बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए उसकी हेल्थ के लिए किया जाता है,
1: राइट,
0: और कुपोषण उसकी हेल्थ डाउन होती है तब किया जाता है, कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर सुपोषण किसका हो रहा है, इसमें ये ग्रीन वर्ड है, वातावरण के लिए काम में ये लिया जा रहा है उन बैक्टीरियाज की वृद्धि के लिए जो नुकसान करते हैं। ये वर्ड वर्डिंग है उसकी, एनवायरमेंटल वर्डिंग है,
1: राइट,
0: इंटरनेशनली। तो इस सुपोषण से सर क्या होता है, फिर वही बात आई, यानी मैं ये कह दूं कि यूटियोफिकेशन से क्या होता है, जैव विविधता नष्ट हो जाती है, जो बायो विविधता है वो सारी की सारी, यानी इससे सर क्या मतलब समझे आप, जैव विविधता के नष्ट होने से मतलब ये है कि अपने उपयोगी जो पादप है, औषधियां हैं, कई सारी वनस्पतियां विलुप्ति के कगार पर है, वो इसी से जा रही है, खत्म हो रही है यूटियोफिकेशन से। अब हिंदी वर्डिंग अपन करा था वो थोड़ा सा वैसा बताता है, तो जब वो खत्म होती जा रही है तो वातावरण तो आपका निश्चित रूप से और नेगेटिव इफेक्ट ही देगा। हालांकि मैं नकारात्मक शब्दों का कम से कम प्रयोग करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जहाँ पर वो नुकसान ही कर रहा है वो उस चीज अपने को बात करनी ही पड़ेगी। तो सर जब जैव विविधता नष्ट हो जाएगी सर, बहुत बड़ा प्रभाव इसका एक तो ये पड़ेगा कि जो प्राकृतिक रूप से इलाज होता है, ये चीज मैं कई बार आचार्य प्रशांत को सुनता हूँ, वो बहुत ही मतलब इंटरनेशनल लेवल के विचारक है, IITian है सर, छोड़ छाड़ के बैठ गए इस दुनिया में जिसमें हम बैठ रहे हैं। कई बार इनको औषधि विज्ञान वालों से मैं सुनता हूँ बैठ के, तो वहां पर सर ये था कि जो रोगों का विभिन्न थेरापी, भाई पर्यावरण अशुद्ध है तो रोग तो खूब हो रहे हैं, तो वेरियस थेरापी से उसका इलाज हो रहा है, लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है कि जब जैव विविधता नष्ट हो जाएगी तो जिस औषधि से, प्राकृतिक औषधि से किसी बीमारी का अच्छा इलाज हो रहा है वो औषधियाँ ही खत्म होती जा रही है। इसका मतलब आपके इलाज की संभावनाएं खत्म होती जा रही है ड्यू टू दिस यूटियोफिकेशन।
1: खत्म होते जा रहा तो लोग उसको रिप्लेस करते नहीं, क्यों लगाते हैं फिर?
0: बस रिप्लेस तो तभी करेंगे जब या तो लगाएंगे या फिर पर्यावरण शुद्धि का प्रयास करेंगे। तो वाटर, देखो सर मैं आपसे एक निवेदन करूं, अपन जहां बैठे हैं ना, ये भैया भी बैठे हैं यहां पर सर, ये जो घास है ना ये वाली, ये एक औषधि है बहुत बड़ी। अब ये पहले बहुत होती थी, अब ड्यू टू दिस यूटियोफिकेशन खत्म हो रही है, कहां से लाएंगे आप? फोन अटक गए, सभी अटक इसलिए गए कि इसका प्रोडक्शन करना तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सर इसको खेतों में तो लोग उगाएंगे नहीं क्योंकि फायदा नहीं होता, हम तो लालची है ना स्वभावतः, जब ये नहीं उगाएंगे जिस बीमारी का इलाज है वो तो खत्म हो गया, अब आएगा कहाँ से? अब सर वहां से आएगा जहाँ से हम पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करें, तो आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा।
1: आने के लिए फिर हमारा श्रोता मित्र इंतजार करे कैसे आएगा और कौन लाएगा ये सब जानेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल और रेडियो मधुबन 107.8 FM। और खासकर आज का जो लिंक में हम जो बात कर रहे हैं, जल प्रदूषण कितना खेतीकारक हानिकारक मनुष्य जीवन के लिए, जल जीवन का, जल और विशुद्धि होगा अशुद्धि होगा तो हमारा अस्तित्व क्या होगा, सभी को पता है।
0: बिल्कुल,
1: तो हम सब होशियार समझदार को इशारा काफी है, फिर भी बोलना पड़ता है, मनुष्य तो बोलने से ही करते हैं, तो हम और आप बोल बोल कर हमें करना ही पड़ रहा है। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
2: साफ पानी चाहिए, ये मेरी दुनिया है।

0: मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। पिछला लिंक में हम खास कर सभी को लेकर चलते थे और चलना चाहिए, क्योंकि प्रदूषण कितना मुद्दा है, बड़ा मुद्दा समय के अनुसार। उसको प्यूरिफिकेशन माने उसको शुद्धिकरण करने के लिए हम सब प्रयास करते हैं, और आप और हम मिलकर ही कर पाएंगे। और जब हम अच्छा काम में एक कदम बढ़ाएंगे तो जरूर हजार कदम देने वाले ऊपर वाला बैठा है और प्रकृति भी देता है। तो इन सुभावना के साथ पुनः स्वागत करते हैं श्रीमान भोपाल राम पुरोहित जी को, जो कि पर्यावरणविद है, तो पर्यावरण का ऊपर में एक्सपर्ट है, जानते हैं, पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, जिसका मेहनत का आज बोला हमारा पास सीमित क्यों रहे, सब तक पहुंचे। इस सुभावना को जब देखे सुने सब तक पहुंचे, तो इसीलिए रेडियो मधुबन तो एक मंच है, जिस मंच के माध्यम से सभी को वेलकम करता है। आप भी आ सकते, जो श्रोता सुन रहे वो भी आ सकते हैं, तो आकर अपना विचार को रख सकते हैं। तो पुनः स्वागत करते सर, आज जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें और चार चांद लगाने के लिए और आपका खजाने में क्या रखें निकालिए, तो हमारा श्रोता मित्र को फायदा हो, जनता जनार्दन और प्रकृति को तो फायदा होगा इनडायरेक्टली। जहां हम धूप में बैठकर प्रकृति का आनंद ले रहे, रात को आप प्रोग्राम सुन रहे हैं, लेकिन हम ये सुबह का रिकॉर्डिंग प्रोग्राम है आपको सुना रहे हैं। तो चलिए उनको पुनः स्वागत करते सर।
1: सर नमस्कार। सर अपन जल प्रदूषण के बारे में बात कर रहे थे और अभी अपन बात कर देते हैं जल प्रदूषण से जनित रोगों के बारे में, जो सीधा सीधा कई बार ये बात इसलिए करनी पड़ती है कि जब हम वैचारिक बात करते हैं, टेक्निकल बात करते हैं, वहाँ पर सीधा सीधा ये है कि भाई हम इतने बीमार क्यों हो रहे हैं। तो अभी सर मैं सर मुझे सर एक ही चीज विचार शुद्धि के साथ में दिखती है, दो चीजों पर ही काम करता हूं मैं, कि हमारा मानव शरीर स्वस्थ रहेगा तो वो सुकर्म भी कर पाएगा। तो जो स्वस्थ रहेंगे तो करेंगे ना। तो सर मैं एग्रीकल्चर पर भी फोकस करता हूं, तो मैं कहीं कोई देख रहा था प्रसारण, उसमें सर दिख रहा था, एक्सपर्ट बता रहे थे नेशनल लेवल पे, कि एक रोग होता है गठिया। सर उसका जो होने का जो कारण है वो सर शारीरिक कर्मण्यता की स्थिति में कमी आना को ज्यादा खास माना उन्होंने। व्यक्ति काम करेगा, दौड़ेगा, मेहनत करेगा, तो निश्चित रूप से इस रोग की संभावना बहुत कम हो जाती है। यानी कि शरीर को डिटॉक्सिकेशन करने के लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा, इसलिए तो शरीर स्वस्थ होगा।
0: सुबह सुबह लोग एक्सरसाइज दौड़ते हैं,
1: योग करते हैं, दौड़ते हैं, शारीरिक योग करते हैं, फिर मानसिक राजयोग करते हैं, जो भी करते हैं, तो उससे वो शुद्धि आती है। तो सब शुद्धि पड़े रहने से तो नहीं है, आपको हमको सभी को सूर्योदय के साथ में दौड़ना पड़ेगा, जगना पड़ेगा, जग के चलना पड़ेगा, चल के किसी का हाथ पकड़ के चलना पड़ेगा, और जब हम चल पड़ेंगे तो कारवा बनता जाएगा। तो कहने का मतलब है कि हम कर्मशील बने रहें, जितना होता है उतना हम सब करते रहें, तो हम इस शुद्धि की प्रक्रिया में अपना बहुत बड़ा योगदान दे पाएंगे। अब सर विभिन्न रोगों की बात करें जो सीधे सीधे इससे प्रभावित होते हैं। सर रोगों की बात मैं कई बार इसलिए भी करता हूँ कि सर उन रोगों से हम प्रभावित क्यों हो रहे हैं, ये जब पब्लिक जानेगी तो वो उठेगी, भाई हमारा नुकसान देख करके तो भी कोई खड़ा होगा, तो दूसरों को तो ना हो पाए। सर देखिए पारे की विषाक्तता से जो जल प्रदूषण का कारण है, मतलब पारा उसमें आ जाता है, तो सर मिनामाटा रोग हो जाता है, जापान में बहुत भयंकरता से सर फैला था मिनामाटा। और फिर सर जब रोग हो जाता है तो उसको काबू करना
0: मुश्किल होता है,
1: बहुत मुश्किल होता है। तो फिर हम ये कोशिश तो कर ही सकते हैं कि पारा उस पानी में कम जाए, या जाता हो तो उसको फिल्टर कर लिया जाए। सर मैं एक बात बताऊं,
0: सर मैंने यहाँ पर भी संदेश, आप जापान का बात कर रहे हैं, यहाँ का आपका लोकल जो वासडा,
1: जी जी जी,
0: वासडा में हम लोग गए थे, वहाँ का लोग का पूरा कंप्लेन था जी, हमारे खेत में भी जो फसल आता है वो तो पूरा जल जाता है, कोई खेत नहीं होता है, पानी जितने भी दे तब भी जल। इसका कारण पूछा तो जो पानी नीचे से आ रहा है
1: जी,
0: ये जो मार्बल फैक्ट्री है ना,
1: हाँ,
0: मार्बल फैक्ट्री का जो पानी आकर जो पूरा जमीन स्तर में जाता है वो इतना हीट रहता है तो पौधा को जला देता है
1: सर। बस तो फिर
0: आपका लोकल जापान का बात,
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो लोकल में भी जब ये
0: प्रशासन गांव के संग चल रहा था राजस्थान,
1: तो सर इसका इसका समाधान है सर, निवेदन मेरा यही रहता है कि जितना कर सके उतना करे। उस जो लरी उसकी निकलती है, उस लरी का जो प्रोडक्ट भी बनते हैं सर, की ईंटे भी बनती है और भी कई काम में आता है, तो उस लरी को उसको सर रोक ले, उसको ट्रीट कर दे
0: तो अच्छा काम में आ जाएगा,
1: तो सर नुकसान हो जाए, और वो पानी जब आगे से फिल्टर होके जाएगा तो वो तो रुक जाएगा।
0: पॉसिबल है, कर सकते,
1: पॉसिबल सर, पॉसिबिलिटी इज देयर, तो ये करना होगा। इसलिए बीमारी का नाम बताने का मतलब डराना नहीं है, बीमारी का नाम बताने का मतलब है कि आप इलाज करो, बीमार हो उससे पहले सावधान हो जाओ ना। तो सर दूसरा है, मैं बताऊं, यही विषाक्तता की बात कर रहा था, इसमें ये विषाक्तता के से जो रोग होते हैं, इसमें पारे की जो विषाक्तता है उससे तो ये वो मीनामाटा, और जो सर कैडमियम की विषाक्तता है इससे रोग होता है इटाई। यस, अब सर ये सब बताने तो पड़ेंगे ना, तभी हम थोड़ा उसको गंभीरता से लेंगे, लेंगे ही नहीं हम। इसी तरह से सर आर्सेनिक की विषाक्तता, इससे सर ब्लैक फुट रोग हो जाता है। इसी तरह से फ्लोराइड अधिकता से, विषाक्तता से सर जो यहाँ पर खूब ज्यादा है, फ्लोरोसिस।
2: अब सर इनको रोका जा सकता है, अपने कहने का मतलब। कई बार अपन बीमारी के बाद में खूब दौड़ते हैं,
0: इतना पैसा
1: शरीर में से विष को निकालना, टॉक्सिन्स को निकालना, ये भी एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, टेढ़ी प्रक्रिया है। ये आर्थिक रूप से भी तोड़ने वाला है, समय भी बर्बाद करता है। फिर जब ये हो जाएगा, व्यक्ति आर्थिक रूप से टूट जाएगा,
0: जो कष्ट भी मिलता है वो कम,
1: तो फिर कष्ट मिलेगा तो फिर क्या प्रयास कर पाएगा? फिर न स्वयं के लिए नहीं कर पाएगा तो फिर वो करेगा क्या? तो इसलिए इससे अच्छा है। अब सर ये विभिन्न नाम बताते हुए मुझे इसलिए थोड़ा सा वो रहता है कि भाई हम तैयार हो जाएं। अब सर नाइट्रेट की जो विषाक्तता है उससे सर मैट हीमोग्लोबिनेमिया ये हो जाता है सर, ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं, नेट हीमोग्लोबिनेमिया, ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है ये सर नाइट्रेट की विषाक्तता से। किसी तरह से जीवाणु की विषाक्तता से हैजा, टाइफाइड, विषाणु से विषाक्तता से हेपेटाइटिस ए, रोटा वायरस, इसी तरह से प्रोटोजोआ जनित रोग, एमीबायोसिस, जीआरडीएसिस, तो इस तरह के सर प्रतिकूल प्रभाव। सर मिट्टी में भी ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती है, सर इनके मिलने से पानी में ऑक्सीजन कम हो जाता है, O2 की मात्रा कम होती है, तो सर वो उसकी उत्पादकता पर भी प्रभाव डालता है। दुष्प्रभाव, प्रभाव क्या दुष्प्रभाव डालेगा?
0: इसलिए पानी का जो कलर, मीठा पानी का, खारा पानी का
1: क्यों बन रहा है सर? खारा पानी के यही कारण है, मिलावट हो गई, उसमें रासायनिक मतलब यूरिया वगैरह जो भी है हो सकता है आवश्यक हो, लेकिन सर कितना हो ये तो करे ना,
0: था पानी ओरिजिनल, अशुद्ध खुद
1: अशुद्ध कर दिया उसको, अशुद्ध
0: मिल रहा है
1: तो फिर वो तो नुकसान ही करेगा। इस तरह से जल में घुलित ऑक्सीजन कम होना, ऐसे तरह से जैव आवर्धन, ये शब्द भी मैंने आपसे पहले बताया था कि जैव आवर्धन वही वो सुपोषण जैसी स्थिति है सर, इसमें भी विविधता उसमें नष्ट हो जाती, मतलब पारिस्थितिक तंत्र डिस्टर्ब हो रहा है, तो जब ये सब डिस्टर्ब होगा तो सर हम सुखी कैसे रह सकते हैं प्रकृति को डिस्टर्ब करके? तो सर इसके प्राथमिक उपचार तो सर इसमें सीधा सीधा है, हम सोच लें एक बार। तो दूसरा जो जिसको हम रोक सकते हैं शुद्धि करके, बेसिक जैसे स्लरी निकलती है उसको रोक दीजिए,
0: हमारा पहुंच जहां तक
1: है उतना तो कर लो, अपने घरों में से जो कीचड़ निकलता है नाली वाला उसको तो रोक लो, वो किया जा सकता है, सब कर रहे हैं।
0: बहुत बोला हम क्या भाई सरकार बड़पंच,
1: बस यही तो लफड़ा है। तो फिर सर यही पर प्रश्न तो यही आ रहा है,
0: तो उसको इस मानसिकता को कैसे बदला जाए?
1: सर उस मानसिकता को बदलने के लिए
0: समझदार बनना पड़ेगा,
1: हमको ये बात बतानी पड़ेगी, उनके भी साथ बैठना पड़ेगा। और वही कहते हैं ना वो, आप जब हमको शिक्षक बता देते हैं, हम शिक्षकों की बात तो वो लोग सुने समझे और करे तब ना, जो करेगा वही पाएगा। तो सर इसके लिए प्राथमिक उपचार करें, रोके उसको, और द्वितीयक में सर कई सर टेक्निकल तरीके हैं जिसमें सूक्ष्म जीव जो सर है ना वो अपघटन करते हैं, और वो जो अपघटन करने वाले अच्छे जो पदार्थ है वो उनके साथ में मिल जाए तो निश्चित रूप से इसकी शुद्धि सर हो सकती है। सर एक बहुत बड़ी चीज मैं बताऊं, मतलब जिसको बड़ी क्या सामान्य चीज आप कह सकते हो कि जैसे गिद्धों की संख्या में कमी होना, गिद्ध कम हो गए, तो सर वो गिद्ध था ना वल्चर, वो प्राकृतिक शुद्धिकरण का काम करता, जो जीव जंतु मरते थे मतलब उनको खा खुआ करके पर्यावरण शुद्ध,
0: अभी तो क्या
1: जब अब तो वो कर रहा, अब वो भी नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है सर, वो क्यों नहीं कर रहा है इसका कारण बताओ, वो काफी कम हो गए सर।
0: उसको मारते हैं क्या?
1: नहीं सर मारते नहीं है, गिद्ध को कोई नहीं मारता, मारते कोई नहीं है, उसमें दिक्कत कहाँ हो गई सर? सर अभी जो आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठा लिया, क्योंकि मैं भी उससे जुड़ा हुआ हूँ, पशुओं के सर हम लोग लाते हैं चारा, अब वो कई तरह से उनके पशुओं का जो पशु आहार है, एक तो पशु आहार देते हैं रेडीमेड सर, अनियमित मात्रा में यूरिया मिला देते हैं वो लोग, और भी ऐसे ऐसे पदार्थ मिला देते हैं कि उससे वो उस पशु की बॉडी में चला जाता है।
0: ओके
1: सर, मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया था कि वो फिर दूध आता है उस पशु का, और वो सर बच्चे के पेट में जाता है, आपके पेट में जाता है, तो वो सब केमिकल वहां से आया, कहां से आया देखो, अप्रत्यक्ष तरीके से आ रहा है और वो आपकी बॉडी में चला गया और बीमार करके।
0: मुझे समझ में नहीं आ रहा, अभी डॉक्टर लोग जब जाते हैं इलाज करने वो तो तुरंत पेशेंट भोजन खाओ, लेकिन दूध छाछ ऐसे भी कोई भी दूध प्रोडक्ट नहीं, मैंने आश्चर्य हो गया, दूध दही माखन ये तो देवी देवता का भोजन है, और ये डायरेक्ट मना क्या करता? अभी आप जिसे पता है
1: सर, ये पहले प्रकृति शुद्ध थी तब दिक्कत नहीं थी, तो भी सर अभी जो हो रहा है ना, कृत्रिम जो चीज बनाई जा रही है वो अधिक दूध निकालेंगे सर। एक और मतलब आप बड़ी अच्छी सी बात करते हैं, क्योंकि मेरा तो सीधा जुड़ाव है। अब सर अभी जैसे दूध निकालते हैं उसके लिए भी सर उस इंजेक्शन को प्रतिबंधित कर दिया है वैसे सरकार ने,
2: कोई इंजेक्शन लगाते हैं तब जैसे वो दूध देता है पशु, दूसरी तो जबरदस्ती होगी,
0: जबरदस्ती
2: तो वो जबरदस्ती वाला फायदा देगा क्या? बस वो वहीं से बीमारियां घुस रही है। तो लालच क्यों करनी, ज्यादा दूध चाहिए क्यों ज्यादा चाहिए, हिसाब से ही लो ना आप। उसको निचोड़ते हैं सर।
0: अभी समझ में, दूध दही दूध प्रोडक्ट है
2: जी सर, और इसलिए फिर सर
0: मना कर रहे हैं क्योंकि जो दूध हम ले रहे हैं वो कितना शुद्धता
2: वैचारिक शुद्धता होती तो वो शुद्ध ही है, शुद्ध आज तक है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसमें इंजेक्शन लगा करके, उसमें कृत्रिम घास का प्रयोग करके, कृत्रिम ये जो सेल्यूलोज वगैरह देकर
0: घास पर दो तीन पशु फीड जो देते हैं,
2: फीड जो देते हैं
0: वो फीड में बहुत कुछ वो
2: मिला दिया सर,
0: ज्यादा दूध दे
2: मिला दिया सर,
0: थोड़ा हेल्दी बिल दिखाई दे
2: इसके लिए वो मिला दिया, तो वो फिर निश्चित रूप से
0: प्रोडक्ट में आता है,
2: वो सर फिर प्रोडक्ट में आता है।
0: और रिसर्च करके वो लोग बताए भाई दूध में जो ओरिजिनलिटी कितना है और
2: तो फिर सर
0: कितना है,
2: बस सर फिर ये क्या है,
0: इसलिए
2: हम सर बहुत स्वार्थी हो गए।
0: तो दूध है लेकिन दूध का जगह में हम क्या पी रहे हैं
2: वो आपको हमको पता ही नहीं है। अब सर दूध की तरह से अन्य भी चीजें, जैसे पर्यावरण की बात करते हैं बहुत सी चीजें सर आ जाती है,
0: सब पर्यावरण में
2: है। घी है सर, घी है कहाँ सर, हम इतना घी मार्केट में उपलब्ध हो जाता है सर कि जो इतना घी से प्रोडक्शन ही नहीं होता तो कहाँ से आ रहा है, आ कहाँ से
0: असली कहाँ मिले जैसे आपने बोला असली जिसको आप बोल रहे हो असली नहीं है,
2: बस असली नहीं
0: डायरेक्ट दूध जो आप ले रहे आपका गाय में रखे
2: आराम से मिलता है,
0: नहीं आप गाय एक रखे ओरिजिनल, आप बोलो हम मिलावट नहीं ना अपना गाय रखे वहाँ दूध से हम घी मनाते, लेकिन जो फीड दे रहे हैं
2: फीड तो वो दे रहे हैं ना
0: तो वो डुप्लीकेट फीड है,
2: तो वही हो गया
0: जो इन आपका डुप्लीकेट है, आउट कैसे आपका
2: आउट कैसा सही है, तो फिर यही चीज सब जगह सोचने वाली बात।
0: समा इतना पॉपुलेशन हो गया, इतना पर्यावरण उतना ही है, पॉपुलेशन ज्यादा है, यूजर बहुत है,
2: हाँ तो कहाँ से आ रहा है, तो सर ये सारी चीजें पर
0: व्यवस्था एक्स्ट्रा कराते
2: जो भी है सर, प्राकृतिक सोया दूध है वगैरह है ये वो बत्ता है, लेकिन फिर भी जो भी है जो ये जो कहाँ से आ रहा है ये चीज तो अपने को सोचनी पड़ेगी। अच्छा सर उसमें जितना जो खाद है उसका प्रयोग होगा, कौन सी जैव नहीं जो रासायनिक खाद का प्रयोग होगा, तो वो उसका प्रभाव तो उसमें छोड़ेगा ही छोड़ेगा, जिस फसल में दिया वो भी छोड़ेगा, तो फिर
0: तो आज जितना भी फसल हम लोग जो अनाज खा रहे हैं
2: जी सर,
0: तो सब रासायनिक द्वारा ही मिलता होगा
2: सर। सर जी सर निवेदन कि वो सारी फसलें सर जैव तरीके से भी मिल सकती है, वही प्रोडक्शन मिल सकता है, क्वालिटी का प्रोडक्शन मिल सकता है, लेकिन हमको थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है। जैसे हम आरोग्य बन गए थे ब्रह्मा कुमारी के, आप लेके गए थे,
0: अब तो खुद प्रैक्टिकल देखते
2: तो सर वहाँ पर जो
0: जीवामृत
2: जो बनाया जा रहा है,
0: कितना वैरायटी
2: जो सर 10 पर्ण से बनाया जा रहा है, ड्रम्स में बनाया जा रहा है, उसमें जो भी बैक्टीरिया डाले जाते हैं जो फसल के लिए सही है वो वहाँ केंचुओं को पैदा करते हैं, तो सर ये तो ऑटोमेटिक मैन्योर बन रहा है, तो उसका उपयोग क्यों नहीं कर रहे भाई? ठीक है थोड़ा बहुत प्रोडक्शन में थोड़ी सी कमी आ सकती है, मान सकते हैं
0: 1-2 साल इसके बाद तो मेकअप कर लेगा,
2: उसके बाद तो तीसरे साल तो मेकअप कर लेगा,
0: जमीन जो जहर पिया हुआ है उसको टाइम लगेगा
2: ना,
0: अब 1 साल में अब 50 साल से आप जमीन में जहर पिला,
2: तो सर यौगिक कृषि करनी पड़ेगी, हम देखो समय की मांग है और बीमार होना है तो आपकी मर्जी की बात है, तो फिर
0: तो इंडायरेक्टली हम पॉइजन दे रहे हैं,
2: हम पॉइजन दे रहे हैं सर,
0: पॉइजन खिला रहे सर,
2: पॉइजन खिला रहे हैं, पेस्टिसाइड सर छिड़कने वाला किसान है, पहले भी मैंने बात की थी वो रिपीट ही हो रही है कि आप पेस्टिसाइड छिड़क रहे हैं ना तो उसको हृदय रोग को बढ़ावा दे रहे हैं, पेस्टिसाइड छिड़क रहे हैं मीन्स आप अपने हार्ट को बीमार करने की दवाई छिड़क रहे हैं,
0: जमीन को भी विशुद्ध किया और जल को भी विशुद्ध किया,
2: तो फिर
0: हम ही लोग की
2: हाँ प्रदूषित कर रहे हैं, तो हम ही लोग तो कर रहे हैं ना, तो फिर उस पे हमको सोचना तो पड़ेगा। तो ये जैसे किस तरह से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ये पहुंच रहा है, ये प्रत्यक्ष तो नहीं जा रहा ना
0: सर, अति हो रहा है तो अति का तो इति तो होगा, इस तरह समाधान का तरीका आएगा,
2: वो तरीका धीरे धीरे आ रहा, अब हम जगह है तो ये बात कहीं ना कहीं से आपसे हमसे आगे से आगे बढ़ेगी,
0: बढ़ रहा है जिसका जो आप देख सभी,
2: नहीं सर इधर उधर काम भी हो रहा है सर, जीवामृत का उपयोग आसपास भी थोड़ा थोड़ा होने लगा है, अब धीरे धीरे जैसे लोग सरकार तो सर खूब कर रही है, सरकार और जितने एनजीओ है जो समझ गए वो तो खूब कर, लेकिन आम पब्लिक सरकार भी सर एक स्तर तक जा सकती है, सभी को तो खुद को समझना पड़ेगा, इसका प्रभाव तो सर 1% पे पड़ रहा है, तो सभी को समझना पड़ेगा, निश्चित रूप से हम लोग उससे फायदा लेंगे तो हम स्वस्थ होंगे, हमारा खुशहाल जीवन होगा, स्वस्थ होंगे तो फिर स्वस्थ मन होगा
0: स्वस्थ तन होगा,
2: स्वस्थ तन होगा, स्वस्थ मन होगा तो बीमारियां कम होगी और हम ईश्वरीय शांति के लिए भी काम कर पाएंगे, सीधा सा है, नहीं तो अपनी सारी कमाई किस में जाएगी, बीमारी के इलाज में ही चली जाएगी।
1: तो सर के जो उपचार है द्वितीयक उपचार, प्राथमिक तो आप कर ही सकते हो, और द्वितीयक के लिए जो भी प्रयास हो सकता है आपके पंचायतों के माध्यम से अन्य तरीकों से जहाँ हो सकता है उसको कीजिए ना, करवाइए ना, कहिए ना कौन दूसरा आए, आपका जो ये काम है आपको
0: करना है। जिसके पास जाएंगे वो भी तो उसी में सफरिंग है, वो कैसे बचाएगा।
1: मैं एक बात बता रहा हूँ, पर्यावरण तो सब जगह प्रदूषण हो रहा है, आप ही क्यों चल रही है, कोई एनजीओ क्यों चल रहा है या सरकारी क्यों चल रही है, चलना तो पड़ेगा, सभी मिल करके करेंगे तभी होगा।
0: जैसे हमारे पास आप आए,
1: हाँ
0: तो देखें,
1: आपने देखा नहीं कि वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होता है, आपने हमें दिखाया
0: प्लांटेशन
1: वो कैसे हो रहा है, मैंने भी इच्छा जाहिर की, आपने बताया भी
0: भले साहब पढ़ना होता 90% तक गए, 90 तक गए,
1: अब जैसे जीवामृत वाला वो प्रयोग आपने बताया तो हम बता सकते हैं, आप वाले आसपास के कृषकों को भी बता सकते हैं कि वो कृषि कैसे करते हैं, आप आइए वहाँ ट्रेनिंग लीजिए, देखिए योगी कृषि कीजिए, तो उस पे सोचिए,
0: शक्ति होना चाहिए।
1: तो सर ये सब दूसरे जब आप खड़े होंगे तभी हो, आप मेरे तक आए हैं मैं आप तक पहुंचूंगा तभी होगा, आप आएंगे मैं आगे आगे भागूंगा थोड़ी चलेगा, जब यहाँ जीना है तो हमको सभी बिंदुओं पर काम तो करना ही पड़ेगा,
0: जीना है तो कुछ तो करना है,
1: कुछ तो करना ही करना है, समय तो देना ही देना, सब भी कामों के साथ में ये काम भी करना है, तभी आप संकल्प करके आप अपना काम कर पाएंगे।
0: किए थे अभी करेंगे,
1: करेंगे
0: कर रहे हैं भी करेंगे जरूर, क्योंकि कोई आसान मैंने कष्ट नहीं है, क्योंकि एक नया चीज आपको नहीं करना, आप पहले भी किए थे भूल गए, फिर करना
1: ही करना है, कोई
0: रिपीट हो रहा है,
1: ये चीज कहीं गई नहीं है, ये तो अच्छा नहीं तो सिर्फ प्रकृति अपने आप ही कर लेगी,
0: उसमें थोड़ा लेयर लग गया, उस लेयर को हटाना है,
1: लेयर को हटाना है,
0: चमकेगा,
1: उस पर सत्संग करना है और काम करना है।
0: बहुत अच्छा बात बताए, तो बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए, और खासकर जल का ऊपर में हम लोग आज बात कर रहे थे, खासकर हमारा श्रीमान गोपाल राम पुरोहित जी और हम मिलकर इसका ऊपर में थोड़ा जितना हो सके उतना किए हैं, हो सकते हैं उससे कुछ फायदा मिले हमारा भावना है, क्योंकि हमारा गांव और अंचल समृद्ध बने, सशक्त बने, और उसके लिए हम गांववासी और एक एक व्यक्ति
1: सभी मिलकर के काम करेंगे, समन्वय से,
0: समन्वय से तो जरूर सक्सेस होगा,
1: फायदा होगा,
0: सक्सेस पड़ा हुआ है, खिला
1: सक्सेस तो है ही, उसको जगाने की जगाने की
0: हो जाएगा, और वही पड़ा है जब हम सब लगेंगे तो जरूर होगा। तो और ज्यादा तो क्या कहना चाहेंगे सर?
1: सर ये कहना है कि आपको निष्काम कर्म के साथ में आपको इस काम में जुट जाना होगा,
0: फिर आध्यात्मिक गीता ज्ञान,
1: हम तो इसके साथ ही बात करेंगे सर,
0: तो
1: पर्यावरण और शांति पर ही बात करेंगे, राजयोग और उसके माध्यम से पर्यावरण को शुद्ध
0: भगवान उपास करते हैं, भगवान का जो श्रीमत ही श्रेष्ठ मत, जो कि इसको हम पूरा पूरी सबको सहयोग देने के लिए भावना आएगा, विचार आएगा, शुद्धिकरण होगा, जब हमारा विचार शुद्धिकरण होगा, हमारा मन बुद्धि शुद्ध होगा, तो जरूर पर्यावरण भी शुद्ध
1: हो जाएगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है,
0: का जो भी देखभाल हम ही करते हैं, है कि नहीं, प्रकृति पति का मनुष्य प्रकृति का मालिक है, तो प्रकृति दासी है, लेकिन आज वो दासी नहीं, वो आज मालिक बनकर
1: मालिक बनेगी,
0: रिटर्न आपको दे रहे, लेकिन समय आएगा और हम सब समय का अंदर में हमको करना ही है। तो जैसे गीता आध्यात्मिकता को लेकर जैसे बात कर भाई, निष्काम सेवा गीता में
1: करना ही पड़ेगा
0: बोले थे, तो हम सब अर्जुन बन के वो श्रीमत को मानेंगे तो जरूर हम कामयाब तक होंगे और अच्छा दुनिया आएगा। तो इन शुभ भावना के साथ हमें दीजिए इजाजत, फिर अगला एपिसोड में मिलेंगे आप सबसे रूबू रूबू होने के लिए।
1: नमस्कार नमस्कार नमस्कार नमस्कार नमस्कार
0: इजाजत, नमस्कार। इस कार्यक्रम खास कर हम केवल स्थित एक जो स्कूल का बैकग्राउंड है, सुबह 10 से 11 बजे तक हम बैठे थे, हम बातचीत कर रहे हैं, प्रकृति का आनंद लेते हुए, खुशी मिल रहा है, सुकून मिल रहा है, और इस प्रोग्राम को आपको रात को 7 से 8 बजे सुन पा रहे हैं
1: जी सर।
0: बहुत बहुत धन्यवाद
1: धन्यवाद साहब, धन्यवाद।

0: मैं हूं ममता शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: मैं गायक कलाकार हाकम खान ढोलक पे साथ दे रहे हैं, मदन खान करताल पे संगीतकार, शौकत खान मौनशिया। ये करताल लकड़ी की बनी हुई होती है, शीशम की लकड़ी की चार खुली लकड़ी होती है और हाथों के अंदर ये खुले अंगूठे और अंगुलियों के सहयोग से ये बजाया जाता है। शौकत खान है राजस्थान, इन्होंने करताल के माध्यम से अपना कुछ नाम कमाया है। हर स्टेज पे इनका कार्यक्रम होता है। हकीम लोक संगीत संस्थान केसुमिला के अंदर ये बच्चों को संगीत की करताल में सिखलाई देता है, खुद गाता है। इस संगीत संस्थान में हमारे कलाकारों करताल ढोलक कमायचा सारंगी मोरचंग मुरली अलगोजा सहनाई ये सिखलाई दी जाती है। काफ़ी कलाकार हमारे इस संस्थान के माध्यम से संगीत को आगे बढ़ावा दे चुके हैं और विदेशों में भी काम कर रहे हैं। तो आपके सामने अभी पेश किया जा रहा है निमूड़ा। ये निमूड़ा हमारे मांगनिया लोगों का गाया हुआ है, प्रस्तुत करना जा रहा है हाकम खान।

मैं हूं अवधेश पंडित, जीएम फाइनेंस बेसिल, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो।

0: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है मधुबन अनप्लग्ड। मधुबन अनप्लग्ड यानी कि संगीत का वो सफर, यानी कि शेर व शायरी, क्रिएटिविटी और पंक्तियों का सफर। जी हाँ, जब एक गाना बनता है तो शब्द मोतियों की तरह पिरोए जाते हैं, बातें वही होती हैं, लेकिन कहने का अंदाज इतना अलग होता है कि वो दिल में घर कर जाते हैं। और ऐसी ही कुछ बातें, ऐसी ही कुछ पंक्तियां, ऐसी ही कुछ लाइंस आज आपको मिलेंगी कार्यक्रम मधुबन अनप्लग्ड में। और इसको और खूबसूरत बनाने के लिए आज हमारे समक्ष है एक ऐसी अतिथि, एक ऐसी हस्ती जिन्होंने लेखन जगत में अपना नाम ही नहीं कमाया बल्कि ऐसा कंट्रीब्यूशन दिया जो प्रेरणा का स्रोत है। जी हाँ, हमारे समक्ष हैं डॉक्टर अलका अग्रवाल सिकतिया जी, जिन्होंने बीएससी की, फिर अंग्रेजी में भी उन्होंने पढ़ाई करी, हिंदी साहित्य में गोल्ड मेडलिस्ट रही, पीएचडी की उपाधि भी उन्होंने प्राप्त की। उनका शोध रहा हरिशंकर परसाई पर, लघु शोध और प्रबंधन शोध उन्होंने किया। कई प्रकाशन उनके नाम हैं, वैसे तो हम कुछ के नाम आपको जरूर लेकर सुनाते हैं। मुर्दे इतिहास नहीं लिखते, अदृश्य, मेरी तेरी, सबकी, मीरा कूल, व्यंग संग्रह है ये। कई पत्र पत्रिकाएं भी उनकी प्रकाशित हुई और इसके साथ साथ उन्होंने लेखन क्षेत्र में बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है। उनको कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है, चाहे वो गोदरेज कंज्यूमर फिल्म फेस्टिवल सम्मान हो, दुष्यंत सम्मान हो, रचनाकार आयोग द्वारा बिस्मिल्ला खां पुरस्कार हो, ऐसे कई अवार्ड भी उन्हें प्राप्त है। वैसे तो उनके करियर की लंबी व्याख्या है, लेकिन चलिए पहले उनका स्वागत करते हैं और उनके बारे में और जाने का आज अवसर हमें मिलेगा। आपका बहुत बहुत हृदय से स्वागत है अलका जी।
1: जी बहुत बहुत आभार, और ये मेरे लिए हार्दिक प्रसन्नता का विषय है कि आज ब्रह्मा कुमारी के रेडियो मधुबन में मुझे ये अवसर मिला है। और बचपन से हम सुनते आए हैं, और मैं 90s में एक बार यहाँ पर आई भी थी।
0: अच्छा।
1: और उस समय बहुत से, हम जो मनुष्य होते हैं, जिज्ञासा तो हमारे भीतर होती है।
0: बिल्कुल।
1: तो बहुत से जिज्ञासाएं थी, तो मैं लगातार प्रश्न पूछती जा रही थी, क्योंकि उस समय छोटी भी थी थोड़ी सी। तो वो जो दीदी थे, तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है कि आपके भीतर इतनी जिज्ञासा है, आप कहाँ रहती? मैंने बताया मुंबई, बॉम्बे, तब तो बॉम्बे था
0: जी।
1: तो उन्होंने कहा कि हमारे सेंटर पर जाइएगा, और कुछ ऐसा होता है ना कि हम छोटी छोटी सी बातों को लेकर कई बार परेशान भी हो जाते हैं, तो वो कुछ कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि जिज्ञासा और परेशानी दोनों थी, और मुझे पता नहीं क्यों मैं, मेरे कदम उठ गए आपके जो मलाड में सेंटर है वहाँ उठ गए।
0: ओके।
1: और वहाँ पर फिर मुझे बहुत से प्रश्नों का उत्तर भी मिला और मेरे मन की परेशानियों का समाधान भी हुआ था। तो मैं लगातार कई बार गई, लेकिन फिर बहुत सी बातें होती कि अगर आपने परिवार चुना है तो कुछ प्रायोरिटीज हो जाती हैं कि वी कांट गो अगेंस्ट दैट। तो ठीक है, मतलब फिर मैं गई नहीं, लेकिन हाँ, मैं जो आपके सिस्टर बी के शिवानी जी हैं, उनको तो सुनना किसको अच्छा नहीं लगता
0: जी, जी।
1: तो बहुत बार जब हम कहीं अटकते हैं ना, तो हम जब उन सुनने लगते हैं तो हमको बहुत से प्रश्नों का समाधान मिल जाता है
0: जी।
1: और अभी शिव बाबा ने, पता नहीं उनकी क्या मंशा है, मुझे नहीं मालूम है, फिर से उन्होंने बुलाया, और यहाँ पर भी जो आपका आर्ट एंड कल्चर का, आप ये जो 3 दिन का पूरा कॉन्फ्रेंस होता है, राष्ट्रीय सम्मेलन, तो उसमें क्योंकि विषय इतना अच्छा था, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपको समाज को बचाना है, देश को बचाना है और विश्व को बचाना है, तो परिवार को बचाना सबसे अधिक आवश्यक है।
0: बिल्कुल।
1: तो जो विषय था, और मेरा विषय था संस्कृति, संस्कार और परिवार के मूल्यों के संवर्धन की कला, तो ये बहुत आवश्यक है कि जैसे मुझे ये लगता है कि हम अपनी संस्कृति से दूर जा रहे हैं, और जो दूसरे देश के लोग हैं वो हमारी संस्कृति की ओर आ रहे हैं। तो खैर, ये तो मैंने बताया कि स्पीकर यहाँ आई थी, लेकिन आज आप सबसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है और मेरी आवाज आप तक पहुँच रही है, तो उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ।
0: वैसे तो बहुत सारे प्रश्न है मेरे मन में, लेकिन मैंने आपकी बहुत सुंदर प्रोफाइल जो पढ़ी, उसमें आप ये भी लिखा था कि आप फाउंडर हैं क्रिएटिव राइटिंग की।
1: सॉरी,
0: आप फाउंडर हैं क्रिएटिव राइटिंग।
1: जी जी, हाँ।
0: जी, तो अगर उसके बारे में कुछ बताएं।
1: जरूर। क्रिएटिव राइटिंग, देखिए क्या होता है, जो लेखक होता है ना, नजर और नजरिए का फर्क होता है। अब सामने ये पेड़ दिख रहा है मुझे, है ना, मैं भी देख रही हूँ, कोई और भी देख रहा है, किसी को सिर्फ लगेगा कि उसमें पत्तियां हैं, लेकिन एक जो लेखक होता है उसमें अलग दृष्टिकोण से देखता है,

0: होते हैं, नाद होता है और उसमें किस तरह से आप उसको लिखते हैं, तो फिर हमने ये काफी सारी पूरा पूरा सिलेबस बनाया था, पांच मॉड्यूल्स थे उसके, पांच मॉड्यूल्स में हमने वो सिलेबस बनाया था।
1: अच्छा।
0: और उसमें हम उनको वो पूरी क्लासेस लेते थे और उसके बाद उनको हम होमवर्क देते थे, तो कई लोगों ने उसमें बहुत अच्छी कविताएं लिखना सीखा। और क्योंकि मैं महिला काव्य मंच है अंतर्राष्ट्रीय है जिसके फाउंडर है नरेश नाथ जी, तो उन्होंने मुझे महाराष्ट्र मकाम का अध्यक्ष बनाया, तो उसमें बहुत सी महिलाएं जुड़ी। और उसमें आरुषि जी क्या है कि मन से मंच तक,
1: अच्छा
0: है ना
1: जी,
0: तो ये जो आपने कहा क्रिएटिव राइटिंग और मन से मंच तक, तो मन में बहुत से लोगों के भाव होते हैं ना, आप अनुभूति को जब अभिव्यक्ति में ढाल देते हैं, उसको उतार देते हैं कागज के कैनवास पर, तो वो कविता कहानी गजल कुछ भी बन जाती है
1: जी।
0: तो इसी तरीके से जब बहुत सी महिलाएं आई जिनको लिखना नहीं आता था और वो केवल कुछ कुछ भी या तो किसी की पढ़ देती थी, फिर हमने उनको थोड़ा सा और गाइड किया, तो इस तरह से एक जो क्रिएशन, क्योंकि देखिए कलाकार तो क्रिएशन करता है, और यहाँ पर एक चीज मैंने बड़ी अच्छी सुनी कि कलाकार यानी जो कल को आकार देता है,
1: क्या बात है,
0: तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हम ये नहीं कहते कि हम सचमुच पूरा कल को आकार दे सकते हैं, एक चेतना जरूर पैदा कर सकते हैं। तो एक क्रिएटिव राइटिंग की क्रिएशन कैसे था, राइटिंग तो है लेकिन क्रिएशन क्रिएटिव कैसे हो, रचनात्मकता कैसे आए उसमें, तो ये जो है हमने पूरा मॉड्यूल बनाए हैं और उसको लेकर के हमने पूरी कविता के ऊपर क्रिएटिव राइटिंग की। इसी तरह से कहानी पर भी हम मॉड्यूल बना रहे थे लेकिन किसी कारण से छूट गया, क्योंकि मैं कहती हूँ कहानी एक घटना से नहीं होती। जैसे जब हम छोटे थे, मैं बहुत छोटी उम्र से लिख रही, पहले तो मैं बता दूं 6-7 साल के लिए जब से मैंने कुछ कुछ लिखना शुरू कर दिया था, उसके रीजंस भी हैं, अगर आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगी।
1: बिल्कुल, खैर जानना चाहेंगे।
0: तो क्या होता है ना कि जैसे मैंने एक घटना कहीं देखी, दूसरी घटना कहीं देखी, तीसरी घटना कहीं देखी, तो हम जब सबको सिंक्रोनाइज करते हैं, क्योंकि जो रचनात्मकता होती है, रचनात्मक लेखन क्रिएटिव राइटिंग होती है, वो रिपोर्टिंग नहीं होती है, उसमें आप यथार्थ के साथ में कल्पना का भी उसमें सम्मिश्रण रहता है।
1: बिल्कुल,
0: तो ये जो होता है, ये तो क्रिएटिव राइटिंग इज अ वेरी वास्ट फील्ड और उसमें ये वाली बात है। और एक बात बहुत आवश्यक है कि क्रिएटिव राइटिंग कोई मशीनी तो वो होती नहीं, उसमें आपको भावनाओं में जब तक पगी नहीं हो ना, तो उसमें वो बात नहीं आ पाती है। तो मुझे लगता है कि हर जो रचनाकार है उसके अंदर भावनाएं तो होनी चाहिए और वो अपने दुख के साथ दूसरे के दुख को भी उसी तरह से अनुभव कर सके,
1: संवेदनशील
0: कर सके। बिल्कुल, तो क्योंकि दुनिया तो बहुत बड़ी है और जिंदगी हमारे आसपास बिखरी पड़ी है, तो उस जिंदगी को जब आप रचनात्मकता में ढालते हैं, वो क्रिएटिव राइटिंग।
1: क्या बात है, कितनी सुंदर डेफिनेशन दी है आपने,
0: थैंक यू।
1: आपने फिल्मों के लिए लिखा है, आप रेडियो की बात करें या फिर कविताओं की बात करें, आर्टिकल्स की बात करें, कहानी, मतलब बहुत बहुत कुछ लिखा है आपने, आपके कई पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं। कुछ एक किसी प्रकाशन के बारे में आप जरूर बताएं, जैसे मान लीजिए ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग टाइटल लगा, मुर्दे इतिहास नहीं लिखते, तो इसके पीछे का क्या कहानी है, ये कैसे लिखा या क्या, उसके बारे में कुछ
0: मैं बताती हूँ। एक तो आपने रेडियो की बात की, उस पर फिर मैं मुर्दे पे आऊंगी। तो रेडियो लेखन के लिए मैं आपको बताऊं कि क्योंकि जैसे मैं बॉम्बे से हूँ, तो एक बार किसी ने कहा कि बम्बई के में संयुक्त परिवारों पर आप कुछ एक लिखो।
1: अच्छा।
0: तो मुझे किसी ने चैलेंज किया कि आपको बॉम्बे में संयुक्त परिवार मिलने वाले ही नहीं है। लेकिन बोलते हैं ना, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, और मुझे तो करना था। आप मानेंगे नहीं आरुषि, जब मैं जब ढूंढने लग गई, 13 परिवार की जगह मुझे इतने परिवार मिलते चले गए, और वो मैं आज भी गूज़बम्स आते हैं मुझे जब मैं वो अनुभव शेयर करती हूँ। तो जिनके भी परिवार में गई, तो क्या होता है ना कि जैसे एक जगह अगर जब इकट्ठा होता जाता है पानी तो सड़ने लगता है, इसी तरह से ना परिवारों में भी कई कई बार कुछ कुछ भावनाओं में एक दूसरे से क्लैशेस होने लगते हैं। तो लेकिन जब मैं उनसे मिली, और एक परिवार अंधेरी का मैं आपको बताती हूँ, दुबे परिवार था, तो वहाँ बड़े भाई भाभी ने ही उनके पूरे मतलब छोटे भाई बहनों को बड़ा किया था और बहुत अच्छे से सारा कुछ उनका किया था। तो जब हमने ये किया तो वो लोग लिटरली रोने लग गए और मुझे गले लगा लिया और उनने कहा कि जैसे एक विरेचन होता है ना, जिसको कैथासिस कहते हैं, एरिस्टोटल ने जो दिया था, कि उन्हें कहा हमारे अंदर की सारी जो गलत भावनाएं आने लगी थी वो सब खत्म हो गई। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस तरीके से एक हमने जो काम किया, तो रेडियो लेखन में एक ये अनुभव मेरा बहुत अच्छा रहा। और ये रापा सीरियल अवार्ड होता है, रापा यानी जो टेलीविजन और दूरदर्शन में जो बेस्ट होता है, तो उसको बेस्ट रापा सीरियल अवार्ड भी मिला था।
1: क्या बात है
0: जी,
1: क्या बात।
0: अब आपने मुझसे मुर्दे इतिहास नहीं लिखते, तो आपको जैसे शीर्षक बहुत अच्छा लगा,

0: तो दरअसल ये एक मेरे एक दोस्त हैं, तो वो पहले फिल्मों में एक्टिंग करते थे, अब वो बिहार में कहीं रहते हैं। तो क्या हुआ था कि मेरी कहानी पढ़ के उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया कि मुझे बहुत अपनी अपनी सी वो कहानी लगी, बहुत मैं कनेक्ट हुआ हूँ उससे। तो फिर उनसे बातचीत होने लग गई। तो जो क्योंकि बॉम्बे में तो बॉलीवुड और बॉम्बे की लाइफ, तो बॉम्बे या तो मतलब ऐसे कहते गरीब से गरीब को भी भूखा नहीं सुलाता, अमीर से अमीर को भी। तो बॉम्बे एक ऐसी मिस्ट्री है कि जिसको हर कोई हल करना भी चाहता है, जिसमें जाकर फंस भी जाता है। तो ये हुआ कि वो रवि नाम है उनका, तो उनसे मेरी फिर अच्छी बातचीत होने लग गई। और वो फिल्मों में सीरियल्स में सब स्ट्रगल कर रहे थे, फिल्मों में स्ट्रगल बहुत ज्यादा है, बन गए तो बन गए, नहीं तो बहुत खत्म भी हो जाते। खैर तो वो जो बताते थे, फिर उनकी कविता थी मुर्दे इतिहास नहीं लिखते, और तो इस तरीके से तो वो फिर बाद में उनसे ही, क्योंकि उनकी लाइफ थी तो वो स्ट्रगल करते हुए दो दोस्तों की कहानी है। फिर अंत में ये होता है कि जो दो दोस्त हैं, मतलब एक दोस्त दूसरे दोस्त को संभालता है, फिर दूसरा दोस्त जब परेशान होता है तो ये संभालता है, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है कि वो कुछ ऐसा समझौता करने के लिए तैयार हो जाता है और रूम से चला जाता है। उस समय पेजर हुआ करती थी, जब मैंने ये कहानी लिखी थी तो पेजर पर ये कबीर जो है पहला वाला दोस्त, वो आदित्य को मैसेज करता है कि मुर्दे इतिहास नहीं लिखते, इतिहास वो लिखते हैं जो धारा के विरुद्ध चलकर अपना रास्ता खुद बनाते हैं। तो अब मैं ये शीर्षक कैसे है, देखिए कई लोग कहते हैं मुर्दे, मतलब तुम्हारे शीर्षक मुझे समझ नहीं आए, जो समझ सकता है जैसे आपको अच्छा लगा। अब आप मुझे बताइए कि जो जीते जी मर जाएगा वो तो मुर्दा हो गया ना, और जीते जी जिसके अंदर जिजीविषा है, एक संघर्ष की कामना है, तो वो कभी मुर्दा नहीं हो सकता।
1: बिल्कुल,
0: इतिहास उनका ही लिखा जा सकता है,
1: और जो हार नहीं मानता
0: है ना उसका इतिहास तो कभी नहीं लिखा जाएगा। तो ये बात है, और यही मैं अपने जिंदगी में भी कहती हूँ कि हार कभी मत मानो, है ना, जैसे वो है ना कि हार के आगे जीत है। तो यही वाली बात है कि अपने आप को हारने नहीं दो, और खास करके यहाँ आने के बाद इस डिवाइन में कि मतलब जब हम अपने आप से संवाद करते हैं, परमात्मा से खुद को जोड़ते हैं और अपने असत्य को पहचानते हैं, तो हमको लगता है कि नहीं हार तो कहीं है ही नहीं। तो कुछ इसी तरीके से कि इतिहास आप लिख सकते हैं, आप अपने जीवन में अपने आप को एक हमेशा कर्मठ बना के रखिए।
1: जी बिल्कुल, ये जब कभी कभी बहुत बड़ी मुश्किलें आती हैं तो उसको जीवित रखना बहुत जरूरी होता है, जो हमारे अंदर की आग है, जो हमारे अंदर की भावनाएं हैं। मैं एक और प्रश्न आपसे जरूर पूछना चाहूंगी यहाँ पे, क्योंकि आप कई अपने उपन्यास भी लिखे, कई कहानी संग्रह हैं, तो कहानियां लिखने के लिए अगर मान लीजिए कोई इंटरेस्टेड है, कोई युवा है जो इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो अगर आप कुछ टिप्स दें, कुछ ऐसी बातें जो मदद करें, जैसा आपने कहा ना अनुभूति को अभिव्यक्ति मिलाने के लिए, आपकी ओर से कुछ ऐसे,
0: मतलब आपका प्रश्न है कि कौन सी बातें कहानी लिखने में मदद करें।
1: जी जी जी,
0: हमारा जो मैका है वो कटनी एमपी में है, और वहाँ एक फार्म हाउस है हमारा। तो मेरे पापा जो थे उन्होंने पूरी अपना सारा एकदम रात से लाइफ छोड़ के, उनको फार्मिंग बहुत पसंद आई, तो वो हम मतलब 400 एकड़ जमीन थी, बंगला था, तो हम लोग वहाँ रहते थे। तो वहाँ जो गांव की लड़कियां आया करती थी उनसे हमारी दोस्ती हो जाती थी, और वो लड़कियों को देख करके ना मेरे जहन मतलब वो अंकित होती चली गई। उस समय तो मैं बहुत छोटी थी, लेकिन फिर धीरे धीरे क्योंकि मैंने छोटी उम्र में कहानी भी लिखनी शुरू कर दी थी, तो वो कहीं ना कहीं मतलब जैसे एक शिवरात्रि नाम की लड़की थी, हाँ उसका नाम ही शिवरात्रि था, और आज भी मुझे वो वैसे की वैसे याद है, एकदम लंबी छरहरी सांवले रंग की, बड़ी बड़ी आंखें, तो वो कहीं ना कहीं मेरे जहन में अंकित हो गई, है ना। इसी तरह से हमारे यहाँ पर एक गाल बाबा थे, तो उनकी बेटी का नाम था अमसा था, अमसा। अब आप बोलेंगे अमसा कोई नाम होता है ना, है ना। अब वो उसका रीजन क्या था कि मेरी दीदी ने उनकी बेटी का नाम रखा था अंशा।
1: अच्छा।
0: अब अंशा तो वो नहीं बोल सकते थे तो अमसा बोलते थे। तो एक कैरेक्टर मेरी अमसा बनी, एक कैरेक्टर मेरी शिवरतिया बनी, और फिर उनकी कहानी दूसरों कहीं से आए, जैसे जैसे मैंने बताया आपको कि कटनी की हूँ मैं, तो कटनी में ना चूने के भट्टे बहुत होते हैं, तो चूने के भट्टों में जो लोग काम करते हैं तो क्या होता है कि वहाँ उनको टीबी बहुत हो जाती है, तो वो जो सारी जो चीजें थी वो। उसके बाद में रेलवे लाइन पर जैसे गरीब लोग हैं वो कोयले बिन रहे, कोयले के जो वैन निकलती ना कोयले गिरते हैं, तो वो कोयले बिनते बिनते ट्रेन से कट जाते हैं, कई बार उनको नहीं पता चलता था। तो ये जो मेरा जो एकदम मासूम सा मन था, ये बहुत मुझे परेशान करती थी ये चीजें, और वो फिर सब मेरी कहानी में ना मतलब एक चीज वहां में जैसे बताया ना, एक घटना ये, एक घटना वो, तो ये जैसे कि जो मतलब मेरी कहानी में अमसा जो है वो गांव से शहर आती है, फिर वो इस तरह से उसकी और वो अमसा से मिलती है ये जो राइटर है और वो चूने भट्टे के वहां जाती है तो वो बोलती है कि दीदी हम ना कक्का भाई क्योंकि मैं वहां की तो मुझे भाषा भी है दीदी हम कब ना चूने के भट्टे में काम करीबे तो वो फिर वो बोलती है लेकिन जब दूसरी बार जाती तो देखती है कि वो अमसा खांस रही है बुरी तरीके से तो वो बोलती है कि तुमको क्या हो गया तब वो कहती है कि दीदी हम कहे थे ना कि हम अम्मा वाला काम कभी ना करेंगे लेकिन हमारे घर में खाने को नहीं बचा दद्दा भूखे मर रहे हैं दीदी भूखी मर रही तो क्या करें काम तो करवे को पड़ा थे तो वो सारी जो चीजें थी तो वो मतलब वो मैंने वो भाषा वहां की क्योंकि बचपन में उनके बीच में जाते थे तो ये ना जो लेखक होता है ना वो बहुत ज्यादा ग्रहणशील होता है और उसका ऑब्जर्वेशन बहुत शार्प होता है और संवेदनाएं कहीं और उस पर जो संवेदनाएं होती है ना तो कहते हैं ना जैसे कि हीरे पॉलिश कर दिया है तराशती है संवेदनाएं इस तरह से कहानियां हमारी बनती हैं जैसे आपसे ही मैं बात कर रही हूँ अब आपकी स्माइल पर ही मैं कुछ कविता लिख दूंगी तो ये तो देखिए क्या होता है कि नजर की बात है
1: नजर नजरिया जो आपने कहा
0: बिल्कुल हाँ
1: जैसा आपने कहा था कि आपने बहुत कम उम्र में ही लिखना शुरू कर दिया था तो क्या ऐसी कहानियां थी जिन्होंने आपको इंस्पायर किया या फिर क्या कोई ऐसा क्षण था जिसने आपको इंस्पायर किया या कहां से लिखन की शुरुआत इतनी कम उम्र में कैसे हुई
0: क्या हुआ था ऋषि जी के बचपन में मतलब मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था अक्सर मैं साक्षात्कार में ये बात तो आती कि लोग पूछते हैं कि लिखना कैसे शुरू किया क्या किसी ने जैसे आपने पूछा क्या किसी ने इंस्पायर किया या कोई ऐसा क्षण आया तो मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी घटना घट गई थी तो मतलब हम लोग पांच बहन थे और मैंने अपना बहुत दीदी लोगों ने मेरा नाम जल्दी लिखा दिया था तो मैं मम्मी पापा फार्म हाउस में रहते थे तो मैं दीदी लोग के साथ यहाँ रहती थी और मैं बहुत छोटी सी थी तो मेरी दीदी जो थी सबसे बड़ी वो खुद 18 साल की थी जब उनकी शादी हुई थी और वो मेरे लिए माँ समान थी कि मम्मी फार्म हाउस पे रहते थे मम्मी पापा तो उसके बाद मतलब उन्होंने ही मुझे डांस वगैरह हम लोग का पिक्चर हॉल हुआ करता था तो डांस वगैरह करती थी तो उनने कहा कि इसको डांस सिखाया जाएगा तब तो लिखने जैसा कुछ सोचा भी नहीं था मैंने नहीं सोचा ही नहीं था मतलब 5-6 साल की बच्ची क्या सोचेगी ना उस वक्त तो मैं क्या करती थी पिक्चर हॉल से आती थी फिर वो लैच लगा के फिर गा के अंदर तो बोले करती क्या अंदर ये तो दीदी लोग ने देखा तो इसको डांस सिखाया जाएगा और वो ही गा के सिखाते थे मुझे क्योंकि क्लासेस नहीं थी कथक बेस है लेकिन मेरे डांस का तो खैर फिर वो दीदी की शादी बहुत जल्दी हो गई 19वें साल के पहले ही मतलब कहते हैं डाउरी डेथ थी उनकी तो वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था मतलब आज भी कई बार आंसू आ जाते हैं उनकी बात करते हुए मेरे आंखों में तो उनसे जो छोटी दीदी थी उन्होंने कहा कि तुम्हारे मन में जो आता है ना याद करके लिखा करो और डांस शशि दीदी नाम था शशि तो उनने कहा कि शशि को मतलब उनका मन था कि तुम डांस करो तो मेरी जो प्रभा दीदी वगैरह थी उन्होंने मुझे लगातार डांस तो मतलब मैंने कई सारे डांस में भी अवार्ड सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार बहुत सारे जीते हुए हैं तो सरस्वती माँ की कृपा है जो उन्होंने मुझे कला दे करके भेजा और मैं कहती हूँ लिखना मेरे लिए सांस लेने जैसा अब बोलती हूँ क्योंकि तब तो मालूम नहीं था मुझे तो मैं जो भी मन में कुछ भी आता था पेंसिल से लिखती जाती थी उसको फिर धीरे धीरे टीन एज की जब हुई तब तक मैं कहानियां लिखने लगी थी जी तो उस टाइम्स ऑफ इंडिया का एक पब्लिकेशन था सारिका धर्मयुग अगर आपने सुना होगा सारिका ये दोनों टाइम्स ऑफ इंडिया पब्लिकेशन हुआ करते थे तो सारिका में मेरी पहली कहानी छपी नवांकुर विशेषांक में उसके बाद तमाम जगहों से पत्र आने लग गए और बात और मंगाई जाने लग गई कहानियां और मतलब उस समय मुझे बहुत तो सेलिब्रिटी बन गई इतने सारे लेटर्स के बीच में छोटी सी अलका बैठी हुई पत्र पढ़ रही है सारिक है फिर वो एक सिलसिला शुरू हो गया आकाशवाणी जबलपुर और फिर तमाम जगह फिर बॉम्बे भी गई तो मेरे साथ में अच्छा ये हुआ क्योंकि मेरे पति वैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं लेकिन वो मेरे लेखन को बहुत पसंद करते रहे हमेशा से तो उन्होंने कहा कि तुम लिखना बंद मत करो और मुझे कुछ वहां पर जनसत्ता में सब रंग उनका आता था तो शादी के बाद भी मेरा लेखन कभी ना रुका नहीं तो यही वाली बात है कि आप दुख से या तो अपने आप को बना लीजिए या दुख में अपने आप को खत्म कर दीजिए तो दुख ने मुझे बनाया है जी इस तरह में लिखने लग गई शब्दों में ढाल दिया अपने दुख को मैंने
1: ये जो सेंटेंस है जी दुख से या तो अपने आप को बना लीजिए या खत्म कर दीजिए यही से वो जो आपका जो पहला टाइटल है शायद वो सिद्ध हो जाता है कि मुर्दे इतिहास नहीं लिखते इतिहास वो लिखते हैं जैसे आप जैसे लोग जो जिन्होंने दुख से अपने आप को बना लिया मुझे लगता है लाखों लोगों को दुख से निकालने के निमित्त बन गए
0: जी
1: क्या इसके लिए फिर आपको ऐसा कुछ लगा कि हाँ मुझे और ट्रेनिंग करनी है या और कहानियों को समझना किसको मतलब आप पढ़ते किनको थे या कौन आपको बहुत पसंद कौन किसका लेखन आपको बहुत पसंद था
0: जैसे चित्रा मुद्गल जी का बहुत अच्छा लगता है मुझे. मधु कांकरिया इस समय जो है हमारे समय की, मतलब हम हमारे से बड़ी पीढ़ी की हैं, लेकिन मधु कांकरिया जी बहुत अच्छा लिखती हैं. उसके अलावा जैसे कि हरिशंकर परसाई जी को तो मैं खैर एक तरह से उनके लेखन को जीती हूँ. ज्ञानरंजन जी भी मुझे बेटी जैसे ही मानते थे और मेरा एक सौभाग्य रहा है कि मुझे इन सब से मिलने का मौका मिला है. मुक्तिबोध को मैंने पढ़ा है, अज्ञेय को मैंने पढ़ा है. तो कई बार जैसे बाबा नागार्जुन की कुछ कविताएं बहुत अच्छी लगती हैं. इसी तरह से अमरकांत मुझे बहुत पसंद थे, उनकी जिंदगी और जो क्या बहुत सारी. तो मतलब मैं ये नहीं बोल सकती कि मुझे एक कोई साहित्यकार पसंद है. कभी किसी की कुछ चीज अच्छी लगती है, कभी किसी की कोई चीज बहुत अच्छी लगती है. तो और आपको ना वो रास्ता जैसे बशीर बद्र उनकी आप शायरी सुनेंगे कि आप सुने कि हम बचपन में थे ना तो वो रखते थे उजाले अपनी यादों के, हमारी साथ रहने दो न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए. और बहुत सारे हैं कि मतलब उनकी मतलब बार बार हम उनके बहुत सारे शेर हमें याद आते हैं. तो जो भी अच्छा मिलता है, और कई बार ये भी होता है आरुषि जी की बहुत नाम नहीं होता है किसी का, लेकिन अचानक आप उठा के पढ़ते हैं तो अरे इतने ये लिख दिया, ये मैंने क्यों नहीं लिखा. तो ये होता है. और जैसे कि कई बार ये होता है कि जैसे ना जैसे अगर आप बोलेंगी तो मैं अपनी एक आध आपको रचना भी सुना दूंगी.
1: जी मैं एक्चुअली वो पूछने ही वाली थी कि कुछ पंक्तियां अगर आप सुनाएं अपने लेखन की हमें भी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा.
0: तो पहले से मैं बताती हूँ कि ना बता जैसे मतलब हमेशा मुझे मेरे हस्बैंड कहते हैं और मैं ना मैंने मुझे लगता है कि आपका भी मुझे लग रहा है आपके अंदर का भी बच्चा हमेशा जिंदा रखती है आप. तो अपने भीतर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखना चाहिए. तो मेरे पति हमेशा कहते हैं मम्मी पापा ने तुमको बड़ा करके नहीं भेजा. तो मैं कहती थी कि कहते हैं वो कि हम बड़े नहीं हुए. कहते हैं वो कि हम बड़े नहीं हुए. बड़े होना मतलब झूठ बोलो शान से मक्कार हो जाओ. क्या करें इस परिभाषा पे हम खरे नहीं हुए तो कहते हैं वो कि हम बड़े नहीं हुए.
1: वाह वाह वाह.
0: तो क्या हुआ कि मेरी बेटी अब तो बड़ी हो गई है. तो जब वो 5 साल की थी ना तो एक बार मेरे साथ जा रही थी. अच्छा वो वैसे मम्मा बोलती है लेकिन जब वो बहुत उसमें प्यार में होती है तो माँ बोलती है मुझे. और मुझे बहुत मतलब तो मैं लगती हूँ कि ना और सचमुच मुझे लगता है कि जो रिश्ते आपको जो खुशी देते हैं ना वो कहीं नहीं मिलती है. और मैं आपको 2 कविताएं इसलिए सुनाऊंगी कि आपने अगर परिवार चुना है तो पहले मैं वो सुनाती हूँ फिर मैं अपनी बेटी पे.
1: प्लीज प्लीज जरूर जरूर
0: जी. तो क्या सपने बन गए बॉन्साई. कहते हैं कुछ लोग कि स्त्री जब बनती है माँ करती जाती है अपने सपनों को छोटा छोटा बहुत छोटा. मारती जाती है अपने सपनों को खुद बेमौत या हो जाते हैं उसके सपने बौने. बन जाते हैं क्या बॉन्साई. बन जाते हैं बॉन्साई. सोच का बवंडर उठा अभी तर उसके क्या ये सच उसका भी है. क्या ये सच उसका भी है. हो जाने दिया है उसने अपने सपनों को बौना. बना दिया हरे भरे वृक्ष से बॉन्साई. विचार मंथन चल पड़ा अंतस में. अगर ऐसा होता तो मिट चुका होता कब का वजूद उसका. उसने टटोला खुद के वजूद को महसूस किया. अरे वो तो वहाँ है मतलब उसका वजूद तो वहाँ है. बड़ा अजीब है व्यक्तित्व उसका. एक ओस्त्री विमर्श की बातें तमाम पर झेलती है यातनाएं भी. तो क्या छद्म है उसकी बौद्धिकता. लेखन में विरोध के स्वर है मात्र दिखावा. तर्कों की मथानी से फिर मंथन वो करती है. तब सांसारिक सच की सोच नवनीत से उतरती है. पत्नीत्व और मातृत्व का चुनाव उसका ही तो है. तो फिर शायद जायज है समझौते भी. यातना सहते हुए भी खुद को खुश रख पाती है. अपने वजूद से पहचानी जाती है. यानी नहीं होने दिया उसने अपने सपनों को बौना. जिजीविषा के पानी महत्वाकांक्षा की खाद और आत्मसम्मान की धूप से बचाया है उसने अपने सपनों को बॉन्साई बनने से. तो अब मेरी बेटी मेरे साथ जा रही थी. एक बार 5 साल की थी तब. वो तो ऐसे आंख बंद करके एकदम बैठी थी. मैं उसको देख रही थी. अचानक उसने मुझे जो बोला तब ये कविता निकली. क्या बोला था इसमें आएगा. सुबह की सुहानी बयार सी है वो. अल सुबह की शीतल ओस सी है वो. उसे देखकर लगता है ऐसे भर ली हो भोर की भीनी खुशबू भीतर जैसे. उसका मीठा बोसा लगता है यूं सहला गया ठंडी हवा का झोंका जूं. चूमती जब मासूमियत से आंखों को मेरी कितना नाजुक पिघलता सा है वो एहसास. उस रोज सुबह सुबह संग मेरे वो निकली. नन्ही परी ने आंखें बंद कर ली अपनी. खो गई एक प्यारी सी दुनिया में. एंजल सी चमकती चेहरे पे उसके. अपनी छोटी छोटी बाहों का घेरा मेरे गले में डाल आंखों में सितारे भरकर कहा उसने माँ माँ माँ मुझे सुबह बहुत अच्छी लगती है। अनाद ना सब बज उठा अंतस में मेरे, मंदिर में बज गई हूँ घंटियाँ जैसे। कैसे महसूस कर पाती है मेरी नन्ही सी कली सुबह की पावन खूबसूरती, कितनी मधुर है ये अनुभूति। बड़े प्यार से फिर वो मुझसे सटी, सीप सी पलकें बंद कर अपनी, झर झर झर झर झर झर झरते झरने से आवाज में कहा उसने, सुबह कितनी अच्छी लगती है ना माँ, है ना माँ, सुबह कितनी अच्छी लगती है ना। खिल उठी भीतर मेरे खुशियों की बीथियाँ, कितनी प्यारी होती हैं बेटियाँ, आगोश में अपने भर कर पेशानी उसकी चूम कर कहा मैंने, बेटी मेरी मुझे तो तू खुद सुबह सी लगती है, तू खुद सुबह सी लगती है।
1: क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मतलब सच में ये जो आपने पंक्तियां कही हैं, हर माँ सुनेगी तो अपनी बेटी को, अगर वो उनसे थोड़ा सा भी दूर है तो मुझे लगता है वो उनके करीबी पल, वो उनकी आंखों के सामने वैसे तो रहते ही हैं, लेकिन वो आंखों में आंसू बन के बह जाएंगे। इतने खूबसूरत हैं ये पंक्तियां। आपकी बेटी क्या कहती है जब वो आपकी कविता?
0: मेरी बेटी अभी मतलब बेटा भी है मेरा, अभी जॉब कर रहा है, और बेटी अभी लॉ कर रही है और फोर्थ ईयर में है। और अभी मैं आपको बताऊं कि पता नहीं, मतलब कई बार हमको लगता है कि शायद पता नहीं वो उतना प्यार करती है, लेकिन अभी इधर में भोपाल में किसी कार्यक्रम से गई थी, यहाँ पर हूँ मैं 26 तारीख से, तो वो मुझे बहुत मिस कर रही है, तो रोज फोन करती है, तो मुझे लग रहा है कि काश मैं जल्दी चली जाती। खैर, तो वो ना लॉ कर रही है। अच्छा, एक बात अच्छी है कि वो इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखती है, मुझसे अच्छा। बेहतर लिखती है, और वो बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छी बात कर लेती है। तो मैं कहती हूँ कि उसका नाम, वैसे हम लोग घर में मिष्टी बोलते हैं, वैसे उसका नाम शरण्या है।
1: अच्छा।
0: तो कई बार ना, वो जब छोटी भी थी ना, तो जैसे मैं उसको लोरी सुनाया करती थी, तो वो मुझे अपनी गोद में सुला करके वैसे लोरी गाती थी। तो मैं कहती थी कि बेटी माँ बन जाती है, तो मतलब ये होता है। तो अभी भी ना कई बार मम्मा ऐसे नहीं करना, मम्मा वैसे करना है, तो मैं कई बार, मुझे लगता है, और मैं भी उसको बोलने देती हूँ, क्योंकि मुझे भी लगता है कि हाँ वो मेरी माँ बन करके मुझे उस तरीके से वो कर रही है। तो बड़ी प्यारी सी, नाजुक सी है, और अच्छा लिखती है, और लॉ कर रही है। और उसका शुरू से ना बहुत ये मन था कि मैं इसमें रहूँ, मतलब जो जासूसी जो सीरियल होते थे, हाँ, इस तरह के जो होते थे वो देखा करती थी, तो उसको उसमें मतलब बहुत इंटरेस्ट आता था, तो उस तरीके से वो अब वो लॉ कर रही है।
1: क्या बात है। अच्छा, इसीलिए उन्होंने वो प्रोफेशन बनाया उसको, और समाज की मदद के लिए, जैसे वो एक उसको इंटरेस्ट को भी उन्होंने उसको इस्तेमाल किया। क्या बात है। तो वो क्या करते हैं जब आपके घर वाले आपकी कविताएं सुनते हैं, तो क्या आपको फीडबैक देते हैं, कैसा लिखा है कहते हैं, या क्या महसूस हुआ, कैसा, मतलब पहले, सबसे पहले जब आप लिखते हैं तो किसको सुनाते हैं आप?
0: आपको बताऊं, मैं सबसे पहले अपने पति को सुनाती हूँ।
1: अच्छा,
0: ठीक है। वो मेरे सबसे बड़े क्रिटिक हैं, और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लेकिन मैंने देखा कि साहित्य की समझ उनके बहुत अच्छी है, और मैं ना बहुत जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी अभी जैसे बोल के बता रही हूँ आपको, मैं बहुत जल्दी जल्दी बोला कर
1: जी।
0: तो मुझे कहते कि थोड़ा ना थम थम के
1: आराम
0: से, है ना। तो उन्होंने मुझे एक तो ये सिखाया, दूसरा वो कहते थे कि तुम्हारा जो फोर्टे है वो तुम्हारी भावनाएं, संवेदनाएं हैं, तो तुम अपने किसी के बोलने से ना उसको बदलो नहीं। और वो कई बार मुझे कहते नहीं ये चीज ऐसे अच्छी नहीं लग रही है, तो वो मैं उनको बताती हूँ। अच्छा, कई बार ये भी होता था कि मैं अपने कुछ दोस्तों को भी बता देती थी, तो पता चलता था थोड़े दिन में मेरी चीज उनके नाम से आने लग गई। ये बहुत होता है आरुषि जी। मेरी तो आपको बताऊँ, ये कविता है जो बहुत ज्यादा फेमस हुई है, द्रौपदी तुम्हें उठाने होंगे शस्त्र, तुम्हें ही बनना होगा सशक्त, नहीं आएंगे अब कोई कृष्ण, उसको चुरा के लोगों ने कर लिया, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अपना आएंगे गोविंद। ये मैंने लिखी थी कविता।
1: अच्छा, उसमें एक दो शब्द बदल के किसी ने,
0: बदल के, और ये मतलब एक मिनिस्टर है, नाम नहीं ले रही मैं यहाँ रेडियो पे, एक मिनिस्टर है उन्होंने, फिर एक और, तो तमाम उसको बहुत सारे राजनेताओं ने उसको कोट किया। तो मेरा बेटा मुझे बोलता है कि मम्मा आप लिखते हो, आप इतना अच्छा लिखते हो, आप उसके लिए, तो मेरे पास में मेल है वो, जब मैंने पहले लिखी थी, भेजी थी, पेपर में छपी भी थी। अच्छा, मैं एक और काम किया करती थी उस कविता को, हम जो जाते थे, हम मार्शल आर्ट वालों को लेकर के जाते थे, तो मार्शल आर्ट वाले जो थे वो वहां पे मार्शल आर्ट सिखाते थे लड़कियों को, एक मेरे साथ वकील जाते थे मेरे दोस्त, और मैं एक कविता गाती थी, बोलती थी। तो हम पूरी लड़कियों को, मैं कहती थी कि आप लड़कियों को इतना ट्रेन कर दो कि दो चार लोगों को से अपने आप को सेफ तो कर सके वो।
1: बिल्कुल।
0: तो ये मैं, मेरा ये पूरा का पूरा मोटो था। लेकिन खैर, उसके बाद मेरे एक सीरियल को, मेरा मैंने लिखी थी कहानी तपस्या वाला था, वो क्या था, तपस्या थी उस सीरियल में, अब मैं सीरियल का नाम पता नहीं कैसे अचानक से अभी बात करते, तो उस पर सीरियल बन गया, और वो मेरी कहानी की चोरी थी। तो अच्छा। खैर, मुझे फिल्म राइटर एसोसिएशन में, मुझे मेरे फेवर में डिसीजन भी आया, पर बहुत कुछ ऐसा हुआ, पर ठीक है, क्या किया जा सकता है। तो बहुत कुछ होता है, लेकिन और भी जैसे कि मैं, अगर आप बोलेंगे तो आपको मैं एक दो चार शेर सुना दूं अगर आप बोले तो।
1: जरूर जरूर, और शेर भी सुनना चाहेंगे, और साथ में जो आपने कहा ना कि लड़कियों को इतनी तैयार हो जाए, इतना मोटिवेट हो जाए कि वो खुद की रक्षा स्वयं कर सके। हाँ। तो अगर कोई ऐसी भी कविता हो तो भी हम जरूर सुनना चाहेंगे अगर आपको याद।
0: जैसे कि मैंने वो जो द्रौपदी वाली थी ना कि मतलब सुनो द्रौपदी शेर उठा लो, कि मतलब द्रौपदी अब जगह जगह पुकार रही है, लेकिन मतलब उसको खुद को ही सशक्त बनना होगा। तो ये तो है, लेकिन अभी फिलहाल ये है कि जैसे दूसरों को भी, कि मतलब हम कहते हैं कि अपने दिल और जान में रखना, नाम मेरा भी ध्यान में रखना, मुफलिसों को ना दो चांद तारे भले पाके उनके ध्यान में रखना। कि भाई आपके मन में एक दया भाव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने किरदार, ये देखिए जैसे कि अपने किरदार को बहुत मजबूत इस बदलते जहान में रखना। ऐसे नहीं कि आप बह गए धारा के साथ में, तो मेरा शीर्षक भी मुर्दे इतिहास नहीं लिखते। आपका अगर किरदार मजबूत है तो फिर आपको कोई बदल नहीं सकता है कि इस बदलते जहान में रखना। तेरे कपड़ों पे जो है गर्दे सफर कामयाबी की शान में रखना। कई लोग कहते होता है ना कि जब बड़े बन गए तो भूल जाते हैं। आप अपनी जमीन से हमेशा जुड़े रहे, तो ये मैं कहती हूँ कि तेरे कपड़े पे जो है गर्दे सफर कामयाबी की शान में रखना। हमेशा याद रखो कि हम कहाँ से उठे, कहाँ पहुँचे हैं, और तुमको आकाश है छूना अगर, तुमको आकाश है छूना अगर, पंख अपनी उड़ान में रखना, अपने दिल और ध्यान में रखना। और ये जो आपने कहा कि मुझे कई लोग कहते हैं कि तुम इतना मीठा बोलती हो कि मतलब हम तो बड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं, मैंने कहा नहीं, वो ऊपर वाले ने दे के भेजा है। तो ये शायद इस तरह है कि सुन के हो जाए जो फिदा तुम पर, सुन के हो जाए जो फिदा तुम पर, लुत्फ ऐसा जुबान में रखना, अपने दिल और ध्यान में रखना, अपने दिल और ध्यान में रखना। और कभी कभी होता है ना कि हम बहुत दुखी हैं तो हम बोल नहीं पाते हैं, तो अब जैसे अब तो बाबा है वो कोना, हमको कभी लगेगा तो हम बाबा को स्मरण करेंगे, तो कि रो सको जहाँ पे छुप छुप कर, रो सको जहाँ पर छुप छुप कर, ऐसा गोशा मकान में रखना, ऐसा कोना मतलब गोशा, ऐसा गोशा मकान में रखना। और वो गोशा आध्यात्मिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ये के कम नहीं है, हालांकि मैंने अलका अपना इसमें तलफ्फुज जो होता है मक्ता जो कहते हैं, लेकिन मैं इसको भी बदल देती फिलहाल यहाँ की, कम नहीं है किसी से कोई, कम नहीं है किसी से कोई, दोस्तों ये गुमान में रखना, दोस्तों ये गुमान में रखना। तो आपने जैसे कहा तो मेरी कहानी थी बेटी
1: जी,
0: तो उसमें माँ अपनी बेटी के बारे में सोचती है, और वो पहले सोचती नहीं शादी, तो दूसरे कहते भाई बेटी बड़ी हो रही शादी करा, तो बेटी को फिर बताने लगती है देखो तुम जाओगी एक राजकुमार जैसा लड़का होगा, तुम्हारा ध्यान रखेगा। और लड़की, वो बेटी सपने पाल लेती है, शादी होती है, शादी होती है जब, तो वो जब आती है घर तो वो खुश नहीं है, मैके जब आती तब माँ को समझ में आता है कि उसको जो सपने बेटी को दे दिए हैं वो उसको हाथ में हाथ लेकर घुमाने नहीं लेकर जाता है, बहुत सारी जो चीजें,
1: राजकुमार आएगा,
0: राजकुमार आएगा, तो वो तो नहीं मिला उसको कि भाई नमक कम है तो भी बोलेगा है वो है। तब उसको समझ में आता है कि मैंने इसे गलत सपने दे दिए हैं। फिर वो उसको दूसरी तरह से, कि एक एक कविता है कि हो जाती वो पायस्विनी जब वो माँ खुद बनती है तो महिला, तो वो बेटी को फिर अलग तरीके से समझाती है।
1: अच्छा।
0: आपकी, और वो प्रेग्नेंट है जब बेटी आती तभी भी खुश नहीं, तो फिर उसको अलग तरह से समझा के भेजती है, और कि मतलब अब की बार अगर दुखी हो जाएगी तो मैं इसे नहीं भेजूंगी, लेकिन उसको मालूम है कि मैंने इसे ऐसा समझा दिया है क्योंकि मैंने उसे गलत ट्रेन किया था। तो ये जो हम संस्कार देते हैं ना, तो वो हमारे भीतर कहीं ना कहीं पनप जाते हैं। तो माँ जो बच्चे को सिखाती है वो बहुत सोच समझ के बताना चाहिए कि उसको आगे जा करके भी एक घर संभालना है, तो वो उस तरह से ट्रेन करे कि वो समझ पे आए कि हाँ मेरे ऊपर जिम्मेदारियां आ रही, अब मैं वो बच्ची नहीं रह गई हूँ। बहुत बदलना पड़ता है। तो मुझे जो मेरी टाइप करते थे उनने कहा कि एक दिन मुझे कहा कि क्या लड़कियां सब सोचती कि शादी के बाद ऐसा होगा। मैंने कहा अमूमन तो सभी सोचती,
1: अमूमन सभी सोचते,
0: तो मैंने भी सोचा था। बोले अच्छा। तो मुझे एक दिन फोन किया, मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मैंने कहा कि क्यों? बोले कि आपकी कहानी से मैं अपनी पत्नी की भावनाओं को समझने लग गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर एक दिन मैंने बोला कि मेरे कुछ कहानियां टाइप कर दीजिए। बोले आज आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं कर सकता। मैंने कहा क्यों? बोले मैं आज अपनी पत्नी को डेट पर लेकर जा रहा हूँ और ये आपकी कहानी का असर है।
1: और इससे पहले शायद वो,
0: हाँ, तो वो
1: रियलाइजेशन मतलब उनको हुआ उससे।
0: एक्चुअली मतलब क्या होता है ना, कई बार ना जो दूसरे घर से लड़की आती है ना, पति समझ ही नहीं पाता है कि ये कितनी अंदर अपनी भावनाएं लेकर आई है।
1: उनके सपने क्या है,
0: सपने लेकर आई है ना। और आप जब तक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ही नहीं आप कायम कर पाते, तो जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और हम एक दूसरे के साथ में साथ साथ कदम बढ़ा के चल रहे हैं ना, ये कोई नहीं सोचे कि मैं ये तो आई है मैं ही, क्योंकि एक शोविनिस्टिक मेंटालिटी
1: सोचते हैं इनको एडजस्ट करना है, ये आई है यहाँ से, मगर वो सोच उनके मन में क्या चल रही है वो सोच समझ ही नहीं पा रही,
0: वही वाली बात। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि उसके बाद उनको लगा कि अच्छा ये भी सपने लेके
1: बदलाव कितना
0: उसको समझना चालू कर दिया। तो मुझे लगता है कि मेरा लिखना सार्थक हो गया। और इससे मुझे बहुत सारे इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं, जैसे कई लोगों ने मुझे कहा कि आपको देख के हमने डांस करना सीखा, आपको देख कर, मतलब कटनी में पहले मैं मारवाड़ी हूँ, हमारे दादाजी नगर सेठ हुआ करते थे, तो लड़कियों को डांस वगैरह, इवन मेरे बाबा जी ने वैसे बहुत हमको फ्रीडम दे रखे थे, हमको कभी पता, आप आरुषि जी मैं बिल्कुल खुले दिल से बोलती हूँ कि मुझे कभी वो डिस्क्रिमिनेशन हमारे घर में नहीं हुआ,
1: लड़का और लड़की वाला,
0: हाँ लड़का अच्छा। लड़की वाला कभी नहीं हुआ, हम लोग पांच बहने थे पर कभी नहीं, ना बाबा जी ने, दादा जी ने, ना पापा ने, मम्मी किसी ने नहीं। तो फिर लेकिन वो लोग आए तो बोले डांस, तो उनने बोला भाई नगर सेठ की बेटी ने लोकचंद फुलचंद की पोती डांस करेगी, तो बोले अगर आपकी बेटी डांस करेगी पोती तो बहुत सी बच्चियों, तो उन्होंने हाँ कह दिया।
1: अच्छा कि हाँ, बाकी लोगों को भी और इंस्पिरेशन मिले।
0: हाँ, तो उन्होंने हाँ कहा। और मैंने पहला डांस जो किया था वो था होठों पे ऐसी बात, और उसके बाद में कारी कारी कारी अंधी आ रही थी रात नवरंग की, तो उसमें भी मुझे दूसरी बार किसी ने डरा दिया, अरे तुमसे तो बहुत बड़ी डांसर आ रही, तुम क्या जीतोगे छोड़ दो। मैं रोई तो मम्मी ने कहा अब तो तेरी असली परीक्षा है बेटा, अब तो तेरे को जीतना ही, दीदी लोगों ने भी, तो वो मैं फिर जीती, फिर मैं सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार बनी।
1: क्या
0: तो ये मतलब हमेशा मुझे मतलब ये कि मुझे लोग फॉलो करते, अच्छा अलका ने किया, उनकी पोती ने किया, अब हमारी बेटियों को भी,
1: हमारी बेटियों को भी करना चाहिए ना, करना एक चाहिए। क्या बात है। मुझे आपकी बातों से ना एक चीज और बहुत समझ में आई कि साहित्य कैसे जीवन को आसान बनाने में मदद करता है, कैसे एक दूसरे को समझने में मदद करता है। तो हमें से बहुत लोग हैं जो पढ़ते नहीं है, मोबाइल में ही चले गए हैं जिंदगियां, तो अगर साहित्य के और नजदीक जाएंगे तो अपने आसपास वालों को भी और बेहतर समझ पाएंगे।
0: बिल्कुल सही बात है जी,
1: ये पढ़ना चाहिए। और
0: बिल्कुल देखिए क्या होता है ना, आपने आप भी बचपन से पुस्तकें सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। और मैं दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर में गई थी तो आज तक वालों ने एक इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा कि क्या आपको लगता है कि आजकल पुस्तकों का अस्तित्व खत्म हो रहा है। मैंने अगर ऐसा होता तो आप पुस्तक मेले में मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं और तमाम स्टॉल्स हैं और लोग खरीद रहे हैं किताबें और स्पेशली जाते हैं, और खास करके बच्चों के माता पिता जाते, मेरी बेटी भी बहुत पढ़ती, ठीक है वो अंग्रेजी में पढ़ती लेकिन बहुत किताबें पढ़ती है। तो कई बार क्या होता है कि जैसे जब हम मोबाइल पे आजकल जो हम रील बोलते हैं ना, रील लाइफ में के कारण हम रियल लाइफ से दूर होते जा रहे हैं, और व्हाट्सएप हम फेसबुक पे, अच्छा अभी हम परिचित हो गए, अच्छा आप में से कनेक्टेड है, अरे अलका जी आपकी तबीयत, ओ प्लीज गेट वेल सून, अपना ध्यान रखिएगा, ऐसे लगेगा आरुषि जी से ज्यादा तो मेरा कोई अपना है ही नहीं। लेकिन अभी मेरे घर में अगर कोई है और मैं आपको तो पूछ रही हूँ, आप मुझे पूछ रहे, लेकिन आपके घर में तो मतलब लोग लीस्ट वरीड होते हैं, सोचते भी नहीं कि घर में भी हमको वही चीजें करनी है। तो लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो साहित्य हमें एक एक भावना देता है। जैसे मेरी जिंदगी में बहुत सी चीजें हैं कि मैंने कहानियां पढ़ रही हूँ आलेख, जैसे मैंने परसाई जी को, उनको पढ़ करके मेरी चीजें बहुत भीतर बदला है। जो आप उसको उस तरह से जब पढ़ेंगे ना, आपको बहुत एक प्रेरणा मिलती है, कई बार
1: पर्सपेक्टिव भी मिलता है, एक नया पर्सपेक्टिव भी मिलता है,
0: पर्सपेक्टिव मिलता है, नया पर्सपेक्टिव मिलता है जिंदगी को समझने का। अच्छा कि हम तो अभी तक हम कूप में डूब बने रहते हैं, पर जब आप पुस्तकों को पढ़ते हैं, क्योंकि देखिए बहुत से लेखक जैसे वो क्या होता है कि उन्होंने पूरी राजनीति पढ़ी होती है, तमाम माइथोलॉजी पढ़ी होती है, तमाम वेद पढ़े होते हैं, या नहीं भी तो और जिंदगी को पढ़ा होता है, और वो उसको उसका सार उसमें लिखते हैं। तो आपको तो सार पूरा मिल गया ना एक जगह, तो जब आपको सार मिल रहा है तो आपको साहित्य बहुत कुछ देता है। साहित्य का अर्थ होता है सहित, जिसमें हित हो, सबका हित,
1: सबका हित हो,
0: तो साहित्य तो हित ही करेगा, तो साहित्य पढ़ना ही चाहिए।
1: अलका जी मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी, जो युवा हमें सुन रहे हैं, अगर आप कुछ किताबें सजेस्ट करें कि उन्हें क्या पढ़ना चाहिए, कुछ किताबें।
0: देखिए आजकल एक तो सेल्फ हेल्प की बुक्स बहुत आ रही, रॉबिन समथिंग उनका ध्यान एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा, और रोंडा बर्न की भी जैसे द मैजिक, और आप लोगों का भी साहित्य शायद जैसे अभी जीवन पलटने की कला है, तो ये तो एक अलग चीज है। लेकिन उसके अलावा जैसे कि बहुत सी अच्छी कविताएं आती हैं, हाँ नेगेटिव बहुत ज्यादा मत पढ़िए। और उसके अलावा जैसे कि हमारे जो बहुत सारे पहले के साहित्यकार हैं, जैसे मैंने इंग्लिश में भी एमए किया है, तो आप वर्ड्सवर्थ को पढ़ते हैं या शैली को पढ़ते हैं, बहुत बहुत सारी चीजें हैं ऐसे, तो मुझे लगता है कि उनको पढ़ना चाहिए। और आजकल के भी जैसे अब देवदत्त पटनायक जो आपके यहाँ शायद आ भी चुके होंगे, वो तो उन्होंने माइथोलॉजी को ना बहुत ही खूबसूरती से डिपिक्ट किया है. उनके एक हनुमान की रामायण है, पता है आपको? अच्छा, उन्होंने लिखी है, हाँ, कि हनुमान जी ने एक रामायण लिखी. तो वाल्मीकि जी को पता चला कि नारायण ने उनको बोला, नारद मुनि ने कहा कि आप जाइए एक बार हनुमान की रामायण देखिए. तो हनुमान जी की रामायण पता कहाँ लिखी थी? एक गार्डन में, एक बागीचे में, और केले के पत्तों में, इसमें उसमें उसमें. और वो वाल्मीकि जी पढ़ते जा रहे, रोते जा रहे, रोते जा रहे. तो हनुमान जी बोले, क्यों रो रहे हैं आप ऐसे? तो बोले, नहीं, आपने जो लिख दिया मेरी रामायण कौन पढ़ेगा? आपने, हनुमान जी ने क्या किया, उसको सारे को खा लिया, पत्तों को. बोले, क्या किया आपने, इतना सब लिखा? बोले, मेरे राम मेरे अंदर हैं, अब आपको हमेशा सब याद रखेंगे. तो इस तरह की जो आपको एक जगाने वाली अवेयरनेस जहाँ है, वो सारी चीजें. और आजकल तो देखिए, ये डिजिटल जमाना है, आप
1: बिल्कुल
0: AI दे देता है, गूगल को पूछिए,
1: आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारे नॉवेल्स भी, उपन्यास भी.
0: हम बॉम्बे में रहते हैं, मैं सोचती हूँ मैं अपनी लाइब्रेरी बहुत बना लूँ, बड़ी बनी, तो कहाँ रखूंगी मैं सारी चीजें 3BHK के फ्लैट में. अब आप ऑनलाइन करते जाए, किंडल पे पढ़ लीजिए, और उसमें देखिए कि सेल्फ हेल्प बुक्स, मुझे जैसे जिस समय मुझे जो पढ़ने का मन है कि आई एम फीलिंग लो, नहीं मुझे कुछ पढ़ना है, मुझे आध्यात्मिक कुछ पढ़ना है, तो सब कुछ तो आपके क्लिक में अवेलेबल है.
1: बिल्कुल.
0: क्योंकि मैं बोल दूंगी ये पढ़ो तो नहीं, क्या होता है, जो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है,
1: उनको क्या इंटरेस्ट है,
0: उनको क्या पढ़ना है, उनका क्या इंटरेस्ट है. तो जिसमें खुद की रुचि हो, बस आप ये मत पढ़िए कि आप दूसरों का बुरा करने का सोचे. अपने आप को आप कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे इवॉल्व हो सकते
1: ऐसा
0: हैं,
1: कुछ पढ़िए,
0: कैसे बेहतर इंसान बन सकते हैं, जो कल से उससे बेहतर बनना है हमें, और बेहतर करते करते दूसरों को भी साथ में लेके चलना है, ऐसा कुछ पढ़िए.
1: बहुत सुंदर बात है. और चाहे कहानियां पढ़ें, चाहे कविताएं पढ़ें, लेकिन और मुझे लगता है और संवेदनशील भी बनाती है हमें ये.
0: बिल्कुल. मैं एक छोटी सी लघु कथा आपको बता देती
1: हूँ. बिल्कुल, बिल्कुल.
0: अभी हाल ही में जैसे क्या होता है, और ये सचमुच में जब होता है ना, क्योंकि कहानियां हमें जिंदगी से मिलती हैं आरुषि जी, तो आजकल कैंसर बहुत कॉमन हो गया है. तो एक हस्बैंड वाइफ है, और वो जो वाइफ है वो सोच रही कि आज वो अक्षत, और लड़की का नाम है रंगोली, अक्षत आज कहाँ रह गया, अभी तक आया क्यों नहीं, आज उसने मुझे वीट जूस भी बना के नहीं दिया है. वो अपने कमरे में जाती है और तमाम वो सारी देखती, जहाँ उन दोनों की फोटोज हैं, यहाँ गए थे, वहाँ गए थे. अच्छा, वो देखती डेकोर पूरा उसके मन से, तो अक्षत ने कराया पूरा पर्ल कलर का. फिर वो देखती है कि कहीं पर्दे का हवा का झोंका आता है और उसके बाल उड़ते हैं, तो उसको याद आता है कि अक्षत कहता कि रंगोली तुम्हारे बाल कितने सुंदर है ना, एकदम मतलब मुलायम, वो ये रेशमी और ब्राउन कलर के, वैसे सब तो अपने आंखों पे उसके बाल भी छा लेता. तो कहती अक्षत, बाल तुम्हारे भी तो कितने सुंदर, तुम रोमन गॉड जैसे दिखते. और अचानक वो सोचते सोचते दर्पण के सामने चली जाती है और देखती कि उसके सिर पे बाल नहीं है, क्योंकि केमोथेरेपी से बाल चले गए, तो 6 महीने पहले उसको कैंसर डिटेक्ट हुआ था. और इससे तो वो मतलब रोते रोते सो जाती. थोड़ी देर में उसको स्पर्श महसूस होता है, तो देखती अक्षत तुम कहाँ, अक्षत तुम्हारे बाल कहाँ गए? तो वो बोलता है, नहीं वो चलो सॉरी, चलो खाना भी लगा है और तुम्हारा वीट जूस भी बना हुआ है. तो तब वो देखती तो बोलता है कि बस वो मतलब उसको मतलब वो बहुत प्यार से सताता है. तो वो सोचती कि आज जो रंगोली है वो अक्षत के प्यार से सज गई है. मतलब ये कि पति जो है उसके लिए उसने अपने बाल भी, कि जब तक उसकी पत्नी के बाल नहीं आएंगे वो भी बाल ऐसे ही रखेगा. तो ये जो चीजें होती है ना, कि मतलब एक पॉजिटिव संदेश मैं देना चाहती हूँ. आजकल मैं लघु कथाओं, मतलब मैं लघु कथा शोध केंद्र बॉम्बे की अध्यक्ष बनी हूँ हाल ही में, तो हम लघु कथाओं पे बहुत काम कर रहे हैं. और आजकल की लघु कथाएं जो एक संदेश देना चाह रही हूँ, वो बहुत पॉजिटिव संदेश देती हैं, कि अब उसमें नेगेटिविटी नहीं हो, एक पॉजिटिव संदेश के साथ में अपनी लघु कथा को खत्म करिए. तो आजकल हम लोग वो कर रहे हैं.
1: कई बार हम सोशल मीडिया पे भी और अपने आसपास जिंदगी में बहुत चीजें देखते हैं, लेकिन उन्हें भूल जाते हैं. कहते हैं ना आजकल की रात गई बात गई जैसे हो जाता है, एक न्यूज आई दूसरी न्यूज चली गई. लेकिन जब लघु कथा के रूप में हम उन्हें सुन रहे हैं, तो मुझे लगता है वो छाप छूट जाती है, वो चीज फिर वो हमारे अंदर, वो हमारा हिस्सा बन जाती है कहीं ना कहीं. बहुत प्रेरणादायक कहानियां हैं.
0: आपने जैसे बात की, आपको याद है ना बचपन में हम सब ने कहानी सुनी ना, कि एक पिताजी थे, उन्होंने अपने बच्चों को बोला एक लकड़ी का गट्ठर दिया कि तोड़ो, है ना,
1: बिल्कुल.
0: तो वो कोई नहीं तोड़ पाए, जब अलग अलग करके तोड़ा तो तोड़ दिया. तो उन्होंने कहा यही चीज सिखा. तो कथा के माध्यम से वो बात हमेशा आपके जहन में, जैसे आपने कहा बिल्कुल वही बात है, कि हमारे जहन में अंकित हो जाती है, हमारे अंदर अंकित हो जाती है, हमें याद आती है. मैं अपनी बेटी को ना बचपन में और बेटे को भी एक कहानी सुनाती थी. हम लोग मारवाड़ी हैं, हल्दी हल्दी मल्दी सटवा सूट. अच्छा. कि सटवा सूट जो है वो थोड़ी सी बिटर है, दो बहनें हैं, तो हल्दी मल्दी सबका भला करती है, तो जब हल्दी मल्दी अपनी नानी के घर जाती, सबको मिलती, सबका भला करती जाती, तो जब वो लौटती तो उसको बहुत सारे गिफ्ट मिलते। सटवा सूट भी कहती कि मैं जाऊंगी और सबको, तो जो भी बोलता क्यों मैं, क्यों वो तो थी हल्दी मल्दी, मैं हूँ सटवा सूट, मैं नहीं करती तुम्हारा काम। अब वो आती तो उसको कोई कुछ नहीं देता। तो मेरी बेटी आज भी, मम्मा मैं आपकी हल्दी मल्दी हूँ ना। तो ये हमें ना इस तरह के संस्कार कहानियों के माध्यम से हम अपने बच्चों को दे सकते हैं। और बिल्कुल आपने सही बात बोली कि आप भाषण देंगे ना, कोई नहीं सुनेगा, उसको इंटरेस्टिंग वे में बता के कहिए तो आपको लोग जरूर सुनेंगे,
1: जरूर सुनेंगे। तो कहानियां और पढ़िए और सुनिए और सुनाइए, है ना। भारत की तो मतलब मुझे लगता है भारत में तो कहानियां बसती हैं हर कोने में,
0: बिल्कुल
1: हर भाषा में, हर लोकगीत लोक कथा में बहुत कुछ है सच में। तो आपने आज हमें वापस मुझे लगता है जोड़ दिया, जहाँ से हम थोड़ा दूर भी निकल आए थे, तो वापस उन कहानियों की ओर अब बढ़ जाएंगे। अलका जी, क्या कोई और आपकी ऐसी कविता या कोई एक ऐसा हमारे श्रोताओं के लिए अगर आप शेयर करें?
0: बिल्कुल सुना दूंगी आपको। वैसे लता दीदी पर भी एक, जब लता दीदी तो गजल तो मैं गा के तरन्नुम में तो अभी नहीं सुनाऊंगी
1: जी,
0: पर एक है ना, ये आजकल हम पर्यावरण के लिए बहुत परेशान मतलब है, देखिए तो मैं सुना देती हूँ कि क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं सुनाऊंगी कि जहाँ पर कहीं पर नेगेटिविटी हो। एक ये बॉम्बे में आतंकी हमला हुआ था, है ना, तो उससे मैं, अच्छा मैं एक चीज और बताती हूँ कि मैं जब बहुत दुखी होती हूँ ना और गुस्से में होती हूँ, तो मेरे भीतर से कविता निकलती है, सिलसिलेवार जिंदगी कहानी बनती है, और मैं व्यंग भी लिखती हूँ, मेरे जैसे आपने व्यंग संग्रहों के नाम भी लिए, तो विसंगतियां व्यंग बन जाती। तो जब ये आतंकी हमले हो रहे थे लगातार, और हमारे भी बहुत परिचित लोग थे जो उसमें मारे गए थे, तो उस समय मैंने एक सिम्बॉलिक कविता लिखी थी कि मैं उसको कुछ तरन्नुम में भी गा के थोड़ा सा वैसे बता देती हूँ। एक चिड़िया दरख्त पर

बीच हरियाली छाई थी, खिले थे सुंदर फूल, तितलियां रंग बिरंगी उड़ रही थी उड़ रही थी। माँ तोती ने दरख्त पे बनाया एक घरौंदा, सुरक्षित रख कर बच्चे उसमें निकल गई लेने दाना। पर अचानक कहीं से आया एक कठफोड़वा, ये कठफोड़वा वो आतंकवादी है।

बच्चे चीखे डर डर के, तितली के पंख गिरे कट कट के, हरियाली बदली पतझड़ में, फैल गया आतंक, मिट्ठू न जाने कहाँ गुम हो गया। तितलियों ने उड़ना छोड़ा, हो गए फूलों के रंग सभी बदरंग।

0: सच में वो उस इंसिडेंट ने, उस घटना ने हम सबको हिला दिया था, अंदर से झंझोर दिया था.
1: मुंबई का जो आतंकी हमला
0: था वो भूल नहीं सकते. और ये जो आपने कविता ये सिंबलाइज करके उसको जो वो हम भावनाओं को प्रकट किया, ये एक लेखक ही कर सकते हैं कि उस प्रकार से भी उस बात को कहा जाता है, हम सोच नहीं सकते. आपका बहुत बहुत धन्यवाद है अलका जी. मुझे लगता है आपकी इतनी कहानियां, इतनी सारी बातें हैं, अभी संभव नहीं है सब कुछ इन एक घंटे में समेट पाना, लेकिन फिर भी जो आपने जो आज सुनाया है वो हमारे सिर्फ आज तक नहीं, मुझे लगता है आगे तक वो प्रेरणा बन के हमारे साथ रहने वाला है.
1: मैं अगर एक मिनट होगा तो खाली, आदर्श एक हमने फिल्म लिखी थी और आदर्श पे फिल्म के ऊपर हमने नॉवेल लिखी थी.
0: अच्छा.
1: तो उसमें मैंने क्यों इसलिए बोल रही हूँ कि यहाँ पर उसमें एक न्यूक्लियर फैमिली, जो एकल परिवार होते हैं ना, एकल परिवार का बच्चा कैसे अपने आप को, कई बार तो हम बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगती तो वो कुछ ऐसा होता है, तो ये जो है परिवारों को बचाना कैसे जरूरी. तो आदर्श फिल्म जो है उस तरह से वो मैंने लिखी थी और वो बहुत ही खूबसूरत फिल्म है. बल्कि मैं तो चाहूंगी मैं आपको लिंक भेज दूंगी अपनी,
0: जरूर जरूर,
1: तो आप वो देखिएगा. तो मुझे लगता है कि ना हम लेखकों का एक दायित्व ये भी है कि सिर्फ लिखने के लिए ना लिखें, है ना, एक कुछ ना कुछ बदलाव, और जो कृतित्व और व्यक्तित्व है ना लेखक का वो एक हो, ये मैं चाहती हूँ कि आप लिख कुछ रहे हैं कुछ वो मत करिए, जो आप है वो लिखिए, और समाज में बदलाव की चेतना के लिए जरूर लिखें. आप समाज सुधारक नहीं है हम, पर कोशिश करें कि कुछ तो बदले, कुछ तो अच्छा लिखें हम. तो बहुत अच्छा लगा मुझे आज आपके रेडियो मधुबन में, और क्योंकि यहाँ बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स हम लेकर जा रहे हैं और कोशिश करेंगे हम, कि प्रयास हमारा ये रहेगा कि हम आगे भी जुड़े रहें और अपने घरों में भी उसी शांति के प्रकाश को फैला सकें. आपकी मुस्कान बहुत प्यारी है, आपकी मुस्कान के लिए मैं आपको बाद में कविता लिख भेज दूंगी. बहुत बहुत आभार आपका.
0: अलका जी मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला, तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, इतना समय आपने निकाला हमारे लिए.
1: बहुत बहुत आभार, धन्यवाद.
0: तो दोस्तों फिलहाल तो वक्त हो गया इजाजत लेने का, लेकिन मैं यकीनन ये कह सकती हूँ कि आज कुछ आप अपने साथ जरूर लेकर जा रहे होंगे, कुछ ऐसा जो आपको जीवन के सफर में मददगार साबित होगा. फिलहाल वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, मुलाकात होगी अगले एपिसोड में. रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए.

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम यशस्वी भारत में। आज है हमारे साथ उर्मिला श्रीवास्तव जी। आप एक काजरी फोक सिंगर हैं और मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से हैं। आपको 2024 में पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया है फोक सिंगिंग के लिए। तो चलिए बातचीत करते हैं कि मिर्जापुर से आते हुए ये कजरी फोक सिंगर जो उर्मिला श्रीवास्तव जी हैं, उन्होंने फोक सिंगिंग की फील्ड में किस तरीके से अपना योगदान किया है। नमस्ते मैम।
1: नमस्कार।
0: सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी ये जो फोक सिंगिंग की यात्रा है वो कब और कैसे शुरू हुई, और आपकी ये जो कहानी है हम आप ही की जुबानी सुनना चाहते हैं।
1: सबसे पहले तो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये मौका दिया और यहाँ मैं आई हूँ। तो मेरी जर्नी कुछ इस तरह की है, मेरा बचपन, मेरे माँ बाप तो तीन, मेरे भाई, मतलब हम चार भाई बहन थे और अब तो सब बड़े हो गए हैं, लेकिन बहुत कम उम्र में मेरे माँ बाप ने मेरा साथ छोड़ दिया था। मेरे तीनों भाई और हम, मतलब चारों लोग बिल्कुल अनाथ ही हो गए थे। फिर बाबा दादी थे, चाचा चाची थे, उन्होंने पाला पोसा और जो संभव हो सका उन्होंने हमारे लिए किया। मैंने भी अपने जीवन में मेहनत किया, ट्यूशन किया, और जब परिस्थितियां खराब हो गई तो अपने भाइयों के लिए जो भी हो सका मदद किया और हम चारों भाई बहन पढ़ते रहे। हमें बचपन से गाने का बहुत शौक था, किसी का भी गाना सुनते थे तो बहुत अच्छा लगता था। मैं मिर्ज़ापुर की हूँ, मैं वहाँ की बेटी हूँ और बाय द वे मेरी शादी भी मिर्ज़ापुर में हुई। तो मिर्ज़ापुर में लोकगीतों की एक विधा कजरी है, वहाँ के कजरी गायन बहुत प्रसिद्ध है। ये कह सकते हैं कि कजरी का उद्गम, कजरी की शुरुआत मेरे मिर्ज़ापुर में ही हुई है। वैसे तो आसपास के जगह में लोग गाते हैं, बनारस में, जौनपुर, गाजीपुर, आसपास भी लोग गाते हैं, लेकिन अगर कहा जाए, जैसे हम कह सकते हैं कि ब्रज के लोकगीत होली जो है ब्रज में है, तो उसी तरह हम ये कह सकते हैं कि कजरी जो हमारी एक विधा है, लोकगीत की एक विधा है। लोकगीतों के अनेक विधाएं हैं, देवी गीत है, पूर्वी है, चैती है, होली है, कजरी है, खेमटा है, इस तरह से संस्कार गीत है, खेती बाड़ी के गीत, सारे गीत आते हैं लोकगीतों में। लेकिन उसमें जो मिर्ज़ापुर की कजरी है, हमारे चूंकि मिर्ज़ापुर की है तो वो बहुत ही प्रसिद्ध है। और आप यूँ कहिए कि हमारे बचपन में जगह जगह, हर चौराहे पे, हर गलियों में, हर घरों में गाई जाती थी। और मुख्यतः जो नागपंचमी का त्योहार होता था उस दिन से शुरू होता था, या ऐसे कहिए तो सावन और भादों के महीने में, जब कजरारे बादल घूमड़ घूमड़ के चारों तरफ वर्षा होती है और पेड़ पौधे पशु पक्षी सभी उस बारिश के दिनों में मदमस्त हो जाते हैं, तो इंसान क्यों नहीं खुश होगा। तो इंसान खुश होगा तो कुछ न कुछ अंदर से उसके उमंग उठेगी, तो उस उमंग को कैसे व्यक्त करे। तो हमारे जो मिर्ज़ापुर में जो गीत गाई गई, गीत को पहचाना गया, लोगों ने गाया और चिरकाल तक चलता रहा, शुरू से और आज तक चलता रहा और आदि अंत तक चलता रहेगा, तो वो है हमारी बहुत प्यारी सी कजरी, जिस गीत का नाम कजरी है। एक बात और है कि कजरी आप ऐसे कह सकते हैं कि कजरारे बादल से भी लिया गया है, लेकिन एक और इसके सबसे बड़ी विशेषता है, वहाँ विंध्याचल माँ है मेरी, विंध्यवासिनी माँ, उनका नाम कजला देवी है।
0: अच्छा।
1: तो हम ये कह सकते हैं, वैसे किंवदंतियां तो बहुत सारी होती हैं, कहानियां बहुत होती हैं, लेकिन जो हम लोग अपने दिल से मानते हैं वो ये कि मेरी माँ विंध्याचल माँ का एक नाम कजला देवी है, उनके नाम से ये गीत की। ऐसे तो बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन जो मेरे सामने स्वरूप है वो मेरे माँ का है, विंध्याचल माँ का है, तो उनके नाम से गाए जाने वाले गीत को हम कह सकते हैं कजरी। कजला देवी उनका नाम, तो उसे कजरी। आप अगर प्रकृति में आते हैं तो प्रकृति चारों तरफ जब काले बादल घूमड़ घूमड़ के वर्षा करते हैं और सभी पशु पक्षी सभी मदमस्त हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और खेत लहलहाने लगता है और सबको आशा होती है कि इस बार हमारी खेती बहुत ही अच्छी होगी। अब एक पक्ष और भी है कि नागपंचमी के दिन जितनी औरतें हैं

0: जौ बोए जाते थे, जब बोए जाएंगे तो उसको बहुत अच्छे साफ सुथरे जगह, जैसे पूजा की चीज हम लोग रखते हैं उसी तरह वहीं पे रखते हैं, और ये यूं कहिए कि पूजा स्थल पे ही हम रखते हैं। रोजाना उसमें पानी भी डालते हैं और रात भर कजरी गाते हैं, रात भर गाई जाती है। सारी औरतें हमारे घर के काम काज करके बाहर निकलती थी अपने चौराहे पे, गलियों में, मोहल्लों में, और वहाँ पे कजरी गाती थी। तो अपने ये गाने की विधा तो है ही, अब अगर अलग से देखिए तो वो हम प्रार्थना करते कि हमारे खेत खलिहान भी उपजे। तो खेत खलिहान रोज तो हम देख नहीं सकते हैं, तो जो हमने बोया हुआ है जौ, तो उसको हम देखते हैं तो वो धीरे धीरे अंकुर फूटता है, फिर जरई, जरई मतलब उसका घास की तरह निकलेगा तो उसको जरई बोलते हैं, तो वो धीरे धीरे बढ़ेगा। तो इस तरह से वो करीब नाग पंचमी से हमारे यहाँ जागरण का एक दिन होता है, तो उस दिन तक गाया जाता है, और जागरण के दिन उस जरई को मतलब उसको उनको सुला दिया जाता है, उनको जैसे कुछ पुष्प अक्षत और कुछ खाने की चीज दे होके कि मतलब आज का उनका आखिरी दिन रहता है, और सुबह सुबह औरतें जो है जाके उसको नदी में या तालाब में जिसके पास जो भी आसपास रहता है उसमें वो उनमें से सारी जो मिट्टी है वो निकाल देती है, और जो जरई है मतलब जो बालियां ऐसे लंबे लंबे रहते हैं उनको इकट्ठा करती हैं। सबसे पहले वो मंदिर में जाती हैं, मंदिर में चढ़ाती हैं, और मंदिर के बाद अपने से बड़ों को, चाहे वो बाबा हो, चाचा हो, ताऊ हो, जो भी भाई हो, या अगल बगल हमारे मोहल्ले आस पड़ोस के लोग हैं, उनके कानों पे रखते, मतलब कान पे रखने मतलब उनको हम चढ़ा रहे हैं, उनकी हम इज्जत कर रहे हैं, उनको एक तरह से उस आराध्य की तरह मान रहे हैं, क्योंकि भगवान को हमने चढ़ाया और अपने बड़ों को भी हमने वो किया। तो इस तरह से हमारे यहाँ एक कजरी का शुरुआत होता है, और जागरण के दिन माँ के वहाँ भी मेला लगता है, वहाँ पे पूरे रात पूरे देश विदेश के कलाकार वहाँ पे आते हैं और अपने को गाकर अपने को बहुत भाग्यशाली समझते हैं। और मेरे यहाँ मिर्ज़ापुर शहर में भी जगह जगह हम लोग स्टेज बनाते हैं, औरतें तो गाती हैं अपने अपने गांव मोहल्ले जगह जगह जितना मोड़ होता है लगभग। हाँ ये जरूर कहेंगे कि पहले से बहुत बदलाव हो गया है, बहुत कम हो गया है, लेकिन ये समय का बहाव है, हर चीज में फर्क आता है, और हमारे इस कजरी में भी बहुत अंतर आया है। जो गाने हम हर मोहल्ले में चौराहे पर सारे जगह होता था वो थोड़े अब बहुत कम हो गए हैं। गांव में अभी है, और थोड़े जो पुराने लोग हैं, जैसे ऐसे समझ लीजिए कि हम अभी 75 के आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे तक तो अभी है, और लेकिन हमारे से नीचे वालों में हम जब अपनी नजर दौड़ाते हैं तो काफी कम हो गया है। लेकिन ये है जो भी हमारी परंपराएं होती हैं, जो हमारी मिट्टी की सुगंध होती है वो कभी जाने वाली नहीं होती, थोड़े कम हो जाएगी कुछ दिन तक ऐसा रहेगा, लेकिन फिर वो अपने कुछ दूसरे फॉर्म में कुछ दूसरे तरीके से वो गाया बजाया जाने लगेगा।
1: जी मैम, अक्सर करके हम देखते हैं कि जब भी ये फोक सिंगिंग की बात आती है या लोक कला की बात आती है, जैसे आपने कहा कि लोकल कल्चर को प्रमोट करने के लिए वहाँ की संस्कृति, रीति रिवाज और वहाँ के जो पहनावा, ये सभी चीज़ें बहुत ही दर्शाते हैं। तो जब अपने बचपन से ही इस चीज़ को अपने अपना एक कला या अपना जीवन बना दिया है, तो इस कला के माध्यम से जन जागरण के लिए भी आपने कुछ ऐसे कार्य किए हैं?
0: कुछ किया है
1: जी, उसके बारे में आप थोड़े से।
0: बहुत कुछ किया है और अभी मैं सोचते हैं जब तक जिंदगी है मेरी तब तक करते रहेंगे। अभी तो ये कहें कि हमारे भारत सरकार में बहुत सारी कल्चरल विंग है, कल्चर ऑफिस है या संस्थाएं हैं जो इसको काफी प्रमोट कर रही हैं। जैसे हमारा संगीत नाटक अकादमी है, सांस्कृतिक विभाग लखनऊ है, तो ऐसे

0: ये तो हमारे प्रांत की बात है, फिर दिल्ली में भी है, इस तरह से हर शहर हर प्रांत में तो सांस्कृतिक विभाग है, जनजाति विभाग है, और ललित कला एकेडमी है, संगीत नाटक एकेडमी के अलावा संगीत के और भी बहुत सारे विभाग हैं जो इसमें काम कर रहे हैं। तो वो नए नए कलाकारों की खोज कर रहे हैं, इसलिए कि हमारी जो परंपरा है वो टूटने न पाए। तो वो लोग तो कर ही रहे हैं और जगह जगह मंच बना रहे हैं, जैसे कि जुलाई अगस्त सावन भादो के महीने में मिर्जापुर में ये जगह जगह कजरी होती है, बनारस में होती है और जगह होते हैं। अब ये सिलसिला चल ही रहा है 1-2 महीना, तो वो तो कर ही रहे हैं, तो उसमें हम सब की भागीदारी होती है। और जिसमें हम तो सोचते हैं हमारा बहुत ही नैतिक दायित्व है कि हमें इसी चीज में अवार्ड मिला है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी खोज खोज के कहाँ कहाँ से टैलेंट ला रहे
1: जी सही बात
0: हैं।
1: है।
0: और नहीं तो हमें तो लोगों का कहना है, हमें नहीं, लोगों का कहना है हमको 10-20 साल पहले मिल जाना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, जब ही आँख खुले सवेरा है। तो आज हम करीब 74 साल के थे, लास्ट ईयर हमें मिला है, तो हम देख रहे हैं कि इसको प्रमोट करने के लिए कि आदमी में और उत्साह बढ़े, और हमें देख के, हमारे में तो जो उत्साह है, हमको देख के कितने कलाकार ऐसे हैं जिनको कितना उत्साह मिल रहा होगा कि अरे उर्मिला जी को मिला है, अब हम भी ऐसे मेहनत करेंगे, हम भी ऐसे करेंगे। तो मेहनत केवल अपने ऊपर हमने नहीं किया, हम कॉलेज में रहे 40 साल तक, हम रहे कॉलेज में,
1: अच्छा
0: आर कन्या इंटर कॉलेज में म्यूजिक टीचर रहे। तो म्यूजिक में तो आप जानते हैं कि क्लासिकल सिखाया जाता है, लेकिन क्लासिकल के साथ साथ हम फोक भी सिखाते थे, कुछ न कुछ देते थे, बताते थे बच्चों को। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, 15 अगस्त हुआ, 26 जनवरी हुआ, 2 अक्टूबर है, तो आज इस चीज का कंपटीशन है, तो उसमें हम लोग फोक ही करवाते थे, क्लासिकल कम ही करवाते थे। तो मैं शुरू से ही फोक में जुड़ी रही, मेरे बचपन का जो शौक था वो धीरे धीरे बढ़ के रेडियो तक आए। जब मैं इंटर में थी उस समय रेडियो में 68 में थी, और तो रेडियो में दिया, तो रेडियो से हम करने लगे, फिर टीवी में आए, फिर बहुत सारे कैसेट है, रिकॉर्ड है, ये सब बने। अच्छा क्या होता है कि आदमी अच्छा गाता है तो उसकी खुशबू अपने आप फैलती है, दूसरे शहर में गए, फिर दूसरे शहर में गए, दूसरे प्रांत में गए, फिर उसके बाद विदेशों में भी गए। तो ये तो मेरा पक्ष रहा कि हमें मौका मिलता रहा और हम आगे बढ़ते रहे, कभी जो जैसे पानी का बहाव होता है कभी रुकता नहीं है, तो ईश्वर की दया थी और माँ विंध्यवासिनी जी की कृपा थी कि मैं आगे बढ़ते ही, कभी मुड़ के हमने पीछे नहीं देखा। पर हमने अपने लिए किया, लेकिन साथ ही साथ हम लोगों को भी लेके चले, जैसे हमारे बच्चे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको लेके चले। इसके बाद हमने बहुत सारी कार्यशालाएं की और करते हैं और करते रहेंगे। तो कार्यशाला में कभी 50 बच्चे, कभी 60 बच्चे, कभी 100 बच्चे, कभी 200 भी। तो इस तरह से क्या है, उन कार्यशालाओं को करके जो हमारी थोड़ी सी परंपराएं हैं, थोड़ी सी गाने की कम हुआ है, उसको हम लोग जागृत कर रहे हैं कि जो हमारे नए पीढ़ी के बच्चे हैं उनमें ये शौक आए और हमारी जो परंपरा है वो बनी रहे।
1: जी
0: तो हम कार्यशालाओं के माध्यम से और कार्यक्रम करके या करवा के इस तरह के माध्यम से, और जगह जगह छोटे छोटे बच्चों को कंपटीशन करके उनको मिले कि हम फर्स्ट सेकेंड आएंगे, तो ये एक चाव रहता है, उसी बहाने बच्चों को सीखने को मिलता है। तो इस
1: तो
0: तरह
1: मैम,
0: से
1: जब आप कॉलेज में पढ़ा रहे थे फोक संगीत, ज़्यादातर बच्चों को ये रहता है कि क्लासिकल संगीत सीखने का और स्टेज परफॉर्मेंसेस करने का, एक पॉपुलर सिंगर बनने का। तो बॉलीवुड में भी फोक सिंगर, प्लेबैक सिंगर बहुत कम बनते हैं। तो म्यूजिशियंस जो बनना चाहते हैं युवा पीढ़ी, तो उस तरफ ज़्यादा रुझान रहता है क्योंकि उसमें कमर्शियल वैल्यू भी है। तो जब आप एक फोक सिंगर के रूप में उनको आप ये चीज़ें सिखा रहे थे, तो तो कितना आप बच्चों के अंदर इंटरेस्ट देख रहे थे और वो जन जागरण के लिए उनको फोक सिंगिंग को लेकर के कैसे आप उनको प्रमोट कर पाते थे?
0: उनको जब हम सिखाएंगे उनको पहले तो उसका देखे उसका अर्थ बताएंगे। बच्चों के क्या छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, छोटे हैं या बड़े हैं। अभी आपको हम एक गाना ऐसे सुना दें तो आपके समझ में आ भी सकता है, थोड़ा नहीं भी आ सकता।
1: जी जी जी।
0: हम आपको
1: जरूर गुनगुनाइए। हाँ, कुछ
0: तो आपको उसका अर्थ भी बताएंगे है ना, कि इसका क्या अर्थ है। जहाँ तक गुनगुनाने की बात है कोई बात नहीं है, तो हम आपको दो लाइन देवी की सुना रहे हैं
1: जी।
0: और देखा और आपको ये बताना चाहेंगे कि उसमें देखिए शब्द जो है कितने माने रखते हैं और शब्द का जो अर्थ है और फिर हमारा जो एक्सप्रेशन है जो मेरे हृदय से निकलता है। तो एक देवी गीत है, माँ की वंदना है।

0: सीधे सीधे शब्द है, लेकिन आप देखिए इसके एक एक शब्द को समझाएं। मैया झूले, माँ झूल रही है किस पे, चंदन के पालने पे।
1: अच्छा।
0: मैया झूले चनन झूलनवा, और पवनवा, पवन यानी
1: हवा,
0: हवा पवनवा चवर डोलावे ना। तो ऐसा लगता है कि माँ तो चंदन के पालने में झूल रही है और जो हवा है वो पंखा झल रहे हैं, माँ को हा कर रहे हैं। तो कितना कितना सुंदर भाव है। आगे की लाइन है, अमृत से पग धोवे बदरिया। ये पानी नहीं है, ये जो जल परसता है ये अमृत है, एक एक बूंद में अमृत है। कहते हैं कि पानी बचा के रखो। अमृत से पग, तो माँ का जो पैर है वो किससे धोया जा रहा है, अमृत रूपी जल से। जो जल है वो अमृत है। अमृत से पग धोवे बदरिया, बादल जो है अमृत से माँ का पैर पखा रही है, रिन धो रही है। रही रही आरती उतारे बिजुरिया। देखिए क्या एक भी चीज आपका लग नहीं रहा है, सब प्रकृति कर रही है। जो बिजली है वो क्या कह रही, रही कि आरती उतारे हैं। रही रही आरती उतारे बिजुरिया, और अक्षत रोरी चढ़ाई फुलवरिया। जो हमारे बगीचे हैं तो ऐसा लगता है लाल हरा नीला पीला हर तरह के, तो ऐसा लगता है कि फूल माँ को नहीं चढ़ा, अक्षत चढ़ाया जा रहा है। तो आप देखिए
1: सुंदर,
0: कितना सुंदर कल्पना है
1: जी।
0: अक्षत रोरी चढ़ाई फुलवरिया, और गंध यानी

मनवा। और जो अक्षत रोरी फूल हम चढ़ा रहे हैं तो आप देखिए फूलों में कितनी खुशबू है, गुलाब का अलग खुशबू है, चमेली का अलग है, तो ऐसे से सारे फूलों अक्ष

0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो मैम, आपने जब ये इतना सुंदर गीत सीखा है, तो वो सबसे पहली प्रेरणा या सबसे पहला इंस्पिरेशन क्या था? कौन सा आपने पहला गीत सीखा था?
1: बहुत सही सवाल। हमसे बहुत लोग, कितने ही लोग पूछते हैं, आपके कौन गुरु हैं? बिना गुरु के तो ज्ञान मिलता नहीं है। लेकिन ताजुब, मेरे गुरु कौन है? मेरी मिर्जापुर की धरती माँ।
0: ओह, वंडरफुल।
1: क्यों? कि हर जगह कचरी गाई जाती थी। तो एक गुरु थोड़े थे, अनेकों गुरु। मतलब एक झुंड में थे, मतलब वहाँ जाते थे अलग सुनाई पड़ता था, वहाँ जाते थे अलग सुनाई पड़ता था। तो मेरे लिए तो कितने गुरु रहे। तो ये हम बड़े फख्र के साथ कहेंगे कि हम सबको गुरु मानते हैं, बिना गुरु के तो कोई बन नहीं सकता है। लेकिन मेरे मिर्जापुर की धरती माँ, मेरी विंध्यवासिनी नगरी की धरती माँ ही मेरे गुरु हैं। फोक में जो फोक है, उसका हम पूरे अपने मिर्जापुर की धरती को, अपने माँ विंध्यवासिनी को ही गुरु कहते हैं। हाँ, ये अलग बात है जो क्लासिकल है, जब तक सिखाया नहीं जाएगा
0: जी,
1: है देखिए, डलिया है, बिनते बिनते देखते देखते बिन लेगा, खाना देखते देखते बना लेगा। लेकिन क्लासिकल का एक होता है, जिसे दो और दो दुनी चार होता है, तो जब तक कोई नहीं बताएगा तो नहीं समझ में आएगा। तो इस तरह से क्लासिकल में कोई सारे गामा पाध निशा स्वर है, तो उसको कैसे गाया जाता है, कैसे संजोया जाता है, किस तरह से लिखा जाता है, तो ये तो क्लासिकल का जो हमारा गुरु है वही बता सकता है। तो क्लासिकल का तो मेरी कई गुरु रही, नलिनी कालेकल कर बहन जी थी, फिर उसके बाद अमिता दत्त बहन जी थी, और कमला, प्रोफेसर कमला श्रीवास्तव जी थी, और गुप्ता जी वकील रहे पेशे से, लेकिन बहुत अच्छे संगीतकार थे उन्होंने। तो हमारे अनेकों गुरु थे, और जिससे हमें जो भी मिला, बल्कि आप भी कुछ कह देंगे तो हम आपको भी एक छड़ के लिए मेरे गुरु हैं। कोई बच्चा भी कोई अच्छी बात बता देता है, वो भी गुरु होता है। तो आप जिससे भी कुछ भी सीखते हैं,
0: सीखना चाहते हैं, वो आपके गुरु बन जाते हैं। कितनी बड़ी बात है कि कदम कदम पर, हर जगह पे, हर जगह से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं हर किसी से। लेकिन जिस दिन हम ये भूल जाते हैं कि जीवन का मैं एक विद्यार्थी हूँ, उस दिन हमारा सीख खत्म हो जाता है। तो यही, इसी के लिए शायद आपको इतने बड़े पुरस्कार मिले हैं, जो आप उम्र के इस पड़ाव में भी आप ये सोचते हैं कि मैं अभी भी सीख रहा हूँ। तो मैम, जैसे आपने कजरी की बात कही, और आपकी जीवन की संगीत की जो शुरुआत है वो फोक सिंगिंग से हुई है, विंध्याचल की माँ धरती के मिर्जापुर से। उसके बाद आपने क्लासिकल में क्या क्या सीखा है?
1: क्लासिकल में हम, उसमें एक निश्चित चीजें होती हैं, जैसे अगर हाई स्कूल में है तो 10 राग है, जैसे यमन है तो भैरवी है, भैरव है, और भूपाली है, तो इस तरह से बहुत से राग होते हैं। तो इंटर में आए तो थोड़ा उसका जो दायरा है बढ़ गया, उन रागों को छोड़ के 12 और राग, उसमें थोड़ा सा और थोड़ी भारी चीजें, जैसे कि हाई स्कूल में सिंपल हम लोग सीखते थे, तो उसमें जैसे विलंबित ख्याल होता है, द्रुत ख्याल होता है, तो वो सीखा। ताने हैं, बोल ताल है, आलाप है, तराना है, ध्रुपद है, धमार है। तो जैसे जैसे आपकी शिक्षा आगे बढ़ती जाती है, आपकी चीजें बढ़ती जाएंगी। इसमें तो सारी चीजें हमने सीखी, और एक दूसरे के पूरक है। ऐसा नहीं कि क्लासिकल जो सीखता है वो फोक नहीं गा सकता है, या फोक का गायक है तो वो कभी क्लासिकल का मौका मिले तो वो नहीं गा सकता है। एक दूसरे का पूरक रहता है, जो क्लासिकल सीखा रहता है उसको और सहारा मिलता है, कि मेड़ खटका मुर्के सब गले से निकलता है, तो वो सारी चीजें उसमें जुड़ जाती हैं और हमारे गाने में और निखार आता है। हालांकि जो फोक है वो फोक के ही ढंग से गाना चाहिए, उसमें क्लासिकल मिक्स नहीं करना चाहिए। कहीं पे एक आग चीजें छोटी सी लेके हम छोड़ दें, क्योंकि फिर उसकी ओरिजिनलिटी खत्म हो जाएगी। इसके लिए बना हुआ है सेमी क्लासिकल जो आप देखिए बनारस के लोग गाते हैं, मेरी कजरी गाएंगे, मिर्जापुर की कजरी गाएंगे, लेकिन वो ठुमरी अंग से गाएंगे।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो हम लोग सीधे सीधे गाते हैं, जैसे उदाहरण के रूप में

0: मन के, कहने का मतलब है ठहराव के साथ, उसमें कुछ आलाप, कुछ बोल आलाप, कुछ उसमें चीजें क्लासिकल की डाल के जब हम गाते हैं तो वो ठहराव के साथ, ठहर ठहर के, सुंदर समझा के, उसमें क्लासिकल अंग पुट डाल के जो गाते हैं वो ठुमरी अंग से हो जाता है। तो दोनों में केवल यही फर्क है, हम गाएंगे सीधे सीधे, जैसे कि हमारी गांव देहात की औरतें हमेशा गाती हैं, उनको किसी चीज से मतलब नहीं है, जो शुरू से गाया जा रहा है पारंपरिक ढंग से बस उसी तरह गाती हैं। तो ठुमरी अंग से गाते हैं, जो अभी आपने देखा होगा, अभी अभी हमारे छन्नू महाराज जी की डेथ हुई है, तो वो बहुत अच्छे क्लासिकल की, हमारी गिरजा देवी महान विदुषी कलाकार थी, वो इस सब अंग से, और बहुत सारे जितने भी क्लासिकल के कलाकार हैं वो इसी अंग से गाते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं उसी को ठुमरी अंग से कहिए या बनारसी कजरी कहिए। तो इस तरह से हम लोग सीधे सीधे गाएंगे, जो पारंपरिक तौर तरीका है, पारंपरिक सीधे साधे, और बनारस के लोग जो क्लासिकल के लोग हैं उसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मेहनत को डाल के उसको सुंदर से सुंदर बनाते हैं।
1: जी मैम, जैसे आपने इतने लंबे सफ़र है बचपन से लेकर के आज 74 इयर्स तक आप गा रहे हैं, तो अभी तक आपने कितने गीत गाए होंगे, या कुछ ऐसा आंकड़ा है, कहीं पे आपने स्टेज परफॉर्मेंसेस भी किए होंगे दूरदर्शन में?
0: 2-4 हज़ार तो गाए ही होंगे।
1: ओह माय गॉड।
0: किसी जगह किसी स्टेज पे कभी कभी 2 ही गाना, कभी 1 ही गाना गाने का मौका मिलता है
1: जी,
0: कभी 5-10 गाना गाने का मौका मिलता है
1: जी।
0: कभी कभी हम जो प्राइवेट जो ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो केवल सुनने के ही उद्देश्य से, केवल मुझे ही सुनना है, तो 40-50 गाने से कम नहीं गाते।
1: ओह माय गॉड, वंडरफुल। मतलब आप 2-3 घंटा नॉनस्टॉप गा लेते हैं?
0: 5-6 घंटा गा सकते हैं, आज भी गा सकते हैं।
1: वेरी नाइस।
0: जरूर उम्र हो गई है
1: जी,
0: 75+ चल रहे हैं, लेकिन हम तो सोचते हैं कि लोगों मेहनत करना छोड़ दिया है ना। हम ये नहीं कहते कि बहुत लोग मेहनत नहीं करते हैं, पर हम लोग जो है, अपने को नहीं कह रहे, हम लोग, कुछ लोग जो बहुत पुराने हैं वो बहुत मेहनत करते थे, और तब हम लोग 5-10 साल तक कोई हम लोग को जाना ही नहीं कि ये उर्मिला श्रीवास्तव कौन है, मतलब हम लोग गाते रहे, कुछ लोग जाने नहीं जाने। आज के कलाकार, आज के लोग हैं, 4-6 गाना अगर सीख लिए तो तुरंत अपने को कलाकार समझते हैं, लेकिन हम लोग 10-20 साल तक अपने को कलाकार नहीं समझे, आज भी नहीं समझते हैं, कलाकार नहीं है, हम तो उनकी पूजा करते हैं भाई, हमारा जो हमारा कला की पूजा करते हैं, लोग कहते हैं कलाकार है तो भाई चलिए ठीक है। तो पहले और अब में केवल इस बात का जरूर है कि आज हम सबको नहीं कहते हैं, कुछ लोग हैं जो मेहनत नहीं करते हैं, तो आप सोचिए अभी भी हम करीब 8-10 हज़ार गानों का कलेक्शन मेरे पास है।
1: My God.
0: हाँ, मतलब आपके भी गाने, उनके गाने, उनके गाने, मतलब शौक था हमें
1: उनका, कभी इन सभी चीजों का संकलन करके कोई किताब या ऐसा कुछ करने की, लाइब्रेरी बनाने की कोशिश?
0: नहीं, सोचा, और काफी लोगों ने भी कहा, सोचा भी, और लेकिन काफी समय निकल गया, कुछ हमारे कार्यक्रम इतना बिजी हो गया, इतना थक जाते थे, कॉलेज था, अभी तो 2012 में रिटायर हुए, कॉलेज है, घर है, फिर उसके प्रोग्राम है, और अपने देश में, विदेश में, सारे जगह जाना, और एक एक महीने के लिए 15-15 दिन के लिए जाना, तो ये थोड़ा बहुत हैट्रिक रहा, बहुत थका देने वाला, तो हम उसमें सोच के नहीं कर पाए, लेकिन हमको बहुत जल्दी करना है, क्योंकि कब जीवन लीला समाप्त हो जाए पता नहीं है, क्योंकि अब तो हम बिल्कुल अंतिम पड़ाव पे चल रहे हैं, तो हमें बहुत जल्दी, हमें थियोरेटिकल काम जो है, और सोच रहे हैं, लेकिन आप बताएं, जब जब सोचते हैं कोई ना कोई ऐसा काम पड़ जाता है, कभी बाहर का कार्यक्रम आ गया, कहीं हमें कार्यशाला लेनी है, तो थोड़ा सा बीच में वो हो जाता है, पर करना है हमको, जाने के पहले हमें चीजें सुरक्षित जो मेरे पास है वो लोगों को दे के बांट के जाना है, और कुछ तो संस्थाओं को हमारे सांस्कृतिक विभाग है, कई बार हमारे डायरेक्टर हैं अतुल द्विवेदी जी हैं, कई बार कहते हैं कि उर्मिला जी हमको कम से कम 100-100 गाने का ही दे दीजिए, मैं आपका किताब छपा दूँ। बस इतना मौका नहीं मिला, लेकिन ये एक बात नहीं है, मौका मिले ना मिले मौका निकालना पड़ता है हर काम के लिए, और मैं निकालूंगी, और जो भी मेरे पास कलेक्शन है, और नहीं 10,000 तो 1,000-2,000 उसमें से छाट के जो बहुत अच्छे हैं लोगों के कलेक्शन हैं वो उसको मैं अपने द्वारा जो है निकालूंगी।
1: बहुत सुंदर मैम, हम भी इंतजार करेंगे आपके उस कलेक्शन को देखने का, क्योंकि यही है कि भारत की विरासत और परंपरा जो आप आने वाली पीढ़ियों को देने वाले हैं। किसी भी कला या संस्कृति अगर जीवित है, वो पारंपरिक रीति से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जब जाती है वो जीवित रहती है, और उसमें भी नवीनताएं आती हैं और वो आगे बढ़ती रहती हैं, और एक पेरिनियल रिवर की तरह वो बहती रहती हैं। तो आपने अभी तक कितनी पीढ़ियों को सिखाए होंगे?
0: चौथी पीढ़ी तो जरूर चल रही है। एक बार बॉम्बे में कार्यक्रम देने गए थे
1: जी,
0: तो नाम बता दे, हीरालाल भैया बहुत अच्छा लोक गीत गाते थे, तो उनका हालांकि बिरहा, उनका कई टाइप होते हैं ना, तो बिरहा था, तो उनके साथ तो हमने गाया, उनके लड़के के साथ गाया, और उनका उनके लड़के का लड़का यानी पोता, तो जब मैं एक बार कार्यक्रम कर रही थी वहाँ पे बॉम्बे में, तो एक लड़का मेरे साथ गाया, मतलब मेरे मंच पे साझा किया कि हमने गाया, फिर उसका भी कार्यक्रम रहा, और आके पैर वैर छुआ कि बुआ प्रणाम, तो हमने कहा कि खुश रहो भाई, भाई बुआ दीदी जो भी कहता है, तो बोले आपने हमको पहचाना नहीं, हम जो हीरा लाल जी के हैं उनके बेटे के बेटे यानी पोते हैं, हैं? और अपने बेटे को खड़ा किया जो 10 साल का था, और नेक्स्ट टाइम आप आएंगी अगले साल या 1-2 साल बाद, तो मैं इसको आपके साथ गवाऊंगा। तो हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारी 3 पीढ़ी तो सामने रही, और चौथी
1: पीढ़ी भी आपके साथ गाने वाली
0: आ सकती है। तो
1: बहुत सुंदर,
0: हमें हमारे बहुत गर्व फील होता है कि हमने 1, 2, 3 और चौथी पीढ़ी भी आ रही है, और जैसे छोटे बच्चे गा रहे हैं तो मेरे साथ गा ही रहे हैं, तो कहने का मतलब कि बच्चों के साथ बच्चे बनके बड़े बन के साथ बड़े बनके जैसे भी होता है उनको भी लेते हैं, उनको ये महसूस नहीं होता है कि हम क्लास भी लेते हैं तो ये हमसे बहुत बड़ी हैं, हम उनको मिल के उनको समझा के, जैसे अभी हमने आपको बताया जब हम बताते हैं बहुत
1: एक सरलता के साथ,
0: बच्चे भागते हैं
1: जी,
0: अरे क्या लोकगीत है, एक दिन के बाद बच्चों के चेहरे पे खुशी झलकती है
1: जी,
0: कि हमारा इंतजार करते हैं, तो इंतजार मेरा नहीं करते हैं, वो जो कला हमारी है जो जिस विधा को हम लेके चले हैं उसका इंतजार करते हैं, मैम आएंगी तो हमें सिखाएंगे, और पहले दिन तो उनका लगता है कि मेरे ऊपर किसी ने बोझ डाल दिया है। तो आप जितना सरल ढंग से, जितने सरस ढंग से आप किसी को बताएंगे, आप सीधे मत लाद दीजिए, आप थोड़ा सा करिए, बच्चों के अंदर से निकलवाइए, हम तो बच्चों के अंदर से भी निकलवाते हैं, भाई अगले दिन तुम्हारा एक लोकगीत हम सुनेंगे, तो कहाँ से, अब उनके पास तो लोकगीत तो है नहीं, वो क्या करेंगे, हमने कहा तुम अपने दादी से, नानी से, माँ से, जो तुम्हारे काम करती है, बर्तन मांजती है, उनको अम्मा कहो, दादी कहो, जो भी कहो, आप एक लोकगीत लिख के लाएंगे, अब आप सोचिए कि कितने लोकगीत हमारे सामने आ जाते हैं, अगर 50 बच्चे मेरे क्लास है तो 50 लोकगीत, और वो जाके घर में बहुत खुशी खुशी अपनी माँ को, अपने जो भी है उनको बताते हैं कि अरे हमारी मैम ने ऐसे सिखाया, हमारे ये देखिए सिखाया, और उन्होंने ये मांगा है, हमें एक लोकगीत चाहिए, तो कहीं न कहीं से किसी रूप में हमें उनके अंदर जगाना है। जब वो जग जाएगा ना, आप देख रहे हैं कि गाना बज रहा है, बच्चे नहीं सुन रहे हैं
1: जी,
0: थोड़ा सा उनको अगर उसका अर्थ मालूम होगा तो गाना ध्यान से सुनेंगे।
1: सही बात है।
0: और फोक में कितनी ताकत है, बॉलीवुड की बात कर रही थी आपने, बॉलीवुड में जो भी फोक लिया गया है वो
1: सुपर हिट
0: हुआ है।
1: वो एकदम लोगों की हाँ, दिल को छू जाती है और उमंग उत्साह को हाँ, बढ़ा देती है। सही बात कहा आपने।
0: मेरी कचरी का उन्होंने लिया है

0: ये लिया है, बहुत सारे हैं। आपने वो देखा होगा एक बन्नी बना, माई हमारे में तो ये भी है, बन्नी बना, पूर्वी, चैती, होली, सारे रंग हैं। तो बनो तेरी अखियां सुरमे दाने, बनो तेरी अखियां, तो कहाँ से लिया गया है? मेरे फोक से लिया गया है
1: जी।
0: तो जो भी गाना उन्होंने लिया है, नजर लागे राजा तोरे बंगले पे, नजर लागे राजा, कहाँ से लिया है? फोक से लिया गया है। जो मैं होती राजा कारी बदरिया, जो मैं होती राजा कारी बदरिया, अब बरस रहती राजा तोरे बंगले पे, कहाँ से लिया गया? फोक से लिया गया। तो आपको कौन सा, कितने गाने बताए, सैकड़ों गाने, अब तो इस समय
1: समय की सीमा है। हाँ। और
0: तो जो भी लिया है तो समझ लीजिए लोकगीतों का कोई जवाब नहीं है
1: जी।
0: हमारी मिट्टी की सुगंध है, मेरी माटी की खुशबू है, मेरे जो दादा परदादा, दादी पर नानी, सबने जो दिया है वो थाती है, हमारी अनमोल धरोहर है, मेरी अनमोल रतन है कह लीजिए। तो फोक के लिए तो भाई मेरे दिल में क्या क्या होता है क्या बताएं
1: जी। मैम अब ये बताइए कि वो वक्त जब आपको फोन आया कि आपको पद्मश्री दिया जाएगा और आप प्रेसिडेंट हाउस पहुंचे हैं और आपको पद्मश्री अवार्ड मिला है, उस पल के बारे में बताइए कि कैसा ये चयन हुआ और वो जर्नी कैसी रही आपकी, वो प्राउड मोमेंट के बारे में।
0: बहुत ही रोमांचकारी, देखिए मेरे आपसे बात करें मेरा मन भर गया है, पता नहीं हम आगे बोल पाए कि नहीं बोल पाए। आप सोचिए कि दो चार दिन पहले तो हमारे मंत्रालय से फोन आया था कि आपका सिलेक्शन इसमें हुआ है, लेकिन हमें विश्वास नहीं हुआ कि उसको चुरा के रखे, चुरा के मतलब कि हमने किसी को बताया ही नहीं। तो खबर तो थोड़ा थोड़ा थी कि जब ये 22 अप्रैल का दिन था, 22 अप्रैल 2024 को हम लोग को बुलाया गया, जितने भी अवार्डी थे, दो बार में हुआ है, आधे लोग एक बार में, आधे लोग का बाद में हुआ है। तो जिस समय सुना हमें जाना है और इसके पहले जिस दिन अनाउंस हुआ है, आपको हम क्या कहें कि वो पल मेरे आंखों के सामने जैसे कि चलचित्र की तरह घूम गया है कि इतनी खुशी, इतनी खुशी। रात को करीब 11:30 बजे अनाउंस हुआ है और मेरे सारे परिवार वालों का फोन, सबकी बधाइयाँ ये, और रात को ये पत्रकारों का फोन आने लगा और उनका, पूरी रात हम जगे, शायद एक आग झपकी हमने लिया होगा तो लिया होगा। और सुबह सबसे पहले हम माँ विंध्याचल माँ के दरबार में गए, उनके चरणों को छुआ, माँ आपने बहुत बड़ी उपलब्धि दी है, बहुत बड़ी चीज दी है, भारत का 4 सबसे बड़ा सर्वोच्च पुरस्कारों में से हमें एक दिया है, इससे बड़ा हमें क्या मिल सकता है, और मेरा जीवन तो आज धन्य हो गया। और उस दिन मेरे घर, जब मैं घर आई तो कम से कम सैकड़ों लोगों की भीड़ और 30-40 पत्रकार, मीडिया वाले सब, टीवी वाले सारे लोग आए थे। एक सुबह थे, शाम 8-10 बजे रात तक समझिए देती रही। तो ये तो पल था। और उसके बाद जब वो धीरे धीरे वो समय आई, तो हफ्तों ये सिलसिला चलता रहा। मेरे यहाँ जो भी हमारे यहाँ के मंत्री थे, विधायक थे, वो लोग मेरे घर आए, सबने सम्मान किया, शॉल से, बुके से, माला से, जिसको जो भी बन पड़ता था, सबने बहुत बहुत सम्मान किया मेरा। और आखिर वो दिन आया जो हम राष्ट्रपति के यहाँ चलने के लिए तैयार हुए कि हमारे देश की कितना, मेरे एक एक रोया समझ लीजिए कि वो रहा, द्रवित हो गया खुश से। तो मैं दिल्ली पहुंची, बनारस से मेरी फ्लाइट थी, बनारस जाके वहाँ दिल्ली पहुंची और द अशोका में हम लोग वहाँ पे उतरे। और उनके यहाँ एक दिन पहले आपने देखा होगा बहुत सारे इंटरव्यूज एक दिन पहले लिया गया, जिस दिन अवार्ड देना था उनके एक दिन पहले काफ़ी लोगों ने कवरेज किया वहाँ भी। और 22 अप्रैल का वो सुनहरा, मेरे लिए सुनहरा दिन था जबकि उनके यहाँ जाना था और हम लोग समय पे गए वहाँ जाना। राष्ट्रपति भवन में तो बाद में गए, जब राष्ट्रपति भवन की सीढ़ी पे चढ़ने लगे तो वहीं से ऐसा लगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ के राजा महाराजा जैसे पहले होते थे, तो वो तो हमारे लिए राजा ही तो हैं। तो वो क्षण का वर्णन नहीं कर सकते हैं कि इतना सुंदर लगा, इतना मन में उमंग, उत्साह, खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मेरे दो बेटे, दो लोग को अलाउ किया गया था, तो बड़ा बेटा विवेक और छोटा बेटा विशाल, ये दोनों मेरे साथ थे और हम लोग साथ में गए। अपना एक निश्चित सीट था जहाँ हम लोग पहले से पता था, वहाँ हम लोग बैठे और वो राष्ट्रपति जी आई तो ऐसा जैसे बिगुल बजता है, जैसे पहले के राजा महाराजा आते थे तो वैसे ही हमारी रानी, कहिए राजा कहिए, उस तरह से उनका पदार्पण हुआ। और एक एक शरीर का रोया रोया जैसे कि रोमांचित हो गया, तो बिना मिले हमें इतनी खुशी हुई, उनको देख के इतनी खुशी हुई कि आज देखिए हमारी राष्ट्रपति महोदया कहाँ थी और क्या उनके अंदर कितनी बड़ी टैलेंट थी कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहाँ से
1: एक रत्न को चुन करके निकाल के सिंहासन पे आए हैं
0: और इतने बड़े पद पे, इतने बड़े सिंहासन पे बैठी। तो पहले तो हम प्रणाम करते हैं उस देवी को कि उनकी तो जर्नी आप लोग को मालूम है, हम क्या बताएं कि कितने कठिनाइयों से गुजरते हुए उनकी
1: जी
0: जिंदगी बीती। और वो पल था जबकि बारी बारी से बुलाया गया और जब मेरा नंबर आया तो हम भी अपने जगह से जब गए तो आपको पता ही है सब आगे सारे मिनिस्टर्स लोग बैठे थे, हमारे मोदी जी बैठे थे, अमित शाह जी बैठे थे, जयशंकर जी जो विदेश मंत्री वो, और सारे मंत्री लोग बैठे थे, बहुत को तो हम पहचानते भी नहीं हैं, सभी लोग बैठे थे। और हाँ, उस समय का एक हम आपको वाकया बताते हैं।
1: हाँ जी, हाँ जी, जरूर।
0: हमने अभी उनके जन्मदिन पर ये बात शेयर की थी, हमने फेसबुक पे साझा किया था कि जब हमने ऐसे नमस्ते, भाई सबको सबने नमस्ते किया, हमने नमस्ते किया और हाथ भी नमस्ते करने के बाद हाथ तो जनरली नीचे ही चला आता था, ना मेरा हाथ नीचे आया, मेरा क्या और सारे मंत्रियों का आ गया नीचे। और आपको एक बहुत सुंदर सी बात बताएं, मेरे मोदी जी का हाथ, वो हाथ जुड़ा का जुड़ा रहा, इस तरह से उन्होंने हाथ जोड़ा था, जो उन्होंने नमस्ते के लिए जो जुड़ा हुआ था हाथ, वो इतने आदर भाव से उनका हाथ जुड़ा ही रहा। मैं उनके पास से पूरे पास से ऐसे गुजरती चली गई, सबके हाथ नीचे, मेरे भी हाथ नीचे चले आए लेकिन मोदी जी का हाथ नीचे नहीं आया। मैं आपको भी तस्वीर दिखाऊंगी। और उसके बाद से उनके तरफ से पीठ होते हुए तब हम राष्ट्रपति के तरफ बढ़े हैं तो उनका हाथ नीचे आया होगा, हमने नहीं देखा। तो वो क्षण हम तो भूल नहीं सकते हैं कि राष्ट्रपति जी के पास पहुंचने के पहले जो हमें ये बहुत सुंदर सा एक ऐसा दृश्य देखने को मिला, मेरा मन बिल्कुल रोमांच से भर गया। फिर मैं आगे बढ़ी और अपने महामहिम राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी के पास मैं खड़ी रही। मैं तो एक पल तो विश्वास नहीं हुआ कि मैं सही में खड़ी हूँ लेकिन विश्वास तो करना ही पड़ा कि मेरे सामने वो थी। मैंने नमस्कार किया, उन्होंने किया, बधाई दिया, कुछ और भी शब्द बोले लेकिन वो शब्द मेरे कान में सुनाई नहीं पड़ा, खुशी के मारे, खुशी और रोमांच के मारे उन्होंने कुछ और कहा जरूर लेकिन हमने सुना नहीं। फिर उन्होंने सबसे पहले एक, आपने देखा हुआ पद्म का एक बहुत बड़ा सा जो है
1: मेडल,
0: हाँ मेडल उन्होंने पहनाया, और उसके बाद
1: जो प्रशस्ति पत्र,
0: हाँ प्रशस्ति पत्र, वो जो बहुत लोग पूछते हैं कि उस गोले में गोले क्या में है, तो हम आपको बता दें, और लोग भी सुन रहे हैं, आपको जी, तो मालूम है, लेकिन बहुत लोग को जिज्ञासा होती है कि ये जो गोला है उसमें क्या, तो उसमें वो जो प्रशस्ति पत्र रहता है, उसको जैसे बच्चों को प्रमाण पत्र दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है, इस तरह से एक प्रमाण पत्र पद्मश्री का उसमें रोल करके उसी में रखा रहता है। ये प्रश्न बहुत लोगों ने हमसे पूछा था, तो हमने सोचा कि आज आपसे भी साझा करें। तो वो उसमें रखा जाता है
1: जी।
0: और आपको एक और छोटी सी बात साझा करूं, राष्ट्रपति जी को मैं ऐसे देखती रही, निहारती रही, उनका चेहरा ऐसे ऊपर हमने देखा, तो वो कहती है धीरे से, सामने देखो, सामने फोटो खींच रही है। अरे बाप रे, क्या क्या सादगी थी, इतना महान व्यक्तित्व, और वो कह रहा सामने देखी फोटो, मतलब कि उनको लग रहा है ऐसा ना कि इसकी फोटो मिस हो जाए, तो जिंदगी भर इस पर, तो ये बात एक लाइन है, लेकिन आप इसे भाव सोचिए कि उनका कितना बड़ा वो था, कि मैं उनको देख रही थी, उन्होंने अपने को कहा कि वही सामने देखो, तो ये जो महान व्यक्ति है ऐसे महान नहीं बनता है
1: जी।
0: वो गुणों की खान, अपने कर्मों से, अपने गुणों की खान से होता है, तो ये है तो बड़ी छोटी सी बात, लेकिन कितनी बड़ी बात है, मेरे पूरे जीवन में अगर मैं उधर ना देखती तो मेरी फोटो जो लोग देख रहे हैं शायद ना आती। तो आप को ये बताएं कि जितने महान लोग होते हैं, जितने बड़े लोग होते हैं, वो कौन सी छोटी सी बात आपको जो है परोस देते हैं पता नहीं चलता है। तो ये हमारा बहुत ही खूबसूरत पल था, हम बहुत बहुत धन्यवाद इस आपके रेडियो के माध्यम से, जो मधुबन रेडियो है, अब तो 57 साल से रेडियो में गा रहे हैं, और लेकिन गाने का हमारा रेडियो है, इस तरह से हम स्टूडियो में आके शायद मेरा पहला ही इंटरव्यू होगा, ऐसे तो इंटरव्यू बहुत होते हैं, लेकिन आपके मधुबन रेडियो में आके हमने ये हमारा जो आपके साथ
1: जीवन की यात्रा साझा किया है,
0: ये मेरे लिए बहुत यादगार पल है, और धन्यवाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री को, धन्यवाद हमारी महामहिम राष्ट्रपति को, और भी सारे लोग, हाँ ये तो हमने बताया नहीं कि वहाँ से निकल के हम रात का जो रात्रि भोज था वो हमारे अमित शाह जी किया था, हमारे गृह मंत्री, और उन्होंने एक एक लोगों को, मतलब जब हम लोग यहाँ से अवार्ड पाने के बाद, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हमारे जितने परिवार वाले थे, मतलब अवार्डीज के परिवार वाले थे, सबसे सब लोग मिले ऐसे लाइन से, ऐसा नहीं है कि हम लोग ही उनके पास थे, सबसे मिले, और उसके बाद वहाँ पे हम लोग सीधे अमित शाह जी के घर गए, उनके यहाँ हम लोग का रात्रि भोज था, और एक एक व्यक्ति को उन्होंने अंदर हाथ जोड़ के बधाई दिया और अंदर जाने दिया, फिर हम लोग अंदर गए, तो ये पल जो है हमारे साथ, जो राष्ट्रपति भवन में से गृह मंत्री से लेके सारी चीजें रही, वो मेरे दिल दिमाग आत्मा अमिट छाप छोड़ दिया, और मैं क्या, मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा मिर्जापुर जनपद, मेरे और भी साथी लोग, सब लोग इससे बहुत ही गर्वान्वित हैं, और एक बार पुनः हम सबको धन्यवाद देते हैं, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो मधुबन को, जो हमें जो है यहाँ पे,
1: धन्यवाद तो हम आगे करेंगे। लास्ट में हमारे बहुत ही क्विक सवाल है, एक रैपिड राउंड हम खेलते हैं, तो हमारा सबसे पहला सवाल है कि कजरी क्या है, एक लाइन या एक शब्द में आप इसका जवाब दे सकते
0: हैं। एक शब्द में कजरी का अगर कोई परिभाषा पूछे तो हम यही कहेंगे, सावन भादो के महीने में बारिश का मौसम जो होता है, कजरारे बादल छाए रहते हैं, उसमें जो उमंग उठती है प्रकृति में और इंसान में सब में, तो उस उमंग को हमें अपने दिल से निकालना है, तो वो किस रूप में निकलता है? वो हमारी कजरी के रूप में निकलता है। कजरी जो गीत है, कजरी जो बोल है, इसको ढुनमनिया कजरी भी बोलते हैं, तो इस रूप में निकलता है। मगर अगर कहा जाए तो यही है
1: जी। भारत क्या है आपके लिए?
0: भारत तो लोग कहते हैं भारत देश महान ना, तो महान तो महानता में बहुत कुछ भरा हुआ है। ये जैसे एक एक ये छोटा सा वो है, ऐसे आपका खेल है, कृषि है, और सारे जगह के फोक डांस है, फोक गाने हैं, सबके अपने आंचलिक भाषाएं हैं, आंचलिक लोक गीत है, तो सबको मिला के कोई एक से हमारा भारत नहीं। बच्चा से लेके बूढ़ा तक का पूरा जो उसकी जर्नी है, युवा वर्ग, प्रौढ़ता, फिर ये हम क्या बताएं, कितने चीजों में ये सारी इंडस्ट्री है, हमारे उद्योग हैं, हमारे और भी छोटे छोटे हाथ करघे वाले हैं, मिट्टी का काम है, तो कुछ भी पता क्या बताएं, इतना बृहत है सारे चीज को मिला के
1: भारत।
0: मेरा भारत है, मेरा भारत महान, बहुत बहुत हमें गर्व है कि हम भारत देश जैसे देश में इस मिट्टी में हमने जन्म लिया है।
1: सुंदर मंत्र। आखिरी में उर्मिला श्रीवास्तव जी कौन है?
0: उर्मिला श्रीवास्तव जी को कौन है ये तो आप ही बताएंगे। बस मैं एक बहुत छोटी सी एक छोटी सी कलाकार हूँ, माँ हूँ, बहन हूँ, अध्यापिका हूँ, और सबके समय पड़े तो सबके सेवा करने के लिए जो हमसे हो सकता है, मतलब तन मन और धन जो भी हमारे पास है उससे सबके लिए समर्पित, यही उर्मिला है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
0: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप मधुबन रेडियो के सुनने वाले सभी श्रोतागणों को मेरा बहुत प्यार स्नेह और दुलार सहित धन्यवाद। नमस्कार।
1: थैंक यू।

0: बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए अपनी खुशी बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर पूनम जी हमारे साथ हैं, जिन्हें आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। आप होम्योपैथ विशेष रूप से प्रैक्टिस करते हैं काफी लंबे समय से, और होम्योपैथी के बारे में लोगों को बताना ये आपका हॉबी है, और इसके लिए आप हमेशा पूरे भारत भर में घूमते रहते हैं। तो आइए डॉक्टर पूनम जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। नमस्ते पूनम जी, कैसे हैं आप?
1: नमस्ते, ओम शांति सभी को। बहुत बढ़िया।
0: और मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, अभी वर्तमान में आप कहाँ पर हैं?
1: जी जी मैं प्रैक्टिस करती हूँ हैदराबाद में। आज मुझे प्रैक्टिस करते 30 साल हो गए हैं, और मैंने पढ़ाई की है रायपुर होम्योपैथिक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से, और शुरू से ही मुझे
0: जी
1: मेडिसिन फील्ड से, मेडिसिन में मुझे बहुत इंटरेस्ट रहा है, तो मुझे होम्योपैथी फील्ड में मुझे रैंक मिला। हेलो,
0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 FM, बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर पूनम जी उपस्थित हैं, जिनसे हम लोग बातें कर रहे हैं, और आप रायपुर से होम्योपैथी का ये कोर्स किया है। जी पूनम जी, बताइए आगे।
1: और मैं शादी करके फिर हैदराबाद, फिर आगे मैरिज, शादी करके मैं हैदराबाद आ गई, और जिस दिन से आई हूँ आज 30 ईयर्स से मेरी प्रैक्टिस चालू है, और इसमें मुझे बहुत ही सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट भी मिल रहे हैं। और ये ठीक है, मुझे
0: जी,
1: और इसमें साइड इफेक्ट भी बहुत कम है, पर बहुत बहुत लोग ऐसा बोलते कि स्लो है, बट ये स्लो नहीं है, ये एक आर्ट है, एक ऑल्टरनेटिव साइन है, हीलिंग प्रोसेस है, एक पर्सन टू पर्सन इंडिविजुअलाइजेशन करना रहता है इसमें। और ये दवाइयाँ भी बनती है बहुत सारे किंगडम से, जैसे प्लांट किंगडम से भी दवाइयाँ बनती है, एनिमल किंगडम से भी बनती है, मिनरल किंगडम से भी बनती है, और इतनी पोटेंटाइज फॉर्म में, इतने लो डोजेस में पेशेंट के अच्छे बड़े बड़े केसेस भी ठीक हो जाते हैं। पर इसके खाली ये साइंस का एक ही है, इट इज एन आर्ट, ये आर्ट ऑफ केस टेकिंग है। तो हम हर पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करते हैं, जैसे हम आज बुखार किसी को आता है तो पैरासीटामोल दे देते हैं, कवर हो जाता है, कम हो जाता है, पर होम्योपैथी में ऐसा नहीं है, इट इज अ आर्ट ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, पर्सन टू पर्सन इंडिविजुअल होता है। आज आपको बुखार आया है तो मैंने एक दवाई चूज करी, आप दूसरे उसी समय दूसरे पेशेंट को बुखार आया है, सेम सिम्टम्स है, उसमें थोड़े चेंजेस है तो दवाई दूसरी हो जाती है। तो फीवर के लिए ही आज बहुत सारी दवाई रहती है, हेडेक के लिए भी वेरी करती है, एक फिक्स मेडिसिन, तो इसमें अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स हम पेशेंट का केस टेकिंग पहले समझते हैं, हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इनका क्या है, ट्रिगरिंग फैक्टर क्या है, एक्साइटिंग फैक्टर क्या है, किस वजह से पेशेंट परेशान हो रहा है, पहले पेशेंट को हम समझते हैं, समझ के। और एक्यूट केस में तो उतना ज़्यादा डिटेल स्टडी लेने की ज़रूरत नहीं है, बट जैसे क्रॉनिक केस आता है, जैसे रूमेटिज्म है, क्रॉनिक कोई भी क्रॉनिक लीवर डिजीज है, या कुछ भी ले लीजिए, गैस्ट्राइटिस है, एसिडिटी लॉन्ग टर्म से जो चलती आ रही है, तो उसके सब एक्साइटिंग फैक्टर्स है, ट्रिगरिंग फैक्टर्स रहते, वो जो स्ट्रेस पेशेंट बहुत सालों से फेस करते आ रहा है उसको हम समझते हैं, कहाँ पे उनके ब्लॉक से, कौन से लेवल, कौन से लेयर पे इनकी पैथोलॉजी आ रही है, और हम उसको समझ के उसके हिसाब से हम दवाइयाँ सेट।
0: जो है होम्योपैथी में इस तरह से डिफरेंट
1: उससे का, हाँ हाँ राइट। अब जैसे हम दवाइयों का सिलेक्शन भी करते हैं, मैं आज दवाई का नाम आपको नहीं रिवील करती कि कोई भी दवाई, क्योंकि अभी मैं डॉक्टर्स के बीच में नहीं हूँ, एक सिंपल एक जनरल अवेयरनेस प्रोग्राम है। अब एक पेशेंट आया, एक बच्ची आई, बच्ची को उसकी मदर ने कहा कि भाई तू अभी मैं काम कर रही हूँ, तुम बीच में मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, फिर भी कुछ रीजन से उसकी बेटी को कुछ याद आया, उसने उसकी मदर को अंदर जाके उसको डिस्टर्ब किया, उसने मदर ने उसको अच्छी डांट लगाई, वो इतनी ज्यादा डिस्टर्ब हो गई बच्ची की, वेरी नेक्स्ट डे उसको बुखार आ गया। तो हमने क्या किया, अब वो पेशेंट हो गई हमारी, वो पेशेंट को हमारे पास लेके आ गए। तो हमने पूछा कि भाई इसको कैसे बुखार, क्योंकि कल से बहुत हाई फीवर है, कंट्रोल में नहीं आ रहा है। तो हमने पूछा क्या हुआ, इसने क्या खाया पिया। फिर उसने बात बात में बताया कि कल मैंने उसे बहुत जोर से डांटा था, और वो एकदम से घबरा गई थी, बहुत फियरफुल कंडीशन में आ गई थी। और बुखार में भी वो चाहती कि वो, उसको आइसोलेशन नहीं पसंद, उसको मदर, स्पेशली मदर उसके साथ रहनी चाहिए, और मदर उसको ज्यादा टाइम नहीं दे पा रही थी। तो उसके उस लेवल को हम फिर ट्रिगरिंग फॉर एलिमेंट्स फ्रॉम यानी एंगर एंड एलिमेंट्स फ्रॉम आइसोलेशन लेके हमने एक दवाई सेलेक्ट करी उसके लिए, और वो सिंगल डोज देने से उसका टेम्परेचर विदाउट एनी एंटीबायोटिक, एनी पैरासिटामोल, होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक हो गया। तो जैसे टाइप ऑफ ए हीलिंग, क्योरेटिव प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि दवाई देते हैं थोड़े देर तक रहेगा ठीक फिर होगा। एक बार टैपर होने जाता है, होते जाता फीवर, ऐसे हर एक्यूट कंडीशन का रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है। तो ये सब डिपेंड्स करता है स्ट्रेस। अब हर पेशेंट टू पेशेंट वेरी

0: इस आर्ट ऑफ साइंस कहा जाता है। इट इज आर्ट टू अंडरस्टैंड द पेशेंट एज ए होल। हम ऐसा नहीं बोलते कि इसको ये डिजीज है, ये टाइफाइड है, इसको जॉन्डिस है। वी टेक द सिम्टम्स, उसको कब बुखार चढ़ रहा है, कितने बजे चढ़ रहा है, रात को ज्यादा है कि दिन में ज्यादा है, पानी ज्यादा पीता है कम पीता है, उसका नेचर कैसा है, वो काम रहता है कि बहुत उसका पेस ऑफ ज्यादा है, वो फास्ट रहता है, बुखार में है, या कोई भी कंडीशन, तबीयत अच्छी नहीं तो भी वो एक्टिव रहता है। उस कंडीशन को ले लेके हम पेशेंट की रेमेडीज चेक करते हैं और उससे हमारे को अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, और वे सब क्योरेटिव रहते हैं। हर पैथी का लिमिटेशंस रहता है, इसके भी लिमिटेशंस है, ऐसा नहीं कि नहीं है, पर मैक्सिमम चीजें हर छोटे से बड़े हर किसी को ये हेल्पफुल रहती है और बहुत सिंपल है, नो साइड इफेक्ट। और ऐसा भी नहीं है कि इट इज स्लो, बहुत फास्ट रिजल्ट आता अगर राइट रेमेडी सेलेक्ट हो गई, अगर पेशेंट ने केस टेकिंग अच्छे से दिया, केस हर दिल की हर चीज, हर फीलिंग, हर एक्सप्रेशन अच्छे से बताया, और डॉक्टर एकदम एक्सपर्ट उसको एकदम शांति से एब्जॉर्ब करके उसको परसीव करके एनालिसिस करेगा, तो
1: जी
0: डेफिनेटली राइट रेमेडी निकलती है और पेशेंट ठीक होते ही है।
1: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया डॉक्टर पूनम जी। आशा करूंगा कि हमारे सभी दर्शकों को विशेष रूप से होम्योपैथी किस तरह से काम करता है और किस तरह से होम्योपैथी के साथ डील करते वक्त जो है पेशेंट को एज ए होल हमें देखना चाहिए, ये आपने बताया। और निश्चित तौर पे कोई चीज आती है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है और कारण को जानने के बाद ही हम इलाज कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। और आशा करूंगा कि हमारे दर्शकों को होम्योपैथी से रिलेटेड कोई सवाल हो तो जरूर आप अपने कमेंट सेशन में पोस्ट कर सकते हैं ताकि हम आपको वो सवाल डॉक्टर साहिबा से पूछ सकें। तो आइए, इस बीच हमारे साथ संतोष जी हिमाचल से जुड़ गए हैं, तो मैं चाहूंगा कि डॉक्टर पूनम जी के स्वागत में एक छोटा सा गीत 2 मिनट का आप जरूर सुनाएंगे। स्वागत
2: ओम शांति,
1: है। ओम शांति।
0: ओम शांति।

0: ओम शांति।
1: ओम शांति जी। बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर गीत आपने रचाया, धन्यवाद, शुक्रिया आपकी। आइए आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर पूनम जी से फिर मैं जुड़ना चाहूंगा, और कोई भी होम्योपैथी से रिलेटेड सवाल हो तो संतोष जी आप भी पूछ सकते हैं। और आइए आगे बढ़ते हैं, होम्योपैथी की जब हम लोग बात करते हैं तो काफी बारीक बारीक गोलियां होती हैं, छोटी छोटी गोलियां, उसको फिर जो है खाना होता है, तो निश्चित तौर पे इतनी छोटी गोलियों में किस तरह से हम लोग समझे कि ये बहुत ज्यादा काम करता है, क्या उसमें होता है एक्चुअली में मेडिसिन, किस तरह से उसको बनाया जाता है, थोड़ा सा वो बताइए।
0: एक्चुअली जो होम्योपैथी जो गोलियाँ हैं जो आप देखते हैं छोटी वाली, वो शुगर ऑफ मिल्क से बनी हुई रहती है। उसमें क्या
1: अच्छा
0: करते हैं, पोटेंटाइज डाइल्यूशंस बनते हैं। जैसे मैंने आपको
1: अच्छा
0: बताया पहले, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मिनरल किंगडम की दवाइयाँ रहती हैं। जैसे कोई फ्लावर है, किसी के स्टेम से दवाई बनती है, पोटेंटाइज लिक्विड अल्कोहल के साथ मिक्स करके बनता है वो लिक्विड हम वो मिल्क में डालते हैं, और उसके पावर्स रहते हैं, 6 पोटेंसी, 30 पोटेंसी, 200, 1 m, 50 m, 10 m, 50 m, cm, ऐसा पावर्स जाते हैं, cm तक जाते हैं।
1: बिल्कुल
0: वो हम उसमें डालते हैं और उसके हिसाब से हम पेशेंट की सेंसिटिविटी देख के उसके बाद हम चॉइस करते हैं पोटेंसी। पोटेंसी जैसे अपन पावर बोलते हैं ना, हम होम्योपैथी में पोटेंसी बोलते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट्स
1: अच्छा
0: पोटेंसी सेंसिटिविटी हम उनको पोटेंसी प्रेस्क्राइब करते हैं। और वो फोर पिल्स
1: बिल्कुल
0: फाइव पिल्स खाली वो वर्क कहाँ से करता है, सलाइवा से, बिकॉज वी आर टेकिंग पेशेंट एज ए होल। हम एक सिस्टम पे काम नहीं करते, पूरे एज ए होल, पूरी वाइटल फोर्स रहती है, पूरे इम्यून सिस्टम पे वर्क करती है। तो थ्रू आउट द बॉडी में कहाँ कहाँ पे भी प्रॉब्लम रहती है, वो हर चीज में सही वर्क कर लेती है, अगर राइट रेमेडी सेलेक्ट हुई है तो। और वो सलाइवा से ही काम, इसीलिए हम वो गोलियां जो रहती है ना, कभी भी डॉक्टर बोलते हैं हाथ मत लगाइए, दवाई खाने के बाद पानी मत पीजिए, क्यों नहीं पीते, क्योंकि वो सलाइवा में डिजॉल्व होके पूरे सिस्टम में जाती है थ्रू आउट द बॉडी।
1: चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया कि छोटी छोटी गोलियां जो है उसमें काफी स्ट्रेंथ होती है जो आपने बताया, और वो हमारे सलाइवा से टच होकर फिर मेडिसिन जो है वो हमारे बॉडी पे काम करता है, ये
0: वर्क
1: आपने
0: करती है।
1: बताया। जी, चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया, होम्योपैथी कैसे काम करता है, उसकी दवाइयाँ कैसे बनती है, काम करती है, ये आपने बताया। अच्छा, आपने होम्योपैथी अवेयरनेस के लिए काफी भ्रमण किया है पूरे इंडिया में, तो कुछ अपनी यात्राओं के बारे में बताइए जिस पर आपने काम किया।
0: सॉरी आवाज नहीं आ रही, सॉरी सॉरी आवाज नहीं आ रही। हाँ बोलिए।
1: जी, मैं चाहूंगा कि आप अपनी कुछ भारत में जो होम्योपैथी को लेकर आपने अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए हैं उसके बारे में बताइए।
0: जी, हमारा यहाँ पे हैदराबाद में ही हमारे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, जैसे हम लोग मिलके हम कैंप करते हैं, और प्लस हम सेमिनार्स कंडक्ट करते हैं, हम सेमिनार्स जाके अटेंड करते हैं, जहाँ हम अपडेट होते हैं, क्योंकि हर डॉक्टर टू डॉक्टर प्रैक्टिस सेम नहीं रहती, बिकॉज हर की अंडरस्टैंडिंग अलग है। अब
1: बिल्कुल
0: मैं ही एक केस को देखती हूँ उसको अलग तरीके से देखती, वही दूसरा डॉक्टर उसको अलग तरीके से देखता, वही थर्ड डॉक्टर अलग तरीके से देखता, तो इसके लिए हमारे को बहुत इंटेंसिव स्टडी करनी पड़ती है। तो हम इसकी कॉन्फ्रेंस गैदरिंग्स हमेशा मीटिंग्स वीकली वंस, 15 डेज वंस हम पूरे डॉक्टर्स मिलके इसका करते हैं। और प्लस हम जैसे थोड़े जो लेमैन रहते हैं जो सोसाइटी में, जिनको देखो विजुअली मैक्सिमम लोगों को इंजेक्शन समझ में आता, होम्योपैथी समझ में नहीं आती, तो हम उन लोगों को ये बताते हैं कि भाई इससे भी ठीक होते हैं। और जब 100, 50, 100 लोगों में हम देते तो 20% भी अगर ठीक होता, 20 लोग भी, वो भी हमारे लिए बहुत है कि उनको बहुत सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिलता, वो टर्न अप होते हैं और फिर इजीली
1: बिल्कुल
0: हीलिंग पावर से विदाउट साइड इफेक्ट अच्छे से ठीक हो जाते हैं। क्योंकि मोस्टली लोग चाहते हैं कि जगह, तो विश्वास सबसे बड़ी चीज है।
1: जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि यूजुअली लोग जो है विश्वास सबसे बड़ी चीज, ये भी आपने बताया, और एक बार विश्वास हो जाता है तो चीजें आसान हो जाती हैं। जी,
0: और हम उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट, क्योंकि हम जब पेशेंट की केस टेकिंग भी लेते हैं तो हमारी इतनी लंबी केस टेकिंग होती है, यानी हम उसका लाइफ स्पैन पूछते हैं, चाइल्डहुड पूछते हैं, उनका लाइफ में क्या क्या इवेंट्स हुए, फैमिली में कितने हैं, सबके साथ रिलेशनशिप कैसा है, तो वो ऐसी ट्यूनिंग बैठ जाती है कि उन लोग अपनापन फील करते हैं। उसके बाद हम उनको काउंसलिंग भी दे देते थोड़ी बहुत पॉजिटिव वे से, कि कुछ चीज़ें, हर चीज़ का ऐसा नहीं है जो हो रहा अच्छे के लिए हो रहा, पॉजिटिव करके थोड़ी चीज़ें इग्नोर करते हैं, तो उससे भी पेशेंट मेंटली काफ़ी सही हो जाता है। थोड़ा कुछ अपन को ऊपर वाले पर भी छोड़ना चाहिए, अपना काम है पुरुषार्थ करना।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका होम्योपैथी में कैसे आना हुआ?
0: जी देखिए, मेरे को तो शुरू से ही क्या है कि मैनकाइंड के लिए कुछ अच्छा, ये जो पेन्स है, सफरिंग्स है, उससे मुझे बहुत तकलीफ होती थी, यानी किसी को भी देखती थी बचपन में, तो मैं बहुत हेल्प करने जाती थी। फिर मैंने हमारे, मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ, तो वहाँ पे PMT एग्ज़ाम होती है मेडिसिन इसके लिए, तब मैंने इसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम ली, तब मेरे मार्क्स MBBS के लेवल के नहीं आए, थोड़े नीचे
1: जी
0: उसमें थे, तो मुझे इसमें होम्योपैथी में सीट मेरी लगी हुई थी, तो मैंने उसी में एडमिशन ले लिया। चलो ये भी जाना दे, तब तब तो मुझे खुद को भी ख्याल नहीं था कि होम्योपैथी इतनी वंडरफुल साइंस है। फिर उसमें एडमिशन होते हैं यार, एक 1-2 मंथ में सब पढ़ाई वगैरह शुरू हुई, धीरे धीरे पता चला कि नहीं भाई, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छा इससे रिजल्ट भी मिलते, इट इज़ अ साइंटिफिक साइंस, इट इज़ नॉट लाइक दिस ओनली, इसमें
1: जी। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 FM। वादे मुलाकात है, इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और हमारे साथ डॉक्टर पूनम जी हैं, होम्योपैथिस्ट, जिनसे बातें हो रही हैं और निश्चित तौर पे उनकी बातें हम लोग सुन रहे हैं, तो अच्छा लग रहा होगा आपको। जी
0: तो थायराइड है, जैसे मैं उनकी एलोपैथिक मेडिसिन भी बंद करा देती हूँ और मैं पूरी टोटली होम्योपैथी पे उनको स्टार्ट कर देती हूँ 2-3 महीने तक, और उस उनका पैरामीटर चेक करते थे, आफ्टर 3 मंथ्स इनकी पूरी एलोपैथिक दवाइयाँ बंद, तो तभी वो कर देती, होम्योपैथी भी बंद कर देती और फिर उनको बोल देती, छोड़ देती पेशेंट्स को, आप अपने हिसाब से एवरी 3 मंथ्स अपना थायराइड प्रोफाइल चेक करते रहिए, और पेशेंट डेफिनेटली 100% क्योर हो जाता है। तो ऐसे रिजल्ट भी मैंने अपने प्रैक्टिस में भी देखे, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा पैशन बढ़ गया इसमें, तो मैं खुद बहुत सारी चीज़ें मैं करती रहती हूँ कि नहीं इसमें अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, तो पेशेंट्स को क्यों कोई चीज़ लाइफ लॉन्ग क्यों खानी है, जब इससे रिजल्ट होके क्योर हो ही जा रहे हैं, तो इस वजह से मेरा इंटरेस्ट इसमें और बढ़ते गया बढ़ते गया। और सभी कम्युनिटी के जहाँ इजी अफोर्डेबल है, सभी लोग ले सकते हैं, और कोई पेन नहीं है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, आराम से आप खा पी सकते हो,
1: बिल्कुल
0: कोई कोई तरीके की वीकनेस नहीं है, तो बहुत अच्छा है। इस वजह से मुझे तो आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि मैंने मैंने 30 इयर्स में, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत अच्छा, आई एम रियली ब्लेस्ड दैट आई एम होम्योपैथ।
1: चलिए डॉक्टर पूनम जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बातें सुनकर और हमारे मित्रों को भी अच्छा लग रहा है। तो आइए, जैसे कि अभी मौसम में जैसे वायरल आ जाता है या वायरल फीवर होता है, सर्दी बुखार होता है, तो इसमें होम्योपैथी किस तरह से काम करता है और कैसे आप ट्रीट करते हैं, थोड़ा सा बताइए।
0: हाँ, जैसे अभी तो काफ़ी वायरल फीवर है, हॉट डेज कोल्ड नाइट्स है, इन हॉट डेज ऐसा है कि दिन भर धूप रहती, शाम को थोड़ा ठंडा हो जा रहा है, या तो लोग रात में AC में सो जा रहे हैं, या ठंडी चीज़ें खा ले रहे, तो गला ख़राब हो जा रहा है या वायरल हो जा रहा है। तो इसमें हम कैसे सिम्टम्स देते हैं, जैसे आज का ही केस बताती हूँ, एक बच्ची आई मेरे पास, उसको हाई फीवर है, और उसने क्या कहा है, हाँ उसे दोपहर को फुल धूप से आई थी, उसने आइसक्रीम खाया था, बोले कि मैडम, और उसको थोड़ा इरिटेशन होना लगा रात में थ्रोट पे, और सुबह उसको फीवर आ गया। तो हमारे पास एलमेंट्स फ्रॉम टेकिंग कोल्ड थिंग्स करके एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है होम्योपैथी में, जिसमें हम एक ऐसी दवाई हिपारसस बोलते हैं, जो उससे क्या होता है कि वो पेशेंट हमेशा चिली रहता है, वेरी सेंसिटिव टू कोल्ड रहता है, वो दवाई की कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो वो उससे मैच हो रही थी पेशेंट से, तो मैंने उसको हिपारसस आज सुबह ही दे दिया क्लिनिक पे, 11:30 बजे वो मेरे पास आई थी आज, उसका शाम को 6:30 बजे तक उसकी मदर का फोन आ गया कि मैडम उसका टेम्परेचर अभी 99 के नज़दीक है, और 100% श्योर मैं बताती हूँ, 8 बजे तक, 8:30 तक अभी तक उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो गया होगा, जो हाई फीवर है उसको ना, तो मैंने उसको पैरासीटामोल खाने का सजेस्ट किया है, वो तो हम एलोपैथिक तो सजेस्ट करते नहीं है बिकॉज ऑफ बींग होम्योपैथ, ना ही उसने एंटीबायोटिक्स चालू करी और डेफिनेटली शी विल गेट क्योर. यानी हम एलमेंट फ्रॉम ईटिंग कोल्ड थिंग्स, एलमेंट फ्रॉम गेटिंग, यानी हम एलिमेंट्स यानी क्या ट्रिगरिंग फैक्टर, कौन से वजह से इसको हो रहा है, उससे हमारे पास दवाइयाँ रहती है. वो सिमिलम होना चाहिए, दवाइयों से सिम्टम्स मैच होने चाहिए, तो सिलेक्टेड रेमेडी बहुत अच्छी तरह काम करती है. जैसे अभी
1: बिल्कुल
0: का मैंने आपको ये केस बताया, एक जैसे आइसक्रीम खाने से, अभी जैसे वायरल फीवर ही है, तो फीवर में अगर पेशेंट बहुत डल है, थर्स्ट लेस है और बिल्कुल लिथार्जिक है, उठने का भी मन नहीं कर रहा है, बड़ी मुश्किल से अपने आप को उठा के है, उसकी मेंटल एक्टिविटी भी बहुत स्लो है, वीकनेस है, बॉडी पेन्स है, तो हमारे पास एक ऐसी रेमेडी जेलसीमियम, जहाँ उसमें ऐसा रहता है पेशेंट थर्सलेस रहता है, बहुत डल रहता है, उसका स्टेट ऑफ माइंड इतना डल रहता है, उसका बॉडी पेन्स एक्सट्रीम रहता है, वो पेशेंट भी थर्सलेस रहता है, और जेलसीमियम रेमेडी से इतना मैच होता है, तो हमने उसको जेलसीमियम रेमेडी दे देनी है, और देते ही पेशेंट को बिल्कुल 7-8 घंटे में ठीक. यानी
1: बिल्कुल
0: एक्यूट कंडीशन बता रही हूँ, आपने मुझे वायरल अभी चल रहा है, तो दिस इज एक्यूट कंडीशन, ये क्रॉनिक नहीं चल रहा है. पेशेंट को कल अचानक से सडन फीवर आ गया, सडन उसको खांसी हो गई, सडन ठंडी लग रही है, सडन सब हो रहा है, डायरिया हो जाए सडन, तो इसे एक्यूट कंडीशन की मेडिसिन रहती है, जहाँ इमीडिएट हम एक टाइम पैटर्न से या 2-2 घंटे से या एक 3 टाइम से डोज या 4 टाइम से डे ऐसा डोज देके हम पेशेंट्स को बहुत अच्छी तरह से निकाल सकते हैं, और रिजल्ट अच्छे ही आते भी.
1: बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर पूनम जी, काफी अच्छी बात आपने बताया कि कैसे आप सिम्टम्स देखकर जो है होम्योपैथी मेडिसिन दिया जाता है, और इससे जो है लोगों को और जो पेशेंट है उनको जल्दी से रिलीफ मिल जाता है, ये आपने कहा। निश्चित तौर पे जब हम लोग सिम्टम देख के दवा देते हैं तो उसका असर भी अच्छा हो जाता है। अब आइए, मैं एक और बात मैं पूछना चाहूंगा, जैसे कि होम्योपैथी मेडिसिन में कौन कौन सी बीमारियां ठीक होती है, सभी बीमारियों के लिए होम्योपैथी है या पर्टिकुलर बीमारी के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि हम लोग ऐसा बताइए जी।
0: हाँ जी, हाँ, यानी आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कौन कौन सी मेडिसिन, यानी कौन सी डिजीज क्योरेबल है इससे, तो एक्चुअली बताए तो ऑलमोस्ट सभी चीज का इसका इलाज है. जैसे मैं बता सकती हूँ, छोटे बच्चे, इन्फेंट्स, इन्फेंट्स यानी न्यूबॉर्न बेबीज को भी लेके आते, मैं आज मैं बता सकती हूँ, 1 महीने का बेबी भी लेके आके मेरे पास पेशेंट बन के दवाई ले जाते. अब न्यूबॉर्न बेबी 4 गोली मुंह में कैसे डाले, तो हम उसको पानी में डिजॉल्व, डाइल्यूशन जो हम गोली में डालते हैं वो डाइल्यूशन देते हैं, वो पानी में ऐड करके बेबी को दे सकती है. यानी गैस्ट्राइटिस बोलो, पीसीओडी बोलो, फीमेल डिसऑर्डर बोलो, थायराइड तो मैंने ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, और स्पॉन्डिलाइसिस बोलो, रूमेटिज्म बोलो, आर्थराइटिस बोलो, आप निमोनिया बोलो, अस्थमा बोलो, अस्थमा का भी साइनसाइटिस बोलिए, मोस्ट
1: जी जी
0: जहाँ सर्जिकल प्रॉब्लम है, जहाँ सर्जिकल प्रॉब्लम है वहाँ हम नहीं हेल्प कर सकते, वहाँ हम मैनेज कर सकते केस, मैनेज यानी प्री ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव, बाकी सब चीज़ों का इलाज हो सकता है अगर राइट टाइम पे हमारे पास पेशेंट आ गया. तो यूजुअली होम्योपैथी के पास क्या एक प्रॉब्लम क्या है, पेशेंट हर बार पहले एलोपैथिक ड्रग्स सब ट्राई करता है, जहाँ वहाँ नहीं होता है उसके बाद वो चलो अब होम्योपैथी के पास जाते, और फुल मेसअप करके आते हैं, फिर बोलते मैडम जल्दी ठीक कर दीजिए, ऑलरेडी वो पहले बहुत महीनों दूसरी दवाई लेके आते हैं, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट को मैक्सिमम से मैक्सिमम यानी कम तकलीफ में, कम दवाई में ठीक हो जाए, पर मोस्टली हर चीज का इलाज है, खाली जहाँ सर्जिकल इंटरवेंशन है, जैसे कोई ट्यूमर्स हो गए, जहाँ हम कुछ ऐसे रहती है कि थोड़े पॉलिश रहते, ट्यूमर्स रहते, वो भी डिजॉल्व होते, पर कुछ ऐसे रहते जहाँ हमारी मेडिसिन रीच नहीं कर पाती, या हमको पेशेंट से सिम्टम सही नहीं मिलता, या तो डॉक्टर हम पेशेंट के साथ वैसा रिलेट नहीं कर पाते, कनेक्ट नहीं कर पाते, तब वो पेशेंट को रिजल्ट नहीं दे पाते, वहाँ सर्जरी की जहाँ जरूरत है वहाँ तो जरूरत है ही, वहाँ हम होम्योपैथी का चांस नहीं लेते, वहाँ बोलते नहीं भाई यहाँ सर्जरी की जरूरत है, अब बहुत बड़ा फाइब्रॉइड हो गया है, बहुत ही बड़ा है यूट्रस में, अब उसको हम कितने मंथ तक हम उसको दवाई दे और उसको डिजॉल्व तो नहीं कर सकते, तब आपको हिस्टेक्टॉमी करानी ही है, निकलवाना ही है. हाँ, पोस्ट ऑपरेटिव हम जरूर रिकवरी के लिए, हीलिंग के लिए दवाई दे देते दे पेशेंट को, फास्ट ठीक हो जाते, या तो बिफोर प्री प्री सर्जिकल ट्रॉमा भी रहता, मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहते पेशेंट सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए, तब हम उन लोग को पहले से ऐसी दवाई देते जिससे उनको पीस ऑफ माइंड रहता, स्टेबिलिटी रहती, इम्यूनिटी अच्छी रहती, और इम्यूनिटी की भी अच्छी दवाई देते उससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट आ जाते. यानी मोस्टली आप नेम द डिजीज सब ठीक कर सके, पर जहाँ सर्जरी है या सर्जिकल, वहाँ तो हम पेशेंट को खुद ही बोल देते कि नहीं भाई यू नीड ए सम सर्जन हेल्प।
1: बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर डॉक्टर पूनम जी, बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया। तो हाल ही में जैसे कि कई बार ये भी होता है कि हम लोग कॉर्निक बोलते हैं, बहुत पुराना बीमारी है, पुराने से पुराने
0: कौन सा,
1: बीमारियों का
0: सॉरी,
1: इलाज है,
0: पुरानी
1: कॉर्निक डिजीज
0: पुरानी,
1: भी जिसको
0: हाँ
1: बोलते
0: पुरानी केस।
1: हैं। तो इसमें होम्योपैथी में जैसे कि इसके लिए भी काफी लोग बोलते हैं कि अभी इसके लिए आप होम्योपैथी मेडिसिन थोड़ा लंबा टाइम तक ले लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो ऐसा कौन कौन सी
0: जी
1: बीमारियां हैं, कॉर्निक बीमारियां, जिससे वो होम्योपैथी पर बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है?
0: जैसे क्रॉनिक डिजीज बोल लीजिए, साइनोसाइटिस है, साइनस है, वो आप होम्योपैथी से ठीक कर सकते हैं। एस्थमा इज ए क्रॉनिक डिजीज, बहुत टाइम से चल रहा है, वो भी ठीक कर सकते हैं। और आर्थराइटिस है, जहाँ स्टीरॉयड भी लेने पड़ते हैं, तो हम विदाउट स्टीरॉयड, हमारे पास तो स्टीरॉयड जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, तो एवरीथिंग इज सिम्टोमेटिक, वो भी ठीक हो सकता है। गैस्ट्राइटिस है, एसिडिटी है, तो कोई डाइजेशन इशू है, कोई लीवर डिजीज है, ये सब होम्योपैथी से ठीक हो सकती है। माइग्रेन है, इट इज़ ए क्रॉनिक डिजीज, हर पीरियडिसिटी से सर दर्द होता है, वो भी होम्योपैथी से ठीक हो जाता है। यूजुअली ये टॉन्सिल टॉन्सिलेक्टॉमी बोलते हैं, टॉन्सिल्स के प्रॉब्लम बच्चों को बहुत रहती है, यूजुअली सर्जरी करा लेते, पर हमारे पास आने के बाद मेरे ख्याल से अभी तक एक भी ऐसा केस नहीं जिसको सर्जरी के पास जाना पड़ा। इवन डॉक्टर ने कह दिया कि नहीं अब इसकी ज़रूरत नहीं है सर्जरी की, ठीक हो गए इनके टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। पॉलिप्स है, एडिनॉइड्स है, ये सब सब ठीक हो जाते हैं। फाइब्रॉइड अगर यूट्रस में अर्ली डायग्नोस हो गया है और उसको राइट टाइम ट्रीटमेंट दे दे, वो भी फाइब्रॉइड भी डिजॉल्व हो जाते हैं। क्रॉनिक तो मैक्सिमम बहुत काफ़ी चीज़ें थी, थायराइड भी हो गया। हाँ डायबिटीज भी कांट क्योर, डायबिटीज का क्योर नहीं है होम्योपैथी में, आई दैट इज वेरी श्योर, उसको हम मैनेज कर सकते हैं। जैसे आप एलोपैथी खाते हैं हम होम्योपैथी देते पेशेंट को स्टेबल करने के।
1: चलिए, बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया डॉक्टर पूनम जी। और तरह से हम लोग बातें कर रहे थे, अखिल सुगंधी सर भी आ गए हैं। प्लीज टेल अबाउट थायराइड, हमने सुना है 100% क्योर है। तो चलिए मैं कोशिश करता हूँ डॉक्टर पूनम जी। अखिल सुगंधी सर ने पूछा है कि क्या थायराइड्स होम्योपैथी में 100% क्योर होता है, ये सवाल है।
0: हाँ जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है थायराइड। तो 100% क्योर होता है, और थायराइड का होने का रिजल्ट 100% श्योरिटी इसलिए है क्योंकि हम उसकी लाइफ हिस्ट्री जो पेशेंट की लेते हैं बहुत स्ट्रेसफुल रही रहती है, कहीं ना कहीं उनके ब्लॉक्स रहते हैं, वो हम हमारे सिमिलर मेडिसिन से उस उनको हम ऐसा रिलेट करके देते हैं कि उनके ब्लॉक्स खुल जाते हैं, उनका थायराइड लेवल एकदम स्टेबल हो जाता है और थायराइड 100% क्योर होता है। हमारे पास ऐसी मेडिसिन है थायराइड की जिससे, तो मुझे तो याद नहीं, मेरे एक पेशेंट छोड़ के आज आज मेरे ख्याल से मैं 15 से 18 ईयर से थायराइड पेशेंट्स को कांस्टेंट देख रही, मोस्टली एक ऐसा पेशेंट है जिसको मैंने 2 1 साल पूरा ट्रीट किया, उसका ठीक नहीं हो रहा था, उनको एलोपैथी पे स्टार्ट रखा है, बाकी पूरे पेशेंट्स मैक्सिमम सभी क्योर हो।
1: चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया, और आशा करूंगा कि हमारे सभी जो दर्शक मित्र हैं वो आपको सुनकर खुश हो रहे हैं। और विशाल जी ने पूछा है कि इज होम्योपैथिक मेडिसिन यूजफुल फॉर स्पाइंडोलाइटिस, विशाल जी का सवाल है। जी
0: स्पॉन्डिलाइटिस, हाँ स्पॉन्डिलाइटिस में भी बहुत अच्छा रिजल्ट है वो, उस अगर स्पॉन्डिलाइटिस में भी ऐसा है होम्योपैथी में, वी शुड टेक इट, इट इज ऑफ राइट साइड की लेफ्ट साइड है, अगेन दवाई वहीं चेंज हो जाती है, फिर रात को हो रहा है, दिन में हो रहा है, वर्क एग्जर्शन से हो रहा है तो दवाई चेंज होती है, रेस्ट में हो रहा था अगेन चेंज हो जाती है। अगेन आई विल टेल यू कि ये अगेन डिपेंड्स ऑन द सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट, और किस टाइप का है पेशेंट और किस टाइप की सेंसिटिविटी।

0: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए विशाल जी, स्पॉन्डिलाइसिस ठीक हो सकता है, ये आपने बताया। अब इसके साथ में मैं पूछना चाहूंगा कि होम्योपैथी की बात हम लोग जब करते हैं तो कितना लंबा लेना पड़ता है? क्या ये एलोपैथी की तरह तुरंत काम करता है या इसमें टाइम लगता है?
1: जैसे क्रॉनिक केस है तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। जैसे मैंने आपको बताया था थायराइड का, जैसे स्पॉन्डिलाइटिस का पूछा है क्वेश्चन, तो उसमें जैसे 3 महीने तो थायराइड में लेनी ही पड़ती, 3 महीने वी शुड टेक टाइम उसको, सब हार्मोन्स को बॉडी में सेट होने के लिए। और स्पॉन्डिलाइटिस को भी 2-3 महीने तो लगती है। हाँ, एक्यूट केसेस में तो जैसे फीवर, डायरिया, वॉमिटिंग 1-1.5 दिन में ठीक हो जाती है, पर ये सब लंबी और पूरे लाइफ टाइम लेने की जरूरत नहीं है। जो जो बहुत लोग 2-2, 3-3 साल तक दवाई लेते जा रहे लेते जा रहे, इतने सब करने की जरूरत नहीं होती। जो होना रहता है 6 मंथ के स्पैन में सही हो जाता, नहीं तो आपको पेशेंट या तो डॉक्टर चेंज करना चाहिए, या तो आप पेशेंट ठीक से डॉक्टर को नहीं बता पा रहे, या डॉक्टर कुछ पकड़ नहीं पा रहे, वो समझ लेना चाहिए।
0: कि पेशेंट इन चीजों को नहीं समझ पा रहा है या फिर डॉक्टर उसे ठीक से पकड़ नहीं पा रहे, ये आपने बताया। तो
1: पकड़ नहीं पा रहे।
0: कैसे प्रॉपरली जो है हम लोग कंसल्ट कर सके, या होम्योपैथी में जब हम लोग जाते हैं डॉक्टर से मिलने के लिए तो किन किन चीजों को बताना है, थोड़ा सा वो बताएं जी।
1: नहीं, समझ में नहीं आया आपका क्वेश्चन, एक बार फिर से रिपीट करिए।
0: पेशेंट की जब हिस्ट्री लेते हैं होम्योपैथी में तो किस किस तरह की बातें हमें जो है बतानी होगी?
1: हाँ जी, जैसे आप फॉर पेशेंट आता है तो पहले तो पेशेंट को ही बोलने देते हैं, वो पहले अपनी ट्रबल्स बता देता है फर्स्ट, फिर हम उनसे कौन क्वेश्चंस पूछते हैं, उनकी थर्स्ट के बारे में, उनके ड्रीम्स के बारे में, उनके फियर के बारे में, उनके डिजायर यानी क्या उनको खाने की किस चीज़ का इंटरेस्ट है। जैसे कई लोग मीठा ज़्यादा खाते, कोई खट्टा खाता है, कोई सॉल्टी खाता है, कोई फ्राइड ज़्यादा पसंद करता, कोई बेकरी आइटम खाता है, मिल्क प्रोडक्ट ज़्यादा पसंद करता, ये सब बहुत
0: जी
1: इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए। इसलिए क्योंकि हम दवाइयाँ वैसे भी निकालते हैं, वैसी दवाइयों से हम सिमिलैरिटी निकालते हैं, कुछ दवाइयाँ में ऐसे सिम्टम्स रहते हैं तो वो उनसे मैच होने चाहिए। तो हम लाइफ हिस्ट्री में जब जैसे आता पेशेंट उसका नेचर पूछते, तो कोई हर चीज़ दिल खोल के तो नहीं बताता है। अब हम उसको काउंटर एक्शन भी लेते हैं, यानी काउंटर यानी रिवर्स साइकोलॉजी बोलते हैं जिसको, वो हमेशा बोलता है मैं तो बहुत ही बहुत सिंपल हूँ, मुझे ये ऐसे जेलसी पसंद नहीं है, तो हम समझ जाते हैं पेशेंट ज़्यादा जेलस है। हाँ, क्योंकि आदमी सही सही नहीं बताता है, कुछ भी चीज़ सही नहीं बताता है, तो उसका रिवर्स साइकोलॉजी बोलते हैं। वो चीज़ रिपीटेडली बताता है, वो अपने आप को प्रूव करने तो बताती नहीं, मैं अच्छा हूँ, मैं तो समझ में आता है कि कुछ चीज़ हाइड कर रहा है मैं, क्योंकि फर्स्ट मीटिंग में तो हर चीज़ बताता नहीं है। और उनके साथ कोई अटेंडर्स आते हैं, और हमेशा पेशेंट को हम अकेले बिठाते हैं, उसके साथ अटेंडर को बैठने नहीं देते, क्या होता है कि वो खुल के बात कर सकते हैं। और हमारे लिए जैसे डेल्यूशंस बोलते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे फैमिली में मेरे मेरे मेरे अगेंस्ट ये सब लोग सोच रहे हैं, ये उसकी मान्यता है, सच है कि नहीं वो नहीं बता। वो डेल्यूशन एक बहुत बड़ा चैप्टर है हमारे होम्योपैथी में, तो डेल्यूशन से भी हम रिलेट करके दवाइयाँ निकालते हैं, यानी उसका थर्स्ट है, उसका साइड है, राइट साइड, लेफ्ट साइड सोता किस साइड है, उसकी एपेटाइट कैसी है, उसके रिलेशनशिप फैमिली में कैसे हैं, उसका चाइल्डहुड कैसे गया। और कुछ बच्चे ऐसे आते हैं ऑटिस्टिक आते हैं, ADHD आते हैं, जो आजकल बहुत देखने को दिखने मिलते हैं, उसमें हम प्रेगनेंसी हिस्ट्री लेते हैं मदर की, और प्रेगनेंसी हिस्ट्री में मदर कौन से स्ट्रेस से पास हुई उससे हम दवाई निकालते हैं, वो बच्चे को देते हैं। और आजकल तो लोग डिप्रेशन में बहुत आ रहे हैं, तो डिप्रेशन के लिए तो होम्योपैथी फैंटास्टिक काम करती है, जहाँ पेल्पिटेशन हो रहा है, फुल पेल्पिटेशन है, पेशेंट बिना वजह से रोना आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा, घबराहट हो रही है, कहीं फोकस नहीं कर पा रहा, उसमें भी होम्योपैथिक, बिकॉज होम्योपैथी इज बेस्ड टोटली ऑन साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी। और जैसा मैं बताती हूँ कि जैसी अपनी सोच है वैसी संकल्प से सीधी सोच से ही सब होती है, जैसी अपनी सोच रहती है वैसी फिजिकल बॉडी में डिजीजेस आती है। हमारे पास एक फिजियोनॉमिक एक फिजियोनॉमी करके एक चैप्टर है, जहाँ हम पेशेंट के बॉडी लैंग्वेज से डिसाइड करते हैं कि इसको कौन सी दवाई लगेगी, वो उसका एक्सप्रेशन उसकी बॉडी लैंग्वेज हमको बताती है वो क्या है क्या नहीं है। और कई बार जैसे राइट हैंड अब लेफ्ट हैंड के ऊपर रहता है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड के ऊपर बैठने की आदत है, कई बार हम लोग हैंड गेस्चर्स अलग अलग तरीके से करते हैं, कोई एंग्जाइटी में पाँव हिलाते रहता, ये सब चीजें बहुत काउंट करती है हमारी हिस्ट्री में। तो ये सब हम ऑब्जर्वेशन से होता है, वो डॉक्टर का काम है, पर पेशेंट को खुल के ओपन अप होके हर चीज बोलना रहता है। वो फर्स्ट मीटिंग में थोड़ा कम बोल पाते हैं, सेकंड फॉलोअप जो 15 दिन के बाद आते हैं फिर थोड़े क्लोज हो जाते हैं डॉक्टर के साथ, फिर बोलने लग जाते, पूरा ओपन होके सब बताते और सही सही ट्रैक पे आ जाते। क्रॉनिक केसेस में तो प्रॉब्लम आता ही नहीं बिल्कुल भी। और एक और चीज है, जैसी अब पेशेंट की सोच रहती ना उस वो एरिया में, वहीं डिजीज भी आती है।
0: बिल्कुल
1: हर किसी को एक ही फैमिली एक ही टाइप का खाना खाते हैं, एक ही टाइप की सब सोच है, एक ही टाइप का सब एनवायरनमेंट है। किसी को लीवर की है, किसी को पेट की है, किसी को किडनी की है। तो
0: बिल्कुल
1: जैसे जैसी सबकी थिंकिंग है वैसा ही फिजिकल बॉडी में एलिमेंट्स है ना, इसमें ना डिजीज सिम्टम्स डेवलप होते हैं।
0: जी।
1: तो वो भी एक बहुत बड़ा होम्योपैथी में एक हमारे पास चैप्टर है, तो उससे हम रिलेट करते हैं, उसमें सब रेमेडीज रहती है, उससे हम मैच करते। तो ये सब इन्फॉर्मेशन, कई पेशेंट आके बोलते मैडम हमारे को तो सर दर्द है, आप हमको ये सब क्या पूछ रहे, आप हमारा सर दर्द ठीक कीजिए ना। और फिर हम भी पूछते आपका नेचर कैसा है, आपके घर में कितने लोग हैं, आपका इनके साथ कैसा रिलेशन, उनके साथ कैसा रिलेशन। तो अरे भाई आप हमारे को सर दर्द दे रहा है उसकी ट्रीटमेंट कर, अरे पर हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब फिर हम समझाते पेशेंट को कि भाई ये हमारे लिए बिकॉज आपके नेचर से आपकी दवाइयां निकलेगी, इसलिए हम आपको लिए पूछे। इसके बाद हम ये बहुत सील रखते हैं, किसी को डिस्क्लोज भी नहीं करते, और फिर हम भूल भी जाते हैं क्योंकि हम पूरा कितने पेशेंट से याद रखेंगे, नहीं तो वी विल फॉल सिक।
0: बिल्कुल बिल्कुल। विशाल जी ने एक और सवाल पूछा है, प्लीज एक्सप्लेन पीसीओडी इज होम्योपैथी यूजफुल इन फीवर कोल्ड शायद है।
1: पीसीओडी में भी बहुत, पीसीओडी में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जो आजकल की लड़कियों को बहुत हो रहा है, क्योंकि आजकल सबको सिस्टम में ज्यादा काम है, एक फोन सा दिन भर रहते तो बैठे रहते, फिजिकल एक्टिविटी कम है, खाना पीना बहुत जंक है, बाहर का खाना ज्यादा हो गया है, कोई एपेटाइट का कोई कंट्रोल नहीं है, तो उसके वजह से ओवरी से फॉलिकल्स हो जाते हैं। तो उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट है होम्योपैथी, और उसमें फॉलिकल्स बहुत जल्दी डिजॉल्व हो भी जाते हैं। और आजकल यंग लड़कियों मैक्सिमम, मैं बता रही हूँ कि 10 में से 8 लड़कियां को पीसीओडी है ही, मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम है ही, इरेगुलर पीरियड है ही मैक्सिमम। और जब से ये फोन का ज्यादा यूसेज हो गया, लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स ज्यादा यूज हो गए, ये अब एक जगह फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है आजकल के बच्चों की, क्या सभी लोगों की, तो ये दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम फॉर द पीसीओडी। और इसमें अच्छे रिजल्ट भी आते हैं, इट इज क्योरेबल।
0: चलिए डॉक्टर पूनम जी, काफी अच्छी बातें आपने बताया और आशा करूंगा हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके। और आपने होम्योपैथी का जो विज्ञान है उसके बारे में बहुत अच्छी बातें बताया कि कैसे ये काम करता है, और ये नेचर से रिलेटेड मेडिसिन है, इसलिए व्यक्ति को बीमारी से ज्यादा उसके नेचर को समझने की कोशिश करना चाहिए एज ए होम्योपैथिस्ट। और फिर जब नेचर समझ में आ जाता है तो आपका इलाज आसान हो जाता है, ये आपने बताया। और इसके ऊपर काफी अलग अलग प्रश्न जो हैं लोगों से पूछा जाता है, तो अगर उनका जवाब मिल जाता है और कई बार पेशेंट सही गलत जवाब देता है तो वो भी समझ में आ जाता है, क्योंकि डॉक्टर के पास एक एक्सपीरियंस रहता है, उनके बॉडी लैंग्वेज उनकी भावनाएं सब कैच करके वो समझ जाते हैं कि क्या हो रहा है। और निश्चित तौर पर जिस बीमारी के बारे में आपने बताया उससे रिलेटेड भी नेचर क्या होते हैं वो भी डॉक्टर को पता होता है। तो इसीलिए जब भी आप जाएं तो अपनी नेचर को सही सही से बताएं और फिर आप अगर इलाज लेते हैं तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाते हैं और अच्छी चीजें आपको जो है आसानी से आपका ट्रीटमेंट भी हो जाता है। कोई चीज आप हाइड करते हैं तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो चलिए जाते जाते मैं चाहूंगा कि एक संदेश के रूप में आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे डॉक्टर पूनम जी।
1: हेलो हेलो,
0: हाँ जी,
1: हाँ जी
0: एक संदेश एक मैसेज क्या देना चाहें।
1: हाँ जी हाँ आप हाँ जी आवाज नहीं आ रही,
0: ओहो
1: आवाज नहीं,
0: चलिए कोई बात, मैं चाह रहा था
1: आवाज नहीं
0: कि
1: आ रही,
0: छोटा सा मैसेज आप दे।
1: किस चीज पे, किस चीज पे।
0: ना लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे उसके बारे में?
1: अच्छा। एक्चुअली मैं तो ये संदेश देना चाहती कि सभी लोग अच्छी सोच रखे, पॉजिटिव सोच रखे, तो ऐसी कोई बीमारियां ही नहीं खड़ी हो। जैसी अपनी सोच रहेगी वैसी अपने शरीर में, फिजिकल बॉडी में तकलीफ आएगी। जितना अपन अच्छी सोच पॉजिटिव तरफ देखेंगे तो मेरे ख्याल से किसी को, और लाइफ को बहुत सिंपल बना के रखना चाहिए। कॉम्प्लिकेट करके, ज्यादा सोच के, ज्यादा एजम्पशंस करके वो और कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। लाइफ इज वेरी सिंपल। भगवान ने बहुत अच्छा सब सिंपल, नेचर ने भी इतना सब अच्छा दिया हुआ है। पर क्या है, आजकल का जो कंपटीशन है, कंपैरिजन है, उसमें बहुत जा जा के लोग बहुत फंसते जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जितना सिंप्लिसिटी में रहे, जितनी मॉडेस्टी रहे लाइफ में, वो सबसे बढ़िया है लाइफ के लिए।
0: जी। और डॉक्टर पूनम जी, बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया, बहुत ही प्यारा सा संदेश आपने दिया कि कॉम्प्लिकेशन ना हो आपके लाइफ में, सिंपल लाइफ हो और विधिवत आप चीजों को करें तो निश्चित तौर पर बीमारियां कम होगी, अच्छी सोच रखने से बीमारियां भी नहीं आएगी। तो आइए, जाते जाते मैं चाहूंगा फिर से संतोष जी को एक छोटा सा पीस जो है डॉक्टर पूनम जी को डेडिकेट जरूर करें जाते जाते।
2: ओम शांति।
0: ओम शांति।

0: ओम शांति।
1: ओम शांति जी, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपको, थैंक यू। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, एक बार संतोष जी एंड डॉक्टर पूनम जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। तो सुनते
0: ओम
1: रहो।
0: शांति।
1: Yes.

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: हम याद रखें कि वो एक बार भी जब हमें गुस्सा आया, हम इस विश्व को दूषित कर रहे हैं। हम मन को, शरीर को, रिश्तों को, प्रकृति को दूषित कर रहे हैं। और अगर एक बार भी हमने आज क्रोध को त्याग कर शांति को धारण किया, तो हम सिर्फ अपने मन को सुकून नहीं, रिश्तों में प्यार नहीं, प्रकृति को सद्भावना नहीं, हम विश्व को सुंदर बनाने की सेवा कर रहे हैं। तो क्या हम सेवा करने के लिए तैयार हैं?
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आदियों से। आप सुनने जा रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम। वंदे मातरम सुनने वाले सभी श्रोता बंधुओं को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज आपको ऐसी नारी शक्ति से मिलवाने जा रही हूँ जिनका नाम है हेमलता गोयल। आप आबू रोड के रहने वाले हैं, आपने 8वीं तक पढ़ाई की है, आपकी उम्र 60 प्लस है और आपके अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं। घर परिवार को तो आप चलाते हैं, अच्छी तरह संभालते हैं, साथ ही साथ बच्चों को भी अच्छी परवरिश दी। कढ़ाई, सिलाई, बुनाई, गीत संगीत, डांस सभी का शौक है और विशेष करके सत्संग में जाना, भजन कीर्तन करना। वो भी तो कहते हैं ना कि नारी शक्ति में क्या नहीं होता है, नारी शक्ति में हट करके विशेषताएं होती है, तभी तो कार्यक्रम का नाम रखा है वंदे मातरम। तो आइए मिलवाते हैं। हेमलता जी नमस्कार।
1: नमस्कार
0: जी, आपका स्वागत है वंदे मातरम कार्यक्रम में।
1: जी हाँ, धन्यवाद।
0: हेमलता जी, आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि आप पहली बार इंटरव्यू देकर के खुश है या पहले कभी दिया?
1: नहीं, पहली बार देके खुश हूँ।
0: अच्छा, चलिए अच्छी बात है, एक नया अनुभव।
1: नया अनुभव है
0: जी। जी तो चलिए आपके बचपन की तरफ चलते हैं। वो कहते हैं ना, पिचपन में बचपन की बातें करें तो बड़ा अच्छा लगता है। तो आपका बचपन कहाँ बीता, कैसे बीता?
1: मेरा बचपन जोधपुर में बीता और बहुत अच्छा बीता, फ्रेंडों के साथ, सहेलियों के साथ। खूब घनश्याम जी मंदिर और मंदिर में जाके खेलना, कूदना, पढ़ाई करना, सिलाई बुनाई करना, बहुत अच्छा रहा 8वीं तक।
0: जी जी, आपकी चार फ्रेंड है?
1: चार,
0: आपने बताया, मेरे चार फ्रेंड के साथ बीता।
1: चार फ्रेंड है मेरे साथ
0: और पांचवे आप?
1: पांचवी में।
0: पांच पांडव। तो चलिए, आप कितने भाई बहन हैं, आपके माता पिता क्या काम करते थे, बताएंगे?
1: मेरे छह भाई है और एक बहन हूँ मैं, और मेरे पिताजी रेलवे में चेयरमैन थे।
0: तो क्या बात है, छह भाइयों की इकलौती बहन है आप, तो बहुत ही लाड प्यार मिला होगा आपको तो।
1: हाँ जी, बहुत लाड प्यार मिला,
0: स्वाभाविक है, हर डिमांड आपकी पूरी हुई होगी।
1: पूरी हुई, हर डिमांड पूरी हुई और आज भी हो रही है।
0: क्या बात है, आज भी पूरी हो रही है?
1: हाँ, आज भी पूरी हो रही है।
0: चलिए, ये बहुत अच्छी बात है, 60 की उम्र में आज भी डिमांड पूरी होना। नहीं तो कहते हैं कि भाइयों की शादी हो जाती है, भाभियां आ जाती है, फिर नंदों को भाई फर्क पड़ जाता है देने लेने में, लेकिन आज भी आपकी डिमांड पूरी हो रही है, बहुत अच्छी बात है, सुनकर के अच्छा लगा।
1: जी हाँ, धन्यवाद।
0: अच्छा, तो हेमलता जी, आप बता रहे थे कि छह भाइयों की इकलौती आप बहन है, आप सातों भाई बहन कैसे रहते थे?
1: सातों भाई बहन मिलके रहते थे, सब भाई मुझे प्यार करते थे। मैं चौथे नंबर की थी, तीन भाई मेरे से बड़े, तीन भाई छोटे, मैं पांचवे नंबर की थी।
0: अच्छा, तो फिर आपने पढ़ाई क्यों नहीं की?
1: पढ़ाई इसलिए नहीं की कि छोटे भाइयों को संभालना था, फिर आगे पुराने जन्म पढ़ाते नहीं थे इतना, फिर घर वाले बाहर नहीं निकालते थे, बंदिश बहुत थी, पहला जैसा जमाना अभी नहीं है।
0: इकलौती बेटी है तो चिंता भी रहती थी कि कहीं हमारी बिटिया के नजर नहीं लग जाए।
1: सही बात है।
0: ये तो मजाक थी, खैर माता पिता की जो सोच होती है वो होती है, ऐसा नहीं है।
1: जन्म कहाँ निकालते थे बाहर?
0: जी जी जी, पहले बहुत ही बंदिशें होती थी
1: बहुत,
0: पर आप तो जोधपुर जैसे शहर में थे, फिर भी
1: बंदिश थी ना। मेन बाजार में रहते हैं, हमारा मकान सिटी में ही है।
0: अच्छा, आपके पिताजी क्या काम करते थे?
1: मेरे पिताजी रेलवे में फोरमैन थे।
0: अच्छा अच्छा,
1: फोरमैन की पोस्ट पे थे पर।
0: जी जी, तो आपने जैसे 8वीं तक पढ़ाई की, तो आपके टीचर्स के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ कैसा व्यवहार था?
1: अच्छा व्यवहार था मेरा, टीचर के साथ में भी अच्छा था, फ्रेंड के साथ में भी। एक फ्रेंड तो ये बेटी सामने।
0: अच्छा, क्या बात है,
1: दोनों एक ही स्कूल में पढ़े।
0: तब तो आपके फ्रेंड का भी जरूर लेंगे, हम बात करेंगे आपके फ्रेंड से भी। हेमलता जी के फ्रेंड है, यही साथ में बैठे हैं, तो इनसे भी बात करेंगे, पहले हम हेमलता जी के अनुभव सुनेंगे। तो हेमलता जी, आप बता रहे थे कि बहुत ही अच्छा बचपन आपका गुजरा है, बीता है। आपके जमाने में कौन से गेम खेला करते थे?
1: हमारे जमाने में खो खो, चंगा पो और आंख मिचोली, सतोलिया, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल।
0: अच्छा, ये सारे गेम होते थे। आपने किसी में पार्टिसिपेट किया?
1: मैंने वॉलीबॉल में फर्स्ट डिवीजन आई।
0: क्या बात है, कौन सी क्लास में?
1: सेवंथ में।
0: फिर एट में भी गए?
1: एट्थ में नहीं गई थी फिर।
0: तो सेवंथ में फर्स्ट आई तो एट में क्यों नहीं गए?
1: एट्थ में नहीं गई ना, मेरी तबीयत खराब होने लग गई थी, बीमार बहुत रहने लग गई थी मैं, फिर इसके कारण मैंने स्कूल छोड़ दिया था 8वीं पास करके।
0: अच्छा अच्छा, तो 7वीं तक आप वॉलीबॉल खेलते थे?
1: वॉलीबॉल खेले, अभी भी है मेरे पास।
0: अभी भी वॉलीबॉल रखा हुआ है?
1: नहीं, वो कार्ड रखा हुआ है ना जो फर्स्ट मिला था,
0: सर्टिफिकेट,
1: सर्टिफिकेट और इनाम।
0: जी जी, सर्टिफिकेट तो वो कहते हैं ना कि प्राणों से भी प्यारा होता है।
1: प्राणों से भी प्यारा होता है, दिखाना पड़ता है ना भाई।
0: अपने पास सुरक्षित रहना चाहिए,
1: चाहिए। टीसी के साथ में ही देते हैं ना वो तो स्कूल में।
0: जी जी, तो आपने उसको संभाल के रख रखा, कभी काम आया?
1: कभी काम आता ही है ना, अभी तो किसी में काम लिया नहीं है मैंने।
0: अच्छा, चलिए, फिर भी एक मन को खुशी प्रदान करता है
1: ना, कभी मैंने जीता ही है।
0: जी जी, देखते हैं तो बातें याद आ जाती है स्टूडेंट लाइफ की,
1: लाइफ की।
0: अच्छा, और साथ ही साथ आप कह रहे थे गीत संगीत का शौक है, तो आप पढ़ाई करते थे तब गीत संगीत बोलते थे?
1: उस टाइम तो गाने ही चलते थे, भजन तो चलते नहीं थे। जब रेडियो रेडियो चलता था तो रेडियो में गाने आते थे तो वो मैं करती रहती थी साथ साथ, तो वजह से याद रह गए सारे।
0: नहीं, स्कूल में कौन से गीत गाते थे आप?
1: स्कूल में तो वही स्कूल के राष्ट्र गीत और सरस्वती के ऊपर और
0: जी जी देशभक्ति गीत, बहुत सारे गीत गाते हैं।
1: जैसे ये मनाते ना सरस्वती का फंक्शन बसंत पंचमी के दिन, उस पे भी प्रोग्राम में भाग लेती थी, सब कुछ नाच कूद में। और
0: तो चंदेलाइना सुनाएंगे आप?
1: हाँ। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही, जो खिल सके ना वो फूल हम है, तुम्हारे चरणों की धूल।

0: मेरा तो आवाज भी नहीं आती थी मेरे से, पर फिर पढ़ाई कैसे करती। मैं 3 महीने तक एडमिट रही थी हॉस्पिटल में। फिर मेरा ठीक हुआ, फिर पापा मम्मी ने कहा अब नहीं पढ़ाना बोले।
1: अच्छा, इसी वजह से आपकी पढ़ाई
0: पढ़ाई रुक गई मेरी, नहीं तो मैं आगे पढ़ने के लिए तैयार थी।
1: जी जी जी
0: मजबूरी थी मेरी, मेरी बीमारी के कारण मैंने पढ़ाई नहीं करी थी।
1: पढ़ाई में आप कैसे थे?
0: अच्छी थी, फर्स्ट डिवीजन आती थी हर विषय।
1: तो आपको बहुत दुख हुआ होगा पढ़ाई छूट गई।
0: पढ़ाई छूट गई तो मेरे को दुख हुआ था ना, आज मैं कहाँ की कहाँ पहुँचती नहीं।
1: स्वाभाविक है। जी जी जी हर एक के सपने होते हैं जी। तो हेमलता जी आपसे और भी बातचीत करेंगे, आपके और भी अनुभव सुनेंगे, लेकिन यहाँ समय हो चला एक गीत सुनने का। तो एक गीत सुनकर के पुनः लौट रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।
2: मेरी आंखों में सपने छोटे हो या बड़े, चुन लिए हैं मैंने क्यों जिद पे हो अड़े। मेरी आंखों में सपने

0: बहू बहू जल्दी तैयार हो जा, हमें डॉक्टर के पास जाना है।
1: जी आई माँ जी।
0: अरे जल्दी कर, इतनी देर से अभी अभी लगा रखा है।
1: जी माँ जी आ गई, चलिए।
0: नमस्ते डॉक्टरनी जी।
2: नमस्ते नमस्ते, बैठिए। जच्चा बच्चा दोनों ठीक है?
0: डॉक्टरनी साहिबा, हमें अपनी बहू का वो क्या कहते हैं जो टीवी पर देखकर पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, अपनी बहू का पता करना है।
2: सोनोग्राफी? मगर क्यों?
0: लड़की हमको नहीं चाहिए ना, इसलिए अगर पता चल जाएगा तो तुरंत निपटा देंगे।
2: मगर ऐसा करना तो गलत है। और बहू क्या तुम भी यही चाहती हो?
1: जी वो
0: अरे तू चुप रह बहू, तू क्या जाने।
2: देखिए भ्रूण हत्या एक कानूनन जुर्म है, इससे आपको उम्र कैद भी हो सकती है। और आजकल तो लड़कियां लड़कों से आगे बढ़कर काम कर रही हैं, जैसे सुनीता विलियम, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी और मैं खुद एक सफल डॉक्टर हूँ।
3: आजकल हमारे समाज में भ्रूण हत्या तेजी से बढ़ रही है, उसे हमें रोकना होगा। यह कानूनी अपराध है, इसके लिए आप सभी को उम्र कैद भी हो सकती है।
4: नारी की लचक में करुणा है, पर उसके हौसलों में धार है। हर युग में उसने साबित किया, हर युग में उसने

0: साबित किया, नारी ही असली शक्ति का आधार है, नारी ही असली शक्ति का आधार है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में हेमलता जी गोयल हमारे साथ बने हुए हैं। आपके काफी अनुभव बचपन के हमने सुने हैं, आइए इसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे। हेमलता जी पुनः स्वागत है आपका वंदे मातरम कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: तो आपके बचपन की बातें चल रही है, कैसा लग रहा है?
1: बहुत अच्छा लग रहा है। याद आ रहा है बचपन भी।
0: जी, बचपन याद आ गया। तो आप बता रहे थे कि आप प्रार्थना भी बोलते थे, आप काफी बीमार हो गए इस वजह से पढ़ाई नहीं कर पाए, तो जब आपकी तबीयत ठीक हुई तो फिर आपने कोशिश नहीं की कि अब मैं फिर से पढ़ाई शुरू करूं?
1: नहीं, कोशिश तो करी थी, पर घर वाले इतना लाड़ प्यार करते थे तो भेजने के लिए मना कर दिया। बोले नहीं, एक का एक बच्ची और तबीयत खराब हो जाएगी तो कौन संभालेगा।
0: अच्छा, इसलिए आपको भेजा नहीं?
1: इसलिए भेजा नहीं।
0: कभी कभी ऐसा हो जाता है, ओवर लाड़ प्यार मिलता है तो पढ़ाई आगे नहीं पढ़ पाते हैं।
1: सही बात है।
0: तो उस समय आपको कैसा लगा, जैसे आगे नहीं पढ़ाया आपको? ठीक है,
1: दुख हुआ ना उस समय कि भाई मैं और पढ़ती, पर घर वाले लाइक नहीं कर रहे थे, क्या कर।
0: और उस समय बचपना होता है, इतना सीरियसली नहीं लेते, वो तो जब एक एज होती तो पता चलता है पढ़ाई क्या है।
1: वो तो आगे बढ़ने के बाद अब महसूस हो रहा है हमको, आगे बढ़ते तो और कहीं पहुंचते, सर्विस करते, टीचर लाइन में जाते और कहीं जाते।
0: जी जी जी, हर एक का सपना होता है,
1: मजबूरी थी ना हमारी, क्या करें।
0: जी कोई बात नहीं, अब तो आपके 60 की उम्र हो गई है और आप भूल भी गए होंगे उन बातों को।
1: बातें भूल गए, अब तो यही याद आता, और सत्संग का।
0: जी जी, सत्संग का याद आता है। सही बात है, कहते हैं एक वानप्रस्थ अवस्था आती है, एक उम्र जब बढ़ती है तो अपने आप ही मन ईश्वर की तरफ लग जाता है, तो आप भी सत्संग की तरफ ज्यादा रुचि रखने लगे। अच्छा चलिए ये बताइए, जैसे आप बता रहे थे आपके 6 भाई है, आप इकलौती बहन है, तो भाई बहनों के साथ आप कुछ खेलते थे खेल?
1: खेलते थे ना, घर में खेलते थे भाई बहनों के साथ।
0: अच्छा, तो कौन सा खेल, हमको भी पता चले उस समय क्या?
1: उस समय तो यही थे ना, आंख मिचोली, छुपा छुपी, और खो खो खेलना, चंगा पो खेलना, भाइयों के रात में बैठ के खेलते थे बस, दिन में तो टाइम मिलता नहीं था।
0: तो आप मम्मी को हेल्प कराते थे घर के काम में?
1: घर के काम में हेल्प कराती थी, जब तो कोई बहू नहीं थी, मम्मी और हम ही थे अकेले।
0: जी जी, फिर आपके सामने ही भाभियां आ गई होगी?
1: मेरे सामने 3 भाभियां आ गई थी, उसके बाद मेरी शादी हुई।
0: जी जी, तो भाभियों के साथ कैसा व्यवहार रहा?
1: अच्छा व्यवहार, भाभियां तो बहुत प्यार करती थी, बहुत, मेरे कपड़े तक मेरी भाभी ही धोती थी शादी होने के बाद में भी।
0: जी जी जी, इकलौती ननंद है, सभी का प्यार मिला?
1: सभी का प्यार मिला, कभी कोई, कभी कोई, कभी वो।
0: जी, और वो कहते हैं ना कि भले कितनी भी बेटी प्यारी हो, लेकिन माताओं की आदत होती है बच्चों को शिक्षा और संस्कार देना, तो ससुराल जाएगी तो ये वो। तो आपको भी आपके मम्मी बीच बीच में शिक्षा संस्कार देते थे?
1: देते थे, घर का काम कराते थे, सिखाते थे, रोटी बनाना सिखाते थे, सब्जी रोटी चाय पानी सब मम्मी ने सिखाया था, भाभियों ने सिखाया, जब आज हम सही है यहाँ पे।
0: जी जी, और सिलाई कढ़ाई बुनाई ये कहाँ सीखी?
1: ये यही आके सीखा सारा। अच्छा, स्कूलों में सिखाते थे ना सिलाई के लिए बढ़ाई, वो तो सब कागज के वो बनाने सब स्कूलों में सीखा था।
0: अच्छा, तो स्कूल में सीख करके फिर आप घर पर बनाते थे?
1: घर पे बनाए, थैलिए बनाई, कसी देखी और सब कुछ बनाए, बैग बनाए और सामान बनाए।
0: जी जी जी, और आप कितने साल के थे और आपकी शादी हुई?
1: मैं 18 या 19 साल की थी जब मेरी शादी हो गई थी, 8th में।
0: 8वीं पास होने के बाद आपकी शादी हो गई?
1: मेरी शादी हो गई थी।
0: तो आपको बीच में गैप नहीं मिला थोड़ा घर पर रहने का?
1: नहीं, वैसे तो गैप मिला ना, उस समय तो मैं 15-16 साल की थी, 8वीं में पढ़ी जब, फिर 2 साल मेरे को घर पे रेस्ट करवाया ना, बीमार थी जो, उसके बाद बोलेगा अब शादी कर देते हैं, इसकी पढ़ाई कर देते हैं, ये तो और कुछ हो जाएगा इसको, ऐसा सोचते थे घर वाले,
0: पढ़ाई कर देंगे तो कुछ नहीं होगा।
1: ऐसा पुराने जमाने में ऐसे लोग सोचते थे ना, तो फिर 80 में मेरी शादी हुई थी।
0: अच्छा, तो 80 में फिर आपकी शादी हो गई?
1: 1980 में मेरी शादी हुई थी।
0: तो शादी के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आए?
1: शादी के बाद तो वही गृहस्थी संभालो, घर का काम करो, बच्चों को संभालो।
0: नहीं, बच्चे तो बाद में हुए होंगे, आपके हस्बैंड क्या काम करते थे?
1: हस्बैंड प्रिंसिपल है।
0: अच्छा, प्रिंसिपल है, मतलब आपका सपोर्ट करते थे?
1: हाँ, बहुत सपोर्ट करते हैं, आज भी करते हैं, अभी भी करते हैं, सब में सपोर्ट करते हैं।
0: और घर में उस समय कौन कौन थे जब आप शादी करके आए? तब
1: मैं शादी करके आई जब मेरी जेठ जेठानी और हम दोनों, मैं और मेरा हस्बैंड, 4 जने थे।
0: सास ससुर नहीं थे?
1: ससुर नहीं थे मेरे,
0: पहले ही उनकी डेथ हो गई थी।
1: पहले ही उनकी डेथ हो गई थी, मेरे हस्बैंड 12 महीने के थे जब भी उनकी डेथ हो गई थी।
0: सास ससुर दोनों की?
1: सास तो थी, ससुर पहले गुजर गए थे, फिर इन्होंने पढ़ाई करी जब सास भी गुजर गई थी, एसटीसी करी माउंट आबू से, फिर जब सास गुजर गई थी फिर इनकी नौकरी लग गई एसटीसी करने के बाद, फिर हमारी शादी हुई।
0: तो फिर आपके जेठ जेठानी ने आपका सारा काम किया?
1: सारे काम उन्होंने किया, जेठ जेठानी।
0: जी जी,
1: वही सास ससुर के बराबर ही है मेरे।
0: जी जी, आपने तो उन्हीं को देखा है।
1: उन्हीं को देखा है मैंने, यही है सास ससुर।
0: बिल्कुल, समझदार के लिए तो यही है,
1: यही है। हम कहाँ जाएंगे, नहीं तो किसके यहाँ जाएंगे, शादी करी तो उनको ही सम्मान देना है ना।
0: सही बात है। आप जैसे शादी करके अपने ससुराल में आए तो आपने देखा कि जेठ जेठानी आपके सास ससुर है, तो कैसे रहते थे आपस में, रिश्ता कैसा रहा आपका आपके जेठ जेठानी के साथ?
1: हमारा दोनों का रिश्ता अच्छा रहा था, आपस में साथ में ही निभाए 20 साल 25 साल तक। फिर वो पोस्ट मास्टर थे तो इनका बार बार ट्रांसफर होता था जेठ जी का, तो फिर मेरे को अकेला ही रहना पड़ता था इनके साथ में। उनके भी बच्चे नहीं है, जेठ जी के भी एक ही लड़की थी जो उसकी शादी कर दी।
0: अच्छा, और आपके कितने बच्चे हैं?
1: मेरे दो लड़के हैं, दो लड़कियां हैं।
0: चार बच्चे हैं?
1: चार बच्चे हैं।
0: जब आप शादी करके आबू में आए, एक तो जोधपुर इतना बड़ा शहर, फिर जोधपुर से आप एक कस्बे में आए, तो यहाँ आपका मन लग गया?
1: नहीं लगा था मन, बहुत अभी तो बहुत अच्छा हो गया, पहले तो वीरान था पूरा। मैं शादी करके आई जब कुछ भी नहीं था, और मैं तो देख देख के रोती थी, खाना भी नहीं खाती थी कि मैं कहाँ आ गई हूँ यहाँ पे, मेरे को तो जोधपुर छोड़ के आओ, ऐसे करती थी। फिर धीरे धीरे सेटल हुए, फिर ये नौकरी पे जाते, फिर मैं अकेली रहती दिन भर, जब तो बच्चे ही नहीं थे और नई नई किससे बात करूं मैं, तो मैं अकेली कमरा बंद करके बैठी रहती थी, रोती थी अंदर ही अंदर।
0: आपके माता पिता ने ये नहीं देखा कि बच्ची इतनी लाड़ प्यार से पली हुई है, एक गांव में दे रहे हैं, उस समय आज तो फिर भी कस्बा है, उस समय तो आप कह रहे हैं कि वीरान था, तो उस समय कुछ था नहीं, तो उनको थोड़ा सा ये नहीं लगा कि बच्ची कैसे सेट होगी वहां?
1: उनको बहुत लगा था, उन्होंने तो बिल्कुल मना कर दिया था, चार बार रिश्ता तोड़ा है चार बार।
0: अच्छा,
1: मेरी मम्मी ने तो बिल्कुल कह दिया मेरी एक ही लड़की है, मैं बाहर नहीं दूंगी, रोने लग गई थी वो भी, पर अब किस्मत ने यहाँ लाया साथ तो फिर क्या करें, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था कि मैं बाहर नहीं दूंगी।
0: जी जी, फिर कैसे हुआ यहाँ पर आपके पिताजी?
1: अगले ने भी जिद करी, इन्होंने भी जिद करी कि नहीं हमको लड़की यही पसंद है, हम तो यही करेंगे सब।
0: और आपके पिताजी भाई लोग का फोर्स था क्या?
1: सपोर्ट दिया ना, फिर क्या करें कि भाई करो जिद कर रहे तो। बाकी मेरे खानदान में कोई बार नहीं है, मैं अकेली बार हूं।
0: तो उस समय आपकी क्या प्रतिक्रिया रही?
1: उस पुराने जमाने में तो हमसे बात ही कहां करते थे पहले, वो तो बड़ों ने जो कर दिया वो सही है, हमने ना आदमी को देखा ना किसी को देखा।
0: अच्छा, देखने का सिस्टम था ही नहीं, तो देखा ही नहीं?
1: मेरी शादी के टाइम तो सिस्टम था ही नहीं, पूछते ही नहीं थे।
0: जी जी जी, बस जो बड़ा ने किया वो पत्थर की लकीर,
1: पत्थर की लकीर हो गई।
0: तो जब आप यहाँ पर आए, आपने देखा कि वीरान है, मतलब मन नहीं लग रहा है, तो आपके हस्बैंड से आपने बात नहीं की कि कहीं अच्छे शहर में सेट हो जाए?
1: नहीं, तो वो नौकरी का इशू था ना भाई, बाहर नौकरी तो यहीं लगी हुई थी ना, फिर बार बार इनके ट्रांसफर होते रहते थे, तो फिर ये अप डाउन करते थे पास में, अनादरा है जैसे, आतल है, चार पांच जगह इन्होंने नौकरी करी, फिर मावल, ये तो मावल तो आबू रोड में ही था जो चल गया।
0: जी जी, छोटे छोटे गाँव में,
1: गाँव में डीन की प्रमोशन होता रहता था बार बार।
0: जी जी, इसलिए आप जा नहीं पाते, बड़े शहर में हो तो आप चले जाओ।
1: चली जाती, नहीं तो मैं छोटे शहर में मैं क्या करूंगी जाके, जब एक जगह ही अपना रहना है तो, फिर दो बच्चे छोटे थे दोनों, एक इनको लेके कहाँ घूमती इधर उधर।
0: और आपके जेठ जेठानी बाहर रहते थे?
1: जेठ जेठानी का ट्रांसफर हो जाता था हर 3 साल में, तो फिर वो बाहर जाते थे, 3 साल यहाँ रहते, 3 साल बाहर रहते थे।
0: अच्छा, इसलिए आप बिल्कुल ही अकेले रह जाते
1: हो? गई थी मैं बिल्कुल, छोटे से घर में रहती थी फिर।
0: तो आपके जेठ जेठानी को बोला नहीं कि मैं अकेले, मतलब मेरा मन नहीं लगता है कि आप लोग ट्रांसफर मत होना?
1: कभी तो मजबूरी थी ना, नौकरी थी उनकी भी, तो ट्रांसफर होता था ना, उनके 3 साल फिक्स होते थे, हर 3 साल में ट्रांसफर हो जाता।
0: जी जी, 3 साल में आपको जाना ही है,
1: चाहे आप कैसे भी रहो।
0: जी। और जैसे आपको सिलाई कढ़ाई बुनाई आती थी, तो आप अकेले पढ़ते थे कि जैसे आपके हस्बैंड जॉब पर चले जाते थे, आप अकेले हो घर में, तो आपने कैसे समय व्यतीत किया? इन चीजों में ध्यान दिया, सिलाई कढ़ाई बुनाई में, भजन सत्संग में, या फिर कैसे आप भाई रोज अकेले रहना रोना वो तो अच्छी बात नहीं है।
1: नहीं तो घर का काम तो करना पड़ता था ना मेरे को पीछे, जैसे घर का काम करना, बच्चों को रखना, ऐसे ये स्वेटर वेटर बना लेती, टोपे मोजे और ये बनाती बैठे बैठे सर्दी में, फिर बच्चों को रखना भी तो मेरे को ही पड़ता, जब इनको सुला के फिर घर का काम करती। पहले नौकर चाकर कहाँ थे, कोई संभालने वाला भी नहीं, सास नहीं, जेठानी नहीं, ननद नहीं, कौन संभालता।
0: जी बिल्कुल, तो इन चीजों में ध्यान दिया और जरूरी भी है, और बच्चे होते हैं जिस घर में वहां तो टाइम कैसे बीतता पता ही नहीं चलता।
1: इसीलिए मैंने बच्चों के साथ ही जिंदगी लगाई, फिर धीरे धीरे ट्यूशन पढ़ाने लगी बच्चों को, छोटे बच्चों को, 5वीं तक बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, तो दिन उसमें पूरा हो जाता था मेरा।
0: क्या बात है, आपने 8वीं तक पढ़ाई की और आज के युग के 5वीं तक के बच्चों को आप पढ़ा लेते?
1: पढ़ा लेती थी सारा,
0: क्योंकि आपके समय में तो इतनी अंग्रेजी नहीं थी।
1: मैं तो अंग्रेजी मीडियम से ही पढ़ी हुई 8वीं तक, तो मेरे को इंग्लिश तो बहुत अच्छी आती है।
0: अच्छा चलो ये आपका अच्छा रहा। तो आप 5th तक के बच्चों को आराम से पढ़ा लेते?
1: पढ़ा लेती थी, पहले तो इतनी हाई फाई किताबें नहीं थी ना छोटे बच्चों की, 5वीं तक तो नॉर्मल ही था, इंग्लिश भी कहा ABCD और यही होते थे, स्पेलिंग है वही होती थी, अब ये कोर्स तो अब भारी हुए।
0: हाँ जी हेमलता जी, आपके अनुभव और भी सुनेंगे, लेकिन यहाँ पर समय हो चला है एक ब्रेक लेने का, तो एक ब्रेक लेकर के पुनः लौट रहे हैं, बने रहिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: लाइफ का जो स्टाइल है उसको लाइफ स्टाइल कहते हैं। लाइफ स्टाइल इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी आर ईटिंग, ड्रिंकिंग, वेयरिंग। लाइफ स्टाइल इज अबाउट व्हाट वी आर थिंकिंग, स्पीकिंग, बिहेविंग। दैट्स माय लाइफ स्टाइल।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: ममता की मूरत भी वही, शक्ति का स्वरूप भी वही। ममता की मूरत भी वही, शक्ति का स्वरूप भी वही। नारी को कमजोर कहने वालों, नारी को कमजोर कहने वालों, हिम्मत करो, पहले उसे समझो तो सही। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में हेमलता जी गोयल हमारे साथ बने हुए हैं। हेमलता जी के काफी अनुभव हम सभी ने सुने हैं, आइए इसी कड़ी में और भी इनके अनुभव सुनेंगे। तो हेमलता जी, आप जैसे बता रहे थे कि आप अकेले पड़ जाते थे, तो पहले तो आपने शुरुआत में तो आप अकेले बैठ करके थोड़ा उदास होते थे, थोड़ा रोना भी आ जाता था। फिर आपने क्या सोचा कि बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊं, सिलाई कढ़ाई बुनाई करूं, तो ये किसी ने आपको कहा या अंदर से आपको सूझा?
3: नहीं, मेरे अंदर से ही सूझा था कि मैं अकेली किससे बात करूं। मैं राजस्थान से आई हुई यहाँ अब रोड में, फिर मैं किसी को जानती नहीं थी, ना किसी से बात करती थी। तो फिर अंदर ही अंदर मैंने यही सोचा कि बच्चे आएंगे तो मैं उनके साथ मनोरंजन भी कर लूंगी।
2: अच्छा सोचा। तो आपने सबसे पहले अपने हस्बैंड से बात की होगी?
3: हाँ, हस्बैंड से बात की ना। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, यही चालू कर दो, मैं पीछे रहता नहीं हूँ घर पे, और अकेली पड़ जाती है तो फिर साथ में यही।
2: तो इस तरह आपने ट्यूशन की शुरुआत की। जी, बच्चे आपके कितने साल बाद हुए?
3: बच्चे मेरे एक साल बाद हो गए थे, 81 में बड़ा वाला हो गया था।
2: और एक साल तो कहते हैं ना, ससुराल पियर आने जाने में भी समय,
3: आने जाने में ही बीत जाता है एक साल, तो फिर मेरे हो गया था।
2: जी जी, तो हाँ, आने जाने में कैसे समय बीत गया पता ही नहीं चला। फिर थोड़े बहुत आपके जेठानी भी रहे होंगे?
3: जी हाँ, साथ में रहे ना वैसे तो।
2: जी, तो जैसे आप बता रहे थे कि आपकी 18-19 साल की एज में शादी हुई, आपको सारे काम आते थे या आपकी जेठानी ने सिखाया यहाँ?
3: ना, यहाँ आके सीखी थी मैं, मेरे को साड़ी पहननी नहीं आती थी, सब उन्होंने सिखाया मेरे को। अब पढ़ाई करते हुए अपन साड़ी कहाँ पहनते, वही सलवार सूट और जीन्स टॉपर और यही पहनते थे, तो साड़ी मैंने यहाँ आके सीखी।
2: जी जी, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो पहले उनका अनुभव नहीं होता है, बाद में ही होता है। जब हम कहते ना कि जमीन पर उतरते हैं और जब घर गृहस्थी में रचते पचते हैं, तो बहुत सारी चीजें आपने यहाँ पर सीखी। तो जैसे आप कह रहे थे कि कढ़ाई बुनाई, ये आपने मायके सीखा है या सीखा?
3: ये तो मैं स्कूल में सीखी थी सारा।
2: हाँ जी हाँ जी, आपने स्कूल का बताया था। और आपने बच्चों का ट्यूशन आपके बच्चा हो गए उसके बाद शुरू किया या पहले ही शुरू कर दिया?
3: नहीं, पहले ही शुरू कर दिया था।
2: तो बच्चे लोग आते थे?
3: आते थे, छोटे बच्चे आते थे ना, सब आते थे।
2: तो इसकी एड कैसे की आपने?
3: एड तो जब तो मैं फ्री थी ना उस समय, फिर बच्चा होने के बाद वापस बंद कर दिया था, फिर थोड़े बड़े हो गए 2-3 साल के, फिर वापस चालू कर दिया।
2: जी, लेकिन कैसे लोगों को पता चला कि आप ट्यूशन पढ़ाते हैं?
3: वो तो टीचर थे ना हमारे घर से, तो उन्होंने बताया, और मोहल्ले में भी पता था सब कि भाई इनके घर से प्रिंसिपल है, तो उन वो आते थे पूछने मोहल्ले वाले और क्या पढ़ा दोगे क्या। पुराने जमाने में तो इतना ट्यूशन का कहाँ था, पहले छोटे बच्चों को घर पे ही भेजते थे।
2: जी जी, ट्यूशन का इतना क्रेज नहीं था, लेकिन
3: अब तो उसमें जाते हैं सब लाइब्रेरी में, तो घर वाले को कौन पूछे, पढ़े लिखे ऐसे ही बैठे रहते।
2: जी जी, तो आपका टाइम पास हो जाता था और आपकी भी पढ़ाई वापिस रिपीट हो जाती थी?
3: जी हाँ, वापस रिपीट हो जाती, वो नॉलेज भी रहता ना कोई चीज का पढ़ाने से कि भाई इसको ये पढ़ाना, इसको ये पढ़ाना।
2: जी, और आपके जैसे बता रहे थे कि आपके 4 बच्चे हैं, तो कैसे आपने बच्चों की परवरिश की अकेले हाथ, क्योंकि आपके जेठानियां रहते नहीं थे, अकेले आपको रखना, आपके हस्बैंड भी पूरे दिन झोप पर रहते थे, तो कैसे उनका पालन पोषण किया आपने?
3: मेरा बड़ा वाला तो जोधपुर हुआ था, तो 5-6 महीने तो मैं उसको वहीं से करके लेके आई थी, फिर यहाँ आके फिर जेठानी ने थोड़ा रखा, थोड़ा हमने संभाला, ऐसे करके साल भर का हो गया वो बड़ा। फिर धीरे धीरे परवरिश करती रही, फिर 83 में दूसरा नंबर का लड़का हुआ, 83 में, और 90 में दोनों गुड़िया हुई, ट्विंस।
2: अच्छा, ट्विंस हुई?
3: ट्विंस हुई दोनों मेरी गुड़िया।
2: ओ, ट्विंस को तो रखना बहुत मुश्किल है।
3: तो फिर काम वाली भाई रखी थी ना, मालिश वाली और सब, फिर 2 को तो मैं कैसे संभालती, मेरे पास कोई है ही नहीं, कोई सास नहीं, कोई देवर नहीं, कोई जेठ नहीं,
2: बहुत जने क्या करते, ट्विंस होते तो एक को पियर छोड़ देते, एक को अपने पास रखते, तो आपने ऐसा तो नहीं किया?
3: नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने मेरे बच्चों को मैंने ही परवरिश की दोनों की।
2: आपके पियर वालों ने तो कहा होगा एक बच्चे को छोड़ दो।
3: आई थी ऐसे तो, मम्मी आई थी रहने के लिए, भाई 2-4 महीने रहती फिर चली जाती, फिर आती फिर चली जाती। उनका भी बुढ़ापा था तो फिर इतना सहन नहीं होता ना। फिर मैं काम वाली लगा दी थी मेरे, वो रखते थे फिर सब, और दोनों बच्चे संभालते थे गुड़िया को जब मैं खाना बनाती।
2: जी आपके दोनों बेटे थोड़े बड़े हो गए?
3: बड़े हो गए थे ना मेरे, एक 8 साल का था, एक 10 साल का था, तो दोनों में उनमें ज्यादा फर्क नहीं रहा, उनमें 2 साल का ही डिफरेंस था, 2 साल बाद दूसरा हो गया था, इनमें ज्यादा 10 साल का डिफरेंस रहा था।
2: अच्छा, दोनों बेटियां जो हुई और बेटा के बीच 10 साल का गैप?
3: 10 साल का गैप है, ये 90 में हुई थी, वो छोटा वाला 83 में हुआ था और बड़ा वाला 81 में हुआ था, तो 2 साल का उनके गैप रहा और इनके साथ 10 साल का रहा।
2: तो बच्चे थोड़े रखने जैसे हो गए, बड़े हो गए?
3: बड़े हो गए थे रखने जैसे, तो दोनों गुड़िया को रखते थे, स्कूल भी जाते थे बच्चे दोनों।
2: जी जी जी, हाँ स्कूल भी जाते थे, फिर वो जाते थे उस समय आप रखते, आपने वैसे ही काम वाली माई लगा रखी थी?
3: रखी थी, और फिर इसके पापा भी जाते सुबह, उनका टिफिन बना के देना। काम तो बहुत मजबूरी से, बहुत दुखी से कराए, आज कहीं जाके सुख आया है।
2: कहते हैं ना दुख सुख जीवन के साथ चलता है,
3: जोड़ा होता है ना दोनों का ही।
2: जी जी, 4 बच्चों के खैर अकेले हाथ परवरिश करना बहुत ही मुश्किल होता है, और फिर आप इतने लाड़ प्यार से पियर में पले हैं तो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कहते हैं ना घर में भतीजे भतीजे को बड़ा किया हो, तो उनके लिए थोड़ा सरल है?
3: सरल है, कराना बड़े को भतीजे भतीजे, 3 की शादियां हो गई थी मेरे से पहले, तो उनके भी तो बच्चे थे ना, उनको संभालना, सारा घर का काम देखना सब करती थी मैं,
2: तो फिर आपकी थोड़ी प्रैक्टिस थी?
3: प्रैक्टिस थी मेरी कि भाई बच्चों को कैसे संभालना है,
2: इसलिए इतना मुश्किल नहीं लगा?
3: इतना मुश्किल नहीं लगा, गृहस्थी संभालना मुश्किल नहीं लगा।
2: जी जी, लेकिन जब टिफिन बनाना होता है एक साथ में बना के देना पड़ता, उस समय मुश्किल होता?
3: क्या मैं तो मुश्किल ही, भाई बनाना तो अपने को ही है ना, दूसरा थोड़ी बनाएगा।
2: बिल्कुल, 3 जनों का टिफिन, फिर 2 बच्चों को संभालना,
3: बच्चों को संभालना सारा।
2: जैसे आपने कहा कि काम वाली बाई लगाई आपने, तो काम वाली बाई क्या करते थे, बच्चों को खिलाने के लिए लगाई या घर के काम में?
3: दोनों काम करती थी काम वाली बाई, बच्चों को भी रखती थी और घर का काम भी करती थी, पूरे दिन के लिए लगा रखी थी। जैसे बच्चे सो रहे तो भाई घर का काम कर लेती, बच्चे उठ गए तो उनको संभाल लेती, एक को मैं संभाल लेती, ऐसे करके 5 साल तक उनको बड़ा किया। 2 साल तक तो मैं पियर ही नहीं गई, बाहर ही नहीं निकली घर से, 2 बच्चों को लेके कैसे जाऊं।
2: तो फिर आपके पियर वाले मिलने आते आपसे?
3: आते थे ना पियर वाले मिलने, आते थे कभी भैया भाभी आ जाते, कभी मम्मी आ जाती, कभी कोई आ जाता।
2: पर आपके तो जैसे हस्बैंड के प्रिंसिपल की जॉब थी, तो छुट्टियों में तो छुट्टियां ही छुट्टियां, उस समय जा सकते थे?
3: तो 1.5 महीने की छुट्टी पड़ती ना जब, तो फिर बच्चों को कैसे संभालना, बाहर कैसे लेके जाना दोनों बच्चों को। आगे तो कोई गाड़ियां वाड़ियां कोई सुविधा नहीं थी, वही बस में जाओ या ट्रेन में जाओ, फिर 80 का पात्र बनता, इसलिए मैं तो मैंने कहा मेरे तो कहीं नहीं जाना 2 साल तक।
2: अच्छा, नहीं आपके हस्बैंड भी तो साथ में आ सकते थे ना?
3: आ सकते थे, पर बच्चों को तो मेरे को ही संभालना था ना भाई, तो अब एक को दूध पिलाऊंगे दूसरे को।
2: अच्छा, इसलिए आप नहीं जाते
3: नहीं
2: थे?
3: गई मैं 2 साल तक, कहीं नहीं गई, घर से बाहर ही नहीं गई मैं।
2: चलिए हेमलता जी, फिर से समय हो चला एक गीत सुनने का, तो एक गीत सुनकर के पुनः लौट रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं, कार्यक्रम अभी बाकी है, तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।
4: समय रिसागे उदय सिंगी मोटियार होवण दागे, वारी रजपूती मरोड़ और सांगारी शक्ति उदयरे बाजुओं में देखण दागे, उठीने मेवाड़ री प्रजा सामंत और जागीरदार बनवीर रे आतंक सू घणी धापियोड़ी ही दुखी हुई, छेवट मेवाड़ और मारवाड़ रा कई मानिता सरदार भेड़ा होइर गुप्त मंत्रणा करता हा, उन समय उन्होंने ठा पड़ी कि मेवाड़ी सूरज उदय सिंह जिंदा है, पन्ना रे बलिदान री बातां घर घर होवण लागी। जद मेवाड़ रा सरदार ने पतो लागो कि उदय सिंह आशा सहारे घरे है, तद सरदार चुंडावत, सरदार महीदास, केलवारा सामंत जग सिंह, बागोर सरदार सांगा, सोनगढ़ रा अखय सिंह और सांचोर रा सरदार पृथ्वीराज भेड़ा होइर कुंभल मेर गया, सगड़ा मिलुर उदय सिंह रो राज तिलक करियो, एण अवसर माथे सोनगढ़ रा शासक अखय सिंह आपरी बेटी रो ब्याह उदय सिंह जी साथे करियो।

0: गौरवशाली गुजरी उदय सिंह रखवाल माँ ममतारी मूर्ति तू शक्ति प्रणपाल तू शक्ति प्रणपाल बलिदानी मायड़ थारो जीवन गीता सार पन्ना धाय पड़के है सूरज रहे उन्हें
1: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
2: कृपया प्लेटफॉर्म पर साफ सफाई रखें, कचरा कचरे के डिब्बे में ही डालें व स्टेशन परिसर को साफ सुथरा रखने में रेलवे को मदद करें, धन्यवाद।
1: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
3: नारी की नजरों में दुनिया प्यार और परवाह से भरी, नारी की नजरों में दुनिया प्यार और परवाह से भरी, पर जब बात हक की आए तो वो चट्टानों जैसी अड़िग खड़ी, तो वो चट्टानों जैसी अड़िग खड़ी। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम और वंदे मातरम में हेमलता जी हमारे साथ बने हुए हैं। आपके काफी अनुभव हमने सुने हैं और हम पूछना चाहेंगे हेमलता जी से कि जैसे हेमलता जी आपने बताया कि आपके ट्विंस बेबियां थी, दोनों गुड़िया थी, तो 2 साल आप मायके नहीं गए। परिवार में कहते ना कि कहीं शादी ब्याह भी होते हैं, कहीं कोई प्रसंग भी होता है, तो फिर सारे आपने छोड़े?
4: सारे छोड़े मैंने, मेरी सारी इच्छाएं खत्म कर दी थी, मैंने कहा कहीं नहीं जाऊंगी 2 साल।
3: लेकिन 2 साल में भी कहां बच्चे बड़े हो पाते हैं?
4: फिर भी बैठने लायक उठने लायक तो हो ही जाते हैं ना बच्चे बड़े, जैसे चलना फिरना या कोई गोदी भी ले सकता है, और इतने से छोटे बच्चे को लेके तो कोई संभाल नहीं सकता ना।
3: जी जी, फिर तो कोई भी गोदी में ले ले तो फिर जा सकता
4: है। बच्चे को तो कोई भी गोदी में उठा सकता है, कोई भी घुमा सकता है, घूम जैसे हो जाते बच्चे 2 साल के।
3: जी जी, तो 2 साल के बाद आपने आना जाना शुरू किया?
4: शुरू किया 2 साल के बाद।
3: और अभी बच्चे कितने बड़े हैं?
4: अभी तो शादियां हो गई, उनके बच्चे भी हो गए 4ों के।
3: क्या बात है, तो अभी तो आप दादी नानी बन गए।
4: नानी बन गई ना,
3: तो अपनी जिम्मेदारियों से फ्री हो गए।
4: कहां जिम्मेदारियां, तो और बढ़ती जाती है, कभी इसका कभी उसका कभी बेटों का।
3: कहते ना मूल से भी ब्याज प्यारा लगता
4: प्यारा होता है।
3: तो फिर भी अभी आप काफी हद तक फ्री है?
4: फ्री है, काफी हद तक तो फ्री है। फिर घर की स्थिति ऐसी है ना, मेरे पति को कैंसर हो गया तो उनके तकलीफ है, उनको खाने पीने का टाइम टाइम दवाई देना सारा देखना पड़ता है, बच्चे छोटे हैं मेरे, दोनों बच्चों के डायलिसिस हो रहा है, देख किडनी की प्रॉब्लम है जो।
3: अच्छा, पोते पोती के?
4: पोते पोती को।
3: अच्छा, तो ये शारीरिक व्याधियां आ गई?
4: हाँ, ये परेशानियां हो गई ये सब।
3: जी जी, तो आपका समय सेवा करने में जाता है?
4: करने में ज्यादा लगता है मेरा समय, इसलिए मैं किसी को टाइम नहीं दे सकती बाहर, मजबूरी में इधर उधर जैसे संगीत में चली जाऊं या भजन में या विश्वविद्यालय में आ जाती हूँ टाइम।
3: जी जी, सत्संग में आप थोड़ा सा समय देते हैं?
4: हाँ, ज्यादा नहीं, बुधवार 11 को बस, 2 बार।
3: अच्छा, या तो बुधवार या 11,
4: दोनों में से एक दिन जाती हूँ, जब जब ये बच्चे घर पे रहते हैं जब जाती हूँ, नहीं तो नहीं जाती।
3: अच्छा, सभी साथ में है, दोनों बहुए साथ में?
4: सब साथ में, सब साथ में।
3: तो बच्चों का कैसे हो गया, बचपन से था, जन्म से?
4: नहीं था, ये तो इनकी वो क्या बोलते रहे, जेनेटिक प्रॉब्लम हुई है।
3: अच्छा, और आपके हस्बैंड को कितने साल से कैंसर है?
4: मेरे हस्बैंड को तो 5 साल हो गए, कोरोना में हुआ था।
3: अच्छा, कोरोना के समय हो गया?
4: ऑपरेशन करवा दिया, वो तो था जो सारा दांत में कैंसर हो गया था, तो हमने तो पूरा जबड़ा ही निकलवा दिया एक साइड का, ना बड़े आगे ना कुछ हुए।
3: तो कभी बीड़ी सिगरेट या तंबाकू खाते थे क्या?
4: अच्छा नहीं, बाजार का नाश्ता तक नहीं करते मेरे हस्बैंड।
3: फिर भी कैंसर हो गया? तो अभी ठीक है?
4: हाँ अभी ठीक है।
3: तो अभी उनकी इतनी जिम्मेदारी नहीं है?
4: नहीं, जिम्मेदारी तो है ही ना, अभी उनका सारा खाना बनाना, लिक्विड लेते हैं, खा नहीं सकते, एक तरफ का जबड़ा निकला हुआ तो एक तरफ चबा नहीं सकते, फिर उनको लिक्विड बना के देती हूँ, जूस बना के देती हूँ, पेजी बना के देती हूँ टाइम टाइम से, फिर उनको दवाई देना।
3: जी जी जी, पर कहीं मान लीजिए आपको अंदर बाहर जाना पड़ता है तो बहुए संभाल लेती
4: है? बहुए संभाल लेती है, और टाइम से अगर जो होता है तो मैं करके चली जाती हूँ, नहीं तो बहु संभाल लेती है।
3: जी जी जी, और आपके बच्चे क्या करते हैं, बेटे बेटियां जॉब करते हैं, उनको कितना पढ़ाया आपने?
4: मेरे बच्चे, छोटा वाला बेटा तो मेरा एक्सियन है PhD में, बड़ा बेटा MBA करा हुआ है, वो शेयर मार्केट का काम करता है, बड़ी बहू फार्मेसिस्ट है उदयपुर में मेडिकल कॉलेज में, और दोनों बेटियां MA BEd करी हुई है।
3: अच्छा, तो बेटियां भी जॉब करते हैं?
4: नहीं, जॉब नहीं करती अभी, दे रही है, फाइट दे रही है।
3: जी जी, लेकिन अच्छा पढ़ा लिखा है। अच्छा दिया,
4: सारा परिवार पढ़ा लिखा है सारा।
3: तो आपका कमी खली वो आपने अपने बच्चों में पूरी कर दी?
4: कर दी, उन्होंने पूरी कर दी मेरी, सारे जीवन में खुशियां दे दी, सब कुछ, नौकर चाकर बंगला गाड़ी सब, सारी खुशियां दे दी उन्होंने।
3: जी जी जी, तो अभी आप अपने जीवन में खुश है?
4: खुश हूँ मैं, बिल्कुल, बहुत खुश हूँ मेरे जीवन।
3: जी, तो आप हमारी जो बहनें सुन रही है, जो सीनियर सिटीजन बहनें हैं 60 प्लस वाली, उनको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कितनी बार क्या है कि महिलाओं के जैसे सारी जिम्मेदारियों से निवृत्त हो जाती, लेकिन सास बहू के किटपिट होती रहती, तो आप क्या कहेंगे?
4: नहीं, हमारे कभी सास बहू में किटपिट नहीं हुई है आज तक।
3: तो कैसे आप बहुओं को किस नजर से देखते हैं?
4: बेटी की नजर से देखते हैं, और क्या करें। जब अपने को सुखी रहना है तो अगले को जैसा ढलना चाहिए इंसान। और मेरा यही निवेदन है कि सभी बहनें 60 से ऊपर से हो गई है, तो यही निवेदन है कि आप भी अपने जीवन अपनी खुशी के लिए सबको त्याग दो। किसी को ये मत कहो कि तू मेरी बहू है, तू मेरा वो है। अपन खुद मम्मी बन के रहो सबके साथ में। तो आपको भी यही कहना है मेरा कि आप भी ऐसे ही जीवन में जियो तो खुश रहोगे। आज के जमाने में बहुओं को टोका टोकी करना ही नहीं, ना करने से चार बात अपने को सुनने को मिलेगी। इसलिए मुंह को बंद रखो, आंखों से देखो और हंसते रहो।
3: क्या बात है। बहुत ही अच्छा आपने मैसेज दिया है कि 60 प्लस वाली बहनें जिनके घर में बहुएं आ चुकी है, उनके साथ प्यार से रहो, ज्यादा टोका टाकी न करो, ताकि बैलेंस बना रहे और घर में शांति बनी रहे, माहौल अच्छा रहे। तो हेमलता जी, बहुत बहुत आपका आभार कि आपने बहुत ही सुंदर अपने जीवन के अनुभव शेयर किए, रेडियो मधुबन को समय दिया और हमारे सभी श्रोता बंधुओं के साथ आपने अपने अनुभव शेयर किए, इसके लिए
4: धन्यवाद।
3: आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदे मातरम। वंदे मातरम में हेमलता जी गोयल हमारे साथ बने हुए थे। आबू रोड से है आप ने भले पढ़ाई 8वीं तक की है, लेकिन आपके नॉलेज

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माई विलेज माई एरिया। सही में नाम जब सुनते हैं अपना गांव और अपना अंचल, कितना खुशी महसूस होता है। जिस गाँव और अंचल में हमें रहे, पले, बड़े और यहाँ तक पहुँचे, वो गाँव का अवदान, जो देन हमारा प्रति, उसको रिटर्न देने के लिए हमें हमेशा तत्पर रहते। कभी भी मौका मिलते तो गांव को आदर्श बनाने के लिए हमारा अंगुली लगना चाहिए, सहयोग का भावना होना चाहिए। हमारा शुभ भावना और शुभ कामना जैसे हमारा वृत्ति हो और हमारा दृष्टि में सबका प्रति रूहानियत हो और हमारा कर्म कृति सहायता सहयोग का भावना हो। तो आज इस कार्यक्रम को लेकर जब केवल स्थित स्कूल प्ले ग्राउंड में पहुंचे, सुबह का समय है और आपको ये सब कार्यक्रम रात को सुनने मिल रहा है और खुशी है, क्योंकि पर्यावरण है तो हम है। पर्यावरण का जितना भी हम जिक्र करें, कितना भी एपिसोड बनाए तो कम ही होगा। जैसे सागर का पानी को कितना भी हम बाहर निकले, वो पानी खत्म ही नहीं होता है, उसका महिमा अपरंपार है। तो प्रकृति का जो एनवायरनमेंट, जो कि पर्यावरण, अति आवश्यकता है सभी के लिए। और प्रकृति है तो हम है, और प्रकृति पति जिसको कहते हैं आत्मा और पुरुष, प्रकृति और पुरुष का मिलन है। तो आज इस कार्यक्रम को लेकर पहुंचे केवल स्थित स्कूल का प्लेग्राउंड में, और हमारा साथ इस कार्यक्रम को हर रोज की तरफ, हर एपिसोड की तरफ आज भी श्रीमान भोपाल राम पुरोहित जी है, जो कि पर्यावरणविद है, तो एक्सपर्ट है पर्यावरण में, एनवायरमेंट में बहुत काम किए हैं। तो उनको स्वागत करते हैं, पुनः सर आपको वेलकम करते हैं। आज हमें खुशी है हमारा जो एपिसोड को, आज का एपिसोड को आप चार चांद लगाएंगे और हमारा श्रोता मित्र को तो हम जो बात करेंगे उसमें जरूर फायदा होगा, क्योंकि जनहित में रेडियो मधुबन हमेशा तत्पर रहता है। सरकार का जो मंशा है उसको जन जन तक पहुँचाने के लिए रेडियो मधुबन एक मंच देता है, और कम्युनिटी एंगेजमेंट जो डायरेक्टली आज देखने को मिल रहा है, क्योंकि कम्युनिटी से बिलोंग करते केवल ग्राउंड के ही निवासी और शिक्षा जगत में भी बिलोंग करते थे, लेकिन रिटायर्ड होने के बाद रेडियो मधुबन ईश्वरीय सेवा में लग गए, का प्रमोशन हुआ है गोल्ड।
1: नमस्कार सर, खुशी है सर, बहुत
0: गवर्नमेंट सर्विस होने के बाद फिर गोल्ड सर्विस में लगे हुए, और हम तो गोल्ड सर्विस में पूरा जीवन को सैक्रिफाइस किए। तो हमारा देखते सुनते स्कूल में जब देखे हमारा कार्यक्रम को, सैक्रिफाइस को, तो बोले भाई समय मिलेगा तो हम भी इस तरह जनहित में, देश हित में और गाँव हित में करेंगे, और प्रोग्राम का नाम ही मेरा गाँव मेरा अंचल। सर धन्यवाद, आपको स्वागत।
1: सर आपको नमस्कार।
0: नमस्कार
1: सर, रेडियो मधुबन प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से इसके प्रतिनिधि के रूप में बीके पवित्रा भाई पर्यावरण को लेकर के बहुत ही आशान्वित हैं, और ईश्वरीय विश्वविद्यालय अपने आध्यात्मिक लक्ष्य के साथ में, उसकी प्राप्ति में जो हमारा भौतिक जगत है उसकी पर्यावरण शुद्धि उसको किस प्रकार से प्रभावित करती है, उस पर बहुत बड़ा कार्य कर रही है। अपना दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में राजयोग के साथ में काम कर रहा है। अब भौतिक रूप से जो पर्यावरण है उस पर भी यहाँ पर बहुत बड़ा काम हो रहा है
0: जी।
1: सोलर एनर्जी का प्रयोग है, अपने किचन में सारे सोलर सिस्टम का उपयोग हो रहा है, जहाँ हजारों लोग प्रतिदिन ब्रह्मा भोजन पाते हैं। साथ में जितने लोग इस संस्था से जुड़े हुए हैं वो भी आध्यात्मिकता के साथ साथ में पर्यावरण जितना आवश्यक है, जैसे मानसिक शांति के लिए शरीर की शुद्धि आवश्यक है, इस तरह से विश्व शांति के लिए पर्यावरण की शुद्धि की बहुत बड़ी आवश्यकता है, और उस पर यहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट से लेकर के प्रतिदिन के भोजन वेस्ट के सदुपयोग, प्रदूषित जल का उपचारीकरण, वैचारिक शुद्धिकरण, वास्तव में इस तरह का जो समामेल है वो बहुत ही अद्वितीय प्रकार का है। एक फील्ड में हमेशा काम होता रहा है, जैसे पर्यावरण है तो वो उसके लिए काम कर रहा है, विभिन्न विभाग है तो वो उसके लिए इंडिविजुअल काम करते हैं, लेकिन ये सभी को समन्वय करके अपना काम कर रहे हैं। तो इसी से प्रेरित होकर के बीके समर्पित हमारे मधुबन के पवित्रा भाई वो मेरे निरंतर संपर्क में है, और मेरी भावना को जानते हुए मैं पर्यावरण पर अपनी जो जानकारी है उसको साझा करने का निरंतर प्रयास करता हूँ। और उसी कड़ी में आज का ये एपिसोड है, इसमें हम आप सभी श्रोता बंधुओं को मैं बार बार मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, रेडियो मधुबन की कम्युनिटी सर्विस जो ग्रामीण क्षेत्र में, दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र तक पवित्रा भाई पहुँचते हैं और ये शिक्षा, स्वास्थ्य, शांति, पर्यावरण सभी विषयों को देखते हैं, वाकई इनकी लगन भी अद्वितीय है। तो पिछले एपिसोड हमने आध्यात्मिकता से इसको जोड़ते हुए, मेरे ख्याल से ये प्रथम बार प्रयास हो रहा है कि आध्यात्मिकता के साथ में इस शुद्धि को पर्यावरण कैसे जोड़ा जाए, ज्ञान के साथ कर्म को कैसे जोड़ा जाए। आपके अनुभव के आधार पर मैंने कुछ शास्त्रों का आधार लेकर के भी इस पर काम करने की कोशिश की, मेरे ख्याल से यह समन्वित आपके सहयोग से पहला प्रयास ही होगा। इसमें पूर्व में पृथ्वी प्रदूषण, विभिन्न प्रकार का वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण पर हम बातचीत कर रहे हैं कि ये प्रदूषण है वो हमारी जीवन आशा को घटा रहा है।
0: जी जी,
1: कई तरह के प्रदूषण हो रहे हैं। जैसे वैचारिक प्रदूषण में बात करें तो मोबाइल का एक दुष्प्रभाव, हर बार हम ये चर्चा करते रहते हैं कि ये जो यांत्रिक जगत है उसकी आवश्यकता तो है, लेकिन उसको मिनिमाइज कैसे करें, कम से कम कैसे करें, इस पर चर्चा कई बार। एक निश्चित दूरी तक या कम दूरी तक साइकिल का उपयोग, उससे भी कम दूरी तक पैदल चलना, जो विभिन्न बीमारियों को कम करता है। ज्यादा दूरी पर तेज गति के वाहन का उपयोग, ऐसा नहीं कि हम हवाई जहाज के उपयोग की वो कहते हैं कि भाई वो प्रदूषण करेगा या उसके लिए उसको उपयोग को नकारते, ऐसी बात नहीं है। अपने को अपने समय के विकास के साथ में, विकास के चक्र में जुड़ते हुए आवश्यकता अनुसार, इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी करते हुए आवश्यकता अनुसार, जितना हम पर्यावरण की शुद्धि कर सकें उतना करते हुए, क्योंकि देखिए वो सारी चीजें मानव के लिए बनी है, और वो मानव के लिए बनी और मानव को नुकसान कर दे लालच में,
0: हमारा रक्षक भक्षक हो गया
1: तो फिर
0: क्या करने के लिए है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन उसका दुरुपयोग करेंगे,
1: दुरुपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से बिल्कुल बिल्कुल वो भक्षक बन जाएगा। तो इसीलिए ये एक समायोजन है और ये प्रयास हम सबको करना पड़ेगा। दूसरा, ज्ञान सबको है, ज्ञान बहुत पवित्र चीज है
0: जी,
1: पर उसके साथ में उसके अनुरूप कर्म करना है। जैसे हम सत्संग की बात करते हैं कई बार, क्योंकि ज्ञान तो है, भोजन की आवश्यकता शरीर को रोज होती है, तो फिर सत्संग की आवश्यकता भी रोज है, उस ज्ञान को बांटने की आवश्यकता भी रोज है। तभी तो हमारा जो है इस दर्पण पर जो काली माँ जमी हुई है वो साफ होगी सत्संग के माध्यम से, तभी तो विचार शुद्धि होगी, तभी कर्म होगा। तो हमको निष्काम कर्म करना है, उसका सीधे अपने को फायदा होता है या नहीं होता है, लेकिन अगर जन समूह को फायदा होगा तो वो भी अपने फायदे के लिए काम करेंगे, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा फायदा पूरी मानव जाति को हो जाएगा। जल प्रदूषण के कई छोटे छोटे कारण और उपायों पर चर्चा करते हुए भाई अपने घर से ही शुरू करें,
0: बराबर
1: कि पानी में

0: थे
1: हा? जी हाँ जी
0: तो आपका बात मानेंगे तब तो पढ़ा हाँ, हाँ, हाँ। पढ़ेंगे तब तो आप तो पढ़ा दिए आप तो पढ़ा दिए
2: हमारे
0: बहुत पढ़ा दिए लेकिन सबको पढ़ाए लेकिन एक जैसे नहीं हुआ कोई ग्रहण करने में ऊपर नीचे
2: रह गया कोई ग्रहण करने में पीछे रह गया
0: तो ज्ञान तो बहुत है
2: लेकिन ज्ञान तो बांटा तो खूब
0: है
2: सरकार ने सर एजुकेशन पॉलिसी जो बनाई उसमें इस विषय को बहुत अच्छे तरीके से शामिल किया है पूरी दुनिया में किया
0: ग्रहण करने में इतना
2: पर हम नहीं कर रहे हैं इसलिए ऐसी स्थिति हो रही है मतलब वो काम होता नहीं है तो हमारा जो प्रयास है ये कि उसको ग्राउंड लेवल पर ला करके उस काम को किया जाए तो इसके लिए हमारे भाई साहब स्कूलों में भी जा रहे हैं पर्यावरण पर वहाँ भी बात कर रहे हैं कि भाई पढ़ा है उसको किया क्या तो इसके लिए
0: प्रैक्टिकल चाहिए
2: प्रैक्टिकल तो चाहिए थ्योरी का ज्ञान तो खूब है प्रार्थना तो खूब कर रहे हैं लेकिन वो प्रार्थना अंदर तक जा रही है कि नहीं जा रही उसका वाइब्रेशन हमारे लिए किस तरह से काम कर रहा है
0: कहना है मतलब कथनी और करनी
2: बिल्कुल बिल्कुल करना तो होगा तभी हम सच्चे गुरु कहलाएंगे
0: जो भी है करना तो बाद में लेकिन सोचना बोलना फिर करना मानना होता है उसमें सीरीज होता है
2: सीरीज
0: पहले अपना मन में सोच आया जो
2: आपने सोच लिया सोच लिया
0: फिर मुख में बोलना
2: बोलना ही है फिर बोलना
0: मन से वाचा से आया
2: बिल्कुल मन वचन और कर्म तो कर्म करना होगा
0: करेंगे
2: तो आप जब ना घूम रहे हैं घूम घूम के बात कर रहे हैं एकांत में बैठ करके इसके लिए विचार विमर्श के लिए प्रेरित करते हैं
0: सब इस तरह से काफी मैंने देख रहा है इस तरह से भी पशु पंछी भी पूरा मैंने देख रहा है ट्राई कर रहा है इस तरह से भी वो लोग समझ जाते हैं
2: समझते हैं
0: मैंने देखा
2: काम कर रहे हैं
0: दंडा से कोई जरूरत नहीं
2: सर
0: उसको शांत से लोग भी देख रहा है मैंने अभी यहाँ पर चार ग्राउंड में हम लोग बैठे पांच मैंने एग्जांपल जो देखा भाई को भी पशु भी अपना इशारा को समझते हैं
2: जी जी समझते
0: डिस्टर्ब नहीं करते भाई हम आपको नहीं डिस्टर्ब कर आप हमें मत डिस्टर्ब
2: बस अपनी स्थिति कुछ वैसी ही है कि इस पर काम करते हुए हमको थोड़ा काम करना है कैसा करना है जैसे सर आप कई बार बताते कि जंगल में आग लगी तो एक चिड़िया है वो अपनी चोंच में पानी भर के वहाँ पर डालती है
0: बाघ जो देखने लगे
2: जी
0: बोला रही ये क्या कर
2: ये क्या कर रहे हैं
0: हमारे पास तो इतना पानी लेने का ताकत है
2: फिर हम तो हमारा भी ऐसी स्थिति है कि ये क्या कर लेंगे
0: क्या करें लेकिन जब आग तो समझ गए जब आग बुझाने में किसका नाम आएगा
2: तो नाम तो उस चिड़िया का एक प्रयास तो हुआ ना उसमें तो वो चिड़िया का प्रयास हमारा भी होगा
0: तो आप सब ये चीज को जब ध्यान करेंगे
2: बिल्कुल
0: कर्म छोटा बड़ा नहीं होता है और प्राप्ति को हम नहीं देखेंगे
2: बिल्कुल बिल्कुल
0: क्या होना है क्या नहीं होगा
2: नहीं नहीं प्रयास
0: प्रयास
2: अपना प्रयास
0: जैसे आप जब भी बोलते भाई जी हुकुम हाजिर
2: हाजिर तो होना ही पड़ेगा हाजिर नहीं
0: होगा जितना बोले हुकुम
2: तो आपसे मुझे प्रेरणा मिलती है सर मैं अपने उस मटेरियल को देखता हूँ उसको सही तरीके से रखने के लिए कोशिश करता हूँ और दो लाइन लिख करके उसको पूरा व्याख्या करने की पूरा ताकि वो भी एक क्रम में निश्चित तरीके से
0: शिक्षक ही देश को सुधारने का ताकत रखता है शिक्षक किसको कहते हैं जो शिक्षा देते हैं
2: और सभी शिक्षक तो हो सकते हैं सभी से सीखने का प्रकृति बोलती नहीं है सिखाती है
0: जी जी
2: जो अब ये है कि शिक्षक होना ही वह नहीं है वह जो सिखाए वो सब शिक्षक है ये पत्थर भी शिक्षक है ये पेड़ भी शिक्षक है आप भी शिक्षक हो तो हम सब शिक्षक ही हैं तो जो सिखाता है वो शिक्षक है सर तो वो सिखा करके वो करवाए अब तो ऐसी स्थिति आ गई है क्योंकि ये चीज हमने जीवन में महसूस किया है कि काम को करना महत्वपूर्ण है महत्वपूर्ण सब कुछ है ऐसी बात तो नहीं है पर सभी करें
0: बराबर
2: जब मौका मिले करें और करने का प्रयास करें आप नहीं कर सकते तो दूसरे को प्रेरित करें कुछ तो करें तो तब जाकर के ये वातावरण
0: कोई करे नहीं करे हमें उससे फर्क नहीं पड़ता हमें करे खुद में शुरुआत कर
2: स्वयं निवेदन करें हम विनम्रता से प्राकृतिक तरीके से निवेदन करें कि सभी अपने अपने तरीके से शुरुआत करें तो निश्चित रूप से ये पर्यावरण अपने आप में एक बहुत बड़ी शुद्धि करते हुए वैचारिक शुद्धि लाते हुए बहुत बड़ा रिजल्ट इस पूरी दुनिया को देगा जो कि एक ईश्वरीय कार्य हो जब पर्यावरण शुद्ध होगा आप स्वस्थ होंगे तो आपको शांति मिलेगी तभी आप अभ्यास कर पाएंगे सब तरह के आप अस्वस्थ है तो क्या कर पाएंगे
0: जैसे अभी हम लोग देख रहे चार पांच जगह बैठने के लिए जगह अच्छा मिले
2: जी जी
0: पर्यावरण हमारा शुद्ध हो हमारा साथ दो
2: बिल्कुल
0: तो जहाँ गए अरे यहाँ तो न जा सकता है यहाँ पर हम गए तो यहाँ पर भी लोग जाना ना करेंगे यहाँ पर डिस्टर्ब होगा तो ये चीज जो प्रैक्टिकल जब हम बात कर रहे थे तो ये भी हमारा पर्यावरण अशुद्धि का एक कारण है
2: कारण
0: हम उसमें एडजस्ट नहीं हो पा रहे
2: बिल्कुल
0: फिर हम जगह परिवर्तन किए
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: दो जगह बाद अभी जो जगह पर हम लोग बात कर रहे
2: हैं
0: सुबह का 10-11-12 बजे समय जो है
2: जी जी
0: तो वहाँ पर हम देखे तो पर्यावरण हमारा कितना आवश्यकता है
2: बहुत बड़ी आवश्यकता
0: हमको सिलेक्शन करना पड़ता है
2: सिलेक्शन करना पड़ता है सब जगह बढ़िया होना चाहिए सब जगह बढ़िया
0: होना जहाँ भी लेकिन वहाँ चलो
2: यहाँ कचरा पड़ा है यहाँ पर ये डिस्टरबेंस है यहाँ लोगों की आवाज आएगी वहाँ वो आएगी तो ये सारा
0: पर्यावरण का एक प्रदूषण है
2: बिल्कुल प्रदूषण है तो हमको

0: इसके लिए कार्य करना है और सभी अपना अपने तरीके से जुटेंगे, सभी प्रयास करेंगे तो सबके प्रयास से ये संभव हो जाएगा।
1: भले आपके इतना अच्छा पॉजिटिव भावना हो लेकिन आप उसको वाइब्रेशन देकर भी हम लोग थोड़ा संकल्प आया।
0: जी जी बिल्कुल,
1: हम उसमें एडजस्ट नहीं हो पाए, थोड़ा संकल्प आया भाई ऐसे और थोड़ा बेटर करने के लिए हम लोग कोशिश,
0: बेहतर के लिए प्रयास कर रहे हैं हम लोग सभी मिलकर।
1: ये जो बेहतर हो ये तो है ही है,
0: बिल्कुल
1: हम सिलेक्शन करके आए फिर भी इसमें और हमें अच्छा चाहिए।
0: बिल्कुल, और जहाँ बैठे वहीं से शुरुआत कर दो, जिस जगह पर बैठे हैं वहां पर ये प्रयास कीजिए आप, तो निश्चित रूप से ये सब कुछ संभव हो जाएगा।
1: क्योंकि मुझे मन में जो सोचते हैं बहुत दूर दूर चला जाता है।
0: बिल्कुल जाता है,
1: पानी में तो सिर्फ एक ग्राउंड तक रहता है।
0: बिल्कुल सही बात है, सही बात है, अपना निश्चित एरिया है लेकिन सोच तो वो तो
1: जाता है।
0: हाँ, मन की गति से जाता है
1: बहुत दूर तक।
0: तो ये सारी चीजें जो भी है
1: और जो आकाशवाणी में अभी जो हम लोग बात जो रिकॉर्डिंग कर, जो
0: जी हाँ
1: लोग सुन रहे हैं
0: वो जब तो जहाँ तक जा रहा है वहाँ तक तो जा ही रहा है ना
1: वायरलेस,
0: जहाँ और वहाँ पर सर ये सब सुन रहे हैं तो वो लोग तो निश्चित रूप से इस कार्य के लिए प्रेरित हो ही जाएंगे।
1: जी जी,
0: और तभी तो हमारा मनोबल बढ़ता है।
1: नहीं तो वो तो हमारा काम शुद्ध विचार से रहेंगे तो जरूर फल मिलेगा
0: उसका, निश्चित रूप से फल,
1: क्योंकि बीज आपका शुद्ध है। ठीक है, तो जब उसका
0: आप बार बार कहते हैं उस बात का मैं पूरा समर्थन करता हूँ कि कर्म करो फल की इच्छा नहीं करनी, लेकिन हम तो सब फल की इच्छा भी करते हैं कि हमारा फल अच्छा ही होना चाहिए।
1: ये भी अच्छा है, जैसे हम पौधा लगाते तो अच्छा है तो बहुत
0: इच्छा
1: तो
0: हम करेंगे
1: लेकिन मेहनत का फल लाया बोले।
0: अच्छा, और वो पेड़ सर वो शुद्धि के साथ में छाया भी देगा, फल भी देगा, ऑक्सीजन भी देगा और क्या क्या देगा, भोजन भी देगा, शुद्ध शुद्ध शुद्ध सभी देंगे। तो इस तरह से ये सारा का सारा
1: पर्यावरण का ही
0: एक तरीका है और वो अपने आप को शुद्ध करेगा। तो पर्यावरण की शुद्धि में
1: जी सर,
0: अच्छा ऑक्सीजन के साथ साथ और भी जितने भी, हाँ ऑक्सीजन के मतलब ऑक्सीजन बढ़ जाएगी इससे, और जो आपका पॉजिटिव है विचार वो सारे के सारे इसमें लोगों तक पहुंचना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब रही बात जैसे हम अभी बात करते हैं जल प्रदूषण की।
1: जी जी,
0: जल प्रदूषण की। अब जल प्रदूषण में सर एक शब्द आता है, वो बड़ा ही टेक्निकली वो बड़ा ही वैसा शब्द है जिसको हम कहते हैं ग्रीन वर्ड है सर, वो मतलब ये बिल्कुल ही मतलब नया है और उसको जब यूं कहते हैं तो वो सुपोषण बताता है सर। मैं कई बार आपको टेक्निकल शब्द बताता हूँ तो वो जो टेक्निकल जो वर्ड है ना,
1: हमारा जो श्रोता है जो है
0: जी
1: टेक्निकल है और नॉन टेक्निकल, इसलिए आप बिंदास बोलते रहिए।
0: नहीं फिर भी टेक्निकल में सर वो शब्द में थोड़ा सा वो शब्द उसका इफेक्ट तो जो है वो जो थोड़ा दूसरा है, लेकिन वो सुनने में ऐसा लगता है कि आप कुछ वो दूसरा कर रहे हैं। उस वर्ड का जो एक्चुअल जो वर्ड है वो यूटियोफिकेशन है। What do you mean by eutrophication? That is सुपोषण।
1: सुपोषण और कुपोषण?
0: हाँ नहीं, पर सर वो कुपोषण है ना,
1: अलग चीज़।
0: वो सुपोषण वो जो किसका कर रहा है, वो जो कुपोषण है वो तो अपने मनुष्य में कहते हैं, लेकिन ये सुपोषण किसका करता है, जो हानिकारक जीवाणु है उनका करता है।
1: ओके,
0: आप समझ गए। तो ये थोड़ा सा
1: सुपोषण
0: समझने, हाँ उनको सुपोषित करता है,
1: पोषण पॉजिटिव,
0: हाँ उसका नेगेटिव, उसका जो वर्डिंग है ना ये नेगेटिव है, इसलिए कई बार इसका उपयोग नहीं करते लेकिन समझाने पर कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा टेक्निकल हो जाएगा,
1: श्रोता मित्र सुन रहे थे सर का जो टेक्निकल वर्ड में वो क्लियरिफाई कर,
0: वो इसलिए क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि फिर ये चीज उधर तो काम आएगी, जहाँ इंटरनेशनल उस लेवल पर जब अपन बात करते हैं वहाँ पर वो शब्द काम में आएगा, वहाँ वो जानेंगे। लेकिन आम पब्लिक ये नहीं जानेगी, ये भाई बात तो कर रहे हैं सुपोषण की, लेकिन किसके सुपोषण की बात कर। सामान्य तौर पे सुपोषण तो किसी बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए उसकी हेल्थ के लिए किया जाता है,
1: राइट,
0: और कुपोषण उसकी हेल्थ डाउन होती है तब किया जाता है, कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर सुपोषण किसका हो रहा है, इसमें ये ग्रीन वर्ड है वातावरण के लिए काम में ये लिया जा रहा है उन बैक्टीरियाज की वृद्धि के लिए जो नुकसान करते हैं। ये वर्ड वर्डिंग है उसकी, एनवायरमेंटल वर्डिंग है,
1: राइट,
0: इंटरनेशनली। तो इस सुपोषण से सर क्या होता है, फिर वही बात आई, यानी मैं ये कह दूं कि यूटियोफिकेशन से क्या होता है, जैव विविधता नष्ट हो जाती है, जो बायो विविधता है वो सारी की सारी, यानी इससे सर क्या मतलब समझे आप, जैव विविधता के नष्ट होने से मतलब ये है कि अपने उपयोगी जो पादप है, औषधियां हैं, कई सारी वनस्पतियां विलुप्ति के कगार पर है, वो इसी से जा रही है, खत्म हो रही है यूटियोफिकेशन से। अब हिंदी वर्डिंग अपन करा था वो थोड़ा सा वैसा बताता है, तो जब वो खत्म होती जा रही है तो वातावरण तो आपका निश्चित रूप से और नेगेटिव इफेक्ट ही देगा। हालांकि मैं नकारात्मक शब्दों का कम से कम प्रयोग करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जहाँ पर वो नुकसान ही कर रहा है वो उस चीज अपने को बात करनी ही पड़ेगी। तो सर जब जैव विविधता नष्ट हो जाएगी सर, बहुत बड़ा प्रभाव इसका एक तो ये पड़ेगा कि जो प्राकृतिक रूप से इलाज होता है, ये चीज मैं कई बार आचार्य प्रशांत को सुनता हूँ, वो बहुत ही मतलब इंटरनेशनल लेवल के विचारक है, IITian है सर, छोड़ छाड़ के बैठ गए इस दुनिया में जिसमें हम बैठ रहे हैं। कई बार इनको औषधि विज्ञान वालों से मैं सुनता हूँ बैठ के, तो वहाँ पर सर ये था कि जो रोगों का विभिन्न थेरेपी है भाई, पर्यावरण अशुद्ध है तो रोग तो खूब हो रहे हैं, तो वेरियस थेरेपी से उसका इलाज हो रहा है। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है कि जब जैव विविधता नष्ट हो जाएगी तो जिस औषधि से, प्राकृतिक औषधि से किसी बीमारी का अच्छा इलाज हो रहा है वो औषधियाँ ही खत्म होती जा रही है। इसका मतलब आपके इलाज की संभावनाएं खत्म होती जा रही है ड्यू टू दिस यूट्रोफिकेशन।
1: खत्म होते जा रहा तो लोग उसको रिप्लेस करते नहीं, क्यों लगाते हैं फिर?
0: बस रिप्लेस तो तभी करेंगे जब या तो लगाएंगे या फिर पर्यावरण शुद्धि का प्रयास करेंगे। तो वाटर, देखो सर मैं आपसे एक निवेदन करूं, अपन जहां बैठे हैं ना, ये भैया भी बैठे हैं यहां पर, सर ये जो घास है ना ये वाली, ये एक औषधि है बहुत बड़ी। अब ये पहले बहुत होती थी, अब ड्यू टू दिस यूट्रोफिकेशन खत्म हो रही है। कहां से लाएंगे आप? फोन अटक गए सभी। अटक इसलिए गए कि इसका प्रोडक्शन करना तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सर इसको खेतों में तो लोग उगाएंगे नहीं क्योंकि फायदा नहीं होता, हम तो लालची है ना स्वभावतः। जब ये नहीं उगाएंगे, जिस बीमारी का इलाज है वो तो खत्म हो गया, अब आएगा कहाँ से? अब सर वहां से आएगा जहाँ से हम पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करें, तो आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा।
1: आने के लिए फिर हमारा श्रोता मित्र इंतजार कर, कैसे आएगा और कौन लाएगा ये सब जानेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल और रेडियो मधुबन 107.8 FM। और खासकर आज का जो लिंक में हम जो बात कर रहे हैं, जल प्रदूषण कितना खेतीकारक हानिकारक मनुष्य जीवन के लिए, जल जीवन का जल और विशुद्धि होगा अशुद्धि होगा तो हमारा अस्तित्व क्या होगा सभी को पता है।
0: बिल्कुल,
1: तो हम सब होशियार समझदार है, समझदार को इशारा काफी है, फिर भी बोलना पड़ता है, मनुष्य तो बोलने से ही करते हैं, तो हम और आप बोल बोल कर हमें करना ही पड़ रहा है। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
2: मुझे साफ पानी चाहिए।

0: मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। पिछला लिंक में हम खास कर सभी को लेकर चलते थे और चलना चाहिए क्योंकि प्रदूषण कितना मुद्दा है, बड़ा मुद्दा समय के अनुसार। उसको प्यूरिफिकेशन माने उसको शुद्धिकरण करने के लिए हम सब प्रयास करते हैं और आप और हम मिलकर ही कर पाएंगे। और जब हम अच्छा काम में एक कदम बढ़ाएंगे तो जरूर हजार कदम देने वाले ऊपर वाला बैठा है और प्रकृति भी देता है। तो इन शुभावना के साथ पुनः स्वागत करते हैं श्रीमान भोपाल राम पुरोहित जी को, जो कि पर्यावरणविद है, तो पर्यावरण का ऊपर में एक्सपर्ट है, जानते हैं, पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, जिसका मेहनत का आज बोला हमारा पास सीमित क्यों रहे, सब तक पहुंचे। इस शुभावना को जब देखे सुने सब तक पहुंचे, तो इसीलिए रेडियो मधुबन तो एक मंच है, इस मंच के माध्यम में सभी को वेलकम करता है। आप भी आ सकते, जो श्रोता सुन रहे वो भी आ सकते हैं, तो आकर अपना विचार को रख सकते हैं। तो पुनः स्वागत करते हैं सर। आज जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें और चार चांद लगाने के लिए और आपका खजाने में क्या रखें निकालिए, तो हमारा श्रोता मित्र को फायदा हो, जनता जनार्दन और प्रकृति को तो फायदा होगा इनडायरेक्टली। जहां हम धूप में बैठकर प्रकृति का आनंद ले रहे, रात को आप प्रोग्राम सुन रहे हैं, लेकिन हम ये सुबह का रिकॉर्डिंग प्रोग्राम है आपको सुना रहे हैं। तो चलिए उनको पुनः स्वागत करते सर।
1: सर नमस्कार। सर अपन जल प्रदूषण के बारे में बात कर रहे थे और अभी अपन बात कर देते हैं जल प्रदूषण से जनित रोगों के बारे में, जो सीधा सीधा कई बार ये बात इसलिए करनी पड़ती है कि जब हम वैचारिक बात करते हैं, टेक्निकल बात करते हैं, वहाँ पर सीधा सीधा ये है कि भाई हम इतने बीमार क्यों हो रहे हैं। अभी सर में सर मुझे सर एक ही चीज विचार शुद्धि के साथ में दिखती है, दो चीजों पर ही काम करता हूं मैं, कि हमारा मानव शरीर स्वस्थ रहेगा तो वो सुकर्म भी कर पाएगा। तो जो स्वस्थ रहेंगे तो करेंगे ना। तो सर मैं एग्रीकल्चर पर भी फोकस करता हूं, तो मैं कहीं कोई दिख रहा था प्रसारण, उसमें सर दिख रहा था, एक्सपर्ट बता रहे थे नेशनल लेवल पे, कि एक रोग होता है गठिया। सर उसका जो होने का जो कारण है वो सर शारीरिक कर्मण्यता की स्थिति में कमी आना को ज्यादा खास माना उन्होंने। व्यक्ति काम करेगा, दौड़ेगा, मेहनत करेगा तो निश्चित रूप से इस रोग की संभावना बहुत कम हो जाती है। यानी कि शरीर को डिटॉक्सिकेशन करने के लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा, इसलिए तो शरीर स्वस्थ होगा।
0: सुबह सुबह लोग एक्सरसाइज दौड़ते हैं,
1: योग करते हैं, दौड़ते हैं, शारीरिक योग करते हैं, फिर मानसिक राजयोग करते हैं, जो भी करते हैं, तो उससे वो शुद्धि आती है। तो सब शुद्धि पड़े रहने से तो नहीं आएगी। आपको हमको सभी को सूर्योदय के साथ में दौड़ना पड़ेगा, जगना पड़ेगा, जग के चलना पड़ेगा, चल के किसी का हाथ पकड़ के चलना पड़ेगा, और जब हम चल पड़ेंगे तो कारवां बनता जाएगा। तो कहने का मतलब है कि हम कर्मशील बने रहें, जितना होता है उतना हम सब करते रहें, तो हम इस शुद्धि की प्रक्रिया में अपना बहुत बड़ा योगदान दे पाएंगे। अब सर विभिन्न रोगों की बात कर जो सीधे सीधे इससे प्रभावित होते हैं। सर रोगों की बात मैं कई बार इसलिए भी करता हूँ कि सर उन रोगों से हम प्रभावित क्यों हो रहे हैं, ये जब पब्लिक जानेगी तो वो उठेगी, भाई हमारा नुकसान देख करके तो भी कोई खड़ा होगा, तो दूसरों को तो ना हो पाए। सर देखिए पारे की विषाक्तता से जो जल प्रदूषण का कारण है, मतलब पारा उसमें आ जाता है, तो सर मिनामाटा रोग हो जाता है। जापान में बहुत भयंकरता से सर फैला था मिनामाटा, और फिर सर जब रोग हो जाता है तो उसको काबू करना
0: मुश्किल होता है,
1: बहुत मुश्किल होता है। तो फिर हम ये कोशिश तो कर ही सकते हैं कि पारा उस पानी में कम जाए, या जाता हो तो उसको फिल्टर कर लिया जाए। सर मैं एक बात बताऊं,
0: सर मैंने यहाँ पर भी संदेश, आप जापान का बात कर रहे हैं, यहाँ का आपका लोकल जो वासडा,
1: जी जी जी,
0: वासडा में हम लोग गए थे, वहाँ का लोग का पूरा कंप्लेन था जी, हमारे खेत में भी जो फसल आता है वो तो पूरा जल जाता है, कोई खेत नहीं होता है, पानी जितने भी दे तब भी जल। इसका कारण पूछा तो जो पानी नीचे से आ रहा है
1: जी,
0: ये जो मार्बल फैक्ट्रिया है ना,
1: हाँ,
0: मार्बल फैक्ट्री का जो पानी आकर जो पूरा जमीन स्तर में जाता है वो इतना हीट रहता है तो पौधा को जला देता है।
1: सर बस तो फिर
0: आपका लोकल जापान का
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो लोकल में भी जब ये
0: प्रशासन गांव के संग चल रहा था राजस्थान,
1: तो सर इसका समाधान है। सर निवेदन मेरा यही रहता है कि जितना कर सके उतना करे, उस जो लरी उसकी निकलती है, उस लरी का जो प्रोडक्ट भी बनते हैं सर, की ईंटें भी बनती है और भी कई काम में आता है, तो उस लरी को उसको सर रोक ले, उसको ट्रीट कर दे
0: तो अच्छा काम में आ जाएगा,
1: तो सर नुकसान हो जाए, और वो पानी जब आगे से फिल्टर होके जाएगा तो वो तो रुक जाएगा।
0: पॉसिबल है, कर सकते,
1: पॉसिबल सर, पॉसिबिलिटी इज देयर, तो ये करना होगा। इसलिए बीमारी का नाम बताने का मतलब डराना नहीं है, बीमारी का नाम बताने का मतलब है कि आप इलाज करो, बीमार हो उससे पहले सावधान हो जाओ ना। तो सर दूसरा है, मैं बताऊं, यही विषाक्तता की बात कर रहा था, इसमें ये विषाक्तता के से जो रोग होते हैं, इसमें पारे की जो विषाक्तता है उससे तो ये वो मिनामाटा, और जो सर कैडमियम की विषाक्तता है इससे रोग होता है इटाई इटाई
0: इटाई इटाई।
1: अब सर ये सब बताने तो पड़ेंगे ना, तभी हम थोड़ा उसको गंभीरता से लेंगे लेंगे ही नहीं हम। इसी तरह से सर आर्सेनिक की विषाक्तता, इससे सर ब्लैक फुट रोग हो जाता है। इसी तरह से फ्लोराइड की अधिकता से, विषाक्तता से सर जो यहाँ पर खूब ज्यादा है फ्लोरोसिस। अब सर इनको रोका जा सकता है, अपने कहने का मतलब कई बार अपन बीमारी के बाद में खूब दौड़ते हैं,
0: कितना पैसा
1: शरीर में से विष को निकालना, टॉक्सिन्स को निकालना, ये भी एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, टेढ़ी प्रक्रिया है, ये आर्थिक रूप से भी तोड़ने वाला है, समय भी बर्बाद करता है, फिर जब ये हो जाएगा व्यक्ति आर्थिक रूप से टूट जाएगा,
0: जो कष्ट तो, भी मिलता है वो कम,
1: तो फिर कष्ट मिलेगा तो फिर क्या प्रयास कर पाएगा, फिर न स्वयं के लिए नहीं कर पाएगा तो फिर वो करेगा क्या। तो इसलिए इससे अच्छा है, अब सर ये विभिन्न नाम बताते हुए मुझे इसलिए थोड़ा सा वो रहता है कि भाई हम तैयार हो जाएं। अब सर नाइट्रेट की जो विषाक्तता है उससे सर मैट हीमोग्लोबिनेमिया ये हो जाता है सर, ब्लू बेबी सिंड्रोम का नेट हीमोग्लोबिनेमिया ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है ये सर नाइट्रेट की विषाक्तता से। इसी तरह से जीवाणु की विषाक्तता से हैजा, टाइफाइड, विषाणु से विषाक्तता से हेपेटाइटिस ए, रोटा वायरस, इसी तरह से प्रोटोजोआ जनित रोग, एमीबायोसिस, जीआरडीएसिस, तो इस तरह के सर प्रतिकूल प्रभाव सर मिट्टी में भी ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती है सर, इनके मिलने से पानी में ऑक्सीजन कम हो जाता है, O2 की मात्रा कम होती है तो सर वो उसकी उत्पादकता पर भी प्रभाव डालता है, दुष्प्रभाव क्या दुष्प्रभाव डालेगा,
0: इसलिए पानी का जो कलर मीठा पानी का खारा पानी का
1: क्यों बन रहा है सर, खारा पानी के यही कारण है, मिलावट हो गई उसमें रासायनिक मतलब यूरिया वगैरह जो भी है हो सकता है आवश्यक हो लेकिन सर कितना हो ये तो
0: अशुद्ध
1: कर दिया उसको, अशुद्ध
0: मिल रहा
1: तो फिर वो तो नुकसान ही करेगा। इस तरह से जल में घुलित ऑक्सीजन कम होना, ऐसे तरह से जैव आवर्धन, ये शब्द भी मैंने आपसे पहले बताया था कि जैव आवर्धन वही वो सुपोषण जैसी स्थिति है सर, इसमें भी विविधता उसमें नष्ट हो जाती, मतलब पारिस्थितिक तंत्र डिस्टर्ब हो रहा है, तो जब ये सब डिस्टर्ब होगा तो सर हम सुखी कैसे रह सकते हैं प्रकृति को डिस्टर्ब करके। तो सर इसके प्राथमिक उपचार तो सर इसमें सीधा सीधा है, हम सोच लें एक बार, तो दूसरा जो जिसको हम रोक सकते हैं शुद्धि करके बेसिक, जैसे स्लरी निकलती है उसको रोक दीजिए,
0: हमारा पहुंच जहां तक
1: है उतना तो कर लो, अपने घरों में से जो कीचड़ निकलता है नाली वाला उसको तो रोक लो, वो किया जा सकता है, सब कर रहे हैं,
0: बहुत बोला हम क्यों भाई सरकार वार्ड पांच
1: बस यही तो लफड़ा है। तो फिर सर यहीं पर प्रश्न तो यही आ रहा है,
0: तो उसको इस मानसिकता को कैसे बदला जाए
1: सर, उस मानसिकता को बदलने के लिए
0: समझदार बनना पड़ेगा,
1: हमको ये बात बतानी पड़ेगी, उनके भी साथ बैठना पड़ेगा, और वही कहते हैं ना वो, आप जब हमको शिक्षक बता देते हैं, हम शिक्षकों की बात तो वो लोग सुने समझे और करे तब ना, जो करेगा वो ही पाएगा। तो सर इसके लिए प्राथमिक उपचार करें, रोके उसको, और द्वितीयक में सर कई सर टेक्निकल तरीके हैं जिसमें सूक्ष्म जीव जो सर है ना वो अपघटन करते हैं, और वो जो अपघटन करने वाले अच्छे जो पदार्थ है वो उनके साथ में मिल जाए तो निश्चित रूप से इसकी शुद्धि सर हो सकती है। सर एक बहुत बड़ी चीज मैं बताऊं, मतलब जिसको बड़ी क्या सामान्य चीज आप कह सकते हो कि जैसे गिद्धों की संख्या में कमी होना, गिद्ध कम हो गए तो सर वो गिद्ध था ना वल्चर, वो प्राकृतिक शुद्धिकरण का काम करता, जो जीव जंतु मरते थे उनको खा खुआ करके पर्यावरण शुद्ध,
0: अभी तो क्या
1: जब अब तो वो कर रहा, अब वो भी नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है सर, वो क्यों नहीं कर रहा है इसका कारण बताओ, वो काफी कम हो गए सर,
0: उसको मारते हैं क्या?
1: नहीं सर मारते नहीं है, गिद्ध को कोई नहीं मारता, मारते कोई नहीं है, उसमें दिक्कत कहाँ हो गई सर। सर अभी जो आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठा लिया, क्योंकि मैं भी उससे जुड़ा हुआ हूँ, पशुओं के सर हम लोग लाते हैं चारा, अब वो कई तरह से उनके पशुओं का जो पशु आहार है, एक तो पशु आहार देते हैं रेडीमेड सर, अनियमित मात्रा में यूरिया मिला देते हैं वो लोग, और भी ऐसे ऐसे पदार्थ मिला देते हैं कि उससे वो उस पशु की बॉडी में चला जाता है।
0: ओके
1: सर, मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया था कि वो फिर दूध आता है उस पशु का, और वो सर बच्चे के पेट में जाता है, आपके पेट में जाता है, तो वो सब केमिकल वहां से आया, कहां से आया देखो, अप्रत्यक्ष तरीके से आ रहा है और वो आपकी बॉडी में चला गया और बीमार करके,
0: समझ में नहीं आ रहा। अभी डॉक्टर लोग जब जाते हैं इलाज करने वो तो तुरंत पेशेंट भोजन खाओ, लेकिन दूध छाछ ये सभी कोई भी दूध प्रोडक्ट नहीं, मैंने आश्चर्य हो गया, दूध दही माखन ये तो देवी देवता का भोजन है और ये डायरेक्ट मना क्या कर, अभी आप जैसे बताएं
1: सर, ये पहले प्रकृति शुद्ध थी तब दिक्कत नहीं थी, तो भी सर अभी जो हो रहा है ना,
0: हाँ,
1: वो जो कृत्रिम जो चीज बनाई जा रही है वो अधिक दूध निकालेंगे सर। एक और मतलब आप बड़ी अच्छी सी बात करते, क्योंकि मेरा तो सीधा जुड़ा है। अब सर अभी जैसे दूध निकालते हैं उसके लिए भी सर उस इंजेक्शन को प्रतिबंधित कर दिया है, वैसे सरकार ने कोई इंजेक्शन लगाते तब जैसे वो दूध देता है पशु, दूसरी तो जबरदस्ती होगी,
0: जबरदस्ती
1: तो वो जबरदस्ती वाला फायदा देगा क्या, बस वो वहीं से बीमारियां घुस रही है, तो लालच क्यों करनी, ज्यादा दूध चाहिए क्यों ज्यादा चाहिए, हिसाब से ही लो ना आप, उसको निचोड़ते हैं सर।
0: अभी समझ में आया, दूध दही दूध प्रोडक्ट है
1: जी सर, और इसलिए फिर सर
0: मना कर रहे क्योंकि जो दूध हम ले रहे हैं वो कितना शुद्धता
1: वैचारिक शुद्धता होती तो वो शुद्ध ही है, शुद्ध आज तक है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसमें इंजेक्शन लगा करके, उसमें कृत्रिम घास का प्रयोग करके, कृत्रिम ये जो सेल्यूलोज वगैरह देकर
0: खास पर दो तीन पशु फीड जो देते हैं,
1: फीड जो देते हैं
0: वो फीड में बहुत कुछ
1: मिला दिया सर,
0: ज्यादा दूध दे
1: मिला दिया,
0: थोड़ा हेल्दी वेल दिखाई दे
1: इसके लिए वो मिला दिया, तो वो फिर निश्चित रूप से
0: प्रोडक्ट में आता है,
1: वो सर फिर प्रोडक्ट में आता है।
0: और रिसर्च करके वो लोग बताए भाई दूध में जो ओरिजिनलिटी कितना है और
1: तो फिर सर
0: कितना है,
1: बस सर फिर ये क्या है,
0: इसलिए
1: हम सर बहुत स्वार्थी हो गए।
0: नाम तो दूध है लेकिन दूध का जगह में हम क्या पी रहे हैं
1: वो आपको हमको पता ही नहीं है। अब सर दूध की तरह से अन्य भी चीजें, जैसे पर्यावरण की बात करते हैं बहुत सी चीजें सर आ जाती है,
0: सब पर्यावरण में
1: है। घी है सर, घी है कहाँ सर, हम इतना घी मार्केट में उपलब्ध हो जाता है सर कि जो इतना घी से प्रोडक्शन ही नहीं होता तो कहाँ से आ रहा है, आ कहाँ से रहा है?
0: असली कहाँ मिले जैसे आपने बोला असली जिसको आप बोल रहे वो असली नहीं है,
1: बस असली डायरेक्ट
0: दूध जो आप ले रहे आपका गाय में रखे
1: आराम से मिलता है,
0: आप गाय एक रखे ओरिजिनल, आप बोलो हम मिलावट नहीं ना अपना गाय रखे वहाँ दूध से हम घी मनाते, लेकिन जो फीड दे रहे
1: फीड तो वो दे रहे हैं ना
0: वो डुप्लीकेट फीड है,
1: तो वही हो गया
0: जब इन आपका डुप्लीकेट है आउट कैसे आपका
1: आउट कैसा सही है, तो फिर यही चीज सब जगह सोचने वाली बात।
0: समा इतना पॉपुलेशन हो गया, इतना पर्यावरण जितना उतना ही है, पॉपुलेशन ज्यादा है, यूजर बहुत है,
1: हाँ तो कहाँ से आ रहा है तो सर ये सारी चीजें पर
0: व्यवस्था एक्स्ट्रा कराते
1: जो भी है सर, प्राकृतिक सोया दूध है वगैरह है ये वो बत्ता है, लेकिन फिर भी जो भी है जो ये जो कहाँ से आ रहा है ये चीज तो अपने को सोचनी पड़ेगी। अच्छा सर उसमें जितना जो खाद है उसका प्रयोग होगा, कौन सी जैव नहीं जो रासायनिक खाद का प्रयोग होगा, तो वो उसका प्रभाव तो उसमें छोड़ेगा ही छोड़ेगा, जिस फसल में दिया वो भी छोड़ेगा, तो फिर
0: तो आज जितना भी फसल हम लोग जो अनाज खा रहे हैं
1: जी सर,
0: तो सब रासायनिक द्वारा ही मिलता होगा
1: सर। सर जी सर निवेदन कि वो सारी फसलें सर जैव तरीके से भी मिल सकती है, वही प्रोडक्शन मिल सकता है, क्वालिटी का प्रोडक्शन मिल सकता है, लेकिन हमको थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है। जैसे हम आरोग्य बन गए थे ब्रह्मा कुमारी के, आप लेके गए थे,
0: अब तो खुद प्रैक्टिकल देखते,
1: तो सर वहाँ पर जो
0: जीवामृत
1: जो बनाया जा रहा है,
0: कितना वैरायटी
1: जो सर दशपर्ण से बनाया जा रहा है, ड्रम्स में बनाया जा रहा है, उसमें जो भी बैक्टीरिया डाले जाते हैं जो फसल के लिए सही है वो वहाँ केंचुओं को पैदा करते हैं, तो सर ये तो ऑटोमेटिक मैन्योर बन रहा है, तो उसका उपयोग क्यों नहीं कर रहे भाई? ठीक है थोड़ा बहुत प्रोडक्शन में थोड़ी सी कमी आ सकती है, मान सकते हैं
0: एक दस दो साल, इसके बाद तो मेकअप कर लेगा,
1: उसके बाद तो तीसरे साल तो मेकअप कर लेगा,
0: जमीन जो जहर पिया हुआ है उसको टाइम लगेगा ना, अब एक साल में अब 50 साल से आप जमीन में जहर पिला
1: तो सर यौगिक कृषि करनी पड़ेगी, हम देखो समय की मांग है और बीमार होना है तो आपकी मर्जी की बात है, तो फिर
0: तो इंडायरेक्टली हम पॉइजन दे रहे हैं,
1: हम पॉइजन दे रहे हैं सर,
0: पॉइजन खिला रहे हैं सर,
1: पॉइजन खिला रहे हैं, पेस्टिसाइड सर छिड़कने वाला किसान है, पहले भी मैंने बात की थी वो रिपीट ही हो रही है कि आप पेस्टिसाइड छिड़क रहे हैं ना तो उसको हृदय रोग को बढ़ावा दे रहे हैं, पेस्टिसाइड छिड़क रहे हैं मीन्स आप अपने हार्ट को बीमार करने की दवाई छिड़क रहे हैं,
0: जमीन को भी विशुद्ध किया और जल को भी विशुद्ध किया,
1: तो फिर
0: हम ही लोग की
1: प्रदूषित कर रहे हैं, तो हम ही लोग तो कर रहे हैं ना, तो फिर उस पे हमको सोचना तो पड़ेगा। तो ये जैसे किस तरह से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ये पहुंच रहा है, ये प्रत्यक्ष तो नहीं जा रहा ना
0: सर, अति हो रहा है तो अति का तो इति तो होगा, इस तरह समाधान का तरीका आएगा धीरे,
1: वो तरीका धीरे धीरे आ रहा, अब हम जगह है तो ये बात कहीं ना कहीं से आपसे हमसे आगे से आगे बढ़ेगी,
0: बढ़ रहा है जिसका चलता आप देख सभी
1: नहीं सर, इधर उधर काम भी हो रहा है सर, जीवामृत का उपयोग आसपास भी थोड़ा थोड़ा होने लगा है, अब धीरे धीरे जैसे लोग, सरकार तो सर खूब कर रही है, सरकार और जितने एनजीओ है जो समझ गए वो तो खूब कर, लेकिन आम पब्लिक सरकार भी सर एक स्तर तक जा सकती, सभी को तो खुद को समझना पड़ेगा, इसका प्रभाव तो सर 1% पे पड़ रहा है, तो सभी को समझना पड़ेगा, निश्चित रूप से हम लोग उससे फायदा लेंगे तो हम स्वस्थ होंगे, हमारा खुशहाल जीवन होगा, स्वस्थ होंगे तो फिर स्वस्थ मन होगा
0: स्वस्थ तन होगा,
1: स्वस्थ तन होगा, स्वस्थ मन होगा, तो बीमारियां कम होगी और हम ईश्वरीय शांति के लिए भी काम कर पाएंगे, सीधा सा है, नहीं तो अपनी सारी कमाई किस में जाएगी, बीमारी के इलाज में ही चली जाएगी। तो सर के जो उपचार है द्वितीयक उपचार, प्राथमिक तो आप कर ही सकते हो, और द्वितीयक के लिए जो भी प्रयास हो सकता है आपके पंचायतों के माध्यम से अन्य तरीकों से जहाँ हो सकता है उसको कीजिए ना, करवाइए ना, कहिए ना, कौन दूसरा है आपका जो ये काम है आपको करना,
0: जिसके पास जाएंगे वो भी तो उसी में सफरिंग है, वो कैसे बचाएगा।
1: मैं एक

0: साथ ही बात करेंगे सर,
1: तो ही करेंगे।
0: पर्यावरण और शांति पर ही बात करेंगे, राजयोग को और उसके माध्यम से पर्यावरण को शुद्ध
1: भगवान का सभी भगवान का जो श्रीमद है, श्रेष्ठ मत जो कि इसको हम पूरा पूरी सबको सहयोग देने के लिए भावना आएगा, विचार आएगा, शुद्धिकरण होगा। जब हमारा विचार शुद्धिकरण होगा, हमारा मन बुद्धि शुद्ध होगा, तो जरूर पर्यावरण भी शुद्ध
0: हो जाएगा। इसमें कहीं दो राय नहीं है।
1: का जो भी देखभाल हम ही करते हैं, है कि नहीं? प्रकृति पति का मनुष्य, प्रकृति का मालिक है, तो प्रकृति दासी है। लेकिन आज वो दासी नहीं, वो आज मालिक बनकर रिटर्न आपको दे रहे हैं। लेकिन समय आएगा और हम सब समय का अंदर में हमको करना ही है। तो जैसे गीता आध्यात्मिकता को लेकर जैसे बात कर, भाई निष्काम सेवा गीता में
0: करना ही पड़ेगा
1: बोले थे, तो हम सब अर्जुन बन के वो श्रीमद को मानेंगे तो जरूर हम कामयाब तक होंगे और अच्छा दुनिया आएगा। तो इन शुभावना के साथ हमें दीजिए इजाजत, फिर अगला एपिसोड में मिलेंगे आप सबसे रूबरू होने के लिए।
0: नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम खास कर हम केवल स्थित एक जो स्कूल का बैकग्राउंड है, सुबह 10 से 11 बजे तक हम बैठे थे, हम बातचीत कर रहे हैं, प्रकृति का आनंद लेते हुए खुशी मिल रहा है, सुकून मिल रहा है। और इस प्रोग्राम को आपको रात को 7 से 8 बजे सुन पा रहे हैं।
0: जी सर,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर, धन्यवाद।

0: मैं हूं ममता शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: मैं गायक कलाकार

खान ढोलक पे साथ दे रहे हैं, मदन खान खरताल पे संगीतकार, शौकत खान मौनशिया। ये खरताल लकड़ी की बनी हुई होती है, शीशम की लकड़ी की चार खुली लकड़ी होती है और हाथों के अंदर ये खुले अंगूठे और अंगुलियों के सहयोग से ये बजाया जाता है। शौकत खान है राजस्थान, इन्होंने खरताल के माध्यम से अपना कुछ नाम कमाया है, हर स्टेज पे इनका कार्यक्रम होता है। हकीम लोक संगीत संस्थान के सुमला के अंदर ये बच्चों को संगीत की खरताल में सिखलाई देता है, खुद गाता है। इस संगीत संस्थान में हमारे कलाकारों खरताल ढोलक कमायचा सारंगी मोरचंग मुरली अलगोजा सहनाई ये सिखलाई दी जाती है। काफ़ी कलाकार हमारे इस संस्थान के माध्यम से संगीत को आगे बढ़ावा दे चुके हैं और विदेशों में भी काम कर रहे हैं। तो आपके सामने अभी पेश किया जा रहा है निमूड़ा। ये निमूड़ा हमारे मांगनिया लोगों का गाया हुआ है, प्रस्तुत करना जा रहा है हाकम खान।

मैं हूं अवधेश पंडित, जीएम फाइनेंस बेसिल, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो।

0: नमस्कार, संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी संगीत प्रेमी मित्रों का स्वागत है। संगीत एक समंदर समान है, जिसमें जितनी गहराई में जाएंगे उतने ही हीरे मोती मिलेंगे। समंदर जैसे ही संगीत में जो राग रागिनी है वो हीरे मोती के समान ही तो है, लेकिन इसके लिए चाहिए नियमित साधना और अथक रियाज। सुना है हमारी श्रद्धेय लता जी, जिसको सूर मल्लिका कहते हैं, वो भी अंतिम दिनों तक रियाज करते थे। इसलिए अभ्यास अनिवार्य है, कार्य चाहे कोई भी हो। तो आइए, संगीत साधना के बारे में और जानकारी देने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ मौजूद है श्यामली जी। श्यामली जी, संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: हाँ गीता जी, आपको प्रणाम। और जितने सारे लिसनर है, संगीत प्रेमी है, उसके लिए ढेर सारे शुभकामनाएं
0: जी। आज हमने कहा कि संगीत समंदर के समान है, माना उसका जो निचोड़ कहना हम जो चाहते हैं
1: जी,
0: कि काम कोई भी हो लेकिन अथक मेहनत प्रयास हमको जारी रखने चाहिए, ऐसे संगीत रूपी साधना में भी रियाज या अभ्यास अनिवार्य है। आप इसके बारे में क्या प्रकाश डालना चाहेंगे?
1: जैसे हम कुछ पसंद करते हैं
0: जी,
1: या कोई भी कला अगर उसमें दिलचस्प है तो हमारा दिमाग में वही घूमता रहते हैं, ठीक है ना। इसलिए हम कार्य करते, काम करते करते भी वो कर सकते हैं। ये खाना बनाते हैं, गुनगुना सकते हैं, कुछ भी कर सकते थे, ये बंद नहीं हो सकता,
0: मन नेचुरल है, नेचुरल होता है।
1: अगर संगीत के साथ प्रेम है, प्यार है, जिगरी प्यार जिसको कहते हैं, वो तो करेंगी। जैसे हम भी, हमारे तो गृहस्थी में रहने से कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है, इतना टाइम नहीं मिलता है, लेकिन थोड़ा भी टाइम मिले संगीत के सामने संगीत करने बैठ जाइए। तो इसलिए कहते हैं कि कोई कला अगर प्रेम है तो वो अपना जगह ढूंढ लेंगे, समय ढूंढ लेंगे, समय को
0: उसके लिए समय नहीं है ये बहाना नहीं चलेगा।
1: समय पाबंदी नहीं हो सकता है, कोई भी समय वो बैठ सकता है, कर सकते है
0: जी। श्यामली जी, आज आप मालकोस राग में आगे क्या सिखाना चाहेंगे?
1: हाँ, मालकोस राग में जो द्रुत लय की जो स्वर लिपि हो हमने दे दिया
0: जी।
1: आज बंदिश देने का दिन है, बंदिश उसके साथ थोड़ा तान करेंगे, विस्तार करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं जितने सारे लिसनर है उनको एक प्रकार की गीत है जिसको कहते हैं ध्रुपद। जैसे हम पढ़ाई में निबंध लिखते हैं ऐसे होता है ना, कोई भी टॉपिक लेकर हम करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, बहुत सुंदर उसको भाव प्रकाश करते हैं सबके सामने। इसलिए ध्रुपद जैसे है एक संगीत होता है, तो ऐसे आम जनता के लिए नहीं है, लेकिन जो ये शास्त्रीय संगीत प्रेमी है वो बहुत पसंद करते हैं ध्रुपद। तो
0: अच्छा,
1: इसलिए ध्रुपद करना चाहती हूँ। ये है श्री गणेश जी की स्तुति है, स्तुति के ऊपर एक बहुत सुंदर है। ये ताल जो होता है चौताल होता है, जो ध्रुपद के साथ चौताल ही बजते हैं, चौताल पखवाज एक पकड़ की वाद्य यंत्र है, उसके साथ बजते हैं। तो मैं करके सुनाती हूँ, लिसनर को सुनाना चाहती हूँ, वो भी सुनना चाहिए ना, वैरायटी टाइप का गीत सुनना चाहिए, ठीक है?
0: बिल्कुल जी।

0: तो ये आपने हमको गणेश स्तुति द्रुपद में सिखाई।
1: इसमें इस पद में गणेश जी कैसे है, लेकिन हमने भजन भी कह सकते हैं इसको, हम भजन की हिसाब से भी ले सकते हैं।
0: जी जी है? आगे श्यामली जी आप हमें क्या सिखाना चाहेंगे?
1: हाँ, जो हमने पिछले एपिसोड में दूत स्वरलिपि दिया था उसका बंदिश जो है, पहले बंदिश अगर लिसनर किताब पेन लेकर बैठते हैं तो हम बताते हैं तो लिख सकते हैं। पिया संग लड़े पछे तानी में, पिया संग लड़े पछे तानी में, देखो ऐसी मदा की इनी में, देखो ऐसी मदा की इनी में, पिया संग लड़े पछे तानी में, देखो ऐसी मदा की इनी में। ये स्थाई हो गया, अभी अंतरा है
0: जी।
1: उन बिन मैं का कलन पड़ते हैं, उन बिन मैं क्या कलन पड़ते हैं, यूं ही रैन बिहानी तरफ तरफ मैं रही सेज पड़े, तरफ तरफ मैं रही सेज पड़े, जैसे मीन बिन पानी में, जैसे मीन बिन पानी मैं, पिया संग लड़ पछ तानी में। बहुत सुंदर बंदिश है
0: जी।
1: तो पहले हम स्वरलिप के साथ ये धुन बैठा देते हैं, ये जो बोल बैठा देते हैं, ठीक है
0: जी।

0: ने हमको मालकोस राग की बंदिश दे दी।
1: हाँ, स्वरलिपि हमने दे दिया पिछले एपिसोड में। अभी बंदिश इस पे बैठा दिया है, बहुत सुंदर बंदिश। अगर कटते हैं तो बहुत अच्छा है
0: जी।
1: ठीक है
0: श्यामली जी, आगे भी मालकोस राग में आपसे जरूर सीखेंगे, मगर अभी वक्त हो चला है एक छोटे से अल्प विराम का। तब तक हम अपने श्रोता मित्रों को मालकोस राग से ही संबंधित एक प्यारे से मीठे से गीत का आनंद लेने के लिए प्रेरित करते हुए फिर मिलेंगे संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: पुनः आप सभी संगीत प्रेमी मित्रों का संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज शुरुआत में ही श्यामली जी ने हमको संगीत के रियाज या अभ्यास कहो इसकी महत्ता हमको बताई, साथ साथ में मालकोस राग में ही हमको गणेश स्तुति भी सुनाई और मालकोस राग की बंदिश भी सिखाई। आगे श्यामली जी आप हमको क्या सिखाना चाहेंगे?
1: हाँ, अभी जो हमने जो बंदिश दिए हैं उसमें थोड़ा विस्तार करेंगे, थोड़ा तान करेंगे
0: जी।
1: लिसनर और भी कर सकते हैं सुनकर okay. अगर गुरु जी के पास शिक्षा लेता है तो बहुत अच्छा है। तो मैं कोशिश करती हूँ जितना हो सके अगर लिसनर उठा सके। ठीक है
0: जी, बिल्कुल।

ता धनी सा गम धनी सा धनी सा पिया संग लर पछता गा गा सा मा मा मा गा धनी सा पिया संग लर पछ धनी सा गम धनी सा

0: श्यामली जी, तो ये आपने विस्तार और तान हमको करके सिखाया।
1: मालकुस को थोड़ा विस्तार किया, थोड़ा तान कर दिया
0: जी।
1: ऐसे तो गुरु के पास शिक्षा लेना ही है, जितना थोड़ा छोटा छोटा करके दिखा दिया, जितना हो सकता है ले सकते हैं
0: जी।
1: ठीक है
0: श्यामली जी, आज खास आप हमारे लिए कौन सा गीत लेकर आए?
1: हाँ, बहुत पुरानी एक फिल्म है, अपेरा हाउस 1961 में लता जी बहुत बहुत सुंदर एक गीत उन्होंने प्रस्तुत किए थे, बालम्मा मानेना, बहुत सुंदर गीत, वो करके सुनाती हूँ
0: जी।

जब जब पलटू गागर भर के लट रही जाई मुख पे बिखर के, जब जब पलटू गागर भर के

পাও ঘুম ঘেটে তারু।

0: बहुत बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
1: ठीक, हम ये कोशिश कर सकते हैं, लता जी का गीत है ना
0: जी,
1: तो कोशिश कर सकते हैं।
0: बिल्कुल श्यामली जी, पुनः मिलेंगे अगले हफ्ते संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में। श्रोता मित्रों, आपका कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, कुछ पूछना चाहते हो संगीत के विषय में, तो आप तुरंत हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एसएमएस के द्वारा भी आप अपनी बात हम तक रख सकते हैं। हमारा नंबर है 9414151415। फिर से रिपीट करती हूँ, हमारा नंबर है 9414151415। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता है, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना है, नीचे करना है। ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज़, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किस के पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

जब आसमान में एकदम अंधेरा होता है, काले बादलों ने चांद को भी ढक दिया होता है, और तब एक टिमटिमाता तारा नजर आता है जो ये एहसास कराता है कि ढूंढने पर रोशनी की एक झलक तो मिल ही जाती है। राठौड़ परिवार के जमाई सा यानी सूरजमल जी को अपने घर से बेदखल कर दिया गया और अपनी पत्नी यानी राठौड़ परिवार की सुपुत्री शांति के साथ घर जमाई बनकर रहना मतलब समाज की जिल्लत सहना। क्या राठौड़ परिवार अपने जमाई को अपनाएगा? क्या इस घर

0: मर्यादा का ख्याल हमको भी है। समाज के नियम के हिसाब से हम भी चलते आए हैं, लेकिन वो नियम जो सच्चे हैं, जो घर की सुख शांति के लिए जरूरी है।
1: हाँ पिताजी, आप ठीक कहते हैं, और हम राठौर परिवार का नाम बदनाम थोड़ी होने दे सकते हैं। जयशांति, तू भी अपना बैग पैक कर ले, ढूंढो कहीं और अपना ठिकाना दोनों।
2: भाभी, आप ये क्या कह रही है? क्या ये घर मेरा नहीं है? पापा, आप भी?
3: शांति, सब ठीक कह रहे हैं, चलो हमें यहाँ किसी पर बोझ नहीं बनना है।
4: तुम लोग का आज से टीवी सीरियल देखना बंद।
5: क्या?
6: क्या?
5: क्या?
6: क्या?
4: अरे मेरी पूरी बात सुने बिना एकदम टीवी सीरियल के जैसे अपना अपना मतलब निकलते जा रहे हो। मैं ये कह रहा था कि रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, और बेटा सूरजमल, इस दिल में और इस घर में दोनों में तुम्हारे लिए बहुत जगह है।
7: हाँ जमाई सा, तो यहीं रुकेंगे, कितनी अच्छी बात है ना?
8: हाँ बिल्कुल, ये बात सही है।
2: मैं तो बहुत खुश हूँ।
8: बढ़िया,
7: बहुत अच्छी बात है,
9: सब लोग मिलकर रहेंगे।
10: सुनिए, मैं जानती हूँ आप शांति और दामाद जी का भला चाहते हैं, और मैं भी वही चाहती हूँ, लेकिन सोचिए जरा, घर जमाई बनकर उनकी क्या इज्जत रह जाएगी?
8: माँ, तुम कैसी बातें कर रही हो? इस वक्त जमाई सा को हमारी जरूरत है।
4: मेरा फैसला आखिरी है, जमाई सा यही रहेंगे, अब से यही उनका घर है।
11: वीरेंद्र, तू तो समझ बेटा, मैं तो बस इनकी भलाई सोच रही हूँ।
12: माँ, आप क्या चाहती हो, दीदी और जीजा जी सड़क पर दर दर भटके?
10: किशन, सुन ले मेरी बात, वो तेरी तरह किताबी बातें और शायरी नहीं करते हैं जो सड़क पर भटकना पड़े।
8: जमाई साहब परिवार के हैं, और आपने ही हमें बचपन से सिखाया है कि परिवार का मतलब ही है एक दूसरे के साथ खड़े रहना। हम आपके ही सीख पर चल रहे हैं माँ।
1: अरे ये समाज हम पर थू थू करेगा, और घर जमाई की इज्जत कौन करता है?
12: हम तो करते हैं भाभी जी, भाभी ताने कसती है फिर भी उनकी करते हैं, तो जीजा जी की क्यों नहीं?
13: अरे वैसे भी भाभी, जब बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं होता तो भला बहू और दामाद में क्यों हो?
1: मेरा इस घर में कोई सुनता ही नहीं है, पहले गलती करेंगे फिर पछताएंगे। देखती हूँ मैं भी कब तक रहती है खुशी न दामाद की।
8: अरे जमाई सा, अब तो आंसू पोंछ दीजिए, आपका आपके घर में स्वागत है।
7: वैसे जमाई सा, मैं आपको वार्न कर देती हूँ, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है।
10: अरे राजकुमारी, तू डरा क्यों रही है इस बेचारे को?
8: अरे माँ, खतरा है ना?
11: क्या?
8: राजकुमारी के हाथ का खाना।
3: नहीं नहीं, मुझे तो राजकुमारी भाभी के हाथ का खाना बहुत पसंद है।
13: क्या, करेले के लड्डू
2: या मिर्ची का हलवा?
7: बस इसी से वॉर्न कर रही थी मैं आपको जमाई सा, यहाँ ना आपकी टांग खिंचाई कर कर के लंबा ही कर देंगे। लेकिन सच बताऊं, ये परिवार बहुत प्यारा है, हर रंग है यहाँ पे।
1: देखो किस्मत हमारी, जब इनके जीवन में अंधेरा हुआ, ठोकर लगी तो हम याद आ गए। भाई हम सब कोई सूरज थोड़ी हैं जो तुम्हारे जीवन में उजाला कर देंगे। इतनी कमाई नहीं है हमारी कि अब बेटियों को और उनके पतियों को भी बैठ कर खिलाएं।
12: इस बात पर मुझे गर्मा गर्म शेर याद आ गया।
9: सुनाओ सुनाओ किशन, इनके तानों से अच्छा है तुम्हारा शेर ही सुन ले।
7: शेर नहीं भाई साहब, शेर शेर।
9: हाँ हाँ वही।
10: हाँ बेटा, हमारी समझ में नहीं आते ये तेरे शेर कविताएं, लेकिन कम से कम किसी के दिल को दुखाती तो नहीं है तेरी ये कविताएं।
12: तो अर्ज किया है, सूरज सी नहीं है रोशनी मगर चांद उदास है क्या? सूरज सी नहीं है रोशनी मगर चांद उदास है क्या? अहमियत पर उसे अपनी कुछ कम नाज है क्या? अंधेरों में साथ निभाता है दिन में भला क्या खूबी है? मुख्तलिफ किस्मत पर अपनी उसे एतराज है क्या?
7: वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
8: किशन, बात तो तूने

0: तो आने सच्ची कही है। रिश्ते कभी चांद बन जाते हैं तो कभी दिए की लौ ही सही, लेकिन अंधेरों में कभी रोशनी देना नहीं भूलते।
1: तो बनो चांद सितारे तुम लोग, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना।
2: चंद्रावती, तुम कभी कोई अच्छी बात नहीं कर सकती हो।
1: मैं तो बस सच्ची बात कहती हूँ, बुरी तुम लोग को अपने आप लग जाती है।
2: सच तो बहुत है दुनिया में चंद्रावती, एक सच मैं भी कह देता हूँ।
0: भाई साहब जाने दीजिए ना।
3: भाभी जी, मैं किसी पर बोझ बनने नहीं आया हूँ, मैं शांति को लेके यहाँ से चला जाऊंगा, बस कुछ दिन ही।
2: जमाई साहब, आपका घर है, आप यहीं रहेंगे, और तुम्हें सच सुनना है ना चंद्रावती, तो सुनो। एक तुम हो जो इस घर का माहौल खराब करके रखती हो, ना किसी को चैन से रहने देती हो, ना सोने देती हो तुम।
0: भाई साहब बस कीजिए, जमाई साहब के सामने ये सब शोभता नहीं।
1: मैंने इस घर के लिए क्या क्या किया है, और ये कहते हैं।
4: भाभी जी, भाभी जी चुप हो जाइए, हम जानते हैं आपके पास जुबान कड़वी है, दिल नहीं।
5: बातों बातों में आधा सच कह दिया राजकुमारी भाभी ने, जुबान की तो बड़ी कड़वी है बड़ी भाभी।
6: हाँ बहना, रोने में भी ऐसा लग रहा है गुस्से में तंतना रही हो।
1: क्या क्या मैं कड़वी हूँ जुबान की?
7: नहीं नहीं बेटा, तेरे मुंह से तो फूल झड़ते हैं।
8: अरे तुम लोग अभी तक यहाँ क्या करो, ऐसे ही बिठा कर रखा है जमाई साहब, कुछ खिलाओ।
3: आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है पापा।
8: एहसान कैसा बेटा, ये तो रिश्ते की परिभाषा है, समय का खेल बहुत निराला है, कभी किसी का अच्छा वक्त आता है कभी बुरा, ये तो जीवन का चक्र है। रिश्ते इस पूरे चक्र में साथ निभाते, अगर गम में साथ नहीं तो खुशी में रहने का अधिकार भी नहीं।
0: पापा एकदम सही कह रहे हैं जमाई साहब, हम पांचों भाई बहन में बड़े भाई साहब किशन, शांति और रागनी यही सीख के बड़े हुए हैं कि परिवार मतलब प्यार। कितनी भी नोक झोंक हो, गुस्सा आए या एक दूसरे से दिमाग की सोच में अंतर हो सकता है, लेकिन दिल में नहीं।
7: चलिए जमाई साहब, अब आप अंदर चलिए, मुंह हाथ धो लीजिए, फिर हम बाहर खाने के लिए मिलते हैं।
4: पापा कितना सही कह रहे हैं भाभी, ऐसा कोई अपने घर वालों के साथ करता है क्या जैसा जमाईसा के भाई ने किया? ऐसे तो मैं अपने जले हुए आटे के साथ ना करूं। उस दिन आटे का हलवा बनाते समय जो आटा जल गया था उसको भी मैंने सब्जी में घोल कर इस्तेमाल कर लिया था। वो जो जली हुई सी महक नहीं आ रही थी सब्जी में, आप लोग कह रहे थे सब्जी जली भी नहीं महक भी आ रही है, ऐसा कैसे? वो उस आटे की वजह से ही तो थी। जमाईसा रुकिए रुकिए, मैंने कल ही काली गाजर और करेले का केक बनाया है, आपके लिए अभी लेकर आई।
9: अब राजकुमारी जी के हाथ का केक खा के जमाईसा का हाजमा खराब होगा या सिर्फ मुंह का टेस्ट, ये तो मैं नहीं जानता। हाँ लेकिन ये जानता हूँ कि रिश्तों के धागों में अगर एक बार गांठ पड़ जाए तो खुलने पर भी धागे को कमजोर कर देती है। क्या सचमुच रिश्ते इतनी आसानी से छूट जाते हैं? क्या वो भाई या बहन जिसके साथ बड़े हुए, हंसे खेले, जिसने बचपन में हमें पापा की डांट से बचाया, जिसको अगर किसी और ने चोट पहुंचाने की कोशिश भी की तो हम आगे खड़े हो गए, उसे हम आज खुद चोट पहुंचाने में जरा भी नहीं सोचते। कैसे आ जाती हैं इतनी दूरियां? वो प्यार कहां खो जाता है? खैर मुझे तो इस बात की खुशी है कि राठौड़ परिवार ने सूरजमल यानी जमाई साहब को ये एहसास दिलाया कि ये उनका अपना घर है। लेकिन राठौड़ परिवार है जी, यहाँ सूरज भी अपनी निकलने की दिशा भूल जाता है, तो नए जमाई सा मतलब पुराने जमाई, नए घर जमाई क्या चीज है ना? बस सुनते जाइए कि इस जंगल में अब क्या क्या होगा जब एंट्री होगी एक नए जीव की। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर फिर मिलेंगे कार्यक्रम घर ऑन एयर के अगले एपिसोड में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
10: घर ऑन एयर पात्र परिचय। दादाजी भगवत सिंह राठौड़, आरजे ज्ञानेश्वर। दादी जी अंबिका देवी राठौर आरजे संध्या, चाचा किशन सिंह राठौर आरजे श्रीनिधि, ताऊ जी गजेंद्र सिंह राठौर आरजे रोहित, ताई जी चंद्रावती आरजे प्रभा, बुआ रागनी राठौर आरजे कृष्णा, बुआ शांति राठौर आरजे मोना, वीरेंद्र राठौर आरजे विशाल, राजकुमारी राठौर आरजे आरुषि, बच्चे रूहानी अमीक्षा, नैरेटर आरजे अमित।

बचपन की सुरक्षा है एक खास जिम्मेदारी, इस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। आपातकालीन स्थिति के साथ उन्हें लंबे समय के पुनर्वास के लिए मदद भी करता है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। बच्चे या बड़े जो उनकी सहायता करना चाहते हैं डायल कर सकते हैं 1098 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

मैं ढूंढई गांव से हूँ। आप सब सुन रहे हो रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रुक कोई रुक रुक रुक पीछे पीछे पीछे चल भाई, स्टॉप लाइन के आगे कहाँ जा रहा है? लाल बत्ती दिखाई नहीं देती।
1: पर हवलदार साहब, जरा जल्दी निकलने के मूड में हूँ।
0: वो तो ठीक है, पर दूसरी तरफ हरी बत्ती है और उन लोगों का रुकने का मूड नहीं है। तो जब भी लाल बत्ती हो तेरी तरफ तो बोलो पहले आप।
2: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

बचपन की सुरक्षा है एक खास जिम्मेदारी, इस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। आपातकालीन स्थिति के साथ उन्हें लंबे समय के पुनर्वास के लिए मदद भी करता है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। बच्चे या बड़े जो उनकी सहायता करना चाहते हैं डायल कर सकते हैं 1098 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

मैं हूं सुमन, साउथ इंडिया का एक्टर, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी जी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

ओम शांति। आज है 24 अगस्त 2026 और हम बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली है याद। बाबा कहे, तुम बच्चों को निरंतर याद में रहने का अभ्यास करना है। क्यों याद करने के लिए बाबा कहते हैं? क्योंकि बाबा कहे, जब तुम बच्चे बाप को याद करते हैं तो जहां प्रीत होती है वहां ही याद होती है। तो बाबा के साथ प्यार भी है तो याद भी है। और क्यों याद करना चाहिए? क्योंकि बाबा कहते हैं, याद से अनेक फायदे होते हैं। एक तो आत्मा पावन बनती जाती है, दूसरा याद से ही हम बाप से पूरा वर्षा प्राप्त कर सकते हैं, अनेक बंधनों को खलास कर सकते हैं और विकर्मों से मुक्त हो सकते हैं, साथ ही सजाओं से भी छूट जाएंगे। तो अनेक फायदे बाबा ने बताया है कि याद करने से क्या क्या प्राप्ति हमारे जीवन में हो सकती है। तो सुनते हैं आज के बाबा के याद पर अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, सुख देने वाले बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करो। याद बिगर प्यार नहीं हो सकता। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप बच्चों को रोज रोज याद का अभ्यास करने का इशारा क्यों देते हैं? उत्तर है, क्योंकि याद से ही आत्मा पावन बनेंगे, याद से ही पूरा वर्षा ले सकेंगे, आत्मा के सब बंधन खलास हो जाएंगे, विकर्मों से मुक्त हो जाएंगे, सजाओं से छूट जाएंगे। जितना याद करेंगे उतनी खुशी रहेगी, मंजिल समीप अनुभव होगी, कभी भी थकेंगे नहीं, बेहद का सुख पाएंगे। इसीलिए याद का अभ्यास जरूर करना है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन का अर्थ समझा। अभी जीते जी तुम बेहद के बाप के बने हो, सारा कल्प तो हद के बाप के बने हो, सतयुग में भी हद के बाप के बनते हो। अभी सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे बेहद के बाप के बने हो। तुम जानते हो, बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। अगर बाप को छोड़ा तो बेहद का वर्षा मिल नहीं सकेगा। बल तुम समझाते हो, परंतु थोड़े में तो कोई राजी नहीं होता है, हरेक को फूल चाहिए। तो बाबा कहे, मनुष्य धन बहुत चाहते हैं, धन के सिवाय सुख नहीं हो सकता है। धन भी चाहिए, शांति भी चाहिए, निरोगी काया भी चाहिए। तुम बच्चे ही जानते हो दुनिया में आज क्या है और कल क्या होना है। विनाश तो सामने खड़ा है और कोई की बुद्धि में ये बातें नहीं है। अगर समझे कि विनाश सामने खड़ा है तो क्या करना है, ये नहीं जानते हैं। बाबा कहते, भले अगर समझे भी तो आगे क्या करना है ये नहीं जानते। तुम बच्चे समझते हो, ऐसा मालूम होता है कभी लड़ाई लग जाए, और अभी तो आसार बहुत ऐसे दिखाई दे रहा है, कभी लड़ाई लग जाए, थोड़ी चिंगारी लगे तो बमबट मच जाए, हाहाकार मच जाए, देरी नहीं लगेगी। आगे भी थोड़ी सी बात से कितनी बड़ी लड़ाई लग गई। दूसरे विश्व युद्ध में भी बाबा के थोड़ी सी बात से कितनी बड़ी लड़ाई लग गई। बच्चे जानते हैं कि पुरानी दुनिया खत्म हुई कि हुई, इसलिए अब जल्द ही बाप से वर्षा लेना है। पुरानी दुनिया खत्म हुई कि हुई, इसीलिए
अब जल्दी ही बाप से वर्षा लेना है। बाप को सदैव याद करते रहेंगे तो बहुत हर्षित रहेंगे। तो पहली बात बाबा ने कही, बाप को सदैव याद करते रहेंगे तो बहुत हर्षित रहेंगे। देह अभिमान में आने से ही वह खुशी गायब हो जाती है। देही अभिमानी बनते हो तो बाप को याद करते हो, तो याद का आधार देही अभिमानी स्थिति। देह अभिमान में आने से बाप को भूल दुख उठाते हो। जितना बाप को याद करेंगे उतना बेहद के बाप से सुख उठाएंगे। पहले तो हर्षित रहेंगे, देही अभिमानी बनेंगे और जितना बाप को याद करेंगे सुख उठाएंगे। यहां तुम आए ही हो ऐसा लक्ष्मी नारायण बनने, राजा रानी और प्रजा का नौकर चाकर बहुत फर्क है ना। अभी का पुरुषार्थ फिर कल्प कल्पांतर के लिए कायम हो जाता है। पिछाड़ी में सबको साक्षात्कार होगा, हमने कितना पुरुषार्थ किया है। अब भी बाप कहते हैं अपनी अवस्था को देखते रहो। मीठे ते मीठे बाबा जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है उनको हम कितना याद करते हैं। तुम्हारा सारा मदार है ही किस पर? याद पर। बाबा कहते तुम्हारा सारा मदार है ही याद पर। जितना याद करेंगे उतना खुशी भी रहेगी। समझेंगे बस अब नजदीक आकर पहुंचे हैं। कोई थक भी जाते हैं, पता नहीं मंजिल कितना दूर है, पहुंचे तो मेहनत भी सफल हो। दुनिया को यह भी पता नहीं कि भगवान किसको कहा जाता है। कहते भी है हे भगवान, फिर कह देते ठिक्कर बित्तर में है। अभी तुम बच्चे समझते हो हम बाप के बन चुके हैं। अभी हम समझते हैं कि हम बाप के बन चुके हैं। अब बाप की ही मत पर चलना है। बल विलायत में हो वहां रहते भी सिर्फ बाप को याद करना है। हमें याद करना है और श्रीमत पर चलना है। तुमको श्रीमत तो मिली है, आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान सिवाय बाप की याद के हो नहीं सकती। तुम कहते हो बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे। बच्चे बाबा को कहते हैं बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे, जैसे हमारा बाबा वर्षा लेते हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा वर्षा लेते हैं, हम भी पुरुषार्थ कर उनकी गद्दी पर जरूर बैठेंगे। मम्मा बाबा राज राजेश्वर राज राजेश्वरी बनते हैं तो हम भी बनेंगे। इम्तिहान तो सबके लिए एक ही है। तुमको बहुत थोड़ा सिखाया जाता है, सिर्फ बाप को याद करो। इसको कहा जाता है सहज राजयोग बल। बाप को याद करना, तो बाबा कहते इसको ही कहा जाता है सहज राजयोग बल। तुम समझते हो योग से बहुत बल मिलता है। हम कोई विकर्म करेंगे तो सजा बहुत खाएंगे, पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। याद में ही माया विघ्न डालती है। तुम जानते हो हम पावन दुनिया में जा रहे हैं। जो ब्राह्मण बनेंगे वही निमित्त बनेंगे। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनने बिगर तुम बाप से वर्षा ले नहीं सकते। बाप बच्चों को रचते ही है, इसलिए वर्षा देने के लिए। शिव बाबा

एकदम उनको उड़ा देंगे। एक दूसरे को जैसे इतला करना माना मैसेज भेजते रहते हैं, फलाना अगर ऐसा करेगा तो हम एकदम उनको उड़ा देंगे। उड़ाने की तैयारी हो रही है, बॉम्ब्स आदि कोई रखने के लिए नहीं है, तैयारी बहुत हो रही है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय पाकिस्तान हिंदुस्तान था क्या? लिखा हुआ है यवनों की लड़ाई, पांडव और कौरवों की लड़ाई है नहीं, यवन बरोबर लड़ रहे हैं, बॉम्ब्स भी तैयार हो गए हैं। अभी बाप हमको फरमान करते हैं, क्या फरमान करते हैं? बच्चे मुझे याद करो, नहीं तो पिछाड़ी में बहुत रोना पड़ेगा। इम्तिहान में नापास होते हैं तो जाकर डूब मरते हैं गुस्से में, यहां गुस्से की तो बात ही नहीं। पिछाड़ी में तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे, क्या क्या हम बनेंगे वह भी पता पड़ जाएगा। बाप का काम है पुरुषार्थ कराना। कहते बच्चे कर्म करते हुए याद करना भूल जाते हो, वह फुर्सत नहीं मिलती है। तो अच्छा बैठो, याद में बैठो। बाबा कहते कई बच्चे कहते कर्म करते हुए भूल जाते हैं, वह कर्म के कारण फुर्सत नहीं मिलती है। तो बाबा कहते अच्छा बैठो, याद में बैठकर बाप को याद करो। आपस में तुम मिलते हो तो भी ये कोशिश करो कि हम बाबा को याद करें। मिलकर बैठने से तुम याद अच्छा करेंगे, माहौल बन जाता है जब संगठन में बैठते हैं, और वाइब्रेशन के कारण बाबा कहते याद अच्छा करेंगे, मदद मिलेगी। तो मिलकर बैठने से तुम याद अच्छा करेंगे, मदद मिलेगी। मूल बात है बाप को याद करना है, का ना सारी मुरली बाबा की याद पर है। यहां आओ व न आओ, मधुबन आओ या ना आओ, कोई विलायत जाते हैं फिर आ तो सकेंगे नहीं, वहां भी सिर्फ एक बात याद रखो, बाप की याद से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। बाप कहते सिर्फ एक बात याद रखो, बाप को याद करो। बाप कहते मन मना भव, मुझे याद करो तो विश्व का मालिक बनेंगे। मूल बात हो जाती है याद की, कहां भी जाने आदि की बात नहीं है। घर में रहो, सिर्फ बाप को याद करते रहो। पवित्र नहीं बनेंगे तो याद कर नहीं सकेंगे। तो पहला आधार याद का बताया, देही अभिमानी स्थिति। दूसरा बाबा कहते पवित्र नहीं बनेंगे तो याद कर नहीं सकेंगे। ऐसे थोड़ी कि हम सब आकर क्लास में पढ़ेंगे, मंत्र लिया फिर भल कहां भी चले जाओ। सतो प्रधान बनने का रास्ता बाप ने बतलाया है। यूं तो सेंटर पर आने से नई नई पॉइंट सुनते रहेंगे, अगर किसी कारण से नहीं आ सकते हैं, मानो बरसात पड़ती है अथवा कर्फ्यू लगता है, कोई बाहर निकल नहीं सकते हैं, फिर क्या करेंगे? बाप कहते हर्जा नहीं है, कहां भी रहते तुम याद में रहो, चलते फिरते याद करो। औरों को यही कहो कि बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे और देवता बन जाएंगे। अक्षर ही दो है, बाप और वर्षा। बाप कहते ये बचपन भूल न जाना, आज हंसते हो कल रोना पड़ेगा। अगर बाप को भुलाया तो, आज हंसते कल रोना पड़ेगा अगर बाप को भुलाया तो। बाप से वर्षा पूरा लेना चाहिए, ऐसे बहुत हैं कहते हैं स्वर्ग में तो जाएंगे ना, फिर जो तकदीर में होगा। उनको कोई पुरुषार्थ करना नहीं कहेंगे, मनुष्य पुरुषार्थ करते ही है उच्च मर्तबा पाने के लिए। अब जबकि बाप के पास उच्च मर्तबा मिलता है तो गफलत क्यों करनी चाहिए? बाबा कहे केयरलेस नहीं होना चाहिए, गफलत नहीं करनी चाहिए। स्कूल में जो नहीं पढ़ेंगे तो पढ़े

लिखे के आगे भरी ढोनी पड़ेगी। बाप को पूरा याद नहीं करेंगे तो प्रजा के भी नौकर चाकर जाए बनेंगे। इसमें खुश थोड़ी होना चाहिए, नौकर चाकर पद मिला तो उसमें खुश थोड़ी होना चाहिए। तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों सन्मुख रिफ्रेश होकर जाते हैं, कहीं बांधे लिया है हर्जा नहीं, घर बैठे बाप को याद करती रहो। तुमको कितना सहज समझाते हैं, मौत सामने खड़ा है, अचानक ही लड़ाई शुरू हो जाएगी। एक दो को कहते हैं थोड़ा भी गड़बड़ किया तो हम ऐसा करेंगे, पहले से ही कह देते हैं बॉम्ब्स की मगरूरी बहुत है, मगरूरी माना अहंकार बहुत है, बॉम्ब्स है हमारे पास उसका अभिमान बहुत है। बाप कहते बच्चे अर्जुन योग बल में होशियार हुए नहीं हो, ऐसा न हो लड़ाई लग जाए, परंतु ड्रामा अनुसार ऐसा होगा ही नहीं। बच्चों ने पूरा वर्षा लिया नहीं है इसलिए निश्चय होता है यह लड़ाई करके लगेगी भी तो भी बंद हो जाएगी। ड्रामा में ऐसा प्रावधान है कि अगर बच्चों ने पूरा वर्षा नहीं लिया है तो लड़ाई अगर लगेगी भी तो बंद हो जाएगी, क्योंकि अभी राजधानी स्थापन हुई नहीं है, टाइम चाहिए। पुरुषार्थ कराते रहते हैं, पता नहीं किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, बस गिर पड़ती है, एरोप्लेन ट्रेन गिर पड़ते हैं, मौत कितना सहज खड़ा है, धरती भी हिलती रहती है। सबसे जास्ती काम अर्थक्वेक को करना है। इस महाविनाश की लीला में बाबा कहे सबसे जास्ती काम अर्थक्वेक को करना है, लेकिन विनाश होने के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है, इसलिए बहुत प्रेम से बाप को याद करना है। बाबा आपके बिगर हमारा दूसरा कोई नहीं, सिर्फ बाप को ही याद करते रहो। कितना सहज रीति जैसे छोटे छोटे बच्चों को समझाते हैं, और कोई तकलीफ नहीं देता। बाबा कहते मैं और कोई तकलीफ नहीं देता, सिर्फ याद करो और काम चित्ता पर बैठ, जो तुम जल मरे हो सो अब ज्ञान चित्ता पर बैठ पवित्र बन। एक तो याद करो, दूसरा पवित्र बनो। तुमसे पूछते हैं आपका उद्देश्य क्या है, बोलो जो सबका बाप है वह कहते हैं मामे कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम तमो प्रदान से सतो प्रदान बन जाएंगे। सर्व का सदगति दाता एक बाप है। अब बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी, ये इतना पैगाम तो दे सकते हो ना कि बाबा को याद करो तो आत्मा से कट उतर जाएंगे। बाबा का इतना पैगाम तो दे सकते हो ना, खुद याद करेंगे तब दूसरे को याद करा सकेंगे, दूसरे को रुचि से कहेंगे, खुद याद करेंगे तो दूसरे को भी रुचि से कहेंगे, नहीं तो दिल से नहीं निकलेगा। बाप कहते हैं कहां भी हो जितना हो सके सिर्फ याद करो, भल थोड़ी खान पान की तकलीफ आदि होती है, रहना तो घर में ही है, घर में रहते बाप को याद करो, जो मिले उनको यही शिक्षा दो, मौत सामने खड़ा है। बाप कहते तुम सब तमु प्रधान पतित बन पड़े हो, अब मुझे याद करो और पवित्र बनो। आत्मा ही पतित बनी है, सतयुग में होती है पावन आत्मा, बाप की याद से ही आत्मा पावन बनेगी और कोई उपाय नहीं है। ये पैगाम सबको देते जाओ तो भी बहुतों का कल्याण करेंगे और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। बाबा और कोई तकलीफ तो नहीं देते हैं। पुरुषोत्तम मास में भी जाकर समझाओ कि सबसे पुरुषोत्तम कौन है। सतयुग आदि में ये लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम थे, इन्हों को ऐसा पुरुषोत्तम बनाने वाला अर्थात
स्वर्ग की स्थापना करने वाला बाप है। सब आत्माओं को पावन बनाने वाला पतित पावन बाप ही है। सबसे उत्तम पुरुष बनाने वाला है बाप। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने हैं। रावण राज्य में हम पुजारी बने हैं, राम राज्य में पूज्य थे। अभी रावण राज्य का अंत है, हम पुजारी से फिर पूज्य बनते हैं। बाप को याद करने का औरों को भी रास्ता बताना है। बुढ़ियों को भी यह सर्विस करनी चाहिए। यह सर्विस तो हर कोई कर सकता है, बाबा कहते बुढ़ियों को भी यह सर्विस करनी चाहिए कि दूसरों को याद दिलाते रहे। मित्र संबंधियों को भी बाप का परिचय दो, बोलो शिव बाबा कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। निराकर शिव बाबा सर्व का सदगति दाता बाबा सब आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। ये समझाना तो सहज है ना। बुढ़िया भी यह सर्विस कर सकती है। मूल बात ही है यह, बाबा कहते मूल बात है ही यह। शादी मुरादी कहां भी जाओ, कान में ये बात सुनाओ। गीता का भगवान कहते हैं मुझे याद करो। इस बात को सब पसंद करेंगे। जास्ती बोलने की दरकार नहीं है, सिर्फ बाप को पैगाम देना है कि बाप कहते मुझे याद करो। अच्छा, ऐसे समझो भगवान प्रेरणा करते हैं। स्वप्न में साक्षात्कार होता है, आवाज सुनने में आता है, बाप कहते मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम खुद भी सिर्फ यही चिंतन करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। हम प्रैक्टिकल में बेहद के बाप के बने हैं और बाप से 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं, तो खुशी रहनी चाहिए ना। बाप को भूलने से ही तकलीफ होती है। सारी तकलीफों का कारण बाप की याद भूलना। बाप कितना सहज बतलाते हैं मुझे याद करो तो सब समझेंगे। इन्हों को रास्ता तो बरोबर राइट मिला है, ये रास्ता कब कोई बता ना सके। समय ऐसा होगा जो तुम घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे। बाबा की भविष्यवाणी, समय ऐसा होगा जो तुम घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे। बाप को याद करते करते शरीर छोड़ देंगे। अंतकाल जो शिव बाबा सिमरे, फिर नारायण योनि वलवल उतरे। कहा जाता जो शिव बाबा को याद करेंगे वो नारायण योनि में उतरेंगे, लक्ष्मी नारायण डिनेस्टी में आएंगे, घड़ी घड़ी राजाई पद पाएंगे। बस सिर्फ बाप को याद करो प्यार से। सारा सार बाबा ने बता दिया, सिर्फ बाप को याद करो प्यार से। याद बिगर प्यार कैसे करेंगे। सुख मिलता है तब याद किया जाता है, दुख देने वाले को प्यार नहीं किया जाता। बाप कहते मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं, इसलिए मुझे प्यार करो। बाप की मत पर चलना चाहिए ना। बाबा हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, इसलिए बाबा कहे मुझे प्यार करो और बाप की मत पर चलना चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी है। लड़ाई के पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। और दूसरी पॉइंट, श्रीमत पर बाप को बड़े प्यार से याद करना है। श्रीमत पर बाप को बड़े प्यार से याद करना है।
आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, संकल्प वृत्ति और स्मृति से व्यर्थ को समाप्त करने वाले सच्चे ब्राह्मण संपूर्ण पवित्र भव। संकल्प वृत्ति और स्मृति से व्यर्थ को समाप्त करने वाले सच्चे ब्राह्मण संपूर्ण पवित्र भव। अपने संकल्प वृत्ति और स्मृति को चेक करो, ऐसे नहीं कुछ गलत हो गया, पश्चाताप कर लिया, माफी मांग ली, छुट्टी हो गई। कितना भी कोई माफी ले, लेकिन जो पाप व व्यर्थ कर्म हुआ उसका निशान नहीं मिटता, रजिस्टर साफ स्वच्छ नहीं होता। सिर्फ इस रीत रसम को नहीं अपना, बाबा कहे सिर्फ इस रीति रसम को नहीं अपनाओ कि बस माफी मांग लिया ठीक हो जाएगा, लेकिन स्मृति रहे कि मैं संपूर्ण पवित्र ब्राह्मण हूं। अपवित्रता संकल्प वृत्ति व स्मृति को भी टच नहीं कर सकती, इसके लिए कदम कदम पर सावधान रहो। आज का स्लोगन है, बाप के साथ को यूज करो तो कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे। बाप के साथ को यूज करो तो कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे। आज का व्यक्त इशारा, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। पवित्रता का रहस्य प्रैक्टिकल में लाना, अर्थात संकल्प रूप से भी पांचों विकारों पर विजयी बनना। व्यर्थ संकल्प क्रोध भी पैदा करता है, तो काम अर्थात किसी आत्मा के प्रति अगर व्यर्थ दृष्टि भी जाती है तो उस समय पवित्रता नहीं मानी जाएगी। तो यह व्यर्थ संकल्प बाप के प्यार के पीछे न्योछावर करो। यह व्यर्थ संकल्प क्या करो, बाप के प्यार के पीछे न्योछावर करो। अच्छा, ओम शांति।